इसी संदर्भ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ में मौजूद लोग नारे लगाते दिख रहे हैं। वीडियो में लिखा है, कोलकाता में सड़क पर नमाज को लेकर बवाल, नई सरकार के आदेश के खिलाफ एक धर्म विशेष के लोगों का धमकी भरा प्रदर्शन। एक व्यक्ति ने वीडियो को एक्स पर शेयर किया।

0: किया और तंज कसते हुए लिखा कि सड़क किसी की थोड़ी है, जो जब चाहे जहां चाहे वही मुर्गा बन जाए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में किसी सड़क पर लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। ये लोग कुछ नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां पर सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगने को लेकर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने गौर से सुना तो ये बांग्ला लगा। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने फिर से वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और अगर ये वीडियो सड़क पर नमाज रोकने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का था तो इस दौरान हमें यहां पर बंगाल पुलिस के जवान क्यों नजर नहीं आए? इतने बड़े विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस के जवानों को तैनात क्यों नहीं किया गया, ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। साथ ही वीडियो में द लाइट पार्क नाम के एक होटल का बोर्ड भी नजर आ रहा है, लेकिन सर्च के दौरान पूरे पश्चिम बंगाल में इस नाम का कोई भी होटल हमें नजर नहीं आया। मतलब ये कि वायरल वीडियो कहीं और का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में वायरल दावे की पुष्टि करते कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।

0: बैट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच की। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और इसे सर्च किया। इस दौरान हमें फेसबुक पर उसी लोकेशन का दूसरा वीडियो मिला। कई बांग्लादेशी यूजर्स ने इस वीडियो को 14 मई को शेयर किया था। इन पोस्ट के मुताबिक वीडियो आवामी लीग के नेता इंजीनियर मुशर्रफ हुसैन के जनाजे में बांग्लादेश के चिट्टागोम में उमड़ी भीड़ का है। एक बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट में 14 मई को छपी रिपोर्ट के मुताबिक चिट्टागोंग में इंजीनियर मुशर्रफ हुसैन की अंतिम विदाई में हजारों समर्थक शामिल हुए थे। फेसबुक पर मिले वीडियो में द लाइट पार्क नाम का होटल साफ दिख रहा है। इस क्रू की मदद से हमने वायरल वीडियो में दिख रही जगह को गूगल मैप्स पर सर्च किया तो ये हमें बांग्लादेश के चिट्टागोंग में मिल गई। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि बांग्लादेश के चिट्टागोंग का है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ रितेश दत्ता, टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि मामूली सी कहासुनी के बाद एक लड़के ने एक लड़की को बेरहमी से पीट दिया जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं कुछ यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि लिफ्ट में लड़का मैडम से गलती से टकरा गया था, फिर लगातार बेइज्जती करके थप्पड़ मार दिया लड़के ने, फिर उसके बाद लड़की पर हमला कर दिया। लेकिन जब हमने इस वीडियो की पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए हमारी रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पर ये हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वायरल हो रहा वीडियो किसी सीसीटीवी फुटेज का है। वीडियो में नजर आता है कि लिफ्ट से बाहर निकलते समय एक लड़का एक लड़की से टकरा जाता है। लड़का टकराने की वजह बताता है। इस पर लड़की कहती है कि देख कर आना चाहिए था। लड़का सॉरी भी बोलता है और इतने में लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट के बंद होते ही लड़की उस लड़के को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद लड़के का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो लड़की पर गुस्सा करता है, थप्पड़ क्यों मारा इसकी वजह पूछता है, लेकिन लड़की लड़के से लगातार बहस करती रहती है। इसके बाद लड़का अपना आपा खो देता है और वो लड़की को बुरी तरह

0: तरह से पीटता है। कई न्यूज आउटलेट्स ने भी इस वीडियो को लेकर कई खबरें चलाई। एक्स पर वीडियो को शेयर करते हुए एक शख्स ने लिखा कि लिफ्ट में लड़का मैडम से गलती से टच हो गया, फिर लगातार बेइज्जती करके थप्पड़ मार दिया। लड़का फिर ज्यादा पिटाई किया, लेकिन सीसीटीवी नहीं होता तो मैडम विक्टिम कार्ड खेलती। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर यूजर इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में नजर आ रहा है कि लिफ्ट से बाहर निकलते समय एक लड़की और एक लड़का आपस में टकरा जाते हैं और इसके बाद लड़की बहस करते हुए युवक को थप्पड़ मार देती है। युवती से पीटने के बाद युवक उसे पहले तो थप्पड़ मारता है और इसके बाद जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीटता है। इतना ही नहीं, वो लड़की के सर पर एक भारी चीज भी मारता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हमने इसकी पड़ताल शुरू की तो दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। मसलन इन दोनों के बीच बहस होती है तो फिर शोर सुनकर आसपास से कोई वहां पर क्यों नहीं पहुंचता। इतना नहीं, लड़का जब लड़की के थप्पड़ मारने के बाद पलटवार करता है तो लड़की को जमकर पीटता है। तो इस दौरान लड़की चीखी होगी, शोर मचाया होगा, लेकिन इसके बावजूद वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा। ऐसा भला कैसे हो सकता है? लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट पर मिला। वीडियो के कैप्शन में एक्टिंग और रेसलिंग जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया है। इस अकाउंट पर यह वीडियो दो बार शेयर किया गया था। वीडियो में नजर आ रहे लड़के का नाम विपिन चौहान है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो के मुताबिक वो एक रेसलर है। उनके अकाउंट पर मौजूद कई दूसरी वीडियोज में CWE अकेडमी का बैनर नजर आता है। CWE मशहूर रेसलर खली की कुश्ती अकेडमी है जो कि पंजाब में स्थित है। उनके अकाउंट पर इस तरह की मारपीट और भी वीडियो मौजूद है जिनमें वही लड़की है जो वायरल वीडियो में भी नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए फैक्ट चेक टीम ने विपिन चौहान से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वीडियो में दिख रही लड़की उनकी पत्नी रुचिका शाह है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने इस तरह के स्क्रिप्टेड वीडियो बनाने शुरू किए हैं। इन वीडियोस पर उन्हें काफी व्यूज और लाइक्स मिले और जिसके बाद उन्होंने इस तरह के और भी वीडियो बनाने का फैसला किया। वो और उनकी पत्नी प्रोफेशनल कुश्ती खिलाड़ी हैं और किसी को बिना चोट पहुंचाए वो ऐसे वीडियोस बना सकते हैं। इस वीडियो को शूट करने के दौरान भी किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। उन्होंने कहा कि कभी कभी शूटिंग के दौरान हल्की फुल्की चोट लग जाती है, लेकिन वो ज्यादा गंभीर नहीं होती। विपिन ने यह भी बताया कि उन्होंने अब CWE अकेडमी छोड़ दी है। साफ है कि लड़की के साथ मारपीट करता शख्स उसी का पति है। ये वीडियो भी असल घटना का नहीं है। वीडियो में नजर आ रहे दोनों लोग कुश्ती खिलाड़ी हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: अच्छा, आखिरी सफर कहा जहां हम पेश करने वाले कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।

0: जो पार्टी दे रहा है हम सबको।
1: इन दिनों सोशल मीडिया पर चकाचौंध और शोबाजी वाली रील्स की बाढ़ आई हुई है, लेकिन इसी बीच झारखंड से सामने आए एक वीडियो ने इंटरनेट की लाखों जनता का दिल जीत लिया है। ये कहानी सूरज नाम के एक बच्चे की है, जिसने साबित कर दिया कि खुश रहने के लिए किसी महंगे कैफे या आलिशान पार्टी की जरूरत नहीं होती, बस कुछ सच्चे दोस्त और 100 रुपए का बजट ही काफी है। वीडियो में सूरज अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से चूल्हे के पास बैठकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता दिख रहा है।
0: हेलो गाइस, आज सूरज का बर्थडे है, तो सूरज 100 रुपया का मैगी लाया है और उसका साथ सेंटा फेंटा भी और बहुत बच्चा भी है, आज वो पार्टी दे रहा है हम सबको।
1: वीडियो की शुरुआत सूरज के दोस्त के एक डायलॉग से होती है, जो कैमरे के सामने आकर बड़े गर्व से कहता है, आज सूरज की तरफ से बर्थडे पार्टी है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस छोटी सी पार्टी के लिए सूरज ने अपनी गुल्लक से पाई पाई जोड़कर पैसे बचाए थे। वीडियो में दिख रहा है कि सूरज खुद चूल्हे पर मैगी बना रहा है और उसके दोस्त आसपास बैठकर अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बच्चों के चेहरों पर बिखरी मुस्कान और खुशी किसी भी महंगे रेस्टोरेंट के जश्न से कहीं ज्यादा बड़ी और खूबसूरत लग रही है।
0: हेलो गाइस, आज सूरज का बर्थडे है, तो सूरज 100 रुपया का मैगी लाया है और उसका साथ सेंटा फेंटा भी और बहुत बच्चा भी है, आज वो पार्टी दे रहा है हम सबको, आज उसका बर्थडे है।
1: आप भी बचपन में कई बार डॉक्टर के पास गए होंगे, अगर तबीयत ज्यादा खराब रही होगी तो डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगाया होगा। अब इंजेक्शन देखकर आपको डर भी लगा होगा। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो बड़े हो चुके हैं मगर आज भी इंजेक्शन से डरते हैं। वही वीडियो में दिख रही ये बच्ची इंजेक्शन से बिल्कुल भी नहीं डर रही। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बच्ची को दर्द होता ही नहीं, उसे इंजेक्शन से डर भी नहीं लगता, और बच्ची के इसी एक्सप्रेशन के कारण वीडियो वायरल हो रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर क्रिकेट से जुड़ा ये बेहद दिलचस्प वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने लोगों को हैरान भी किया और प्रभावित भी। आमतौर पर क्रिकेट खेलने के लिए बड़े मैदान की जरूरत होती है, जहां बल्लेबाज शॉट लगा सकें और फील्डर आसानी से गेंद पकड़ सकें। लेकिन वायरल वीडियो में जो नजारा देखने को मिला वो पूरी तरह अलग है। यहां लोगों ने पहाड़ों के बीच ऐसी जगह पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, जहां मुश्किल से एक पिच के बराबर जगह मौजूद है। वीडियो में साफ नजर आता है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच पतली सी जगह पर क्रिकेट की पिच बनाई गई है। आसपास इतना कम स्थान है कि सामान्य तरीके से फील्डिंग करना लगभग नामुमकिन लगता है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों ने इस चुनौती का भी शानदार हल निकाल लिया। जहां जहां पहाड़ों के नीचे थोड़ी सी भी जगह मिली, वहां खिलाड़ी फील्डिंग करने के लिए खड़े हो गए। किसी ने पत्थरों के बीच अपनी जगह बनाई तो कोई ढलान पर खड़ा दिखाई दिया। वीडियो में बल्लेबाज आराम से शॉट खेलते दिखाई देते हैं, जबकि गेंदबाज भी पूरे जोश के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। वही फील्डर पहाड़ी रास्तों और चट्टानों के बीच भी तेजी से दौड़ते नजर आते हैं। ये दृश्य बताता है कि खेल के प्रति लोगों का प्यार किसी भी परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। अगर मन में जुनून हो तो इंसान कहीं भी अपने पसंदीदा खेल का आनंद ले सकता है।
2: कैसा होता अगर धुरंधर फिल्म का ये गाना भोजपुरी में होता।
1: इंटरनेट पर इन दिनों ये वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसे देखने के बाद आप भी सिंगर के फैन हो जाएंगे। फिल्म धुरंधर का सुपरहिट रोमांटिक सॉन्ग गहरा हुआ का भोजपुरी वर्जन ऐसा तहलका मचा रहा है कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए हैं।

0: Welcome to our house in Siwa.
1: सोशल मीडिया पर दो बहनों ने इजिप्ट लीबिया के बॉर्डर पर बने अपने छोटे से घर की झलक लोगों को दिखाई। झोपड़ी नुमा ये घर बाहर से नमक और मिट्टी से बनी थी। इसे देख लोगों ने उम्मीद की थी कि बहनें गरीब हैं और मुश्किलों में अपना गुजारा कर रही हैं। लेकिन जब घर को अंदर से दिखाया गया तो सब दंग रह गए। घर के अंदर आधुनिक और लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक मिली। कमरे में सॉफ्ट लाइटिंग, कंफर्टेबल सोफा, बड़े बड़े बेड, फुली इक्विप्ड किचन, वाईफाई, एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं और खूबसूरत डेकोरेशन सब कुछ मौजूद था। बहनों ने बताया कि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल से घर बनाया है जिसमें मिट्टी और नमक का इस्तेमाल किया गया है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। यूं तो अब तक आपको पुल पार करने का एक ही तरीका पता होगा और वो ये है कि पुल के ऊपर से गुजरना। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद इस पर आपका विचार बदल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मानना पड़ेगा कि किसी भी पुल को पार करने के लिए कई और तरीके भी हो सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स पुल को पार करने के लिए ब्रिज के ऊपर से जाने की जगह उसके नीचे से उछल कूद करते हुए गुजर रहा है। शख्स पुल के नीचे लगे खम्भों और पोल को पकड़कर झूलते हुए ब्रिज को पार कर रहा है। वीडियो में शख्स जितनी आसानी से पुल को पार करता दिख रहा है उतना आसान ये काम बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस शख्स की फिटनेस वाकई कमाल की है। आप देख सकते हैं कि शख्स उस पुल को न सिर्फ पार करते हुए जाता है बल्कि वो उसी पुल पर ठीक वैसे ही लटकते हुए वापस आता है। पुल के नीचे मौजूद लोग उस शख्स का हौसला बढ़ाते और उसका वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते नजर आ रहे हैं। इन दिनों इंटरनेट पर ये वीडियो तहलका मचा रहा है जिसे देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। मामला एक डोसा वाले भैया और उनके सबसे अनोखे कस्टमर सांड से जुड़ा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यस्त सड़क के किनारे एक डोसे की दुकान है जहां तवे के ठीक पास एक सांड बड़े ही धैर्य के साथ खड़ा है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसे दुकान का पूरा मेन्यू जबानी याद आया और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो। आमतौर पर दुकानदार जानवरों को भगा देते हैं, लेकिन इस डोसा वाले ने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। आप देखेंगे कि दुकानदार ने बड़े ही प्यार से तवे पर मक्खन मारकर एक बढ़िया कुरकुरा डोसा तैयार किया और सीधे अपने इस चार पैरों वाले स्पेशल गेस्ट को परोस दिया। सांड ने भी बड़े चाव से डोसा खाया और अपनी पूंछ हिलाकर वेंडर का शुक्रिया अदा किया। दुकानदार की माने तो ये सांड रोजाना सही समय पर यहाँ आ जाता है। कुछ लोग तो सिर्फ इस अनोखे नजारे को देखने के लिए यहाँ रुकते हैं, जिसकी वजह से दुकान अब एक छोटा मोटा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। जंगल सफारी के इस वीडियो को देखकर यूजर्स हैरान हैं। वीडियो में जंगल नजर आ रहा है। जीप में बैठी लड़की ने जंगल सफारी के दौरान वीडियो बनाया और तभी नजर आता है कि एक हाथी उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। हाथी जब काफी करीब आ जाता है तो लड़की डर जाती है और जीप चालक को गाड़ी भगाने के लिए बोलने लगती है। कुछ सेकंड के लिए हाथी रुक जाता है मगर फिर उनके पीछे आने लगता है। जीप में मौजूद आदमी भी गाड़ी भगाने के लिए बोलने लगता है। वीडियो देखकर लगता है कि हाथी इन पर हमला कर सकता है और इसी कारण ये लोग भी डर गए।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen. And you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और जैसा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से विदेश यात्रा के बजाय अपने देश को एक्सप्लोर करने की अपील की थी, तो जीएनटी भी आप सभी से अपील कर रहा है कि आप भी अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें या वीडियोस हमें भेजो ताकि हम आपके उन वीडियोस को दिखाएं। हमारे दर्शक भी बड़े ही उत्साह के साथ अपनी जगहों के खूबसूरत वीडियोस भेज रहे हैं। तो चलिए आज आपको उत्तरकाशी के उन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में व्लॉगर बनी एक दर्शक की जबानी सुनाते हैं कि क्यों आपको उत्तराखंड के इस बेहद खूबसूरत और धार्मिक शहर को एक्सप्लोर करना चाहिए।

0: न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: कुंडली का कमजोर बृहस्पति किस तरह की समस्याएं वैवाहिक जीवन में देता है? कुंडली का खराब बृहस्पति वैवाहिक जीवन पर किस तरह का असर डालता है और कुंडली का शुभ बृहस्पति वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? बृहस्पति की अलग अलग स्थितियों का वैवाहिक जीवन पर कैसे पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: अंतरिक्ष की दुनिया में सफलताओं के लिए एक बड़ा सम्मान, भारत के चंद्रयान 3 मिशन को मिला गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार। चंद्रयान की ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए मिला सम्मान। राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण। 10 किलो वॉरहेड के साथ 100 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना, सेना की स्ट्राइक और निगरानी क्षमता में होगा इजाफा। प्रचंड गर्मी से जूझ रहा हिंदुस्तान, कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी। 46 डिग्री का टॉर्चर झेल रही राजधानी में पीक पावर डिमांड 8,231 मेगावाट के नए रिकॉर्ड पर। पैलेस ऑन व्हील्स ने रचा इतिहास, मई माह में पहली बार फुल चार्ट के साथ जयपुर पहुंची राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध शाही ट्रेन। रजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पहली पीर पंजाल शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन। टूर्नामेंट में 165 से ज्यादा खिलाड़ी हुए शामिल। से नो टू ड्रग्स, यस टू स्पोर्ट्स के तहत कार्यक्रम।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों।
5: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। तो चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
6: आज की चर्चा, लेकिन हम लोग बड़े आलसी, बहुत ऊंची लेवल के आलसी, आलस के। हम लोगों को भगवान भी चाहिए पर घर बैठे बिना माला जपो। बहुत से लोग हमारे पास जाते, गुरु जी कहां जा रहे हैं? तीर्थ जा रहे हैं। अच्छा, हमारे नाम से जल चढ़ा देना ठठरी के बरे। तुम्हारे नाम से हम जल चढ़ाएं और तुम्हें मिल जाए, अलुआ मिलेगा हा? अरे कह भैया, हम खा ले और तुम्हारा पेट भर जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हम लोग क्या करते हैं? अरे हमने बहुत दान किया, दान किया, पंडितों को कह दिया पाठ कर दो, पाठ कर दो। भैया ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाओ, अनुष्ठान का अपना फल है, पर खुद करो उसका अपना अलग फल है। ब्राह्मणों से करवाओ उसका अलग फल है, खुद करोगे उसका अलग फल है। लेकिन हम दूसरों पर ज्यादा निर्भय हैं अपने यहाँ पे, क्योंकि हम आलसी है ना, आलसी बहुत ऊंचे क्वालिटी के हो गए, आदत पड़ गई है। तो आलसी से हमें याद आया, नई नई शादी हुई उत्तराखंड में देहरादून में हमारे चंगीलाल की, नई नई लुगाई आई, नाम मुन्नी बाई, बिचारी पहली बार आई, महालसी माल, दो तीन बार आई गई, पहले लगा सासू माँ को कि ठीक है बच्ची है, बाद में लगा कि ये तो आलसी है और कोई काम ही नहीं करे, 10 बजे तो उठे, चाय बिस्तर पर चाहिए और सासू माँ बना के दे। पति को बेचारे को बड़ा बुरा लगा, चंगीलाल चूकी हमारा चेला था, इसको बुरा लगा, रोज माँ झाड़ू लगाए। तो एक दिन चंगीलाल ने सोचा ऐसे तो ये झाड़ू देंगे तो नाराज होगी, गाली बकेंगे तो नाराज होगी, एक काम करते हैं लड़ाई क्यों करें, तो जोर जोर से चिल्ला के माँ अब तुम झाड़ू मत लगाओ मैं झाड़ू लगाता हूँ। माँ ने कहा नहीं नहीं बेटा मैं लगा लूंगी कोई बात नहीं। अरे माँ जब इस घर के और लोगों को नहीं दिखाई पड़ता मैं झाड़ू लगा लेता हूँ तुम नहीं, नहीं नहीं नहीं मैं। भीतर से बहू पड़ी पड़ी बोली काय को चिल्ला रहे हो, बीपी जुली में दिमाग खराब कर रहे। तो पति ने कहा देखो माँ जी रोज झाड़ू लगाती कमर दर्द होने लगा, हमने कहा हम लगा लेते हैं। पति को लगा शायद ये कहेगी नहीं नहीं ठीक है हम लगा देंगे या हम लगा देंगे, पर पत्नी तो ऊंची निकली वो भी उत्तराखंड की, बोले देखो झाड़ू जिसे लगाना हो लगाओ हमारा सिर दर्द मत करवाओ, तुम्हारी बातों से हमारा सिर दर्द होता है, एक काम करो लड़ो ना, एक दिन तुम झाड़ू लगा लो एक दिन माँ जी लगा लिया करेंगी, अपन सो लगाने वाले नहीं है, ऐसी भी आलसी। अब इन आलसियों को क्या समझाएं, बोलो सीताराम। एक और हमने आलसी की बात सुनी, एक बार एक आलसी किराए के मकान में रहता था, भूकंप आ गया, भूकंप आया तो दूसरे मित्र ने जगाया, देख देख भूकंप आया, आने दो कौन अपना मकान गिरना है, मकान मालिक का गिरेगा बताइए बताइए अपना क्या जाता है, मकान मालिक आए गिर जाने दो। अरे भाई मकान मालिक का मकान तो गिरेगा पर तुम भी तो तपोगे, इन आलसियों से कौन। एक और आलसी था तुम लोगों के बीच का, एक बार राजा ने घोषणा की जितने भी नगर में आलसी हो सब हमारे पास आए, काम कुछ नहीं करना है, एक ही शर्त खाओ पड़े रहो। अब आलसियों की भीड़ लग गई, राजा ने कहा इतने आलसी तो होंगे नहीं, इतनी आलसी, मंत्री बोला हम चेक कर लेते हैं असली आलसी कितने हैं। तो जिस मकान में ठहराया गया वो घास फूस के मकान, आग लगा दी, आग जैसी लगी मकान जले सो बाकी आलसी तो भग गए, दो पड़े रहे। एक बोला देख देख देख आग ऊपर लगी, दूसरों बोला बीड़ी जला ले, एक बोला देख आग ऊपर लगी, दूसरा बोला पड़े रहो बीड़ी जला लो। तो बोला बीड़ी जलाने कौन जाए ऊपर, थोड़ी देर में आ गई नीचे आने वाली है। यहीं जला लेंगे, यहीं जला लेंगे, मतलब इन्हें बचना हो जैसे। तब राजा ने कहा असली आलसी ये हैं, इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए। हम लोगों की भी ठीक है ऐसे ही कुछ आदत है, हम लोग भी मां आलसी हैं।

भजन करण में आलसी, भोजन में भोजन का, हाँ, लिया, लिया, लिया। एक और आलसी सुना हम, याद आ गया तो सुन लो। एक गुरु जी का चेला आलसी, बद्रीनाथ वाले महाराज जी का महा आलसी चेला था गुरु जी का, यहीं रहते थे खाक चौक में बद्रीनाथ वाले महाराज, उनका चेला आलसी। अब ये मत कहना कि वो हम ही थे, पर इनका एक चेला महा आलसी, इतना आलसी, महाराज जी भीतर पड़े थे, ठंडी यहां बहुत होती है, बर्फ गिर रही थी, रजाई में पड़े थे। तो महाराज जी ने कहा, चेले बाहर एक गाय बंधी, गाय बारिश हो रही, बर्फ गिर रही, जाओ दूसरी जगह बांध दो। चेला बोला, गुरु जी, आग तापते हुए बोला, गुरु जी, बंधन खोलने का काम तो आप जैसे महापुरुषों का, हमारे जैसे जीव तो खुद बंधन में बंधी, हम कहां दूसरे का बंधन खोल पाएंगे। फिर गौ माता, गुरु जी, आप जैसे मां, गुरु जी ये समझ गए महाराज जी के गुरु चेला नहीं, गुरु ये फंस गया। बेचारे महाराज जी ने गौ माता को दूसरी जगह बांधा। कुछ देर हुई, गुरु जी ने कहा, बेटा लाइट चली गई, बर्फ गिर रही, अंधेरा है, पहाड़ों का काम, देखो बारिश बंद हुई क्या। गुरु जी, ये बिल्ली अभी अभी बाहर से अंदर आई है, ये बिल्ली बाहर से अभी अभी अंदर आई। गुरु जी बोले, महाराज जी बोले, खाक चौक वाले बद्रीनाथ अंदर आई तो क्या है। बोले, हाथ फेर के देख लो। गीली हो तो समझना हो रही, और सूखी हो तो समझना बंद हो गई। अब हम काय को उठे। गुरु जी बोले, बाढ़ में गया। रात हुई, गुरु जी बोले, भाई नहीं, इतना काम करना है, नींद नहीं आ रही, ये दीपक जल रहा, लाइट है नहीं, तेल जल जाएगा, कल के लिए काम आएगा, पहाड़ का काम, नीचे से सामान कैसे ऊपर आएगा, बड़ी मुश्किल से आता है। पुरानी जमाने की बात, पहले बकरियों पे सामान आता था ऊपर, जब यहां पर कुछ लेने के लिए तो बकरियों की पीठ पे 2-3 किलो राशन बांध दिया, तेल बांध दिया, वो ऊपर तक बकरियां आ जाती थी, तो कौन लाएगा, बंद कर दे, दीपक बुझा दे बेटा। चेला बोला, गुरु जी, ठंड में कौन उठे, ठंड में पांव निकालने पे ऐसा लगता जैसे 14 साल का वनवास मिला। एक काम करो, आप आंख बंद करके विचार करो कि कुछ जल ही नहीं रहा है। बद्रीनाथ वाले महाराज जी बोले, जय हो तेरी। खुद ही उठे, फूंक मारी। अब हुई सुबह, सुबह हम लड्डू लेके आए, हमका महाराज जी भोग लगाओ, खाक चौक के हनुमान जी को महाराज जी ने भोग लगाया। अब सोचा कि चेला तो हमारा आलसी है, वो खाएगा नहीं, फिर भी आवाज दी, चेले लड्डू खाओगे। बागेश्वर वाले महाराज लाए हैं, गुरुजी गुरुजी गुरुजी गुरुजी, दौड़ता हुआ आया, प्रणाम किया, आपकी 3-3 बातें नहीं मानी हमने, अब चौथी बात अगर नहीं मानेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। हम नरक जाना नहीं चाहते। गुरु जी बोले, ले पूरा ही खा ले। ऐसे भी आलसी होते। खैर, आप लोग नहीं हो, ये तो महाराज जी के चेले की कथा, पिताजी महाराज की, हमको भक्तमाल का एक चरित्र याद आया।

भक्तमाल का एक चरित्र है। एक गाबरौन के राजा हुए, गाबरौनगढ़ राजस्थान में, वहां के एक राजा हुए, उनका नाम था श्री पीपाजी महाराज। क्या नाम था? पीपाजी, बड़े अद्भुत महात्मा, नाम पीपाजी महाराज। इनकी 20 रानियां थी, बहुत ऊंचे राजा हुए। राजा राजपाट करते, सुख वैभव के साथ वही विलासता में जीवन। इनको किसी ने कहा कि गुरु करना चाहिए, गुरु होना चाहिए। अब किसको गुरु बनाए? तो उस वक्त भगवान रामानंदाचार्य भगवान इस पृथ्वी पर सात शरीर थे, आज भी हैं भगवान। तो रामानंदाचार्य महाराज जी के बारे में इन्होंने सुना कि वो बहुत योग्य गुरु हैं, तो इन्होंने सोचा कि चलो दर्शन करते हैं, दीक्षा लेते हैं। रामानंदाचार्य भगवान के पास गागरौनगढ़ के राजा पीपाजी महाराज सा पत्नियों के सहित ढोल नगाड़े वही पेशवाई वही राजसी ठाट बाट वही गज अश्व चल रहे हैं, मंत्री चल रहे हैं, विविध प्रकार की सेनाएं चल रही, यत्र तत्र सर्वत्र स्वागत हो रहा, महाराजाधिराज की जय हो, जय घोष लग रहे हैं। और राजा गया काशी में बैठे हुए भगवान रामानंदाचार्य भगवान को जो पहरे पर लगे थे उनको प्रार्थना की कि हमको महाराज जी को मिलना। तो पहरेदारों ने कहा कि रुको, पहले हम पूछें फिर बताएंगे। मंत्रियों ने कहा चुप रहो, ये राजा हैं। तो भगवान रामानंदाचार्य के शिष्य ने कहा ये अपनी राज्य के राजा हैं, गुरु तो पूरी पृथ्वी का राजा है, तो एक जगह के राजा है, चुप रहो पूछने दो। रामानंदाचार्य भगवान के पास शिष्य गए, उन्होंने कहा कोई गागरौनगढ़ के पीपाजी महाराज आए हैं, राजा हैं। महात्मा रामानंद भगवान रामानंदाचार्य ने कहा हमें राजा से क्या लेना देना, अपेक्षा कुछ है नहीं, राजा है तो बना रहने दो, हम राजाओं से नहीं मिलते। राजा चौंक गया, पर दर्शन तो करना था। तो बेचारा बात बात में बाहर गया और सब सेना को वापस भेज दिया, सब घोड़ों को वापस भेज दिया, गज को वापस भेज दिया, रानियों को वापस भेज दिया। फिर आया द्वार पर कि अब कहो, एक साधारण सा सेवक महाराज की दीक्षा लेने के लिए, दर्शन करने के लिए एक उत्सुक जिज्ञासु आया। तो शिष्यों ने कहा रुको ठहरो, हम देखते हैं। तो रामानंदाचार्य ने खबर भेजी कि अगर तुमको दीक्षा लेनी है और इतनी ही जिज्ञासा है, याद रखना शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्ता जा। तो रामानंदाचार्य ने कहा कि उसको खबर करो आश्रम के बाहर जो कुआं है उसमें पहले छलांग लगा करके गिरे तब दीक्षा देंगे। हमारा तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति होता तो बाबा को पागल कहेंगे। धन्य है श्री पीपाजी महाराज, वैराग्य जागा और दौड़ लगा दी। और गिरने ही वाले थे कि रामानंदाचार्य भगवान खड़े हो गए, ठहर जाओ इधर आओ। जी भगवान, प्रणाम किया, दीक्षा दी। भगवान अब हमने सब देख लिया, सुख देख लिया, वैभव देख लिया, राजपाट देख लिया, पर जो सुख पाऊं राम भजन में सो सुख ना है अमीरी, जो इसमें आनंद है वो कहीं ना। अब तो हम भजन करेंगे, अब तो आप आज्ञा दो, माला दो, हो गया राजपाट, पहाड़ में जाने दो। अरे हमें कहां खबर थी कि इतना सुख है माला में, हम तो पड़े रहते थे विलासता में, वही युद्ध की तैयारियां, वही राजपाट, वही बार बार देशों को जीतना, हिंसा करना, हिंसक जानवरों को मारना, खाने के लिए जानवरों की हिंसा करना, आज हमने जाना है भजन में कितना आनंद। कबीर की वाणी कहती है, कबीर बाबा अपनी वाणी में कहते हैं, जो सुख पाऊं राम भजन में सो सुख ना है अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। फकीर पीपाजी कहते सब देख लिया, अब तो आपके दास रहे। रामानंदाचार्य भगवान ने कहा नहीं, घर जाओ, एक साल बाद हम घर आएंगे, राजपाट देखो, भजन करो। घर आ गए राजा, एक साल तक रोज भंडारा करवाए, ये होती है गुरु दृष्टि, कितनी जल्दी परिस्थिति बदल जाती, कितनी जल्दी मना स्थिति बदल जाती। कोई योग्य गुरु मिले ना, पता नहीं हम क्यों यहां गुरु पर चर्चा कर रहे हैं, हमें खबर नहीं है, और शायद हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं गुरु पर क्योंकि हमारी जिंदगी का बदलाव गुरु से हुआ, गुरु से हुआ। ना वो कृपा करता, ना उसकी दया होती, ना हम बद्रीनाथ आ पाते, पड़े होते कहीं वहीं गांव में,
पड़े होते वहीं कहीं धक्के मुक्के खाते हुए, या कोई पढ़कर की कुछ बड़े बन गए होते तो कैरियर की तैयारी कर रहे होते, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे होते, पर गुरु का प्रसाद तो देखो बद्रीनाथ भेज दिया। गुरु की कृपा ना होती उसकी कृपा कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, कौन जानता तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। गुरु का प्रसाद है, गुरु का आशीर्वाद। रामानंदाचार्य ने कहा कि तुम घर जाओ, एक साल बाद हम आते हैं। राजा रोज इंतजार करता, एक साल कब बीते पीपाजी महाराज। एक वर्ष बाद भगवान रामानंदाचार्य आए, अकेले नहीं आए, कबीरदास रैदास अपने 40 शिष्यों को लेकर आए। ओहो राजा तो गदगद हो गया, एक को मांगा अनेक पाया, एक को मांगा, ये गुरु कृपा होती है। हमने कहा ना, हमने अपने गुरु को पाया ना, अपने गुरु को पाया तो गुरु ने इन अनेक संतों को पकड़ा दिया, एक को पाया तो उसने अनेक को पकड़ा दिया। ये गुरु की कृपा होती है, गुरु अनेक को पकड़ाता है, क्योंकि गुरु के अंदर ईर्ष्या नहीं होती है। अब वो गुरु नहीं होता है जिसमें ईर्ष्या होती है। बहुत गुरुओं को ये डर लगा रहता है कि हमारे शिष्य फलाने के चेला ना बन जाए, और हम कहते हैं कि बन जाए अपना तो झंझट छूटे, कौन लफड़ों में पड़े, हमारे पास तो कोई आता है, यहां तो हमें बड़ा सुख है, महाराज जी की तरफ इशारा कर देते हैं, कोई हमारी तरफ आता है महाराज जी के पास जाओ, देखिए ये भी बड़े वाले हैं हमारे महाराज जी भी, इनके पास कोई आता है, ऊपर जाओ ऊपर, क्योंकि हम ऊपर, गुरु की कृपा। धन्य रामानंदाचार्य, पीपाजी महाराज की भक्ति काम कर गई, रैदास कबीरदास 40 शिष्यों को लेकर के रामानंदाचार्य भगवान आए। श्री रामानंदाचार्य भगवान ने आकर के कई दिनों तक वहां पर खूब सत्संग लुटाया, भक्ति लुटाई, राजा ने खूब बटोर बटोर करके सत्संग को पाया। मेरे प्रियजनों, दो चीजें लूटने की

0: ना लूट सको तो ठीक है। बात एक बात और याद रखना, ये भक्ति का मन बार बार भी नहीं होता, ये मन बहुत खतरनाक है। ये वासना के पास जाता है तो इसे लगता है वासना ही ठीक, भोजन के पास जाता है भोजन ही बढ़िया है, संसार में जाता है संसार ही ठीक लगता है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि जब भी तुम्हारा मन भक्ति में पिघले ना, तब विवेक का तुरंत हथौड़ा मार देना चाहिए मन के ऊपर, ताकि ये सदा सदा के लिए भगवान का हो जाए, सदा सदा के लिए गोविंद का हो जाए, सदा सदा के लिए ईश्वर का हो जाए। रोने लगे पीपाजी महाराज। कई महीनों तक गुरुजी रुके, रामानंदाचार्य भगवान जाने लगे। पीपाजी महाराज बोले, आप जा रहे तो हम क्या करेंगे, हमको भी ले चलो। क्यों, तुम्हें क्यों जाना, तुम तो राजा हो, राज्य देखो, सम्राट हो। पीपाजी महाराज कहते हैं, देख लिया राज्य, बन लिए हम सम्राट, जो सुख तुम्हारे चरणों में माला मेरा, वो सम्राटगिरी में आनंद, सब देख लिया, सब पा लिया। पिताजी कहते हैं, हमको तो आपके शरण चाहिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है चलो। राजा वैरागी बना तो 200 रानियां वैरागी बनने लगी। अब तो राजा
1: कुंडली का कमजोर बृहस्पति किस तरह की समस्याएं वैवाहिक जीवन में देता है? कुंडली का खराब बृहस्पति वैवाहिक जीवन पर किस तरह का असर डालता है, और कुंडली का शुभ बृहस्पति वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? बृहस्पति की अलग अलग स्थितियों का वैवाहिक जीवन पर कैसे पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: TuneIn has the music.
2: Take a vacation with Poolside Hits on TuneIn.
4: TuneIn Poolside has the music I love.
2: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii, Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen. Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
3: It's college football time. College basketball feels
2: Pardon
3: like
2: my
3: it's
2: take.
4: The Rams catching the Commanders.
2: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
5: Asambhav खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
12: अंतरिक्ष की दुनिया में सफलताओं के लिए एक बड़ा सम्मान, भारत के चंद्रयान 3 मिशन को मिला गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार, चंद्रयान की ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए मिला सम्मान। राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण, 10 किलो वॉरहेड के साथ 16 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना, सेना की स्ट्राइक और निगरानी क्षमता में होगा इजाफा। प्रचंड गर्मी से जूझ रहा हिंदुस्तान, कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार, यूपी के 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी, 46 डिग्री का टॉर्चर झेल रही राजधानी में पीक पावर डिमांड 8,231 मेगावाट के नए रिकॉर्ड पर। पैलेस ऑन व्हील्स ने रचा इतिहास, मई माह में पहली बार फुल चार्टर के साथ जयपुर पहुंची राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध शाही ट्रेन। राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पहली पीर पंजाल शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन। टूर्नामेंट में 165 से ज्यादा खिलाड़ी हुए शामिल। से नो टू ड्रग्स, यस टू स्पोर्ट्स के तहत कार्यक्रम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
12: इसरो का दुनिया ने माना लोहा, चंद्रयान 3 मिशन को मिला प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने ग्रहण किया अवार्ड। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एरोनॉटिक्स की तरफ से दिया जाता है यह सम्मान। क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसरो और चंद्रयान 3 टीम को दी बधाई। इसरो की ओर से पुरस्कार स्वीकार करना मेरे लिए गर्व की बात। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के निकट चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए दिया गया इसरो को सम्मान। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की बढ़ती पकड़ को मिली वैश्विक पहचान। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित एसेंट सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया ये पुरस्कार। अंतरिक्ष विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला AIAA का सर्वोच्च सम्मान। रक्षा क्षेत्र में भारत की ओर एक और उपलब्धि, राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण। 10 किलो वॉरहेड के साथ वायु अस्त्र 1 का शक्ति प्रदर्शन। 100 किलोमीटर दूरी तक सटीक निशाना साधकर अपनी मारक क्षमता का किया प्रदर्शन। आधुनिक तकनीक से लैस है वायु अस्त्र 1, सीमावर्ती सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती। रक्षा और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक और छलांग, देश में बनेगी भारी भरकम वजन उठाने वाले ड्रोन। प्रोजेक्ट सबल 200 के लिए नोएडा की हैवी लिफ्ट ड्रोन कंपनी को मिला 30 करोड़ रुपए का फंड। सबल ड्रोन सेना और आपदा राहत में होगा इससे मदद। राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पहली पीर पंजाल शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन। खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में 165 से ज्यादा खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक लिया हिस्सा। भारी संख्या में महिला प्रतिभागी हुए शामिल। नशामुक्त समाज की पहल को लेकर चैंपियनशिप का आयोजन। से नो टू ड्रग्स, यस टू स्पोर्ट्स के तहत कार्यक्रम। स्थानीय खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने के लिए पहली बार मिला इतना बड़ा मंच। बड़े पैमाने पर पहली बार आयोजित हुए कार्यक्रम से खेलों के प्रति रुचि जगाना कार्यक्रम का मकसद। टूर्नामेंट विजेताओं को दिए गए पुरस्कार। युवाओं को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ नशे से दूर रहने की अपील भी की गई। हैदराबाद में युवा ले रहे हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की डिग्री। जीएमआर स्कूल ऑफ एविएशन प्रदान करता है इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग कोर्स। आधुनिक तकनीक के जरिए पढ़ाए जा रहे हैं कोर्स।

देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश। 26 मई तक कक्षा 5 तक के स्कूल बंद। सुबह 10:30 बजे तक चलेंगी 6 से 8 तक की कक्षाएं। लखनऊ में सभी स्कूलों में समर वेकेशन के आदेश। लगातार जारी लू के भीषण प्रकोप को देखते हुए लखनऊ के डीएम ने आदेश दिए। भारी गर्मी की चपेट में उत्तर प्रदेश के कई जिले। 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ एक बार फिर देश का सबसे गर्म स्थान बना यूपी का बांदा जिला। राजस्थान में गर्मी का कहर जारी। श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री के पार। जैसलमेर में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान। जैसलमेर में लू से सावधानी बरत रहे हैं लोग। चेहरों पर गमछा लपेट कर चल रहे हैं रागी। बेंगलुरु में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ों पर भी दिख रहा है भीषण गर्मी का असर। हिमाचल के ऊना में 44 तो शिमला में 30 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 महीनों में बारिश के आसार। फिलहाल तपती गर्मी से सैलानियों को हो रही है परेशानी। चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ रही है भक्तों की संख्या। रोज बन रहा है नया रिकॉर्ड। यमुनोत्री धाम में अब तक 3.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पवित्र यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाई। गंगोत्री धाम में 3,18,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। दोनों धामों में पहुंचे कुल 6,43,214 तीर्थयात्री। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर लगातार मॉनिटरिंग जारी। बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम का रुख कर रहे हैं श्रद्धालु। अब तक 7.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में लगा आस्था का मेला। अब तक करीब 5 लाख भक्त कर चुके हैं दर्शन। तमिलनाडु की प्रसिद्ध कन्याकुमारी भगवती अम्मन मंदिर में उमड़ा भक्ति का सैलाब। पवित्र वैसाखी विसाखम उत्सव का हुआ आयोजन। रस्मों के तहत पारंपरिक ध्वजारोहण समारोह से हुई उत्सव की औपचारिक शुरुआत। 2 दिन तक चलेगा पवित्र उत्सव। देवी भगवती अम्मन को अर्पित है ये त्योहार। भक्तों द्वारा विशेष रूप से समृद्धि और कल्याण के लिए आशीर्वाद की कामना के साथ की जाती है पूजा। उत्तर प्रदेश में अब आम लोग भी खोल सकेंगे अपना संग्रहालय। प्रदेश सरकार ने विजिट माई स्टेट अभियान और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के तहत की पहल। नागरिक ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्थान और निजी संगठन स्थापित कर सकेंगे संग्रहालय। जहां इतिहास, संस्कृति, अध्यात्म, साहित्य, लोक परंपराओं और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी दुर्लभ धरोहर की जा सकेगी प्रदर्शित। दयानंद सागर विश्वविद्यालय में एआई इकोसिस्टम को मिल रही है मजबूती। कैंपस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा मॉडल पर दिया जा रहा है जोर। एआई लैब प्रैक्टिकल लर्निंग के जरिए छात्रों को भविष्य के लिए किया जा रहा है तैयार। दयानंद सागर विश्वविद्यालय में साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक्स की भी ट्रेनिंग। अमेरिका में हो रहे हैं बैटल इन द बे एक्सरसाइज में पहली बार भारतीय सेना ने की शिरकत। आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और ऊंचे दुर्गम इलाकों में युद्धाभ्यास। मजबूत सुरक्षा सहयोग के साथ आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर। एआई तकनीक से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रेल मंत्री की अपील। यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहे मुसाफिर। हेल्पलाइन नंबर 139 पर दे संदिग्ध की जानकारी। बिहार के पाक में अब लगेंगे पैनिक बटन। राज्य में बेटियों की सुरक्षा के लिए मौके पर पहुंचेगी पुलिस की डायल 112 गाड़ी। आईपीएल के 66वें मैच में गुजरात टाइटंस की शानदार जीत। चेन्नई को 89 रनों से दी मात। इस करारी हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का सफर हुआ समाप्त। रनों के लिहाज से आईपीएल के इतिहास में सीएसके की सबसे बड़ी हार। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया 229 रनों का स्कोर। इसके जवाब में 140 रनों पर सिमट गई चेन्नई की टीम और 79 रनों से करना पड़ा हार का सामना। कप्तान शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर ने खेली अर्धशतकीय पारी। सुदर्शन ने बनाए सबसे ज्यादा 84 रन।

0: इस जीत के साथ गुजरात के हुए कुल 18 अंक टॉप टू में जगह बनाने के लिए जीटी ने पेश की प्रबल दावेदारी। आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा महत्वपूर्ण मैच। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा मुकाबला। दोनों टीमों के लिए आखिरी लीग मैच, शीर्ष टू में अपनी जगह पक्की करने पर टिकी है दोनों टीमों की निगाहें। इस अहम टक्कर के लिए हैदराबाद और बेंगलुरु दोनों ही टीमों का जोश आए, अपना पिछला मुकाबला जीतकर आ रही हैं दोनों टीमें। सनराइजर्स के खिलाफ मैच से पहले आरसीबी को मिली राहत, रजत पाटीदार फिट घोषित। केकेआर के खिलाफ मैच में रजत को सर में लग गई थी चोट। हेड टू हेड मुकाबले में हैदराबाद की टीम का पलड़ा भारी, अब तक खेले गए 27 मुकाबलों में से हैदराबाद ने 14, बेंगलुरु ने जीते 12 मैच। मोहनलाल की दृश्यम 3 का पहले ही दिन धमाका, बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ से ज्यादा का किया कलेक्शन। सिनेमाघरों में रिलीज हो रही अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म चांद मेरा दिल, करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है ये रोमांटिक फिल्म। प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है कोर्टरूम थ्रिलर ड्रामा फिल्म सिस्टम, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका ने निभाई है मुख्य भूमिका। हॉलीवुड की शानदार साइंस फिक्शन फिल्म स्टार वॉर्स द मंडलोरियन एंड ग्रोगू आज हो रही रिलीज, डिज्नी की बेहद लोकप्रिय और सफल सीरीज की कहानी पर बनी है ये फिल्म। सौरभ गांगुली की बायोपिक में बंगाली एक्टर शाश्वत मुखर्जी की एंट्री, मूवी में क्रिकेटर पिता चंदी गांगुली की भूमिका अदा करते आएंगे नजर।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: कुंडली का कमजोर बृहस्पति किस तरह की समस्याएं वैवाहिक जीवन में देता है, कुंडली का खराब बृहस्पति वैवाहिक जीवन पर किस तरह का असर डालता है और कुंडली का शुभ बृहस्पति वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है, बृहस्पति की अलग अलग स्थितियों का वैवाहिक जीवन पर कैसे पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
5: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
2: We know that Hamas has agreed to a deal at some point. And
1: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: Good news today पर खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति ग्रह महिलाओं के जीवन से, उनके विवाह से और उनके वैवाहिक जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है। बृहस्पति का महिलाओं के जीवन और विवाह से क्या संबंध है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। आज हम ये समझ रहे हैं कि बृहस्पति का महिलाओं के जीवन से क्या संबंध है। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति का विवाह के मामलों से क्या संबंध है। देखिए, बृहस्पति ग्रहों में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। बृहस्पति को नवग्रहों में सबसे ऊंचा स्थान यानी गुरु का पद प्राप्त है। बृहस्पति धन, विवाह और संतान के मामलों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। किसी का भी विवाह हो, महिला का हो या पुरुष का हो, विवाह के मामले में बृहस्पति की स्थिति देखना बहुत आवश्यक होता है। और महिलाओं के विवाह की और वैवाहिक जीवन की सारी जिम्मेदारी बृहस्पति से तय होती है। तो वैसे तो बृहस्पति पुरुष के विवाह पर भी असर डालता है, लेकिन महिलाओं के विवाह के लिए और महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ये जानते हैं कि किसी बालिका के, किसी महिला के विवाह को बृहस्पति कैसे प्रभावित करता है। देखिए, अगर बृहस्पति अच्छा नहीं है तो बिना बृहस्पति के पहले नंबर पर तो महिलाओं का विवाह होगा ही नहीं और आगे चलेगा भी नहीं। बृहस्पति कमजोर है तो विवाह होने में बहुत सारा और बहुत ज्यादा विलंब होता है। और अगर बृहस्पति खराब है तो विवाह में विलंब तो होता ही है, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। अगर किसी महिला का बृहस्पति ज्यादा खराब है तो विवाह होना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बृहस्पति दूषित है राहु से या केतु से, तो ये महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना देता है। बृहस्पति जरा भी ठीक है किसी महिला की कुंडली में, तो वो विवाह को और वैवाहिक जीवन को ठीक बनाए रखता है। किसी भी महिला का बृहस्पति अगर जरा सा भी बेहतर हो तो विवाह समय पर हो जाता है और वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला कर ठीक बना रहता है।
तो ये बात आपने समझ ली कि महिलाओं के विवाह होने में और विवाह के चलने में सबसे बड़ी भूमिका होती है बृहस्पति की। तो अगर आप महिला हैं और आप चाहती हैं कि आपका विवाह जल्दी हो जाए, तो क्या उपाय करें, बृहस्पति को कैसे बेहतर करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को हल्दी मिला करके जल अर्पित करिए। सुबह और शाम 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करिए, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जप करें और बृहस्पति से लाभ लेने के लिए अपना आहार सात्विक रखें, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। सप्ताह में एक बार किसी धर्म स्थान पर जा करके, किसी मंदिर में जा करके प्रार्थना उपासना जरूर करें, बृहस्पति अनुकूल होंगे और आपका विवाह शीघ्र होगा। अगर आप महिला हैं और आप चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहे, तो वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए महिलाएं क्या उपाय करेंगी? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, और ज्यादा चाहें तो और ज्यादा जप भी कर सकती हैं। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगुली में इंडेक्स फिंगर में धारण करिए और नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करते रहिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। लेकिन इस बात को जरूर याद रखिए कि अगर आप बृहस्पति को अनुकूल करना चाहती हैं तो आहार को सात्विक रखिए, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिए। तो आज हमने आपको बताया कि महिलाओं के विवाह से और उनके वैवाहिक जीवन से बृहस्पति का क्या संबंध है। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अपने घर में जंगल या जंगली जानवरों के चित्र ना लगाएं। अगर आप अपने घर में जंगल या जंगली जानवरों के चित्र लगाते हैं तो इससे घर में अशांति और जीवन में संघर्ष पैदा होता है। अब जान लेते हैं सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए और घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिए। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: अंतरिक्ष की दुनिया में सफलताओं के लिए एक बड़ा सम्मान, भारत के चंद्रयान 3 मिशन को मिला गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार, चंद्रयान की ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए मिला सम्मान। राजस्थान के पोखरण में उत्तराखंड के जोशीमठ में वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण, 10 किलो वॉरहेड के साथ 100 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना, सेना की स्ट्राइक और निगरानी क्षमता में होगा इजाफा। प्रचंड गर्मी से जूझ रहा हिंदुस्तान, कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी, 46 डिग्री का टॉर्चर झेल रही राजधानी में पीक पावर डिमांड 8,231 मेगावाट के नए रिकॉर्ड पर। पैलेस ऑन व्हील्स से रचा इतिहास, मई माह में पहली बार फुल चार्टर के साथ जयपुर पहुंची राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध शाही ट्रेन। रजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पहली पीर पंजाल शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन, टूर्नामेंट में 165 से ज्यादा खिलाड़ी हुए शामिल, से नो टू ड्रग्स यस टू स्पोर्ट्स के तहत कार्यक्रम।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी
4: आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
5: नमस्कार।
4: तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति के बारे में, सबसे शुभ ग्रह से माना जाता है, लेकिन क्या बृहस्पति के कारण आपके विवाह में, आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, बाधा आ रही है, और अगर ऐसा हो रहा है तो कैसे हम इसमें परिवर्तन करके आपके जीवन में शुभता ला सकते हैं, इसके बारे में पंडित जी से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
5: जिन महिलाओं के विवाह होने में या वैवाहिक जीवन में समस्या हो, उन्हें नियम पूर्वक नियमों के साथ बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। अगर महिला नियमों के हिसाब से, तरीके से और श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत रखेगी तो जो बृहस्पति के कारण वैवाहिक जीवन की समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी।
4: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बृहस्पति ग्रह के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रहों में से एक माना जाता है, गुरु इसे कहा जाता है, ऐसे में किसी के विवाह में इसे कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्या इसकी भूमिका है, और अगर किसी के वैवाहिक जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हैं तो बृहस्पति ग्रह को कैसे ठीक किया जा सकता है।
5: देखिए ज्योतिष में हर ग्रह के दो पक्ष हैं, आप ये नहीं कह सकते कि शुद्ध रूप से अच्छा ही रहेगा और ये भी नहीं कह सकते कि शुद्ध रूप से बुरा ही होगा। बुरे ग्रहों के भी कुछ परिणाम अच्छे होते हैं और अच्छे ग्रहों के भी कुछ परिणाम बुरे होते हैं। तो बृहस्पति जो है इसकी भूमिका विवाह में क्या है, अगर हम महिला के जीवन की बात करें तो महिलाओं के जीवन का जो केंद्रीय प्लेनेट है वो बृहस्पति है। बृहस्पति किसी महिला के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और बिना बृहस्पति के किसी महिला का विवाह नहीं हो सकता। बृहस्पति किसी पुरुष के जीवन में उसके जीवन साथी के बारे में बताता है और बृहस्पति किसी पुरुष के वैवाहिक जीवन को संतुलित बनाता है, पुरुष के अंदर धैर्य पैदा करता है, वैवाहिक जीवन को गंभीरता से निभाने की ताकत देता है। लेकिन अगर बृहस्पति विवाह में बाधा दे तो विवाह का होना भी कठिन होता है और अगर हो भी गया तो निभ नहीं पाएगा, निभना भी कठिन होता है। बृहस्पति की कुछ स्थितियां व्यक्ति के विवाह के लिए काफी समस्याएं पैदा करती हैं। बृहस्पति अलग अलग स्थितियों में आपके विवाह पर अलग अलग तरीके से असर डालता है। अगर बृहस्पति खराब है तो बृहस्पति अलग तरह की समस्या देता है और अगर बृहस्पति कमजोर है तो ये जीवन में अलग तरह की समस्या प्रदान करता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि बृहस्पति खराब है तो यही करेगा, बृहस्पति कमजोर है तो भी वही करेगा। खराब होगा बृहस्पति, परिणाम बिल्कुल अलग होंगे, और अगर बृहस्पति कमजोर होगा तो उसके प्रभाव और परिणाम भी अलग रहेंगे।
4: तो बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
5: मेष राशि, मानसिक चिंता आपकी दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, करियर में कुछ बदलाव होगा, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत होगी भाग्य उतना ही साथ देगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: तो अगर किसी की कुंडली में गुरु कमजोर हो, बृहस्पति कमजोर हो, तो विवाह इससे किस तरीके से प्रभावित होता है, आइए पंडित जी से इसके बारे में समझते हैं।
5: तो अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में कमजोर है तो ये विवाह पर कैसा असर डालेगा। बृहस्पति अगर नीच राशि में है, अस्त हो गया है, सही स्थान पर नहीं है, मित्र के घर में नहीं है, तो ये बृहस्पति कमजोर है। अगर बृहस्पति कमजोर होगा तो ये विवाह में विलंब करवा देगा, लेकिन चूंकि कमजोर है इसलिए विलंब के बावजूद ये शादी करवा देता है। विवाह हो जाने के बाद कमजोर बृहस्पति वैवाहिक सुख लेने नहीं देता, और अगर बृहस्पति कमजोर है तो इसके कारण विवाह के बाद संतान होने में भी विलंब होता है। विवाह भी विलंब से होगा, संतान भी विलंब से होगी, और आप चैन से अपने वैवाहिक जीवन का सुख नहीं पाएंगे अगर बृहस्पति आपका कमजोर है तो। क्या उपाय करना चाहिए अगर बृहस्पति कमजोर है और विवाह पर निगेटिव असर डाल रहा है? ज्यादा से ज्यादा सात्विक रहिए, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिए। दोनों समय भले ही 5 मिनट पूजा उपासना जरूर करिएगा और किसी ज्योतिषी से विद्वान से सलाह लेकर एक पीला पुखराज पहनिएगा। साथ ही साथ नियमित रूप से बृहस्पति ग्रह का जो गुरु मंत्र है, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ये बृहस्पति ग्रह का गुरु मंत्र है, इसका निरंतर जप करने से बृहस्पति की कमजोरी दूर हो जाएगी।
4: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है।
5: कर्क राशि, मानसिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा।
4: तो चलिए अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
5: जी आज का पहला प्रश्न हमें नमिता जी ने लिखा है और नमिता जी हमें महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। 25 जून 1986 का जन्म है, जन्म का समय है रात में 9:12, जन्म स्थान है मुंबई महाराष्ट्र। नमिता जी कह रही हैं कि मेरा एक विवाह होकर के ब्रेक हो चुका है, एक विवाह मेरा टूट चुका है, आगे मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। नमिता आपकी कुंडली के हिसाब से आपका दूसरा विवाह अवश्य होगा। साल 2027 में आपके सेकेंड मैरिज के योग दिखाई दे रहे हैं और जो आपका दूसरा विवाह होगा वो कुल मिला जुला के सफल दिखाई दे रहा है। आपकी कुंडली में राहु और शनि की जो पोजीशन है वो आपके लिए समस्या का कारण बन रही है, तो एक फिरोजा बनवा के पहनिए, लगभग 8-10 रत्ती का फिरोजा चांदी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार की शाम को फिरोजा धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
4: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं इसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो पंडित जी आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
5: जी अगला प्रश्न शशिकला गुप्ता ने हमें लिखा है, आगरा से लिखती हैं। शशिकला की जन्म तारीख है 4 फरवरी 1978, जन्म का समय दोपहर के लगभग 3 बजे, जन्म स्थान है शिकोहाबाद और मेल लिखती हैं आगरा से। शशिकला जी कह रही हैं कि मेरी हड्डियों में समस्या बहुत है और डॉक्टर कह रहे हैं सर्जरी कराने के लिए, क्या मैं सर्जरी अभी करा सकती हूँ, क्या मेरे लिए सर्जरी कराने का उचित समय चल रहा है। शशिकला जी आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल सर्जरी के लिए जा सकती हैं, केवल इतना ध्यान रखिएगा कि शनिवार को सर्जरी मत करवाइएगा। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
4: तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर बृहस्पति खराब हो कुंडली में, इसकी स्थिति ठीक ना हो तो विवाह पर इसका किस तरीके से असर पड़ता है।
5: देखिए बृहस्पति अगर कमजोर होगा तो आपके वैवाहिक जीवन पर अलग तरह से असर पड़ेगा, और अगर बृहस्पति आपका खराब होगा तो वो वैवाहिक जीवन पर अलग असर डालेगा। बृहस्पति अगर कुंडली में राहु, शनि या केतु के प्रभाव में हो तो बृहस्पति खराब हो जाता है। बृहस्पति अगर खराब है तो महिलाओं का विवाह नहीं होगा। कोई भी बालिका है जिसका बृहस्पति खराब है तो उसका विवाह नहीं होगा, और अगर हो गया तो विवाह का सुख नहीं मिलेगा, विवाह नहीं चलेगा, टूटेगा। अगर किसी पुरुष का बृहस्पति खराब है तो उसको खराब व्यवहार वाली और दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी मिलती है। पत्नी का स्वभाव और पत्नी की आदतें बहुत ही ज्यादा खराब होती हैं अगर किसी पुरुष का बृहस्पति खराब है। और जिन पुरुषों का बृहस्पति खराब है, ऐसे पुरुष अपनी पत्नी के कारण जीवन में काफी कष्ट भोगते हैं। शादी टूटती नहीं है, लेकिन पत्नी की वजह से जीवन में कष्ट और तकलीफ उठानी पड़ती है। तो अगर आपका बृहस्पति खराब है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सुबह शाम 27 बार या कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। मांस मदिरा आदि का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बृहस्पति खराब है और आप मांस मदिरा का सेवन करेंगे, बृहस्पति और भी खराब होगा और आपको बुरी तरह से भयानक तरीके से नुकसान पहुंचा देगा। बृहस्पति अगर खराब है तो सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करना चाहिए। और बृहस्पति खराब है तो रोज नहाइए, पवित्रता से रहिए, दाढ़ी और बाल अपने बहुत ज्यादा बड़े मत रखिएगा।
4: तो ये बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
5: तुला राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन आंखों में समस्या होने पर लापरवाही आज मत करिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: तो अगर बृहस्पति कमजोर या खराब हो तो इसका क्या असर पड़ता है, इसके बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अगर बृहस्पति कुंडली में उत्तम हो, अच्छा हो, तब विवाह पर इसका क्या असर पड़ता है, इसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं।
5: अब मान लिया कि आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, अनुकूल है, उत्तम है, तो विवाह पर क्या असर डालेगा? बृहस्पति अगर उच्च राशि में हो, स्वगृही हो, मूल त्रिकोण में हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ हो, पाप प्रभाव ना हो, तो अच्छा होता है। सामान्यतः अपने मित्र के घर में बृहस्पति उत्तम बना रहता है। अगर किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति उत्तम है तो महिला संपूर्ण रूप से अच्छी हो जाती है। पढ़ाई लिखाई, विवाह, शिक्षा, पैसा, हर मामले में सफल होती है। उसका विवाह, वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष ये उत्तम बना रहता है। अगर किसी पुरुष का बृहस्पति अच्छा है तो उसको अच्छी और सुगढ़, यानी जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो काम अच्छा करे, घर को, परिवार को, सबको मिला करके चले, जीवन में आनंद से रहे, ऐसी पत्नी मिलती है। और जिन पुरुषों का बृहस्पति अच्छा होता है उनके जीवन में अच्छी पत्नी आती है, और ऐसी पत्नी के आने से उसके जीवन में उन्नति हो जाती है। अगर बृहस्पति अच्छा है कुंडली में, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, तो वो अच्छा बना रहे उसके लिए ईश्वर की शरण में रहिए, नियमित रूप से भगवान की पूजा करिए, पवित्र आहार ग्रहण करिए, नियमित रूप से ध्यान करिए या बृहस्पति के मंत्र का जप करिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा।
4: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुमार मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
5: मकर राशि मानसिक चिंता परेशान कर सकती है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, खान पान में सावधानी रखें, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, इस समय आपका स्थान परिवर्तन फायदेमंद हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल आप किस व्यूअर का ले रहे हैं।
5: जी अगला प्रश्न चेतन आनंद जी ने हमें लिखा है और चेतन आनंद जी हमें मेल लिखते हैं पटना से। इनकी जन्म की तारीख है 9 सितंबर 1994, जन्म का समय शाम के 6 बजे, जन्म स्थान है सहरसा बिहार और मेल लिखते हैं पटना से। चेतन जी कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति में दिक्कतें बहुत आ रही हैं और मैं अपना खेत भी बेचना चाहता हूं लेकिन वो काम भी मेरा नहीं हो पा रहा है। तो जिंदगी में कोई भी काम रास्ते पे नहीं चल रहा है, क्या उपाय मुझे करना चाहिए? चेतन जी आपकी कुंडली कहती है कि आपकी प्रॉपर्टी इसी साल बिकेगी, जून जुलाई अगस्त के समय में। प्रॉपर्टी बेच करके आप किसी नए जगह पर शिफ्ट होंगे और नए जगह पर शिफ्ट होना आपके लिए कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। आने वाला समय आपका अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि इस साल के अंत से आप कोई व्यापार करेंगे और उस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
4: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में उनसे जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ दुख तकलीफ है जिसका समाधान आप जानना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी को आप नोट कर सकते हैं और इस पर अपने सवाल लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो आप पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का चौथा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
5: जी आज का अंतिम प्रश्न सविता जी ने हमें लिखा है और सविता जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 19 फरवरी 1996, जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री अपनी मर्जी से विवाह करना चाहती है लेकिन हम लोगों को ये रिश्ता पसंद नहीं है, रिश्ते का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या ये अपने मन से ही शादी करेगी

0: बेटी के लिए रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या विष्णु सहस्त्र नाम मोबाइल पर लगा करके सुन लीजिए और हर बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में किसी भी संख्या में केले का दान करिए। अगर ये दो उपाय आप लंबे समय तक करें, सफलता जल्दी मिलेगी और पुत्री का विवाह आगे बेहतर हो सकेगा।
1: तो पंडित जी, आज के कार्यक्रम में आपने हमें बताया कि अगर बृहस्पति खराब हो या कमजोर हो तो विवाह में परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर बृहस्पति किसी का स्ट्रांग है कुंडली में, वो कहे मेरा बृहस्पति तो बहुत अच्छा है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक जीवन में परेशानियां आना संभव है?
0: जी देखिए, वैसे तो बृहस्पति वैवाहिक जीवन में धैर्य पैदा करता है, एडजस्ट करने की क्वालिटी देता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। महिलाओं को ज्यादा धैर्य रखना होता है, महिलाओं को परिवार को बांध के चलना होता है, इसीलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पुरुष की कुंडली में बृहस्पति ये बताता है कि उसकी पत्नी का स्वभाव कैसा है, पत्नी रहेगी कैसे, परिवार में एडजस्ट करेगी नहीं करेगी, ये पुरुष का बृहस्पति बता देता है। लेकिन ओवरऑल विवाह के लिए बृहस्पति के अलावा एक और आचार्य को भी देखा जाता है, जिन्हें कहते हैं शुक्र, आचार्य शुक्र, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कुल मिला के ओवरऑल वैवाहिक जीवन जो है वो शुक्र के हाथ में है। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है दो कंडीशन में, एक तो ये कि बृहस्पति आपका बड़ा अच्छा है, बड़ा पावरफुल है, बहुत शानदार जगह बैठा है, शुक्र अच्छा नहीं है, तो विवाह होने में दिक्कत होगी या विवाह चलने में दिक्कत होगी। और एक स्थिति है कि अगर बृहस्पति कुंडली के सातवें स्थान में बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठ जाए और खास तौर से अकेला बैठ जाए, किसी ग्रह के साथ बैठने से चूंकि गुण का ट्रांसफर होने लगता है तो उतना नहीं कह सकते, लेकिन अगर सप्तम भाव में आइसोलेटेड अकेला बृहस्पति बैठा है, धनु में बैठा है, मिथुन में बैठा है, कन्या में है, मीन में है, कोई भी राशि है सप्तम में, और वहां गुरु अकेला बैठा हुआ है, पक्की तौर पे जानिए विवाह नहीं चलने देगा, विवाह पहले नंबर पे तो होने नहीं देगा। और अगर हो गया विवाह तो वैवाहिक सुख जीवन में नहीं मिलेगा। किसी महिला की कुंडली में सप्तम में अगर कर्क राशि है, वहां बृहस्पति बैठा है, तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा है भाई, सप्तम में कर्क का बृहस्पति है, उच्च का बृहस्पति है, बड़ा बढ़िया होगा। लेकिन पूछ कर देखिएगा महिला से, या तो वैवाहिक जीवन उसका बहुत ही खराब होगा या तो उसका वैवाहिक जीवन लंबा नहीं चल पाया होगा।
1: तो जिनका जन्मदिन है आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: आने वाले वर्ष में आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, स्वास्थ्य की समस्याएं ठीक होंगी, करियर धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। इस साल आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल सूर्य देव की उपासना करिएगा, उनको जल चढ़ाइएगा, उनके नाम से मंत्र पढ़िएगा, आपके लिए वर्ष बेहतर होगा।
1: और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि देखिए, हम अलग अलग मंत्र जपने के लिए अलग अलग माला का प्रयोग करते हैं, लेकिन कौन सी एक माला हम खरीद कर अपने घर में रख लें, कौन सी ऐसी माला है जिससे किसी भी मंत्र का जप किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो हर मंत्र के लिए अलग अलग माला का प्रयोग होता है। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती के लिए स्फटिक की माला, भगवान कृष्ण भगवान राम के लिए तुलसी की माला, देवी के लिए लाल चंदन की माला, लेकिन विशेष माला अगर आपके पास नहीं है तो आप जान लीजिए रुद्राक्ष की माला से आप हर मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर कोई माला नहीं है आपके पास लेकिन रुद्राक्ष की माला आप रखते हैं जप करने वाली, तो निश्चित रूप

0: से आप उस माला से मंत्र जप करते रहिएगा, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं शुभ पहर कौन सा है।
0: शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता पार्वती को पीले फूल अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं या करती हैं तो शीघ्र विवाह के वरदान आपको प्राप्त होंगे, लेकिन अर्पित करेंगे माता पार्वती को ही। अगर अर्पित करके प्रार्थना करेंगे या करेंगी तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किन ग्रहों का दान करना चाहिए और किन ग्रहों का दान कभी नहीं करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है धनु। सामान्यतः इन्हें जब भी मौका मिले इनको शुक्र ग्रह का दान करना चाहिए, अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों को बृहस्पति का और सूर्य ग्रह का दान नहीं करना चाहिए।
1: तो चलिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी आपका छोटा सा बेटा है, छोटी सी बेटी है, उसको बार बार चोट लग जाती है, क्या करेंगे? जहां तक संभव हो बच्चे को लाल वस्त्र धारण मत करवाइए जिस बच्चे को या बच्ची को बार बार चोट लगती हो। बच्चे के गले में एक छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डालकर मंगलवार को गले में पहना दीजिए और बच्चे की माता रोज सुबह बच्चे के लिए 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगी तो बहुत बेहतर होगा।
1: पंडित जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अब जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
3: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
2: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: क्या बृहस्पति महिलाओं के विवाह कराने से संबंध रखता है? क्या बृहस्पति महिलाओं के वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है? बृहस्पति का महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
14: और चलिए अब बात करेंगे बॉलीवुड के भाईजान की, मतलब सलमान खान की, जो इन दिनों किसी ना किसी वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सलमान के साथ दरअसल एक और वाकया हुआ, उनको फिर से चर्चा में ला दिया गया है।

0: बॉलीवुड में चर्चा ये आम है कि सलमान खान यारों के यार हैं, दिलदार हैं। ये दो तस्वीरें सलमान खान के बारे में चर्चित इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं। पहली तस्वीर में सलमान का दिलदार अंदाज नजर आ रहा है, तो दूसरी तस्वीर में उनका एंग्री यंग मैन अवतार नजर आ रहा है। ये दोनों ही तस्वीरें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे, ये हम आपको एक एक करके बताएंगे। पहले बात पहली तस्वीर की, जो बुधवार शाम को आई, जिसमें सलमान खान पेपराजी को माफी देते दिखाई दे रहे हैं। बुधवार शाम सलमान खान रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की सक्सेस पार्टी में पहुंचे थे। सलमान खान ने जैसे ही गाड़ी से उतरकर वेन्यू पर एंट्री ली, वहां का नजारा ही बदल गया। मीडिया के कैमरों के फ्लैश चमक उठे, सभी कैमरामैन और फोटोग्राफर ने उन्हें अपने कैमरों में कैद करना शुरू कर दिया। सलमान खान को देखकर रितेश देशमुख उन्हें रिसीव करने जैसे ही पहुंचे, तभी पेपराजी ने भी उन्हें घेर लिया और सभी पेपराजी एक दिन पहले ही अपनी हरकत के लिए एक सुर में सलमान खान से सॉरी सॉरी बोलने लगे, उनसे माफी मांगने लगे। सलमान ने भी बड़ा दिल दिखाया और कैमरे के सामने पोज देते हुए शांत मन से उनकी माफी स्वीकार कर ली। साथ ही पेपराजी को नसीहत भी दे डाली कि ये सही जगह है, यहाँ फोटो क्लिक कर सकते हैं। सलमान ने फिर मजाक में कहा, जोर से सॉरी बोलो। ये तो हुई बुधवार शाम की बात, लेकिन इस सॉरी की नौबत आई क्यों? ये जानने के लिए आपको मंगलवार रात की तस्वीर दिखाते हैं, जो इस सारे विवाद की जड़ है। मंगलवार को सलमान खान अपने करीबी को देखने के लिए हिंदुजा अस्पताल पहुंचे थे। सलमान खान जैसे ही अस्पताल से बाहर आए, पेपराजी ने भाईजान भाईजान कहकर शोर मचाना शुरू कर दिया। अस्पताल के बाहर पेपराजी की शोर मचाते देख सलमान खान भड़क उठे और सबकी क्लास लगा डाली। सलमान खान का गुस्सा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। घर पहुंचने के बाद आधी रात को उन्होंने पेपराजी को सलीके से व्यवहार करने की नसीहत देते हुए इंस्टा पर कई सारे पोस्ट कर डाले। सोशल मीडिया पर मचे इस घमासान के बाद हर किसी को लग रहा था कि पेपराजी और सलमान खान के बीच की जंग बहुत लंबी खिंचेगी। लेकिन राजा शिवाजी के इवेंट में जिस मैच्योरिटी के साथ पेपराजी ने अपनी गलती मानी और सलमान खान ने जिस तरह बड़ा भाई बनकर उन्हें माफ किया, उसने न सिर्फ पूरे विवाद को खत्म कर दिया बल्कि सलमान खान के इस दिलदार अंदाज ने हर किसी का दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, कुनी सुरे।
1: वैसे रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेर ही रही है। शुरुआती हफ्तों में फिल्म की कमाई की रफ्तार इसके हिट होने की तरफ इशारा कर रही है। इस कामयाबी पर रितेश देशमुख ने एक सक्सेस पार्टी रखी। इस पार्टी में रितेश को बधाई देने के लिए बॉलीवुड की तमाम हस्तियां भी वहां पहुंची।
2: राजा शिवाजी की सक्सेस पार्टी में सजी सितारों की महफिल। फिल्म को मिल रही बम्पर कामयाबी के बाद सक्सेस पार्टी का आयोजन। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी को रिलीज हुए अभी 3 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं और ये फिल्म बड़े पर्दे पर कामयाबी की नई इबारत लिखती नजर आ रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर बनी इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। दर्शकों के इस रिस्पांस का फिल्म के कलेक्शन पर भी असर दिखने लगा है। ये फिल्म वर्ल्ड वाइड तो पहले ही 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, वहीं भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 90 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। यानी बहुत जल्दी ये फिल्म भारत में भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने को तैयार है। करीब 75 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अपनी लागत से कहीं ज्यादा कमाई कर हिट का तमगा हासिल कर लिया। यही नहीं, ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म का रिकॉर्ड बनाने की ओर तेजी से बढ़ रही है। फिल्म की इसी सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए रितेश देशमुख ने एक सक्सेस पार्टी रखी। इस फिल्म में एक्टिंग के साथ रितेश ने राइटर और डायरेक्टर की भी भूमिका अदा की है, यानी रितेश के लिए ये फिल्म बेहद खास है। इस सक्सेस पार्टी में रितेश अपनी हम सफर जिनेलिया का हाथ थामे पहुंचे और येलो कलर की ड्रेस में जिनेलिया बेहद खूबसूरत भी लग रही थी। इस पार्टी में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी सलमान खान ने। सलमान के पहुंचते ही पार्टी में हलचल बढ़ गई। सलमान के आते ही रितेश देशमुख उनके स्वागत के लिए बाहर आ गए। सलमान ने रितेश को बधाई दी और दोनों ने इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर महेश मांजरेकर भी इस पार्टी में शामिल होने के लिए आए। मराठी एक्टर सिद्धार्थ जाधव ने पार्टी में पहुंचकर रितेश देशमुख को कामयाबी की बधाई दी। जेनिफर वेंगेट यहां आशीष चौधरी और उनकी पत्नी समिता के साथ पहुंची थी। पार्टी की खास बात ये भी रही कि इस पार्टी में नए जमाने के एक्टर्स के साथ साथ 90 के दशक के तमाम सुपरस्टार दिखे। बड़े पर्दे पर हिट रही भाग्यश्री के पहुँचने से पार्टी की रौनक मानो और बढ़ गई। फरदीन खान इस पार्टी में बेहद अनोखे लुक में नजर आए। राजा शिवाजी बहुत जल्द 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी, लेकिन फिल्म को दर्शकों के मिल रहे प्यार से उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्म कमाई के नए रिकॉर्ड बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir It Up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हैं, ऐसे वीडियो जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और कुछ तो ऐसे होंगे जो आपको भावुक भी कर देंगे।
9: इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मानना पड़ेगा कि किसी भी पुल को पार करने के लिए कई और तरीके भी हो सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स पुल को पार करने के लिए ब्रिज के ऊपर से जाने के बजाय उसके नीचे से उछल कूद करते हुए गुजर रहा है। शख्स पुल के नीचे लगे खंभों और पोल को पकड़कर झूलते हुए ब्रिज को पार कर रहा है। वीडियो में शख्स जितनी आसानी से पुल को पार करता दिख रहा है, उतना आसान ये काम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस शख्स की फिटनेस वाकई कमाल की है। शख्स पुल को न सिर्फ पार करते हुए जाता है, बल्कि वो उसी पुल पर ठीक वैसे ही लटकते हुए वापस भी आता है। जंगल सफारी के इस वीडियो को देखकर यूजर्स हैरान हैं। वीडियो में एक जंगल नजर आ रहा है। जीप में बैठी लड़की ने जंगल सफारी के दौरान वीडियो बनाया और तभी नजर आता है कि एक हाथी उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। हाथी जब काफी करीब आता है तो लड़की डर जाती है और जीप चालक को गाड़ी भगाने के लिए बोलने लगती है। कुछ सेकंड के लिए हाथी रुक जाता है मगर फिर उनके पीछे आने लगता है। जीप में मौजूद आदमी भी गाड़ी भगाने के लिए बोलने लगता है।

0: इस वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मामला एक डोसा दुकानदार और उनके सबसे अनोखे कस्टमर से जुड़ा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यस्त सड़क के किनारे एक डोसे की दुकान है, जहां तवे से ठीक पास एक सांड बड़े ही धैर्य के साथ खड़ा है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसे दुकान का पूरा मेन्यू जबानी याद है और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। आमतौर पर दुकानदार जानवरों को भगा देते हैं, लेकिन इस डोसे वाले ने तो जो किया उसने सभी का दिल जीत लिया है। आप देखेंगे कि दुकानदार ने बड़े ही प्यार से तवे पर मक्खन मारकर एक बढ़िया कुरकुरा डोसा तैयार किया और सीधे अपने इस चार पैरों वाले स्पेशल गेस्ट को परोस दिया। सांड ने भी बड़े चाव से डोसा खाया और अपनी पूंछ हिलाकर वेंडर का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर दो बहनों ने इजिप्ट लीबिया के बॉर्डर पर बने अपने छोटे से घर की एक झलक लोगों को दिखाई है। झोपड़ी जैसा ये घर देख लोगों को लगा कि बहनें गरीब हैं और मुश्किल में अपने दिन गुजार रही हैं। लेकिन जब घर को अंदर से देखा गया तो सब दंग रह गए। घर के अंदर आधुनिक और लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक देखने को मिली। कमरे में सॉफ्ट लाइटिंग, कम्फर्टेबल सोफा, बड़े बड़े बेड, फुली इक्विप्ड किचन, वाईफाई, एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं और खूबसूरत डेकोरेशन सब कुछ यहां मौजूद थी। बहनों ने बताया कि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल से घर तैयार किया है, जिसमें मिट्टी और नमक का इस्तेमाल किया गया है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Hey Buena.
3: La Que Buena.
2: ESPN Radio.
4: We know LeBron has to be the best player on the planet to
2: get The Daily.
5: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
2: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
6: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: क्या बृहस्पति महिलाओं के विवाह कराने से संबंध रखता है? क्या बृहस्पति महिलाओं के वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है? बृहस्पति का महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
14: जम्मू कश्मीर डोडा में बारिश के साथ मौसम हुआ सुहाना, तापमान में घुली ठंडक, पहाड़ों के बीच दिखा खूबसूरत नजारा। दिल्ली में गर्मी तोड़ रही है कई रिकॉर्ड, आज भी तेज गर्मी के आसार, तापमान जा सकता है 45 डिग्री के पार, सावधान बरतने के लिए। कन्याकुमारी के भगवती अम्मन मंदिर में वैकासी विशाखम महोत्सव की धूम, ध्वज रस्सी जुलूस की अनूठी परंपरा का किया गया पालन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। सऊदी अरब की फोर्स ने मक्का में दिखाई अपनी ताकत, जमीन हवा चारों तरफ से हज यात्रियों को मिलेगी हाई सिक्योरिटी, परेड में कई तरह की ड्रिल। नेटफ्लिक्स पर आज से धुरंधर के रॉर अनदेखे वर्जन की धूम, रोमांचक दुनिया में ले जाएगी ये फिल्म, देखिए ताबड़तोड़ एक्शन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
14: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशु, बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन पांच खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
14: शुभ समाचार की शुरुआत चंद्रयान 3 के साथ होगी, जिसे मिला है बड़ा सम्मान। अंतरिक्ष की दुनिया में अहम सफलता के लिए भारतीय मिशन का ये सम्मान दिया गया। इस सम्मान का नया गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार है, क्या है ये पुरस्कार आगे आपको बताएंगे।
15: वहीं देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के बीच राहत की उम्मीद देखने को मिली, क्योंकि मौसम विभाग ने गुड न्यूज दी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से पहले आगे बढ़ सकता है। अगर मौजूदा परिस्थितियां बनी रहीं तो मानसून इसी वीकेंड पर अंडमान तट पर दस्तक दे सकता है, जबकि केरल में इसकी एंट्री 26 मई के आसपास होने का अनुमान है।
14: तो वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट कल खुलेंगे, इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सेना ने सरोवर के एक हिस्से से बर्फ हटाकर श्रद्धालुओं के स्नान आचमन की व्यवस्था की है। हेमकुंड पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को अटला कोटी से 2 किलोमीटर का सफर बर्फ के बीच से करना पड़ेगा, जो इस चिलचिलाती गर्मी में ठंडक का एहसास कराएगा। तो इसके रंग भी आगे आपको दिखाएंगे।
15: तो वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर की माटी से निकली विश्व प्रसिद्ध शाही लीची इस बार समय से पहले तो बाजार में आई है, महिलाओं के जीवन में भी आर्थिक मिठास लेकर आई है। दरअसल शाही लीची की आवक से यहाँ पर महिलाओं को काम मिल रहा है और कमाई बढ़ गई है। बीते दिनों हुई बारिश ने लीची के स्वाद और गुणवत्ता को और बेहतर बना दिया है, तो आपको इसी लीची की मिठास से भी वाकिफ करवाएंगे।
14: तो इसके अलावा आईपीएल के मैदान में भी आपको लिए चलेंगे, आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से हैदराबाद में खेला जाएगा, तो कैसी है दोनों टीमों की तैयारी आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले फटाफट अंदाज में देख लेते हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरें।
15: इसरो को दुनिया ने लोहा मान लिया, AIAA ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने AIAA सम्मेलन में सम्मानित किया इसरो को यह पुरस्कार। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के निकट चंद्रयान 3 को ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए दिया गया है, जिससे चंद्रमा की हमारी समझ बेहतर करने में मदद मिली है।
14: राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में वायु अस्त्र वन का सफल परीक्षण किया गया, जिसमें 10 किलो वॉरहेड के साथ 100 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया जाएगा। परीक्षण के दौरान इसका सर्कुलर एयर प्रोबेबल 1 मीटर से भी कम रहा, जो इसकी उच्च सटीकता को दर्शाता है।
15: वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंच रहे हैं। अब तक चारधाम के दर्शन के लिए पहुंचने वालों की संख्या करीब 18 लाख तक पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ में 7.5 लाख से अधिक भक्तों ने हाजिरी लगाई।
14: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस साल होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। इस प्रक्रिया के माध्यम से कुल 1000 यात्रियों का चयन किया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ जून में होगा और अगस्त में ये समाप्त होगी। चयनित यात्री 50 यात्रियों के 20 बैचेस में लिपू लेक और नाथुला दर्रे से होकर यात्रा करेंगे।
15: राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पहली बार पी पंजाल शतरंज चैंपियनशिप 2026 का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। इसमें 165 से अधिक युवाओं और स्थानीय खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया।
14: दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां बेजुबानों के बाड़े में कूलर और पंखे लगाए गए हैं। वहीं गर्मी को देखते हुए खाने पीने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही पर्याप्त पानी की भी व्यवस्था की गई।
15: वहीं बिहार में मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची सिर्फ अपने स्वाद और खुशबू के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि हजारों ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का सहारा भी बन रही है। जिले के गांव में तुड़ाई छुटाई पैकिंग और बिक्री का काम तेज हो जाता है, जिससे बड़ी संख्या में महिलाओं को गांव में ही रोजगार मिल जाता है। सीजन के दौरान महिलाएं रोजाना 300 से 1000 रुपए तक की कमाई कर लेती हैं।
14: हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आईपीएल 2026 के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक होने जा रहा है, जहां मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये दोनों टीमें यहां खेला जाने वाला आखिरी लीग मैच है। ये मुकाबला दर्शकों के लिए आनंददायक होना चाहिए, प्लेऑफ में जाने से पहले शीर्ष स्थान के लिए लड़ेगी।
15: वहीं फिल्म बंदर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ये ट्रेलर एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो कि ट्विस्ट, बोल्ड डायलॉग्स, कमाल की परफॉर्मेंस और हल्के फुल्के ह्यूमर से भरी हुई है। फिल्म बंदर के साथ बॉबी देओल और डायरेक्टर अनुराग कश्यप पहली बार साथ काम कर रहे हैं। ये फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में
16: दस्तक।
17: नहीं समझ में आया है कि हम खुद
18: बोला नो मीन्स नो, बोला कि नहीं चल तो

तो शुभ समाचार की शुरुआत आज की सबसे बड़ी शुभ खबर के साथ। सबसे पहले बात इसरो के सम्मान की कर लेते हैं। गुड न्यूज ये है कि इसरो के मिशन चंद्रयान 3 को गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित खास कार्यक्रम में इसरो की ओर से भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एरोनॉटिक्स यानी AIAA सम्मेलन में ये पुरस्कार प्राप्त किया। ये पुरस्कार स्पेस साइंस और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए संगठनों और विशेष व्यक्ति को दिया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस साइंस के इस महामंच पर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के अंतरिक्ष विजन 2047 मानव मिशन गगनयान और इसरो के दूसरे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम की रूपरेखा भी पेश की। साथ ही उन्होंने एक्सपर गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार के लिए इसरो और चंद्रयान 3 टीम को बधाई दी। हम आपको बता दें कि इसरो की टीम चंद्रयान 3 को यह सम्मान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए दिया गया है, जिससे चंद्रमा के बाद में समझ बेहतर करने में मदद मिली है। तो देखिए किस तरह से चंद्रयान 3 को सबसे बड़ा सम्मान मिला है और ये पूरे भारत के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। जी हाँ, ये पल बेहद ऐतिहासिक है। तो हम आपको बता दें कि ये पुरस्कार जो है वो मानव मिशन गगनयान और इसरो के दूसरे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम की रूपरेखा भी इसके साथ ही पेश की गई है।

0: तो चलिए अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान तीन मिशन कैसे स्पेस साइंस में मील का पत्थर साबित हुआ। 23 अगस्त 2023 को इसरो की चंद्रयान थ्री टीम ने इतिहास रचा और इस ऐतिहासिक दिन दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई। इसी के साथ दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना।
1: जी हाँ, इस मिशन ने स्पेस साइंस में कई कीर्तिमान स्थापित किए। चंद्रयान थ्री ने चांद की मिट्टी में सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की और चंद्रयान थ्री के कलेक्ट किए डेटा से दुनिया जान पाई कि चंद्रमा की सतह दो लेयर वाले केक जैसी है।
0: चंद्रयान थ्री ने पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की प्रोफाइलिंग की, जिससे ये पता चला कि चांद की सतह और उसके ठीक कुछ सेंटीमीटर नीचे के तापमान में भारी अंतर है। साथ ही चंद्रयान थ्री ने चांद की सतह के नीचे हल्की हलचल और भूकंपीय गतिविधियों को भी रिकॉर्ड किया। तो चंद्रयान तीन की उपलब्धियां आपको हम बता रहे हैं लगातार, और इसरो ने एक बड़ा इतिहास रचा है। सबसे बड़ा सम्मान प्राप्त करके चंद्रयान थ्री मिशन स्पेस साइंस में अब मील का पत्थर साबित हुआ है। जबकि 23 अगस्त 2023 की बात की जाए तो तब इसरो की चंद्रयान थ्री टीम ने इतिहास रचा और इस ऐतिहासिक दिन दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई। इसी के साथ दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना और इस मिशन ने स्पेस साइंस में कई कीर्तिमान भी स्थापित किए।
1: देखिए, चंद्रयान थ्री ने चांद की मिट्टी में सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की और चंद्रयान थ्री के कलेक्ट किए गए डेटा से दुनिया जान पाई कि चंद्रमा की सतह दो लेयर वाले केक जैसी है। और चलिए अब बात मानसून के मौसम के मिजाज की कर लेते हैं।

0: और चलिए अब पेश है मौसम वाली गुड न्यूज। देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के बीच राहत की उम्मीद दिखने लगी है क्योंकि मौसम विभाग ने गुड न्यूज दी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्य से पहले आगे बढ़ सकता है। अगर मौजूदा परिस्थितियां बनी रही तो मानसून 2 से 3 दिन पहले यानी 23 से 24 मई के आसपास अंडमान तट पर दस्तक दे सकता है।
1: मौसम को लेकर गुड न्यूज ये है कि वीकेंड पर मिलने वाली है गर्मी से राहत क्योंकि तपती गर्मी के बीच मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग की माने तो मानसून 23 से 24 मई को अंडमान तट पर दस्तक दे सकता है। वहीं केरल में 26 मई को मानसून के पहुंचने की संभावना है जबकि उत्तर भारत में 22 जून के आसपास मानसून एंट्री ले सकता है। जाहिर है मानसून के तय वक्त से पहले आने की खबर ने गर्मी से जूझते लोगों को राहत तो दे ही दी है। मानसून बेहद तेजी के साथ भारत में एंट्री लेने के लिए तैयार हो रहा है। IMD के मुताबिक मानसून काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। फिलहाल मानसून की अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी में मौजूदगी देखी जा रही है। मानसून श्रीलंका के तट पर दस्तक दे चुका है और अब मानसून के केरल में 25-26 मई को आने की उम्मीद है। मध्य भारत के राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 15 से 20 जून के बीच मानसून प्रवेश ले रहा है। बिहार तक भी मानसून 15 जून के आसपास पहुंचेगा। राजस्थान में 15 जून से प्रवेश शुरू होकर जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरे राज्य में मानसून पहुंच जाएगा। यूपी में 15 से 22 जून तक मानसून के दस्तक देने की उम्मीद है। पूर्वी यूपी में मानसून 18 से 20 जून तक पहुंच रहा है। मध्य यूपी में इसके 20 से 25 जून तक एंट्री लेने की संभावना है। वहीं पश्चिमी यूपी में 25 से 30 जून तक मानसून का प्रवेश होगा। गुजरात में मानसून का असर 20 से 25 जून के बीच नजर आएगा तो दिल्ली NCR में 25 से 30 जून के बीच मानसून के आने की उम्मीद जताई जा रही है।
2: केरला के लिए हमारा 26 का हमने प्रेस रिलीज इशू किया था 26 में और विद मॉडल एरर जैसे प्लस माइनस 4 डेज होता है। बाकी जो अगर आप जो ब्लू लाइन देख रहे हैं तो जो वो लाइन्स है जो यहाँ पे अभी मानसून एडवांस हो चुका है तो ये 16 मई को हमारा फर्स्ट एडवांस हुआ था जिसमें हमने

0: मानसून के इंतजार के बीच गर्मी में सर्दी का एहसास करने के लिए मैदानों के मुसाफिर इन बर्फीले पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो इंसान और भगवान के बाद बात जानवरों की। ज्यादातर चिड़ियाघर और जूलॉजिकल पार्क में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर, पंखे, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, वाटर स्प्रिंकलर्स और ग्रीन नेट का इस्तेमाल भी हो रहा है। साथ ही साथ खाने में भी जानवरों को मौसमी फल दिए जा रहे हैं, चाहे दिल्ली का चिड़ियाघर हो या गुजरात के नर्मदा जिले की जंगल सफारी या फिर लखनऊ का जू ही क्यों ना हो, हर जगह जानवरों को गर्मी से बचाने के ऐसे खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। कि किस तरह से जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, उनके खाने पीने का खास ख्याल रखा जा रहा है।
2: जैसे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विदेश यात्रा की बजाय अपने देश को एक्सप्लोर करने की अपील की, तो जीएनटी भी आप सभी से अपील कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजें ताकि हम आपके उन वीडियोस को दिखा पाए। देखिए, हमारे दर्शक भी बड़े ही उत्साह के साथ अपनी जगहों के इस खूबसूरत वीडियो भेज रहे हैं। तो चलिए, आज आपको उत्तरकाशी के उन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में ब्लॉगर बनी एक दर्शक की जुबानी सुनाते हैं कि क्यों आपको उत्तराखंड के इस बेहद खूबसूरत और धार्मिक शहर को एक्सप्लोर करना चाहिए।

0: स्वागत है आपका गुड न्यूज चैनल में। मैं गीता सेमवाल, मैं बुलाना चाहती हूँ आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। हल्की हल्की आजकल ना शाम के टाइम पे ठंड महसूस हो रही है। वाह, कितने सुंदर नजारे हैं, कितनी सुंदर प्रकृति की यहाँ पे खूबसूरती है। आपको ना बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़, चीड़ का घना जंगल, ये सब चीज देखने को मिलता है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में दो धाम है, श्री यमुनोत्री धाम और श्री गंगोत्री धाम। तो आजकल ना काफी अच्छी यात्रा चल रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी यही कहा है कि आप विदेशों में घूमने न जाके भारत की जो जगह है, पर्यटक स्थल है, जैसे उत्तराखंड में चार धाम है, श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम, आप इन जगहों पे आए। इसके अलावा भी उत्तराखंड में न कहीं आपको पर्यटक स्थल देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आजकल यमुनोत्री धाम में और श्री गंगोत्री धाम में, यानी चारों धाम में काफी टूरिस्ट आ रहे हैं। जब हमारे गांव मुखवा में मोदी जी आए थे तो उस टाइम जो ये यात्रा चल रही है, अब ये ग्रीष्म काल में न होते हुए अब ये यात्रा शीत काल में भी चलती है, यानी 12 महीना यात्रा चलती है। तो माननीय मोदी जी ने घाम तापो पर्यटक इसका नाम दिया है। मुखवा के सामने धराली है, हरसिल है, बगोरी है। और अगर आप ट्रैकिंग प्रेमी हैं तो यहाँ पे ना ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए कई जगह है, जैसे दयारा बुग्याल है, गौमुख ट्रैक है, सातार ट्रैक है, ऐसे कई अन्य ट्रैक है। अगर आप ट्रैकिंग प्रेमी हैं तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप शीतकाल में यात्रा करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उस टाइम तो और ज़्यादा खूबसूरती आपको देखने को मिलती है। क्योंकि हरसिल में जो है धराली, मुखवा में सेब, राजमा और उसके साथ साथ खुमानी हो गया, नाशपाती हो गया, ये भरपूर मात्रा में आपको देखने को भी और खाने को भी मिलती है। और इसी के साथ साथ एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि वेडिंग डेस्टिनेशन है, जैसे कि त्रिजोगी नारायण है और उत्तरकाशी में बाबा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में है, श्री गंगोत्री धाम में गंगा मैया जी के मंदिर में है, और गंगा मैया जी का जो शीतकालीन प्रवास है मुखवा, वहाँ पे आप ना शादी करवा सकते हैं और इन जगहों पे ना शादी होती है। तो आइए ना श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम और गंगा मैया जी के शीतकालीन प्रवास मुखवा उत्तरकाशी में आपका स्वागत है।
1: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें फिरें। तो आप भी संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि

0: आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा और बना डालिए एक व्लॉग और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे GNT पर दिखाएंगे।
1: तो चलिए बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिल्मी फ्राइडे पर मनोरंजन की बहार आपको दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
7: को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: जम्मू कश्मीर डोडा में बारिश के साथ मौसम हुआ सुहाना, फिजाओं में घुली ठंडक, पहाड़ों के बीच दिखा खूबसूरत नजारा। दिल्ली में गर्मी तोड़ रही है कई रिकॉर्ड, आज भी तेज गर्मी के आसार, तापमान जा सकता है 45 डिग्री के पास, सावधानी बरतने की अपील। कन्याकुमारी के भगवती अम्मन मंदिर में वैकासी विशाखम महोत्सव की धूम, ध्वज रस्सी जुलूस की अनूठी परंपरा का किया गया पालन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। की फोर्स ने मक्का में दिखाई अपनी ताकत, जमीन हवा चारों तरफ से हज यात्रियों को मिलेगी हाई सिक्योरिटी, परेड में कई तरह की ड्रिल। नेटफ्लिक्स पर आज से धुरंधर के रॉ एंड अनदेखे वर्जन की धूम, रोमांचक दुनिया में ले जाएगी आपको ये फिल्म, देखिए ताबड़तोड़ एक्शन।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।

0: और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है शुभ समाचार में। अब आपको लेकर चलते हैं सीधे कान फेस्टिवल में, जहां बड़ी बड़ी फिल्मों से लेकर छोटी छोटी लेकिन दमदार फिल्मों का प्रीमियर लगा हुआ है। वहीं दुनिया भर के अभिनेता और अभिनेत्रियां अपने अंदाज से रेड कार्पेट की रौनक बढ़ा रहे हैं। इस खास मौके पर बॉलीवुड अभिनेत्रियां और भी कान पहुंची, जिनके ग्लैमरस लुक्स ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और मौनी रॉय के कान में दूसरे दिन से स्ट्रैपलेस ड्रेस में वो नजर आई, जिसमें वो बेहद ग्लैमरस और एलिगेंट नजर आई। वहीं जैकलिन भी कान फेस्टिवल में पहुंची हुई हैं, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टा पर शेयर की, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं और उनके फैंस को उनका ये लुक बेहद पसंद आ रहा है। वहीं वे मंच फिल्मों का है, तो यहाँ एक से बढ़कर एक फिल्म दस्तक दे रही है। भारत से भी कई फिल्में पहुंची हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ की आदिवासी लड़की के सपनों और संघर्ष की कहानी दिखाने वाली आरजे बस्तर भी है, जिसने 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी दमदार प्रस्तुति से दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीत लिया।
1: तो 79वें कान फेस्टिवल में मौनी रॉय अपनी फिल्म के टीजर और पोस्टर लॉन्च के लिए पहुंची। कान फेस्टिवल में बॉम्बे टॉकीज की पोस्टर और टीजर लॉन्च किया गया और इस लॉन्च के लिए रेड कार्पेट पर मौनी रॉय गाउन पहनकर पहुंची। हर किसी की नजरें बस उन्हीं पर टिकी ही। वैसे तो मौनी के लुक्स हमेशा ही लाइमलाइट में बने रहते हैं, लेकिन उनका ये लुक काफी वायरल हो रहा है।
0: तो आज फिल्मी फ्राइडे पर कई फिल्में दस्तक दे रही हैं, कुछ थिएटर्स में तो कुछ ओटीटी पर रिलीज हुई हैं। अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की जोड़ी बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इनकी फिल्म चांद मेरा दिल सिनेमाघरों में आ चुकी है। वहीं धुरंधर का जलवा अब भी बरकरार है। पिछले साल दिसंबर के महीने में रिलीज हुई पहली धुरंधर को अब नेटफ्लिक्स पर दोबारा से रिलीज किया गया है, लेकिन अलग अंदाज में। इस बार दर्शकों को फिल्म का एक बिल्कुल नया अनकट और रॉ एंड अनदेखा अंदाज देखने को मिलेगा, जो पहले कभी नहीं दिखाया गया।
1: चलिए अब आपको आईपीएल के मैदान में लिए चलते हैं। आज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा और ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये आईपीएल 2026 के सबसे बड़े मुकाबलों में एक होने जा रहा है, जहां मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा, क्योंकि प्लेऑफ में जाने से पहले टॉप स्थान के लिए वो लड़ेंगे। आरसीबी फिलहाल 18 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद 13 मैचों में 16 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर है और इसके पॉइंट्स गुजरात टाइटंस के बराबर हैं, लेकिन कम नेट रन रेट के कारण वो पीछे है।

0: देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों भक्ति और आस्था की बयार बह रही है। असल में चारधाम यात्रा के साथ साथ यहां पर पंच केदार की यात्रा भी जारी है। ऐसे में यहां हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है, साथ ही मंत्रों, भजन और भगवान के जय घोषों से पूरा वातावरण गूंज रहा है।
1: देवभूमि का कण कण इन दिनों भक्ति रस में भीगा हुआ है। कहीं चार धाम यात्रा का उल्लास है तो कहीं महादेव के भक्तों का तांता लगा है। वैदिक मंत्रों की गूंज है, ढोल दमाऊ की थाप है, गीतों में भगवान का गुणगान है और महादेव का जय घोष। आस्था, परंपरा, भक्ति सब मानो एक सार है यहाँ। देवभूमि में चार धाम यात्रा के साथ साथ पंच केदार की यात्रा भी जारी है। पंच केदार में भगवान शिव के पांच अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। केदारनाथ में बैल रूपी शिव के कुबड़ की, तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में मस्तक की, मध्य महेश्वर में नाभि की और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। ऐसे में बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान से द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर के कपाट खुल गए। इसके साथ ही अब लोग भगवान मध्य महेश्वर के भी दर्शन कर सकेंगे। मान्यता है कि पांडवों द्वारा स्थापित ये मंदिर मोक्ष और आध्यात्मिक ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। वहीं चतुर्थ केदार रुद्रनाथ धाम में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। 18 मई को रुद्रनाथ धाम के कपाट खोले गए थे, तब से हर रोज यहां जनसैलाब उमड़ रहा है। अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए लोग दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं। आरती यहां का मुख्य आकर्षण है।
2: केदार रुद्रनाथ की यात्रा इस समय शुरू हो गई है। 18 मई को कपाट खोले थे और अब यहां पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लगभग 22 किलोमीटर जो पैदल ट्रैकिंग रूट होता है, इस पे भोले के भक्त लगातार ट्रैकिंग करके बाबा रुद्रनाथ के धाम में पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे रात्रि और दोपहर में होने वाली आरती के भी दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालु इस समय उत्तराखंड के चप्पे चप्पे में पंच केदारों सहित हर तरफ इस समय भीड़ दिखाई दे रही है।
1: ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर प्रकृति की गोद में बसा है, जहाँ शांति और दिव्यता दोनों का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल के साथ चमोली से कमल नैन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
0: रामनगरी अयोध्या एक और भव्य आयोजन की साक्षी बनने जा रही है। यहाँ राम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित माँ जगदम्बा मंदिर के शिखर पर पहली बार महिला संतों और मातृ शक्ति के हाथों भव्य ध्वजारोहण होगा। ये समारोह 29 मई की शाम को आयोजित किया जाएगा।

0: अयोध्या की पावन धरती एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। माँ जगदम्बा मंदिर के शिखर पर महिलाएं करेंगी ध्वजारोहण। 29 मई को शाम 5 बजे ये ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जब पहली बार महिला संत और महिला श्रद्धालु राम जन्मभूमि परिसर में स्थित माँ जगदम्बा मंदिर के शीर्ष पर ध्वजारोहण करेंगी। आई जा रही है। इनमें मंदिर परिसर में तैनात महिला पीएसी कमांडो और महिला कर्मचारी भी शामिल होंगी। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा, दुर्गा वाहिनी और कई धार्मिक सामाजिक संगठनों के सदस्य भी इस ऐतिहासिक समारोह में हिस्सा लेंगी।
1: तो साध्वी रितंबरा जी के द्वारा ध्वजारोहण होगा और आप जानते हैं निरंजन ज्योति जी भी आ रही हैं। विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय मंत्री और मातृशक्ति के संयोजिका श्रीमती मीनाक्षी पिशवे जी आ रही हैं, दुर्गा वाहिनी की संयोजिका प्रज्ञा महाला आ रही हैं और विशेषतः दुर्गा वाहिनी के मातृशक्ति के बहनें बाहर से भी आ रहे हैं।
0: इस आयोजन को महिला सशक्तिकरण और सनातन परंपरा के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। वहीं राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित राम दरबार की पहली सालगिरह को भी भव्यता के साथ मनाने की तैयारी चल रही है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति, आस्था और वैदिक परंपराओं के रंग में रंगने जा रही है। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार अनुष्ठान और भगवान को विशेष भोग अर्पित किए जाएंगे। मैं शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक पैकेट गिफ्ट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो चुका है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद से देश विदेश में मेलोडी की डिमांड बढ़ गई है। देश के कई शहरों में मेलोडी इतनी डिमांड में है कि सप्लाई धीमी हो चुकी है। हर कोई मेलोडी खरीद कर गिफ्ट करना चाहता है, मेलोडी का स्वाद लेना चाहता है। डिमांड को देखते हुए इसको बनाने वाली निजी कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स ने भी इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया है।
3: Hello from the Melody team.
4: पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के मेलोडी मोमेंट से डिप्लोमेसी पर पड़े असर को तो विदेशी मामलों के एक विशेषज्ञ समझे, लेकिन मोदी मेलोनी मेलोडी मोमेंट रील का असर मेलोडी की डिमांड पर पड़ा है, जिसमें शानदार इजाफा हुआ है। पंजाब के मोहाली की दुकानों में मेलोडी की बहार छा गई है। मोहाली के ट्राई सिटी इलाके में इसकी मांग और बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है।
5: मेलोडी चॉकलेट आप देखिए, ये बॉक्सेस मैं इसलिए लेके खड़ा हूँ क्योंकि इस समय चर्चा इनकी सबसे ज्यादा है। इटली जब प्रधानमंत्री दौरे पर गए तो उसके बाद से जो उन्होंने गिफ्ट दिया, विजुअल्स आए, तो इस चाहे वो बॉक्स है चाहे वो छोटे पैकेट्स हैं, तो इस मेलोडी की चर्चा है और इस चर्चा ने इनकी सेल पर बहुत असर डाल दिया है। हम मोहाली के ऐसे स्टोर में हैं जो खुद डिस्ट्रीब्यूटर हैं और मोहाली, पूरी मोहाली क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा जिला है तो यहीं से सप्लाई मेलोडी की खासकर यहीं से जाती है।
4: स्थानीय बाजारों में मेलोडी की बढ़ती मांग का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जहां खुदरा विक्रेता और वितरक बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहां मेलोडी कैंडी की बिक्री सामान्य स्तर से लेकर 4 गुना बढ़ गई है। मोदी ने मेलोनी को मेलोडी क्या खिलाई, उनकी रील वायरल होते ही मेलोडी की मिठास अब हर किसी को चाहिए। सिर्फ मोहाली नहीं, देश भर में इसकी मांग इतनी बढ़ चुकी है कि इसकी सप्लाई धीमी हो गई है, क्योंकि अब क्या बूढ़ा क्या बच्चा और क्या जवान, हर कोई मेलोडी मांग कर रहा है। मोदी मेलोनी के मेलोडी वीडियो के इंटरनेट पर छा जाने के बाद इसकी मांग बढ़ने की और भी वजहें हैं। मोदी के मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट करने के बाद हर कोई एक दूसरे को मेलोडी गिफ्ट कर रहा है। सोशल मीडिया पर मेलोडी हैंडल ट्रेंड कर रहा है। मेलोडी नाम के मीम्स और वीडियो वायरल करने के लिए लोग मेलोडी टॉफी को भारी मात्रा में खरीद रहे हैं। कई दुकानों और ऑनलाइन एप्स पर मेलोडी के स्टॉक की कमी हो गई है। क्विक कॉमर्स एप्स जैसे ब्लिंकिट और जेप्टो पर मांग इतनी बढ़ी कि कई जगहों से ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई। मांग बढ़ता हुआ देख पार्ले प्रोडक्शन ने भी मेलोडी का उत्पादन बढ़ा दिया है। पार्ले ने मेलोडी टॉफी को 1983 में बाजार में उतारा था। आज भी रिटेल में मेलोडी एक रुपए की किफायती कीमत पर मिल जाती है। यही नहीं, आज की तारीख में दुनिया के लगभग 100 देशों में मेलोडी टॉफी बेची भी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रेंड के चलते शेयर बाजार में पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयरों में उछाल देखा गया। हालांकि मेलोडी बनाने वाली असली कंपनी पार्ले प्रोडक्ट एक निजी कंपनी है और शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स ने नाम की समानता की वजह से गलती से पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद लिए। वैसे मौके का फायदा उठाते हुए पार्ले प्रोडक्ट्स ने इंस्टाग्राम पर मोदी मलोनी वीडियो भी शेयर कर दिया और कैप्शन में लिखा, 1983 से रिश्तों में मिठास खोल रहे हैं। वाकई मोदी मलोनी के मेलोडी मोमेंट ने इंडिया इटली के रिश्तों में तो मिठास खोल ही दी है। अब देश में हर कोई मेलोडी की मिठास महसूस करना चाहता है और पूछने पर यही कहना चाहता है कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। मोहाली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बिहार के मुजफ्फरपुर की माटी से निकली विश्व प्रसिद्ध शाही लीची इस बार समय से पहले बाजार में आई है। महिलाओं के जीवन में भी आर्थिक मिठास लेकर ये लीची आई है। शाही लीची की आवक से यहां महिलाओं को काम मिल रहा है और कमाई भी बढ़ रही है। बीते दिनों हुई बारिश ने लीची के स्वाद और गुणवत्ता को और ज्यादा बेहतर बना दिया। इससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद जागने लगी है।

0: आ गई शाही लीची। इन दिनों मुजफ्फरपुर के तमाम बाजारों में दुकानों पर लाली छाई है, क्योंकि शाही लीची यहां पहुंचकर अपने मिठास बिखेर रही है। शाही लीची से महिलाओं के घरों में भी आर्थिक मिठास घुल रही है, क्योंकि शाही लीची के चलते सीजन में वो रोज हजार रुपए तक कमाई कर रहे हैं। दरअसल मशहूर शाही लीची सिर्फ अपने स्वाद और खुशबू के लिए ही नहीं, बल्कि ये हजारों ग्रामीण परिवारों, खासकर महिलाओं के लिए रोजगार और आर्थिक सहारा भी बन रही है। लीची सीजन शुरू होते ही जिले के गांव में तुड़ाई, छटाई, पैकिंग और बिक्री का काम तेज हो जाता है, जिससे बड़ी संख्या में महिलाओं को गांव में ही रोजगार मिल जाता है।
1: दिन भर तोड़ने में अब आप लोग काम के लिए बाहर जाना पड़ता है कि आसपास मिल जा रहा है?
2: आसपास में मिल जाता है।
1: पैसा आमदनी होता है?
2: हाँ होता है।
1: अच्छा, अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है?
2: नहीं पड़ रही है।
1: घर से निकलिए, काम मिल गया?
2: काम मिल गया।
1: कितनी खुशी हो रही है?
2: बहुत खुशी हो रही है।
1: अच्छा, बेटा भी साथ में है तो पूरा परिवार मिलकर कमा रहे हैं?
2: हाँ, पूरा परिवार मिलकर कमा रहे हैं।
1: लीची के सीजन में एकदम रोजगार मिल जाता है?
2: हाँ।
1: कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है?
2: जाना है, झपा पोछा से लाते
1: हैं। झपा से गए और बाजार में ला के बेचे। कितना पैसा हो जाता है?
2: हो जाए 500 रुपए हो जाता है।
1: पूरा खुश है?
2: बहुत खुश है।
1: बिक्री हो रही है?
2: हो रही है। हम तो भगवान से मनाते हैं, साल भर बिकाए, साल भर खुश रहेंगे।
0: यहाँ के कई मुख्य बाजारों में शाही लीची की भरमार है और लीची की बिक्री शुरू हो गई है। इस बार शाही लीची की बाजार में कीमत करीब 400 रुपए प्रति सैकड़ा है। हालांकि शाही लीची के व्यापारी मानते हैं कि मई के अंतिम हफ्ते और जून के पहले हफ्ते तक आवक बढ़ने के साथ कीमतों में कुछ कमी आएगी और लीची में पूरी मिठास भी आ जाएगी। बाजारों में दूसरे शहरों से आए लोग भी शाही लीची की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। खरीदारों को इस बार लीची का स्वाद पहले से बेहतर लगा है। उनका मानना है कि बारिश के चलते लीची में प्राकृतिक मिठास बढ़ गई है। वहीं लीची व्यापारी इस बार शाही लीची की डिमांड देखकर खुश हैं और उनका जोश हाई है।
3: काटी का है लीची?
1: अच्छा।
3: 400 रुपए कीमत है, शाही लीची है। मीठा है?
1: मीठा है
3: जी।
1: ग्राहक आ रहे हैं?
3: जी, ग्राहक आ रहा है, जोर शोर से आ रहा है, ग्राहक बिक रहा है।
1: कहाँ से आए हैं?
3: हाँ, ये रहुआ से लेके आए।
1: रहुआ से? लीची टूटने लगा?
3: टूटने लगा।
1: कैसे कीमत क्या है?
3: 400 रुपए सैकड़ा है।
0: मुजफ्फरपुर में विशेष गुणवत्ता और स्वाद वाली लीची उगाई जाती है। यहाँ मुसहरी, सरैया, मंगरा और ढूली में लीची के कई बागान हैं। लीची लगाने के बाद वैज्ञानिकों की टीम साल भर इनकी देखभाल करती है। 22 मई के बाद शाही लीची प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। यहाँ 48 जगहों पर लीची के अस्थायी बाजार सज चुके हैं। ग्रामीण इलाकों के छोटे बाजारों में भी किसान और व्यापारी सक्रिय हो गए हैं। यहाँ की शाही लीची केवल स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए भी काफी अहम मानी जाती है। हर साल 15 मई से 20 जून तक चलने वाले लीची सीजन में राज्य में करीब 2 लाख मजदूरों को रोजगार मिलता है। यही हजारों परिवारों की आमदनी का जरिया है शाही लीची। बागानों में तुड़ाई, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट और बाजारों में बिक्री के जरिए हजारों परिवारों की आमदनी से जुड़ी है यहाँ की शाही लीची। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए इंस्टा स्टोरी में आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए विद्या बालन की फनी इंस्टा स्टोरी।
5: एक बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी है इसलिए मुझे भी याद नहीं आ रही।
6: भाई यार, मैं जब जब नींद से उठता हूँ सुबह हो जाती है। कहीं मैं सूर्य देव का अवतार तो नहीं?
4: चलिए इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: The Tailgate Top 20.
10: Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
9: The Tailgate Top 20.
11: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
10: Try to keep up.
12: न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
11: गुड न्यूज टुडे.
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
11: गुड न्यूज टुडे.
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: जम्मू कश्मीर डोडा में बारिश के साथ मौसम हुआ सुहाना, तापमान में घुली ठंडक, पहाड़ों के बीच दिखा खूबसूरत नजारा। दिल्ली में गर्मी तोड़ रही है रिकॉर्ड, आज भी तेज गर्मी के आसार, तापमान जा सकता है 45 डिग्री के पार, सावधानी बरतने की अपील। कन्याकुमारी के भगवती अम्मन मंदिर में वैकासी विशाखम महोत्सव की धूम, ध्वज रस्सी जुलूस की अनूठी परंपरा का किया गया पालन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। सऊदी अरब की फोर्स ने मक्का में दिखाई अपनी ताकत, जमीन हवा चारों तरफ से हज यात्रियों को मिलेगी हाई सिक्योरिटी, परेड में कई तरह की ड्रिल। नेटफ्लिक्स पर आज से धुरंधर के रॉ और अनदेखी वर्जन की धूम, रोमांचक दुनिया में ले जाएगी ये फिल्म, देखिए ताबड़तोड़ एक्शन।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति ग्रह महिलाओं के जीवन से, उनके विवाह से और उनके वैवाहिक जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है। बृहस्पति का महिलाओं के जीवन और विवाह से क्या संबंध है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। आज हम ये समझ रहे हैं कि बृहस्पति का महिलाओं के जीवन से क्या संबंध है। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति का विवाह के मामलों से क्या संबंध है। देखिए, बृहस्पति ग्रहों में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। बृहस्पति को नवग्रहों में सबसे ऊंचा स्थान यानी गुरु का पद प्राप्त है। बृहस्पति धन, विवाह और संतान के मामलों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। किसी का भी विवाह हो, महिला का हो या पुरुष का हो, विवाह के मामले में बृहस्पति की स्थिति देखना बहुत आवश्यक होता है। और महिलाओं के विवाह की और वैवाहिक जीवन की सारी जिम्मेदारी बृहस्पति से तय होती है। तो वैसे तो बृहस्पति पुरुष के विवाह पर भी असर डालता है, लेकिन महिलाओं के विवाह के लिए और महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंता दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, करियर में कुछ बदलाव होगा, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि किसी बालिका के, किसी महिला के विवाह को
बृहस्पति कैसे प्रभावित करता है। देखिए, अगर बृहस्पति अच्छा नहीं है तो बिना बृहस्पति के पहले नंबर पर तो महिलाओं का विवाह होगा ही नहीं और आगे चलेगा भी नहीं। बृहस्पति कमजोर है तो विवाह होने में बहुत सारा और बहुत ज्यादा विलंब होता है। और अगर बृहस्पति खराब है तो विवाह में विलंब तो होता ही है, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। अगर किसी महिला का बृहस्पति ज्यादा खराब है तो विवाह होना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बृहस्पति दूषित है राहु से या केतु से तो ये महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना देता है। बृहस्पति जरा भी ठीक है किसी महिला की कुंडली में तो वो विवाह को और वैवाहिक जीवन को ठीक बनाए रखता है। किसी भी महिला का बृहस्पति अगर जरा सा भी बेहतर हो तो विवाह समय पर हो जाता है और वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला कर ठीक बना रहता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो ये बात आपने समझ ली कि महिलाओं के विवाह होने में और विवाह के चलने में सबसे बड़ी भूमिका होती है बृहस्पति की। तो अगर आप महिला हैं और आप चाहती हैं कि आपका विवाह जल्दी हो जाए तो क्या उपाय करें, बृहस्पति को कैसे बेहतर करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को हल्दी मिला करके जल अर्पित करिए। सुबह और शाम 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करिए
ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करें और बृहस्पति से लाभ लेने के लिए अपना आहार सात्विक रखें, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। सप्ताह में एक बार किसी धर्म स्थान पर जा करके, किसी मंदिर में जा करके प्रार्थना उपासना जरूर करें, बृहस्पति अनुकूल होंगे और आपका विवाह शीघ्र होगा। अगर आप महिला हैं और आप चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहे, तो वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए महिलाएं क्या उपाय करेंगी? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए और ज्यादा चाहें तो और ज्यादा जप भी कर सकती हैं। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगुली में इंडेक्स फिंगर में धारण करिए और नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करते रहिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। लेकिन इस बात को जरूर याद रखिए कि अगर आप बृहस्पति को अनुकूल करना चाहती हैं तो आहार को सात्विक रखिए, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, आंखों की समस्या का ध्यान दें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, खान पान में सावधानी रखें, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने आपको बताया कि महिलाओं के विवाह से और उनके वैवाहिक जीवन से बृहस्पति का क्या संबंध है। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अपने घर में जंगल या जंगली जानवरों के चित्र ना लगाएं। अगर आप अपने घर में
जंगल या जंगली जानवरों के चित्र लगाते हैं तो इससे घर में अशांति और जीवन में संघर्ष पैदा होता है। अब जान लेते हैं सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए और घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिए। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: to make a move? Start your home buying journey with CME Federal Credit Union. Open an Ohio Homebuyer Plus account to earn 6.5% APY for up to 5 years. Savings towards your home purchase. When ready, lock in a 5-1 ARM mortgage at just 5% APR. Whether it's your first home or a new chapter, CME is here for you. Learn more at CMEFCU.org. APY equals annual percentage yield. APR equals annual percentage rate. Terms apply. Membership eligibility required. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Visit CMEFCU.org for details.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: आज की चर्चा। लेकिन हम लोग बड़े आलसी, बहुत ऊंची लेवल के आलसी, आलस के। हम लोगों को भगवान भी चाहिए पर घर बैठे बिना माला जपे। बहुत से लोग हमारे पास आते, गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? तीर्थ जा रहे हैं। अच्छा, हमारे नाम से जल चढ़ा देना ठठरी के बरे। तुम्हारे नाम से हम जल चढ़ाएं और तुम्हें मिल जाए, अलुआ मिलेगा हा? अरे कहे भैया, हम खा ले और तुम्हारा पेट भर जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हम लोग क्या करते हैं, अरे हमने बहुत दान किया, दान किया, पंडितों को कह दिया पाठ कर दो, पाठ कर दो। भैया ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाओ, अनुष्ठान का अपना फल है, पर खुद करो उसका अपना अलग फल है। ब्राह्मणों से करवाओ उसका अलग फल है, खुद करोगे उसका अलग फल है। लेकिन हम दूसरों पर ज्यादा निर्भय हैं, अपने आप पे, क्योंकि हम आलसी हैं ना। आलसी बहुत ऊंचे क्वालिटी के हो गए, आदत पड़ गई है। तो आलसी से हमें याद आया, नई नई शादी हुई उत्तराखंड में, देहरादून।

लगा शायद ये कहेगी नहीं नहीं ठीक है हम लगा देंगे या हम लगा देंगे सर, पर पत्नी तो ऊंची निकली वो भी उत्तराखंड की। बोले देखो झाड़ू जिसे लगाना हो लगाओ, हमारा सिर दर्द मत करवाओ, तुम्हारी बातों से हमारा सिर दर्द होता है। एक काम करो लड़ो ना, एक दिन तुम झाड़ू लगा लो, एक दिन माजी लगा लिया करेगी, अपन सो लगाने वाले नहीं है। ऐसे भी आलसी, अब इन आलसियों को क्या समझाएं, बोलो सीताराम। एक और हमने आलसी की बात सुनी, एक बार एक आलसी किराए के मकान में रहता था, भूकंप आ गया, भूकंप आया तो दूसरे मित्र ने जगाया, देख देख भूकंप आया, आने दो कौन अपना मकान गिरना है, मकान मालिक का गिरेगा बताइए बताइए अपना क्या जाता है, मकान मालिक आए गिर जाने दो। अरे भाई मकान मालिक का मकान तो गिरेगा पर तुम भी तो तपोगे, इन आलसियों से कौन। एक और आलसी था तुम लोगों के बीच का, एक बार राजा ने घोषणा की जितने भी नगर में आलसी हो सब हमारे पास आए, काम कुछ नहीं करना है, एक ही शर्त खाओ पड़े रहो। अब आलसियों की भीड़ लग गई, राजा ने कहा इतने आलसी तो होंगे नहीं, इतनी आलसी, मंत्री बोला हम चेक कर लेते हैं असली आलसी कितने हैं। तो जिस मकान में ठहराया गया वो घास फूस के मकान, आग लगा दी, आग जैसी लगी मकान जले सो बाकी आलसी तो भग गए, दो पड़े रहे। एक बोला देख देख देख आग ऊपर लगी, दूसरो बोला बीड़ी जला ले, एक बोला देख आग ऊपर लगी, दूसरा बोला पड़े रहो बीड़ी जला लो। तो बोला बीड़ी जलाने कौन जाए ऊपर, थोड़ी देर में आ गई नीचे आने वाली है, यहीं जला लेंगे यहीं जला लेंगे, मतलब इन्हें बचना हो जैसे। तब राजा ने कहा असली आलसी ये हैं, इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए। हम लोगों की भी ठीक ऐसे ही कुछ आदत है, हम लोग भी मां आलसी हैं भजन में।

भजन करण में आलसी, भोजन में, भोजन का हाँ, लिया, लिया, लिया। एक और आलसी सुना हम, याद आ गया तो सुन लो। एक गुरु जी का चेला आलसी, बद्रीनाथ वाले महाराज जी का महा आलसी चेला था गुरु जी का, यहीं रहते थे खाक चौक में बद्रीनाथ वाले महाराज, उनका चेला आलसी। अब ये मत कहना कि वो हम ही थे, पर इनका एक चेला महा आलसी, इतना आलसी। महाराज जी भीतर पड़े थे, ठंडी यहां बहुत होती है, बर्फ गिर रही थी, रजाई में पड़े थे। तो महाराज जी ने कहा, चेले बाहर एक गाय बंधी, गाय बारिश हो रही, बर्फ गिर रही, जाओ दूसरी जगह बांध दो। चेला बोला, गुरु जी, आग तापते हुए बोला, गुरु जी, बंधन खोलने का काम तो आप जैसे महापुरुषों का, हमारे जैसे जीव तो खुद बंधन में बंधी, हम कहां दूसरे का बंधन खोल पाएंगे। फिर गौ माता, गुरु जी, आप जैसे मां, गुरु जी ये समझ गए महाराज जी के गुरु चेला नहीं, गुरु ये फंस गया। बेचारे महाराज जी ने गौ माता को दूसरी जगह बांधा। कुछ देर हुई, गुरु जी ने कहा, बेटा लाइट चली गई, बर्फ गिर रही, अंधेरा है, पहाड़ों का काम, देखो बारिश बंद हुई क्या। गुरु जी, ये बिल्ली अभी अभी बाहर से अंदर आई है, ये बिल्ली बाहर से अभी अभी अंदर आई। गुरु जी बोले, महाराज जी बोले, खाक चौक वाले बद्रीनाथ अंदर आई तो क्या है? बोले, हाथ फेर के देख लो। गीली हो तो समझना हो रही, और सूखी हो तो समझना बंद हो गई। अब हम काय को उठे? गुरु जी बोले, बाढ़ में गया। रात हुई, गुरु जी बोले, भाई नहीं, इतना काम करना है, नींद नहीं आ रही, ये दीपक जल रहा, लाइट है नहीं, तेल जल जाएगा, कल के लिए काम आएगा, पहाड़ का काम, नीचे से सामान कैसे ऊपर आएगा, बड़ी मुश्किल से आता है। पुरानी जमाने की बात, पहले बकरियों पे सामान आता था ऊपर, जब यहां पर कुछ लेने के लिए तो बकरियों की पीठ पे 2-3 किलो राशन बांध दिया, तेल बांध दिया, वो ऊपर तक बकरियां आ जाती थी, तो कौन लाएगा। बंद कर दे, दीपक बुझा दे बेटा। चेला बोला, गुरु जी, ठंड में कौन उठे, ठंड में पांव

निकालने पे ऐसा लगता है जैसे 14 साल का वनवास मिला। एक काम करो, आप आंख बंद करके विचार करो कि कुछ जल ही नहीं रहा है। बद्रीनाथ वाले महाराज जी बोले जय हो तेरी, खुद ही उठे फूंक मारी। अब हुई सुबह, सुबह हम लड्डू लेके आए, हमका महाराज जी भोग लगाओ खाट चौक के हनुमान जी को। महाराज जी ने भोग लगाया, अब सोचा कि चेला तो हमारा आलसी है वो खाएगा नहीं, फिर भी आवाज दी चेले लड्डू खाओगे। बागेश्वर वाले महाराज लाए हैं, गुरुजी गुरुजी गुरुजी गुरुजी, दौड़ता हुआ आया प्रणाम किया, आपकी तीन तीन बातें नहीं मानी हमने, अब चौथी बात अगर नहीं मानेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। जाना नहीं चाहते। गुरुजी बोले ले पूरा ही खा ले, ऐसे भी आलसी होते। खैर आप लोग नहीं हो, ये तो महाराज जी के चेले की कथा। पिताजी महाराज की, हमको भक्तमाल का एक चरित्र याद आया।

भक्तमाल का एक चरित्र है। एक गागरौन के राजा हुए, गागरौनगढ़ राजस्थान में, वहां के एक राजा हुए, उनका नाम था श्री पीपाजी महाराज। क्या नाम था? पीपाजी, बड़े अद्भुत महात्मा, नाम पीपाजी महाराज। इनकी 20 रानियां थी, बहुत ऊंचे राजा हुए। राजा राजपाट करते, सुख वैभव के साथ वही विलासतामय जीवन। इनको किसी ने कहा कि गुरु करना चाहिए, गुरु होना चाहिए। अब किसको गुरु बनाए? तो उस वक्त भगवान रामानंदाचार्य भगवान इस पृथ्वी पर सात शरीर थे, आज भी हैं भगवान। तो रामानंदाचार्य महाराज जी के बारे में इन्होंने सुना कि वो बहुत योग्य गुरु हैं, तो इन्होंने सोचा कि चलो दर्शन करते हैं, दीक्षा लेते हैं। रामानंदाचार्य भगवान के पास गागरौनगढ़ के राजा पीपाजी महाराज सा पत्नियों के सहित ढोल नगाड़े, वही पेशवाई, वही राजसी ठाट बाट, वही गज अश्व चल रहे हैं, मंत्री चल रहे हैं, विविध प्रकार की सेनाएं चल रही, यत्र तत्र सर्वत्र स्वागत हो रहा, महाराजाधिराज की जय हो, जय घोष लग रहे हैं। और राजा गया काशी में बैठे हुए भगवान रामानंदाचार्य भगवान को, जो पहरे पर लगे थे उनको प्रार्थना की कि हमको महाराज जी को मिलना। तो पहरेदारों ने कहा कि रुको, पहले हम पूछें फिर बताएंगे। मंत्रियों ने कहा चुप रहो, ये राजा है। तो भगवान रामानंदाचार्य के शिष्य ने कहा ये अपनी राज्य के राजा हैं, गुरु तो पूरी पृथ्वी का राजा है, तो एक जगह के राजा है, चुप रहो पूछने दो। रामानंदाचार्य भगवान के पास शिष्य गए, उन्होंने कहा कोई गागरौनगढ़ के पीपाजी महाराज आए हैं, राजा हैं। महात्मा रामानंद भगवान रामानंदाचार्य ने कहा हमें राजा से क्या लेना देना, अपेक्षा कुछ है नहीं, राजा है तो बना रहने दो, हम राजाओं से नहीं मिलते। राजा चौंक गया, पर दर्शन तो करना था। तो बेचारा बात बात में बाहर गया और सब सेना को वापस भेज दिया, सब घोड़ों को वापस भेज दिया, गज को वापस भेज दिया, रानियों को वापस भेज दिया। फिर आया द्वार पर कि अब कहो, एक साधारण सा सेवक महाराज की दीक्षा लेने के लिए, दर्शन करने के लिए एक उत्सुक जिज्ञासु आया। तो शिष्यों ने कहा रुको ठहरो, हम देखते हैं। तो रामानंदाचार्य ने खबर भेजी कि अगर तुमको दीक्षा लेनी है और इतनी ही जिज्ञासा है, याद रखना शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्ता जान। तो रामानंदाचार्य ने कहा कि उसको खबर करो आश्रम के बाहर जो कुआं है उसमें पहले छलांग लगा करके गिरे, तब दीक्षा देंगे। हमारा तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति होता तो बाबा को पागल कहे। धन्य है श्री पीपाजी महाराज,

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हैं, ऐसे वीडियोस जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और कुछ तो ऐसे होंगे जो आपको भावुक भी कर देंगे।
2: इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मानना पड़ेगा कि किसी भी पुल को पार करने के लिए कई और तरीके भी हो सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स पुल को पार करने के लिए ब्रिज के ऊपर से जाने के बजाय उसके नीचे से उछल कूद करते हुए गुजर रहा है। शख्स पुल के नीचे लगे खंभों और पोल को पकड़कर झूलते हुए ब्रिज को पार कर रहा है। वीडियो में शख्स जितनी आसानी से पुल को पार करता दिख रहा है, उतना आसान ये काम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस शख्स की फिटनेस वाकई कमाल की है। शख्स पुल को न सिर्फ पार करते हुए जाता है, बल्कि वो उसी पुल पर ठीक वैसे ही लटकते हुए वापस भी आता है। जंगल सफारी के इस वीडियो को देखकर यूजर्स हैरान हैं। वीडियो में एक जंगल नजर आ रहा है। जीप में बैठी लड़की ने जंगल सफारी के दौरान वीडियो बनाया और तभी नजर आता है कि एक हाथी उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। हाथी जब काफी करीब आता है तो लड़की डर जाती है और जीप चालक को गाड़ी भगाने के लिए बोलने लगती है। कुछ सेकंड के लिए हाथी रुक जाता है, मगर फिर उनके पीछे आने लगता है। जीप में मौजूद आदमी भी गाड़ी भगाने के लिए बोलने लगता है।

इस वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मामला एक डोसा दुकानदार और उनके सबसे अनोखे कस्टमर से जुड़ा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यस्त सड़क के किनारे एक डोसे की दुकान है, जहां तवे से ठीक पास एक सांड बड़े ही धैर्य के साथ खड़ा है। उसे देखकर ऐसा लगता है माने उसे दुकान का पूरा मेन्यू जबानी याद है और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। आमतौर पर दुकानदार जानवरों को भगा देते हैं, लेकिन इस डोसे वाले ने तो जो किया उसने सभी का दिल जीत लिया है। आप देखेंगे कि दुकानदार ने बड़े ही प्यार से तवे पर मक्खन मारकर एक बढ़िया कुरकुरा डोसा तैयार किया और सीधे अपने इस चार पैरों वाले स्पेशल गेस्ट को परोस दिया। सांड ने भी बड़े चाव से डोसा खाया और अपनी पूंछ हिलाकर वेंडर का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर दो बहनों ने इजिप्ट लीबिया के बॉर्डर पर बने अपने छोटे से घर की एक झलक लोगों को दिखाई है। झोपड़ी जैसा ये घर देख लोगों को लगा कि बहनें गरीब हैं और मुश्किल में अपने दिन गुजार रही हैं। लेकिन जब घर को अंदर से देखा गया तो सब दंग रह गए। घर के अंदर आधुनिक और लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक देखने को मिली। कमरे में सॉफ्ट लाइटिंग, कम्फर्टेबल सोफा, बड़े बड़े बेड, फुली इक्विप्ड किचन, वाईफाई, एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं और खूबसूरत डेकोरेशन सब कुछ यहां मौजूद थी। बहनों ने बताया कि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल से घर तैयार किया है, जिसमें मिट्टी और नमक का इस्तेमाल किया गया है।

0: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है। जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है।
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आए हूँ हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
11: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
12: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
13: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
14: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
15: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
16: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
17: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
18: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
7: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
20: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have. Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
21: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
22: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
23: 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
24: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
23: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
25: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
23: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
26: और दुर्भाग्य कहता है
23: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
25: अविश्वास में विश्वास बसता है,
23: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे,
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
24: देश देख रहा है अच्छी खबरें.
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन.
10: बीएसएफ की महिला पर्वतारोहियों ने रचा इतिहास. मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट पे लहराया तिरंगा. गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई. केदारनाथ यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्ड्स किए ध्वस्त. एक महीने में बाबा के धाम पहुंचे 7.5 लाख यात्री. हर रोज 25 से 30 हजार के बीच पहुंच रहे भक्त. जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश के साथ मौसम हुआ सुहाना. तापमान में घुली ठंडक. पहाड़ों के बीच दिखा खूबसूरत नजारा. सऊदी अरब की फोर्स ने मक्का में दिखाई अपनी ताकत. जमीन हवा चारों तरफ से हज यात्रियों को मिलेगी हाई सिक्योरिटी. परेड में कई तरह के ड्रिल. नेटफ्लिक्स पर आज से धुरंधर के रॉ और अनदेखे वर्जन की धूम. रोमांचक दुनिया में ले जाएगी फिल्म. देखिए ताबड़तोड़ एक्शन.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम
10: इसरो का दुनिया ने माना लोहा. चंद्रयान 3 मिशन को मिला प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार. संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने ग्रहण किया अवार्ड. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स की तरफ से दिया गया है यह सम्मान. क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसरो और चंद्रयान 3 की टीम को दी बधाई. इसरो की ओर से पुरस्कार स्वीकार करना मेरे लिए गर्व की बात है. चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के निकट चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए दिया गया इसरो को सम्मान. अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की बढ़ती पकड़ को मिली वैश्विक पहचान. वॉशिंगटन डीसी में आयोजित एसेंट सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया पुरस्कार. अंतरिक्ष विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला AIAA का सर्वोच्च सम्मान. चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब. 32 दिनों में 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम यात्रा. केदारनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह. अब तक 7.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी. बद्रीनाथ धाम में भी लगा भक्तों का मेला. अब तक 5 लाख से अधिक भक्तों ने किए बाबा बद्रीनाथ के दर्शन. उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम का खुला खजाना. मंदिर समिति के छप्पड़फाड़ हो रही है कमाई. 32 दिनों में यमुनोत्री मंदिर समिति को कुल 23.5 लाख रुपए की आय हुई प्राप्त. श्रद्धालु की बढ़ती संख्या के साथ आय में भी लगातार हो रहा है इजाफा. उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती. श्रद्धालुओं ने लगाए हर हर महादेव के जयकार. भगवान महाकाल के अभिषेक के बाद रजत चंद्र त्रिशूल मुकुट और आभूषण अर्पित कर किया गया उनका दिव्य श्रृंगार. एमपी के धार में भोजशाला में सुबह सुबह हुई पूजा. भगवान की उतारी गई आरती. पुरी में भगवान जगन्नाथ की उतारी गई विशेष आरती. श्रद्धालुओं ने लगाए भगवान जगन्नाथ के जयकारे. भगवान जगन्नाथ की आरती के लिए और दर्शन के लिए सुबह से ही लगी भक्तों की भीड़. सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम. सऊदी अरब में हज यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर. सऊदी सिक्योरिटी फोर्स ने मक्का में किया परेड. सैन्य परेड में सेना ने तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ के लिए अपनी कुशलता और तैयारियों का किया प्रदर्शन. परेड में फोर्स ने एडवांस व्हीकल्स और सिक्योरिटी एविएशन का भी किया प्रदर्शन, साथ ही परेड में किए गए कई ड्रिल। परेड में अलग अलग सिक्योरिटी सेक्टर की महिला सैनिकों ने भी लिया हिस्सा, ड्रोन और सीसीटीवी से भी होगी निगरानी। 24 मई की शाम से 29 मई तक चलेगी हज यात्रा, 2 से 3 मिलियन मुसलमानों के शामिल होने की उम्मीद। रजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पहली बार पंजाल शतरंज चैंपियनशिप का हुआ आयोजन, खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर लिया इसमें हिस्सा। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में 165 से ज्यादा खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक लिया हिस्सा, भारी संख्या में महिला प्रतिभागी हुई शामिल। नशा मुक्त समाज की पहल को लेकर चैंपियनशिप का आयोजन, से नो टू ड्रग्स यस टू स्पोर्ट्स के तहत हुआ कार्यक्रम का आयोजन। स्थानीय खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने के लिए पहली बार मिला इतना बड़ा मंच, बड़े पैमाने पर पहली बार आयोजित हुए कार्यक्रम से खेलों के प्रति रुचि जगाना कार्यक्रम का मकसद। टूर्नामेंट विजेताओं को दिए गए पुरस्कार, युवाओं को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ नशे से दूर रहने की अपील भी की गई। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, मामलों का जल्द निपटारा करने के भी दिए निर्देश। रजौरी में खेल को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफ की पहल, जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। टूर्नामेंट में कई जिलों की टीमें ले रही हिस्सा, महिलाओं ने भी टूर्नामेंट में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। अहमदाबाद में पुलिस ने पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए समर कैंप का किया आयोजन, बड़ी संख्या में बच्चे हुए इसमें शामिल। समर कैंप में खेल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, बच्चों ने किया जमकर डांस। हैदराबाद में युवा ले रहे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की डिग्री, जीएमआर स्कूल ऑफ एविएशन प्रदान करता है इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग कोर्स। आधुनिक तकनीकों के जरिए पढ़ाए जा रहे हैं कोर्स, इंटरैक्टिव सेशंस के साथ एयरक्राफ्ट के लाइफ साइज मॉडल्स के साथ दी जा रही उन्हें ट्रेनिंग। पैलेस ऑन व्हील्स ने रच दिया इतिहास, मई माह में पहली बार फुल चार्टर के साथ जयपुर पहुंची राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध शाही ट्रेन। राजस्थानी संस्कृति की पहचान है पैलेस ऑन व्हील्स, इस ऐतिहासिक ट्रेन पर राजस्थान की संस्कृति, विरासत, खान पान और शाही अतिथि का अनुभव ले सकते हैं देश विदेश के मेहमान। लग्जरी और हेरिटेज टूरिज्म का उदाहरण है ये ट्रेन, मेहमानों के लिए समर स्पेशल मेन्यू, एयर कूल्ड, साइट सीइंग, सांस्कृतिक प्रस्तुति और लग्जरी ऑनबोर्ड सुविधाओं की विशेष व्यवस्था। तमिलनाडु के प्रसिद्ध कन्याकुमारी भगवती अम्मन मंदिर में उमड़ा भक्ति का जनसैलाब, पवित्र वैकाशी विकासम उत्सव का हुआ आयोजन। रस्मों के तहत पारंपरिक ध्वजारोहण समारोह से हुई उत्सव की औपचारिक शुरुआत, 2 दिनों तक चलेगा पवित्र उत्सव। देवी भगवती अम्मन को समर्पित है ये त्योहार, भक्तों द्वारा विशेष रूप से समृद्धि और कल्याण के लिए आशीर्वाद की कामना के साथ की जाती है पूजा। उत्तर प्रदेश में अब आम लोग भी खोल सकेंगे अपना संग्रहालय, प्रदेश सरकार ने विजिट माय स्टेट अभियान और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के तहत की पहल। नागरिक ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्थान और निजी संगठन स्थापित कर सकेंगे संग्रहालय, जहां इतिहास, संस्कृति, आध्यात्म, साहित्य, लोक परंपराओं और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी दुर्लभ धरोहर की जा सकेगी प्रदर्शित। प्रचंड गर्मी से जूझ रहा हिंदुस्तान, कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार पहुंचा। दिल्ली में भी हीट वेव का अलर्ट, दिल्ली में 14 साल बाद मई की सबसे गर्म रात रही बुधवार। दिल्ली एनसीआर में अगले 1 सप्ताह तक भीषण गर्मी और लू रहने का अनुमान, बिजली की भी बड़ी मांग। यूपी के 11 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट किया गया जारी, 25 मई तक तपिश भरी गर्मी और लू से राहत के आसार। बांदा लगातार 4th दिन दुनिया का सबसे गर्म शहर बना रहा, 48 के पार पहुंचा पारा। बिहार के 14 जिलों में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी, कई जिलों में 45 के पार पहुंचा तापमान। बिहार के औरंगाबाद में गर्मी के चलते 8वीं तक के स्कूल किए गए बंद, गया, जहानाबाद में भी स्कूल का समय बदला गया। बिहार का कैमूर रहा सबसे गर्म शहर, 44 डिग्री के पार पहुंचा कैमूर का तापमान। प्रशासन ने लोगों से की सतर्कता बरतने की अपील। झारखंड के 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, कई जिलों में 27 मई तक हो सकती है वर्षा। झारखंड के 4 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार, कई जिलों में लू चलने की चेतावनी। प्रयागराज में 45 के पार पहुंचा तापमान, सड़कों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। प्रयागराज में गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए नगर निगम की सराहनीय पहल, चौराहे पर मिट्टी के घड़े में पीने के पानी की गई व्यवस्था। मुरादाबाद में भी लगातार बढ़ रहा तापमान, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। एमपी के छतरपुर में भी भीषण गर्मी का प्रकोप, गर्मी के चलते घटी पर्यटकों की संख्या। ओडिशा के मयूरभंज में बड़ा तापमान, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। दिल्ली में जारी भीषण गर्मी का प्रकोप, आंकड़ों के मुताबिक इस गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा 8,231 मेगावाट तक पहुंची बिजली की अधिकतम मांग। पटना में हीट वेव के हालात को देखते हुए स्कूलों के समय में किया गया बदलाव, 26 मई तक कक्षा 5 की स्कूल बंद, सुबह 10:30 बजे तक चलेंगी 6 से 8 तक की कक्षाएं। लखनऊ में सभी स्कूलों में समर वेकेशन के आदेश, लगातार जारी लू के भीषण प्रकोप को देखते हुए लखनऊ के डीएम ने दिए आदेश।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
11: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाइयों और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है वादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, या मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम,

0: आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: ईंधन संरक्षण की दिशा में लखनऊ हाईकोर्ट के जजों की शानदार पहल, 50 से अधिक जज और न्यायिक अधिकारी साइकिल से पहुंचे कोर्ट, लोगों को भी किया जागरूक। BSF की महिला पर्वतारोहियों ने रच दिया इतिहास, मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा, गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। केदारनाथ यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्ड्स किए ध्वस्त, एक महीने में बाबा के धाम पहुंचे 7.5 लाख यात्री, हर रोज 25 से 30 हजार के बीच पहुंच रहे हैं भक्त। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश के साथ मौसम हुआ सुहाना, तापमान में घुली ठंडक, पहाड़ों के बीच दिखा खूबसूरत नजारा। सऊदी अरब की फोर्स ने मक्का में दिखाई अपनी ताकत, जमीन हवा चारों तरफ से हज यात्रियों को मिलेगी हाई सिक्योरिटी, परेड में कई तरह की ड्रिल्स की गई। नेटफ्लिक्स पर आज से धुरंधर के रॉ और अनदेखे वर्जन की धूप, रोमांचक दुनिया में ले जाएगी ये फिल्म, देखिए ताबड़तोड़ एक्शन।

नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के हवाई ब्रह्मास्त्र की, उन हथियारों की जो आसमान में उड़ान भरकर दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करने में सक्षम रखते हैं। तो देखिए, करीब एक महीने से भी कम समय में डिफेंस सेक्टर की भारतीय एजेंसियों ने ऐसे कई हथियारों के सफल परीक्षण किए हैं जो इस्तेमाल में आएंगे तो दुश्मनों के छक्के जरूर छुड़ा देंगे। इनमें भारत का वायु अस्त्र वन शामिल है, तो सूर्यास्त्र भी है, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज भी है, तो अनमैन्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल जैसे सिस्टम भी मौजूद है जो भारत की ड्रोन क्षमता और मिसाइल मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा रहे हैं। खास बात यह भी है कि ये तमाम हथियार स्वदेशी हैं, जिससे ये पता चलता है कि देश डिफेंस सेक्टर में कितना आत्मनिर्भर हो रहा है और साथ ही साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स में भी दुनिया के दिग्गज देशों की कतार में वो खड़ा हो सकता है। हम आपको इस स्पेशल शो में, अपने इस खास शो में ऐसे कई हथियारों के बारे में आज विस्तार से बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, सबसे पहले बात वायु शस्त्र वन की भी करेंगे जिसे भारत में ही विकसित किया जा रहा है। ये एक ऐसा आत्मघाती ड्रोन है जो कई प्रकार की खास खूबियों से लैस है और खासतौर से सरहदी इलाकों में दुश्मनों को बेदम करने में सक्षम होगा। देखिए, भारत के हवाई ब्रह्मास्त्र वायु शस्त्र वन के बारे में हमारी एक खास रिपोर्ट।

भारत की सैन्य ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। जमीन से आसमान तक और समंदर की सतह से लेकर सुदूर गहराइयों तक दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए भारत की क्षमता में इजाफा हो रहा है। चाहे दुर्गम पहाड़ी इलाके हों या जंग का पारंपरिक मैदान, हर जगह भारतीय सेना अपने स्वदेशी हथियारों की बदौलत हर तरह के आक्रमण को विफल करने में सक्षम है। इसकी वजह यह है कि भारत के पास अब ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिनकी सटीक और अचूक मारक क्षमता किसी भी प्रकार के हमले का करारा जवाब दे सकती है। भारत के पास मौजूद दमदार साधनों की इस लिस्ट में अब एक और ऐसे हथियार का नाम जुड़ गया है जिसने टेस्टिंग के दौरान ये साबित कर दिया है कि आने वाले समय में ये कितना कारगर हो सकता है। इस हथियार का नाम है वायु अस्त्र 1, जिसे हवाई ब्रह्मास्त्र भी कहा जा सकता है। ये ऐसा आत्मघाती ड्रोन है जो बेमिसाल खूबियों से लैस है। वायु अस्त्र का हाल ही में राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड में जोशीमठ के मलारी में सफल परीक्षण किया गया। वायु अस्त्र 1 वास्तव में लॉयट्रिंग म्यूनिशन है, जिसे आमतौर पर कामिकेज ड्रोन या सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। ये एक मानव रहित हवाई हथियार है। ये ड्रोन और मिसाइल का मिला जुला रूप है। जब इसे लॉन्च किया जाता है तो ये दुश्मन के इलाके में कुछ देर तक मंडराता रहता है। अपने कैमरों और सेंसर की मदद से ये छिपे हुए लक्ष्यों की खोज करता है, फिर सटीक लक्ष्य मिलने पर उससे टकराकर धमाके के साथ उसे उड़ा देता है। इस सिस्टम को जैसे ही दुश्मन के ठिकाने या रडार की भनक मिलती है तो एक गाइडेड मिसाइल की तरह उस पर हमला कर देता है और टकराकर उसे तो नष्ट करता ही है, खुद को भी नष्ट कर देता है। हालांकि मिशन रद्द होने पर इसे रिकवर किया जा सकता है और इससे दोबारा हमला किया जा सकता है। अहम बात यह है कि इस वायु अस्त्र 1 को पुणे में डिफेंस सेक्टर की भारतीय कंपनी NIBE ने विकसित किया है। इस तरह ये हथियार देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया है। इस वायु अस्त्र की खासियत ये भी है कि ये 10 किलोग्राम वारहेड के साथ उड़ान भर सकता है। इसकी क्षमता करीब 100 किलोमीटर तक लग

0: समय के मुताबिक तैयार कर रही है, जिसमें छोटे से छोटे हथियार तक को धार दी जा रही है। इसी कड़ी में भारत ने स्वदेशी ग्लाइड वेपन तारा का पहला सफल परीक्षण किया। तारा का पूरा नाम है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। ये भारत का पहला स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। आसान भाषा में समझा जाए तो तारा एक ऐसा सिस्टम है जो किसी साधारण बम को स्मार्ट ग्लाइड बम में तब्दील कर देता है। तारा ग्लाइड वेपन किट से न सिर्फ हथियार की रेंज में बढ़ोतरी होती है, बल्कि सटीकता भी सुनिश्चित होती है। फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद ये सिस्टम एरोडायनामिक लिफ्ट और गाइडेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके एक आम फ्री फॉल बम के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी तय करता है, साथ ही हमले की सटीकता को भी बेहतर बनाता है। स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का ये परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि तारा भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो अपने पुराने बमों को सटीक और दूर मार करने वाले हथियार में बदल सकते हैं। ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा में विंग्स, कंट्रोल सरफेस और एक बेहतरीन गाइडेंस पैकेज लगाया जाता है। इससे पुराने बम हवा में लंबी दूरी तक ग्लाइड करके जा सकते हैं और बेहद सटीक निशाना लगा सकते हैं। तारा में हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट गाइडेंस दोनों शामिल है। इससे सटीकता बहुत ज्यादा रहती है। विदेशी सिस्टम की तुलना में तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम बेहद सस्ता भी है। इससे वायुसेना के पास पड़े लाखों पुराने बमों को आधुनिक हथियारों में बदला जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों के पास ये तकनीक है। अमेरिका के पास JDM और J-100 है। ये साधारण अनगाइडेड बमों को प्रीशियस गाइडेड बम में तब्दील करते हैं। रूस के पास UMPK ग्लाइड बम किट है, जो उसने यूक्रेन युद्ध में अपने साधारण बमों को ग्लाइड करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसराइल के पास स्पाइस 250 और स्पाइस 2000 जैसे बम प्रणालियां हैं। इनमें AI पर आधारित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होमिंग सीकर लगा है। भारत ने इसराइल से ये किट खरीदी है। फ्रांस के पास AASM हैमर रॉकेट बूस्टर है। वहीं तुर्की के पास HGK किट है, जो तारा की तरह ही काम करती है। इंडियन एयरफोर्स के लिए तारा जैसे सिस्टम भविष्य में कुछ ऐसे स्ट्राइक मिशनों के लिए एक सस्ता विकल्प साबित हो सकते हैं, जिनके लिए महंगी क्रूज मिसाइलों या उन्नत स्टैंड ऑफ हथियारों की जरूरत नहीं होती। स्टैंड ऑफ वो हथियार होते हैं जिन्हें काफी दूर से दुश्मन की नजर।
1: तो हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Hey Buena.
3: La Que Buena.
2: ESPN Radio.
4: We know LeBron has to be the best player on the planet to
2: get The Daily.
5: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
2: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
7: News Today. Achhi khabar, sachi khabar.
0: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. To achhi

0: सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको हैरान भी कर देंगे।
2: इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मानना पड़ेगा कि किसी भी पुल को पार करने के लिए कई और तरीके भी हो सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स पुल को पार करने के लिए ब्रिज के ऊपर से जाने के बजाय उसके नीचे से उछल कूद करते हुए गुजर रहा है। शख्स पुल के नीचे लगे खंभों और पोल को पकड़कर झूलते हुए ब्रिज को पार कर रहा है। वीडियो में शख्स जितनी आसानी से पुल को पार करता दिख रहा है, उतना आसान ये काम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस शख्स की फिटनेस वाकई कमाल की है। शख्स पुल को न सिर्फ पार करते हुए जाता है, बल्कि वो उसी पुल पर ठीक वैसे ही लटकते हुए वापस भी आता है। जंगल सफारी के इस वीडियो को देखकर यूजर्स हैरान हैं। वीडियो में एक जंगल नजर आ रहा है। जीप में बैठी लड़की ने जंगल सफारी के दौरान वीडियो बनाया और तभी नजर आता है कि एक हाथी उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। हाथी जब काफी करीब आता है तो लड़की डर जाती है और जीप चालक को गाड़ी भगाने के लिए बोलने लगती है। कुछ सेकंड के लिए हाथी रुक जाता है, मगर फिर उनके पीछे आने लगता है। जीप में मौजूद आदमी भी गाड़ी भगाने के लिए बोलने लगता है।

0: वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मामला एक डोसा दुकानदार और उनके सबसे अनोखे कस्टमर से जुड़ा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यस्त सड़क के किनारे एक डोसे की दुकान है, जहां तवे से ठीक पास एक सांड बड़े ही धैर्य के साथ खड़ा है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसे दुकान का पूरा मेन्यू जबानी याद है और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। आमतौर पर दुकानदार जानवरों को भगा देते हैं, लेकिन इस डोसे वाले ने तो जो किया उसने सभी का दिल जीत लिया है। आप देखेंगे कि दुकानदार ने बड़े ही प्यार से तवे पर मक्खन मारकर एक बढ़िया कुरकुरा डोसा तैयार किया और सीधे अपने इस चार पैरों वाले स्पेशल गेस्ट को परोस दिया। सांड ने भी बड़े चाव से डोसा खाया और अपनी पूंछ हिलाकर वेंडर का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर दो बहनों ने इजिप्ट लीबिया के बॉर्डर पर बने अपने छोटे से घर की एक झलक लोगों को दिखाई है। झोपड़ी जैसा ये घर देख लोगों को लगा कि बहनें गरीब हैं और मुश्किल में अपने दिन गुजार रही हैं। लेकिन जब घर को अंदर से देखा गया तो सब दंग रह गए। घर के अंदर आधुनिक और लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक देखने को मिली। कमरे में सॉफ्ट लाइटिंग, कम्फर्टेबल सोफा, बड़े बड़े बेड, फुली इक्विप्ड किचन, वाईफाई, एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं और खूबसूरत डेकोरेशन सब कुछ यहां मौजूद थी। बहनों ने बताया कि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल से घर तैयार किया है, जिसमें मिट्टी और नमक का इस्तेमाल किया गया है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar, plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
1: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: ईंधन संरक्षण की दिशा में लखनऊ हाईकोर्ट के जजों की शानदार पहल, 50 से ज्यादा जज और न्यायिक अधिकारी साइकिल से पहुंचे कोर्ट, लोगों को किया जागरूक। बीएसएफ की महिला पर्वत आरोहियों ने रचा इतिहास, मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा, गृहमंत्री अमित शाह ने दी बधाई। केदारनाथ यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्ड्स किए ध्वस्त, एक महीने में बाबा के धाम पहुंचे 7.5 लाख यात्री हर रोज, 25 से 30 हजार के बीच पहुंच रहे भक्त।
7: जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश के साथ मौसम हुआ सुहाना, तापमान में घुली ठंडक, पहाड़ों के बीच दिखा खूबसूरत नजारा।
6: पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंचे साइप्रस के राष्ट्रपति, दोनों देशों के संबंधों की मजबूती को लेकर चर्चा, शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ करेंगे औपचारिक मुलाकात।
7: सऊदी अरब की फोर्स ने मक्का में दिखाई अपनी ताकत, जमीन हवा चारों तरफ से, हज यात्रियों को मिलेगी हाई सिक्योरिटी, परेड में कई तरह के ड्रिल। नेटफ्लिक्स पर आज से धुरंधर के रॉ और अनदेखे वर्जन की धूम रोमांचक दुनिया में लेकर जाएगी फिल्म, देखिए ताबड़तोड़ एक्शन।
5: एनईसीसी संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
6: सज गए हैं खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराश। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट 25 अच्छी खबरों के साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: इसरो का दुनिया ने माना लोहा, चंद्रयान 3 मिशन को मिला प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक पुरस्कार। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने ग्रहण किया अवार्ड, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एरोनॉटिक्स की तरफ से दिया जाता है ये सम्मान। क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसरो और चंद्रयान 3 टीम को दी बधाई, इसरो की ओर से ये पुरस्कार स्वीकार करना मेरे लिए गर्व की बात, यह कहा। सऊदी अरब में हज यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर, सऊदी सिक्योरिटी फोर्स ने मक्का में किया परेड। परेड में फोर्स ने एडवांस व्हीकल्स और सिक्योरिटी एविएशन का भी प्रदर्शन किया, साथ ही परेड में कई ड्रिल्स प्रस्तुत की गई।
7: चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 32 दिन में 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम यात्रा। केदारनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक 7.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, श्रद्धालुओं ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। एमपी के धार में भोजशाला में सुबह सुबह हुई पूजा, भगवान की उतारी गई भव्य आरती। पुरी में भगवान जगन्नाथ की उतारी गई विशेष आरती, श्रद्धालुओं ने लगाए भगवान जगन्नाथ के जयकारे।
6: गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। राजौरी में खेल को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफ की पहल, जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पहली पीर पंजाल शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अहमदाबाद में पुलिस ने पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया, बड़ी संख्या में बच्चे हुए शामिल। पैलेस ऑन व्हील्स ने रचा इतिहास, मई महीने में पहली बार फुल चार्टर के साथ जयपुर पहुंची राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध शाही ट्रेन।
7: प्रयागराज में 45 के पार पहुंचा तापमान, सड़कों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। प्रयागराज में गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए नगर निगम की सराहनीय पहल, चौराहों पर मिट्टी के घड़े में पानी की व्यवस्था। मुरादाबाद में भी लगातार बढ़ रहा है तापमान, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। एमपी के छतरपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप, गर्मी के चलते घटी पर्यटकों की संख्या। ओडिशा के मयूरभंज में बढ़ा तापमान, सड़कों पर पसरा सन्नाटा।
6: आर माधवन की नई फिल्म जीडीएन का ऐलान, धांसू पोस्टर रिलीज, जीडी नायडू की कहानी से उठेगा पर्दा। नेटफ्लिक्स पर आज से धुरंधर के रॉ और अनदेखे वर्जन की धूम रोमांचक दुनिया में लेकर जाएगी फिल्म, देखिए ताबड़तोड़ एक्शन। फिल्म चांद मेरा दिल सिनेमाघरों में हुई रिलीज, फिल्म में लक्ष्य अनन्या पांडे का अहम रोल। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर फिल्म सिस्टम रिलीज. फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा का लोक अभियोजक का रोल, जबकि ज्योतिका का स्टेनोग्राफर की निभाई है उन्होंने भूमिका. जी प्राइम पर रिलीज हुई वेब सीरीज सतरंगी बदले का खेल. फिल्म में अंशुमन पुष्कर, कुमुद मिश्रा, महविश की मुख्य भूमिका.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम
7: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है.
6: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ.
7: पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट.
6: केदारनाथ में आस्थान बनाया नया कीर्तिमान, एक महीने में बाबा के धाम में पहुंचे 7.5 लाख श्रद्धालु.
7: अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की कामयाबी को सम्मान, मिशन चंद्रयान 3 को मिला गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड.
6: बीएसएफ की महिला पर्वतारोहियों ने बनाया नया कीर्तिमान, मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा.
7: बॉबी देओल की बंदर का ट्रेलर रिलीज हुआ, अनुराग कश्यप की फिल्म को लेकर बढ़ी दर्शकों की बेसब्री, 5 जून को बड़े पर्दे पर देगी दस्तक.
6: तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की. आज फिल्मी फ्राइडे है और कई फिल्में आप सबके सामने होंगी, कुछ थिएटर्स में तो कुछ ओटीटी पर रिलीज हुई हैं. अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की जोड़ी बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार है. इनकी फिल्म चांद मेरा दिल सिनेमाघरों में आ चुकी है, तो वहीं धुरंधर का जलवा भी अब भी कायम है.
7: पिछले साल दिसंबर के महीने में रिलीज हुई पहली फिल्म धुरंधर को अब नेटफ्लिक्स पर दोबारा से रिलीज किया गया, लेकिन अलग अंदाज में. इस बार दर्शकों को फिल्म का एक बिल्कुल नया अनकट और रॉ अंदाज देखने को मिलेगा, जो कि पहले कभी भी नहीं दिखाया गया. बात कर लेते हैं चांद मेरा दिल फिल्म की. तो ये एक रोमांटिक फिल्म है. कॉलेज से शुरू हुआ प्यार कई चुनौतियों का सामना करता है, जमाना कई तरह से इस प्रेमी जोड़े की परीक्षा लेता है. ये फिल्म आपको कॉलेज के दिनों की याद दिला देगी.
4: चांदनी रात में खोया हुआ दिल, हल्की हवा में बहती महक और वो पहला प्यार जो कभी खत्म नहीं होता, ठीक यही जादू लेकर फिल्म चांद मेरा दिल ने सिनेमा घरों में दस्तक दे दी है. फिल्म की कहानी में इंजीनियरिंग कॉलेज की चहल पहल भरी जिंदगी में दो दिल मिलते हैं, फिर सपनों से शुरू हुआ सफर हकीकत से गुजरता है. अनन्या पांडे और लक्ष्य की जोड़ी इस बार कॉलेज के उन सुनहरे दिनों को, पहली मुलाकातों को, बेफिक्र हंसी को और प्यार की उस मिठास को लेकर आई है जो हर किसी के दिल में बसता है. तभी तो स्क्रीन पर चांदनी और आरो की कहानी दिलों को छू रही है. दर्शकों की माने तो फिल्म की शुरुआत ही इतनी खूबसूरत है कि पहले 10 मिनट में दर्शक फिल्म के साथ रोमांटिक सफर पर निकल पड़ते हैं. फिल्म का म्यूजिक और दोनों लीड एक्टर्स की ताजा केमिस्ट्री इस फिल्म को प्यारा रोमांटिक गिफ्ट बना रही है. फिल्म में प्यार की मिठास के साथ आज की युवा पीढ़ी की जिम्मेदारियों, सपनों और रिश्तों के बीच के संतुलन को भी बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया गया है. जिंदगी के छोटे छोटे पलों को बेहद खूबसूरती से पेश करती ये फिल्म आपको मुस्कुराते हुए थिएटर से बाहर भेजेगी. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
6: अपने करियर की दूसरी पारी में पर्दे पर कमाल कर रहे बॉबी देओल अब अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर सुर्खियों में हैं. अनुराग कश्यप के डायरेक्शन वाली उनकी फिल्म बंदर रिलीज होने के लिए तैयार है. कल इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया. ट्रेलर से अंदाजा लग रहा है कि बंदर में बॉबी देओल ने दमदार किरदार निभाया, एक ऐसा किरदार जिससे आपको मोहब्बत हो सकती है और नफरत भी हो सकती है. 5 जून को ये रिलीज होगी.

0: किससे डर लगता है?
1: अपने आप से।
0: क्यों?
1: कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, कभी लगता है कि मैं बहुत बुरा।
2: बॉबी देओल की फिल्म बंदर के इस धमाकेदार ट्रेलर ने इस फिल्म के लिए दर्शकों की बेसब्री को और बढ़ा दिया।
0: सुंदर हो तुम।
1: हाँ, स्कूल में सब कहते थे मैं हीरो बनूंगा।
0: मैं बनाऊंगी तुम्हें हीरो।
2: एक रॉक स्टार जैसा अंदाज, चेहरे पर सुपरस्टार वाला स्वैग लिए बॉबी देओल का ये किरदार इस फिल्म को और दिलचस्प बनाने का वादा कर रहा है।
0: हर अखबार के फर्स्ट पेज पे हमारी फोटो होगी।
1: कैसे?
2: अनुराग कश्यप की फिल्म बंदर इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। लंबे वक्त से फैंस इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। कल बंदर का शानदार ट्रेलर रिलीज हुआ तो फिल्म के लिए फैंस का क्रेज और बढ़ गया। ट्रेलर के साथ ही सामने आ गया है बॉबी देओल का वो वर्सेटाइल अंदाज जो उनके करियर की दूसरी पारी में प्रमुखता से नजर आ रहा है। बंदर के टीजर में बॉबी देओल पुराने जमाने के डिस्को डांसर जैसे लुक में नजर आ रहे हैं। करीब 3 मिनट के ट्रेलर की शुरुआत में बॉबी किसी थाने में बैठे हैं और वो किसी मुसीबत में फंसे दिख रहे हैं। ट्रेलर में फिल्म में आगे आने वाले ट्विस्ट की झलक भी दिख रही है। अगले ही शॉट में वो चमचमाती जैकेट में स्टेज पर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। इस ट्रेलर को देख अंदाजा लग रहा है कि इस फिल्म की कहानी काफी इंटेंस और उलझनों से भरी हुई है। बंदर में बॉबी का किरदार बता रहा है कि वो अब पर्दे पर हीरो बनकर नहीं एक एक्टर बनकर आ रहे हैं जिसमें एक्टिंग की भूख है। बॉबी की इस भूख को बॉलीवुड ने आश्रम सीरीज के बाद ही पहचानना शुरू कर दिया था जो आने वाली फिल्मों के साथ और बढ़ता चला गया। और अब बंदर उनकी इस अदाकारी की भूख की अगली कड़ी है जिसे फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपने अनुभव से और बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये क्राइम थ्रिलर फिल्म रियल लाइफ घटनाओं और मी टू मूवमेंट से प्रेरित है। इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक झूठा आरोप किसी के पूरे करियर और उसके सम्मान को तबाह कर सकता है। ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि बॉबी किसी फेक डेटिंग ऐप के चक्कर में पड़कर जेल पहुंच जाते हैं। अब इन आरोपों को बॉबी कैसे झूठा साबित करते हैं, कैसे जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आते हैं, इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है। बंदर 5 जून को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। फिलहाल ट्रेलर ने फिल्म में दिखने वाली टेंशन और ड्रामा की झलक दिखाकर दर्शकों की दिलचस्पी तो बढ़ा ही दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड इज टुडे।
3: कुछ वेब सीरीज दर्शकों पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाती है कि एक सीजन खत्म होते ही दर्शक दूसरे सीजन का इंतजार करने लगते हैं। ऐसी एक सीरीज है गुल्लक। इसके सीजन 5 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि इस बार मिश्रा परिवार की कहानी में कुछ नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा।
4: अरे पिंकी, ना फोन किया ना बताया।
5: कैसे जिया जी?
6: शौक में है।
7: हर मिडिल क्लास घर में एक गुल्लक होता है और उस गुल्लक में सिर्फ पैसे नहीं बल्कि हजारों यादें, अधूरे सपने, छोटी छोटी खुशियां और परिवार की अनगिनत कहानियां छिपी होती हैं।
4: तो आपका मंचिया नाम भी सोच रखा है
6: क्या?
4: मुफ्त मुरादाबाद।
7: अब एक बार फिर वही अपनापन, वही तकरार, वही चाय पर होने वाली बातें और दिल को छू लेने वाले पल लेकर मिश्रा परिवार लौट आया है क्योंकि गुल्लक अपने 5वें सीजन के वापस आ चुका है।
6: निर्माण आवास योजना आई है।
7: मिश्रा निवास की दुनिया इस बार भी बिल्कुल अपने घर जैसी लगती है जहां माँ की डांट में प्यार है, पिता की फिक्र में जिम्मेदारी है और भाइयों की नोक झोंक में अपनापन छिपा है।
6: बेटे तो आप ही के ऊपर गए ना।
7: लेकिन इस नए सीजन में बहुत कुछ बदलता भी दिखाई देता है। नया पेंट हुआ घर, अपडेटेड वाईफाई, बदलते रिश्ते और समय के साथ खुद को ढालने की कोशिश करता एक साधारण मिडिल क्लास परिवार। यही इस सीजन की सबसे खूबसूरत बात है कि बदलावों के बीच भी मिश्रा परिवार अपनी जड़ों को संभाल कर रखना चाहता है। इस बार अनु और अमन की जिंदगी में भी भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। उनके संघर्ष, जिम्मेदारियां और अंदर चल रही उथल पुथल कहानी को और ज्यादा गहराई देती है।
6: मुरादाबाद से तो मैं ही नहीं,
4: मुंह फटता है।
7: साल 2019 में शुरू हुई गुल्लक ने बहुत जल्द दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली थी।
8: सरदार जी को
7: पहले सीजन में मिश्रा परिवार की रोजमर्रा की मिडिल क्लास परेशानियों को दिखाया गया था। कभी पैसों की तंगी, कभी भाइयों की लड़ाई, तो कभी छोटी छोटी खुशियों का जश्न।
5: अरे भाई, हमारे धंधे में हम रिस्क नहीं ले सकते।
7: दूसरे सीजन में जिम्मेदारियों और रिश्तों के भावनात्मक पहलुओं को दिखाया गया। तीसरे सीजन में बदलते रिश्ते और सपनों की उड़ान देखने को मिली, जबकि चौथे सीजन ने करियर, भावनात्मक बदलाव और परिवार के बदलते समीकरण को बेहद खूबसूरती से पेश किया। हर सीजन के साथ गुल्लक सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं रही, बल्कि हर उस परिवार की कहानी बन गई जिसने जिंदगी को छोटी छोटी खुशियों में जीना सीखा है।
8: मिली है ना तुम्हें वो जो तुम्हें दिलो जान से चाहिए थी?
6: कौन,
8: क्या नाम है उस उल्टा का?
2: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: पिरसी,
6: पायरेसी है।
9: अरे प्राइवेसी यार पापा।
6: हाँ वही।
3: और चलिए बात करते हैं कान फिल्म फेस्टिवल में हिंदुस्तान के जलवे की।

0: देखिए, कान फेस्टिवल के मंच पर इन दिनों दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। दमदार फिल्मों का प्रीमियर हो रहा है, तो वहीं दुनिया भर के अभिनेता अभिनेत्रियां अपने अंदाज से रेड कार्पेट की रौनक को बढ़ा रहे हैं। इस खास मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और भी कई स्टार्स कान में पहुंचे, जिनके ग्लैमरस लुक्स ने सभी का ध्यान खींचा। मौनी रॉय ने कान में दूसरे दिन बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनी, जिसमें वो बेहद ग्लैमरस और एलिगेंट नजर आईं।
1: तो वहीं जैकलीन भी कान फेस्टिवल में पहुंची हुई है, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। उनका फैंस को ये लुक काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। ये मंच फिल्मों का है, तो यहाँ एक से बढ़कर एक फिल्म दस्तक दे रही है।
0: देखिए, भारत से भी कई फिल्में पहुंची, जिसमें छत्तीसगढ़ की आदिवासी लड़की के सपनों संघर्ष की कहानी दिखाने वाली आरजे बस्तर शामिल है, जिसने 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी दमदार प्रस्तुति से दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीत लिया।
1: उन्यासीवे कान फेस्टिवल में मौनी रॉय अपनी फिल्म के टीजर और पोस्टर लॉन्च के लिए पहुंची हुई है। कान फेस्टिवल में बॉम्बे टॉकीज के पोस्टर और टीजर लॉन्च किया गया, और इस लॉन्च के लिए रेड कार्पेट पर मौनी रॉय गाउन पहनकर पहुंची। हर किसी की नजरें बस उन पर टिकी हुई है। वैसे तो मौनी के लुक्स हमेशा ही स्टाइलिश लगते हैं, लाइमलाइट में बने होते हैं, लेकिन उनका ये लुक काफी वायरल हो रहा है।
0: और चलिए अब बात करते हैं चिलचिलाती गर्मी से लेकर मानसून के फुहारों के इंतजार की।

0: देखिए, देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के बीच में राहत की उम्मीद दिखाई देने लगी है क्योंकि मौसम विभाग ने गुड न्यूज दी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से पहले आगे बढ़ सकता है। अगर मौजूदा परिस्थितियां बनी रही तो मानसून 2 से 3 दिन पहले यानी 23 से 24 मई के आसपास अंडमान तट पर दस्तक दे सकता है, जबकि केरल में इसकी एंट्री 26 मई के आसपास होने की उम्मीद है। यानी इस वीकेंड दक्षिण भारत के कुछ तटीय इलाकों में मानसून की एंट्री होगी। हालांकि मैदानी इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन उम्मीद ही है कि इस बार मॉनसून समय से पहले यहां पर दस्तक देगा। देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के बीच राहत की उम्मीद दिखने लगी है क्योंकि मौसम विभाग ने गुड न्यूज दी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्य से पहले आगे बढ़ सकता है। अगर मौजूदा परिस्थितियां बनी रही तो मॉनसून 2 से 3 दिन पहले यानी 23 से 24 मई के आसपास अंडमान तट पर दस्तक दे सकता है।
1: मौसम को लेकर गुड न्यूज ये है कि वीकेंड पर मिलने वाली है गर्मी से राहत, क्योंकि तपती गर्मी के बीच मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग की माने तो मॉनसून 23 से 24 मई को अंडमान तट पर दस्तक दे सकता है। वहीं केरल में 26 मई को मॉनसून के पहुंचने की संभावना है, जबकि उत्तर भारत में 22 जून के आसपास मॉनसून एंट्री ले सकता है। जाहिर है मानसून के तय वक्त से पहले आने की खबर ने गर्मी से जूझते लोगों को राहत तो दे ही दी है। मानसून बेहद तेजी के साथ भारत में एंट्री लेने के लिए तैयार हो रहा है। IMD के मुताबिक मानसून काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। फिलहाल मानसून की अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी में मौजूदगी देखी जा रही है। मानसून श्रीलंका के तट पर दस्तक दे चुका है और अब मानसून के केरल में 25-26 मई को आने की उम्मीद है। मध्य भारत के राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 15 से 20 जून के बीच मानसून प्रवेश ले रहा है। बिहार तक भी मानसून 15 जून के आसपास पहुंचेगा। राजस्थान में 15 जून से प्रवेश शुरू होकर जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरे राज्य में मानसून पहुंच जाएगा। यूपी में 15 से 22 जून तक मानसून के दस्तक देने की उम्मीद है। पूर्वी यूपी में मानसून 18 से 20 जून तक पहुंच रहा है। मध्य यूपी में इसके 20 से 25 जून तक एंट्री लेने की संभावना है। वहीं पश्चिमी यूपी में 25 से 30 जून तक मानसून का प्रवेश होगा। गुजरात में मानसून का असर 20 से 25 जून के बीच नजर आएगा, तो दिल्ली NCR में 25 से 30 जून के बीच मानसून के आने की उम्मीद जताई जा रही है।
2: केरला के लिए हमारा 26 का हमने प्रेस रिलीज इशू किया था 26 में, और विद मॉडल अगर जैसे प्लस माइनस 4 डेज होता है। बाकी जो अगर आप जो ब्लू लाइन देख रहे हैं तो ये वो लाइंस है जो यहाँ पे अभी मानसून एडवांस हो चुका है। तो ये 16 मई को हमारा फर्स्ट एडवांस हुआ था, जिसमें हमने कुछ हिस्से अरबियन सी के ब्यो बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड के कुछ हिस्से जहाँ तक हमने कवर किए थे। उसके बाद सेकंड हमारा था वो 18 मई को था। 18 मई को हमने इंटायर अंडमान निकोबार कवर किया, ब्यो बंगाल के कुछ हिस्से कवर हुए, साउथ अरबियन सी के कवर हुए। और उसके बाद हमारा यही अनुमान है आने वाले कुछ दिनों में ये ब्यो बंगाल के कुछ और हिस्से कवर कर सकता है। और स्टार्टिंग अगर आप इधर की करते हैं तो जब 26 मई जहाँ जब आगे केरला में ऑनसेट मानसून होता है, तो उसके बाद हम फर्दर बताते हैं कि आने वाले दिनों में वो आगे कैसे प्रोग्रेस करेगा।
1: हालांकि IMD ये भी कह रहा है कि मानसून के जल्दी आने का मतलब ये नहीं है कि पूरे सीजन में अधिक बारिश होगी। दरअसल ये अलनीनो की सक्रियता पर निर्भर करेगा। सामान्य तौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार इसकी शुरुआती चाल तेज नजर आ रही है। ऐसे में उत्तर भारत में जून के तीसरे सप्ताह से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मानसून की शुरुआती अच्छी रफ्तार किसानों के लिए राहत भरी मानी जा रही है। धान की रोपाई समय पर शुरू हो सकती है। बारिश आने से सूखी जमीन को नमी मिलेगी और भूजल स्तर में भी सुधार होने की संभावना है। तपती गर्मी से जूझते आधे हिंदुस्तान को अब जल्दी ही राहत मिलने की उम्मीद है। यही वजह है कि इस समय लोगों की निगाहें मानसून की प्रगति पर टिकी हुई है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: मानसून के तय वक्त से आने से पहले की खबर सुनते ही एक ठंडक सी महसूस होने लगती है। अमूमन मानसून जून की शुरुआत या मई के आखिर में 2-3 दिनों में केरल में दाखिल होता है, लेकिन इस बार ये 26 मई या उससे भी 1-2 दिन पहले आ सकता है। दक्षिण भारत में प्री मानसून की बारिश हो रही है, जो बता रही है कि मानसून तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है।
3: ऐसे कई और कारण हैं जो संकेत दे रहे हैं कि मानसून की गति और दिशा बिल्कुल सही है। और इसी को देखते हुए कई राज्यों ने मॉनसून के लिए जरूरी तैयारी शुरू कर दी है। मॉनसून की आहट मिलते ही तमिलनाडु के कई इलाकों में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है।

0: हीट वेव और लू के थपेड़ों के बीच उत्तर भारत की अग्नि परीक्षा जारी है। कई शहरों का पारा 47 डिग्री को पार कर चुका है। जब पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में तप रहा है, ठीक उसी वक्त दक्षिण भारत के आकाश में एक अलग ही हलचल शुरू हो चुकी है। समुद्र से उठती नम हवाएं, गरजते बादल बता रहे हैं कि मॉनसून दस्तक देने वाला है। रविवार तक मॉनसून के केरल में एंट्री होने की उम्मीद है, वो भी तय वक्त से 5 दिन पहले। इससे पहले ही दक्षिण भारत में प्री मॉनसून की बारिश हो रही है। मॉनसून की आहट मिलते ही एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। तमिलनाडु में रानीपेट में एनडीआरएफ की टीमें एक्टिव हो चुकी हैं। एनडीआरएफ के जवानों को मुश्किल हालात से निपटना और लोगों की जान बचाने का हुनर पता है। इस काम में इनकी मदद खोजी कुत्ते करते हैं जो कि पूरी तरह से ट्रेंड है। मॉनसून के बादल जब बरसते हैं तो कई कई दिनों तक थमते नहीं, ऐसे में कई बार हालात चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं। तब काम आती है इन जवानों की तैयारी। ये जवान अपने साथ कटर, लाइफ सेविंग जैकेट और बोट समेत हर वो जरूरी चीज लेकर गए हैं जिनकी इन्हें जरूरत पड़ सकती है। समय से पहले आ रहा मॉनसून उम्मीद की नई किरण भी लेके आ रहा है। सही तैयारी के साथ ये बारिश वरदान बनेगी, जल संकट कम होगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इन दिनों मौसम का मिजाज कहीं नर्म तो कहीं बेहद गर्म है। देश का ज्यादातर मैदानी हिस्सा 40 से 45 डिग्री का टॉर्चर झेल रहा है, तो वहीं कश्मीर के ऊपरी इलाकों में मौसम कूल बना हुआ है।
2: सिर पर आग उगलता सूरज और सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल, इस चुभती जलती गर्मी से हर कोई बेहाल है। गर्मी के कारण ये हाल तब है जब गर्मी के सबसे मुश्किल 9 दिनों यानी अभी नौतपा की शुरुआत भी नहीं हुई है। देश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है और कुछ जगहों पर तापमान 48 डिग्री पहुंच गया है। दिल्ली हो कि नागपुर, कई शहरों में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। यूपी में चलचलाती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यहाँ के कई शहरों में सुबह 8 बजे से ही पारा 30 से 35 डिग्री के पार पहुंच गया है। लिहाजा सेहत दुरुस्त रखने के लिए कूल उपाय खोजे जा रहे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर का पारा 46 डिग्री पार कर चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अगले 3-4 दिन गर्मी का ऐसा ही आलम रहने वाला है। जयपुर में गर्मी से कोहरा मचा हुआ है। मई की चिलचिलाती गर्मी में मैदानी इलाकों में जहां लोग परेशान हैं, तो वहीं ऊंचे पहाड़ों पर प्रकृति ने सबको चौंका दिया है। डोजेला पास के पास मीना मार्ग और सोनमर्ग इलाके में ताजा बर्फबारी हुई है। जब मैदानों में 47 डिग्री वाले पारे से पसीना टपक रहा हो, तो कश्मीर के डोजेला की ये तस्वीर ठंडक का एहसास कराती है। ताजा बर्फबारी के बाद मई के दिनों में मौसम यहाँ जनवरी वाला फील दे रहा है। बांदीपुरा जिले के ऊंचे इलाकों, विशेष रूप से गुरेज घाटी और तुलैल सेक्टर में ताजा बर्फबारी हुई है। घाटी की इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने के लिए देश के कोने कोने से सैलानी पहुंच रहे हैं। द्रास में हुई ताजा बर्फबारी ने तो दिसंबर और जनवरी को भी मात दे दिया है। यहां भारी बर्फबारी की वजह से पेड़ पौधे तक जम गए। वहीं ऊंचे इलाकों में बर्फ भाप बनकर उड़ती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर मई की विदाई और मॉनसून की दस्तक के बीच मैदानी इलाकों में जहां गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, तो वहीं पहाड़ों पर मौसम ने करवट लेकर नजारों को और भी खूबसूरत बना दिया है। मॉनसून के इंतजार के बीच गर्मी में सर्दी का एहसास करने के लिए मैदानों के मुसाफिर इन बर्फीले पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तेज धूप, उमस और पसीने से भरी गर्मियों में हर कोई खुद को फ्रेश, कूल और खुशबूदार बनाए रखना चाहता है। यही वजह है कि अब लोगों की पसंद सिर्फ डिओड्रेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वो इत्र और परफ्यूम की ओर भी देख रहे हैं। पहले जहां डियो का ट्रेंड सबसे ज्यादा देखने को मिलता था, वहीं अब लोग लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम और इत्रों की ओर तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं।

0: जयपुर में अब खुशबू का ट्रेंड बदल रहा है। अब लोग खुद को कूल रखने के लिए सिर्फ डिओड्रेंट तक सीमित नहीं रख रहे, बल्कि अब वो इत्र और परफ्यूम की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में तेज धूप, गर्मी और उमस में खुद को कूल और फ्रेश रखना चाहते हैं तो खुशबू से महक रही जयपुर की इस दुकान में चले आइए।
1: गर्मियों में आपको पसीने की स्मेल या किसी भी तरीके के बैड ओडर से बचाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं कोई ना कोई परफ्यूम का, डिओ का और या फिर कोई भी अलग अलग तरीके की फ्रेग्रेंसेस का। अब ऐसे में क्या है, ये ट्रेंड बदलता जा रहा है, चूंकि डिओ लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, उड़ जाते हैं, तो ऐसे में जो लोग हैं वो अभी स्विच कर रहे हैं ज़्यादातर परफ्यूम्स या फिर इत्र इस्तेमाल करने पे। और ऐसे में मैं आपको जयपुर की एक ऐसी दुकान दिखा रही हूँ जो सिर्फ और सिर्फ ये फ्रेग्रेंसेस बनाती है, कस्टमाइज करती है और अलग अलग प्रोडक्ट्स इन फ्रेग्रेंसेस के बेचती है।
0: जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में मौजूद करीब 75 साल पुरानी ये दुकान खुशबू के दीवानों की पहली पसंद बन चुकी है। यहाँ 1000 से ज्यादा खास किस्म के अलग अलग इत्र और परफ्यूम के कलेक्शंस मौजूद हैं। इनमें 100 से ज्यादा प्रीमियम और लग्जरी फ्रेग्रेंस भी शामिल हैं, जिनकी डिमांड जयपुर ही नहीं बल्कि दुबई, लंदन, अमेरिका और पेरिस जैसे शहरों तक रहती है।
2: जैसे लोग बाग पहले डीओ और परफ्यूम ज्यादा यूज करते थे, अब उनके कंपैरिजन में वो कस्टमर अब स्विच होके अतर्स, परफ्यूम, एसेंशियल ऑयल्स, जो एक तो ऑर्गेनिक होते हैं और इफ्रा सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, ना तो कोई उनसे इरिटेशन ना कोई बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं, तो लोग बाग इसकी तरफ भी जा रहे हैं। दूसरी चीज़ इनमें एक तो लास्टिंग, जो जैसे अगर सुबह लगा लिया तो शाम तक अगर खुशबू मेंटेन्ड है तो एक तो वो परफ्यूम्स की तरह काम करते हैं और दूसरी कॉस्ट इफेक्टिव्स भी होते हैं। और आजकल सब वैरायटी के जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती है सब रेंज आजकल सब अवेलेबल है।
0: इस दुकान में ग्राहकों की मांग पर उनके सामने कस्टमाइज्ड परफ्यूम तैयार किया जाता है। कोई फ्लोरल नोट्स पसंद करता है, कोई ऊद और मस्क जैसी रिच खुशबू, तो कोई एक्वाटिक और कूल फ्रेग्रेंस चाहता है। ये इत्र खुशबूदार होने के साथ साथ लंबे समय तक शरीर पर बने रहते हैं। गर्मियों में कूलिंग और रिफ्रेशिंग नोट्स वाले परफ्यूम सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं।
3: वैरायटी बहुत सारे वैरायटीज है, हमें जनरली साउथ में इतनी वैरायटीज देखने को नहीं मिलती है, सो वेरी गुड वैरायटीज ऑफ परफ्यूम्स एंड वेरी ऑल द ब्रांडेड परफ्यूम्स के वो भी इनके पास हैं अवेलेबल एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस एंड दे हैव वेरी गुड प्रेजेंटेशन ऑफ दीज बॉटल्स एंड एवरीथिंग।
0: यहाँ मिलने वाले कई इत्र इतने खास होते हैं कि उनकी एक एक बूंद हजारों रुपए तक की होती है। खस का इत्र करीब 3 लाख रुपए प्रति लीटर तक बिकता है, जबकि गुलाब का इत्र 8 से 10 लाख रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाता है, जबकि रूह कैटेगरी के कुछ खास इत्र 15 से 20 लाख रुपए प्रति लीटर तक बिकते हैं, जिन्हें खास तौर पर VIP ग्राहक पसंद करते हैं।
2: आजकल जो नई जनरेशन है उनको ड्यूब्स बहुत पसंद आ रहे हैं, मतलब कॉस्टली जो परफ्यूम्स अवेलेबल रहते हैं उनके अफोर्डेबल प्राइस में सेम ऑलमोस्ट सेम रेप्लिका अवेलेबल रहते हैं और लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं वो। जैसे अपन किसी का नाम लें, जैसे अपने पास गुलाब है, रू गुलाब है, रू खस है, अब ये तो बहुत प्रीमियम अतर्स हो गए, तो इनकी तो कीमत लाखों रुपए में होती है। जैसे अब इनकी तो लाखों रुपए से स्टार्ट होकर 25-25 लाख रुपए तक भी रू गुलाब है। आज रू गुलाब जो नेचुरल है एकदम एक्सट्रैक्ट, वो 20-22 लाख रुपए किलो तक का अवेलेबल।
0: सदियों पुरानी खुशबू की परंपरा को आज भी संभाले हुए जयपुर की ये दुकान इत्र की एक ऐसी विरासत है जिसकी महक देश से लेकर दुनिया तक फैली हुई है।
1: अलग अलग ऑप्शंस हैं जो आपको फ्रेग्रेंसेस के साथ में मिलेंगे और अगर आप जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में आएंगे तो एक महकती हुई लेन मिलेगी जहां पे आप DR अरोमा देखेंगे और यहां पहुंचेंगे तो ये पूरा कलेक्शन इस जगह पे होगा। कैमरामैन निखिल के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर।
4: जैसा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विदेश यात्रा की बजाय अपने ही देश को एक्सप्लोर करने की अपील की, तो GNT भी आप सभी से अपील कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें भेजिए ताकि हम आपके उन वीडियोस को दिखाएं। हमारे दर्शक भी बड़े ही उत्साह के साथ अपनी जगहों के खूबसूरत वीडियोज भेज रहे हैं, तो चलिए आज आपको उत्तरकाशी के उन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में व्लॉगर बनी एक दर्शक की जुबानी सुनाते हैं कि क्यों आपको उत्तराखंड के इन बेहद खूबसूरत और धार्मिक शहर को एक्सप्लोर करना चाहिए।

0: स्वागत है आपका गुड न्यूज चैनल में। मैं गीता सेमवाल, मैं बुलाना चाहती हूँ आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। हल्की हल्की आजकल ना शाम के टाइम पे ठंड महसूस हो रही है। वाह, कितने सुंदर नजारे हैं, कितनी सुंदर प्रकृति की यहाँ पे खूबसूरती है। आपको ना बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़, चीड़ का घना जंगल, ये सब चीज देखने को मिलता है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में दो धाम है, श्री यमुनोत्री धाम और श्री गंगोत्री धाम। तो आजकल ना काफी अच्छी यात्रा चल रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी यही कहा है कि आप विदेशों में घूमने न जाके भारत की जो जगह है, पर्यटक स्थल है, जैसे उत्तराखंड में चार धाम है, श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम, आप इन जगहों पे आए। इसके अलावा भी उत्तराखंड में न कहीं आपको पर्यटक स्थल देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आजकल यमुनोत्री धाम में और श्री गंगोत्री धाम में, यानी चारों धाम में काफी टूरिस्ट आ रहे हैं। जब हमारे गांव मुखवर में मोदी जी आए थे तो उस टाइम जो ये यात्रा चल रही है, अब ये ग्रीष्म काल में न होते हुए अब ये यात्रा शीत काल में भी चलती है, यानी 12 महीना यात्रा चलती है। तो माननीय मोदी जी ने घाम तापो पर्यटक इसका नाम दिया है। मुखवा के सामने धराली है, हरसिल है, बगोरी है। और अगर आप ट्रैकिंग प्रेमी हैं तो यहाँ पे ना ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए कई जगह है, जैसे दयारा बुग्याल है, गौमुख ट्रैक है, सात आठ ट्रैक है, ऐसे कई अन्य ट्रैक है। अगर आप ट्रैकिंग प्रेमी हैं तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप शीतकाल में यात्रा करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उस टाइम तो और ज़्यादा खूबसूरती आपको देखने को मिलती है, क्योंकि हरसिल में जो है धराली, मुखवा में सेब, राजमा और उसके साथ साथ खुमानी हो गया, नाशपाती हो गया, ये भरपूर मात्रा में आपको देखने को भी और खाने को भी मिलती है। और इसी के साथ साथ एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि वेडिंग डेस्टिनेशन है, जैसे कि त्रिजोगी नारायण है और उत्तरकाशी में बाबा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में है, श्री गंगोत्री धाम में गंगा मैया जी के मंदिर में है, और गंगा मैया जी का जो शीतकालीन प्रवास है मुखवा, वहाँ पे आप ना शादी करवा सकते हैं और इन जगहों पे ना शादी होती है। तो आइए ना श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम और गंगा मैया जी के शीतकालीन प्रवास मुखवा उत्तरकाशी में आपका स्वागत है।
1: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना ही है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बनाइए एक व्लॉग और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
2: और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे देवभूमि उत्तराखंड में उमड़ रही आस्था की तस्वीरें।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: स्पेक्ट्रम टीवी मेक्स स्पोर्ट्स इजी, सो आई नेवर मिस, नेवर मिस अ होमर, नेवर मिस अ होम फील्ड हैट ट्रिक, नेवर मिस अ गोल लाइन स्टैंड इंचेस फ्रॉम द एंड जोन, never miss an end-to-end tic-tac-toe top shelf snipe, never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details visit spectrumtv.com.
5: at WTU, flexibility is our foundation with a learning model that lets you set your own schedule, one-on-one mentorship and flat rate tuition. WTU helps you become a great teacher on your terms. Learn more at wgu.edu.
6: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: ईंधन संरक्षण की दिशा में लखनऊ हाईकोर्ट के जजों की शानदार पहल, 50 से ज्यादा जज और न्यायिक अधिकारी साइकिल से पहुंचे कोर्ट, लोगों को किया जागरूक।
1: बीएसएफ की महिला पर्वतारोहियों ने रचा इतिहास, मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा, गृहमंत्री शाह ने दी बधाई।
2: केदारनाथ यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्ड किए ध्वस्त, एक महीने में बाबा के धाम पहुंचे 7.5 लाख यात्री, हर रोज 25 से 30 हजार के बीच पहुंच रहे भक्त।
1: पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंचे साइप्रस के राष्ट्रपति, दोनों देशों के संबंधों की मजबूती को लेकर चर्चा, शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ करेंगे औपचारिक मुलाकात।
2: सऊदी अरब की फोर्स ने मक्का में दिखाई अपनी ताकत, जमीन हवा चारों तरफ से हज यात्रियों को मिलेगी हाई सिक्योरिटी, परेड में कई तरह के ड्रिल।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों भक्ति और आस्था की बयार बह रही है। असल में चारधाम यात्रा के साथ साथ यहां पंचकेदार की यात्रा भी जारी है। ऐसे में यहां हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है।
1: देखिए, इसके साथ ही मंत्रों, भजनों और भगवान के जय घोष के साथ पूरा वातावरण यहां पर गूंज रहा है।
2: देवभूमि का कण कण इन दोनों भक्ति रस में भीगा हुआ है। कहीं चार धाम यात्रा का उल्लास है तो कहीं महादेव के भक्तों का तांता लगा है। वैदिक मंत्रों की गूंज है, ढोल दमाऊ की थाप है, गीतों में भगवान का गुणगान है और महादेव का जय घोष। आस्था, परंपरा, भक्ति सब मानो एक सार है यहाँ। देवभूमि में चार धाम यात्रा के साथ साथ पंच केदार की यात्रा भी जारी है। पंच केदार में भगवान शिव के पांच अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। केदारनाथ में बैल रूपी शिव के कुबड़ की, तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में मस्तक की, मध्य महेश्वर में नाभि की और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। ऐसे में बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान से द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर के कपाट खुल गए। इसके साथ ही अब लोग भगवान मध्य महेश्वर के भी दर्शन कर सकेंगे। मान्यता है कि पांडवों द्वारा स्थापित ये मंदिर मोक्ष और आध्यात्मिक ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। वहीं चतुर्थ केदार रुद्रनाथ धाम में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। 18 मई को रुद्रनाथ धाम के कपाट खोले गए थे, तब से हर रोज यहां जनसैलाब उमड़ रहा है। अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए लोग दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं। आरती यहां का मुख्य आकर्षण है।
3: केदार रुद्रनाथ की यात्रा इस समय शुरू हो गई है। 18 मई को कपाट खुले थे और अब यहां पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लगभग 22 किलोमीटर जो पैदल ट्रैकिंग रूट होता है, इस पे भोले के भक्त लगातार ट्रैकिंग करके बाबा रुद्रनाथ के धाम में पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे रात्रि और दोपहर में होने वाली आरती के भी दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालु इस समय उत्तराखंड के चप्पे चप्पे में पंच केदारों सहित हर तरफ इस समय भीड़ दिखाई दे रही है।
2: ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर प्रकृति की गोद में बसा है, जहाँ शांति और दिव्यता दोनों का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंबाल के साथ, चमोली से कमल नैन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
1: रामनगरी अयोध्या एक और भव्य आयोजन की साक्षी बनने जा रही है। यहां राम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित मां जगदम्बा मंदिर के शिखर पर पहली बार महिला संतों और मातृशक्ति के हाथों भव्य ध्वजारोहण होगा। ये समारोह 29 मई की शाम को आयोजित किया जाएगा।

0: अयोध्या की पावन धरती एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। माँ जगदम्बा मंदिर के शिखर पर महिलाएं करेंगी ध्वजारोहण। 29 मई को शाम 5 बजे यह ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जब पहली बार महिला संत और महिला श्रद्धालु राम जन्मभूमि परिसर में स्थित माँ जगदम्बा मंदिर के शीर्ष पर ध्वजारोहण करेंगी आई जा रही है। इनमें मंदिर परिसर में तैनात महिला पीएसी कमांडो और महिला कर्मचारी भी शामिल होंगी। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा, दुर्गा वाहिनी और कई धार्मिक सामाजिक संगठनों के सदस्य भी इस ऐतिहासिक समारोह में हिस्सा लेंगी।
1: तो साध्वी रितंबरा जी के द्वारा ध्वजारोहण होगा और आप जानते हैं निरंजन ज्योति जी भी आ रही हैं, विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय मंत्री और मातृशक्ति के संयोजिका श्रीमती मीनाक्षी पिशवे जी आ रही हैं, दुर्गा वाहिनी की संयोजिका प्रज्ञा महाला आ रही हैं और विशेषतः दुर्गा वाहिनी के मातृशक्ति के बहनें बाहर से भी आ रहे हैं।
0: इस आयोजन को महिला सशक्तिकरण और सनातन परंपरा के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। वही राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित राम दरबार की पहली सालगिरह को भी भव्यता के साथ मनाने की तैयारी चल रही है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति, आस्था और वैदिक परंपराओं के रंग में रंगने जा रही है। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार अनुष्ठान और भगवान को विशेष भोग अर्पित किए जाएंगे। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
2: वक्त एक और ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलेडी टॉफी का एक पैकेट गिफ्ट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो चुका है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद ये देश विदेश में मेलेडी की डिमांड काफी बढ़ गई है। देश के कई शहरों में मेलेडी इतनी डिमांड में है कि सप्लाई धीमी हो चुकी है, हर कोई मेलेडी खरीद कर गिफ्ट करना चाहता है, मेलेडी का स्वाद लेना चाहता है। डिमांड को देखते हुए मेलेडी बनाने वाली निजी कंपनी व पार्ले प्रोडक्ट्स ने भी इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया है।
7: पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के मेलोडी मोमेंट से डिप्लोमेसी पर पड़े असर को तो विदेशी मामलों के एक विशेषज्ञ समझे, लेकिन मोदी मेलोनी मेलोडी मोमेंट रील का असर मेलोडी की डिमांड पर पड़ा है, जिसमें शानदार इजाफा हुआ है। पंजाब के मोहाली की दुकानों में मेलोडी की बहार छा गई है। मोहाली के ट्राई सिटी इलाके में इसकी मांग और बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है।
8: मेलेडी चॉकलेट, आप देखिए ये बॉक्सेस मैं इसलिए लेके खड़ा हूँ क्योंकि इस समय चर्चा इनकी सबसे ज्यादा है। इटली जब प्रधान

0: यहीं से सप्लाई मेलोडी की खासकर यहीं से जाती है।
1: स्थानीय बाजारों में मेलोडी की बढ़ती मांग का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जहां खुदरा विक्रेता और वितरक बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहां मेलोडी कैंडी की बिक्री सामान्य स्तर से लेकर 4 गुना बढ़ गई है। मोदी ने मेलोनी को मेलोडी क्या खिलाई, उनकी रील वायरल होते ही मेलोडी की मिठास अब हर किसी को चाहिए। सिर्फ मोहाली नहीं, देश भर में इसकी मांग इतनी बढ़ चुकी है कि इसकी सप्लाई धीमी हो गई है, क्योंकि अब क्या बूढ़ा क्या बच्चा और क्या जवान, हर कोई मेलोडी मांग कर रहा है। मोदी मेलोनी के मेलोडी वीडियो के इंटरनेट पर छा जाने के बाद इसकी मांग बढ़ने की और भी वजहें हैं। मोदी के मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट करने के बाद हर कोई एक दूसरे को मेलोडी गिफ्ट कर रहा है। सोशल मीडिया पर मेलोडी हैंडल ट्रेंड कर रहा है। मेलोडी नाम के मीम्स और वीडियो वायरल करने के लिए लोग मेलोडी टॉफी को भारी मात्रा में खरीद रहे हैं। कई दुकानों और ऑनलाइन एप्स पर मेलोडी के स्टॉक की कमी हो गई है। क्विक कॉमर्स एप्स जैसे ब्लिंकिट और जेप्टो पर मांग इतनी बढ़ी कि कई जगहों से ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई। मांग बढ़ता हुआ देख पार्ले प्रोडक्शन ने भी मेलोडी का उत्पादन बढ़ा दिया है। पार्ले ने मेलोडी टॉफी को 1983 में बाजार में उतारा था। आज भी रिटेल में मेलोडी 1 रुपए की किफायती कीमत पर मिल जाती है। यही नहीं, आज की तारीख में दुनिया के लगभग 100 देशों में मेलोडी टॉफी बेची भी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रेंड के चलते शेयर बाजार में पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयरों में उछाल देखा गया। हालांकि मेलोडी बनाने वाली असली कंपनी पार्ले प्रोडक्ट एक निजी कंपनी है और शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स ने नाम की समानता की वजह से गलती से पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद लिए। वैसे मौके का फायदा उठाते हुए पार्ले प्रोडक्ट्स ने इंस्टाग्राम पर मोदी मेलोनी वीडियो भी शेयर कर दिया और कैप्शन में लिखा 1983 से रिश्तों में मिठास खोल रहे हैं। वाकई मोदी मेलोनी के मेलोडी मोमेंट ने इंडिया इटली के रिश्तों में तो मिठास खोल ही दी है। अब देश में हर कोई मेलोडी की मिठास महसूस करना चाहता है और पूछने पर यही कहना चाहता है कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। मोहाली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बिहार के मुजफ्फरपुर की माटी से निकली विश्व प्रसिद्ध शाही लीची इस बार समय से पहले तो बाजार में आई ही, महिलाओं के जीवन में भी आर्थिक मिठास लेकर आई है। शाही लीची की आवक से यहां पर महिलाओं को काम मिल रहा है और कमाई बढ़ गई है। बीते दिनों हुई बारिश ने लीची के स्वाद और गुणवत्ता को और बेहतर बना दिया है। इससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद जगी है।

0: आ गई शाही लीची। इन दिनों मुजफ्फरपुर के तमाम बाजारों में दुकानों पर लाली छाई है, क्योंकि शाही लीची यहां पहुंचकर अपने मिठास बिखेर रही है। शाही लीची से महिलाओं के घरों में भी आर्थिक मिठास घुल रही है, क्योंकि शाही लीची के चलते सीजन में वो रोज हजार रुपए तक कमाई कर रहे हैं। दरअसल मशहूर शाही लीची सिर्फ अपने स्वाद और खुशबू के लिए ही नहीं, बल्कि ये हजारों ग्रामीण परिवारों, खासकर महिलाओं के लिए रोजगार और आर्थिक सहारा भी बन रही है। लीची सीजन शुरू होते ही जिले के गांव में तुड़ाई, छटाई, पैकिंग और बिक्री का काम तेज हो जाता है, जिससे बड़ी संख्या में महिलाओं को गांव में ही रोजगार मिल जाता है।
1: दिन भर तोड़ने में अब आप लोगों काम के लिए बाहर जाना पड़ता है कि आसपास मिल जाना?
2: आसपास में मिल जाता है।
1: पैसा आमदनी होता है?
2: हाँ होता है।
1: अच्छा, अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है?
2: नहीं पड़ रही है।
1: घर से निकलिए, काम मिल गया?
2: काम मिल गया।
1: कितनी खुशी हो रही है?
2: बहुत खुशी हो रही है।
1: अच्छा, बेटा भी साथ में है तो पूरा परिवार मिलकर कमा रहे हैं?
2: हाँ, पूरा परिवार मिलकर कमा रहे हैं।
1: लीची के सीजन में एकदम रोजगार मिल जाता है?
2: हाँ।
1: कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है?
2: जाना है, झपा पोछा से लाते हैं।
1: झपा से गए और बाजार में ला के बेचे, कितना पैसा हो जाता है?
2: 500-600 रुपए हो जाता है।
1: पूरा खुश है?
2: बहुत खुश है।
1: बिक्री हो रही है?
2: हो रही है। हम तो भगवान से मनाते हैं, साल भर बिकाए, साल भर खुश रहेंगे।
0: यहाँ के कई मुख्य बाजारों में शाही लीची की भरमार है और लीची की बिक्री शुरू हो गई है। इस बार शाही लीची की बाजार में कीमत करीब 400 रुपए प्रति सैकड़ा है। हालांकि शाही लीची के व्यापारी मानते हैं कि मई के अंतिम हफ्ते और जून के पहले हफ्ते तक आवक बढ़ने के

0: साथ कीमतों में कुछ कमी आएगी और लीची में पूरी मिठास भी आ जाएगी। बाजारों में दूसरे शहरों से आए लोग भी शाही लीची की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। खरीदारों को इस बार लीची का स्वाद पहले से बेहतर लगा है। उनका मानना है कि बारिश के चलते लीची में प्राकृतिक मिठास बढ़ गई है। वहीं लीची व्यापारी इस बार शाही लीची की डिमांड देखकर खुश हैं और उनका जोश हाई है।
1: काटी का है लीची,
2: अच्छा
1: 400 रुपए कीमत है, शाही लीची है, मीठा है,
2: मीठा है
1: जी।
2: ग्राहक आ रहे हैं?
1: जी ग्राहक आ रहा है, जोर शोर से आ रहा है, ग्राहक बिक रहा है तैयार में।
2: कहाँ से आए हैं?
3: हम ये रहुआ से लेके आए।
2: रहुआ से लीची टूटने लगा?
3: टूटने लगा।
2: कैसे कीमत क्या है?
3: 400 रुपए सैकड़ा है।
0: मुजफ्फरपुर में विशेष गुणवत्ता और स्वाद वाली लीची उगाई जाती है। यहाँ मुसहरी, सरैया, मंगरा और धूली में लीची के कई बागान हैं। लीची लगाने के बाद वैज्ञानिकों की टीम साल भर इनकी देखभाल करती है। 22 मई के बाद शाही लीची प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। यहाँ 48 जगहों पर लीची के अस्थायी बाजार सज चुके हैं। ग्रामीण इलाकों के छोटे बाजारों में भी किसान और व्यापारी सक्रिय हो गए हैं। यहाँ की शाही लीची केवल स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए भी काफी अहम मानी जाती है। हर साल 15 मई से 20 जून तक चलने वाले लीची सीजन में राज्य में करीब 2 लाख मजदूरों को रोजगार मिलता है। यही हजारों परिवारों की आमदनी का जरिया है शाही लीची। बागानों में तुड़ाई, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट और बाजारों में बिक्री के जरिए हजारों परिवारों की आमदनी से जुड़ी है यहाँ की शाही लीची। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही।
5: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए, अच्छे पॉजिटिव खबरें दिनभर जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
8: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds with artists like James Bay, so come on, let it go. Norah Jones, heart is drained. Daniel Caesar, we both know how and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है। जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: चमोली के गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू। पहले जत्थे को पंच प्यारों की अगुवाई में अरदास के बाद किया गया रवाना। कल से खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। केदारनाथ यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्ड किए ध्वस्त। एक महीने में बाबा के धाम पहुंचे 7.5 लाख यात्री। हर रोज 25,000 से 30,000 के बीच पहुंच रहे हैं भक्त। ईंधन संरक्षण की दिशा में लखनऊ हाईकोर्ट के जजों की शानदार पहल। 50 से अधिक जज और न्यायिक अधिकारी साइकिल से पहुंचे कोर्ट, लोगों को किया जागरूक। बीएसएफ की महिला पर्वतारोहियों ने रचा इतिहास। मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा। गृहमंत्री शाह ने दी बधाई। सऊदी अरब की फोर्स ने मक्का में दिखाई अपनी ताकत। जमीन हवा चारों तरफ से हज यात्रियों को मिलेगी हाई सिक्योरिटी। परेड में कई तरह की ड्रिल।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: इसरो का दुनिया ने माना लोहा। चंद्रयान 3 मिशन को मिला प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक पुरस्कार। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने ग्रहण किया अवार्ड। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एरोनॉटिक्स की तरफ से दिया जाता है ये सम्मान। क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसरो और चंद्रयान 3 टीम को दी बधाई। इसरो की ओर से पुरस्कार स्वीकार करना मेरे लिए गर्व की बात। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के निकट चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए दिया गया इसरो को सम्मान। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की बढ़ती पकड़ को मिला वैश्विक पहचान। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित एसएन सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया है पुरस्कार। अंतरिक्ष विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला AIAA का सर्वोच्च सम्मान। बीएसएफ की महिला पर्वतारोहियों ने रचा इतिहास। मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा। महिलाओं ने साहस और हौसले की नई मिसाल पेश की। पहली बार बीएसएफ की महिला पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट की चोटी से वंदे मातरम गाया। बीएसएफ ने बहादुर महिला पर्वतारोहियों को किया सलाम। टीम में लद्दाख की कौसर फातिमा, पश्चिम बंगाल की मुनमुन घोष, उत्तराखंड की रेबिका सिंह और करगिल की त्रिसरिंग चोरोल शामिल। अमित शाह ने बीएसएफ की महिला जवानों को दी शुभकामनाएं। लिखा बीएसएफ की महिला जवानों ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करके स्वर्णिम इतिहास रचा। आईटीबीपी की महिला अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण ने रचा नया इतिहास। माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 32 दिन में 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम यात्रा। केदारनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक 7.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में भी लगा भक्तों का मेला, अब तक 5 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए। उत्तराखंड यमुनोत्री धाम का खुला खजाना, मंदिर समिति की छप्परफाड़ हो रही है कमाई। बत्तीस दिनों में यमुनोत्री मंदिर समिति को कुल 23,05,000 रुपए की आय हुई प्राप्त। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ आय में भी लगातार हो रहा है इजाफा। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, श्रद्धालुओं ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे।

एमपी के धार्मिक भोजशाला में सुबह सुबह हुई पूजा, भगवान की उतारी गई आरती। पुरी में भगवान जगन्नाथ की उतारी गई विशेष आरती, श्रद्धालुओं ने लगाए भगवान जगन्नाथ के जयकारे। भगवान जगन्नाथ की आरती के लिए, दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की भीड़, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। सऊदी अरब में हज यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर, सऊदी सिक्योरिटी फोर्स ने मक्का में परेड की। सैन्य परेड में सेना ने तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ के लिए अपनी कुशलता और तैयारियों का किया प्रदर्शन। परेड में फोर्स ने एडवांस व्हीकल और सिक्योरिटी एविएशन का भी किया प्रदर्शन, साथ ही परेड में कई ड्रिल प्रस्तुत की। परेड में अलग अलग सिक्योरिटी सेक्टर की महिला सैनिकों ने भी हिस्सा लिया, ड्रोन और सीसीटीवी से भी हुई निगरानी। चौबीस मई की शाम से 29 मई तक चलेगा हज यात्रा, 2 से 3 मिलियन मुसलमानों के शामिल होने की उम्मीद। राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पहली पीर पंजाल शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन, खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में 165 से ज्यादा खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, भारी संख्या में महिला प्रतिभागी हुई शामिल। नशामुक्त समाज की पहल को लेकर चैंपियंस का आयोजन, से नो टू ड्रग्स यस टू स्पोर्ट्स के तहत कार्यक्रम। स्थानीय खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने के लिए पहली बार मिला इतना बड़ा मंच, बड़े पैमाने पर पहली बार आयोजित हुए कार्यक्रम से खेलों के प्रति रुचि जगाना कार्यक्रम का मकसद। टूर्नामेंट विजेताओं को दिए गए पुरस्कार, युवाओं को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ नशे से दूर रहने की अपील भी की। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, मामले को जल्द निपटारा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। राजौरी में खेल को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफ की पहल, जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। टूर्नामेंट में कई जिलों की टीमें ले रहे हैं हिस्सा, महिलाओं ने भी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। अहमदाबाद में पुलिस ने पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया, बड़ी संख्या में बच्चे हुए शामिल। समर कैंप में खेल प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों ने किया जमकर डांस। हैदराबाद में युवा ले रहे हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की डिग्री, जीएमआर स्कूल ऑफ एविएशन प्रदान करता है इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग कोर्स। आधुनिक तकनीकों के जरिए पढ़ाए जा रहे हैं कोर्स, इंटरैक्टिव सेशंस के साथ एयरक्राफ्ट के लाइफ साइज मॉडल्स के साथ दी जा रही है ट्रेनिंग। पैलेस ऑन व्हील्स ने रचा इतिहास, मई माह में पहली बार फुल चार्टर के साथ जयपुर पहुंची राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध शाही ट्रेन। राजस्थानी संस्कृति की पहचान है पैलेस ऑन व्हील्स, इस ऐतिहासिक ट्रेन पर राजस्थान की संस्कृति, विरासत, खान पान और शाही आतिथ्य का अनुभव ले सकते हैं देश विदेश के मेहमान। लग्जरी और हेरिटेज टूरिज्म का उदाहरण है ये ट्रेन, मेहमानों के लिए समर स्पेशल मेन्यू, एयर कूल, साइट सीइंग, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और लग्जरी ऑन बोर्ड सुविधाओं की विशेष व्यवस्था। तमिलनाडु के प्रसिद्ध कन्याकुमारी भगवती अम्मन मंदिर में उमड़ा भक्ति का सैलाब, पवित्र वैकाशी वैसाखम उत्सव का हुआ आयोजन। रस्मों के तहत पारंपरिक ध्वजारोहण समारोह से उत्सव की औपचारिक शुरुआत, 2 दिन तक चलेगा यह पवित्र उत्सव। देवी भगवती अम्मन को समर्पित है ये त्यौहार, भक्तों द्वारा विशेष रूप से समृद्धि और कल्याण के लिए आशीर्वाद की कामना के साथ की जाती है पूजा। उत्तर प्रदेश में अब आम लोग भी खोल सकेंगे अपना संग्रहालय, प्रदेश सरकार ने विजिट माई स्टेट अभियान और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के तहत पहल की।
नागरिक ट्रस्ट शैक्षणिक संस्थान और निजी संगठन स्थापित कर सकेंगे संग्रहालय, जहां इतिहास, संस्कृति, आध्यात्म, साहित्य, लोक परंपराओं और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी दुर्लभ धरोहर की जा सकेगी प्रदर्शित। ईंधन संरक्षण की दिशा में लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के जज की शानदार पहल, 50 से अधिक जज और न्यायिक अधिकारी साइकिल से पहुंचे कोर्ट, लोगों को किया जागरूक। हाईकोर्ट के जजों ने लोगों को किया जागरूक, कहा इसमें ईंधन की बचत के साथ साथ स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अमृतसर के जबोवाल स्कूल के छात्रों का कमाल, विकसित भारत बिल्डथॉन में जीता बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के अलंकरण समारोह में जवानों को किया सम्मानित, कहा भारत के आतंकवाद और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंचे साइप्रस के राष्ट्रपति, दोनों देशों के संबंधों की मजबूती पर लेकर चर्चा। गुजरात की राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा, 18 जून को होने वाली चुनाव से सभी सीटें निर्विरोध होने की पूरी संभावना। राज्यसभा में 12 राज्यों से खाली हो रही 26 सीटों पर चुनाव और 18 जून को होंगे उपचुनाव। महाराष्ट्र में सुनेत्रा अजीत पवार और तमिलनाडु में सीवी षणमुखम की सीट पर होंगे उपचुनाव। 1 जून को जारी होगी चुनाव के लिए अधिसूचना, 8 जून तक होंगे नामांकन। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी का पहला दिल्ली दौरा, शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली दौरे के दौरान राजनाथ समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बीजेपी नेतृत्व से शिष्टाचार भेंट की संभव। प्रचंड गर्मी से जूझ रहा हिंदुस्तान, कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार।

0: दिल्ली में भी हीट वेव का अलर्ट। दिल्ली में 14 साल बाद मई की सबसे गर्म रात रही बुधवार। दिल्ली एनसीआर में अगले एक सप्ताह तक भीषण गर्मी और लू रहने के अनुमान। बिजली की भी बड़ी मांग। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। 25 मई तक तपिश भरी गर्मी और लू से राहत के आसार नहीं। बांदा में लगातार चौथे दिन दुनिया का सबसे गर्म शहर बना रहा बांदा। 48 डिग्री के पार पहुंचा पारा। बिहार के 14 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट। कई जिलों में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। बिहार और औरंगाबाद में गर्मी के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद। जहानाबाद में भी स्कूल का समय बदला। बिहार के कैमूर में रहा सबसे गर्म शहर। 44 डिग्री के पार पहुंचा कैमूर का तापमान। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। झारखंड के 9 जिलों में आधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कई जिलों में 27 मई तक हो सकती है वर्षा। झारखंड के 4 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। कई जिलों में लू चलने की चेतावनी। प्रयागराज में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। सड़कों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। प्रयागराज में गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए नगर निगम की सराहनीय पहल। चौराहे पर मिट्टी के घड़े में पानी की व्यवस्था की। मुरादाबाद में भी लगातार बढ़ रहा है तापमान। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी भीषण गर्मी का प्रकोप। गर्मी के चलते घटी पर्यटकों की संख्या। ओडिशा के मयूरभंज में बड़ा तापमान। सड़कों पर पसरा सन्नाटा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: It never happens at a good time. The pipe bursts at midnight. The heater quits on the coldest night. Suddenly, you're overwhelmed. That's when Home Serve is here. For $4.99 a month, you're never alone. Just call their 24/7 hotline and a local pro is on the way. Trusted by millions, Home Serve delivers peace of mind when you need it most. For plans starting at just $4.99 a month, go to homeserve.com. That's homeserve.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
4: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
5: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
4: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
6: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरे से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में जाने की खास वजह है तो बनाइए और निकालिए अपना कैमरा और बना डालिए एक व्लॉग और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हम उसे GNT पर दिखाएंगे। और चलिए हम नजर डाल लेते हैं सोशल मीडिया पर उन वायरल वीडियोस पर जो आपको हंसाएंगे भी, गुदगुदाएंगे भी और कुछ तो ऐसे होंगे जो आपको इमोशनल कर देंगे।
7: इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मानना पड़ेगा कि किसी भी पुल को पार करने के लिए कई और तरीके भी हो सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स पुल को पार करने के लिए ब्रिज के ऊपर से जाने के बजाय उसके नीचे से उछल कूद करते हुए गुजर रहा है। शख्स पुल के नीचे लगे खम्भों और पोल को पकड़कर झूलते हुए ब्रिज को पार कर रहा है। वीडियो में शख्स जितनी आसानी से पुल को पार करता दिख रहा है उतना आसान ये काम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस शख्स की फिटनेस वाकई कमाल की है। शख्स पुल को न सिर्फ पार करते हुए जाता है बल्कि वो उसी पुल पर ठीक वैसे ही लटकते हुए वापस भी आता है। सफारी के इस वीडियो को देखकर यूजर्स हैरान है। वीडियो में एक जंगल नजर आ रहा है। जीप में बैठी लड़की ने जंगल सफारी के दौरान वीडियो बनाया और तभी नजर आता है कि एक हाथी उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। हाथी जब काफी करीब आता है तो लड़की डर जाती है और जीप चालक को गाड़ी भगाने के लिए बोलने लगती है। कुछ सेकंड के लिए हाथी रुक जाता है मगर फिर उनके पीछे आने लगता है। जीप में मौजूद आदमी भी गाड़ी भगाने के लिए बोलने लगता है।

0: इस वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मामला एक डोसा दुकानदार और उनके सबसे अनोखे कस्टमर से जुड़ा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यस्त सड़क के किनारे एक डोसे की दुकान है, जहां तवे से ठीक पास एक सांड बड़े ही धैर्य के साथ खड़ा है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसे दुकान का पूरा मेन्यू जबानी याद है और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। आमतौर पर दुकानदार जानवरों को भगा देते हैं, लेकिन इस डोसे वाले ने तो जो किया उसने सभी का दिल जीत लिया है। आप देखेंगे कि दुकानदार ने बड़े ही प्यार से तवे पर मक्खन मारकर एक बढ़िया कुरकुरा डोसा तैयार किया और सीधे अपने इस चार पैरों वाले स्पेशल गेस्ट को परोस दिया। सांड ने भी बड़े चाव से डोसा खाया और अपनी पूंछ हिलाकर वेंडर का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर दो बहनों ने इजिप्ट लीबिया के बॉर्डर पर बने अपने छोटे से घर की एक झलक लोगों को दिखाई है। झोपड़ी जैसा ये घर देख लोगों को लगा कि बहनें गरीब हैं और मुश्किल में अपने दिन गुजार रही हैं। लेकिन जब घर को अंदर से देखा गया तो सब दंग रह गए। घर के अंदर आधुनिक और लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक देखने को मिली। कमरे में सॉफ्ट लाइटिंग, कम्फर्टेबल सोफा, बड़े बड़े बेड, फुली इक्विप्ड किचन, वाईफाई, एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं और खूबसूरत डेकोरेशन सब कुछ यहां मौजूद थी। बहनों ने बताया कि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल से घर तैयार किया है, जिसमें मिट्टी और नमक का इस्तेमाल किया गया है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
5: है। और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
11: चमोली के गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू। पहले जत्थे को पंच प्यारों की अगुवाई में अरदास के बाद किया गया रवाना। कल से खुलेगा पवित्र धाम के कपाट। केदारनाथ यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्ड किए ध्वस्त। एक महीने में बाबा के धाम पहुंचे 7.5 लाख यात्री। हर रोज 25,000 से 30,000 के बीच पहुंच रहे हैं भक्त। ईंधन संरक्षण की दिशा में लखनऊ हाईकोर्ट के जजों की शानदार पहल। 50 से अधिक जज और न्यायिक अधिकारी साइकिल से पहुंचे कोर्ट, लोगों को किया जागरूक। BSF की महिला पर्वतारोहियों ने रचा इतिहास। मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा। गृहमंत्री शाह ने दी बधाई। सऊदी अरब की फोर्स ने मक्का में दिखाई अपनी ताकत। जमीन हवा चारों तरफ से हज यात्रियों को मिलेगी हाई सिक्योरिटी। परेड में कई तरह की ड्रिल।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सबका सास बहू और बेटिया के ट्रैवल स्पेशल एपिसोड में। आज तो हम बात करने वाले हैं ट्रैवल, हॉलीडेज और इनक्रेडिबल इंडिया की, क्योंकि एक तरफ है पहाड़ों का सुकून तो दूसरी तरफ है बीचेस की ठंडी हवा। आज तो शेयर करेंगे हम आपके साथ कुछ समर ट्रैवल टिप्स और उसके साथ साथ लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट से भरपूर हमारा ये सफर हेडलाइंस के साथ।
1: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, फिर शुरू होगी सूरज और ईशा की नोक झोंक, जुड़ेगा लव का कनेक्शन।
2: पूरा सूट खराब कर दिया।
3: अच्छा, आप मेरे कपड़े खराब करने वाली थी।
1: सीरियल वसुधा में होगा सेलिब्रेशन, मनाएंगे नंबर वन होने की खुशी। खतरे में पड़ेगी अपराजिता, रक्षक बनेगा रक्षित। बनकर आएगा नाहर बताने सच,

0: इश्क जुनूनी में होगा जश्न, झूम कर नाचेंगे घर वाले।
1: मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आ मेरी लड़ी है। अरे रास्ता रास्ता देखो आ मेरी लड़ी है।
0: और देखेंगे कि कैसे अनु हो रही है रेडी मेहंदी की रस्म के लिए। साथ ही जल्द गूंजेंगी अनु आर्या की शादी की शहनाइयां। देखेंगे नजारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: अब इश्क का सफर तो कभी इजी नहीं होता और यहाँ इमोशंस का टेम्परेचर भी हाई रहने वाला है। मैं तो बात कर रही हूँ गुरु और रूहानी की इस कहानी की, तो चलिए फिर देखते हैं कैसा है यहाँ पर इश्क का जुनून। लेकर चलते हैं आप सबको इस जुनूनी के सेट पर।
1: झूम कर नाचे रूहानी, गुरु और घर वाले।

0: आया खुशियों का मौसम। शुरू हुआ नच का धमाल। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज आ गया है डांस का मौसम। तभी तो देखिए कैसे रूहानी, गुरु, दादी, मामी, मामा सभी घर वाले झूम कर नाच रहे हैं और बांट रहे हैं एक दूसरे संग खुशियाँ। क्या इनके बीच की गलतफहमियां दूर हो चुकी है, क्या सब कुछ ठीक हो चुका है? तभी तो एक दूसरे से नफरत करने वाले साथ साथ डांस कर रहे हैं।
1: मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो मेरी लड़ी है। अरे रफ्ता रफ्ता देखो मेरी लड़ी है।
0: भाई हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई यहाँ सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, बल्कि ये तो है बिहाइंड द सीन नज़ारे जहाँ पर हो रहा है सेलिब्रेशन, क्योंकि सीरियल के 100 एपिसोड पूरे जो हो गए हैं। ऐसे में खुशी भरा हैप्पी डांस करना तो बनता है। तभी तो गुरु रूहानी के साथ साथ सभी लोग डांस कर रहे हैं और दादी भी इनकी ताल से ताल मिलाने में पीछे नहीं है।

0: खैर ये रही बिहाइंड द सीन खुशियों की बात। बात करें सीन की तो यहाँ पर रूहानी को रस्सी से बांधा जा रहा है क्योंकि मामी ने सबके सामने ये साबित कर दिया है कि वो दिमागी रूप से बीमार हो चुकी है। ऐसे में गुरु आता है और रूहानी की रस्सी खोल देता है, लेकिन यहाँ पर गुरु के पापा भी इस बात के खिलाफ है। उन्हें भी लगता है कि रूहानी पागल हो चुकी है।
1: ये पागल नहीं है मामी, इंसान नहीं, जानवर नहीं, बांध रहे हैं ऐसे।
2: बरसात से पहले छपरा बांध रहे हैं गुरु बाबू, कहे कि आपकी जो पत्नी है सन का ही है, पगला गई है, ऐसा पूरा घर में ऐसे खुला होना ठीक बात नहीं। जीजी को कुसुम जीजी को उसकी समझ करके कैसे सीढ़ी पर दबाका दे दी, को तो चिंता है आपका, आप साथ रहते हैं।
0: खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मामी कोई ना कोई चाल जरूर चल रही है और आज भी मामी की चाल हो गई है कामयाब। तभी तो देखिए कैसे गुस्से में रूहानी ने मामी का गला ही पकड़ लिया और सभी घर वालों के सामने आखिरकार ये प्रूफ हो गया कि रूहानी का दिमाग ठीक नहीं है। लेकिन ये सच भी तो नहीं है, पर अब तो गुरु को भी इस बात पर विश्वास होने लगा है। देखना होगा कि रूहानी कैसे खुद को सही साबित करती है और दुश्मनों का पर्दाफाश करती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: आज तो ट्रैवल सफर इसी के आसपास हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें, तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको एंटरटेनमेंट के नॉनस्टॉप सफर पर, क्योंकि यहाँ अपना सफर हमारे साथ शेयर कर रहा है आपका फेवरेट सितारा। जी हाँ, हमने की है इनसे खास मुलाकात, यहाँ तो हुई हैं ढेर सारी बातें और हमने भी जाना है इनकी लाइफ के जर्नी के बारे में। लेकर चलते हैं आपको इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर, जो है सितारे से मुलाकात।

0: हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मेरे खास मेहमान हैं एक ऐसे शख्स जिनका करियर ग्राफ मैंने ना पूरे आई थिंक 18 इयर्स से मैंने स्टडी किया। मुझे याद है कि साल था 2008 और एक शो आता था बहुत ही पॉपुलर कुमकुम, उसके सेट पर मुझे एक लड़का मिला एंड एक यू नो वेरी कॉन्फिडेंट बॉय एंड उसका नाम था गौरव खन्ना एंड कुमकुम के बाद इट स्टार्टेड द रेस्ट इज हिस्ट्री।
1: खुश रहो बेटा, खुश रहो, बड़े पतले हो गए सीरियसली।
0: एक साथ तीन रियलिटी शो जीते हैं। आई मीन गौरव, एक टाइम था, आई सीन योर स्ट्रगल, आई सीन योर ग्राफ, यू नो आपने बहुत सारे शोज किए, दे डिडंट वर्क आउट बट यू नेवर लॉस्ट हिज हिम्मत। तो लोग सब ये बात करते हैं कि रियलिटी शो, बट आई नो द बैक स्टोरी,
2: यस,
0: बिकॉज इट टेक्स गट्स एंड पेशेंस कि आपने इतने सालों बाद एंड इट आई थिंक 2008 से अनुपमा केम इन 2021 और 2
2: एक्चुअली 2005 से अमित,
0: यस, उससे पहले, ये तो मैं कुमकुम से भी पहले, तो ये कोई बात नहीं करता। लेकिन आज हम बात करेंगे गौरव खन्ना के पीछे बनने की, बिकॉज मुझे याद है कि 2008 से लेकर यू हैड टू वेट टिल 2021 टू गेट दैट सक्सेस एंड उसके बाद यू नेवर लुक बैक, तो इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। सो उस टाइम पे वो उम्मीद का दिया इतने दिन आपने जो, बिकॉज फेलियर्स जब आप एक्सपीरियंस करते हो तभी सक्सेस को एंजॉय कर पाते।
2: जी जी जी।
0: तो हाउ इज दैट फेस व्हेन यू वर गेटिंग द रोल्स बट देयर द शोज वर नॉट वर्किंग आउट, दे वर शटिंग डाउन? उस टाइम पे आदमी को अपना मेंटल एक स्टेबिलिटी रखना बहुत जरूरी होता है इस बॉम्बे शहर में सर्वाइव करना। कैसे गौरव कर पाए?
1: बिल्कुल वैसे का वैसे ही, कुछ नहीं बदला है।
2: यार अमित, यू नो वी गो बैक इन द डे, यू नो दोज आर द टाइम्स एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई एम वेयर आई एम बिकॉज ऑफ माय फेलियर्स इन लाइफ, क्योंकि सक्सेस टेक्स यू समवेयर एल्स, फेलियर्स कीप यू ग्राउंडेड एंड आई ऑलवेज फील कि बैक टू बैक काम किया। देर वॉज अ टाइम वेन आई यूज टू डू शोज विद 3-3 नेटवर्क टूगेदर एज अ लीड, मैं गाड़ी में सोता था, बहुत मेहनत की है मैंने टी वी में, ये तो मैं खुले दिल से बोल सकता हूँ, लेकिन टी वी ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है। ऑफकोर्स सेटबैक से शोज कई बार उतने बड़े हिट नहीं हुए, लेकिन हमेशा ये हुआ था कि मुझे काम से ही काम मिलता रहा एंड बिकॉज आई नेवर लॉस्ट फेथ इन माई सेल्फ। आई न्यू कि यार मैं जैसे टेस्ट मैच में एक बॉलर ओवर पे ओवर डालता जाता है, एक सेशन में अच्छा नहीं करता, दूसरे सेशन में नहीं करता, अगले दिन आता है, फिर एक सेशन उस बॉलर को मिलता है एंड सडनली थिंग्स टर्न, टेबल्स टर्न। तो मुझे हमेशा ऐसा रहा कि स्टार्टिंग से अच्छे शोज मिले, नोटिस हुआ, उस शो, एक शो कुमकुम के बाद आई ओनली डन लीड्स इन माई लाइफ, मैंने कभी कोई साइड रोल बाय गॉड्स ग्रेस नहीं किया अभी तक। लेकिन कहीं ना कहीं वही जो रिकग्निशन होती है जो हमारी टीवी इंडस्ट्री की एक प्री रिक्विजिट है कि यार 2-3 साल चल गया, 4 साल चल गया, वो मिसिंग था, वो एक एक साल चलना, एक एक साल में 3-3 शो। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं अपने क्राफ्ट को ट्रस्ट करता था, मुझे पता था कि यार आज नहीं तो कल, बिकॉज मेरा फॉल्ट नहीं था। अमूमन जनरली फियर क्या होता है ना कि जब कोई शो नहीं चलता तो कई बार चैनल्स, कई बार प्रोड्यूसर्स, ऐसा हो जाता है कि यार एक्टर्स की गलती है, और जब चल जाता है तो बाकी सबका क्रेडिट है, एक्टर्स तो नए थे। सो कहीं ना कहीं वो हो रहा था मेरे साथ, बट मैंने कभी भी हार नहीं मानी एंड आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ गाय हु नेवर क्विट्स टिल द टाइम आई फील कि आई कांट गिव इट समथिंग। तो मैं लगा रहा मैंने हर चैनल पे काम किया, न्यूज छोड़ के मैंने टीवी पे सब कुछ कर दिया, मैंने न्यूज नहीं पढ़ी है, वो भी कभी ना कभी पढ़ लूंगा मुझे पता है, लेकिन आई एम टुडे बिकॉज ऑफ टेलीविजन एंड आई कैन नॉट थैंक इट इनफ। देन वन डे भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं एंड समथिंग लाइक, बीच में बहुत सारे अच्छे शोज आए, जैसे
0: एक्चुअली आपके शोज जो थे ऑन टेबल लुक वेरी नाइस, चंद्रकांता लुक सो नाइस,
2: और उसके फैंस, मतलब हर शो के फैंस रहे हैं।
1: इसे हासिल करने में मुझे वक्त थोड़ा ज्यादा लग गया,
2: जैसे ये प्यार ना होगा कम कलर्स का शो था, पोस्ट दैट शो यामी बिकेम यामी,
0: आई वांट टू टॉक अबाउट दैट, वेरी
2: इंपॉर्टेंट फैक्टर। So then in 2021 something really magical happened and all thanks to Rajan sir.
0: So lockdown aapke liye lucky raha?
2: Mere liye sab kuch lucky raha. I always feel that you are a sum total of all your mistakes in life, all your pluses in life, and I am what I am today because of all the experiences which I had. So kahin na kahin I feel ki 2021 mein jo maine character play kiya Anuj ka,
3: mujhe ye bata de ki is waqt Anu kahan hai.
2: It was because only I had done so much work in other characters ki kahin na kahin subconsciously all that came into the picture. Aisa nahi hai ki ek hi role se hua. I give credit to all the years of hard work which I have done Yes, it got noticed on that show. And boy, did it get noticed.
3: Jis road se aap ja rahe hain, bahut slippery hai.
2: I'm very happy that it did. And then eventually, hamesha itne saal se, main hamesha sochta tha, yaar, sabko reality milta hai. Main itna kaam kar raha hu, mereko reality, pehli baar to time bhi nahi tha. Lekin mujhe lagta tha, call aate the, main kar nahi paata.
0: Mile to chappar paad ke.
2: To main isi liye bolta hu, jab jo cheez hoti hai, I always... किस्मत से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं है. आई ऑलवेज बिलीव इन दैट एंड आई स्टिल बिलीव कि यू नो शो लाइक खतरों के खिलाड़ी डर का नया दौर जो है ना ये काफी टाइम से मेरे साथ है.
0: जी
2: शायद मैंने ये लाइन नहीं यूज की होगी लेकिन एक डर हमेशा से था कि मैं करता जा रहा हूँ शोज कब अच्छा शो मिलेगा कब अच्छा शो मिलेगा. तो वो लगे रहने वाली जो स्पिरिट है आई फील आई विल कैरी इट इन दिस शो. बहुत फेलियर्स भी होंगे. ऐसा नहीं है कि आई एम द वर्ल्ड्स बेस्ट स्टंटमैन कि मैं एकदम छप्पड़ फाड़ दूंगा ये कर दूंगा. आई एम वेरी नॉर्मल वेरी रियलिस्टिक गाय. आई नो माई प्लसेस आई नो माई माइनसेस.
0: तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ 2008 में. तो जब कलर्स लॉन्च हुआ था जो अपने 18 साल पूरे करने जा रहे हैं उसी साल बालिका वधू भी आया था जीवन साथी आपका शो आया था खतरों के खिलाड़ी भी उसी साल लॉन्च हुआ था अक्षय कुमार के साथ. तो
2: मुझे वो पोस्टर याद है वो सर के छोटे छोटे बाल थे वो टशन वाली टाइम का है एंड ही हैड स्मॉल हेयर एंड ही इज हैंगिंग फ्रॉम द हेलीकॉप्टर. आई स्टिल रिमेम्बर बिकॉज हम लोग जहां भी जाते थे वहां उसका पोस्टर भी होता था. या
0: तो 18 इयर्स ऑफ कलर्स एंड इट्स अ सर्कल यू बैक टू the same channel which launched it.
2: Yeah,
0: was the
2: I remember
0: launch of this channel this show.
2: I was there I remember and us samay maine colors ke do 9 o'clock ke show kiye the mujhe abhi bhi yaad hai back to back. और अभी का भी है शो में
0: जी जी.
2: मेरे साथ और उसने भी उस शो में छोटी सी थी बालिका वधु में. सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट थिंग फॉर बोथ ऑफ अस यार. आई एम हैप्पी टू मीट हर आफ्टर सो मेनी इयर्स. मैं मिला नहीं हूं बहुत टाइम से उसको.
0: तो जिस तरह से आपने दो रियलिटी शो जीते तो लगता है कि खतरों के खिलाड़ी में भी सब संभावनाएं नजर आ रही है. लेकिन ये शो जो है क्योंकि मैं तो बहुत बार इसके सेट पर गया हूँ.
2: अच्छा।
0: मैंने रियल स्टंट देखे हैं. एक बार याद मेरे को तो एक बार प्रियंका चोपड़ा ने मेरे ऊपर अजगर डाल दिया था. तो भैया बहुत डरावना होता है ये शो सच में गाइस. Telling you,
2: it's not easy.
0: It's real. It's very difficult. हमने खुद live experience किया.
2: Yeah.
0: And तो उसमें अलग जिगरा चाहिए.
2: मैं तो ये सोचता हूँ भाई कि मैं I always start from zero in any show which I do. मैं कभी ये सोचता नहीं हूँ. You are as good as the day you enter something. I believe that. पिछले show, पिछले laurels जो हैं, वो सब खत्म हो चुके हैं. वो it's a closed chapter. It's a new ball game altogether. And I think that has worked for me, Amit, over the years because I never had that baggage ki are main to wo karke aaya hu main wo karke aaya hu. I have been very real in thinking ki yaar ye mujhe acha karna hai baki aage piche kisi ko yaad nahi hai at least mujhe nahi hai. So I think it's not an easy show for sure. Waat lagegi dal lagega khauf hoga but that is the show you have to overcome it.
0: गौरव आते हैं एक छोटे से शहर. छोटा तो नहीं बोलूंगा कानपुर एक बहुत बड़ा शहर है. तो कानपुर जैसे शहर से मुंबई तक की जर्नी जो होती है लेकिन जो जो जो जो बच्चे होते हैं जो छोटे शहरों से आते हैं दे आर नॉट प्रिविलेज्ड लाइक अ मुंबई दिल्ली कलकत्ता इस शहर से जो छोटे छोटे जहाँ रियल इंडिया है उनमें एक अलग जज्बा होता है जिंदगी लड़ने का. तो बींग फ्रॉम कानपुर वेयर थिंग्स आर नॉट ईजी फॉर समबडी हु इज ग्रोन अप इन मेट्रो. तो वो जो बच्चे वहां से आते हैं सपने लेकर मुंबई शहर में उनमें एक ज्यादा जज्बा फाइट का होता है आपको लगता है?
2: पता नहीं देखो कि मैं आया हूँ कानपुर से तो मैं अपने लिए बोल सकता हूँ. आजकल तो बच्चे हर जगह के बड़े इंटेलिजेंट हैं बड़े स्मार्ट हैं. हम लोग तो अलग जनरेशन के थे उस टाइम इंटरनेट नहीं होता था. मतलब होता था बहुत नेसेंट स्टेज थी वो डायलअप कनेक्शन से इंटरनेट लगता था. तो आई रिमेम्बर कि ऑफकोर्स थोड़े से एवेन्यूज कम होते थे उस टाइम जो किड्स हैं ऐसी सिटीज से. अभी तो चलिए इंटरनेट हर जगह एक्सपोजर हर जगह. इनफैक्ट अभी तो आईएससी वगैरह में कानपुर के बच्चे ने टॉप किया 100 out of 100. आई मीन इट्स कमेंडेबल आई एम वेरी हैप्पी. सो अभी तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुकी है क्योंकि वर्ल्ड हैज बिकम सो स्मॉल एंड यू नो ओपन फॉर एवरीबडी. बट हमारे टाइम थोड़ा सा एवेन्यूज कम थे एवेन्यूज. तो मैं मुंबई पहली बार आया था अपने एमबीए के लिए और मैं यहाँ पढ़ाई करके मैं जॉब कर रहा था. मैं मार्केटिंग मैनेजर था. मैं एक्टर बनने भी नहीं आया था. बट आई एम वेरी हैप्पी कि मुंबई ने मुझे यू नो ये सिटी आपको खुले हाथ से अपनाती है. एंड आई दैट्स व्हाई आई से मुंबई हैज बीन माय कर्म भूमि एंड कानपुर हैज बीन माय जन्म भूमि. सो कानपुर का जुझारूपन और मुंबई का प्रोफेशनलिज्म मिलके आज जो गौरव है वो आपके सामने है.
0: गौरव आप अपने सक्सेस को टेलीविजन को एट्रीब्यूट करते हैं लेकिन कई एक्टर्स मैंने देखे टेलीविजन से ही बड़े बड़े लेकिन टेलीविजन को दे लुक डाउन अपॉन. आई नो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मीडियम टू वर्क विद लेकिन इट्स द स्टिल द मोस्ट वॉच्ड द मोस्ट रीच्ड मीडियम. So why this attitude over looking down on television by certain people, certain thing? But abhi bhi, uska perception is still
2: पता नहीं यार अमित, आई फील आई एम वेरी हैप्पी डूइंग टेलीविजन, आई वुड जंप टू डू एनीथिंग गुड ऑन टेलीविजन. इनफैक्ट ये सारी चीजें टेलीविजन पे हैं, हमारे सारे होस्ट जो हैं वो सुपरस्टार्स हैं बॉलीवुड के, लेकिन वो भी तो टेलीविजन पे ही हैं. आप यू नेम अ सुपरस्टार फ्रॉम बॉलीवुड हु हैज नॉट कम ऑन टेलीविजन, यू कांट नॉट नेम एनी, ऑल द टॉप सुपरस्टार्स हैव कम. तो कहीं ना कहीं टीवी इज डीपली रूटेड इन इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यू नो, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज टीवी आपको रोज लोगों के घर तक पहुंचाता है. बॉलीवुड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा नंबर गेम है, लेकिन बॉलीवुड में आप हर 6 महीने में एक मूवी करते हो या 3 महीने में कर सकते हो, लेकिन अमूमन 6 महीने 8 महीने 1 साल में होता है. टेलीविजन में अगर आप एक अच्छा शो कर रहे हो तो आप रोज लोगों के घर जा रहे हो, एंड दैट रिकॉल इज इमेंस. एंड आई फील आई हैव नेवर लुक डाउन ऑन टेलीविजन. आई फील टेलीविजन इज एट पार विद एनी प्लेटफॉर्म टूडे ऑफ एंटरटेनमेंट, बिकॉज मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ. आज मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं टीवी की वजह से ही पहचाना जाता हूँ. आपके स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है. मैं जो रियलिटी शो किए हैं उसकी वजह से ही पहचाना जाता हूँ, और वो सब टीवी पे ही आता है. हाँ, OTT पे भी आना शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीवी पे नहीं है. टीवी इज स्टिल द मेन थिंग. ऑफकोर्स उसके साथ बहुत से और चीजें शुरू हो गई हैं, OTT है, ये है, वो है, बट आई थिंक आई विल ऑलवेज बी अ टीवी गाय. बट If I get something nice outside, I don't mind doing it.
0: तो खतरों के बाद हम क्या उम्मीद लगाएं? आप वापस अनुपम आ सकते हैं या कोई और शो में नजर आएंगे?
2: पता नहीं यार. The actor in me is waiting to get something nice, and I have a checklist of people I want to work with. तो जिनके साथ नहीं किया है अभी तक, हो सकता है उनके साथ मैं अगर भगवान ने चाहा तो कुछ अच्छा करूं. अगर anything which excites me in the first 5 minutes of hearing it, I always give it a thought again.
0: तो उम्मीद करते हैं कि खतरों के खिलाड़ी से हमें गौरव का एक नया अंदाज देखने को मिले. बट काफी सारे आपके नए पुराने लोगों का एक मिलन हो रहा है इसमें, और मेरे को पता चला है कि कोई एक ऐसा हमारा रियलिटी शो का एक कलाकार है जिसने एक्चुअली आपको प्रेरित किया बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी में जाने के लिए.
2: वो एक्चुअली सबसे पहला, उसके बाद भी लोगों ने किया, लेकिन सबसे पहला फैजू था
0: जी,
2: क्योंकि मैंने उसके साथ मास्टर शेफ किया था और हम लोग बहुत ही क्लोज हैं. ही इज एग्जैक्टली लाइक माय यंगर ब्रदर. तो जैसा मेरा मृदुल के साथ बिग बॉस में था, वैसा मेरा फैजू के साथ मास्टर शेफ में था. सो इट्स ही टेक्स मी एज हिज बिग ब्रदर, मैं उसको हमेशा छोटा भाई माना है. तो उस बंदे ने मुझे हमेशा कहा था कि भाई आप, और ये मिड सीजन ऑफ मास्टर शेफ बोल रहा हूँ, उसने हमेशा मुझे बोला था, मुझे याद है, आई स्टिल रिमेम्बर, उसने कहा भाई, ऐसी रैंडमली एक दिन बोला, कहता है गौरव भाई आप ना रियलिटी करो. तो मैं बैठा था, मैंने कहा यार क्या बोल रहा है तू, मतलब मैं एक मास्टर शेफ कर लूं बहुत है, इसी में वाट लगी हुई है, खाना बन नहीं रहा है, नंबर मिल नहीं रहे. तो कहता नहीं नहीं आप में वो है, यू हैव दैट स्पिरिट, आप बिग बॉस में तो जरूर जाना और आप खतरों में भी जाना. तो मैं हंसा था उस पर, मैंने कहा क्या बात कर रहा है,
0: जबान पर सरस्वती बैठी थी और देखिए.
2: पता नहीं, आई मीन आई ऑलवेज टेल हिम, मेरी बर्थडे पे भी आया था, मैं अभी 2 दिन पहले भी उससे मिला
0: जी.
2: तो मैंने कहा, इनफैक्ट जब मैं मास्टर शेफ जीता था तो उसने मुझे उठाया था, मुझे अभी भी याद है, ही वॉज वेरी हैप्पी. और फिर जब मैं बिग बॉस जीता तब भी मेरी बर्थडे पे आके उसने उठा लिया, उसने कहा देखा मैंने कहा था भाई आपको. तो अभी वो कह रहा है कि आप, मैंने कहा भाई वाट लगी है खतरों में, इट्स नॉट ईजी, मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा. कह रहा है जस्ट बी योर सेल्फ, फोकस करके करना, बाकी जो होगा देखा जाएगा. तो मैंने कहा ठीक है, तो वो तो करके अच्छा आया, तो मैंने कहा ठीक है चलो.
0: थैंक यू सो मच गौरव, हम काफी एक्सटेंसिवली बात की, लॉन्ग पेंडिंग था,
2: एंड
0: आई वांटेड टू ब्रिंग अ डिफरेंट साइड ऑफ गौरव करना, मोस्ट पीपल डोंट नो. आई होप आई ट्राइंग टू शो टेल माय ऑडियंस अ डिफरेंट स्टोरी ऑफ अ बॉय फ्रॉम कानपुर जर्नी टू रियलिटी किंग ऑफ इंडिया. सो आई होप इट्स कंटिन्यूड एंड यू कम बैक विद द ट्रॉफी ऑफ खतरों के खिलाड़ी.
2: होपफुली होपफुली, थैंक यू सो मच, बट आई जस्ट वांट टू टेक ईच एपिसोड एट वन टाइम, नो प्रेशर्स.
0: आई होप कि हम अगला इंटरव्यू आपकी ट्रॉफी के साथ करें. तो हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द बेस्ट.
2: थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू.
4: सफर तो तब और भी खूबसूरत बन जाता है जब कोई अपना साथ हो, और बिल्कुल ऐसी है ये कहानी. ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा. तो चलिए लेकर चलते हैं आपको रक्षित और अपराजिता के पास, और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज. मुझे तो लग रहा है अब पड़ेंगी यहाँ पर नजदीकियां और हमारे लिए आएंगी ढेर सारी गुड न्यूज. लेट्स चेक इट आउट.
5: छोड़ो, कोई है? मुश्किल में फंसी अपराजिता,

0: अब नब्बे को हाथ लगा के दिखा।
1: बस कीजिए, बस कीजिए, प्लीज बस कीजिए।
0: बस करूंगा, पहले देखू तो सही इस मुखौटे के पीछे कौन सा दानव छुपा है।

0: एक पति को अपनी पत्नी की हिफाजत करनी चाहिए। मेरा पति, मेरा पति मुझे खतरे में डाल रहा है।
1: भाग्या, तुम तो ठीक हो ना?
0: बैठी उधर।
1: क्या?
0: आइए बैठिए।
2: ऐसे में रक्षित के हाथ में लग गई है चोट और देखिए कैसे खुल गया है अपराजिता के बैग का पिटारा, जिसमें से निकल रही हैं अलग अलग चीजें और फाइनली उन्हें मिल गई बैंडेड ताकि वो रक्षित की चोट पर लगा सके।

0: बैग है किराने का दुकान, मंत्री से लेकर बैंडिट सब कुछ है तुम्हारे बैग में।
1: आई हैव टू से आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मैं कर देता हूँ।
2: और इसी बीच दोनों के बीच हो रही है ढेर सारी बातें, यानी कि जुड़ रहा है इनका किस्मत कनेक्शन।
1: तुम उसे फाड़ोगी, मेरे मेरे हाथ पे बांधोगी और बैकग्राउंड में ना इसे फिल्मी म्यूजिक बजेगा।

0: लड़कों के लिए ना घर से बाहर निकलना बहुत आसान रहता है। फोन दिया, वॉलेट उठाया, निकल गए। लड़कियां जब घर से बाहर निकलती है ना, अकेली नहीं निकलती। अपने माँ बाप की उम्मीदें, उनकी टेंशन, उनके सपने, उनके सारे डर सब साथ में लेकर निकलती है। इसलिए हर चीज की तैयारी होती है, हर उम्मीद, हर सपने, हर टेंशन, हर डर से लड़ने की तैयारी। किसी इंटरव्यू से पहले अगर कुर्ती फट जाए तो सेफ्टी पिन, बटन टूट जाए तो सुई धागा, कहीं अगर भूख लग जाए तो कुछ नाश्ता, भीड़ में अपनी सेफ्टी के लिए पेपर स्प्रे, और कभी अचानक हीरोगिरी की जरूरत पड़े तो बैंडेड। इस बैग में आपको सब मिल जाएगा, किसी मर्द के सहारे के सिवा और किसी फिल्मी दुपट्टे के सिवा।
1: थैंक यू।
0: तो आप वाकई अपने वादे के पक्के हैं? कहा था ना मुझसे, मुझे बचाने आएंगे।
2: चुड़िया से बचाया था तुम्हें, प्रॉमिस कर दो आगे चलकर बड़े बड़े चूहों से भी बचाऊंगा।
3: बड़े बड़े चूहों से?
2: से ये वाला चूहा तो काफी बड़ा था। देखो तो बाहर के चूहों से तो बचा लूंगा, लेकिन अगर घर के अंदर कोई चूहा निकल आए ना तो तुम्हें फट्टू नहीं,
0: पटाखा।
2: एजिंग पटुका बनना है
4: भाई। इसी के साथ देखिए कैसे रक्षित फिर एक बार पहुंच गए हैं अपराजिता और उसके पापा की रक्षा करने के लिए। जबीरा कर रही थी उनका अपमान।
5: आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को वैसे मत।

0: ये काम बदतमीजी है राम, तुमने जो कुछ भी किया ना उसके लिए तुम राम गोपाल अंकल से माफी मांगोगी। कमा
1: मैं क्यों माफी मांगू?
0: तुम्हारे पापा की उम्र के आदमी के साथ तुमने जो बदतमीजी की है उसके लिए माफी मांगो।
2: तो भाई अब देखना होगा कि कैसे इन दोनों की ये दोस्ती प्यार में बदलती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: यहाँ तो दिल से दिल तक का सफर इमोशंस और लव से भरा है। कितनी प्यारी है अनु और आर्यवर्धन की ये जोड़ी। एंड फाइनली अब तो बन रहे हैं ये शादी के बंधन में और सुनने में आया है होने वाली है यहाँ पर एक ग्रैंड शादी। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको तुम से तुम तक के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है कहानी में आज।

0: अनु और आर्या की होने जा रही है शादी। मेहंदी के लिए सजती सवरती अनु,
1: चौखट के बाहर क्या गए,
0: देखी अनु की एक्साइटमेंट।
1: कुड़माई के दिन आ गए।
0: जी टीवी के सीरियल तुमसे तुम तक में फाइनली फैंस को जिस चीज का इंतजार था आज वो होने जा रहा है, यानी कि होने जा रही है अनु और आर्यवर्धन की शादी।

0: और शुरू हो चुकी है शादी की रस्में और होने जा रही है मेहंदी की रस्म, जिसके लिए आज सज संवर रही हैं अनु यानी कि सास बहू और बेटियां। पहुंच गया है अनु के मेकअप रूम में, जहां पर अब निहारिका अनु के किरदार में ढलेगी यानी कि मेहंदी वाले रुक में रेडी होगी। वैसे तो अनु का लुक सीरियल में काफी सिंपल है, लेकिन शादी की रस्में हैं और खासकर मेहंदी है, तो ऐसे में आज मेकअप थोड़ा लाउड होने वाला है। ड्रेस भी अनु ने चमचम पहनी है, तो आइए सीधा चलते हैं अनु के मेकअप रूम में और देखते हैं कि कैसे वो आर्यवर्धन के लिए सज संवर रही है।
1: सो फाइनली हम पहुंच गए हैं तुमसे तुम तक के सेट पर, और फैंस को जिस चीज का इंतजार था वो होने जा रहा है, यानी अनु और आर्या की शादी। और हमारे साथ है अनु जो मेहंदी के लिए रेडी हो रही है। सो कितनी एक्साइटेड है?
2: वेरी वेरी एक्साइटेड, और हर ओकेशन पे हम लोग एक डिफरेंट लुक करने का ट्राई कर रहे हैं, तो ये है मेरा मेहंदी का लुक। आई होप आप सबको अच्छा लगे।
0: भाई सीरियल की दुनिया है, ऐसे में जल्दी जल्दी रेडी होना है, तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग हो रही है, जहाँ अनु का मेकअप भी हो रहा है, हेयर स्टाइलिंग भी हो रही है और अनु के दोनों हाथों में मेहंदी भी लगाई जा रही है एक स्पेशल सीन के लिए। बेचारी अनु तो पूरी बिजी है, लेकिन फिर भी सास बहू और बेटियां के फैंस के लिए वो बता रही है कि इनके लुक में आज क्या कुछ खास है, कैसे वो स्किन प्रेप करती है और मेकअप आज कितना खास होने वाला है।
2: तो वैसे आप सब जानते हैं कि अनु का मेकअप कितना ही नेचुरल सा होता है, नो मेकअप मेकअप लुक होता है, बट अब आज मेहंदी है तो हम लोग थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, लाइक आइस के साथ हमने थोड़ा सा ग्लिटर किया है और हेयर में भी डिफरेंट जो अनु की सिग्नेचर हेयर स्टाइल है उससे तो अलग ही। हम लोग फ्लावर्स लगाने वाले थे पहले, पर हमने फ्लावर्स फिर कैंसिल कर दिए बिकॉज ईयरिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है इस आउटफिट के साथ, और हेयर एक्सेसरीज के साथ हमने वो ईयरिंग पहनी है। जब आप फाइनल लुक देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे तो बहुत प्यारा लगा। अनु का तो पता नहीं, निहारिका बहुत पसंद करती है, क्योंकि मेरे हर शो में मुझे हमेशा नो मेकअप मेकअप लुक ही करने मिलता है, तो जब ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ। हमेशा मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ कि फाइनली अब मुझे कुछ तो डिफरेंट करने मिलेगा। तो इस सबका क्रेडिट जाता है हमारे जो कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट हैं शो के, जो क्रिएटिव टीम है, वो लोग बहुत दिन पहले से इसमें लगे रहते हैं कि अनु का इस फंक्शन का लुक क्या होगा, उस फंक्शन का लुक क्या होगा, तो आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। रियली मेरे को मुझे ऑनेस्टली सारे फंक्शन के लुक्स बहुत अच्छे लगे।

0: मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपना स्किन केयर बहुत अच्छे से करूँ. मतलब कितनी भी थकी हुई हूँ, रात में कितना भी लेट पैकअप हुआ हूँ, मैं हमेशा डबल क्लेंस करके अपनी यू नो क्रीम्स वगैरह सिरम वगैरह सब लगा कर ही सोती हूँ, बिकॉज आई थिंक वही हेल्प करता है इन द लॉन्ग रन. ऑब्वियसली स्किन उतने अच्छे से ब्रीद नहीं कर पाती है एंड यू नो कॉन्स्टेंटली लुक चेंज होते हैं. कभी जैसे अभी मिनिमम मेकअप था, अभी बढ़ रहा है, फिर मिनिमम करना पड़ेगा, तो काफ़ी स्किन यू नो डेफिनेटली एग्जॉस्ट तो होती है. तो मैं उस हिसाब से ध्यान रखती हूँ कि जितना मैं अपनी स्किन का केयर कर पाऊँ. और जब ऑफ होता है तो मतलब मैं मेकअप का एक कण भी अपने मुँह पर नहीं लगने देती हूँ, बिकॉज इतना मेकअप लगा लगा के आई जस्ट लाइक माई नेचुरल स्किन. पहले बचपन में बहुत पसंद था, बट अब इतना कर लिया है कि थोड़ा सा मन उठ गया है. तो आई लाइक स्किन केयर. अगर आप पूछोगे तो मुझे मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैंने कोई फेस मास्क लगाया हो, कुछ हाइड्रेटिंग सा, तो आई लाइक दैट. जब भी टैनिंग हो जाती है तो मम्मी वो हल्दी बेसन का जो अपना यू नो एवरग्रीन नुस्खा है वो तो करती हूँ, बट मैं काफ़ी ट्राई करती हूँ नो मेडिक वाली प्रोडक्ट्स पे भी जो मेरे डर्माटोलॉजिस्ट मुझे रिकमेंड करते हैं. तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स. अभी बेस लगाया जा रहा है, थोड़ा हैवी होगा नॉर्मल डेज से. जो अन्नू का तो एकदम ही बेस नहीं होता है ना के बराबर, तो आज हम थोड़ा सा करेंगे क्योंकि आज अन्नू का स्पेशल डे है. एक्चुअली हम सीरियल में बहुत चीटिंग करते हैं, तो कभी कभी हम आगे का सीन पहले करके बाद का बाद के लिए छोड़ देते हैं. तो उसी का ये नो ये हो गया है कि अभी मेहंदी का सीन है, बट हमने वो शूट कर लिया जिसमें मेहंदी रख चुकी है, तो अब हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ ताज़ी ताज़ी मेहंदी लगी है. तो अभी जो ये मेरे हाथ पे लगा रही है मेहंदी नहीं, एक्चुअली कोलगेट है.
1: तो देखा आपने, सीरियल की लाइफ इतनी भी आसान नहीं होती है. अनु तो पूरी तरह बिजी है, उनके दोनों हाथों में मेहंदी भी लग रही है. तो आइए मेहंदी के बारे में कुछ और जानते हैं.

0: वही सोच रही हूँ कि वी हैव अ सीन टेरेस पे और मैं टेरेस पे अब कैसे जाऊंगी इस इन हाथों के साथ और इस
1: लहंगे
0: के साथ. आई थिंक इट्स गोना बी अ टास्क. बड़ा ही हो मेरे जो ड्रेपर दीदियाँ हैं, हेयर दीदियाँ हैं, वो मुझे सपोर्ट करके ऊपर लेकर जाए. देखिए इतना तो मुझे आइडिया है नहीं, बट जो भी इन दोनों ने बनाया काफ़ी अच्छा बनाया. तो
1: आर्या आर्या का नाम लिखा है
0: जी, बिल्कुल ए लिखा है, ए फॉर अनु, ए फॉर आर्या. और यही सेम एक ए आर्या सर के हाथों पर भी है. तो जब हम इसे मर्ज करते हैं तो यू नो दैट कपल गोल वाला ए ए ए विथ हार्ट बन जाता है. बस बिंदी बाकी है. आई थिंक विल जस्ट मैच थोड़ा सा नेक, बिकॉज नेक पे बिल्कुल बेस नहीं होता तो थोड़ा ऑफ लगता है. तो बस वही करेंगे एंड देन आई एम लाइक मोस्ट रेडी. ज्वेलरी आई वेयर ऊपर जाके क्योंकि काफी हैवी झुमका है.
2: तो भाई अब अनु पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, लेकिन बाकी की भारी भरकम ज्वेलरी वो सेट पर पहनेंगी. तो चलिए हम भी चलते हैं सेट पर और देखते हैं कि कैसे शूटिंग चल रही है.

0: ऑलमोस्ट रेडी, बस इयररिंग्स बाकी हैं और मैं अभी नहीं पहनूंगी बिकॉज दे आर सुपर हैवी और अभी मुझे इस पूरे तामझाम के साथ छत पर चढ़कर जाना है. तो बट इट्स ऑल वर्थ इट बिकॉज आप लोग शो को इतना प्यार देते हो, अनु को इतना प्यार देते हो, आर्या को इतना प्यार देते हो. तो बस अब अनु आर्या एक होने जा रहे हैं तो एक भी एपिसोड मिस मत कीजिए. तो अनु आर्या का जो रोमांस है वो बहुत ओल्ड स्कूल है, आपको पता है दोनों को एक दूसरे को लेकर केयर बहुत ज़्यादा है. तो अनु अब छोटी सी बात से रूठ गई है कि आर्य सर ने उसको टेंशन नहीं दी, तो अभी आर्य सर अपने यू नो किए का भुगतान करेंगे और अपने हाथों से खाना खिलाएंगे क्योंकि मेरे हाथ में मेहंदी रखी.
1: सीन के बीच में ही अनु ने बताया उनका पूरा लुक और साथ ही किया अपने फैंस को अनु रिया की शादी के लिए इनवाइट.
0: काफी हेवी हैं पर देखने में प्यारे लग रहे हैं तो इसलिए मैंने पहन लिए कि चलिए आपको अनु का ऐसा रूप बहुत कम देखने मिलता है तो आपको बेस्ट देखने में. एक्चुअली पहले हम सिर्फ ये पहनने वाले थे बट यहाँ का सेक्शन खाली लग रहा था तो इनिशियली हम लोग फ्लावर्स लगाने वाले थे बट फिर फ्लावर्स बहुत डन एंड डस्टेड है तो फिर हमारी हेयर दीदी क्रिएटिव्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम इसे पहनेंगे और इससे मेरे थोड़े से कान को सपोर्ट मिल रहा है. ऑनेस्टली देखिए मैं तो इस हेयर का बिल्कुल नहीं चाहती कि अब कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स आए क्योंकि बहुत वेट कर लिया, एक साल काफ़ी लंबा वक्त होता है. तो अब बस आप टेंशन फ्री हो जाइए और अनु रिया की शादी का मजा लीजिए देखते देखते.

0: तो भाई बात करें सीन की, तो यहाँ पर अनु के हाथों में तो मेहंदी लगी है और मेहंदी की रस्म में लाइट भी चली गई थी। ऐसे में आज आर्यवर्धन खुद पहुँचे हैं अनु को अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए। यहाँ पर देखने को मिला इनका रोमांटिक मोमेंट।
1: और जैसे ही लाइट आई मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा, सबसे बात कर रहे थे, कभी इससे कभी उससे, कभी मम्मी से कभी रजनी आंटी से, सबसे मेरी तरफ देखा भी नहीं ना मुझसे बात की।
2: बात इसलिए नहीं की क्योंकि जब तुम मेहंदी लगा रही थी मेरी सारी बातें जैसे मेरे दिल में ही रह गई। हेलो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मेहंदी लगवाऊंगा, तो तुमने एक बार क्या पूछ लिया, मैं ना ही नहीं कह पाया। खाना खा लो।
1: नहीं खाना मुझे, आपने तो खाना खा लिया ना, अब आपको मेरी याद आई है। जाइए
3: अनु, आर्य सर ने अभी तक कुछ नहीं खाया, वो भी भूखे हैं।
1: ऐसे क्यों किया आपने, आपने क्यों नहीं खाना खाया, आपको पता नहीं आपको उसके बाद मेडिसिन लेनी होती है। अभी आप चुपचाप पहले खाना खाइए।
2: जब तक तुम नहीं खाओगी मैं भी नहीं खाऊंगा।
1: मैं कैसे खाऊं, देखिए मेरे दोनों हाथ में मेहंदी लगी हुई है।

0: अब मैं निकलता हूँ क्योंकि शायद बारिश शुरू होने वाली है, और तुम भी अंदर जाके बैठो नहीं तुम्हारी मेहंदी गीली हो जाएगी।
1: अब सर मैं शब्द ढूंढ रही हूँ पर मिल नहीं रहे। मुझे लगता है कुछ चीजें ना सिर्फ महसूस की जाती है, बोली नहीं जाती। मेरी किस्मत ने सच में मुझे मेरी सोच से भी बढ़कर दे दिया। आपका बस मेरी जिंदगी में होना ही ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है।
2: वहीं दूसरी तरफ पुष्पा भी काफी परेशान हो रही है क्योंकि जल्द ही होने वाली है हल्दी की रस्म, लेकिन घर में पानी ही नहीं आया है। ऐसे में मोहल्ले वाले और पुष्पा हो गए हैं परेशान।
3: अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो सब लोग?
4: अरे पुष्पा तेरे घर तो हल्दी है ना, और आज पानी का टैंकर नहीं आया
3: है। क्या?
4: अरे बिना पानी के हल्दी का प्रोग्राम कैसे करोगे? पूरे मोहल्ले में पानी नहीं है।
5: अरे पानी नहीं, नहाएंगे नहीं तो जाएंगे कैसे? अरे यार कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना।
3: अब क्या होगा, मेरे तो मेहमान आने वाले हैं, कैसे होंगे?
2: वैसे बात करें इमोशंस की तो जल्द ही अनु इस घर से विदा हो जाएगी। ऐसे में अपने मम्मी पापा के साथ देखिए कैसे वो अपने बचपन की यादें ताजा कर रही है और हो रही है और भी ज्यादा इमोशनल। यहाँ देखने को मिला परिवार का बॉन्ड।

0: डर है,
1: बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मतलब पूरे एक साल के सफर के बाद उसे अपना प्यार मिलने जा रहा है। पर एक होता है ना माँ बाप से दूर जा रही है, उसका तो दुख रहेगा ही, तो दोनों के बीच में है फंसी हुई।
2: तो भाई आप सभी हो जाइए तैयार अनु और आर्यवर्धन की शादी देखने के लिए, क्योंकि इसमें है धमाल अनलिमिटेड। मुंबई से पूजा त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: अब कुछ लोग प्रेफर करते हैं लग्जूरियस सफर जो होता है बहुत ही रॉकिंग, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग प्रेफर करते हैं बैकपैकिंग जो हो सकता है इन लग्जूरियस ट्रैवलर्स के लिए शॉकिंग। कुछ ऐसी ही रॉकिंग, कुछ ऐसी ही शॉकिंग है हमारे पास। ये सारी खबरें जिन्हें ले आए हैं हम एक साथ आपके लिए इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट में, क्योंकि एंटरटेनमेंट की दुनिया भी रोजाना नहीं होती है एक जैसी, तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
2: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं अनुपमा की, जहां पर सेट पर हो रहा है सेलिब्रेशन। मनाया गया सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर इंद्रजीत मुखर्जी का बर्थडे, जहां पहुंचे हैं राजन शाही, दीपा शाही और साथ है अनुपमा की कास्ट भी। देख लीजिए बर्थडे सेलिब्रेशन के ये नज़ारे।

0: artificial intelligence spreadsheet boy.
1: You must be Aina, the child-loving chaos girl.
0: तुम जैसे लोग ना लाइफ को एक फॉर्मूला की तरह जीते हो. X plus Y equation balance हुई तो रिलेशनशिप वाह वाह वाह वाह.
2: एटलीस्ट मेरे फॉर्मूला में क्लैरिटी तो है.
3: म्यूजिकल रोम कॉम में नजर आने वाले हैं करण वाही और सुरभि ज्योति. सामने आया है इसका ट्रेलर, आप भी डालीजिए इस पर एक नजर.
0: लिव योर लाइफ हियर एंड नाउ, क्योंकि हम जिंदगी को दिमाग से एनालाइज करते हैं पर जिंदगी जी दिल से जाती है. एक्चुअल में अगर कोई तुमसे पूछे आज रात के बाद दैट डिड यू फॉल इन लव तो क्या बोलोगे?
1: मैं बोलूंगा कि कुछ तो हुआ.
4: तू मुझे अपना लगे, अपना लगे यारा भी सफल से. तू मुझे अपना लगे,
1: I really want to live with you.
0: अगर ये फीलिंग और बढ़ गई और मैं गायब हो गई तो?
1: किसी को अपने इतने करीब ही नहीं आने देता कि मैं हर्ट हो जाऊं अगर वो चले जाएं. ये है मेरी दुनिया. For me, it's always been me.
0: कुछ लोग हमेशा के लिए नहीं होते लेकिन वो आपकी पर्सनालिटी में कुछ बदल के चले जाते हैं.
3: रहमान खान जल्द नजर आने वाले हैं उनकी आने वाली नई मूवी गूंज में, जिसके BTS नज़ारे उन्होंने शेयर किए हैं. वैसे आपको बता दें कि ये फिल्म 2 जून को रिलीज हो जाएगी.

मोहनलाल ने मनाया अपना जन्मदिन। देख लीजिए इनका बर्थडे सेलिब्रेशन। स्टार प्लस पर आने वाला है जल्द नया सीरियल जिसका नाम है सैराम, जिसमें बन सकती है जोड़ी रोहित चंदेल और मदिराक्षी की, ऐसा सुनने में आ रहा है।

0: डाल लीजिए इंडिया बेस्ट डांसर के इस नए प्रोमो पर, जहां पर लग गया है डांस का तड़का और जजेस भी हो गए हैं डांस दीवाने।
1: असली फिल्मी जो एक फन होता है वो देखने को मिला।
2: रितेश आया था सीजन 2
3: जी मैम।
2: अब गुरु है ना इनके।
3: जी मैम, जी मैम।
4: मेरे सर ने कसम खाई थी कि जब तक मुझे बेस्ट डांसर ना बनाते तब तक वो शादी नहीं करेंगे।
2: हो गई?
3: नहीं हुई मैम।
1: अब तो शादी पक्की।
5: सेलिब्रेटिंग किशोर कुमार एंड अर्दीप अरोड़ा।
0: इंडियन आइडल का नया प्रोमो देख लीजिए, जहां पर होगा किशोर कुमार और आरी बर्मन स्पेशल एपिसोड।
6: किशोर दा, पंचम दा,
7: कितना मिला है हम सबको इन सबसे।
8: अब तो तेरा किस्सा खत्म।
0: नजर डाल लीजिए पति ब्रह्मचारी के नए प्रोमो पर, जहां ईशा का बदल गया है भेस और कहानी में आया है नया ट्विस्ट।
9: सूरज के सामने आएगा ईशा और आकाश के रिश्ते का सच।
10: बरेली के इस नमूना भवन में आपका स्वागत है। ये हैं अजब सिंह बच्चन।
0: देख लीजिए बरेली के बच्चन के बच्चन का ये नया प्रोमो, जहां पर कृष्णा ले आया है दुल्हनिया। अब कहानी में आएगा नया ट्विस्ट।
10: टैक्सी चलाते चलाते ऐसा जुगाड़ बिठाया, बेचारी संगम को ब्याह के घर ले आया। ससुराल में मचा है छीछा लेदर, कैसे रहेगी संगम बरेली वाले बच्चन के घर।
0: के सेट के बाहर नजर आए गुरमीत, देवीना और भाग्यश्री।

0: Excuse me? We don't want to talk to you. We don't want to talk to you. We don't want to talk to you. Is that what you're going to say?
1: Your father made us do that. Saying that you do it like this.
2: So isolated.
1: The guy creates narrative. You know?
0: You.
1: Now, Ori is not coming back.
3: Aye. Trot bhai.
4: जल्द आने वाला है एक नया रियलिटी शो जिसका नाम है भोजपुरी बवाल। देख लीजिए इसका ये प्रोमो जहां नजर आ रहे हैं पवन सिंह, दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ और कई और सितारे। बीती शाम हुई चांद मेरा दिल की स्पेशल स्क्रीनिंग जिसमें नजर आए निखत खान, मनोज भावा, अनुपमा चोपड़ा और कई और सितारे।

0: हमारी वसुधा के लिए तो हर दिन एक नया इमोशनल सफर लेकर आता है। सच में इनकी कहानी में इतने सारे उतार चढ़ाव हैं, इतनी सारी उलझने हैं कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि किस तरह करती हैं ये हर सिचुएशन को हैंडल। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको वसुधा के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज।
1: फिर एक बार वसुधा बना नंबर वन शो। सेट पर हुआ सेलिब्रेशन। सितारों की खुशी। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है जी टीवी के सीजन वसुधा के सेट पर, जहां पर केक काटा जा रहा है। सभी के चेहरों पर ढेर सारी खुशी है, मुस्कान है और सभी कर रहे हैं सेलिब्रेशन। और ऐसा हो भी क्यों ना, लगातार तीसरी बार वसुधा सीरियल नंबर वन जो हुआ है, ऐसे में सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। भाई सबसे ज्यादा खुश तो वसुधा है और पूरी कास्ट एंड क्रू के साथ मिलकर देखिए कैसे वो केक काट रही है। साथ है देव और बाकी के सभी लोग। सीरियल में कई सारे ड्रामे ट्विस्ट आ रहे हैं और लोग वसुधा को खूब प्यार दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं सेट पर किस तरह से सेलिब्रेशन चल रहा है।
2: तो बिल्कुल मत बोलना कि वसुधा नंबर वन नहीं है।
1: ये इन कलाकारों से ही जानते हैं कि उन्हें कितनी खुशी है और अब उन पे प्रेशर भी है क्योंकि नंबर वन जो रहना है।
3: बहुत अच्छा लग रहा है, एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है हेल से। बट या ये हम सबकी मेहनत है, हम सबको रिवॉर्ड मिल रहे हैं कि हम नंबर वन पे हैं तो अच्छी बात है। हम सब ने ये मतलब एक ड्रीम होता है सबका कि हम नंबर वन पे आए, नंबर वन पे आए और हम फाइनली पहुंच गए। कैसे कैसे पहुंचे गए तो हम जानते हैं, हमें 2 साल लग गए लगभग नंबर वन पे आने के लिए। बट या दैट हार्डवर्क वॉज वर्थ इट। और ये अकेले किसी एक्टर की मेहनत नहीं है या किसी ओनली डायरेक्टर्स की मेहनत नहीं है, पूरी क्रू की मेहनत है। द लाइटिंग्स, द कैमरामैन, द प्रोड्यूसर, स्टोरी टेलर एंड एवरीथिंग क्रिएटिव्स, सबको मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। हमारी टीम इतनी अच्छी है, हमारी हमारे एक्टर्स इतने अच्छे हैं, को एक्टर्स हमारी बॉन्डिंग को एक्टर्स के साथ बहुत अच्छी है और सब इतने परफेक्ट है अपने काम हाल से, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो कोई भी हो, क्रिएटिव्स हो, सबको पता है कि उनका काम क्या है। और हम भी अपने कैरेक्टर को ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाए। अगर इमोशनल सीन है तो इमोशनली कनेक्ट कर पाए, अगर हैप्पी सीन है तो वो भी हैप्पी हो। और ऑब्वियसली हमारी ऑडियंस ने हमें इतना प्यार दिया है तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी और मैं कहना चाहूँगी कि आज हम जो भी हैं आपके प्यार की वजह से हैं।
4: ये ऑडियंस का प्यार साबित करता है कि वो वीक बाई वीक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारे पूरे शो को, हमारे पूरी कास्ट को अपना प्यार बेशुमार देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब ऑडियंस की तरफ से हमें ऐसा लगता है कि ऑडियंस हमें उतना प्यार दिखा रही है और हमारे हर एपिसोड के साथ जुड़ी रहती है और हफ्ते दर हफ्ते हमारा शो देखती है, तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई गुजबम्स नहीं, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोशिश रहती है हमारी कि हम कोशिश करें कि हम हमेशा से एक पोजीशन जो हमने बनाई है उसको बरकरार रखें और ऐसे ही चलते रहें। लेकिन मेजर फोकस ये होता है कि हम किस तरह से अपनी कहानी से ऑडियंस को जोड़ें, ऑडियंस को रिलेटेबल बनाएं, ऑडियंस समझे, और ऑडियंस जितना प्यार दे हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है। उसी प्यार को आप TRP के रूप में देख सकते हैं। बट यस, मैं हर बार यही कहता हूँ कि पार्ट एंड पार्सल है तो इतना उससे ऐसे अटैच नहीं होना है, बट यस बहुत खुशी की बात है।
5: हाय हमारा राम जी, खुशी का तो ठिकाना रही है क्योंकि इतनी मेहनत चल रही है ना, आर्टिस्ट भी, यूनिट भी इतना काम कर रही है। हमारे डायरेक्टर्स को अगर आप देखोगे तो जो 8:30 बजे की उनकी एनर्जी रहती है, रात 9:30 बजे तक हमारा पैकअप रहता है, लेकिन फिर भी वही एनर्जी से, उसी एनर्जी से वो काम करते हैं। और इतनी मेहनत चलती है यहाँ पे, पूरा यूनिट काम करता है, किसी को यूनिट गैप भी नहीं मिली है बहुत दिनों से, तो उसकी भी कंप्लेंट नहीं है एक्चुअली. और देखा जाए तो जो स्टोरी ले रही है, जो जिस तरीके की स्टोरी आ रही है, वो इतनी सुंदर स्टोरी है कि लोग ऑब्वियसली ये करेंगे कि बापरे, मतलब अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है. मतलब सारिका का जो कैरेक्टर है वो भी ट्विस्ट ले रहा है, मयूर जी का कैरेक्टर है वो ट्विस्ट ले रहा है, इवन करिश्मा का भी कैरेक्टर अपने आप में बहुत ही बेहतरीन हुआ है. तो कैरेक्टर पर भी काम किया जा रहा है, स्टोरी पर वर्क किया जा रहा है और लोगों को एंगेज किया जा रहा है.
1: भाई बात करें सीन की तो यहाँ पर आ गई हैं खुशियाँ, पूरा परिवार एकजुट हुआ है और देखिए कैसे आज वसुधा बन गई है मास्टर शेफ और अपने हाथों से सभी घर वालों को खाना सर्व कर रही है, यानी कि यहाँ पर डाइनिंग टेबल पार्टी चल रही है.

0: तो भाई कुछ ऐसा है इस घर में खुशियों का माहौल।
1: एक्चुअली अभी जो हम सीन कर रहे हैं इसमें वसुधा खाना बनाती है और हम बहुत दिनों बाद अपने घर में लौटे हैं, पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा है। ये बहुत दिनों बाद हुआ है क्योंकि अभी तक सारी फैमिली सर्वेंट क्वार्टर में रह रही थी। तो आज बहुत खुशी का दिन है और वसुधा ने सबकी मनपसंद का खाना बनाया है और सब बहुत हंसी खुशी खा रहे हैं। यहीं दादी बोल देती हैं कि मैं रनकपुर चली जाऊँगी तो सब उन्हें रोक भी लेते हैं, तो सब सॉर्ट हो जाता है एंड में और सब बहुत खुश है।
0: तो भाई अब देखना होगा कि सीरियल में और कौन कौन से ट्विस्ट आते हैं जो लोगों को करते हैं काफी एंटरटेन।
2: तुम लोग मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते, अरे तुम लोगों के पहुंच के बाहर हूँ मैं।
3: अब तुम्हें सजा जनता ही देगी।
0: मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: हमारा घर हमारा सब कुछ हम वापस ले लेंगे।
4: सूरज और ईशा, जितना ड्रामा रहा है ना हाल ही में आपकी कहानी में, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सबसे अच्छा समर ट्रैवल ब्रेक तो आप दोनों ही रिजर्व करते हैं और आप दोनों की इसकी बहुत जरूरत भी है, क्योंकि देखिए डेस्टिनेशन चेंज होगी, माहौल चेंज होगा तो आपका माइंड भी हो जाएगा फ्रेश। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको पति ब्रह्मचारी के सेट पर और देखते हैं क्या है कहानी में नया ड्रामा।
0: और ईशा की खट्टी मीठी नोकझोंक।
5: क्या किया? मेरे पूरा सूट खराब कर दिया।
6: अरे चोल माल है भाई।
0: कभी करते प्यार तो कभी तकरार।
7: और जोर से हंसिए।
0: सूरज और ईशा का इमोशनल अत्याचार। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज ईशा सूरज को परेशान करने पहुंच गई है। असल में उसे पता चला है कि सूरज ने अपना ब्रह्मचर्य तोड़ा है घूंघट वाली महिला के कंधे पर हाथ रखकर। इसीलिए तो वो जानना चाहती है कि आखिर वो महिला कौन थी। तभी तो वो ये अनोखा खेल खेल रही है जहां सभी को लड़कियों के नाम लेने हैं, लेकिन यहाँ तो सूरज ईशा का ही नाम लेता है।
5: लड़कियों से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो हमें लड़कियों से जुड़ा ही कोई नाम देना चाहिए। और ऐसा क्यों बॉस? सर अब तो आप विवाह नहीं बन सकते। क्यों मिश्रा जी? नथिंग मोर वीडियो।
8: सर बात तो सही है।
5: तो बॉस शुरू करें। मैं शुरू करती हूँ। क्रांति
8: बेटा आरती ईशा।
0: ईशा को जेलेसी भी है और साथ ही साथ वो जानना भी चाहती है कि आखिरकार सूरज की लाइफ में कौन आई है। तभी तो जब सूरज बंठन के बाहर जा रहे होते हैं तो उसे होने लगती है और भी ज्यादा जलन और वो पहुंच जाती है सूरज से सवाल जवाब करने के लिए कि आखिर सूरज किससे मिलने जा रहे हैं।

0: क्या किया? मेरे पूरे सूट खराब कर दिया।
1: अच्छा, आप मेरे कपड़े खराब करने वाली थी। ये काम ढंग से नहीं होता।
0: अच्छा, अब बताओ क्या मुझसे ढंग से
1: होता? एक मिनट, एक मिनट, दो रही, दो रही। मेरे कपड़े खराब नहीं होते।
0: वैसे इतना चमकते महक के कहाँ जा रहे? आज शाम की तो कोई आपको नहीं है।
1: जरा घड़ी पे गौर फरमाइए। ऑफिस आज खत्म हो चुका, मेरे भी और आपके। अब मैं जहां चाहूं वहां जाऊं, मुझे आपको कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी चलिए बता ही देता हूं, आप मेरी सेक्रेटरी है ना, इसलिए मिनिस्टर साहब ने डिनर पे इनवाइट किया, बस वहीं जाऊं।
2: ईशा को शक हो रहा है सूरज पे, क्योंकि सूरज की एक फोटो देख लेती है ईशा, जिसपे एक लड़की पीछे बैठी है घूंघट में। तो ईशा बार बार वो जेलसी हो रही है, चिड़चिड़ी हो रही है कि ये कौन है। अलग अलग तरीके से पूछना चाह रही है कि वो लड़की का नाम क्या है। तो एक गेम खिलाती है सबको कि लड़कियों का नाम लेता है, जो जो नाम पहले माइंड में आए वो बस बोल देना है। तो वो जानना चाहती है कि वो लड़की का नाम क्या है, सूरज किससे मिल रहा है। तो छोटी छोटी बातों में वो नोकझोंक जेलसी चीज दिखाई है। और सूरज परफ्यूम कर रहा है, खुद को तैयार होकर जा रहा है। तो ईशा को वो भी लगता है, अरे ये इतना बंधन के कहाँ जा रहा है, अभी तो मीटिंग भी नहीं है। तो उसी चक्कर में छींक छींक आती है और सूरज मुझ पे वो चाय गिरा देता है। तो फिर थोड़ी सी वो होती है कि तुमने मेरा खराब कर दिया ड्रेस, ये वो। और उसी एंड एंड में ये बात होती है कि पूरन भैया आए, तो मैं बाहर चली जाती हूँ और पूरन भैया से मुझे चीज़ें पता लगती है कि उनका ब्रह्मचर्य नहीं टूटा है, वो लड़की लड़की कोई और थी। और ये सारा सीन था।
3: लेकिन यहाँ पर भी ईशा देखिए, सूरज के जाते ही खुशी से झूमने लगी और करने लगी हैप्पी डांस, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि पूरन ही था, जो भेस बदल कर सूरज के साथ गया था। ऐसे में सूरज अब भी ब्रह्मचारी है। लेकिन उसी वक्त जब ईशा डांस कर रही होती है, आ जाते हैं सूरज और फिर जुड़ता है इनका किस्मत कनेक्शन।

0: ऐसे में देखिए कैसे सूरज ईशा पर भड़क गए हैं और बातों ही बातों में उन्होंने अपने दिल की बात ईशा से कह डाली। ऐसे में दोनों ही इमोशनल हो गए और बहने लगे आंसू।
1: अब किसी से मिलने जा रहा है तो खाली हाथ तो जा नहीं सकते।
2: क्योंकि मुझे पता चल गया कि वो लड़की कौन थी। क्या लगा बच्चों मुझे बेवकूफ बना लोगे? पूरे भैया को लड़की बनाकर साथ ले गए और सबको बताया कि तुम लड़की के साथ हो। नहीं टूटा ना तुम्हारा ब्रह्मचर्य?
1: और जोर से हंसी है। आईएएस बनने के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था मैंने। सोचा था जैसे आईएएस बन जाऊंगा उस दिन आपका हाथ अपने हाथों में लेकर आपको बताऊंगा कि गुंडा सूरज आईएएस बन गया है। ईशा जी जानती है क्यों? क्योंकि आपने मेरा साथ छोड़ दिया था, रिश्ता ही तोड़ दिया था। घर वाले मुझसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं, लेकिन उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं अपनी जिंदगी में किसी और का साथ चाहता ही नहीं, क्योंकि मैंने जितने भी सपने देखे थे ना ईशा जी, सब आपके साथ देखे थे।

0: बन गए। ईशा को खुशी ये है कि सूरज का ब्रह्मचर्य नहीं टूटा है, इसलिए वो खुशी के मारे नाच रही है, गाने गा रही है, झूम रही है, मतलब खुशी से कि सूरज ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ा है उसने। फिर वो बर्स्ट आउट हो जाते हैं कि हाँ आप हंसी और हंसी है क्योंकि मैं खुश हूँ, मैं हंस रही हूँ। तो सूरज फिर कहते हैं नहीं आप हंसी है, बहुत हंसी है क्योंकि ब्रह्मचर्य नहीं टूटा है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ ना, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं IAS बनूंगा तो मैं सबसे पहले आपके हाथ महसूस करूंगा, आपको कहूंगा कि गुंडा सूरज अब IAS बन गया है, पर ये सारी चीज़ें नहीं हुई, आपने मुझे छोड़ दिया अकेला। मेरे फैमिली वाले चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ लाइफ में, बट मैं किसी का साथ नहीं देना चाहता। ये इमोशनल बातें करता है और आप ये सब कर रही है यहाँ पर, और मैं कितना अकेला हूँ ये आपको पता भी नहीं है।
1: तो भाई ईशा और सूरज की गलत फहमियाँ तो दूर होने का नाम नहीं ले रही, अब देखना होगा कि कैसे फिर एक बार इनका पुनर्मिलन होता है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अब ड्यूटी और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच जगदात्री का ये सफर चैलेंजेस से भरपूर है, लेकिन हमें तो है अपनी जगदात्री पर पूरा विश्वास। देखिए किस तरह कर लेती हैं वो हर सिचुएशन को पार। लेकर चलते हैं आप सबको जगदात्री के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है कहानी में आज।

0: रेखा का अंदाज। साड़ी छोड़कर हुई मॉडर्न। जगधात्री के साथ साथ घर वालों को लगा जोर का झटका। टीवी के सीरियल जगधात्री में कोई ना कोई नए तमाशे होते ही रहते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां पर घर में आ गई है रेखा यानी तपस्या और जगधात्री की माँ, जिसका रूप रंग ही बदल चुका है। इन्होंने पहन ली है ये मॉडर्न ड्रेस, आंखों पर लगा लिया है चश्मा और इनकी बातें भी हो गई हैं एकदम मॉडर्न। वैसे रेखा इस रूप में देख कर सभी काफी शौक में है।
1: गुड मॉर्निंग और ऐसा आप बनाते हैं।
2: नमस्ते, नमस्ते। लिखने का परिचय हो जाता है कि आप कौन?
1: कोई बात आपकी गलती नहीं है, मॉडर्न कपड़े है ना तो नहीं पहचान पाएंगे।
2: कौन है?

0: स्नेक मोड कितने खास हो गए
1: आपके घर आ रहे इससे बड़ी खास सजा क्या हो सकती है आप लोग इतने मॉडर्न लोग हैं और हम दोनों रहने आ रहे थे तो हमने सोचा कि हम भी कोई मॉडर्न ड्रेस पहन के आ रहे
2: मॉडर्न ड्रेस तो खड़े बताइए
1: थोड़ी ड्रेस
2: लगती है अच्छी लग रही है।
3: तभी वहाँ पर तपस्या और जगधात्री भी पहुँचते हैं। वही तपस्या से तो रेखा हंस हंस के मिलती है लेकिन जगधात्री को ताना मारना शुरू कर तो भाई रेखा अपनी बेटी तपस्या के घर में रहने आ गई है और अब मिलकर बना रही है ये षड्यंत्र जगधात्री के खिलाफ।
1: और मेरी बेटी इतनी अमीर है ना कि उसने अपने घर पे ही मशीन लगवा ली इतनी महंगी वाली। मतलब जगधात्री के कमरे में भी होगा मैंने है? उस मजबूत की किस्मत तो देखो हमारी तपस्या की बराबरी करते करते चमक उठी। मान ना मान मैं तेरा मेहमान हमारे घर की एक चुहिया ना यहाँ पर बेलगाम घोड़ी होकर घूम रही है। आप तो 100% सही कह रही है तू तो। लेकिन तू चिंता मत कर अब मैं आ गई हूँ ना तो बकरे की जो माँ है ना वो कब तक खैर मनाएगी। अब उसकी सारी चालाकी और अकड़ ना उसके साथ इसकी अब उसकी सारी चालाकी और अकड़ ना इस घर के साथ बाहर करूंगी मैं। हाँ।
3: वहीं दूसरी तरफ जगन कर रहे हैं एक्सरसाइज और ऐसे में चाय और पकोड़े लेकर जगधात्री पहुंच गई है जिसे देखकर जगन काफी खुश हो गए हैं।
2: अरे पकोड़े खाने बात करूंगा ना इतनी बढ़िया खुशबू आ रही किचन से एक बार मैं पकोड़े खा लूं तो 15 या 50 मार दूंगा सीरियसली।
4: जगन काका फटाफट अपने पुशअप कंप्लीट कर लीजिए वरना चाय और पकोड़े दोनों ठंडे हो जाएंगे।
2: ऐसे कैसे ठंडे हो जाएंगे कर लो ना ये हो गया 13 14 15 16 17 18 19 20।

0: एकदम एयर टाइट है, सेफ और हेल्दी।
1: तो भाई अब रेखा और तपस्या मिलकर जगधात्री की लाइफ में कौन कौन सी परेशानियां लेकर आएंगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: यहाँ तो है रिश्तों का खूबसूरत सफर और फैमिली बॉन्डिंग। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको नाहर और रूही के पास उनके शो मन सुंदर के सेट पर। कहानी का लेखक लेकर आया है इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड। अब क्या ये मोड लेकर आएगा हमारे लिए कोई गुड न्यूज, या फिर जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो और भी टेंस हो जाएगी? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आपको बिहाइंड द सीन।
1: नाहर ने बदला भेस, बदल कर पहुंचा रूही से मिलने। युवराज को हुआ नाहर पर शक, दंगल टीवी के सीजन मन सुंदर में आजकल काफी ट्विस्ट आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि दो दो नाहर आ गए हैं। एक तो युवराज है जो कि है नकली नाहर, जो करके बैठा है घर पर कब्जा, तो दूसरी तरफ है असली नाहर जो इस जद्दोजहद में है कि कैसे वो रूही को ये यकीन दिलाए कि वही असली नाहर है। इसीलिए तो आज उसे भेस बदल कर दाढ़ी मूछ टोपी लगाकर यहाँ प्लम्बर बनकर आना पड़ा।

0: नहीं तोड़ेंगे जी। अरे इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, वैसे बाथरूम में दिक्कत है, ऊपर है ना बाथरूम, लेकिन पहले ही बता रहे हैं थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ ठीक होने में लगता है, कोई बहुत गंभीर समस्या है।
1: अच्छा जो भी कर रहे हैं करो, लेकिन हाँ जल्दी करो।
0: हाँ ऊपर जाते बाथरूम का रास्ता सीढ़ी से है।
2: भाई बड़ी ही चालाकी से दादी से बाथरूम का रास्ता पूछकर वो जाना चाहता है रूही के कमरे में, ताकि नाहर उसे बता सके सच क्या है। ऐसे में उसे मौका भी मिलता है और वो रूही को स्टोर रूम में भी ले आता है, लेकिन इससे पहले कि नाहर अपना सच बता पाता वहाँ आ जाता है युवराज।

0: यमराज को तो शक हो गया है, लेकिन इससे पहले कि वो नाहर की दाढ़ी मूछ निकालता, रूही नाहर को बचा लेती है। भाई कहीं ना कहीं रूही को भी एहसास है सही और गलत का। अब देखना होगा कि कैसे नाहर अपनी असली पहचान बनाकर युवराज को सबक सिखाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: अब सफर चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, रास्ते में ट्विस्ट और सरप्राइजेस मिल ही जाते हैं, और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है हमारी एंटरटेनमेंट की कहानियों में। जैसे ही आते हैं ट्विस्ट, वो लेकर आते हैं या तो शॉक या फिर सरप्राइज। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको ट्विस्ट का ये सिलसिला, वो भी एक साथ।
2: मामा की वजह से लड़का रियो इस घर के अंदर तक आ चुका।
0: स्टार प्लस के सीरियल क्यूँकी सास भी कभी बहू थी में आने वाला है नया ट्विस्ट, जहां नंदिनी को पता चल जाएगी रियो की सच्चाई और घर में शुरू होगा नया बवाल। देख लीजिए आने वाले ट्विस्ट की दस्तक।
2: मामा की वजह से लड़का रियो इस घर के अंदर तक आ चुका। इन माँ को डिसाइड करना है, नियति और वो लड़का रियो यहाँ रहेंगे या फिर मैं रहूँगी।
3: कहीं मेरा फैसला गलत तो नहीं?
2: वो मर गया, आपने झूठ बोला मुझसे, वो जिंदा है, आपने गोली मारी थी ना उसे, मारी थी, आपने झूठ क्यों बोला, वो जिंदा है, वो यहाँ है,

0: वो आपकी वजह से इस टेस्ट के लिए तैयार हुई है।
1: कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में विक्रांत पूरी कोशिश कर रहा है दुआ की सारी चीजें मानने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। ऐसे में धैर्य रक्षकपन कराता है, लेकिन अब धैर्य ने ठान लिया है कि वो अपने परिवार को दूर नहीं होने देगा।
0: दुआ आपकी वजह से इस टेस्ट के लिए तैयार हुई है। आपको सुतना थैंक यू बोलूं उतना कहीं
2: नहीं। बोले अपनी शादी तक तो एटलीस्ट मत ही बोले।
3: अब बहुत हो गई चंपी, आप पहले बालों को कूम करो और अच्छे से छोटी बना दो।
2: किसी को भी अपने परिवार को मुख से दूर नहीं करने दूंगा।
1: टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में हो रही है मोगरा और आशीष की शादी, जिसमें पूरा परिवार शामिल है। सभी लोग काफी खुश हैं, लेकिन नर्मदा और रची सच का खुलासा करने में नाकामयाब रहे हैं। ऐसे में संपन्न हो जाएगी इन दोनों की शादी।

0: देखा, हमने अपना वादा पूरा कर दिया, बिना ढीला चर्चा किए बिटिया का ब्याह कर दिया करोड़पति खानदान में।
1: हमको तो पहले से पता था लाजो कि तुम जैसी चालाक औरत ना पूरी दुनिया में नहीं है।

0: से इस शादी में एक और जोड़ी बन रही है, यानी कि बढ़ रही है धीरज और रज्जी की नजदीकियाँ।
1: धीरज, अब हमने क्या किया? हम सच कह रहे हैं, अब हमने कुछ भी नहीं किया है।
2: किया तो है तुमने।
1: हमने क्या?
2: लेकिन जो किया है वो अच्छा किया है। थैंक यू सो मच। इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी परेशानियों के साथ भी आशु दादा की शादी इतने अच्छे से हो गई, और इसी बीच में हमने अपने बाबा की नजरों में थोड़ी सी इज्जत भी कमा ली, और इस सब में तुमने हमारे साथ दिया, सो थैंक यू सो मच जी।
1: थैंक यू, थैंक्स टू यू टू, क्योंकि तुमने सबके सामने हमारी साइड ली, सबके सामने हमें सपोर्ट किया, कहा कि हम इस प्लान के मास्टरमाइंड हैं, उसके लिए थैंक यू। एंड थैंक यू कि फाइनली तुमने ये मान लिया कि हम तुमसे ज्यादा अकलमंद हैं। कोई बात, देर आए दुरुस्त आए, गुड जॉब।
2: रंजीत, तुमने वो कहावत सुनी है कि काम के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है और गधी को भी अकलमंद कहना पड़ता है। अच्छा ठीक है, वैसे अब तो हम दोनों दोस्त हो ना।

0: जाए तो बड़ी एक बात बता, तेरे भाई की शादी है और तेरे भाई की शादी में धूम धड़ाका नहीं हो रहा, ये कैसे पॉसिबल है? चलो कुछ मजे करते।
1: इसी के साथ खुशियों पर लगेगा ब्रेक और कहानी में आएगा ट्विस्ट।
2: कहा था अगर मानोगे नहीं तो तांडव देखोगे हमारा, आज तो तुम्हारा।
0: पापा जी, लच्ची तुम्हें पापा जी ने इस घर की बहू माना, लेकिन तुम तो गद्दार निकली। मोगरा, ये क्या बोल रही हो? मोगरा नहीं, मोगरा भाभी इस घर की बड़ी बहू है, तुम दोनों की जेठानी।
3: तो ये था सास बहू और बेटिया का स्पेशल ट्रैवल एपिसोड, जहां आपको देखने को मिले एंटरटेनमेंट की दुनिया के हर नजारे। आप भी अपने समर ट्रैवल को केयरफुली प्लान कीजिए, सेफ ट्रैवल कीजिए और क्रिएट कीजिए ढेर सारी मेमोरीज। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। सेम टाइम सेम जगह, ओनली ऑन सास बहू और बेटिया। टेक केयर, बाय बाय।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
10: चमोली के गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू, पहले जत्थे को पंच प्यारों की अगुवाई में अरदास के बाद किया गया रवाना, कल से खुलेगा पवित्र धाम का कपाट। केदारनाथ यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्ड किए ध्वस्त, एक महीने में बाबा के धाम पहुंचे 7.5 लाख यात्री, हर रोज 25 से 30 हजार के बीच पहुंच रहे भक्त। चमोली में आज भक्तों के लिए खुले लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के द्वार, विधि विधान के साथ की गई पूजा अर्चना, का पाठ खुलने के बाद हुई ताजा बर्फबारी। रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी से बदला नजारा, सफेद बर्फ की चादर से ढकी दिखी वादियां, सैलानी जमकर ले रहे मजा। बीएसएफ की महिला पर्वतारोहियों ने रचा इतिहास, मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा, गृहमंत्री अमित शाह ने दी बधाई।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
10: चमोली के गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू, पहले जत्थे को पंच प्यारों की अगुवाई में अरदास के बाद किया गया रवाना। सिखों का पहला जत्था रवाना होने से पहले श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में टेका मत्था, जो बोले सो निहाल के लगाए जयकारे। उन्नीस किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हेमकुंड साहिब पहुंचेंगे श्रद्धालु, श्रद्धालु में दिखाई दिया उत्साह। हेमकुंड साहिब यात्रा के दूसरे पड़ाव घांगरिया में आज रात करेंगे विश्राम, कल खुलेगा पवित्र धाम का कपाट। उत्तराखंड में दिखा बाबा भोलेनाथ का अनोखा भक्त, मध्य प्रदेश से एक पैर पर चलकर बद्रीनाथ पहुंचा ये युवक। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 32 दिन में 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम की यात्रा। केदारनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक 7.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में भी लगा भक्तों का मेला, अब तक 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। उत्तराखंड यमुनोत्री धाम का खुला खजाना, मंदिर समिति की छप्पड़ फाड़ हो रही कमाई। 32 दिनों में यमुनोत्री मंदिर समिति को कुल 23.5 लाख रुपए की आय हुई प्राप्त, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ आय में लगातार इजाफा। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, श्रद्धालुओं ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद रजत चंद्र त्रिशूल मुकुट आभूषण अर्पित कर दिव्य श्रृंगार किया गया। एमपी के धार में भोजशाला में सुबह सुबह हुई पूजा, भगवान की उतारी गई आरती। पुरी में भगवान जगन्नाथ की उतारी गई विशेष आरती, श्रद्धालुओं ने लगाए भगवान जगन्नाथ के जयकारे। भगवान जगन्नाथ की आरती के लिए और दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चमोली में स्थित लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के खुले कपाट, श्रद्धालुओं ने मंदिर में किया पूजा पाठ। बर्फबारी ने किया भगवान लक्ष्मण का श्रृंगार, हेमकुंड साहिब के साथ श्रद्धालु लक्ष्मण मंदिर में करेंगे दर्शन। गोरखपुर में सीएम योगी ने गाय को खिलाया चारा, बछड़ों को दुलारा। देवरिया को सीएम योगी ने दी 655 करोड़ की सौगात, 19 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। राजस्थान के डूंगरपुर में सीएम भजनलाल ने गांव के लोगों के साथ की मुलाकात, स्थानीय लोगों की सुनी फरियाद। सऊदी अरब में हज यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर, सऊदी सिक्योरिटी फोर्स ने मक्का में किया परेड। सैन्य परेड में सेना ने तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ के लिए अपनी कुशलता और तैयारियों का परीक्षण किया। परेड में फोर्स ने एडवांस व्हीकल्स और सिक्योरिटी एविएशन का किया प्रदर्शन, साथ ही परेड में कई ड्रिल्स भी प्रस्तुत की गई। परेड में अलग अलग सिक्योरिटी सेक्टर की महिला सैनिकों ने लिया हिस्सा, ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी। चौबीस मई की शाम से 29 मई तक चलेगा हज यात्रा, 2 से 3 मिलियन मुसलमानों के शामिल होने की उम्मीद। इसरो का दुनिया ने माना लोहा, चंद्रयान 3 मिशन को मिला प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने ग्रहण किया अवार्ड, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एरोनॉटिक्स की तरफ से दिया जाता है सम्मान। क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसरो चंद्रयान 3 टीम को बधाई दी, इसरो की ओर से ये पुरस्कार स्वीकार करना मेरे लिए गर्व की बात, यह कहा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के निकट चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए दिया गया इसरो को सम्मान, अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की बढ़ती पकड़ को मिलेगी वैश्विक पहचान। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित असेंड सम्मेलन में प्रदान किया गया ये पुरस्कार, अंतरिक्ष विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला AIAA का सर्वोच्च सम्मान। बीएसएफ की महिला पर्वतारोहियों ने रचा इतिहास, मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा। महिलाओं ने साहस और हौसले की नई मिसाल कायम की, पहली बार बीएसएफ की महिला पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट की चोटी से वंदे मातरम गाया। बीएसएफ ने बहादुर महिला पर्वतारोहियों को किया सलाम। टीम में लद्दाख की कौसर फातिमा, पश्चिम बंगाल की मुनमुन घोष, उत्तराखंड की रेबेका सिंह, कारगिल की सेरिंग चोरोल शामिल। अमित शाह ने बीएसएफ की महिला जवानों को शुभकामनाएं दी। लिखा, बीएसएफ की महिला जवानों ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करके स्वर्णिम इतिहास रच दिया। आईटीबीपी की महिला अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण ने रचा नया इतिहास। माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा। राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पहली पीर पंजाल शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में 165 से ज्यादा खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक लिया हिस्सा। भारी संख्या में महिला प्रतिभागी भी शामिल हुई। नशा मुक्त समाज की पहल को लेकर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। से नो टू ड्रग्स यस टू स्पोर्ट्स के तहत कार्यक्रम। स्थानीय खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने के लिए पहली बार मिला इतना बड़ा मंच। बड़े पैमाने पर पहली बार आयोजित हुए कार्यक्रम से खेलों के प्रति रुचि जगाना कार्यक्रम का मकसद। टूर्नामेंट में विजेताओं को दिए गए पुरस्कार युवाओं को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना इसका मकसद रहा। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। राजौरी में खेल को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफ की पहल जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में कई टीमों की प्रदर्शनी हुई, उन्होंने हिस्सा लिया। महिलाओं ने भी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। अहमदाबाद में पुलिस ने पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए समा कैंप का आयोजन किया। बड़ी संख्या में बच्चे भी पहुंचे। समा कैंप में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने जमकर डांस किया। तमिलनाडु के प्रसिद्ध कन्याकुमारी भगवती अम्मन मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। पवित्र वैकाशी विसाकम उत्सव का आयोजन हुआ। इन रस्मों के तहत पारंपरिक ध्वजारोहण समारोह से हुई। उत्सव की औपचारिक शुरुआत। दो दिनों तक चलेगा पवित्र उत्सव। देवी भगवती अम्मन को समर्पित है यह त्यौहार। भक्तों द्वारा विशेष रूप से समृद्धि और कल्याण के लिए आशीर्वाद की कामना के साथ की जाती है पूजा। उत्तर प्रदेश में अब आम लोग भी खोल सकेंगे अपना संग्रहालय। प्रदेश सरकार ने विजिट माई स्टेट अभियान और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के तहत की पहल। नागरिक ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्थान, निजी संगठन स्थापित कर सकेंगे संग्रहालय। इतिहास, संस्कृति और तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी। ईंधन को बचाने की दिशा में लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के जजों की शानदार पहल। 50 से ज्यादा जज और न्यायिक अधिकारी साइकिल से पहुंचे कोर्ट। लोगों को जागरूक किया जा रहा। हाईकोर्ट के जजों ने लोगों को किया जागरूक। कहा, इससे ईंधन की बचत के साथ साथ स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अमृतसर के जब्बोवाल स्कूल के छात्रों का कमाल। विकसित भारत बिल्डथॉन में जीता बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के अलंकरण समारोह में जवानों को सम्मानित किया। कहा, भारत ने आतंकवाद और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंचे साइप्रस के राष्ट्रपति। दोनों देशों के संबंधों की मजबूती को लेकर चर्चा हुई। गुजरात की राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा। 18 जून को होने वाले चुनाव में सभी सीटें निर्विरोध होने की पूरी संभावना।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
12: How they looked after game one.
13: I mean, they were frustrated.
11: The Daily.
14: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
11: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
15: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना, जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है। ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
13: Hey America, want to save $1,000 and get free internet forever? That was a rhetorical question. Switch to Spectrum and save $1,000 guaranteed. Seriously, you can hold us to it. We call it the Spectrum Savings Guarantee. Just switch 4 mobile lines to Spectrum and we'll give you free fiber-powered internet forever. Yeah, free internet forever. And we guarantee $1,000 of real savings in your first year or we'll cover the difference. It's a guaranteed no-brainer. Learn more at spectrum.com/freeforever. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
16: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
10: चमोली के गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू। पहले जत्थे को पंच प्यारों की अगुवाई में अरदास के बाद किया गया रवाना। कल से खुलेगा पवित्र धाम का कपाट। केदारनाथ यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्ड किए ध्वस्त। एक महीने में बाबा के धाम पहुंचे 7.5 लाख यात्री। हर रोज 25,000 से 30,000 के बीच पहुंच रहे भक्त। चमोली में आज भक्तों के लिए खुले लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के द्वार। विधि विधान के साथ की गई पूजा अर्चना। कपाट खुलने के बाद हुई ताजा बर्फबारी। रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी से बदला नजारा। सफेद बर्फ की चादर से ढकी दिखी वादियां। सैलानी जमकर ले रहे मजा। बीएसएफ की महिला पर्वतारोहियों ने रचा इतिहास। मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा। गृहमंत्री अमित शाह ने दी बधाई।

नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि विवाह में देरी का कारण आपके ग्रह होते हैं। माना जाता है कि किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो तो इसके पीछे कमजोर बृहस्पति हो सकता है, तो वहीं लड़कों के जीवन में विवाह की देरी को कमजोर शुक्र के साथ जोड़कर देखा जाता है। लेकिन आज हम आपको विवाह में विलंब के चार योगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके होने पर विवाह में समस्या आती है, लेकिन ज्योतिष में इसका समाधान भी बताया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि विवाह में विलंब वाले इन योगों को कैसे दूर किया जाए।

0: क्या आपके विवाह में हो रही है देरी? मांगलिक दोषों से हो रहे हैं आप हैरान? कुंडली का शुक्र और बृहस्पति कर रहा है परेशान? तो आज हम आपको बताएंगे समस्या का समाधान। विवाह की उम्र होने पर भी कई बार विवाह नहीं हो पाता। करियर में सफलता और रुतबा होने पर भी शादी में कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। तो इसके पीछे ज्योतिषीय कारण हो सकते हैं। कुंडली के शुक्र और बृहस्पति की विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन इसके अलावा भी विवाह में कुछ योग ऐसे होते हैं जो आपकी विवाह होने की शुभ स्थितियों को प्रतिकूल बना देते हैं।
1: किसी भी पुरुष या स्त्री के विवाह में विलंब अलग अलग कारणों से होते हैं, पर मुख्यतया दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह सप्तम भाव जिस व्यक्ति का पीड़ित हो जाएगा, वो व्यक्ति के विवाह में अड़चन आने लगती है। अलग अलग ग्रह अलग अलग प्रकार से व्यक्ति के जीवन में बाधा डालते हैं।
0: आज हम जानेंगे विवाह में देरी का कारण माने जा रहे चार योगों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि कुंडली में इन योगों के होने पर विवाह में यकीनन देरी होती है। चलिए आपको विवाह की बाधा से जुड़ा पहला योग बताते हैं जिसके कारण शादी में आती है रुकावट। साथ ही जानेंगे ज्योतिषी हाथ पीले होने में आने वाली अड़चन को दूर करने का कौन सा महा उपाय बताते हैं। शनि चंद्र का विष योग अक्सर विवाह में विलंब कराता है। इस योग के कारण व्यक्ति पहले विवाह करना नहीं चाहता, बाद में काफी विलंब हो जाने पर विवाह हो पाता है। ये योग विवाह हो जाने के बाद भी अक्सर अकेलेपन का कारण बनता है। इस योग के होने पर शिवजी की उपासना उत्तम होती है, साथ ही सात्विकता से लाभ होता है।
1: देखिए, शनि विवाह को लेट कराता है। दाम्पत्य जीवन के घर में पड़ने से जब प्रेम भाव रहता है तो बहुत अच्छा, और जब विघ्न पड़ जाता है तो जब झगड़ा होता है तो भी वो बहुत भीषण रूप से दोनों के बीच में रहता है। सबसे पहले अच्छे ब्राह्मण से कुंडली का अवलोकन कराएं। अगर किसी प्रकार से कुंडली में मंगल आदि या शनि आदि का योग पड़ा हुआ, जैसे चंद्र शनि का विष योग हो जाए, तो उसका उपाय करें। विशेष तौर पर अगर दाम्पत्य जीवन का घर सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है तो कुंभ विवाह या घट विवाह करा लेने से लाभ होगा। विशेष तौर पर मंगली का नॉन मंगली से भी घट विवाह करके आनंद से विवाह चल जाता है। साथ में चंद्रमा से अगर कोई पीड़ा आ रही है तो पितृ दोष का पूजन अवश्य कराएं, उसके पश्चात विवाह कराएं। कुंभ विवाह बीच में उसमें और सोने पे सुहागा जैसा लाभ देने लगता है।
0: ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि सही आयु में और सही समय पर सही व्यक्ति के साथ विवाह हो जाना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। ज्योतिष में विवाह के लिए जन्म कुंडली में सातवां भाव मुख्य माना गया है, जिनके चलते शादी में देरी या बार बार बनते रिश्तों का टूटना सहना पड़ता है। जानकार मानते हैं कि कुंडली का सातवां घर बताता है कि आपकी शादी किस उम्र में होगी। कई बार शादी के बाद भी संबंध खराब हो जाते हैं, इसके कारण तलाक तक की नौबत आ जाती है। माना जाता है ये सब ग्रहों की अशुभ दृष्टि और ग्रहों की निर्बलता के कारण होता है। चलिए अब आपको बताते हैं विवाह में देरी का दूसरा कष्टकारी योग कौन सा है और इसके ज्योतिषीय समाधान कौन से हैं। विवाह में विलंब का दूसरा कारण बनता है सप्तम भाव में बृहस्पति। ये महिलाओं की कुंडली में ज्यादा खराब होता है, अक्सर यह विवाह नहीं होने देता। अगर विवाह होता भी है तो तालमेल की समस्या रहती है या पति पत्नी को अलग अलग रहना पड़ता है। इस योग के होने पर गुरु रूप में शिवजी की उपासना करें, साथ ही नियमित रूप से दान करते रहें।
1: किसी व्यक्ति को जीवन में, देखिए बृहस्पति विवाह का कारक भी है, किसी भी पुरुष के जीवन में बृहस्पति का अच्छा होना उसके वैवाहिक जीवन और विवाह शुरू होने का कारक ग्रह होता है। तो दाम्पत्य जीवन के उसमें बैठने से विवाह में विलंब करना और विवाह में अड़चन डालना कई बार हमने अनुभव किया, या एक से अधिक विवाह होना इस बृहस्पति के कारण संभव है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी पुखराज धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो पुखराज धारण करने के बाद विवाह होने के बाद भी विवाह में विघ्न पड़ जाता है।
0: ज्योतिष शास्त्र मानता है कि मांगलिक होना भी विवाह की एक बड़ी समस्या है। माना जाता है अगर जन्म कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें, बारहवें भाव में मंगल स्थित हो तब जन्म कुंडली में मांगलिक योग बनता है। इसकी वजह से विवाह में विलंब होता है। इसके साथ ही जन्म कुंडली के सातवें भाव में चंद्रमा स्थित हो तब विवाह के बाद समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा जन्म कुंडली में अगर सातवें भाव में बृहस्पति ग्रह स्थिति हो तब भी विवाह में विलंब होता है। साथ ही जन्म कुंडली में सातवें भाव में स्थित शुक्र के कारण भी वैवाहिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मंगल ग्रह का सप्तम भाव से संबंध विवाह में देरी या बाधा डालता है। सप्तम भाव पर शनि, राहु, केतु या मंगल की स्थितियां विपरीत होने पर शनि का सप्तम भाव या उसके स्वामी से जुड़ाव विलंब का कारण बनता है। शुक्र और बृहस्पति का कमजोर होना विवाह में देरी का कारण बनता है। सप्तम भाव का कमजोर होना या उसमें अशुभ ग्रहों का होना भी देरी करवाता है।
1: अगर किसी पुरुष की कुंडली में बृहस्पति उच्च का होगा तो विवाह निश्चित बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छी कन्या मिलेगी उसको, उसका जीवन साथी सदैव उसको सहयोग करने वाला होगा। परंतु इसमें एक ये है कि शुक्र अच्छा पड़े और बृहस्पति की दृष्टि भी उस पर पड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। परंतु किसी भी व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन की शुभता के लिए शुक्रवार के दिन उपवास रखना, शुक्रवार के दिन स्वच्छ पवित्र वस्त्र पहनना या सफेद वस्त्र पहनना, खुशबू लगाना और देवी के दर्शन करके सफेद मिठाई या सफेद वस्तुएं देवी के मंदिर में चढ़ाने से शुक्र ठीक होने लगता है और उस व्यक्ति को लाभ होता है।
0: सनातन संस्कृति में विवाह संस्कार को शुभ मुहूर्त और कुंडली मिलान के साथ करने की परंपरा रही है। माना जाता है वर और वधु के 36 में से ज्यादातर गुण मिल रहे हों तब विवाह के लिए परिस्थितियां आदर्श मानी जाती हैं। लेकिन कुंडली के अशुभ योग शहनाई बजने में विघ्न डाल सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कुंडली के तीसरे और चौथे योग के बारे में जिनके होने से हो सकता है विवाह में विलंब, साथ ही जानेंगे इन योगों से बचने की ज्योतिषीय कार। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि महिलाओं को बलवान बृहस्पति से वैवाहिक सुख मिलता है तो वहीं शुक्र के कारण प्रेम और सौंदर्य कायम रहता है, तो वहीं पुरुषों में मजबूत शुक्र होने से विवाह में सफलता मिलती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतता है। तो चलिए आपको विवाह में विलंब का कारण माने जा रहे तीसरे और चौथे योग के बारे में बताते हैं, साथ ही जानते हैं इसका ज्योतिषीय समाधान।

0: ज्योतिष शास्त्र कहता है कि किसका विवाह कब होगा, ये व्यक्ति की कुंडली की चाल पर निर्भर करता है। विवाह में देरी के कई ज्योतिषीय कारण हो सकते हैं। विवाह में देरी का एक कारण ये भी माना जाता है कि लग्न या सप्तम भाव में शनि की खराब स्थिति से विवाह में देरी होती है। साथ ही मंगल दोष के कारण भी विवाह में रुकावटें आती हैं। अगर किसी तरह विवाह हो भी जाता है तो विवाह हो जाने पर भी जीवन साथी के साथ अनबन बनी रह सकती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सप्तम भाव या शुक्र पर राहु केतु का प्रभाव होने पर भी विवाह नहीं हो पाता है, या फिर विवाह हो जाने पर भी सही जीवन साथी नहीं मिल पाता है। इसके अलावा भी विवाह ना होने के कई कारण हो सकते हैं। ये तो ज्योतिष के जानकार ही बता सकते हैं कि विवाह ना हो पाने का सही कारण कौन सा है। आज हम आपको बता रहे हैं विवाह में विलंब के चार योग के बारे में। चलिए अब आपको बताते हैं विवाह में विलंब का तीसरा योग कौन सा है और इस बाधा का समाधान कौन से देव और रत्नों से हो सकता है। विवाह में विलंब का तीसरा योग है शुक्र चंद्र की युति। ये वैसे तो ज्योतिष का बड़ा राजयोग है, परंतु विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस योग के होने पर विवाह हो पाना काफी कठिन होता है। अगर विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन में सुख नहीं रहता। इस योग के होने पर श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करें, साथ ही सलाह लेकर एक पीला पुखराज धारण करें।
1: जब दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह अपने घर में शुक्र चंद्रमा के साथ बैठ जाए, नाम बड़ा सुंदर लक्ष्मी योग कह बैठते हैं इसको, परंतु चंद्रमा पितृ दोष कारक है, स्त्री माता के समान अर्थात आयु में बड़ी महिला के समान व्यवहार करने लगती है या जीवन में आती ही महिला बड़ी आयु की है, ऐसे में अनुभव हमारा ये है कि व्यक्ति को पितृ दोष लग जाता है और स्त्री का दोष लग जाता है, जिस कारण से विवाह में या तो होता ही नहीं, होता है तो विलंब से या बड़ी आयु की महिला से होता है। सेवा करने से कभी भी उनका अपमान ना करें, ऐसे व्यक्ति को फिर सुंदर संयोग बनने लगता है, उनके विवाह में उत्तम उस समय आने लगता है।
0: ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि कुंडली में कमजोर शुक्र की स्थिति भी विवाह नहीं होने देती, क्योंकि बलवान शुक्र प्रेम और दाम्पत्य जीवन में मधुरता का कारक माना जाता है। इसकी कमी से वर और वधु का विवाह नहीं हो पाता। साथ ही माना जाता है कि सप्तम भाव में चंद्रमा पर सूर्य या मंगल का प्रभाव भी विवाह में अड़चन पैदा करता है। ये तो हमने आपको ज्योतिष में बताए गए वो व्यवधान बताए हैं जो विवाह में देरी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि विवाह में विलंब का चौथा योग कौन सा है और किस देव की उपासना में इसका समाधान छिपा है। विवाह में विलंब की चौथी स्थिति है शुक्र की अशुभ स्थिति। शुक्र विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। इसका अशुभ होना विवाह में विलंब का बड़ा कारण बनता है। नवांश में शुक्र की कमजोर स्थिति विवाह के लिए सबसे अशुभ है। यह विवाह और वैवाहिक जीवन पर खराब असर डाल देता है। इस स्थिति के होने पर माता लक्ष्मी की उपासना करें, सलाह लेकर एक ओपल धारण करें।
1: शुक्र सबसे अधिक पीड़ित होता है मंगल से, शनि से, शनि की दृष्टि पड़ने, शनि के साथ बैठने से नहीं, शनि की दृष्टि पड़ने से, या उसके ऊपर मंगल और शनि के अतिरिक्त सूर्य का उसका प्रभाव आ जाए, युति में आ जाए या संयोग हो जाए उनका दृष्टि से, ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में हमेशा अड़चन आती है या वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण बना रहता है या धर्मपत्नी लगातार बीमार बनी रहती है और स्त्री के केस में उसका पुरुष बीमार बना रहता है लगातार।
0: हम सभी अपने घरों में विवाह योग्य हो चुके लड़के या लड़कियों के लिए सुयोग्य वर या वधु की तलाश में रहते हैं। सही आयु में वर और वधु का विवाह करना चाहते हैं, लेकिन कई बार करियर में सभी योग्यताओं के बावजूद कुंडली की दशाएं विवाह में देरी करवाते हैं। तो आपने अभी तक जाना कैसे हम विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो आप भी ज्योतिष में बताए महाप्रयोग करके अपने घर में शहनाइयां बजवा सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे विवाह की बाधा को दूर करने के लिए कुछ और महाप्रयोग।
2: चलिए आपको बताते हैं कि कैसे ज्योतिषीय प्रयोग से आपको मिल सकती है रत्नों की कृपा। माना जाता है कि महिलाओं को पीला पुखराज पहनने से विवाह संबंधित बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है, तो पुरुषों के लिए ओपल या पन्ना धारण करना शुभ कार्य माना गया है, जिससे विवाह की मुश्किलों का अंत हो सकता है।
3: माना जाता है कि विवाह की समस्या का सबसे अचूक समाधान है गौरी शंकर की उपासना, क्योंकि महादेव के अधीन ही है सारे ग्रहों की शुभता। शिवलिंग का जलाभिषेक करना हो या फिर रखना हो 16 सोमवार का व्रत। वर और वधु की वैवाहिक समस्या का निदान छिपा है भगवान गौरी शंकर की उपासना में। साथ ही माना जाता है कि जो साधक ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार नित्य जाप करता है और साथ ही रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करता है, तो उसकी सभी वैवाहिक बाधाओं का अंत हो जाता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका विवाह होने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो, तो महिलाओं को बृहस्पति की उपासना और एक चमत्कारी रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। आप भी देखिए, पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न है और बृहस्पति महिलाओं के विवाह का कारक है, इसलिए अगर बृहस्पति अनुकूल है और कमजोर है तो पीला पुखराज धारण करने से लाभ हो सकता है, परंतु हर स्थिति में महिलाओं के पुखराज धारण करने से उनका शीघ्र विवाह नहीं हो सकता। माना जाता है कि पारद शिवलिंग की उपासना से भी विवाह की बाधा का अंत हो सकता है। साथ ही शुक्र को मजबूत करने के लिए पुरुषों को शुक्रवार का व्रत रखने के साथ ही मां लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। चलिए जानते हैं कि पुरुषों के विवाह में कौन सा ग्रह बाधाएं पैदा कर सकता है और क्या है इसका ज्योतिषीय समाधान।
1: स्त्री के केस में बृहस्पति तो उच्च का चाहिए, शुक्र भी अच्छा होना चाहिए। शुक्र की दृष्टि यदि बृहस्पति पे पड़ेगी तो बृहस्पति का हानि होने लगती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में स्त्री के दिक्कत आने लगती है। लेकिन वहीं यदि शुक्र के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़े, दाम्पत्य जीवन के घर में अगर शुक्र पड़ जाए और बृहस्पति से दृष्ट हो जाए, व्यक्ति का मुख्यतया प्रेम विवाह होता है या उसके पसंद का विवाह होता है और आजीवन आनंद में रहते किसी प्रकार की कोई कमी जीवन में देखने को नहीं मिलती है।
3: ज्योतिष में शुक्र को पारिवारिक जीवन का कारक माना जाता है। शुक्र का कमजोर होना विवाह होने में विलंब करवाता है। खराब शुक्र विवाह होने ही नहीं देता, इसका कारण वैवाहिक जीवन में भी बाधा आती है। देवी की उपासना करने से पुरुषों का विवाह शीघ्र हो जाता है। जिन पुरुषों का विवाह ना हो पा रहा हो तो उन्हें कनिष्ठा उंगली में एक सफेद जरकन धारण करना चाहिए। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि उपाय कर लेने से आपकी विवाह से संबंधी सभी बाधाएं अवश्य ही दूर हो जाएंगी। अगर इसके बाद भी किसी साधक को जीवन साथी मिलने में दिक्कत आए तो आप कुछ और महा उपाय कर सकते हैं। सावन में करें गौरी शंकर की पूजा, भगवान शिव पार्वती की पूजा एक साथ करें। ये पूजा शीघ्र विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए फलदायी है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। बृहस्पति को करें प्रसन्न। गुरुवार का व्रत रखना प्रारंभ करें। इससे कुंडली का बृहस्पति बलवान होगा। पीले रंग की खिचड़ी बनाकर गरीबों में बांटें। विवाह की बाधा दूर करने के उपाय। शुक्र और मंगल की बाधाएं करें दूर। अविवाहित कन्याएं 16 सोमवार का व्रत रखें। लाल गाय को गुड़ रोटी खिलाएं। पीले और सफेद वस्त्रों का दान करें। विवाह की बाधा दूर करने के उपाय। गणपति की पूजा से होगा विवाह। भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाकर पूजा करें। तो देखा आपने, ज्योतिष में बताए ये सारे महा उपाय न सिर्फ आपके विवाह की अड़चनों को दूर कर सकते हैं, बल्कि आपका दाम्पत्य जीवन भी मधुर बना सकते हैं।
2: तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
3: देखिए, भीषण गर्मी से इंसान के साथ साथ भगवान भी परेशान हैं। यहाँ के मंदिरों में भीषण गर्मी की तपिश से भगवान को बचाने के लिए कूलर और एसी लगाए गए हैं। यहाँ भक्तों को भी गर्मी से बचाने के लिए शेड बनाए गए हैं।

0: जलती छुपती गर्मी से इंसान बेहाल है। तापमान लगातार आसमान छू रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। लेकिन इस भीषण गर्मी के बीच धर्मनगरी काशी में आस्था की एक अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ बढ़ते तापमान के बीच भगवान का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। काशी के मंदिरों में भगवान को गर्मी ना लगे, इसके लिए गर्मी से बचने के तमाम इंतजाम यहाँ किए जा रहे हैं।
1: वाराणसी में तापमान 45 डिग्री के ऊपर जा चुका है। न केवल सड़कों पर बल्कि काशी के मंदिरों में भी गर्मी से बचाव के तमाम इंतजाम देखे जा सकते हैं। देख सकते हैं कि धूप से बचाव के लिए मंदिर, जो वाराणसी का बड़ा गणेश विश्वविख्यात लोहटिया इस इलाके में स्थित मंदिर है, वहाँ ग्रीन पर्दे लगाए गए हैं, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। तो साथ ही साथ पेयजल की भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है ताकि जो श्रद्धालु आए उनको शुद्ध और शीतल पेयजल मिल सके।
0: काशी के राम जानकी मंदिर में तो पूरे राम दरबार के सामने सुबह से लेकर शाम तक कूलर चलाया जा रहा है, एसी चल रहे हैं। गर्मी के हिसाब से वस्त्र पहनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके।
2: हाँ, आपकी बात तो गर्मी काफी बेतहाशा है और काफी टेम्परेचर भी काफी गर्मी पड़ रहा है इस समय जो है, और हम लोग गर्मी के दिन में भगवान गणपति को जो है जो हल्का कपड़ा बनाते हैं, सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं, और जो भोग आरती जो है वो अपने समय पर ही होता है।
0: पुजारी, महंत और भक्तों का मानना है कि जिस तरह इंसानों को मौसम का एहसास होता है, उसी तरह भगवान को भी गर्मी और ठंड महसूस होती है। इसी भावना और श्रद्धा के साथ भगवान के लिए ये विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।
3: इस समय गर्मी बहुत अधिक हो रही है, 45 डिग्री तक करीब तब तापमान जा रहा है, तो हम लोग को बहुत परेशानी भी हो रही है। लेकिन पुजारी जी भगवान का पूरा ध्यान रख रहे हैं, जैसे हम लोग घर में एसी और कूलर का प्रयोग करते हैं, भगवान जी का पूरा ध्यान रखते रखते भगवान जी को इतना ठंडा कर देख के हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: मंदिर में मई से अगस्त तक भगवान को सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग में दही और मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं ताकि ठंडक बनी रहे। साथ ही भक्तों के लिए भी पूरे इंतजाम हैं। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए भी यहाँ कूलर, वाटर कूलर और ग्रीन पर्दों की व्यवस्था की है, जिससे दर्शन करने आने वाले भक्तों को भी गर्मी से राहत मिल सके।
4: गर्मी में ज़्यादा गर्मी तो पड़ रही है, हमारे यहाँ मंदिर में गर्भगृह में एसी की व्यवस्था की गई है और बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं, और परिक्रमा स्थल पर जो है पर्दे लगाए गए हैं, वाटर कूलर भी लगाया गया है जिससे लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध हो सके। और यह भावना है कि जब हमको गर्मी लग रही है तो भगवान को भी गर्मी लगेगी।
0: मंदिरों में भगवान को गर्मी से राहत दिलाने और उन्हें ठंडक पहुंचाने के लिए शीतल भोग की व्यवस्था है, जिससे इंसान की तरह भगवान को भी इस झुलसती गर्मी से राहत मिल सके। तपती गर्मी के बीच वाराणसी से सामने आई ये तस्वीर सिर्फ एक व्यवस्था नहीं बल्कि आस्था और विश्वास है। भक्त केवल पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि संवेदना, सेवा और समर्पण का भाव है, जहाँ भगवान को भी उसी स्नेह से रखा जाता है जैसे घर के सबसे प्रिय सदस्य को रखा जाता है। वाराणसी से रोशन।

0: जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। इनमें से कुछ वीडियो ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
2: इस वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मामला एक डोसा दुकानदार और उनके सबसे अनोखे कस्टमर से जुड़ा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यस्त सड़क के किनारे एक डोसे की दुकान है, जहां तवीक से ठीक पास एक सांड बड़े ही धैर्य के साथ खड़ा है। उसे देखकर ऐसा लगता है माने उसे दुकान का पूरा मेन्यू जबानी याद है और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। आमतौर पर दुकानदार जानवरों को भगा देते हैं, लेकिन इस डोसे वाले ने तो जो किया उसने सभी का दिल जीत लिया है। आप देखेंगे कि दुकानदार ने बड़े ही प्यार से तवे पर मक्खन मारकर एक बढ़िया कुरकुरा डोसा तैयार किया और सीधे अपने इस चार पैरों वाले स्पेशल गेस्ट को परोस दिया। सांड ने भी बड़े चाव से डोसा खाया और अपनी पूंछ हिलाकर वेंडर का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर दो बहनों ने इजिप्ट लीबिया के बॉर्डर पर बने अपने छोटे से घर की एक झलक लोगों को दिखाई है। झोपड़ी जैसा ये घर देख लोगों को लगा कि बहनें गरीब हैं और मुश्किल में अपने दिन गुजार रही हैं। लेकिन जब घर को अंदर से देखा गया तो सब दंग रह गए। घर के अंदर आधुनिक और लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक देखने को मिली। कमरे में सॉफ्ट लाइटिंग, कम्फर्टेबल सोफा, बड़े बड़े बेड, फुली इक्विप्ड किचन, वाईफाई, एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं और खूबसूरत डेकोरेशन सब कुछ यहां मौजूद थी। बहनों ने बताया कि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल से घर तैयार किया है, जिसमें मिट्टी और नमक का इस्तेमाल किया गया है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
4: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
6: Gone! Home run!
5: NHL. College basketball.
7: He shoots it immediately. And he makes it in!
5: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
8: One lap to go.
5: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
3: ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
13: चमोली के गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू। अरदास के बाद पंच प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे की रवानगी। कल से खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। केदारनाथ यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्ड किए ध्वस्त। एक महीने में बाबा के धाम पहुंचे 7.5 लाख यात्री। हर रोज 25,000 से 30,000 के बीच पहुंच रहे भक्त। चमोली में आज भक्तों के लिए खुले लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के द्वार। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। कपाट खुलने के बाद भी ताजा बर्फबारी। रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी से बदला नजारा। सफेद बर्फ की चादर से ढकी दिखी वादियां। सैलानी जमकर उठा रहे लुत्फ। केसर की महिला पर्वतारोहियों ने रचा इतिहास। मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा। गृहमंत्री शाह ने दी बधाई।

0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट के बाद जहां कई घरों में जश्न का माहौल है, वहीं कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कम नंबर आने के बाद मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सीबीएसई काउंसलर के पास मदद मांगने वाले छात्रों के फोन लगातार पड़ रहे हैं। कई छात्र अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, लेकिन सभी को ये समझना होगा कि परीक्षाएं महज जिंदगी का एक पड़ाव होती हैं, मंजिल नहीं। कम मार्क्स नहीं बनेंगे आपकी बाधा। एक्सपर्ट से जानिए हर सवाल का जवाब। मार्कशीट की मोहताज नहीं होती है कामयाबी। हमारे साथ जाने माने एजुकेशनिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट भी रहेंगे मौजूद। बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों के बाद काफी अहम मामला अब सामने आया है। कम मार्क्स पाने वाले कुछ छात्र बेहद तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि बोर्ड रिजल्ट के बाद कुछ छात्र चिंतित हैं। कम नंबर आने से कुछ छात्र उलझन में हैं, लिहाजा सीबीएसई काउंसलर के पास छात्रों के लगातार फोन आ रहे हैं। सीबीएसई ने ये फ्री हेल्पलाइन काउंसिल सेवा शुरू की थी। बोर्ड परीक्षा के नतीजों के बाद कुछ छात्र अपने भविष्य के लिए डरे हुए हैं, कुछ छात्र खुद को असफल मान रहे हैं, तो कुछ अभिभावकों की उम्मीदों से भी परेशान हैं। कम नंबर आने की एक वजह गलत विषय चुनना भी है, क्योंकि पेरेंट्स के दबाव में अक्सर बच्चे ये गलती कर बैठते हैं। ऐसे में माता पिता को समझना होगा कि नतीजों पर बच्चों को ना डराएं, दूसरे छात्र से तुलना ना करें, अपने बच्चों पर भरोसा करें, बच्चों की सुने, उनके प्रयास की तारीफ करें। सफलता की मार्कशीट नहीं होती, बच्चों को भी नंबर की चिंता छोड़नी चाहिए। परीक्षाएं आती जाती रहती हैं, इसलिए तनाव और दबाव को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, ये बेहद जरूरी है। तो 12वीं के नतीजे आने के बाद आपको बता दें कि सीबीएसई ने छात्रों और पेरेंट्स की मदद के लिए टेली काउंसलिंग और ईमेल सहायता सेवा शुरू की है। इस हेल्पलाइन पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपनी समस्या रख रहे हैं। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने सीबीएसई के हेल्पलाइन काउंसलर डॉक्टर नेहा शर्मा से बातचीत की, सुनिए।
1: मेरे साथ डॉक्टर नेहा शर्मा है जो की काउंसलर है सीबीएसई हेल्पलाइन की। मैम, जो रिजल्ट आपने मुझे बताया कि इस तरह से मार्क्स की वजह से, पढ़ाई के प्रेशर की वजह से ये चीज़ें खराब हो रही हैं, क्या केसेस आपको सुनने में आए?
2: देखिए, केसेस बहुत सारे आते हैं, पर मैं अभी कुछ चुनिंदा केसेस की बात करूंगी जो कहीं ना कहीं मेरे को भी इम्पैक्ट करके गए। जैसे एक बच्ची थी, वो बहुत परेशान थी सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्क्स उसके अच्छे नहीं आए थे, और ऐसे में जहां पेरेंट्स को उसे सपोर्ट करना चाहिए था, वह पेरेंट्स ने सपोर्ट करने की जगह उस पर सवाल उठाए कि तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी, तुमने पूरी मेहनत नहीं की होगी, अगर प्री बोर्ड में मार्क्स आ गए तो कोई और ही कारण रहा होगा, और बहुत सारी चीजें,
1: तुमने नकल की होगी, ये आरोप।
2: बिल्कुल, ये आरोप भी लगाया कि भाई प्री बोर्ड में तुम्हारे मार्क्स इसलिए ज्यादा आ गए कि तुमने, बिल्कुल तुम्हारी फ्रेंड्स ने तुम्हें मदद की होगी, तुमने चीटिंग की होगी। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि देखिए, बच्चा तो बच्चा है, पर अगर पेरेंट्स भी उसके साथ बच्चे बन जाएं और ना समझो जैसा व्यवहार करने लगे, तो वो बात थोड़ा गलत हो जाती
1: इस
2: है।
1: क्लास का बच्चा था ये?
2: ये बच्चा 12th का था, और
1: रिजल्ट के बाद
2: की ये कॉल थी, और बच्चे ने बहुत दुखी मन से बताया कि मैम, मेरे प्री बोर्ड में मार्क्स बहुत अच्छे आए, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, पर जो मेरे रिजल्ट बोर्ड में मेरा एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया है, और मुझे मालूम है कि मैं पेपर बहुत अच्छा करके आई हूँ। उसका कहना है कि मेरे 15-16 नंबर आए थ्योरी में, अब उसका कहना है कि 21 नंबर का तो मैं एमसीक्यू ही सही करके आई हूँ, तो 15-16 नंबर आने की तो बात ही नहीं बनती। और मेरे पेरेंट्स को जब मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने पेपर अच्छे से किया था, पूरी तरह से पूरा पेपर कंप्लीट करके आई थी, तो वो उल्टा मुझे ही डांट रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा दिमाग तो पूरा टाइम मोबाइल में रहता था, तुम्हारा दिमाग तो पूरा टाइम दोस्तों के साथ बातें करने में रहता था। बल्कि बच्चा इस बात से भी परेशान है कि मेरे खुद के पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे दिन रात मेहनत करते हुए देखा, वो मेरे साथ नहीं खड़े हो रहे हैं।
1: एक तरह से बच्चा डबल शॉक में है, एक तो वो खुद जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं आया, ऊपर से उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैम, यहाँ दो प्रॉब्लम हो गई, एक तो पेरेंट्स जो बच्चे को बोल रहे हैं वो, और दूसरा अगर बच्चे को अपना रिजल्ट अपनी मेहनत के हिसाब से नहीं लग रहा है तो तो वो क्या कर सकते हैं, दोनों का सोल्यूशन क्या है?
2: देखिए
1: क्या गाइड किया मतलब आपने उसे?
2: हाँ बिल्कुल, पहले हम बात करेंगे कि जहाँ पर रिजल्ट की बात है, क्योंकि बच्चा हमारे को कॉल कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि सीबीएसई क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसके बारे में उसे जानकारी मिले। तो सबसे पहले जहाँ पर आपके मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, सीबीएसई रिजल्ट आने के तुरंत बाद पोस्ट एग्जाम फैसिलिटीज ओपन करता है, जिसमें सबसे पहले आप अपने जो भी आपका पेपर है उसकी फोटोकॉपी मांग कर सकते हैं। उस फोटोकॉपी को आप जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई की वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है और जो क्वेश्चन पेपर आपका आया वो भी वहां पर है, तो उससे मैच करके आप ये देख सकते हैं कि भाई आपका कहां पेपर ठीक था और कहां पर चीजें वैसी नहीं थी जैसा मार्किंग स्कीम के हिसाब से होना चाहिए। तो आप अपने पेपर की एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें आप अपने टीचर्स की भी मदद ले सकते हैं और उसके बेसिस पर आप सीबीएसई को कह सकते हैं कि भाई मेरा ये पेपर ठीक था, आपकी तरफ से शायद कुछ आगे पीछे हो गया है, मेरे ये मार्क्स बनते हैं। सीबीएसई आपको तुरंत उस चीज के मार्क्स देगा। और अभी रिसेंटली सीबीएसई ने एक और नियम लगाया है कि अगर सीबीएसई की गलती निकलती है तो जितना भी पैसा बच्चे को उस आंसर कॉपी को मंगवा लेने में और वो सारी जांच की प्रक्रिया में खर्च हो रहा है, जो उसे सीबीएसई को देना पड़ रहा है, सीबीएसई वो सारा पैसा बच्चे को वापस भी कर देगा।
1: ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये तो जो उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन था। अब पेरेंट्स के साथ क्या हो?
2: देखिए सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर पेरेंट्स की ही पड़ती है, क्योंकि पेरेंट्स जो है पेरेंट्स अपने से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों का सोचते हैं। उनकी परेशानी यह है कि चलो मेरे बच्चे के नंबर कम आए उसका उन्हें शायद उतना दुख नहीं होता, मेरे ताऊ जी के चाचा जी के बेटे की बेटे का नंबर ज़्यादा आ गए मेरे बच्चे से, उससे ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। तो ये जो कंपैरिजन वाली बात आ जाती है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के अंदर एक ये भी होता है कि वो अपनी आशाएं अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों के ऊपर डालना चाहते हैं, तो जब वहाँ पर एक ब्रेक मिलता है उन्हें, वहाँ पर एक उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाती, तो वो उस चीज़ में कहीं ना कहीं वो बौखला जाते हैं और उस बौखलाहट में उनको खुद से ये समझ में नहीं आता कि इस वक्त जब बच्चे के लिए इतना सेंसिटिव टाइम है तो वो उस बच्चे की मदद करने की जगह अपना स्ट्रेस अपना जो प्रेशर है वो बच्चे को ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, जबकि इस वक्त एक परिवार के जैसे उन्हें साथ बैठना चाहिए, जो सपोर्ट सीबीएसई प्रोवाइड कर रही है वो करना चाहिए। और चलिए मान लीजिए बच्चे का पेपर खराब हो गया, रिजल्ट खराब हो गया, तो ये पूरी जिंदगी की तो परेशानी नहीं है ना, ये जिंदगी की किताब का एक पन्ना भर है, पलट दीजिए नया पन्ना आ जाएगा, नई इबारत लिख लीजिए, एक बार फिर से अपीयर कर लीजिए उस एग्जाम में। सीबीएसई आपको इम्प्रूवमेंट के मौके देता है, कंपार्टमेंट एग्जाम के मौके देता है, तीन तीन मौके देता है, और वो भी नहीं तो एक साल आपका जाएगा, एक साल पूरी मेहनत से दोबारा एग्जाम में अपीयर कीजिए।
0: देखिए विकल्प आपके पास कई सारे हैं, इसमें जरूरी यह है कि पेरेंट्स को भी समझना होगा और बच्चों को भी समझाना होगा कि परेशान होने से कुछ नहीं होता, जो रास्ते हैं उस पर अमल करना है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ मेहमान जुड़ेंगे आपको हम परिचय करवा दें। डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इस वक्त सीमा त्यागी जी अध्यक्ष पेरेंट एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ गई है। सीमा जी बहुत स्वागत है आपका। रुचिका राय मदान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, जो कि शिक्षाविद है एजुकेशनिस्ट है। रुचिका जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आपको बता दें डॉक्टर गीतांजलि कुमार हमारे साथ जुड़ेंगी, एजुकेशनिस्ट है। रुचिका जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आपको बता दें डॉक्टर गीतांजलि कुमार हमारे साथ जुड़ेंगी, जो कि स्टूडेंट काउंसलर हैं। और इनके साथ ही हम बता दें कि हमारे साथ थोड़ी ही देर में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको बता दें डॉक्टर निशा खन्ना, जैसा कि हमने आपको बताया। तो ये तमाम लोग होंगे, लेकिन सबसे पहले सीमा जी और रुचिका जी, आप दोनों से ही मेरा यह सवाल है। सबसे पहले सीमा जी आप इसका जवाब दें कि क्या अब ऐसा हो गया है कि 90% से अगर कम नंबर आ रहा है बच्चों का तो हम ये मान लें कि आप जीवन में असफल हो गए, ऐसा हो गया है क्या हमारे समाज में? आप
3: श्वेता जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आपने टैगलाइन दिखाई कि मार्क्स आर नॉट द क्राइटेरिया फॉर सक्सेस इन द लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है कि 90% से कम अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सफल नहीं होंगे। दूसरे अगर हम देखें तो हम इस बात को अब जज कर सकते हैं कि आफ्टर 12th जिन भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो जेई मेन्स आप देना चाह रहे हो, चाहे आप मेडिकल देना चाह रहे हो, चाहे कुछ और देना चाह रहे हो, तो वहां आपकी 12th की मार्कशीट सिर्फ एंट्रेंस के लिए है, वहां 95% मार्क्स है या 99 मार्क्स है तो उसकी कोई वेटेज आपको वहां नहीं मिलने वाली। दूसरे आफ्टर ट्वेल्थ जितने भी आपके लिए लाइनें खुलती हैं वो या तो सारे कंपटीशन बेस्ड हैं या फिर स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 90% से कम अगर आप हैं तो आप लाइन में कहीं नहीं खड़े हैं। श्वेता जी, इसका रीजन ये है क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो शुरू से ही कुछ मार्किंग बेस पर ही है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्कूलिंग सिस्टम है, चाहे हमारा समाज का ढांचा है, वो मार्किंग पर ही ज्यादा जोर देता है। अच्छा, ऐसा है भी इसलिए क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बच्चों को कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ता है। अगर 12th से निकले हुए वो बच्चे जो मेरे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, अगर वो सारे डॉक्टर बन जाएं या फिर फैसिलिटी मेरे देश में हो तो शायद 12th के मार्क्स की कोई चिंता ही नहीं करेगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: अगर बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं और इतने इंजीनियरिंग कॉलेज सरकार दे दे तो शायद इस बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि एक चीज
4: हम और इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं सबसे ये इस सवाल का जवाब चाह रही थी, इसलिए रुचिका जी आपके पास भी आते हुए और आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सीमा जी ने अभी बात कही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इस तरीके का रहा है जहां पर मार्क्स की शुरू से ही बहुत अहमियत रही है, तो यहां बच्चा क्या करे? अगर वो 90% से कम आ रहा है तो वो तो ऐसे ही परिवार वाले हों, तमाम लोग हों, उसका तो ये कहना है कि भाई फिर तो जीवन आपका असफल रहा, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं जीवन में।
5: अब जो है काफी सारी जो है सिचुएशन बदल गई है, ये नहीं देखा जाता कि अगर 90% से प्लस है। अगर हम देखें तो पूरे साल में जब शुरुआत करी जाती है 12वीं की, तो पेरेंट्स और बच्चे उन दोनों को आपस में पता होता है कि असलियत क्या है। पेरेंट्स को भी पता है कि मेरा बच्चा क्या 90 से ऊपर लाने वाला है, 95 से ऊपर लाने वाला है, या 70 से ऊपर लाने वाला है, या 75 या 80 से ऊपर लाने वाला है। अगर आपको याद हो तो अराउंड 20 इयर्स बैक देखें तो हमारे में ये कहा जाता था कि अगर हमारे 60% है, 70% है, डिस्टिंक्शन है और कॉलेजेस में एडमिशन बहुत ईजी हो जाती थी। और अब आप देखेंगे तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेनी है तो CUT आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए भी आपको एक परसेंटेज चाहिए, उसमें भी परसेंटेजेस के क्राइटेरिया है, हर एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम्स है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया कि 90 प्लस से ऊपर है तो हम सफल हैं और 90 से नीचे है तो हम असफल हैं। हर एक परसेंटेज पे आपके लिए हर लाइन ओपन है। और बच्चों,
4: रुचिका जी आएंगे आपके पास, आपके ऑडियो में थोड़ी समस्या हम ठीक करवा लेते हैं। डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ जुड़ गई हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर निशा, आपसे पहले भी बात हुई है और कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपने अपने एंड से दी है दर्शकों को। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक जिंदगी नहीं जुड़ी होती है, पूरा का पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व होता है। आपसे यहां पर ये समझना चाहेंगे कि ऐसे में जबकि अभी रिजल्ट्स आ गए, जब आपको पता है, जो अभी रुचिका जी कह भी रही थी कि हर पेरेंट को पता होता है कि उसका बच्चा कितना मार्क्स लाएगा, लेकिन आपको नहीं लगता एक अनड्यू प्रेशर, एक अनकॉल्ड अनसेड प्रेशर लगातार परिवार पर बना रहता है मार्क्स का?
6: देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ, और कई बार पेरेंट्स भी अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों पर लाते हैं। कुछ सपने जो मेरे पूरे नहीं हो पाए वो मेरे बच्चे पूरे करें, ये एक माँ बाप की बहुत नॉर्मल सोच है। और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, जब पेरेंट्स से अगर बात की जाए तो वो भी चाहते हैं हमारा बच्चा, जैसे अभी मेरे जो एक कलीग है वो के बोल रहे थे कि मेरे हर बच्चा डॉक्टर बने, तो पेरेंट्स की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। और आज कॉम्पिटिटिवनेस का दौर है, कई बार पेरेंट्स खुद भी कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो अपने सेट ऑफ सिबलिंग्स के साथ हो या किसी दोस्त के बच्चे के साथ हो, पड़ोसी के बच्चे के साथ हो या रिश्तेदार के बच्चे के साथ या अपने खुद के साथ, कि मैं आपके जमाने में ऐसे मार्क्स आए थे, मैं ये करता था। तो मुझे लग रहा है पेरेंट्स को अपना प्रेशर कम करने की जरूरत है, और वो बहुत जरूरी है ताकि बच्चों पर दबाव ना पड़े। कई बार बच्चों पेरेंट्स के कहे बिना भी बच्चों पर अपना दबाव होता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, मेरे पेरेंट्स की को ये चीजें बहुत अच्छे से की हैं या उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, तो मुझे भी उतना ही परफॉर्म करना है, उससे कम मैं नहीं कर सकता। तो क्यों होता है, बच्चे खुद ही कई बार अपने आप को गिल्ट में रखते हैं, बच्चे खुद ही अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। तो ऐसे समय में बच्चों को भी ये हौसला देना चाहिए, अगर मार्क्स कम भी है तो आपकी लाइफ खत्म नहीं होती, आप करियर जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। और करियर के मायने पर ही आपके अच्छे या बुरे होने का या आपके रिश्ते और आपकी पूरी लाइफ तय नहीं होती। ये माँ बाप ही सिखा सकते हैं, स्कूल में टीचर सिखा सकते, करते हैं क्योंकि स्कूलों की तरफ से भी बहुत प्रेशर आता है, तो ये प्रेशर तो माँ बाप की तरफ से है, तो मुझे लग रहा है माँ बाप को ये प्रेशर हटाना चाहिए। हाँ, बच्चा अगर कर रहा है उससे पूछिए हम कहाँ आपकी मदद कर सकते हैं, आपको हमारी कहीं गाइडेंस चाहिए, हम वो कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को कुछ चीजों खुद गाइड कर सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं, इट इज नॉट कि आपको साइंस और पर लाइफ की बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज पेरेंट्स बच्चों को दे सकते हैं जिससे बच्चे सीखते हैं, लाइफ स्किल्स जिसे बोलते हैं, तो वो लाइफ स्किल्स देना बच्चों को पेरेंट्स का फर्ज है। बट प्रेशर नहीं डालिए कितने मार्क्स ला रहे, और बच्चा कम ला रहा है तो उससे पूछिए कहाँ उसे दिक्कत आ रही है, कैसे उस दिक्कत को दूर किया जा सकता है वो बच्चा बता सकता है। अगर जरूरत पड़ती है तो प्रोफेशनल्स के पास जाइए, आजकल करियर काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट है, अगर उनको कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, काउंसलर्स के पास जाइए, ताकि वो गाइड कर पाए आपके बच्चे को कि कैसे उन चीजों का सामना कर सकते।
4: डॉक्टर निशा, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए सीमा त्यागी जी आपसे जाना चाहेंगे, क्योंकि आप प्रेसिडेंट भी है पेरेंट्स एसोसिएशन की, आप बेहतर बताएंगी आपको क्या लगता है कि जाने अनजाने में पेरेंट्स खुद कितना प्रेशर डाल देते हैं बच्चों पर मार्क्स को लेकर, एग्जाम को लेकर।
3: श्वेता जी, हम ये बात अगर आज से 15 साल पहले कह रहे होते तो मैं कहती कि 100% पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो पिछले 8-10 साल से ये ट्रेंड चेंज हुआ है। हम अपने आप ही देख लें, हम चार महिलाएं यहाँ बैठी हैं, हम में से कितनी अपने बच्चों के ऊपर ये प्रेशर डालती है कि भाई बेटा तुझे 90% ही लाने, क्योंकि अब पेरेंट्स बच्चों को बच्चों की च्वाइस के हिसाब से आगे बढ़ने दे रहे हैं। पहले जब हमारे आपके पेरेंट्स होते थे तो उनको नहीं इतनी नॉलेज होती थी, लेकिन अब पेरेंट्स क्योंकि पढ़े लिखे हैं, वर्किंग है, तो वो ये जानते हैं कि मैं अपने बच्चे में ये देखूं कि उसकी खूबी क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से बच्चा होता है, हर एक बच्चा एक सांचे में नहीं डल सकता।
4: बिल्कुल।
3: और आजकल इतनी सारी लाइनें बच्चे के लिए खुली हैं, बच्चे को नौकरी लेने के लिए ही पढ़ाई नहीं है, जीवन कैसे जीना है इसकी भी पढ़ाई है। जैसे अभी मैडम ने कहा कि हम बच्चों को लाइफ स्किल्स हम पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ट्रेंड हमने देखा है कि जो अपनी स्कूलिंग में बहुत टॉपर्स बच्चे होते हैं वो लाइफ में फेल हो जाते हैं। जब कोविड आया था तो हमने देखा था कि जो हमारे यहाँ के टॉपर्स यूएस में बैठे थे और जब उनकी नौकरी चली गई तो वो डिप्रेशन में आ गए और कुछ तो उनमें से अपने जीवन को खत्म भी कर चुके।
4: बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया सीमा जी, लेकिन इसी बात को मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल वे में हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सब भी उस दौर से गुजरे हुए हैं। रुचिका, आपके पास आते हुए आप मुझे ये बताइए कि हम इसे ऐसे समझना चाहते हैं कि क्या हम आज के समय में, क्योंकि हमने जो फेज देखा है उसमें तो ये रहा है कि भाई अगर आप अच्छे मार्क्स ट्वेल्थ में नहीं लाते हैं तो अच्छे कॉलेजेस में भी आपके एडमिशन नहीं होंगे। आप डीयू की ही बात करें, पहले जिस तरह से उसमें होता था एडमिशन आपके होते थे तो कट ऑफ ही कई ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 98 point something, 96 point something परसेंटेज वहां आपको चाहिए होते थे, कट ऑफ लिस्ट ही ऐसे आते थे। ऐसे में उन बच्चों का क्या जिनकी अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी रही है, क्लैरिटी रही है, लेकिन मार्क्स उतने नहीं आए।
5: उसी को देखते हुए अगर आपने देखा होगा, आप डीयू की बात जैसे कर रहे हैं मैम, तो डीयू में अभी हमने सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम्स जो स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसको ही देखते हुए आपको एक दोबारा मौका है। आपके बारहवीं में नंबर अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन आपको एक दोबारा, अगर आपको अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन है जो कि बहुत अच्छे हमारे सारे कॉलेजेस हैं, तो उसके लिए भी आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। एंट्रेंस एग्जाम्स में आपकी परसेंटेज जिस हिसाब से, तो ये एकदम बारहवीं के रिजल्ट से हमें मतलब नहीं रह जाएगा। यहाँ पे हमें दोबारा मौका दिया गया है। इसी तरीके से अगर आप चाहे डीयू के कॉलेजेस में जाना चाहें तो आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम है। आप कोई भी कोर्स और करना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, आर्ट्स में जाना चाहते हैं, आप किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं, हर तरह की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको दोबारा मौका दिया जाता है, जहां पे आप अगर सोच रहे हैं कि मुझे ये क्लैरिटी चाहिए और वहां पे आपके उस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं, आपको बारहवीं के एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम देने हैं उसकी तैयारी के लिए आपके पास इतना समय है, इतने मौके दिए जाते हैं, आप पूरा साल भी बच्चे प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हमने तो बैठना ही बैठना है ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में। कोई जरूरी नहीं है ये इफ एंड बट लेके हम हमेशा चलते हैं कि हम 90 प्लस लेके चल रहे हैं, 70, 80, 50, 60, जिस भी रेंज में हर बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी है। आप ये नहीं कह सकते कि 50% वाला बच्चा 90% क्यों नहीं लाया और 90% वाला 99 क्यों नहीं लाया, ये हो ही नहीं सकता। अगर ये हो सकता होता तो हर बच्चे को पता है, वो नर्सरी से जब स्कूल में जाता है उसके माँ बाप ही शायद उसको इतना ट्रेन कर देते हैं कि तुझे बारहवीं में तो नंबर लाने ही लाने। आप सोचे वो 14-15 साल तक हम उसको यही कह रहे हैं तुझे 12वीं में नंबर लाने हैं, तो क्या उस बच्चे ने 10वीं और 12वीं में ये कोशिश नहीं करी होगी? या आपको लगता है क्या उनके पेरेंट्स ने उनकी ये मदद नहीं करी होगी, या उनके स्कूल के टीचर्स ने, या जहां से भी वो जिस भी किताब से वो शिक्षा गेन कर रहे हैं या जिस भी टीचर से वो शिक्षा ले रहे हैं, क्या उन्होंने वो पूरी कोशिश नहीं करी होगी? क्या आपको लगता नहीं कि हर बच्चे, हर माँ बाप ने, हर टीचर ने अपना 100%
4: अपने लेवल पे सबने कोशिश की होगी,
5: कोशिश करी होगी, और जो उसका रिजल्ट आया उसको एक्सेप्टेंस देना एक बहुत जरूरी है। अब कहना कि मेरे नहीं आए, तो आपके पास एक और मौका है।
4: लेकिन अब ये है कि हमारे समाज में जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस वक्त अब जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शंस कई सारे हो गए हैं, अब सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर तक ही सीमित चीजें नहीं रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी कई सारी चीजें हैं। डॉक्टर निशा, आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अक्सर देखिए पेरेंट्स बिना सोचे समझे अपनी उम्मीदों का बोझ बच्चों पर लाद देते हैं, ये एक सच्चाई है। एक ऐसे ही बच्चे की उलझन समझने की कोशिश करते हैं जो कि कॉमर्स लेना चाहता था, लेकिन पेरेंट्स के दबाव में उसे साइंस लेनी पड़ी। अब सुनिए सीबीएसई काउंसलर के साथ इस छात्र की बातचीत, कैसे इस बच्चे को मिला उसकी समस्या का समाधान।
7: मैम, मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ मैम।
2: ओके
7: मैम, मेरे जो है टीसीएम में साइंस में फेल हो गया हूँ मैम।
2: अच्छा, आपके साइंस में मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आपके मार्क्स सीखने आए हैं?
7: नहीं मैम।
2: ओके,
7: मैं कॉमर्स पढ़ना चाहता था तो फादर ने इंसिस्ट किया कि नहीं आप पीसीएम लो, जैसे मैम मेरे कम नंबर आए हैं, तो आप प्लीज हेल्प करिए मैम।
2: अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आपने कभी घर पर इस बारे में बात किया कि आप साइंस नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं?
7: मैम मैं कर नहीं पाया, जब फादर ने इंसिस्ट किया तो मैं बोल नहीं पाया कि मैं कॉमर्स करना चाहता हूँ, पर मेरा फेवरेट कॉमर्स ही था मैम।
2: अच्छा, तो अब आप एक काम कीजिएगा, आप जरा अपने पेरेंट्स से एक बार बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो ये कि आप, क्योंकि आपके दो सब्जेक्ट्स में रिपीट थ्योरी हैं और अगर आप कह रहे हैं कि फेल हैं आप, तो आप आगे एक प्राइवेट कैंडिडेट के जैसे भी अपीयर करके एग्जाम दे सकते हैं अगले साल साइंस के साथ, नहीं तो आप अपनी स्ट्रीम चेंज करके 12th में दोबारा से कॉमर्स सब्जेक्ट्स लेके दोबारा से आप 12th कर सकते हैं। पर उससे पहले आप एक बार अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि आपका मन किन सब्जेक्ट्स में लगता है, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके पढ़ने पसंद हैं, और क्या पढ़कर क्या सब्जेक्ट्स जो हैं आपको अच्छे से समझ में आते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ बात सिर्फ साइंस या कॉमर्स पढ़ने की नहीं है, यहाँ बात ये भी है कि आप जो भी कुछ पढ़े आपको उसमें अपना फ्यूचर बनाना है। तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वही चीज हमारे को अपने लिए चुननी चाहिए जिसको करके हम जिंदगी भर खुश रहें। तो अगर आप कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर और उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर करियर पाथवे में आगे जाकर अगर आप खुश रह सकते हैं, तो एक बार आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, और आई एम श्योर वो आपकी बात को समझेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। पर बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। क्या आप मुझे अपने पेरेंट्स से भी बात करवा सकते हैं? मैं उनसे भी बात करती हूँ, कर सकती हूँ।
7: बिल्कुल मैम, मैं श्योर मैम, मैं कराऊंगा, पेरेंट्स से भी बात करूंगा मैम।
2: हाँ, आप मेरे को पेरेंट्स से बात करवाइएगा, आप दोबारा इसी हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, जब आप कॉल करेंगे तो आपको कनेक्ट कर देंगे, और जब कनेक्ट करेंगे तो मेरे को आप अपने पेरेंट्स से भी बात करवाइएगा।
7: श्योर मैम, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम,
2: थैंक यू, बेस्ट विशेस,
7: थैंक यू मैम।
4: तो सीबीएसई काउंसलर और एक छात्र की बात आपने सुनी, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर निशा, आपके पास आते हुए एक तो पहले जो आप कुछ कहना चाह रही थी वो भी आप कहिएगा, लेकिन साथ ही साथ आपने सुना होगा अभी जो हमने ये प्ले किया, लगातार अब जो बताया जा रहा है कि ये जो सीबीएसई काउंसलर्स की टीम है, 12th के रिजल्ट के बाद एकाएक फोन कॉल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं और इनको कॉल कर रहे हैं समस्या का समाधान पाने के लिए। इसे आप किस तरीके से देखती हैं, ये क्या संकेत देता है?
6: देखिए, एक चीज मैं बोलना जो चाह रही थी वो थी रिजेक्शन। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है पेरेंट्स जो है वो बच्चों को रिजेक्शन लेना नहीं सिखाते हैं। जिंदगी में सिर्फ जीता नहीं जाता, जिंदगी में हार भी होती है और हार हमें ये सिखाती है कि हम कुछ चीजें करने में शायद सक्षम नहीं है या हमसे ज्यादा किसी और ने उस चीज पर मेहनत की है या कुछ चीजें करने का स्किल सेट हमारे पास नहीं है। तो मुझे लग रहा है एक रिजेक्शन शब्द अपने बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को बच्चों को हर चीज इजिली वे अवेलेबल कराना भी एक बहुत बड़ा डिटरेंट होता है। कई बार बच्चों के लिए भी टारगेट कुछ फिक्स करने जरूरी है और जरूरी नहीं हर चीज के लिए जो वो अच्छा करें उनको हर बार कोई इनाम दिया जाए, उनकी वर्बल प्रेज भी की जानी चाहिए। रही बात जो आपने सवाल भी बोला है उसमें भी मेरा ये कहना है कि अगर पेरेंट्स के पास की इन प्रॉब्लम्स की वजह से रिजल्ट के बाद बच्चे अगर काउंसलर्स के पास जा रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चे परेशान है। एक, उन्होंने अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख ली है। दूसरा, कॉम्पिटिशन का दौर है, हम भी चाहते हैं हम लाइफ में कुछ करें पर कई बार वही अब हमने रिजेक्शन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे मार्क्स जितने हमने सोचे थे उससे कम आए हैं, उसे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। थर्ड, अगर हम उसमें फिर बात करें कि कहीं ना कहीं जब हम मार्क्स कम आ रहे हैं और जा रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या रह जाती हैं, किन कॉलेजेस में एडमिशन होता है और क्या उन कॉलेजेस में पर एडमिशन इजीली हो जाएगा कि पैसे देकर करवाना पड़ेगा। अगर आप अब्रॉड में कहीं यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं तो हमें भी पता है ट्रम्प की और यूएस की कंडीशन की वजह से बहुत सारे वीजाज रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसीलिए भी सफर कर रहे हैं कि उनका यूनिवर्सिटीज में उनको वीजा नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं
4: बिल्कुल बिल्कुल
6: तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही हैं।
4: बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा। रुचिका, आपके पास आते हुए, आपको नहीं लगता कि आज के समय में खास करके हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर स्किल बेस्ड एजुकेशन को हम ज्यादा से ज्यादा इंड्यूस करें हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो ये टेंशन और प्रेशर दोनों ही कहीं ना कहीं बच्चों और पेरेंट्स में कम करेगा?
5: बिल्कुल 100%। स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्सेज अनगिनत हैं, उसके बाद उनके कोर्सेज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हर टेक्निकल लाइन, चाहे आप आर्ट्स की लाइन में जाना चाहें, आप आईटी की लाइन में जाना चाहें, आप साइंस की किसी लाइन में जाना चाहें, आप कॉमर्स की भी कोई फील्ड देखेंगे, हर फील्ड में अपने वोकेशनल कोर्सेज, अपने स्किल बेस्ड सब कोर्सेज अवेलेबल हैं। हर एक की जो जानकारी है साइट पे प्रॉपरली अवेलेबल है। हर बच्चे को ये इजिली पता लग सकता है कि वो जो भी उसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, जिस भी लाइन में उसको इंटरेस्ट है, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसको एंट्रेंस एग्जाम सब जगह जाके देके ही उसको जो कोर्स टॉपर को मिला है वो ही उसको ही करना है। वो उसको नहीं करना होगा तभी वो इस लेवल पे नहीं है। और जिस भी लेवल पे जिस परसेंटेज, आपने ये बहुत इतिहास भी इस बात का आपको पता है कि गवाह है कि ये नहीं है कि जिनके कम नंबर आए हैं, मुझे तो लगता है जिनके कम नंबर आए हैं वो भी उसी ऊंचाइयों पे आगे पहुंचे हैं। हमारा जीवन जो है, जीवन एक इतना अच्छा हमारे को भगवान ने जो दिया है उसको हमने जीने के लिए जीना है, तो उसके लिए हमारे पास हर लाइन ओपन है।
4: लेकिन रुचि, इसको मुझे लगता है, रुचि मुझे लगता है कि इसको अगर हम उतना वेग ना करें लेकिन अगर हम कुछ क्लैरिटी में बच्चों को बता सके, दर्शकों को बता सके तो बेहतर होगा कि अगर स्किल डेवलपमेंट में ही बढ़ा जाए तो क्या क्या वो कर सकते हैं। एक्चुअली आज एट प्रेजेंट अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे देश की, क्योंकि हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो फॉरेन अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए भेज सके, उन्हें रख सके, वहां पढ़ा सके। कई बच्चे एकेडमिक्स में बहुत अच्छा नहीं करते हैं लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन क्या अगर रियलिटी देखी जाए तो स्पोर्ट्स में आज हमारे पेरेंट्स बच्चों को आगे बढ़ने दे सकते हैं भारत में, आपको लगता है?
5: स्पोर्ट्स अकेडमीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो जितनी भी खुली है और हर अपने एरिया के हर जगह पे, चाहे छोटे शहर हो चाहे कोई बड़ा शहर हो, हर शहर में आपके पास स्पोर्ट्स अकेडमी अवेलेबल है और हर फील्ड की। सिर्फ जैसे आप कहते हैं कि क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट उस जगह पे नहीं, आप देखेंगे बास्केटबॉल में देख लीजिए, आप लेडीज की किसी भी लाइन में, वॉलीबॉल में चले जाए, आप मेन लाइन में जाए, स्पोर्ट्स की भी अवेलेबिलिटी है। आप टेक्निकल लाइन, आप आईटी की बात करें, आईटी में एक टॉपर वो है जो जाके एप्पल ज्वाइन कर रहा है, वो है जो जाके इंडिया की किसी भी हाई एंड टेक्नोलॉजी लाइंस में काम कर रहा है, और वो भी है जो मोबाइल के रिपेयर से लेके उस मोबाइल तक को बनाने तक की, उनके लिए हमें हर जगह एक इंसान की जरूरत है जो वो उस टेक्निकल लाइन के थ्रू कर रहा है। तो वोकेशनल और टेक्निकल जितने भी हमारे कोर्सेज,
4: बिल्कुल,
5: आप मेडिकल लाइन में चले जाएं, मेडिकल लाइन में सिर्फ ये नहीं कि डॉक्टर है, हम नर्स से शुरू होके उसके बीच में हमारे पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे पास मेडिकल जितने आप देखेंगे दवा खाना खुल रहे हैं,
4: तो ऑप्शंस कई सारे
5: टेक्निकल फील्ड अवेलेबल,
4: बिल्कुल ऑप्शंस कई सारे हैं, उसे टटोलने, उसे जानने की जरूरत है। सीमा जी के पास हम आएंगे। सीमा जी, आपने हाथ उठाया था, कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: क्या बात। और हम आज चर्चा कर रहे हैं कि क्या मार्कशीट किसी का जीवन, किसी का भविष्य तय कर सकती है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपको इस बीच लेकिन बता दें कि बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स उन पर भरोसा रखें, क्योंकि पहले ही कम मार्क्स पाने वाले बच्चे तनाव में रहते हैं। अगर पेरेंट्स भी उन पर डाउट करेंगे तो बच्चों के लिए इस स्थिति से निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सुनिए कैसे सीबीएसई काउंसलर एक स्टूडेंट की समस्या का समाधान निकाल रहे हैं।
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
2: गुड आफ्टरनून
1: मैम, मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ।
2: ओके।
1: और मैम, मुझे प्री बोर्ड में जब मेरा एग्जामिनेशन हुआ था तो मेरे मार्क्स 90 और 80 के अराउंड आए थे मैम।
2: अच्छा।
1: और अब मैम, जब मेरा बोर्ड का एग्जाम है तो मेरे मार्क्स जो हैं वो इस बार ही बहुत कम आए मैम।
2: अच्छा, कितने मार्क्स आए हैं अब आपके?
1: मैम, मेरे 50 और 60 की रेंज में आए मैम।
2: अच्छा, ओके।
1: तो मैम, मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि आपने जो प्री बोर्ड दिया था, प्री बोर्ड में आपके मार्क्स इसलिए अच्छे आए कि आपने उसमें चीटिंग किया होगा।
2: अरे अच्छा, ओके।
1: बट मैम, ऐसा कोई चीटिंग का नहीं था। मैंने अपने जो एग्जाम दिया था वो पूरी डेडिकेशन से और मेहनत से दिया था मैम।
2: अच्छा।
1: बट अभी जो मेरे एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम है, इसमें मार्क्स नहीं आ पाए मैम।
2: ओके। तो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, राइट?
1: यस मैम, यस मैम।
2: अच्छा, और आपने उनको समझाया कि आपकी मेहनत जो है वो पूरी थी, पर
1: yes,
2: किसी
1: ma'am.
2: भी कारण से शायद मार्क्स नहीं आ पाए हैं, क्या आपने उन्हें बताने की कोशिश की?
1: यस मैम, राइट मैम। मैंने ये जो डिस्कशन है वो अपने पेरेंट्स के साथ भी किया, बट वहाँ से मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला मैम।
2: अच्छा।
1: तो मैं अभी थोड़ा डिप्रेशन में हूँ मैम। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे अपने आप को हैंडल करूँ और इस सिचुएशन से कैसे हैंडल करूँ इसको।
2: अच्छा, पहली चीज तो देखिए, इसमें डिप्रेशन की कोई इतनी खास जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए आपने मेहनत तो पूरी की, और परेशान होने की जरूरत हमें तब होती है जब हम मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है? तो जब आप मेहनत कर रहे हैं, जब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, आपके प्री बोर्ड के मार्क्स जब इतने अच्छे आए हैं, तो हो सकता है 2-3 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स ठीक ना हो। हो सकता है आपका जो तैयारी हो वो प्री बोर्ड में ज़्यादा अच्छी हो, बट बोर्ड का पेपर उसके कंपेरिजन में टफ आया हो, तो उसकी वजह से भी मार्क्स डिप हो सकते हैं। पर आप उस केस में इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है? पहली बात तो ये रही। पर उससे भी पहले, अभी जब आपके अब रिजल्ट्स के बाद बोर्ड बहुत जल्दी अपना विंडो खोलेगा पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज के लिए, जिसमें आप अपनी जो जिस भी सब्जेक्ट की आपको लग रहा है आपके मार्क्स ठीक नहीं आए हैं, आप उसकी फोटोकॉपी ले सकते हैं। CBSE की वेबसाइट पे ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर्स और मार्किंग स्कीम्स अवेलेबल हैं, तो आप उनके साथ कंपेयर करके ये चेक कर सकते हो कि आपका पेपर कितना सही गया था और कितना आपका पेपर उस मार्किंग की स्कीम के अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है। जब आप ये कंपैरिजन कर लेंगे तो उसके बाद आप बोर्ड को रिक्वेस्ट कर सकते हो उस पेपर का रीवेरिफिकेशन करने का, या आप रीवैल्यूएट भी करवा सकते हो अगर आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए और आपको कम मार्क्स मिले हैं, तो आप इसको रीवैल्यूएट भी करवा सकते हो। और अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो उस रीवैल्यूएशन में भी आपको अच्छा खासा मार्क्स का गेन हो सकता है। और रही बात पेरेंट्स के सपोर्ट करने की, तो मैं आपको सिर्फ यही सजेशन दूंगी कि आप अपने पेरेंट्स से एक बार बात करें, और अगर आपको लगता है कि वो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं तो घर में किसी और की मदद ले जो आपकी बात उन तक बेहतर तरीके से पहुंचा पाए और उनको समझा पाए।
0: तो तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और आपने सुना किस तरह से जो सीबीएसई काउंसलर हैं लगातार स्टूडेंट्स की समस्याएं सुन रही हैं, सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सीमा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप अपनी बात भी रखिएगा, लेकिन अब जो आपने सुना होगा किस तरह से सीबीएसई काउंसलर बात कर रही थी, इसमें साफ नजर आता है, साफ समझ में आता है कि पेरेंट्स सबसे पहली बात वही अपने बच्चों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा खुद भी प्रेशर में रहते हैं, वो सामाजिक प्रेशर है या क्या प्रेशर है, रिलेटिव्स का भी कई बार प्रेशर रहता है, जो निशा जी कह चुकी हैं और भी बाकी लोग भी कह चुके हैं, रुचिका जी भी कह चुकी हैं कि आपके रिलेटिव्स, आपके समाज का इतना प्रेशर रहता है कि वो सारे प्रेशर मिला के छोटे से बच्चे पे आप डाल देते हैं और उससे उम्मीदें करने लगते हैं।
3: श्वेता जी, मैं जो पहले अपनी बात कहना चाह रही थी उसको कहूंगी। निशा जी ने बताया और आपने उसको क्लैरिफाई भी कर दिया कि जो कुछ पेरेंट्स की अति महत्वाकांक्षाएं हैं और जो बचपन से उस बच्चे में डाल देते हैं कि मेरा बच्चा तो आगे जाके विदेश से ही पढ़ेगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही पढ़ेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से ही पढ़ेगा, तो इस प्रेशर को पेरेंट्स को बच्चों पर नहीं डालना चाहिए। अपने हिंदुस्तान में बहुत कुछ पढ़ाई है। दूसरी बात श्वेता जी, मैं आपके माध्यम से ये सभी दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि NEP 2020 जब से लागू हुई है तब से ऐसा कोई बंदिश बच्चों के ऊपर रही नहीं। जैसे एक बच्चे को मैंने अभी सुना कि पेरेंट्स ने कहा PCM पढ़ो, मेरा कॉमर्स मन था, तो आप अब आपके पास सब्जेक्ट च्वाइस इतनी ज्यादा है NEP में कि अगर आप PCM ले रहे हैं तो आप उसके साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं। अगर बच्चे का मन साइकोलॉजी पढ़ने का है तो PCM के साथ साइकोलॉजी भी पढ़ सकता है। अगर कोई बच्चा आर्ट साइड के सब्जेक्ट ले रहा है, ह्यूमैनिटीज लेता है, वो चाहता है मैं मैथ्स में भी अच्छा हूं, मैं मैथ्स पढ़ूं, तो वो मैथ्स भी पढ़ सकता है। लेकिन शायद हम उस चीज को पेरेंट्स तक और बच्चों तक अभी नहीं पहुंचा पाए कि आप सब्जेक्ट वेरिएशन कर सकते हैं। और श्वेता जी, इतने ऑप्शंस हमारे पास हैं, आप जिस फील्ड से हैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, क्या उसमें 12th की मार्कशीट काम आती है? नहीं, टोटली पैशन काम आता है। तो पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि मेरे बच्चे का पैशन क्या है, मेरा बच्चा क्या अच्छा कर सकता है और उस अच्छा करने में एंजॉय भी कर सकता है और अपना कैरियर भी बना सकता है।
0: बिल्कुल डॉक्टर निशा, यहाँ पर एक बार फिर से
3: अपना कैरियर,
0: बिल्कुल डॉक्टर निशा एक बार फिर से यहाँ पर महत्वपूर्ण है आपसे ये समझना। आपको लगता है कि पेरेंटिंग को लेकर जब घर में कोई नया मेहमान आने वाला होता है, जब बच्चे के हम स्वागत करते हैं, तब पेरेंटिंग को लेकर ना जाने कितनी किताबें लोग पढ़ डालते हैं, कितने वीडियोस देख डालते हैं, आपको नहीं लगता है कि जरूरी ये भी है कि जब आपके बच्चे इतने क्रूशियल मोड पर हो एग्जामिनेशन के, जब वो एग्जाम देने जा रहा हो, उससे पहले भी पेरेंट्स को कुछ पढ़ने की गाइडेंस की जरूरत है? इनफैक्ट उन्हें ही काउंसलिंग की जरूरत है। निशा जी, आप म्यूट है, आपका माइक देख लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक निशा जी, अनम्यूट करिए एक बार, अपने माइक को अनम्यूट करिए एक बार। निशा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार हम इसे ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। रुचिका जी आपके पास आते हुए, रुचिका जी आप
4: प्रश्न का आपका जवाब देते हुए।
0: जी
4: बिल्कुल, कैरी ऑन करते हुए, जैसे आप कह रहे हैं कि हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग की जरूरत है। अभी आपने हमने सुना कि CBSE में एक बच्चे को PCM दिला दिया, उसका इंटरेस्ट कॉमर्स में रहा है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि 9th और 10th में सारे स्कूल्स अपने एंड पे आप देखेंगे तो पूरा इनको पेरेंट्स को बुला के ये बताया जाता है कि हो सकता है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो सकता है कि आप इंजीनियर बनना चाहते हो, बट आपका बच्चा शायद वो नहीं बनना चाहता है। तो उस वजह से हम 9th में जब सब्जेक्ट सिलेक्शन 9th के एग्जाम्स के बाद कंप्लीट होता है, 10th में हमने बोर्ड्स दिए हैं, 10th के बाद जैसे ही हम अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद पे आते हैं कि 11th में हमने कौन सा सब्जेक्ट लेके कौन सी फील्ड में जाना है, हम अपने पेरेंट्स को सबको स्कूल्स में बुला के ये गाइडेंस देते हैं और उनको कन्विंस करते हैं। और काफी को आप मानेंगे 80-90% को हम कन्विंस करने में हो जाते हैं, और कईयों को सच्ची में हमें बहुत मेहनत लगती है उनको ये समझाने में कि नहीं आपका बच्चा इस चीज के लिए नहीं बनना है। वो कहते नहीं, आप फिर भी वो उनका क्या क्वेश्चन रहता है, बिल्कुल सही बात है कि आप स्टम दिला के देख लीजिए, शायद अगर फर्स्ट टर्म में अगर आपका बच्चा ना कर पाए। और कितनी जगह पे हमें फर्स्ट टर्म उसको 11th में साइंस में दिलाना पड़ता है और जब उसके नंबर नहीं आते तो हम फिर पेरेंट को बुला के बताते हैं देखिए ये नहीं पॉसिबल है। इसलिए ये प्रेशराइजेशन से हटने के लिए पेरेंट्स की काउंसलिंग हमेशा ही जरूरी रही है। और 10th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपके 10th के बोर्ड के एग्जाम्स आपका बहुत बड़ा एक मापदंड रहते हैं जिसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन इजी कर दिया जाता है कि इस लेवल से परसेंटेज ऊपर लाने वाला बच्चा साइंस इजीली कर पाएगा। करना चाहे वो आर्ट्स चाहता हो तो हम उसको आर्ट्स देते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो साइंस के परसेंटेज लाया और हम उससे बोले नहीं आप साइंस लो, उसका इंटरेस्ट आर्ट्स। तो कई जगह पेरेंट्स समझ पाते हैं, कई जगह नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनकी
0: बिल्कुल यानी कि पेरेंट्स जो है उनकी भी काउंसलिंग जरूरी है। सीमा जी
4: अभी भी हाँ। आप देखेंगे, मैं इसमें एक एड ऑन करूंगी कि 12वीं के रिजल्ट के बाद अभी भी कुछ पेरेंट्स फोर्स करेंगे अपने बच्चों को कि नहीं तू एक साल दोबारा दे दे, लेकिन आप वो ट्रॉमा सोचिए कि जिस ट्रॉमा से बच्चा ऑलरेडी निकल चुका है और वो बच्चा उस स्कूल में दोबारा जाके वो अपने जूनियर्स के साथ नहीं बैठना चाहता कि मुझे वो दोबारा 12वीं का एग्जाम देना पड़े कि भाई मेरे पापा या मम्मी चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं, वकील बनूं या मैं इंजीनियर बनूं। तो इस वजह से इन चीजों से बचने के लिए जिस भी फील्ड में बेस्ट है, अनलिमिटेड वेब डिजाइनिंग देख लीजिए, मार्केटिंग चले जाइए, अनलिमिटेड फील्ड
0: बिल्कुल बिल्कुल
4: परसेंटेज पे खुली।
0: बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है रुचिका। सीमा जी यहाँ पे ये बताइए ना कि ये कौन सी मनोदशा है, ये कौन सी मानसिकता है लोगों की, पेरेंट्स की, कि वो अपनी बात इस हद तक थोप देते हैं अपने मासूम पर, अपने बच्चों पर, कि वो ना चाहते हुए भी वो अच्छा नहीं कर सकता है, उसे इंटरेस्ट नहीं है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फिर भी उसे लेना होता है।
3: श्वेता जी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो इसको क्लियर करती हूँ। बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस चीज को कवर अप करते हैं। पहली बात तो ये, अभी अब बताया आपको मेरे साथी ने कि टेंथ के बाद मार्क्स सेट कर देते हैं स्कूल की, 80% से ऊपर लाएगा तो पीसीएम मिलेगा, 60% से नीचे लाएगा तो ह्यूमैनिटीज मिलेगा। तो बच्चों के और पेरेंट्स के दिमाग में ये बैठ गया कि पीसीएम जो है वो शायद टॉप मोस्ट चीज है और ह्यूमैनिटीज सबसे रिजेक्टेड है। बच्चों के च्वाइस के हिसाब से नहीं देते, बच्चों के मार्क्स के अकॉर्डिंग देते हैं स्कूल। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लिए हुए है कि जब हम बच्चे के मार्क्स के हिसाब से उसकी स्ट्रीम सेट कर रहे हैं, बनिस्पत उसकी कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी है, उसकी इच्छा कितनी है, उसका पैशन कितना है। क्योंकि 3 घंटे का जो पेपर होता है ना श्वेता जी, वो आपकी पूरी साल की मेहनत को जज नहीं कर सकता।
0: बाई चांस
3: उस वक्त बच्चे के साथ ऐसा हुआ कि वो साइंस का पेपर अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन उसके साइंस के कंसेप्ट बहुत अच्छे थे और वो साइंस पढ़ना चाहता है, लेकिन उसको क्योंकि टेंथ में मार्क्स कम रह गए तो 11th में स्कूल साइंस नहीं देंगे। दूसरी चीज श्वेता जी, पेरेंट्स की अगर हम बात करें, हमारे हिंदुस्तान की ये विडंबना है कि हम पेरेंट्स तो बन जाते हैं लेकिन पेरेंटिंग की ट्रेनिंग हमें कहीं नहीं दी जाती। तो हम इस बात को समझ ही नहीं पाते कि बच्चों को पालना कैसे है, बच्चों को आगे कवरअप कैसे करना है। जिनके 2 बच्चे हैं वो पहली बार में जो गलती करते हैं अपने आप ही ट्राई एंड एरर मेथड से दूसरे बच्चे के साथ वो मिस्टेक नहीं करते। तीसरी चीज, क्योंकि हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगर हम नीट की ही बात करें, 22 लाख बच्चा पेपर दे रहा है और 1 लाख बच्चे भी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो जब इतना टफ कंपटीशन होता है तो फिर वहां पेरेंट्स का अघोषित प्रेशर बच्चों के ऊपर आ जाता है। तीसरी चीज हम कह रहे थे कि समाज का प्रेशर है, एक्चुअल में तीसरे व्यक्ति को काउंसलिंग की आवश्यकता श्वेता जी पड़ती क्यों है कि जब पेरेंट्स और बच्चे के बीच में विश्वास नहीं है।
0: बिल्कुल,
3: मेरे हिसाब से तो मेरे अपने बच्चों के लिए बेस्ट काउंसलर मैं ही हूँ या उनके पापा हैं, तीसरा व्यक्ति क्या उनको बता पाएगा। लेकिन पहले मैं खुद तो अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ श्वेता जी। हमने एजुकेशन को प्राइवेट कर दिया, हमने यूनिवर्सल एजुकेशन भी कर दिया, हमने एजुकेशन का इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। हम बहुत बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, हम नासा तक बैठे हुए हैं, लेकिन हम अपने एजुकेशन सिस्टम का ह्यूमनाइजेशन नहीं कर पाए।
0: जिस बहुत बड़ी बात आपने कही,
3: ह्यूमनाइजेशन करने को
0: बिल्कुल
3: हम ये समझा पाए अपने बच्चों को कि बेटा एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम एक हाई पैकेज की सैलरी लो।
0: बिल्कुल,
3: एजुकेशन का मतलब ये है कि आप जीवन को जीना कैसे ये सीख पाओ।
0: बिल्कुल, और अब मुझे ये लगता है
3: जो आपका पैशन है, बिल्कुल पैशन को जियोगे।
0: बिल्कुल, अब मुझे ये लगता है खास करके इस बारे में बिल्कुल बिल्कुल सीमा जी, बहुत सही बात आपने कही। लेकिन रुचिका आपके पास भी आऊंगी और आपसे ये सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि देखिए, आप खुद प्रधानमंत्री एग्जाम से पहले जब बच्चों से बात करते हैं तो उसमें भी बहुत खुलकर वो कहते हैं कि किस तरह से सिर्फ मार्क्स ले आने से आप सफल हो जाएंगे जीवन में, इस कॉन्सेप्ट को आपको छोड़ना होगा, इस पर हमें काम करने की जरूरत है। और ये सिर्फ वर्बली मुझे लगता है बोलने से नहीं चलेगा, हमारे समाज में वैसे एग्जाम्पल सेट करने होंगे कि अगर किसी के 90%+ नहीं भी मार्क्स आ रहे हैं फिर भी वो इंसान सफल है और खुश है अपने जीवन में, ऐसे एग्जाम्पल सेट करने होंगे। डॉक्टर निशा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर निशा, आपसे वही सवाल जानना चाहेंगे क्योंकि उसी बात को लेकर देखिए बहुत चर्चा हो रही है, पेरेंटिंग को लेकर, क्योंकि अक्सर हम बच्चों पर सारी, अगर वो फेल हुआ तो भी उसके ऊपर हम सारा ठीकरा फोड़ देते हैं, अगर वो बहुत अच्छे नंबर लेकर आता है तो फिर क्रेडिट लेने के लिए तो खैर पूरी दुनिया होती है कि हर कोई उसके साथ था और इसी वजह से वो कामयाब हो पाया। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता है, या फिर आप ये बताएं कि वो कौन से 2-3 टिप्स हैं जो कि पेरेंट्स को एग्जाम से पहले भी करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए और बच्चों के लिए भी अच्छे हों?
5: आई थिंक सो, एक चीज मुझे लग रहा है पेरेंट्स और बच्चों को डिस्कशन करनी चाहिए कि उनकी क्या सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है। अगर खुलकर सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे और बच्चे को भी बोलने का ये हक देना चाहिए कि वो किसमें कंफर्टेबल है या किसमें नहीं। और ऐसा नहीं होता सिर्फ कि पेरेंट्स कई बार अपनी एक्सपेक्टेशंस डालते हैं, बच्चों की भी अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम ये कर पाएंगे। कई बार बच्चे भी वो सब्जेक्ट को खुद ही अपनी मर्जी से चूज कर लेते हैं और बच्चे खुद ही उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों को ये समझाना कि अगर मार्क्स कम भी आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइफ स्किल्स में जो जैसे पहले भी कह रही थी, और बच्चों को अगर वो बच्चों को हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक है वो जरूरी है, वो बच्चों को समझाकर उसके बारे में बात कर सकते हैं जिसमें बच्चा अपने दोस्तों से बात करे। क्योंकि कई बार पेरेंट्स रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं कि आप एग्जाम्स के टाइम खेलने नहीं जा सकते, आप एग्जाम के टाइम अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते। कई बार वो बच्चों के लिए ब्रेक अपने आप में ही रिजुविनेशन का काम करता है और वो रिकनेक्ट कर पाते हैं। तो उस चीज से मत करिए। अगर बच्चा ब्रेक लेना चाह रहा है हाँ उसे आप लिमिट कर सकते हैं। अगर बच्चा आधा घंटा या एक घंटा खेलने जा रहा है, दोस्त से मिलने जा रहा है, तो उसे करने दीजिए। इसके अलावा जैसा कि अगर बच्चे को कंफर्टेबल है, वो सुबह पढ़ना चाहता है, रात को पढ़ना चाहता है, इसके पहले में आप डिस्कशन पहले ही कर लीजिए। किसी भी चीज पर उसको प्रेशराइज मत करिए। कई बार कई बच्चे ऐसा भी बोलते हैं एग्जाम का टाइम है, पेरेंट्स घर पर रहे। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को जानती हूँ जो एग्जाम्स का टाइम होता है और बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं।
0: बिल्कुल, पूरे टाइम घर पर रहेंगे,
5: पूरा टाइम घर पर रहेंगे।
0: नेट इंटरनेट इंटरनेट बंद हो जाता है, मोबाइल से आप दूर कर देते हैं उसी बच्चे को जिसको सालों भर आपने मोबाइल दे रखा है, लेकिन एग्जाम के टाइम में आप बंद कर देते हैं। ये तमाम तरह की चीजें होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे में पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल रुचिका आपसे, जो मैंने पूछा था उसका जवाब दे दे।
4: बिल्कुल, उसका एक बड़े दो शब्दों में आपको उसका मैं जवाब दूंगी। टॉपर्स ट्रैप वर्सेस द रियल वर्ल्ड। जो टॉपर्स का एक ट्रैप है कि 90 से ऊपर ही दुनिया है, वो बिल्कुल ही वर्सेस बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट है रियल वर्ल्ड के। रियल वर्ल्ड में वही एक नॉर्मल पास होने वाला बच्चा और टॉपर बच्चा, उसकी किस्मत, उसकी डेस्टिनी, उसकी मेहनत आगे जो दुनिया में वो कर रहा है और जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है और उस फील्ड में वो लग के अपना 100% दे रहा है, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। चाहे वो टॉपर हो सकता है, वो 99 भी लाया हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आगे की फील्ड में, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं करेगा, बट हो सकता है नहीं, वो 100% श्योर हूं। और आप ऐसे रियल वर्ल्ड में इतने एग्जाम्पल्स देखेंगे जो 50% 60% लाकर भी अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं और अपनी एक फील्ड और लाइन में एक्सेल कर रहे हैं हर
0: बिल्कुल
4: चीज़ में।
0: अगर इसी को अगर हम समअप करना चाहें तो यही कहेंगे कि देखिए, अंक महत्वपूर्ण हो सकते हैं लेकिन ये किसी बच्चे की क्षमता, संवेदनशीलता और उसके भविष्य को कोई मार्कशीट डिफाइन कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप अपने बच्चों पर विश्वास करें, निश्चित तौर पर उनका भविष्य बहुत ही खुशहाल और बहुत अच्छा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: क्या आपके खान पान से आपके विचारों का कोई संबंध है? क्या आपके खाने पीने से आपकी पूजा उपासना पर असर पड़ जाता है? क्या खान पान में बदलाव करके अपने क्रोध और अपने तनाव को बेहतर किया जा सकता है? क्या है आपके आहार और विचार का संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में.
1: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have. Did you know?

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों भक्ति और आस्था की बयार बह रही है। असल में चारधाम यात्रा के साथ साथ यहां पंच केदार की यात्रा भी जारी है। ऐसे में यहां हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है, साथ ही मंत्रों, भजनों और भगवान के जय घोषों से पूरा वातावरण गूंज रहा है।
3: देवभूमि का कण कण इन दिनों भक्ति रस में भीगा हुआ है। कहीं चार धाम यात्रा का उल्लास है तो कहीं महादेव के भक्तों का तांता लगा है। वैदिक मंत्रों की गूंज है, ढोल दमाऊ की थाप है, गीतों में भगवान का गुणगान है और महादेव का जय घोष। आस्था, परंपरा, भक्ति सब मानो एक सार है यहाँ। देवभूमि में चार धाम यात्रा के साथ साथ पंच केदार की यात्रा भी जारी है। पंच केदार में भगवान शिव के पांच अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। केदारनाथ में बैल रूपी शिव के कुबड़ की, तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में मस्तक की, मध्य महेश्वर में नाभि की और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। ऐसे में बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान से द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर के कपाट खुल गए। इसके साथ ही अब लोग भगवान मध्य महेश्वर के भी दर्शन कर सकेंगे। मान्यता है कि पांडवों द्वारा स्थापित ये मंदिर मोक्ष और आध्यात्मिक ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। वहीं चतुर्थ केदार रुद्रनाथ धाम में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। 18 मई को रुद्रनाथ धाम के कपाट खोले गए थे, तब से हर रोज यहां जनसैलाब उमड़ रहा है। अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए लोग दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं। आरती यहां का मुख्य आकर्षण है।
4: केदार रुद्रनाथ की यात्रा इस समय शुरू हो गई है। 18 मई को कपाट खोले थे और अब यहां पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लगभग 22 किलोमीटर जो पैदल ट्रैकिंग रूट होता है, इस पे भोले के भक्त लगातार ट्रैकिंग करके बाबा रुद्रनाथ के धाम में पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे रात्रि और दोपहर में होने वाली आरती के भी दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालु इस समय उत्तराखंड के चप्पे चप्पे में पंच केदारों सहित हर तरफ इस समय भीड़ दिखाई दे रही है।
3: ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर प्रकृति की गोद में बसा है, जहाँ शांति और दिव्यता दोनों का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल के साथ चमोली से कमल नैन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
2: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरे से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो अपना कैमरा उठाएं और एक व्लॉग बनाएं और हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप कर दें। हम उसे GNT पर दिखाएंगे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads. Thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears, or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.

0: छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। देखिए, मैदान जल रहे हैं तो पहाड़ पर बर्फ बरस रही है। मौसम का ये मिजाज इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि एक तरफ पारा 45 से 46 डिग्री तक जा पहुंचा है तो वहीं पहाड़ों की फिजा बर्फीली है। मौसम की ये दो तस्वीरें आगे हम आपको दिखाएंगे।
3: नमस्कार, मैं शगुफ्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। बात बचत के उस संकल्प की करेंगे जिसका असर सड़कों पर नजर आने वाला है। आज लखनऊ में जत साइकिल से कोर्ट पहुंचे तो हैदराबाद में कंपनी ने ईवी खरीदने पर कर्मचारियों को मदद का ऐलान कर दिया। इन दोनों खबरों की डिटेल आपको देंगे।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए, आज के कार्यक्रम में बात एंटरटेनमेंट भी होगी क्योंकि आगे बात हम करेंगे रणबीर कपूर की रामायण की, जिसके थिएट्रिकल राइट्स को लेकर अभी से महाभारत शुरू हो गई है। तो क्या है रामायण के राइट्स की स्टोरी, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अभी की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: चमोली के गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू। अरदास के बाद पंच प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे की रवानगी, कल से खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। केदारनाथ यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्ड किए ध्वस्त। एक महीने में बाबा के धाम पहुंचे 7.5 लाख यात्री, हर रोज 25,000 से 30,000 के बीच पहुंच रहे मठ। चमोली में आज भक्तों के लिए खुले लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के द्वार, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना, कपाट खुलने के बाद हुई ताजा बर्फबारी। रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी से बदला नजारा, सफेद बर्फ की चादर से ढकी दिखी वादियां, सैलानी जमकर उठा रहे लुत्फ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा। नैनीताल, मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों तक गर्मी का असर, दोपहर के वक्त सावधानी बरतने की सलाह। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एंटी ड्रग रैली के जरिए जागरूकता संदेश, बैनर और पैम्पलेट्स लेकर सड़क पर उतरे सिविल सोसाइटी के सदस्य, स्थानीय पुलिस के साथ सीआरपीएफ का भी मिला साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: भाई जहाँ देखिए, हाय हाय गर्मी, यही आवाज सुनाई दे रही है। अब सुबह की बात कर लीजिए, दोपहर की बात कर लीजिए, शाम की बात कर लीजिए, टेम्परेचर एक जैसा ही ऑलमोस्ट नजर आता है। सुबह तो सुबह लगती नहीं है, मॉर्निंग्स आर नो मोर मॉर्निंग्स,
2: सीधे मतलब हमारी आंख खुलती है और ऐसा लगता है दोपहर शुरू हो गया।
3: हाँ, दोपहर में उठ गए।
4: मुझे तो ये लग रहा है कि अभी हाल है तो नौ तपा लगने वाला है, तब क्या हाल होने वाला है। वो नौ
3: तपने
4: दिन तो
3: वाले हैं
4: तपने।
3: एक बंदे को बड़ी बेसब्री से इंतजार था गर्मी का, तो उसके लिए स्पेशली ये गर्मी आ गई है। हम कह रहे थे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहे, इनको डिस्टर्बेंस अच्छी नहीं लगी,
2: ये बार बार कह रहे थे कि लेकिन लग नहीं रहा कि गर्मी का मौसम,
4: लग नहीं रहा था।
3: अब भगवान जी ने आपको आशीर्वाद दे दिए है तो आप एंजॉय कीजिए इस सीजन को। देखिए, शुरुआत इसी बात से जो हम तीनों कर रहे हैं कि अजब गजब सा मौसम है, अजब गजब सी गर्मी है पहाड़ों पर। हालांकि आपको बर्फबारी की तस्वीरें नजर आएंगी, 46 डिग्री वाला गर्मी का टॉर्चर तो अभी मैदानों में हो रहा है। मनाली और कुल्लू रोहतांग में जबरदस्त बर्फबारी की तस्वीरें देख लीजिए। खासतौर से देश विदेश से घूमने आ रहे सैलानियों को मौसम का ये रंग बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन इसी दौरान मैदानों में गर्मी बेतहाशा है, हीट वेव चल रही है, बढ़ता पारा है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अभी ही कई शहरों में टेम्परेचर 45 डिग्री को पार कर चुका है तो अब सूरज और ज्यादा गर्मी बढ़ाएगा क्योंकि 3 दिन के बाद नौतपा शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद 9 दिन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अग्नि परीक्षा के होंगे। ऐसे में गर्मी से अपना बचाव आपको खुद ही करना है।
2: लेकिन ये जो शगुफ्ता हमने तस्वीरें दिखाई, हर जगह लगभग यही हाल है। ज्यादातर जो मैदानी इलाके हैं इस वक्त 46 से 47 डिग्री तापमान जा रहा है, बुरा हाल है।
4: आप ये खुद सोचिए ना कि किसने सोचा था कि पहले कुछ लोग थे जो कह रहे थे गर्मी नहीं आ रही, गर्मी नहीं आ रही
2: कुछ लोग नहीं आप
3: कुछ कह के हंस पड़ी है
4: और गर्मी नहीं आ रही नहीं जनवरी जैसा लग रहा है, फरवरी जैसा लग रहा है, दिसंबर जैसा लग रहा है, फाइनली अब ऐसा लग रहा है सूर्य देवता कह रहे हैं लो 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, अब बताओ।
3: मैंने आपको बोला ऊपर वाले आशीर्वाद दिया है, आपने मन्नत मांगी थी, आपकी मन्नत पूरी कर दी गई है। लेकिन देखिए मैदानों में जो हाल है वो तो किसी टॉर्चर से कम नहीं, और 25 तारीख की हम बात कर रहे हैं कि नौतपा की शुरुआत हो जाएगी।
2: बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली में पारा जो है वो 44 के पार जा चुका है, वहीं पर कुल्लू में मौसम बदल गया है, वहां पर देखिए वहां पर थोड़ी बारिश भी हुई है, स्नोफॉल की भी खबरें हैं, मनाली में भी बर्फ जो है वो यहाँ पर पड़े हैं, इसलिए मौसम बढ़िया हो गया।
4: बिल्कुल, देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मैदानों पर मौसम बेहद गर्म हो रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर ये जो गर्मी है वो नजर नहीं आ रही है, बल्कि वहां पर तो बर्फबारी का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। ऊंचे क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी इसकी ताजा मिसाल है, जिसे निहारने के लिए वो लोग ज्यादातर पहाड़ों का रुख कर रहे हैं जो मैदानों की बेतहाशा गर्मी से परेशान हो गए हैं और ठंडे मौसम में सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं। वो लोग लगातार पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि जहां हिमाचल के कुल्लू, मनाली और द्रास में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं देश के ज्यादातर मैदानी इलाकों में पारा बेतहाशा बढ़ रहा है।
2: तो मैदानी इलाकों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर तापमान बेतहाशा लगातार जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, और फिलहाल अभी राहत मिलने की उम्मीद थोड़ी कम है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल के कुल्लू में जिस तरह से पिछले दिनों गर्मी बढ़ रही थी, ऐसे में कुदरत की यहां भी मेहरबानी हुई है, बारिश ने गर्मी से परेशान लोगों को यहां पर काफी राहत पहुंचाई है। यहां जैसे ही बारिश शुरू हुई लोग छाता लेकर घरों से बाहर सड़कों पर सुकून महसूस करने के लिए निकल पड़े। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग बाहर निकले हुए हैं मौसम का लुत्फ उठाने के लिए। कुल्लू में हुई इस बारिश ने गर्मी का असर तो कम किया ही है, साथ ही सबसे अच्छी जो खबर है फसल को काफी फायदा यहां होने की बात कही जा रही है, तो ये काफी अच्छी खबर है।
3: अब देखिए देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के टॉर्चर के बीच में हिमाचल के रोहतांग पास समेत कई और इलाकों में आज सुबह ताजा बर्फबारी हुई, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। मौसम का मिजाज यहां पूरी तरह से बदल गया है। ताजा बर्फबारी के बाद रोहतांग की ओर पहुंचे हुए पर्यटक बर्फबारी को एंजॉय करते दिखे, तो जाहिर सी बात है कि जहां मैदानों में लोग चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ रोहतांग की ठंडी फिजाएं और गिरती बर्फ यहां पहुंचे लोगों को बहुत सुकून दे रही है।
6: कई राज्यों में गर्मी ने लोगों का जीना मोहाल करके रखा है, वहीं कई राज्यों में तापमान जो है 45 डिग्री के पार जा चुका है। तो वहीं कुल्लू मनाली की बात करें तो यहां तापमान मई महीने में बेहद खुशनुमा बना हुआ है। आज सुबह से रोहतांग दर्रे सहित जो आसपास के इलाके हैं वहां बर्फबारी हुई है, जबकि कुल्लू मनाली के अधिकांश इलाकों में अब बारिश का दौर जारी रहा, जिसके बाद यहां आए पर्यटक वो अब काफी खुश है क्योंकि इस तरह का मौसम के लिए वो यहाँ पे पहुंचे थे। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय ये कुल्लू का इलाका है, तो लोग जो है पर्यटक जो है वो खासकर जो नदी किनारे जो इस पूरे मौसम का जो लुत्फ उठा रहे हैं। पहाड़ों की बात करूं तो पहाड़ों पे अभी भी हल्की धुंध और हल्के अभी भी बादल जो है पूरे इलाके में छाए हैं, जिसके बाद जो है वो मौसम काफी खुशनुमा, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह दिखाई दे रहा है। मौसम में इस बदलाव के चलते तापमान में गिरावट काफी दर्ज की गई है। कुल्लू मनाली के तापमान की बात करें तो 20 से 25 डिग्री तापमान फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। ठंडी हवाओं ने बेशक जो है पूरे इलाके का जो मौसम है वो काफी सुहाना बना दिया है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी इस भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। ऐसे में जहां देश जो है वो भीषण गर्मी की मार सहन कर रहा है, तो वहीं यहां आने वाले लोग जो हैं, जो पर्यटक हैं, वो खुश नजर आ रहे हैं।
4: देखिए गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, और इसे देखकर मैं तो बस यही कहूंगी कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी आने वाली है 25 मई से, क्योंकि बेतहाशा गर्मी का एक ऐसा स्तर जिसे हर साल आप सुनते ही होंगे किसी ना किसी से, और ये शब्द है नौतपा, जिसके सीधे मायने हैं ताप के नौ दिन। तो इस साल नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा, जो एक मौसमी घटनाक्रम ही है।
7: लेकिन आपको बता दें, इसी नौतपा का हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में भी काफी महत्व माना गया है। तो क्या मान्यता है नौतपा के शुरू होने की, इसका 9 दिनों तक धरती पर कैसा प्रभाव पड़ता है, और साथ ही नौतपा के दौरान आप अपने शरीर को कैसे संतुलित रख सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में।

0: अगर अभी से 45 डिग्री तापमान से आप परेशान हैं तो ठहर जाइए, क्योंकि अभी तो धरती पर ताप और तप का सबसे कठिन अध्याय शुरू होने वाला है। सूर्य अभी अपने और भी प्रचंड रूप में आने वाले हैं और 3 दिन बाद 9 दिन सिर्फ प्रचंड गर्मी के ही नहीं बल्कि जीवन की अग्नि परीक्षा के होने वाले हैं। अभी ही कई शहरों में तो तापमान 45 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो रही है, मतलब गर्मी का वो कालखंड आ रहा है जब आसमान से आग बरसती है, हवा भी तपने लगती है और दोपहर का सूरज मानो पृथ्वी को ही अग्नि में बैठा देता है।
1: गर्मी का जो जेठ महीना चल रहा है, इस जेठ महीने में डबलिंग हो गया है। पुरुषोत्तम मास का प्रवेश जेठ महीने में होने के कारण जेठों का डबल महीना चालू हो गया है, जिसमें जो गर्मी चलेगी वो बहुत ही पीड़ादायक समझ में आएगी। मई जून का महीना एक तो गर्मी के लिए प्रसिद्ध है ही, चूंकि देखा जाए कि जेठ डबल होने से गर्मी भी डबल हो गई। दस तपा देखिए, अब 20 तपा के रूप में तप रहा है। जहां 40 डिग्री आम सुबह 8 बजे से यह गर्मी प्राप्त हो जाती है, चलने में कितना तकलीफ हम मनुष्यों को हो रहा है, तो पक्षियों को कैसे होगा।
0: मौसम कैसा भी हो, शरीर को साधना सनातन परंपरा है, लिहाजा नौतपा सिर्फ सबसे गर्म 9 दिन नहीं है, ये संयम का पर्व है, सेवा का अवसर है और शरीर प्रकृति के संतुलन को समझने का समय है। मान्यता है कि जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब चंद्रमा की शीतलता भी सूर्य के ताप में विलीन होने लगती है, इसलिए इन दिनों धरती का तापमान अपने चरम पर पहुँच जाता है। शायद यही वजह है कि हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इस महातप को सहन करने के कुछ नियम तय कर दिए थे। काशी हो, प्रयाग हो या देश का कोई भी गांव कस्बा, नौतपा आते ही भारत का लोक जीवन बदलने लगता है। आज भी कई घरों की छतों पर पक्षियों के लिए पानी रखा जाता है, तो कहीं राहगीरों के लिए प्याऊ सज जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी से युद्ध खुद के लिए नहीं लड़ा जाता बल्कि सूर्य के ताप से सबको बचाने की भी जिम्मेदारी है।
2: संगम नगरी प्रयागराज में भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा 46 के पार पहुंच गया है, लेकिन वहीं नगर निगम की पहल ने लोगों को राहत देने की कोशिश की है और कई चौराहों पर इस तरह के घड़े रखे हैं और यहां पर लोग ठंडा पानी पी रहे हैं और यहां पर जो भीषण गर्मी पड़ रही है उनको इससे राहत मिल रही है। इस घड़ों में नल भी लगा है और इस मग्गे से पानी निकाल करके भीषण गर्मी से लोग बच रहे हैं और अपने आप को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: नौतपा हमारे लिए केवल ताप के 9 दिन नहीं है बल्कि ये दिन सूर्य उपासना के लिए भी श्रेष्ठ माने गए हैं। इन 9 दिनों में सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करना सिर्फ पूजा नहीं बल्कि ऊर्जा और अनुशासन का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति नौतपा में जल का सम्मान करता है वो जीवन का सम्मान करता है, इसलिए इन दिनों पानी की एक एक बूंद को बचाने की सीख दी जाती है। सबसे तपते दिनों में प्यासे को पानी पिलाना, सत्तू और शरबत बांटना या किसी राहगीर के लिए घड़ा रख देना महापुण्य कहा गया है। आयुर्वेद भी कहता है कि नौतपा की दोपहर शरीर के संतुलन को बिगाड़ सकती है, इसलिए पुराने जमाने की तरह सिर ढककर निकलना, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनना और मिट्टी के घड़े का पानी पीना सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान भी है। गर्मी के सबसे कठिन 9 दिनों में तामसिक भोजन से दूरी बनाने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि माना गया है कि ज्यादा मिर्च मसाला शरीर की अग्नि को और भड़का देता है। और शायद नौतपा का सबसे सुंदर संदेश भी यही है कि जब प्रकृति तप रही हो तब इंसान को खुद में करुणा बढ़ानी चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखना चाहिए और अपने भीतर भी शीतलता बनाए रखनी चाहिए। ऋतुओं का विज्ञान ही हमारा सनातन ज्ञान है, क्योंकि भारतीय परंपरा कहती है कि सूर्य का ताप चाहे जितना बढ़ जाए अगर मन में सेवा हो तो जीवन की तपिश भी साधना बन जाती है। मई जून की ये तपन भले ही हमारे शरीर को कष्ट दे रही है लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी एक साधना छिपी है, साधना सूर्य के ताप में तप कर शीतल होने की। अयोध्या से मयंक शुक्ला और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कुछ दिन पहले थोड़ी सी बातें कही हैं, कुछ अपील की हैं, जिसमें एक तो था कि देश में घूमिए फिरिए, बाहर मत जाइए, एक और था ईंधन बचत को लेकर। उन्होंने कहा है कि अपने अपने एफर्ट्स अगर आप कर सकते हैं तो आप करते रहिए। मतलब कार पूलिंग का हमने उस दिन ऑप्शन के बारे में बात की थी, तो आपको क्या लगता है?
4: मुझे लगता है, देखिए अभी फ्यूल को लेकर के जो संकट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात अगर हम करें, हम जानते हैं कि वहां पर क्या अभी सिचुएशन बने हुए हैं, उसे देखते हुए भी बहुत जरूरी है जो प्रधानमंत्री ने कहा, हम वो सारी चीजें कर सकते हैं, हम कार पूल कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अब गवर्नमेंट भी काफी आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं अगर आप खरीदने जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल तो। कई कई अगर हर गवर्नमेंट, ये भी आपको शगुफ्ता बता दूं कि कई ऐसे गवर्नमेंट है जो स्टेट वाइज अपने हिसाब से डिस्काउंट दे रही है, जैसे कि यूपी की बात करें तो कई गाड़ियों में 1,00,000 सीधे डिस्काउंट है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदती है तो ये जाते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है।
3: ठीक है, चलिए देश में देखिए ईंधन बचत को लेकर देश में नई नई पहल हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से कम ईंधन खर्च करने, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और कार पूलिंग बढ़ाने की अपील की है। तभी से इसका असर जमीन पर भी नजर आ रहा है। जहां लखनऊ में साइकिल से कोर्ट पहुंचते जज नजर आए, तो हैदराबाद की प्राइवेट फर्म ने अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आर्थिक प्रोत्साहन देने का बड़ा फैसला लिया। वहीं एक अधिकारी भी बरसों से साइकिल से ही अपने दफ्तर जाते आते हैं। बेशक ये तीनों तस्वीरें ईंधन बचत की सराहनीय पहल की तरफ इशारा कर रही हैं, जिन्हें तफसील से आपको आगे हम दिखाएंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कैसे देश बचत के रास्ते पर चल पड़ा है, अब आपको इसकी पहली तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, लखनऊ में आज अदालत जाने का नजारा कुछ अलग ही था। न लाल बत्ती, न चमचमाती गाड़ियां, बल्कि सड़कों पर नजर आए जज साहब साइकिल चलाते हुए। देखिए, पेट्रोल डीजल की बढ़ती खपत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए राजधानी लखनऊ में करीब 70 जज साइकिल से कोर्ट पहुंचे। ये पहल ना सिर्फ अनोखी रही बल्कि लोगों के लिए बड़ा संदेश भी बन गई है।
4: बिल्कुल, आपको हम बता दें कि जिला जज के नेतृत्व में सुबह सभी जज इकट्ठा हुए और फिर साइकिलों का ये कारवां कोर्ट की ओर निकल पड़ा। इस अभियान की दिलचस्प बात यह रही कि जिन्हें साइकिल चलाना नहीं आता था वो ई रिक्शा से अदालत पहुंचे, यानी कि संदेश साफ था, जितना हो सके ईंधन बचाएं।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने के आह्वान पर आज लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तमाम जजेस साइकिल पर जा रहे हैं और देखिए, जो तमाम डिस्ट्रिक्ट में तैनात अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, चाहे वो महिला अधिकारी हों चाहे वो पुरुष अधिकारी हों, तमाम जजेस हैं, वो साइकिल से जाएंगे। उद्देश्य प्रधानमंत्री के आह्वान पर सेव फ्यूल, ईंधन बचाने के लिए। ऐसे मौसम में मतलब साइकिल, आप लोग क्या संदेश दे रहे हैं?
6: भाई, जब आम जनता ये काम कर सकती है, वो लोग भी साइकिल से आते जाते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं और देश के लिए अगर एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम लोग दे सकते हैं तो जरूर देंगे, और वही हम लोग आज कर रहे हैं। थैंक यू।
5: ईंधन बचाने के लिए प्रधानमंत्री का जो आह्वान था उसी के तहत तमाम जो जजेज हैं वो साइकिल से चल रहे। हमारे साथ जनन जी हैं। सर, साइकिल चलाएंगे, आज से सिंबॉलिक है या इसको हर सैटरडे चलाने वाले?
7: हफ्ते में हर वीक में एक दिन निश्चित रूप से जाना सभी को, हर सैटरडे को।
5: क्या संदेश दे रहे हैं?
7: संदेश ये है कि वैश्विक संकट को देखते हुए ईंधन की बचत की जाए और पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक कदम उठाया जाए।
5: पर्यावरण सुरक्षा एक बड़ा
8: ईंधन बचाने की मुहिम है और ये हम लोग प्रयास करेंगे कि वीक में कम से कम एक दिन जाया करें।
5: तो सप्ताह में एक दिन ये तमाम जजेज ऐसे ही साइकिल से जाएंगे, अपने अपने घरों से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे। न्यायिक अधिकारी, करीब 74 ऐसे न्यायिक अधिकारी हैं जो इसी तरीके से साइकिल से अब अपने कोर्ट जाएंगे, एक मैसेज देंगे कि जब संकट हो तो पूरा देश कैसे खड़ा होना चाहिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार।
3: चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल्ली के ईपीएफओ में रीजनल कमिश्नर रिजवानुद्दीन आज उन लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं जो अक्सर उम्र, व्यस्तता या नौकरी का बहाना बनाकर अपने सपनों को किनारे रख देते हैं। रिजवान सिर्फ सरकारी अधिकारी नहीं बल्कि फिटनेस और पर्यावरण के लिए समर्पित एक जुनूनी साइक्लिस्ट भी हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में लोगों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने की अपील की थी। ऐसे में रिजवान की ये पहल न सिर्फ फिटनेस का संदेश देती है बल्कि लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित भी करती है।

0: कि आपको बहुत सारे मंत्री दिखाई पड़ रहे होंगे, सरकारी अफसर दिखाई पड़ रहे होंगे जो साइकिल से अपने मंत्रालय जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेट्रोल बचाइए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सरकारी अफसर से मिलवाने जा रहे हैं जो पिछले लगभग 15 सालों से साइकिल से ही ऑफिस जाता है, ऑफिस से अपने घर साइकिल से ही आता है। तो मेरे साथ रिजवान उद्दीन सर हैं और पीएफ कमिश्नर रहे हैं, अभी भी कई महत्वपूर्ण पदों पर हैं। सर क्या ओहदा है आपको बता दीजिए एक बार।
1: मैं यहाँ पे रीजनल पीएफ कमिश्नर हूँ, ईपीएफओ की नेशनल एकेडमी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी ऑफ सोशल सिक्योरिटी पीडूनास में, यहाँ पर मैं चीफ लर्निंग ऑफिसर भी हूँ। तो मेरा जॉनर रहा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इससे पहले मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों जगह का काम देख चुका हूँ लगभग 4.25 साल।
0: लेकिन ये साइकिल कब थामी आपने, हैंडल कब थामा?
1: ये साइकिल मैं सेकेंड स्पेल जो साइकिलिंग का है वो 2012 से मैं कर रहा हूँ साइकिलिंग। पहले मैं द्वारका से भीकाजी कामा प्लेस तक आता था, फिर मैंने ग्वालियर में साइकिलिंग की, उसके बाद जम्मू में भी साइकिलिंग की और अभी फिर मैं दिल्ली में भी कर रहा हूँ।
0: तो साइकिल से ही चलते हैं।
1: देखिए हेल्थ और इन्वायरमेंट दो बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं लाइफ के, तो ये शौक तो रहा ही होगा लेकिन मेन चीज़ है कि आपने हेल्थ और पर्यावरण, मैं ऐसी जगह में पैदा हुआ जहाँ एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है आज भी, पहाड़ों में पैदा हुआ मसूरी हिल्स के पास, झड़ी पानी एक जगह है, तो जब ग्वालियर की गर्मी देखी तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है, 48 डिग्री तक भी हो जाता है, तो लगा कि भाई ये व्हीकलर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारक है, इससे बचना है तो आपको साइकिलिंग प्रमोट करना होगा। और इसीलिए हमने बहुत वहाँ पे इवेंट्स भी किए ग्वालियर और उसके आसपास के जितने भी ज़िले हैं, वहाँ पे सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर, बीएसएफ, एयरफोर्स, इन सब के साथ मिलकर, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलकर रैलीज भी हम लोगों ने की और उस एरिया में काफ़ी साइकिलिस्ट बढ़े। तो उसमें एक स्लोगन था कि ग्वालियर कम दूरियों का शहर, स्वास्थ्यवर्धक भी हो सकता है सफ़र।
0: अभी सर कहाँ दफ्तर है आपका, ऑफिस, और कहाँ आपका घर है?
1: मैं किदवई नगर ईस्ट में रहता हूँ, ये जो सरकारी क्वार्टर्स हैं हमारे, और जनकपुरी में जो इंस्टीट्यूशनल एरिया है वहाँ हमारी नेशनल एकेडमी है पीडूनास, मैं वहाँ तक इसी एरिया से जाता हूँ साइकिल से। जी
0: कितनी दूरी है लगभग एक तरफ की?
1: एक तरफ लगभग 17 से 17.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है क्योंकि मैं थोड़ा घूम कर जाता हूँ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आना जाना 35 किलोमीटर।
2: वैसे ये साइकिल वाले स्टोरी से शगुफ्ता काफी इंस्पायर्ड है।
3: मैं बोल रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ थोड़ा सा नौतपा चला जाए उसके बाद हम स्विच करने की सोच सकते हैं। इट्स अ गुड एक्सरसाइज।
4: एग्जैक्टली। और हमारा घर जो है वो पास भी है
3: तो मैं साथ में पूल के साइकिल पूल कर लिया करेंगे।
4: अरे बाप रे। चलिए जब ऐसा होगा तो फिर एक स्टोरी बनेगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल एक बहुत ही अच्छी खबर है आपको बता दें, प्रधानमंत्री की अपील के बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर कोई अपनी भागीदारी निभा रहा है, एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने कर्मचारी को 10,000 रुपए मदद के तौर पर दी है और ये कहा है कि अगर आप ईवी खरीदेंगे तो आपको हम 10,000 रुपए देंगे। इस पहल के बारे में
3: वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। जो बात आपने पहले कही थी ना कि ईवी पे स्विच कर रहे हैं, तो दिस इज पार्ट ऑफ द सेम स्टोरी कि प्रधानमंत्री की अपील का इस हद तक असर होगा ये तो नहीं सोचा था, लेकिन
5: इसमें एक और चीज है कि जो लोग कम्यूट करते हैं इंटरसिटी यानी ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, उनके लिए बेस्ट है क्योंकि चार्जिंग स्टेशन एक बड़ी चुनौती है अगर आप बाहर जाते हैं। लेकिन अगर आपका ज्यादातर कम्यूट जो है वो घर से ऑफिस का रहता है तो ईवी पर स्विच करना मौजूदा हालातों के बीच मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन है।
4: बिल्कुल। तो चलिए अब आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं जिसमें बचत का सशक्त संकल्प छिपा हुआ है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच हैदराबाद की एक कंपनी ने अनोखी पहल की है और कंपनी ने कहा है कि उनके जो कर्मचारी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे उन्हें कंपनी की तरफ से मिलेगा खास इनाम, इनाम कहिए या सब्सिडी। कंपनी का कहना है कि चार पहिए यानी कि ईवी लेने पर वो कर्मचारियों को 10,000 रुपए मदद करेगी और टू व्हीलर खरीदने पर 5,000।
6: पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करने, कार पूलिंग करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करने का पालन करते हुए एक प्राइवेट कंपनी, हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी ने अपने ही एम्प्लॉयज को कहा है कि ईवी व्हीकल्स खरीदिए और कैश प्राइजेस या फिर चेक्स हमारी तरफ से ले जाइए। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ फनीराज जी जुड़े हैं जो सीईओ है कंपनी के। सर बताइए इस इनिशिएटिव की वजह क्या है, उद्देश्य क्या है?
7: क्या अभी देखिए प्रधानमंत्री 10 दिन पहले इधर आ चुके हैं हैदराबाद में और सबको बुलावा इधर से हैदराबाद से दिया है, ऐसा नहीं कि वो किधर से दिया है, हैदराबाद से आके इधर आके दिया है कि लोगों को ट्रेन यूज करना है, मेट्रो ट्रेन यूज करना है या कारपूलिंग करना है या ईवी में शिफ्ट होना है, जो भी पॉसिबल है वो करना है, क्योंकि जियो पोलिटिकल सीनैरियोज देखो आप या अभी जो भी चल रहा है पूरा दुनिया में वो सब अंदाज करते हुए अंदाज में रखते हुए और जो फॉरेन रिजर्व्स है कंट्री का उसको सेव करना है, ये सब मंशा मन में रखे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कॉल दिया है नेशन के लिए उसके लिए हैदराबाद से मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं, मैं इंकरेज करना चाहता हूं लोगों को कि प्लीज डू दिस, क्योंकि ये एक एक एक एक बंदा जो भी करता है वो पूरा देश के लिए आगे जाके वो बहुत बड़ा बन जाता है। हमने सोचा कि हम क्या कर सकते इसमें, मैं तो शिफ्ट कर सकता हूं, मैं तो मेरा पेट्रोल कार घर में रख के मेरा बीवी का इलेक्ट्रिक कार से ऑफिस आ रहा हूं, वो तो मैं कर सकता हूं, बट आगे और मैं क्या कर सकता हूं एट द पोजिशन ऑफ सीईओ, आई एम सीईओ ऑफ द कंपनी, आई एम ओनर ऑफ द कंपनी, मैं और क्या कर सकता हूं, ऐसा सोचे तो मुझे लगा कि मेरे एम्प्लॉयज को मैं मोटिवेट करूंगा, उन लोगों को जो भी अभी पेट्रोल की टू व्हीलर यूज कर रहा है उसको बोलूंगा कि यू गो एंड बाय ईवी, आप ईवी यूज करो, ईवी परचेज करो, आई विल गिव यू सम इंसेंटिव। सो ईवी का जनरली 30-40,000 से लेके 1,00,000 तक ईवी का प्राइस है, अगर समझो कि आप एक पेट्रोल उसका व्हीकल है वो बेचे तो उसको कुछ 20-30,000 आ रहा है, उसके ऊपर मैं एक 5,000 रुपीज दे रहा हूँ, मगर हमारा कंपनी एक 5,000 रुपीज दे रहा है, तो उसको ऐड करके यू गो एंड बाई एक ईवी स्कूटी आर समथिंग टू व्हीलर, दैट विल हेल्प यू रिड्यूस, नॉट ओनली दिस विल रिड्यूस द क्लाइमेट थिंग, नॉट ओनली दिस विल रिड्यूस द यू नो फॉरेक्स का, और प्रधानमंत्री को रेस्पेक्ट किया, ये सब एक तरफ से है, और दूसरी तरफ से एम्प्लॉय का भी मंथली खर्चा कम हो जाता है, जो पेट्रोल में वो स्पेंड कर रहा है ऑफिस आने में वो कम होता है, तो इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव।
6: बातचीत करने के लिए तो लगातार हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से इस तरीके के इनिशिएटिव के लिए सब्सिडी दी जाती है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज भी इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश का पालन करेंगे तो ईंधन की जो ईंधन का इस्तेमाल है, पेट्रोल डीजल का जो इस्तेमाल है वो कम हो सकता है और आगे बचत में हर कंपनी का अपना अपना योगदान हो सकता है, ऐसा इस कंपनी का मानना है। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।
5: जैसे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विदेश यात्रा के बजाय अपने ही देश को एक्सप्लोर करने की अपील की, तो जीएनटी भी आप सभी से अपील कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें और वीडियोस बनाकर के हमें भेजें ताकि हम आपकी उन वीडियोस को दिखाएं। हमारे दर्शक भी बड़े ही उत्साह के साथ अपनी जगहों के खूबसूरत वीडियोस लगातार हमें भेज रहे हैं, तो चलिए आज आपको टिहरी के उन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में वीलॉगर बने एक दर्शक की जुबानी सुनाते हैं कि क्यों आपको उत्तराखंड के इस बेहद मनमोहक और खूबसूरत शहर को एक्सप्लोर करना चाहिए।

0: गुड न्यूज टुडे के लिए आपका टीरी गढ़वाल से स्वागत करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे टीरी गढ़वाल के सुदूर क्षेत्र गंसाली क्षेत्र में चूल्हागढ़ बासर में मौजूद हूँ। अभी मैं यहाँ चूल्हागढ़ धाम में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर, यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे लगातार जो है कार्यक्रम होते रहते हैं, सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं और इस क्षेत्र से हमारे पूरे क्षेत्र का नज़ारा दिखता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि घूमने के लिए जो है अपने अपने ही देश में जो अलग अलग रमणीक स्थानों पर जाए, तो हमारे उत्तराखंड में टिहरी में भी बहुत ही सुंदर स्थान है। इधर हमारा इधर टिहरी गढ़वाल में ही पवाली कांठा और कई प्रकार के ट्रैकिंग है, मासर ताल है, इधर नचिकेता ताल है और टिहरी झील है और कई अन्य प्रकार के यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं और धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे बुढ़ा केदार हो गया और सुरकंडा देवी हो गया, इधर ये चूल्हागढ़ हो गया।
1: बहुत नाम सुना है ये जो राजराजेश्वरी देवी है और ये जो भूमि है, अनेक ऋषि मुनियों ने यहाँ पे तप किया और ये सुंदर भूमि, हमने जो है कई हमारे जानकार रहते हैं उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो है भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, इसलिए मंदिर को देखने के लिए आए। जो भगवान का आस्था रखते हैं उनके लिए ये दिव्य स्थान है, उनको जरूर जो है यहाँ पे आना चाहिए। जो आनंद की अनुभूति आज हमें यहाँ इस स्थान पर हुई है, वो आनंद की अनुभूति आपको कहीं भी नहीं हुई है। ये सिद्ध क्षेत्र है और जरूर आप आए और माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करें।
0: यहाँ पे पूरे देश के पर्यटक यहाँ पे मैं उनका स्वागत करता हूँ कि वो यहाँ पे आए और इन रमणीक स्थानों का जो है भ्रमण करें अपने परिवार के साथ।
2: इस वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरों से बचें, अपने ही देश में घूमें फिरें, तो आप भी संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो कैमरा उठाइए, बनाइए व्लॉग और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर दिखाएंगे।
3: हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रामायण के राइट्स के लिए अभी से क्यों छिड़ा महायुद्ध।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: इसके बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: चमोली के गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू। अरदास के बाद पंच प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे की रवानगी, कल से खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। केदारनाथ यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्ड किए ध्वस्त। एक महीने में बाबा के धाम पहुंचे 7.5 लाख यात्री, हर रोज 25 से 30 हजार के बीच पहुंच रहे भक्त। चमोली में आज भक्तों के लिए खुले लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के द्वार, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना, कपाट खुलने के बाद हुई ताजा बर्फबारी। रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी से बदला नजारा, सफेद बर्फ की चादर से ढकी दिखी वादियां, सैलानी जमकर उठा रहे लुत्फ।
6: चलिए अब चर्चा फिल्मों की हो जाए। देखिए बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है नीतीश तिवारी की रामायण। फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई लेकिन कमाई के मामले में पहले ही बड़े बड़े रिकॉर्ड के लिए खतरा बनने लगी है। खबर तो यहां तक है कि मेकर्स ने सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए पूरे 450 करोड़ रुपए की डिमांड रख दी है, यानी कि रिलीज से पहले ही फिल्म का भाव आसमान छू रहा है।
7: देखिए 4,000 करोड़ रुपए के बजट में ये फिल्म बनी है, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। और थिएट्रिकल राइट्स को लेकर जो अमाउंट कोट किया जा रहा है, कहा तो ये जा रहा है कि ये रकम शाहरुख खान की किंग से भी कहीं ज्यादा है। इतना ही नहीं, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की नजर अब डिजिटल राइट्स की ऐसी डील पर है जो सीधे 1,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय सिनेमा में ये अपने आप में ऐतिहासिक सौदा माना जाएगा।
8: रिलीज से पहले ही इतिहास रचने जा रही है रामायण। बड़े पर्दे पर किंग का रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी तैयारी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज से पहले ही सिनेमा की दुनिया में हलचल मचाने का दम रखती हैं। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण भी कुछ ऐसा ही धमाल मचाने की तैयारी में है। नीतीश तिवारी के निर्देशन में बन रही मेगा बजट फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमक दिखाने लगी है। सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि फिल्म के मेकर्स को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। शायद यही वजह है कि मेकर्स ने फिल्म के सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए 450 करोड़ की भारी भरकम मांग रखी है। अगर राइट्स के लिए 450 करोड़ की डील हो जाती है तो ये शाहरुख खान की किंग के मौजूदा रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा होगी। किंग के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की डील करीब 250 करोड़ में हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो रामायण के थिएट्रिकल राइट्स की डील पर जल्द मुहर भी लग सकती है। अगर ये डील 300 से 400 करोड़ के बीच फाइनल होती है तो भी ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड होगा। कामयाबी की उम्मीदों के आंकड़े सिर्फ थिएट्रिकल राइट्स की डील में ही नहीं दिख रही। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा डिजिटल राइट्स के लिए 1,000 करोड़ की महा डील पर भी नजरें टिकाए हुए हैं। नमित इस डील के लिए इंडस्ट्री के कई दिग्गजों से बातचीत करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स की तरफ से फिल्म के दोनों पार्ट्स की कंबाइंड स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए मेकर्स को 700 करोड़ का ऑफर मिला था, लेकिन नमित मल्होत्रा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और वो डिजिटल राइट्स के लिए 1,000 करोड़ की डील ही चाहते हैं। जाहिर है अगर ये दोनों डील पक्की हो जाती है तो ये फिल्म पर्दे पर आने से पहले ही टेबल प्रॉफिट का नया इतिहास रच देगी। रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायण एक भव्य पौराणिक फिल्म है। इस फिल्म में रणबीर भगवान राम की भूमिका में हैं और साउथ के सुपरस्टार यश रावण का किरदार निभा रहे हैं। माता सीता का किरदार साई पल्लवी ने निभाया है। पर्दे पर भगवान हनुमान के रूप में सनी देओल नजर आएंगे। धुरंधर की तरह ही फिल्म भी दो पार्ट्स में आने वाली है। रिलीज से काफी पहले से ही इस फिल्म का सोशल मीडिया पर बज बना हुआ है। फिल्म का पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा। ये फिल्म करीब 4000 करोड़ के भारी भरकम बजट में तैयार हो रही है। फिल्म के मेकर्स को पूरी उम्मीद है कि रिलीज के बाद ये फिल्म हिंदी सिनेमा में कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए बात अक्षय कुमार की दरिया दिली की करते हैं। एक्टर अक्षय कुमार अपनी एक्टिंग के अलावा समाज सेवा के मामलों को लेकर भी चर्चा में रहते आए हैं।
6: अब जम्मू कश्मीर के सुदूर इलाके के बच्चे उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि अक्षय की एक खास पहल ने उनके स्कूल की तस्वीर बदल दी है। क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
1: आम लोगों के साथ नाचते गाते मस्ती करते बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार की तस्वीरें भले ही पुरानी हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी हुई एक शानदार कहानी है। ये तस्वीरें 2021 की हैं, जब अक्षय कुमार बीएसएफ के जवानों के न्योते पर जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में स्थित तुलैल इलाके में आए थे। अक्षय कुमार का ये सफर इस इलाके के लोगों के लिए सिर्फ इस मायने में ही यादगार नहीं है कि बॉलीवुड के इतने बड़े सितारे से उन्हें मिलने जुलने का मौका मिला, बल्कि अक्षय ने अपनी कश्मीर यात्रा के जरिए इस इलाके में बदलाव की अनूठी इबारत भी लिख दी।
9: 5 साल पहले 2021 में जब पूरा दुनिया कोविड की महामारी झेल रहा था, तब देश के बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार सीमावर्ती गांव तुलेल पहुंचे। तुलेल कश्मीर में सबसे दूर दराज इलाका है जो बांडीपोरा जिले में आता है, नियंत्रण रेखा से सटा हुआ है। लेकिन तभी तुलेल में जाकर अक्षय कुमार ने वहां पर लोगों से मिलकर, खासतौर से बच्चों से मिलकर, उन्हें आश्वासन दिया था कि वो यहां पर एक ऐसा स्कूल बनवाएंगे जो किसी भी स्कूल की हर तरह की सुविधा से बेहतर हो।
1: तुलैल के नीरू गांव में सरकारी मिडिल स्कूल की इमारत के सामने रखा ये बैनर अक्षय कुमार के उसी वादे की दास्तां बयां कर रहा है जो उन्होंने 2021 में यहां के बच्चों और आम लोगों से किया था। अक्षय कुमार ने स्कूल की नई इमारत बनवाने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए थे, जिससे अब यहां पर न केवल स्कूल की शानदार इमारत खड़ी है बल्कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं।
10: पहले तो हमारे पास स्कूल नहीं था, फिर अक्षय कुमार साहब आए जिन्होंने हमें स्कूल दिया और हम स्कूल से अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं। हमारे पास लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है और 2 रूम है जिस पर बच्चे पढ़ सकते हैं। हमारे टीचर बहुत अच्छी तरीके से हमें पढ़ाते हैं।
11: बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो हमें अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। पहले तो हमें एक्टिविटीज करने के लिए लाइब्रेरी नहीं थी, बट अब हमारे पास लाइब्रेरी है जहाँ पे हमें एक्टिविटीज कराई जाती है। हमारे टीचर्स हमें अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और अब हमें पढ़ाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया।
1: अक्षय कुमार की ओर से की गई मदद की पहल ने स्कूल की तस्वीर बदल दी है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए साफ सुथरे बेहतरीन माहौल और इंतजामों के साथ यहां पर मिड डे मील की भी सुविधा मिलती है। लिहाजा सभी के चेहरों पर हंसी खुशी और सुकून साफ साफ देखा जा सकता है। तुलैल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और चलिए अब आपको दिखाते हैं एवरेस्ट फतह की 2 तस्वीरें। भारत की पैरामिलिट्री फोर्स आईटीबीपी और बीएसएफ की महिला टीमों ने एवरेस्ट पर शानदार कामयाबी हासिल की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी की महिला पर्वतारोहियों ने बड़ा इतिहास रच दिया है। आईटीबीपी की पहली ऑल वुमेन एवरेस्ट अभियान टीम ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया। यह अभियान आईटीबीपी के पर्वतारोहण इतिहास की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह अभियान 19 अप्रैल से शुरू हुआ था। टीम ने 21 मई 2026 को रात 12:52 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। वहीं बीएसएफ की भी ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने शुक्रवार सुबह लगभग 8 बजे माउंट एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक फतह में कामयाबी हासिल की। बीएसएफ ने इस उपलब्धि की जानकारी साझा करते हुए बताया कि मिशन वंदे मातरम के तहत बीएसएफ की पहली ऑल विमेन माउंट एवरेस्ट अभियान टीम ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंचकर इतिहास रच दिया।
7: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात एक अनोखे रिकॉर्ड की कर लेते हैं जो बना है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर। देखिए माउंट एवरेस्ट फतह करने की तमन्ना तो तमाम लोगों के मन में होती ही है, लेकिन वहां पर सभी कहां पहुंच पाते हैं। हालांकि दो दिन पहले ही एक साथ 125 के करीब लोगों ने चोटी पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना दिया। कैसे देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में।
12: बर्फ से ढके इस पहाड़ पर जहां एक एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल होता है, पर्वतारोहियों की ये लंबी कतार हैरान करने वाली है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ओर बढ़ रहा पर्वतारोहियों का ये दल न केवल इस शिखर को फतह करने निकला था, बल्कि इन्होंने वहां पहुंचकर अनोखा रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। बताया जा रहा है कि 20 मई को नेपाल से 274 पर्वतारोही इस चोटी पर पहुंचे और एक ही साथ इतने लोगों के एवरेस्ट फतह करने का नया रिकॉर्ड बन गया। नेपाल के एक्सपीडिशन ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी इसकी तस्दीक की है।
13: On the 20th of May 2026, above 274 people summit successfully, including the climbers and the Nepali Climbing Sherpa Guide. This year, 2026, more than 500 people obtained the climbing permit for Mount Everest from the Department of Tourism.
12: इससे पहले 22 मई 2019 को 223 लोग एक साथ एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एवरेस्ट पर आवागमन को लेकर इस तरह से चिंता भी जताई गई कि इससे वहां की आबो हवा पर असर पड़ सकता है और पर्यावरण को खतरा भी हो सकता है। लेकिन नेपाल के एक्सपीडिशन ऑपरेटर्स एसोसिएशन का कहना है कि लोगों के एक साथ जाने का ये कतई मतलब नहीं है कि सैकड़ों पर्वतारोही एक ही समय में वहां मौजूद हों, बल्कि वो अलग अलग झुंड में होते हैं।
13: Disagreed that there was a more climber because Everest is 8,000 meter and people are climbing from 5,400 meter to 8,800 meter. So they are not in gathering, they are distributing in different camps and part. So there aren't that much climber in Everest according to the size, according to the distance of the mountain.
12: हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अब हर दिन अधिकतम 250 लोगों की सीमा तय कर दी जाए ताकि निश्चित संख्या में ही लोग एवरेस्ट के शिखर तक जा सकें और वहां भीड़ न लगे, क्योंकि पर्वतारोहियों की तादाद बढ़ने से वहां पर ऑक्सीजन की कमी और एक्सीडेंट के खतरों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा पर्वतारोहियों की जान और एवरेस्ट के प्राकृतिक माहौल को बचाने के लिए सावधानी हर हाल में जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
6: चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे पीएम के तोहफे के बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गई मेलडी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
14: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
15: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
16: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin,
17: Kiss. AC/DC. Lynyrd Skynyrd. And so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
18: सुना ऑफिस में आपने मेलोडी बांटी है?
6: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक पैकेट गिफ्ट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो चुका है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद से देश विदेश में मेलोडी की डिमांड बढ़ गई।
19: जी हाँ, देखिए देश के कई शहरों में मेलोडी इतने डिमांड में है कि सप्लाई ही धीमी हो गई है। हर कोई मेलोडी खरीद कर गिफ्ट करना चाहता है, मेलोडी का स्वाद लेना चाहता है। डिमांड को देखते हुए मेलोडी बनाने वाली निजी कंपनी पाले प्रोडक्ट्स ने अपने इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया है।
20: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।
21: पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के मेलोडी मोमेंट से डिप्लोमेसी पर पड़े असर को तो विदेशी मामलों के विशेषज्ञ समझे, लेकिन मोदी मेलोनी मेलोडी मोमेंट रील का असर मेलोडी की डिमांड पर पड़ा है, जिसमें शानदार इजाफा हुआ है। पंजाब के मोहाली की दुकानों में मेलोडी की बहार छा गई है। मोहाली के ट्राई सिटी इलाके में इसकी मांग और बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है।
22: मेलोडी चॉकलेट, आप देखिए ये बॉक्सेस मैं इसलिए लेके खड़ा हूँ क्योंकि इस समय चर्चा इनकी सबसे ज्यादा है। इटली जब प्रधानमंत्री दौरे पर गए तो उसके बाद से जो उन्होंने गिफ्ट दिया, विजुअल्स आए, तो इस चाहे वो बॉक्स है चाहे वो छोटे पैकेट्स हैं, तो इस मेलोडी की चर्चा है और इस चर्चा ने इनकी सेल पर बहुत असर डाल दिया है। हम मोहाली के ऐसे स्टोर में हैं जो खुद डिस्ट्रीब्यूटर हैं और मोहाली, पूरी मोहाली क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा जिला है तो यहीं से सप्लाई मेलोडी की खासकर यहीं से जाती है।
21: स्थानीय बाजारों में मेलोडी की बढ़ती मांग का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जहां खुदरा विक्रेता और वितरक बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहां मेलोडी कैंडी की बिक्री सामान्य स्तर से लेकर 4 गुना बढ़ गई है। मोदी ने मेलोनी को मेलोडी क्या खिलाई, उनकी रील वायरल होते ही मेलोडी की मिठास अब हर किसी को चाहिए। सिर्फ मोहाली नहीं, देश भर में इसकी मांग इतनी बढ़ चुकी है कि इसकी सप्लाई धीमी हो गई है, क्योंकि अब क्या बूढ़ा क्या बच्चा और क्या जवान, हर कोई मेलोडी मांग कर रहा है। मोदी मेलोनी के मेलोडी वीडियो के इंटरनेट पर छा जाने के बाद इसकी मांग बढ़ने की और भी वजहें हैं। मोदी के मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट करने के बाद हर कोई एक दूसरे को मेलोडी गिफ्ट कर रहा है। सोशल मीडिया पर मेलोडी हैंडल ट्रेंड कर रहा है। मेलोडी नाम के मीम्स और वीडियो वायरल करने के लिए लोग मेलोडी टॉफी को भारी मात्रा में खरीद रहे हैं। कई दुकानों और ऑनलाइन एप्स पर मेलोडी के स्टॉक की कमी हो गई है। क्विक कॉमर्स एप्स जैसे ब्लिंकिट और जेप्टो पर मांग इतनी बढ़ी कि कई जगहों से ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई। मांग बढ़ता हुआ देख पार्ले प्रोडक्शन ने भी मेलोडी का उत्पादन बढ़ा दिया है। पार्ले ने मेलोडी टॉफी को 1983 में बाजार में उतारा था। आज भी रिटेल में मेलोडी 1 रुपए की किफायती कीमत पर मिल जाती है। यही नहीं, आज की तारीख में दुनिया के लगभग 100 देशों में मेलोडी टॉफी बेची भी जा रही है। दिलचस्प बात ये है कि इस ट्रेंड के चलते शेयर बाजार में पार्ले ही कंपनी है और शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स ने नाम की समानता की वजह से गलती से पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद लिए। वैसे मौके का फायदा उठाते हुए पार्ले प्रोडक्ट्स ने इंस्टाग्राम पर मोदी मेलोनी वीडियो भी शेयर कर दिया और कैप्शन में लिखा 1983 से रिश्तों में मिठास खोल रहे हैं। वाकई मोदी मेलोनी के मेलोडी मोमेंट ने इंडिया इटली के रिश्तों में तो मिठास खोल ही दी है। अब देश में हर कोई मेलोडी की मिठास महसूस करना चाहता है और पूछने पर यही कहना चाहता है कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। मोहाली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: तो देखिए, अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सुरक्षा बल के जवानों ने अबूझमाड़ के जंगलों में ऑपरेशन क्लीन चला रखा है। देखिए, इस ऑपरेशन के तहत सरेंडर कर चुके नक्सलियों के निशानदेही पर जंगलों और सड़कों के किनारे लगाई गई आईडी का पता लगाकर उसे नष्ट किया जा रहा है।
4: बिल्कुल, आपको बता दें ताकि इन जंगलों में रहने वाले आदिवासी परिवारों के लिए विकास कार्यों को बिना किसी भय के अंजाम दिया जा सके। सुरक्षा बल के जवान किस तरह से ग्राउंड पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट।
5: संभाग के घने जंगलों में आज तक की टीम इस वक्त मौजूद है। ये तमाम डीआरजी के जवान हैं जो कि इस वक्त घने जंगलों में आईडी ढूंढी जा रही, क्योंकि जब से इन घने जंगलों में नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हुआ है, यहां पर जो नक्सलियों ने, चाहे वो पहाड़ हो या फिर पथरीले इलाके, इन तमाम जगहों पर उनके द्वारा आईडी को छोड़ा गया, जिसका कि लगातार यहां पर डीआरजी के जवान खोजबीन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जिस तरीके से डीआरजी के जवान जब आईडी खोज रहे थे तो चार जवान उनके शहीद हो गए थे, इसलिए काफी सावधानी इस वक्त बरती जा रही है। इनके साथ डॉग स्क्वाड टीम भी है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि K9 टीम के तहत जो डीआरजी के जवानों की डॉग स्क्वाड टीम है, वो पूरा बस्तर के जंगलों में, बस्तर रीजन में जहां जहां पर भी आईडी इस वक्त मौजूद है उसको ढूंढा जा रहा है। इसके साथ ही आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से इन जगहों पर जो बीडीडीएस टीम है, बीडीडीएस टीम पूरा हर एक कोने कोने में जहां पर आईडी होने की संभावना है वहां पर उसको इनके द्वारा तलाशा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस तरीके से जहां भी दिक्कतें हैं उनको तलाशा जाए। तो आप ये मशीन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, बीडीडीएस टीम है और इसके जरिए पूरा तरीके से सर्च किया जाता है। सर, ये बताइए कि ये घने जंगलों में कठिन अभियान आप लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, नक्सल मुक्त भारत पूरी तरीके से हो गया है, आईडी मुक्त करने का क्या प्रयास किया जा रहा है?
6: इसमें सर्चिंग जारी है सर, आईडी जहां जहां पे सूचना मिल रही है वहां पे जाके सर्च किया जा रहा है और आईडी अगर निष्क्रिय करने लायक हो तो निष्क्रिय कर देते हैं और निकालने लायक हो तो निकाल के उसको भी डंप किया जाता है सर।
5: बिल्कुल, तो ग्राउंड जीरो पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सभी जो जवान इन घने जंगलों में मौजूद हैं, आज तक की भी टीम यहां पर मौजूद है और आपको तस्वीरों में तमाम जानकारियां दे रहे हैं कि किस तरीके से आईडी मुक्त करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
4: वैसे मंडे से नौतपा शुरू हो रहा है, छुट्टी अप्लाई कर दें क्या?
7: छुट्टी अप्लाई कर देते हैं, दो दिन ही है बाकी, नौतपा से पहले पहले घूम आते हैं कहीं जाके।
3: सही बात,
8: साथ चले,
7: साथ चले।
8: कौन सा डेस्टिनेशन?
3: कोई भी ले जाइए, बस दिल्ली से बाहर ले जाइए मुझको ना, दिल्ली एनसीआर से बाहर निकलना।
8: हमारी प्लानिंग शुरू हो गई है, बैग पैक करेंगे और शायद अगर छुट्टी मिल जाए तो हम सभी होके आएंगे। अभी वीकेंड एंजॉय करिए, मिलते हैं सोमवार को चाय पर चर्चा में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
10: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of.

0: TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: गुजरात के गांधीनगर में स्वामी महावीर का हुआ सूर्य तिलक। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में दोपहर 2:07 पर बना शुभ संयोग, अलौकिक घटना के गवाह बने हजारों भक्त। उत्तराखंड के चमोली में बदला मौसम का मिजाज, पवित्र बद्रीनाथ धाम में झमाझम बारिश के बाद गिरा पारा। उत्साह उमंग के साथ मंदिर में दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु। चमोली के गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू। अरदास के बाद पंच प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे की रवानगी, कल से खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। चमोली में आज भक्तों के लिए खुले लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के द्वार, विधि विधान के साथ की गई पूजा अर्चना। का पाठ खुलने के बाद हुई ताजा बर्फबारी। रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी से बदला नजारा, सफेद बर्फ की चादर से ढकी दिखी वादियां, सैलानियों ने जमकर उठाया मजा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा। नैनीताल मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों तक गर्मी का असर, दोपहर के वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एंटी ड्रग रैली के जरिए जागरूकता संदेश, बैनर और पैम्फलेट्स लेकर सड़क पर उतरे सिविल सोसाइटी के सदस्य, स्थानीय पुलिस के साथ सीआरपीएफ का मिला साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल। जेएनटी स्पेशल में आज बात उस सुपर कार की जिस पर AK-47 की बुलेट से भारी भरकम हथौड़े का वार भी बेकार हो सकता है। ऐसी धुरंधर कार जो सुरक्षा के लिहाज से सड़क पर चलता फिरता किला है। सुरक्षा के मामले में ये कार इतनी जोरदार है कि इसमें बैठने वाला पिस्टल, राइफल की बुलेट्स और कई मामलों में तो ग्रेनेड जैसे हथियारों से भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है। लेकिन ये किसी एक कार की बात नहीं है, बल्कि ये बात है उस तकनीक की जिसके जरिए किसी भी आम कार को सुपर कार में बदला जा सकता है। मैं बात कर रही हूं बुलेट प्रूफिंग तकनीक की। आपने अक्सर VVIP, सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं को बुलेट प्रूफ कारों में सफर करते तो देखा होगा। देखने में ये दूसरी कारों जैसे ही लगती हैं, लेकिन प्रोटेक्शन देने के मामले में इनका कोई जवाब नहीं। आखिर कैसे तैयार होती हैं ये कारें और क्या किसी भी गाड़ी को बुलेट प्रूफ गाड़ी में बदला जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे और क्या है ये पूरी प्रक्रिया और इस पूरे प्रोसेस में कितना खर्च आ सकता है? आज आपको इन तमाम सवालों का जवाब अगले आधे घंटे में मिल जाएगा, तो जीएनटी स्पेशल देखते रहिए, क्योंकि आज जीएनटी स्पेशल में आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मौजूद उस फैक्ट्री में जहां बुलेट प्रूफ कारें तैयार की जाती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह एक आम कार को सुपर कार में बदला जा सकता है।
1: ये देखिए, तो अब ये 10 किलो के हथौड़े ने लगभग 4-5 बार इस कांच पर वार किया है, मारा है। आगे से तो ये चीजें टूट गई है, लेकिन ये दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भीतर कार के अंदर जो शख्सियत बैठा है, क्या उसे कुछ हुआ है। ये देखिए, कांच पूरी तरह से आगे से टूटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं। बड़े प्यार से हम हाथ लगा पा रहे हैं।
2: हैं कि ग्लासेस के साथ ये व्हीकल के डोर पे भी फायर किया गया है और आप देख सकते हैं कि इस तरफ से बुलेट अंदर पेनिट्रेट होती है, वेदर इट इज ग्लास और स्टील, बट अंदर के साइड वो कम्प्लीटली वो प्रोटेक्ट करती है।
3: सब स्टेट्स में सप्लाई किया हुआ है टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। जब हम इस पे SLR के शॉट्स मारते हैं, AK-47 के शॉट लेते हैं, तो ये जो कांच है वो टूट जाता है, शटर हो जाता है, लेकिन अगर अंदर से आप जब भी हम आपको दिखाएंगे तो बहुत स्मूथ है।

0: AK-47 की गोली हो या हथौड़े का वार, इन फौलादी सुपर कारों पर हर वार है बेकार, क्योंकि कार नहीं ये कारों की धुरंधर है। वो धुरंधर जो सड़क पर देती है सुरक्षा की 100% गारंटी। और एक आम कार को धुरंधर में बदलती है वो बुलेट प्रूफ तकनीक, कारों का वो शानदार और जानदार मॉडिफिकेशन जिस पर दुनिया भर के नेता, अभिनेता, उद्योगपति और तमाम VVIP अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा करते हैं। आसान भाषा में समझे तो बुलेट प्रूफ कार का सीधा मतलब है एक ऐसा वाहन जो आपको किसी तरह के हथियारों के हमले से सुरक्षित रखे। इन गाड़ियों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। ज्यादा सुरक्षा वाली गाड़ियां तो हैंड ग्रेनेड या रॉकेट लॉन्चर के हमले से भी बचा सकती हैं। VVIP और नेताओं को गंभीर सुरक्षा खतरों के कारण ऐसी गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। भारत में ऐसी कई गाड़ियां विदेशों से इम्पोर्ट की जाती हैं, लेकिन अब भारत में भी कुछ कंपनियां इन धुरंधर कारों को तैयार कर रहे हैं। आज आपको ले चलेंगे मुंबई से करीब 260 किलोमीटर दूर अहिल्यानगर में मौजूद एक ऐसी ही कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जो पिछले कई सालों से भारत की जमीन पर जोरदार बुलेट प्रूफ कारें तैयार करती आ रही है। शील्ड आर्मरिंग, जहां देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, बड़े उद्योगपतियों, विदेशी मेहमानों, राजनेताओं और फिल्मी हस्तियों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां तैयार की जाती हैं। साथ ही शील्ड आर्मरिंग, पुलिसिंग, गंगा कंट्रोल और हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए सुरक्षा बलों के काम आने वाली आर्म गाड़ियां भी तैयार करती हैं। शील्ड आर्मरिंग ने हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस के लिए 6 PAMA आर्म्ड व्हीकल तैयार किए हैं। ये कार नहीं बल्कि सुरक्षा के मामले में ये चलते फिरते टैंक है।
1: देश की जनता की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा जिन हाथों में है, उनकी सुरक्षा किन हाथों में है, ये एक अहम सवाल है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। इसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीर में ये बुलेट प्रूफ कार दिखाना चाहता हूँ, जो अभी अभी अत्याधुनिक तरीके से बनाकर तैयार की गई है। स्टेट पुलिस को ये दी जाने वाली है और शहर के उन कोनों में ये खड़ी रहेगी जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध स्थल है। सवाल ये भी है कि आखिर इस तरह की बुलेट प्रूफ कार कैसे बनती है, कहाँ बनाई जाती है, क्या चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती है। इंडिया टुडे ग्रुप में आप ये सारी चीजें इस समय एक्सक्लूसिव देख रहे हैं।
0: ये बख्तरबंद गाड़ियां रिस्की ऑपरेशंस में तैनात पुलिस जवानों को सुरक्षा का नया कवच प्रदान करेंगी। स्टेट पुलिस की सेवा में पहले से मौजूद बख्तरबंद गाड़ियों की तुलना में ये व्हीकल ज्यादा एडवांस्ड, अपग्रेडेड और बेहतर प्रोटेक्शन देने वाला है।
2: हाँ, ये हमारी ब्रांड की व्हीकल है जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो इसे यूज करना चाहते हैं, तो ये 100% हमारा डिजाइन है जो ये व्हीकल हमने डेवलप की है।
1: अच्छा, थोड़ा सा बताएं ना अंदर चल करके किस तरीके से क्या बना है, क्या खासियत है, क्योंकि पहली बार ये चीजें कैमरे पर आ रही हैं।
2: जी, तो ये सबसे पहली बात, ये पूरा जो व्हीकल है वो 360 डिग्री प्रोटेक्शन है। जब हम 360 डिग्री प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि इसे कोई भी एंगल से पेनिट्रेशन की चांसेस नहीं है। कहीं से भी अगर बुलेट आ रही है, कहीं से भी इसको गलत फायरिंग हो रही है, तो ये प्रोटेक्ट करती है। इसके चारों साइड्स हैं, इसका रूफ है, इसका बॉटम है, ये सारा कम्प्लीटली आर्मर्ड होता है। इसके आप जितने भी ये ग्लासेस देख रहे हैं, ये बहुत ही हैवी ग्लासेस होते हैं जो AK-47, SLR जैसे जो वेपन्स होते हैं उसको वो इजीली प्रोटेक्ट कर सकता है।
1: अच्छा, और ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, ये क्या है?
2: तो सर, ये ऐसा है कि जब हमारे फोर्सेस होते हैं, जब हमारे पुलिस जवान कभी कोई मिशन में जाते हैं और वहाँ पर से अचानक से फायरिंग हो गई, तो उनको अंदर से ही बैठ के रिटेलिएट करना है, उन्हें अंदर से बैठ के जब फायरिंग करनी है तो वो अपना बैरल इस स्पॉट से, इसे गन पोर्ट कहते हैं, वहाँ से निकाल के उसे ईजिली फायर कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो गए, VVIP प्रोटेक्शन हो गए, वो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। इस व्हीकल के अंदर अगर आप टॉप पे देखें तो ये 360 डिग्री टरेट है,
3: जहाँ पर जवान बाहर निकलता है वो अपना गन माउंट करता है और उसको 360 डिग्री उसे फायर करने के चांसेस है। तो अगर कहीं से भी फायर हो रहा है तो उसे व्हीकल घुमाने की जरूरत नहीं है, उसको सिंपल वो टरेट है उसको घुमाएगा, वो सेल्फ प्रोटेक्टेड रहेगा और उसी वक्त वो फायर कर सकता है। इस व्हीकल की और एक खासियत है, अगर आप ये देखेंगे तो ये जितने भी स्लॉट्स हैं ऐसे टोटल 4 स्लॉट्स हैं व्हीकल में, तो इसे इवन हेलीकॉप्टर से इस व्हीकल को लिफ्ट किया जा सकता है और कहीं पर भी डिप्यूट किया जा सकता है।

0: ये वाली तस्वीर भी दिखाया, पीछे यहाँ पर भी जो है बैठ सकते हैं हमारे ऑफिस।
1: यस, तो इसके अंदर टोटल ये जो मॉडल है इसके अंदर 6 सीटर है। तो जब 6 सीटर की बात करते हैं तो फ्रंट में 2 है, साइड्स में 2 है और जो रेयर है उसमें 2 है। इसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन भी आता है जो फर्दर इसको क्या बोलते हैं सीटिंग कैपेसिटी को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि एज पर स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट और फोर्सेस के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है। कोई से हमें 6 सीटर भी बना सकते हैं, 4 सीटर भी बना सकते हैं, 8 सीटर भी बना सकते हैं। तो डिफरेंट सीटिंग कैपेसिटी, ईच सीटिंग इस तरह से बनाई गई है कि जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का वो क्विक एंट्री एंड एग्जिट हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट इसमें होता है कि आप कितना फास्ट मूव इन करते हो और मूव आउट करते हो। तो ये सारी चीज़ का यहाँ पर ध्यान दिया गया है। ये पूरा 100% डिज़ाइन है अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ है और इसके अंदर जितने भी मटेरियल्स लगे हुए हैं सब हमारी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नतीजे से ये व्हीकल तैयार हुई।
2: बात जब बुलेट प्रूफ कार की हो तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि बुलेट प्रूफ कार असल में कोई अलग गाड़ी नहीं होती बल्कि एक नॉर्मल कार को खास तकनीक के जरिए मजबूत बनाया जाता है ताकि वो गोलियों और दूसरे हमलों से बचा सके। किसी भी कार को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए उसमें बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास, दरवाजों और बॉडी में स्टील या खास मटेरियल की प्लेटिंग, मजबूत छत और रन फ्लैट टायर लगाए जाते हैं। इस मॉडिफिकेशन के लिए जरूरी है कि कार में अतिरिक्त वजन सहन करने की क्षमता हो, क्योंकि सुरक्षा के लिए जो स्टील की सीट्स और मोटे शीशे लगाए जाते हैं उनमें गाड़ी का वजन लगभग 1000 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। यही वजह है ज्यादातर लोग बुलेट प्रूफ बनवाने के लिए SUV को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनका इंजन और चेसिस दूसरी गाड़ियों की तुलना में मजबूत होता है। भारत में आमतौर पर टाटा सफारी, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर, इनोवा या लग्जरी सेगमेंट में BMW और ऑडी जैसी कंपनियों की गाड़ियां बुलेट प्रूफ करवाई जाती हैं।
0: हमने आपको दिखाया कि फोर्स और पुलिस किस तरह की सुरक्षा भरी कार का इस्तेमाल करते हैं कि बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब चल रहे हैं हम उस तरफ जहां पर VIP, VVIP मिनिस्टर्स भी अपने कार का इस्तेमाल करते हैं पूरी तरह से सुरक्षित और बुलेट प्रूफ। ये देखिए लैंड क्रूजर नाम की कार यहाँ पर खड़ी हुई है और पूरी तरह से बनकर तैयार है। हम सीधे अब इसके भीतर जाएंगे और कैसा लगता है भीतर बैठ करके और किस तरीके से होती है सुरक्षा उस बारे में भी जानकारी लेंगे। और पूरी तरह से लैंड क्रूजर को बना करके तैयार करके रख दिया गया है, जिस किसी भी दिग्गज ने बनाने का इन्हें ऑर्डर दिया है अब बहुत जल्दी उन्हें ये कार डिलीवर भी हो जाएगी। लेकिन भीतर से इसका नजारा कैसा होगा ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लैंड क्रूजर कार है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ हो चुकी है। अंदर मैं बैठा हुआ हूं, उसी तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ है जैसे नॉर्मल कार के होते हैं। बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है कि ये बुलेट प्रूफ कार है। और मेरे साथ में सुरिंदर सिंह राठौर मौजूद ही हैं, साथ ही साथ इंद्रजीत सिंह राठौर भी मौजूद हैं। थोड़ा सा बताएं, पता ही नहीं चल पा रहा कि ये बुलेट प्रूफ कार बन चुकी है और आपने इसे सजा दिया, बना दिया, कैसे, क्या, कहाँ पर, क्या खासियत, कैसे पता चलेगा, क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा बताएं।
3: अभी आप जब यहाँ पर देखेंगे इसकी जो प्रोटेक्शन है वो हमने 360 डिग्री दी है। ये ऊपर के साइड पे भी पूरी प्रोटेक्टेड है, साइड पे भी है, दरवाजों में भी है। ये जैसे आप ग्लास देखेंगे तो ये 40mm का ग्लास है, काफ़ी थिक ग्लास है। तो इससे क्या AK-47 SLR ये सब चीज़ें अपना प्रोटेक्ट हो जाती है। और इसका आप इसकी ब्यूटी ये है कि ये आपको आइडेंटिफाई करनी नहीं चाहिए कि ये आर्मर्ड व्हीकल है कि नॉर्मल व्हीकल है। आप इसकी अगर कम्फर्ट देखेंगे तो कम्फर्ट एज इट इज़ जो ओरिजिनल की कम्फर्ट है वो मिल रही है। आपके जो प्लास्टिक्स है, आपके जो ट्रिम्स है, आपके जो डोर पैड्स हैं वो एज इट इज़ ओरिजिनल जैसे लग रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर ये गाड़ी की बात की जाए तो ये 2 करोड़ की गाड़ी है, तो जो बंदा ये 2 करोड़ जो पैसे खर्च रहा है वो किस चीज़ के लिए खर्च रहा है, वो ये खर्च रहा है कि इसका कंफर्ट मिले। इसकी जो उसने कंफर्ट के पैसे दिए हैं, इसके जो फीचर्स के पैसे दिए हैं, अगर हमने उसको बुलेट प्रूफ में ऐसा कर दिया कि फीचर्स ही ना काम आए तो फिर ये कम्फर्ट का जो उन्होंने पैसा खर्चा उसका यूज़ नहीं आएगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि एज इट इज़ जो ओरिजिनल है जो भी मॉडिफिकेशन की गई है वो अंदर से की गई है, आउटर लुक को एज इट इज उसको मेंटेन किया गया है कि वो आइडेंटिफाई ना हो कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है।
4: अच्छा, मतलब ये कि भाई सुरक्षा कवच इस कार में जो कुछ लगा हुआ है वो सब आपने छिपाया, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया।
3: यस यस, क्योंकि अगर दिखा दे तो क्या है कि कभी कॉन्वॉय में तीन गाड़ियां चल रही है, चार गाड़ियां चल रही है, तो अगर कोई अटैक करता है तो उसे ये नहीं पता होना चाहिए कि कौन से गाड़ी में बुलेट प्रूफ हुआ हुआ है, कौन से में नॉर्मल। तो इसकी जो हाइट है वो भी हमको मेंटेन करनी पड़ती है कि ओरिजिनल गाड़ी जो नॉर्मल गाड़ी है और हमारी जो आर्मर्ड गाड़ी है वो सेम जैसी की दिखनी चाहिए।
2: अब आपको बताते हैं कि किसी कार को बुलेट प्रूफ कैसे बनाया जाता है। वास्तव में किसी भी सामान्य कार को बुलेट प्रूफ बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। इसमें कार के इंजन को छोड़कर लगभग पूरे हिस्से को बदल दिया जाता है। दरवाजों से लेकर विंडशील्ड, खिड़कियां, छत और यहां तक कि पूरा पैनल भी बुलेट प्रूफ मटेरियल से बदला जाता है। बुलेट प्रूफिंग से जुड़ा सारा काम होता है अहिल्या नगर में मौजूद इस कारखाने में, जहां लगभग 100 लोगों की टीम एक आम गाड़ी को मॉडिफाई कर मजबूत और सुरक्षित किले में तब्दील कर देती है।
0: ये देखिए, इस तरह से जो दरवाजे अभी हमने आपको दिखाया है, इस तरह से दरवाजे खोल दिए गए हैं, सिर्फ इंजन छोड़ करके इस गाड़ी के सारे पार्ट को निकाल दिया गया है और अब बुलेट प्रूफ चीजें उस गाड़ी में, उस कार में लगाने का कार्य जो है वो शुरू है। और मुझे लगता है जैसा कि अभी सुरेंद्र सिंह राठौर ने हमें बताया है, 15 से 20 दिन में ये भी लग्जरी कार जो है ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं?
1: हाँ जी, एकदम सही। तो अभी इस वक्त हमने क्या किया है, जब ये जो नई गाड़ी आई थी उसको हमने लिया है, उसे पूरा स्ट्रिप डाउन किया है। तो जब आप देखेंगे तो इसके अंदर सब इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके सीट, इसके अंदर अपॉल्स्ट्री, ये सारी निकाल दिए हैं। इसके अंदर हमने रीइंफोर्स किया इसे आर्मर्ड स्टील के साथ, जहां जहां हमें लगता है कि 360 डिग्री प्रोटेक्शन देनी है वहां पर इसे हमने स्टेंटेन किया है और इस व्हीकल को वापस ग्राउंड से बिल्ट अप किया है। तो हम जब ग्राउंड से बिल्ट अप करते हैं तो इसका पहले फ्लोर बनाते हैं, फिर इसके साइड्स बनाते हैं, फिर रूफ बनाते हैं। तो इसे कंप्लीट एक केज जैसा बनाते हैं जिसे हम 360 डिग्री प्रोटेक्शन कहता है। इसका ये फायदा है कि ये बुलेट से तो प्रोटेक्ट करेगा, बट कभी अगर रोड पे एक्सीडेंट हो गया, व्हीकल टंबल होगी, इन दैट सिनेरियो आल्सो ये व्हीकल बहुत ही सेफ होती है।
4: अच्छा, ये थोड़ा सा भी हाइट में उठेगी नहीं?
1: नहीं, ये बहुत हैवी होती है व्हीकल। तो इसका नॉर्मल जो एड ऑन वेट होता है तकरीबन 1000 केजीज इसमें बढ़ जाता है, तो इसके वजह से व्हीकल बहुत सेफ होती है। ये रोड को पकड़ के चलती है, आपने देखा होगा बहुत सारे वीवीआईपी पॉलिटिशियंस ये व्हीकल को एवरीडे यूज के लिए यूज करते हैं।
2: एक बुलेट प्रूफ कार की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके टायर। हमले की स्थिति में भी गाड़ी चलती रहे इसके लिए खास रन फ्लैट ट्यूबलेस टायरों का इस्तेमाल किया जाता है।
1: इतना टाइम हमने ये देखा है कि जब एक्चुअल में फायरिंग होती है तो उन लोग है ना व्हीकल के टायर्स को टारगेट करते हैं। जब उसे टारगेट करते हैं तो जाहिर है कि व्हीकल रुक जाएगी, उन्हें ज़्यादा समय मिल जाएगा और उसे फिर फायर करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि ये जो व्हीकल का जो टायर है इसके अंदर रन फ्लैट सिस्टम लगा हुआ है। ये रन फ्लैट सिस्टम क्या करता है, जब इसके अंदर डिफ्लेट होगा, बुलेट लगेगी तो ये पूरा जो एयर है डिफ्लेट हो जाएगा, उसके बाद में जो टोटल वेट है ये रन फ्लैट सिस्टम पे आ जाएगा और उसके अलावा ये 350 किलोमीटर्स तो भी ये जा सकता है। पूरा डिफ्लेट होने के बाद में 50 किलोमीटर आपकी व्हीकल को ये अलग जगह पर लेके जा सकता है, जहाँ पर आप सुरक्षित हो वहाँ तक ये आपको पहुँचा देगा।
0: अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये जो टायर है ये कौन सी कंपनी का आप लोग इस्तेमाल करते हैं या खुद ही बनाते हैं?
1: नहीं, जो टायर है वो OEM के जो हो सकता है वो कोई भी मेक का हो सकता है, उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो इसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है वो उसे प्रोटेक्ट करेगा।
2: इसी तरह बुलेट प्रूफिंग के लिए खास तरह की स्टील शीट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मोटाई लगभग 6.5 mm तक होती है। तो वही पूरी गाड़ी का सबसे कमजोर हिस्सा शीशा होता है, इसलिए इसमें 45 से 55 मिलीमीटर तक का मोटा कई परतों वाला ग्लास लगाया जाता है।
1: तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स हैं जिसमें अलग अलग थिकनेस ऑफ मटेरियल हमने टेस्ट किया है। सो वेदर उसमें AK-47 हो गया या तो SLR हो गया, जो ये कॉमन थ्रेट परसेप्शन जो होते हैं, जो टेररिस्ट लोग यूज़ करते हैं, जो नक्सलवादी लोग ये वेपन्स यूज़ करते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो स्टील और ग्लास पे कुछ इस तरह का होता है। ये जब बुलेट लगती है तो सिर्फ इतना सा एक इम्पैक्ट होता है।
0: अच्छा,
4: और यहाँ पर एक दरवाजा भी रखा हुआ है और ये शायद गोलियों के निशान है। एक नंबर, दो नंबर, तीन, चार, पाँच, छह, ये क्या है जी?
1: सर इसमें क्या है कि पूरी व्हीकल को जब बन गई है तो उसके ऊपर हमने ये फायर करवाया हुआ है, तो ये उसी का एक सैंपल डोर है। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लासेस के साथ ये व्हीकल के डोर पे भी फायर किया गया है और आप देख सकते हैं कि इस तरफ से बुलेट अंदर पेनिट्रेट होती है, वेदर इट इज ग्लास और स्टील, बट अंदर के साइड वो कम्प्लीटली वो प्रोटेक्ट करती है।
4: अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी है ये कांच की और क्या कहते हैं कांच का और कैसे इसे बनाया जाता है?
1: तो ये इसके अंदर 5 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है। ये एक सैंडविच ग्लास होता है जिसमें ग्लास होता है, उसमें 5 अलग अलग तरह के मटेरियल्स लग के उसे वो 100% प्रोटेक्ट करने के लिए 40 mm थिक होता है जो स्टैंडर्ड मटेरियल है, थिकनेस है उसके हिसाब से। और इसके अंदर नीचे यहाँ पर कम्प्लीटली जैसे हमने ये आर्मर्ड स्टील देखी, वो आर्मर्ड स्टील लगा हुआ है।
4: और वहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि ये कांच लगा हुआ है। थोड़ा सा इंद्रजीत जी आप बताएं, ये कांच आगे का कांच है ना या पीछे का है? पीछे
3: ये का स्क्रीन है, ये विंडस्क्रीन है। तो इस पे जैसे हमने हैमर शॉट्स दिए हुए हैं, तो हैमर शॉट्स के बाद में भी जैसे हमने आपको दिखाया कि गन शॉट्स के, तो आपने सैंपल्स देखे। अगर कोई किसके दिमाग में रहता है कि नहीं इतना बड़ा हैमर लेके फिर भी प्रोटेक्ट करेगा, तो इसके लिए हमने आपको ये हैमर शॉट्स के भी डिस्प्ले बना के रखा है।
2: जहाँ एक टेक्टिकल व्हीकल को बनाने में 15 दिन से 1 महीने का समय लगता है, वहीं VIP सुरक्षा के लिए एक आम कार को बुलेट प्रूफ कार में बदलने के लिए 15 से 20 दिन का समय लगता है। बुलेट प्रूफिंग के तमाम स्टेप्स से गुजरने के बाद जब एक आम कार किले में तब्दील होकर खास हो जाती है, तब बारी आती है टेस्टिंग की। इसके लिए तैयार बुलेट प्रूफ कार के पार्ट्स को मजबूती की टेस्टिंग के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स में भेजा जाता है।
3: इसमें जैसे गुजरात में लैब है, चंडीगढ़ में लैब है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो इसको टेस्ट करती हैं। जैसे एक हमारे पास में अगर मटेरियल का लॉट आ गया, स्टील का लॉट आ गया, ग्लास का लॉट आ गया, हमने वो स्टील के लॉट को अपना सैंपल टेस्ट कर दिया। जैसे आपको दिखाया, दैट इज़ ये 300x300 का हमने अपना एक शीट काटा है, ये कटिंग करके हमने इसके ऊपर 6 शॉट्स लिए हैं, SLR के हो गए, AK-47 के हो गए। जो ग्लास है जो आपके पीछे, ये 500x500 का है, इस पर भी हमने शॉट लिया। हमारी कंपनी एक एडिशनल चीज़ करती है, जब आर्मरिंग पूरी ख़त्म हो जाती है तब उसको हम पूरी बुलेट प्रूफ करके एजेंसी में भेजते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं। तो जैसे ये गाड़ी का आपको जैसे हमने डोर दिखाया है, कि ये गाड़ी का डोर का ये खासियत है कि ये सिर्फ डोर टेस्ट नहीं हुआ है, ये पूरी गाड़ी उनके पास में गई है, वो गाड़ी के ऊपर उन्होंने टेस्ट किया है, फिर हमने वो डोर को रिप्लेस करके ये डोर को अपना एज अ डेमो पीस रखा है।
2: बुलेट प्रूफिंग और टेस्टिंग की तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इस कारखाने से निकली कार एक चलते फिरते किले में तब्दील हो जाती है। आज देश के कई राज्यों में यहां से निकली बुलेट प्रूफ कारें पहुंचती हैं। तमाम राज्यों में भेजी गई मॉडिफाइड कारों के सैंपल्स को इस कारखाने में बेहद शान से डिस्प्ले किया गया है।
0: और ये तस्वीरें देखें, अलग अलग राज्यों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, बहुत सारे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे कांच भी लगा हुआ है जो टूटे फूटे कांच है। थोड़ा सा बताएं ये क्या है, क्या चीज़ है, कहाँ पर आपने क्या किया है ये? मतलब
3: ये हमारा एक हमने डिस्प्ले बनाया हुआ है, ये हमने सब स्टेट्स में सप्लाई किया हुआ है टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। जब हम इस पे SLR के शॉट्स मारते हैं, AK-47 के शॉट लेते हैं, तो ये जो कांच है वो टूट जाता है, शटर हो जाता है। लेकिन अगर अंदर से आप जब हम आपको दिखाएंगे तो बहुत स्मूथ है, तो अंदर कोई भी पेनिट्रेशन नहीं है। इसके लिए हमने एक वॉल एक बनाया है, एक डिस्प्ले वॉल है, कि ये सब स्टेट्स में हमने दिया और इससे ज़्यादा स्टेट्स भी हमारे ऐड हुए हैं, लेकिन अभी तक हमने उसको अपना डिस्प्ले पे नहीं डाला गया
0: है। मतलब अलग अलग राज्यों में आपने जाँच प्रक्रिया पूरी करी
3: जी, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स यूज कर रही है ये उनकी टेस्ट।
2: ये तो थी बात बुलेट प्रूफिंग की, अब बात करते हैं इसमें आने वाले खर्च की। क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये कार्य खास है, इसलिए दाम भी आम नहीं। बुलेट प्रूफिंग का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी सुरक्षा चाहते हैं। अगर गाड़ी को सिर्फ गोलियों के हमले से बचाना है तो ये खर्च 20 लाख से 50 लाख रुपए के बीच आ सकता है। ये बेसिक लेवल की सुरक्षा होती है जो पिस्टल या छोटे हथियारों से बचाने के लिए होती है। लेकिन अगर आप AK-47 जैसी राइफल, हैंड ग्रेनेड जैसे ज्यादा शक्तिशाली हथियारों से सुरक्षा चाहते हैं तो ये खर्च बढ़कर करोड़ों में पहुंच सकता है। ये खर्च इतना ज्यादा क्यों होता है ये भी समझना जरूरी है। दरअसल कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे आप कौन सी कार को मॉडिफाइड कर रहे हैं, उनमें कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास, भारी स्टील प्लेटिंग, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, फायर सिस्टम और खास टायर जैसी चीजें कीमत को काफी बढ़ा देती हैं।
5: इसमें जैसे ये गाड़ियां हैं वो अलग अलग टाइप की प्रोटेक्शन के ऊपर जाती है। अगर किसको हैंड पिस्टल से लेनी है तो वो स्टार्ट हो जाती है, एक 50 लाख से चालू हो जाती है, तो वो एक 2.5-2 करोड़ तक अपना जाती है अपना। उसमें AK-47 की भी प्रोटेक्शन है, SLR की भी प्रोटेक्शन है, बॉम्ब प्रोटेक्शन भी है, तो हर तरीके से प्रोटेक्शन जाता है। अगर उसको और लाइट बनाना है हमको तो हम उसके लिए कॉम्पोजिट यूज़ करते हैं, जो स्टील नहीं होता है वो बहुत लाइट होता है, उसमें कि ये गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होती है।
2: मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद इस कंपनी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनाने का काम शुरू किया था। अब ये गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कस्टमाइज्ड बैलिस्टिक प्रोटेक्शन और एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशन दे रही है। इतने सालों से शील्ड आर्मरिंग भारत के आर्म मोबिलिटी डिफेंस सिक्योरिटी और मोबिलिटी इंजीनियरिंग के मेल पर काम करते हुए बदलते खतरों के हिसाब से एंड टू एंड प्रोटेक्शन सॉल्यूशन देती आ रही है।
1: तो ये शुरुआत ऐसे हुई कि जब 26/11 हुआ तो हमें एक नीड ये लगी कि सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स उस वक्त इंडिया में इतने क्वालिटी के जो इंटरनेशनल क्वालिटी के नहीं थे, तो जो ऑपरेशन जब यहाँ पर हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे लैप्सेस देखे गए, वेदर वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात की जाए या तो व्हीकल्स की बात की जाए, तो उस लेवल का प्रोडक्ट नहीं था यहाँ पर। तो तब ये दिमाग में आया कि हमें कुछ इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इंडिया में लेके जाने चाहिए, ताकि हमारे जवान हैं, हमारे VVIPs हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, वो सारे इसको क्या बोलते हैं अपने आप को सुरक्षित कर सके। तो बस वो एक सोच था और तब से हमने स्टार्ट किया। 2011 हमने ये कंपनी स्टार्ट की और एक स्टेट से स्टार्ट किया, तकरीबन 18 राज्य के स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी व्हीकल्स यूज़ कर।
2: ये वो सुपर कारें हैं जिनके आगे बुलेट बेअसर है, भारी हथियारों का वार भी बेकार है, सड़क पर चलता फिरता आर्म्ड टैंक है ये कारें। यही वजह है कि देश भर में सरकारों से लेकर असरदारों तक इन धुरंधर कारों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। अहिल्यानगर से साहिल चौहान और धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और चलिए इसी के साथ जेएनटी स्पेशल में आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: रोते बिलखती रही महिला, नहीं रुका बुलडोजर। बंगाल में बीजेपी समर्थक के घर पर चला बुलडोजर। सरे राह एक लड़की को क्यों चाकू से गोदा गया। सिर्फ हाथों के बल पर एवरेस्ट फतह। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए शगुफ्ता के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics. Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
7: गुजरात के गांधीनगर में स्वामी महावीर का हुआ सूर्य तिलक। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में दोपहर 2:07 पर बना शुभ संयोग। अलौकिक घटना के गवाह बने हजारों भक्त। उत्तराखंड के चमोली में बदला मौसम का मिजाज। पवित्र बद्रीनाथ धाम में झमाझम बारिश के बाद गिरा पारा। उत्साह उमंग के साथ मंदिर में दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु। चमोली के गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू। अरदास के बाद पंच प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे की रवानगी। कल से खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। चमोली में आज भक्तों के लिए खुले लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के द्वार। विधि विधान के साथ की गई पूजा अर्चना। कपाट खुलने के बाद हुई ताजा बर्फबारी। रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी से बदला नजारा। सफेद बर्फ की चादर से ढकी दिखी वादियां। सैलानियों ने लिया मजा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा। नैनीताल मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों तक गर्मी का असर। दोपहर के वक्त सावधानी बरतने की सलाह। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एंटी ड्रग रैली के जरिए जागरूकता संदेश, बैनर और पैम्फलेट्स लेकर सड़क पर उतरे सिविल सोसाइटी के सदस्य। स्थानीय पुलिस के साथ CRPF का मिला हाथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
7: देवभूमि उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। बद्रीनाथ धाम में हुई झमाझम बारिश। बारिश के बाद बद्रीनाथ धाम में बढ़ी ठंड। श्रद्धालुओं को गर्मी से मिली राहत। बारिश के बाद बद्रीनाथ धाम का मौसम हुआ सुहाना। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। यात्रा मार्ग पर गर्म कपड़े पहने नजर आए भगवान बद्री विशाल के भक्त, ठंड पर भारी दिखी आस्था। बारिश ने बढ़ाई बद्रीनाथ धाम की खूबसूरती, ठंडी हवाओं और बारिश के बीच में श्रद्धालु भक्ति और प्रकृति के अद्भुत संगम का ले रहे मजा। पहाड़ों पर मौसम हुआ मेहरबान, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश। शिमला में बारिश के बाद मौसम सुहाना, बीते कई दिनों से गर्मी ने बढ़ाई थी लोगों की परेशानी। शिमला में बारिश के बाद खिले सैलानियों के चेहरे, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश, तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर में भी मौसम की मेहरबानी, डोडा समेत कई इलाकों में तेज बारिश। डोडा में बारिश के साथ चली तेज हवाएं, तापमान में गिरावट से लोगों ने ली राहत की सांस। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में हुई जोरदार बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। बर्फबारी के चलते सैलानियों से गुलजार हुआ रोहतांग, बर्फबारी के बीच में सैलानियों ने की मस्ती। भारी बर्फबारी से सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर, कई वाहन फंसे। उत्तर भारत में गर्मी से राहत पाने के लिए जम्मू कश्मीर की ओर रुक कर रहे सैलानी, बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंचे पर्यटक। श्रीनगर में शिकारा का आनंद ले रहे सैलानी, भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। देहरादून में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, मौसम विभाग के लोगों से सावधान होने की अपील। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गर्मी के बीच प्रशासन की सराहनीय पहल, ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए गए शेड, लोगों को धूप से बचाने की कोशिश। राजस्थान में गर्मी का प्रचंड रूप, मौसम विभाग का अलर्ट, हीटवेव से सावधानी बरतें। जयपुर में भीषण गर्मी के बीच बढ़ी मिट्टी के घड़ों की डिमांड, बाजार में अलग अलग रंग और डिजाइन के घड़े मौजूद। यूपी के बांदा में तपती गर्मी से लोगों को बचाने की पहल, दोपहर के वक्त प्रशासन ने ट्रैफिक सिग्नल बंद किया। दिल्ली में भी गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान। दिल्ली समेत एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आने वाले एक हफ्ते तक जारी रहेगा गर्मी का असर। मध्य प्रदेश के कई शहरों में हीटवेव की चेतावनी, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। भोपाल में गर्मी से बचने के लिए लोग जूस, नींबू पानी का सहारा ले रहे, लू से बचने के लिए चेहरा ढककर घर से निकले लोग। राजस्थान के सवाई माधोपुर में गर्मी ने बढ़ाई बेजुबानों की परेशानी, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास 45 डिग्री टेम्परेचर। गुजरात के गांधीनगर में दिखा आस्था का अनोखा नजारा, भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा का सूर्य तिलक हुआ। ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बने हजारों श्रद्धालु, जयकारों भक्ति भाव से गूंजा मंदिर परिसर। 41 सालों से चली आ रही परंपरा, 22 मई को हर साल किया जाता है भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा का सूर्य तिलक। गांधीनगर में दिखा विज्ञान और वास्तुकला का अद्भुत संगम, श्रद्धालुओं में दिखाई दिया उत्साह। दोपहर 2:07 पर हुआ ये सूर्य तिलक, मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। चमोली के गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू, पहले जत्थे को पंच प्यारों की अगुवाई में अरदास के बाद रवाना किया। सिखों का पहला जत्था रवाना होने से पहले श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में टेका मत्था, जो बोले सोनेहाल के लगाए जयकारे। 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हेमकुंड साहिब पहुंचेंगे श्रद्धालु, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। हेमकुंड साहिब यात्रा के दूसरे पड़ाव घंघरिया में आज रात करेंगे विश्राम, कल खुलेगा पवित्र धाम का कपाट। उत्तराखंड में दिखा बाबा भोलेनाथ का अनोखा भक्त, मध्य प्रदेश से एक पैर पर चलकर बद्रीनाथ पहुंचा ये युवक। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, श्रद्धालुओं ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद रजत चंद्र त्रिशूल मुकुट आभूषण अर्पित कर दिव्य श्रृंगार हुआ। एमपी के धार में भोजशाला में सुबह सुबह हुई पूजा, भगवान की उतारी आरती। पुरी में भगवान जगन्नाथ की उतारी गई विशेष आरती, श्रद्धालुओं ने लगाए भगवान जगन्नाथ के जयकारे। भगवान जगन्नाथ की आरती के लिए और दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चमोली में स्थित लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के खुले कपाट, श्रद्धालुओं ने मंदिर में की पूजा अर्चना। बर्फबारी ने किया भगवान लक्ष्मण का श्रृंगार, हेमकुंड साहिब के साथ श्रद्धालु लक्ष्मण मंदिर में करेंगे दर्शन। गोरखपुर में सीएम योगी ने गाय को खिलाया चारा, बछड़ों को दुलारा। देवरिया को सीएम योगी ने दी 655 करोड़ की सौगात, 19 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। राजस्थान के डूंगरपुर में सीएम भजन लाल ने गांव के लोगों से की मुलाकात, स्थानीय लोगों की सुनी फरियाद। हिमाचल प्रदेश में नया टूरिस्ट स्पॉट बना, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र, बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे रॉक गार्डन। डलहौजी के पास है नया टूरिस्ट स्पॉट रॉक गार्डन, पहाड़ों के बीच बहते ठंडे पानी के प्राकृतिक स्रोत का सैलानी मजा ले रहे। दिल्ली के एपीएफओ में तैनात रीजनल कमिश्नर रिजवान दे रहे फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश, साइकिल से जाते हैं ऑफिस। 55 साल के रिजवान साल 2012 से लगातार घर से ऑफिस का सफर साइकिल से कर रहे, रोजाना तय करते हैं करीब 17 किलोमीटर का सफर। दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम, ऊबर कार पूलिंग सर्विस को हरी झंडी। बीएसएफ की महिला पर्वतारोहियों ने रचा इतिहास, मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा। महिलाओं ने साहस और हौसले की नई मिसाल कायम की, पहली बार बीएसएफ की महिला पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट की चोटी से वंदे मातरम गाया। बीएसएफ ने बहादुर महिला पर्वतारोहियों को किया सलाम, टीम में लद्दाख की कौसर फातिमा, पश्चिम बंगाल की मुनमुन घोष, उत्तराखंड की रेबेका और कारगिल की स्टेरिंग चोरुल शामिल। अमित शाह ने बीएसएफ की महिला जवानों को दी शुभकामनाएं, लिखा बीएसएफ की महिला जवानों ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर स्वर्ण में इतिहास रच दिया। आईटीबीपी की महिला अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण ने रचा नया इतिहास, माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा। राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पहली पीर पंजाल शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन, खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में 165 से ज्यादा खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, भारी संख्या में महिला प्रतिभागी पहुंची। नशा मुक्त समाज की पहल को लेकर चैंपियनशिप का आयोजन, से नो टू ड्रग्स यस टू स्पोर्ट्स के तहत कार्यक्रम। स्थानीय खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने के लिए पहली बार मिला इतना बड़ा मंच, बड़े पैमाने पर पहली बार आयोजित हुए कार्यक्रम से खेलों के प्रति रुचि जगाना कार्यक्रम का मकसद। टूर्नामेंट विजेताओं को दिए गए पुरस्कार, युवाओं को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी इसका मकसद रहा। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, मामलों का जल्द निपटारा देने का भरोसा। राजौरी में खेल को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफ की पहल, जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में कई जिलों की टीमें ले रही हिस्सा, महिलाओं ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। अहमदाबाद में पुलिस ने कर्मचारियों के बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया, बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हुए। समर कैंप में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, बच्चों ने किया जमकर डांस। ईंधन संरक्षण की दिशा में लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के जजों की शानदार पहल, 50 से ज्यादा जज और न्यायिक अधिकारी साइकिल से पहुंचे कोर्ट में। हाईकोर्ट के जजों ने लोगों को किया जागरूक, कहा इससे ईंधन की बचत के साथ साथ स्वास्थ्य भी आपका ठीक होगा। अमृतसर के जब्बोवाल स्कूल के छात्रों का कमाल, विकसित भारत बिल्डथॉन में जीता बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के अलंकरण समारोह में जवानों को किया सम्मानित, कहा भारत ने आतंकवाद और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंचे साइप्रस के राष्ट्रपति, दोनों देशों के संबंधों की मजबूती को लेकर चर्चा। गुजरात की राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा, 18 जून को होने वाले चुनाव में सभी सीटें निर्विरोध होने की पूरी संभावना। राज्यसभा में 12 राज्यों से खाली हो रही 26 सीटों पर चुनाव, 18 जून को होंगे उपचुनाव। 1 जून को जारी होगी चुनाव के लिए अधिसूचना, 8 जून तक होंगे नामांकन। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी का पहला दिल्ली का दौरा, पीएम मोदी के साथ की मुलाकात। दिल्ली दौरे के दौरान राजनाथ समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बीजेपी नेतृत्व से शिष्टाचार भेंट भी संभव। आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच में खेला जाएगा एक इम्पॉर्टेंट मैच, हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ये मैच। दोनों टीमों के लिए ये आखिरी लीग मैच शीर्ष दो में अपनी जगह पक्की करने पर टिकी हैं दोनों की निगाहें। इस अहम टक्कर के लिए हैदराबाद और बंगलुरु दोनों ही टीमों का जोश हाई, अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही दोनों टीमें। सनराइजर्स के खिलाफ मैच से पहले आरसीबी को मिली राहत, रजत पाटीदार फिट घोषित, केकेआर के खिलाफ मैच में रजत को सिर में लग गई थी चोट। हेड टू हेड मुकाबलों में हैदराबाद की टीम का पलड़ा भारी, अब तक खेले गए 27 मुकाबलों में से हैदराबाद ने 14 और बंगलुरु ने जीते 12। कान फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का ग्लैमरस लुक एवा लोंगोरिया के साथ शेयर की खूबसूरत तस्वीरें। कान फिल्म फेस्टिवल में पंजाबी सिंगर कलाकार मीत कौर का बोल्ड लुक रेड कार्पेट पर बढ़ाया भारत का मान। साउथ मेगा स्टार चिरंजीवी की आगामी फिल्म मेगा 158 की शूटिंग शुरू, मुहूर्त शॉट के लिए क्लैप देते पहुंचे सुपरस्टार पवन कल्याण। रॉक किंग मंचू मनोज के बर्थडे पर डेविड रेड्डी का टीजर आउट, ब्रिटिश काल की दिखाई दी इस फिल्म में झलक। मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ ऑरा वर्ल्ड टूर में अपने गीतों से बिखेर रहे जलवा, टेनेसी के प्रसिद्ध ब्रिजस्टोन एरिना में म्यूजिक कॉन्सर्ट। आर माधवन की नई फिल्म जीडीएन का ऐलान, धासु पोस्टर रिलीज, जीडी नायडू की कहानी से उठेगा पर्दा। नेटफ्लिक्स पर आज से धुरंधर के रॉ और अनदेखे वर्जन आप देख सकते हैं, रोमांचक दुनिया में लेकर जाएगी फिल्म, देखिए ताबड़तोड़ एक्शन। फिल्म चांद मेरा दिल सिनेमाघरों में हुई रिलीज, फिल्म में लक्ष्य और अनन्या पांडे का अहम रोल। Amazon Prime Video पर फिल्म सिस्टम रिलीज, फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा का लोक अभियोजक का रोल जबकि ज्योतिका का स्टेनोग्राफर का रोल। जी प्राइम पर रिलीज हुई वेब सीरीज सतरंगी बदले का खेल, फिल्म में अंशुमन पुष्कर, कुमुद मिश्रा और महवश की मुख्य भूमिका। चीन के चोंगकिंग में शुरू हुआ बड़ा रोबोटिक्स मेला, भविष्य बदलने वाले दिखे स्मार्ट रोबोट, भार उद्योग की नई ताकत बनेंगे। उपभोक्ता सेवाओं से बचाव अभियान तक पहुंचे स्मार्ट रोबोट, चोंगकिंग मेले में दर्जनों हाईटेक रोबोट बने आकर्षण का केंद्र। चीन में चिकित्सा क्षेत्र में रोबोट तकनीक ने दिखाई नई छलांग, स्मार्ट कृषि में तेजी से बढ़ रहा रोबोट का इस्तेमाल। सुरक्षा रेस्क्यू मिशन में उतरे एडवांस रोबोट, मेले में एआई और रोबोटिक्स का दमदार संगम भी दिखाई दे रहा। स्मार्ट बदलाव की रफ्तार की तरफ बढ़ रहे हाईटेक रोबोट, मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं में रोबोट बने मददगार। चीन में छोड़े गए हिम तेंदुओं ने पहली बार जंगल में परिवार बसाया, हेलन पहाड़ों में दिखा हिम तेंदुओं का दुर्लभ पल। इंफ्रारेड कैमरा में कैद मादा हिम तेंदुआ, उसके शावक की तस्वीर, वैश्विक हिम तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम को बड़ी सफलता। दक्षिणी और मध्य चीन में भीषण बाढ़, मूसलाधार बारिश से स्कूल कारोबार बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप। चीन के कई इलाकों में भारी बारिश पर रेड अलर्ट, राहत कार्यों के लिए 150 मिलियन युआन जारी। चीन के ल्यूझोउ में 80 से ज्यादा स्ट्रे कैट्स की देखभाल में जुटे वॉलंटियर्स, कैट शेल्टर में बिल्लियों ने ली शरण।
4: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: रोती बिलखती रही महिला, नहीं रुका बुलडोजर। बंगाल में बीजेपी समर्थक के घर पर चला बुलडोजर। सरे राह एक लड़की को क्यों चाकू से गोदा गया। सिर्फ हाथों के बल पर एवरेस्ट फतह। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए शगुफ्ता के साथ, फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
9: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: Today banata hai.
11: Good news today.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देखिए बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है नितेश तिवारी की रामायण। फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई लेकिन कमाई के मामले में पहले ही बड़े बड़े रिकॉर्ड्स के लिए खतरा बनने लगी है। खबर ये आई है कि मेकर्स ने सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए पूरे 450 करोड़ रुपए की डिमांड रख दी है, यानी रिलीज से पहले ही फिल्म का भाव आसमान छू रहा है।
2: रिलीज से पहले ही इतिहास रचने जा रही है रामायण। बड़े पर्दे पर किंग का रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी तैयारी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज से पहले ही सिनेमा की दुनिया में हलचल मचाने का दम रखती हैं। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण भी कुछ ऐसा ही धमाल मचाने की तैयारी में है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही मेगा बजट फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमक दिखाने लगी है। सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि फिल्म के मेकर्स को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। शायद यही वजह है कि मेकर्स ने फिल्म के सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए 450 करोड़ की भारी भरकम मांग रखी है। अगर राइट्स के लिए 450 करोड़ की डील हो जाती है तो ये शाहरुख खान की किंग के मौजूदा रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा होगी। किंग के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की डील करीब 250 करोड़ में हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो रामायण के थिएट्रिकल राइट्स की डील पर जल्द मुहर भी लग सकती है। अगर ये डील 300 से 400 करोड़ की बीच फाइनल होती है तो भी ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड होगा। कामयाबी की उम्मीदों के आंकड़े सिर्फ थिएट्रिकल राइट्स की डील में ही नहीं दिख रही। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा डिजिटल राइट्स के लिए 1000 करोड़ की महा डील पर भी नजरें टिकाए हुए हैं। नमित इस डील के लिए इंडस्ट्री के कई दिग्गजों से बातचीत करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स की तरफ से फिल्म के दोनों पार्ट्स की कंबाइंड स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए मेकर्स को 700 करोड़ का ऑफर मिला था लेकिन नमित मल्होत्रा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और वो डिजिटल राइट्स के लिए 1000 करोड़ की डील ही चाहते हैं। जाहिर है अगर ये दोनों डील पक्की हो जाती है तो ये फिल्म पर्दे पर आने से पहले ही टेबल प्रॉफिट का नया इतिहास रच देगी। रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायण एक भव्य पौराणिक फिल्म है। इस फिल्म में रणबीर भगवान राम की भूमिका में हैं और साउथ के सुपरस्टार यश रावण का किरदार निभा रहे हैं। माता सीता का किरदार साई पल्लवी ने निभाया।

0: गुड न्यूज टुडे के लिए आपका टीरी गढ़वाल से स्वागत करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे टीरी गढ़वाल के सुदूर क्षेत्र घनसाली क्षेत्र में चूल्हागढ़ बासर में मौजूद हूँ। अभी मैं यहाँ चूल्हागढ़ धाम में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर, यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे लगातार जो है कार्यक्रम होते रहते हैं, सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं और इस क्षेत्र से हमारे पूरे क्षेत्र का नज़ारा दिखता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि घूमने के लिए जो है अपने अपने ही देश में जो अलग अलग रमणीक स्थानों पर जाए, तो हमारे उत्तराखंड में टिहरी में भी बहुत ही सुंदर स्थान है। इधर हमारा इधर टिहरी गढ़वाल में ही पवाली कांठा और कई प्रकार के ट्रैकिंग है, मासर ताल है, इधर चिकेता ताल है और टिहरी झील है और कई अन्य प्रकार के यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं और धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे बुढ़ा केदार हो गया और सुरकंडा देवी हो गया, इधर ये चूल्हागढ़ हो गया।
1: नाम सुना है ये जो राजराजेश्वरी देवी है और ये जो भूमि है, अनेक ऋषि मुनियों ने यहाँ पे तप किया और ये सुंदर भूमि, हमने जो है कई हमारे जानकार रहते हैं उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो है भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, इसलिए मंदिर को देखने के लिए आए। जो भगवान पे आस्था रखते हैं उनके लिए ये दिव्य स्थान है, उनको जरूर जो है यहाँ पे आना चाहिए। जो आनंद की अनुभूति आज हमें यहाँ इस स्थान पर हुई है, वो आनंद की अनुभूति आपको कहीं भी नहीं हुई है। ये सिद्ध क्षेत्र है और जरूर आप आए और माँ भगवती के चरण में प्रार्थना करें।
0: यहाँ पे पूरे देश के पर्यटक यहाँ पे मैं उनका स्वागत करता हूँ कि वो यहाँ पे आए और इन रमणीक स्थानों का जो है भ्रमण करें अपने परिवार के साथ।
2: वैश्विक संकट के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील तो कर ही चुके हैं कि लोग विदेश दौरों से बचें, अपने ही देश में घूमें फिरें। तो आप भी संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा और बनाइए व्लॉग और हमें 7303409922 नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसे GNT पर दिखाएंगे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
4: गुजरात के गांधीनगर में स्वामी महावीर का हुआ सूर्य तिलक, श्री महावीर जैन आराधन केंद्र में दोपहर 2:07 पर बना शुभ संयोग, अलौकिक घटना के गवाह बने हजारों भक्त। उत्तराखंड के चमोली में बदला मौसम का मिजाज, पवित्र बद्रीनाथ धाम में झमाझम बारिश के बाद गिरा पारा, उत्साह उमंग के साथ मंदिर में दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु। चमोली के गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू, अरदास के बाद पंच प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे की रवानगी, कल से खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी से बदला नजारा, सफेद बर्फ की चादर से ढकी दिखी वादियां, सैलानी जमकर उठा रहे लुत्फ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा, नैनीताल मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों तक गर्मी का असर, दोपहर के वक्त सावधानी बरतने की सलाह। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एंटी ड्रग रैली के जरिए जागरूकता संदेश, बैनर और पैम्पलेट्स लेकर सड़क पर उतरे सिविल सोसाइटी के सदस्य, स्थानीय पुलिस के साथ सीआरपीएफ का मिला साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके।
4: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और यहाँ पर रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है 19 लाख श्रद्धालुओं ने किए चार धाम दर्शन। आपको बता दें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आस्था का आलम ऐसा है कि कोई सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर बाबा के दरबार पहुंच रहा है, तो कोई कठिन मौसम और पहाड़ी रास्तों की परवाह किए बगैर लगातार यात्रा कर रहा है।

0: कंधों पर सामान, होठों पर भगवान का नाम और दिल में दर्शन की आस लेकर श्रद्धालु लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं भजन कीर्तन की गूंज है, तो कहीं हर हर महादेव के जयकारों से पूरा देवभूमि भक्तिमय हो उठा है। देवभूमि की हर दिशा में आस्था, भक्ति और विश्वास का अटूट संगम इन दिनों देखने को मिल रहा है। चार धाम यात्रा में कोई सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय कर बाबा के दरबार पहुंच रहा है, तो कोई कठिन पहाड़ी रास्तों पर कदम बढ़ा रहा है। एक पैर के सहारे ये भक्त बाबा केदार के धाम पहुंचा है। एक पैर नहीं है, लेकिन आस्था में कोई भी कमी नहीं है। एक पैर के साथ किसी तरह नीचे बैठते बैठते महादेव का ये भक्त केदारनाथ धाम पहुंचा। आस्था की ऐसी ही भव्य तस्वीर बद्रीनाथ के धाम से भी आई है, जहां 15 लोगों का समूह मध्य प्रदेश से पैदल यात्रा करते हुए चार धाम यात्रा कर रहा है। 3 मई को चले ये यात्री आज रुद्रप्रयाग पहुंचे। एक सप्ताह के भीतर इनका बद्रीनाथ धाम जाने का लक्ष्य है। बद्री विशाल के दर्शन के बाद ये लोग केदारनाथ सहित गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर पैदल ही निकलेंगे।
1: कोई दिक्कत नहीं, आराम से असली जा रहे हैं, असली।
0: चार धाम यात्रा किसी के लिए तपस्या है, किसी के लिए जीवन का सबसे बड़ा सपना, तो किसी के लिए भगवान के प्रति अटूट समर्पण और ये आस्था ही है कि महज एक महीने में करीब 19 लाख लोगों ने चार धाम यात्रा कर ली है। सबसे ज्यादा उत्साह केदारनाथ धाम में देखने के लिए मिल रहा है। ये पहली बार है जब बाबा केदार के द्वार पर एक महीने में 7.5 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे हैं। हर रोज 25 से 30 हजार के बीच यात्री बाबा केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं।
2: इन दिनों बाबा केदार का पैदल यात्रा मार्ग होया मंदिर परिसर भक्तों से गुलजार है। सुबह से साय तक बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं।
0: केदारनाथ की यात्रा सबसे लंबी है, करीब 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। ऐसे में यात्रा सुगम तरीके से संचालित हो सके, इसके लिए प्रशासन भी एक्शन मोड में है। लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है, यात्रियों से फीडबैक लिया जा रहा है और यात्रियों को किसी प्रकार की कमी और असुविधा न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
3: ये यात्रा सुगम और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित है, इसी के संबंध में आज मेरे द्वारा सड़क मार्ग का निरीक्षण किया गया। आज सिरसी सोनप्रयाग पैदल और गाड़ी के माध्यम से इसे देखा गया है।
0: केदार और बद्रीनाथ ही नहीं, भक्तों का तांता उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी लगा है। कपाट खुलने के बाद से अब तक इन दोनों धामों में 6,45,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। जाहिर है चार धाम यात्रा ने इस बार आस्था और श्रद्धा के नए रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं।
4: यमुनोत्री धाम में 3,17,000 से भी अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुनोत्री नेशनल हाईवे के बड़कोट स्थान पर और ये वही स्थान है जहाँ पर यात्री पंजीकरण जांच की जाती है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से तीर्थयात्रियों के वाहनों का काफिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
0: यात्रा शुरू हुए अभी सिर्फ एक महीना ही हुआ है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या 19 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है और जिस रफ्तार से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उसे देखकर आने वाले दिनों में यात्रा के कई बड़े रिकॉर्ड बनने की उम्मीद जताई जा रही है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि सिखों का पवित्र तीर्थ और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट कल यानी कि 23 मई को खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए हेमकुंड साहिब यात्रा का मुख्य पड़ाव गोविंद घाट गुरुद्वारे से यात्रा शुरू हो गई है। इसी से जुड़ी हमारी आज की अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज है और वो है तैयारी पूरी, कल खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। आपको बता दें देवभूमि उत्तराखंड में पंच प्यारों की अगुवाई में आज गोविंद घाट गुरुद्वारा से पहली संगत हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो गई। श्रद्धालुओं को 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हेमकुंड साहिब तक पहुंचना होता है। यात्रा जितनी कठिन और मुश्किलों भरी होती है उतना ही उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या आम श्रद्धालु, हर कोई पूरे उत्साह के साथ गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो चुके हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा की रौनक देखते ही बन रही है। इस बार यात्रा के पहले ही दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गोविंद घाट गुरुद्वारे में अरदास, शब्द कीर्तन और हुक्मनामे के साथ पंच प्यारों की अगुवाई में जत्था घांगरिया के लिए रवाना किया गया। पंजाब बैंड की मधुर धुन के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में सिख संगत हेमकुंड साहिब के लिए पैदल रवाना हुई। आपको बता दें कि इस साल गोविंद घाट गुरुद्वारे को रंग बिरंगे फूलों से खूबसूरती के साथ सजाया गया। शनिवार को सुबह 9:30 बजे कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू होगी। 10 बजे शब्द कीर्तन होगा और 12:30 बजे साल की पहली अरदास हेमकुंड साहिब में पढ़ी जाएगी। इसी के साथ उत्तराखंड का 5वें धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी।
6: तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा इस समय शुरू हो चुकी है। पंच प्यारों की अगुवाई में अब पहला जत्था गोविंद घाट गुरुद्वारे से बैंडों की धुन के साथ अब हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो सिख संगत है वो पहुंची हुई है। ये वो पंच प्यारे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये पंच प्यारे हैं जिनके साथ अब पहला जत्था आज गोविंद घाट गुरुद्वारे से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो रहा है। इसके पीछे सैकड़ों हजारों की संख्या में जो सिख श्रद्धालु है, पहली संगत है, वो अब यहाँ से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो चुकी है। बड़ा उत्साह इस समय, बड़ी कठिन और दुर्गम यात्रा होती है हेमकुंड साहिब की क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे है, लेकिन जो सिख श्रद्धालुओं का उत्साह है वो बहुत ही जबरदस्त है। हाई अल्टीट्यूड में जाने का खासकर विशेष तौर पे विशेष इंतजाम करने के बाद यहाँ से ये लोग जाते हैं।
5: भारतीय रक्षा तकनीक के क्षेत्र में देश को एक और बड़ी सफलता मिली है। भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी नाइव लिमिटेड ने अपने स्वदेशी ड्रोन वायु अस्त्र 1 का तकनीकी परीक्षण पूरा कर लिया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है स्वदेशी वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण। नाइव लिमिटेड ने स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन वायु अस्त्र 1 का सफल तकनीकी परीक्षण कर लिया है। राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में किए गए परीक्षण में इस ड्रोन ने 100 किलोमीटर की दूरी पर सटीक निशाना लगाया और 10 किलोग्राम वॉरहेड के साथ एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर स्ट्राइक क्षमता का प्रदर्शन किया। परीक्षण के दौरान इस सिस्टम ने एक ही बार में 100 किलोमीटर दूर मौजूद अपने लक्ष्य पर बेहद सटीक निशाना लगाया। वायु अस्त्र 1 का सर्कुलर एरर प्रोबेबल यानी कि निशाने की चूक की गुंजाइश 1 मीटर से भी कम रही, जो इसकी अचूक मारक क्षमता को दिखाता है। इस परीक्षण के दौरान वायु अस्त्र 1 ने मिशन को बीच में रोकने, दोबारा हमला करने और वापस घूमकर हमला करने की अपनी बेहतरीन क्षमताओं का भी शानदार प्रदर्शन किया। मिशन पूरा होने के बाद इस ड्रोन को भविष्य के ऑपरेशंस के लिए सुरक्षित रूप से वापस रिकवर भी कर लिया गया। इस स्वदेशी तकनीक के आने से भारतीय सेना की ताकत सीमा पर कई गुना बढ़ जाएगी।
7: भारत की सेना को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए अब स्मार्ट म्यूनिशंस पर जोर दिया जा रहा है और इसी कड़ी में पुणे की नाइब कंपनी ने एक बार फिर वायु अस्त्र 1 का परीक्षण किया है। ये परीक्षण न सिर्फ रेगिस्तान यानी पोखरण में किया गया बल्कि मलारी जोशीमठ में भी इसका सफल परीक्षण किया गया, जिसमें 14,000 फीट की ऊंचाई पर इस लॉयटरिंग म्यूनिशन को देखा गया जिसने सटीकता से दुश्मन पर प्रहार किया। और इस लॉयटरिंग म्यूनिशन की अगर हम बात करें तो इसका एंड्योरेंस 90 मिनट का है, यानी कि ये एक बार में 1.5 घंटे तक हवा में रह सकता है और पूरी सटीकता से पिन पॉइंट प्रिसिशन के साथ न सिर्फ एंटी पर्सनल बल्कि एंटी आर्मर एक्टिविटीज और लक्ष्य को भी भेज सकता है। ये भारत के लिए स्मार्ट म्यूनिशंस की कड़ी में एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है।
5: देश में नक्सल आतंक का दौर समाप्त हो चुका है। नक्सली या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर सुरक्षा बल उनका खात्मा कर रहे हैं। झारखंड में 27 नक्सलियों ने अपने हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया तो वहीं छत्तीसगढ़ के जंगलों में सुरक्षा बल नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद जंगलों को आईडी मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है और वो है नक्सल आतंक खत्म, सुरक्षा बलों का अभियान शुरू। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में सुरक्षा बल ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं। इस ऑपरेशन में जंगलों को आईडी मुक्त करने का अभियान चल रहा है।

0: झारखंड में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ पर 27 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में सभी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करके अपने हथियार प्रशासन को सौंप दिए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों में से 25 भाकपा माओवादी संगठन के हैं, जबकि 2 JJMP उग्रवादी संगठन से जुड़े हैं। सरेंडर करने वाले भाकपा माओवादियों का ये दस्ता कोल्हान के बेहद दुर्गम पहाड़ी व जंगली इलाकों में सक्रिय था। इस दस्ते ने पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों की हत्या करने और ताबड़तोड़ IED ब्लास्ट करने जैसी कई वारदातों को अंजाम दिया था।
1: जितने माओवादी सरेंडर कर रहे हैं, तथा जो खून में ही सरेंडर कर चुके हैं, कोरोना संहिता जो भी आवश्यकता है अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इससे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे।
0: पुलिस के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वाले इन उग्रवादियों के खिलाफ राज्य के विभिन्न थानों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। सरेंडर के दौरान नक्सलियों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी सुरक्षा बलों को सौंप दिए हैं। इनमें 1 LMG, 4 इंसास राइफल, 9 SLR, 1 बोल्ट एक्शन राइफल, 1 पिस्टल और 8 वॉकी टॉकी शामिल है।
2: झारखण्ड के कार्वाउट होने के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब 25 से ज्यादा नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है। यहाँ आप हथियारों का जखीरा देख सकते हैं जो उनके पास से बरामद किया गया है। ये देखिए, सबसे बड़ा हथियार जो है वो LMG है, फिर इंसास है।
0: इधर छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल आतंक खत्म होने के बाद सुरक्षा बलों ने एक बड़ा अभियान चलाया है। सरेंडर कर चुके नक्सलियों की निशानदेही पर छत्तीसगढ़ के जंगलों में सबसे बड़ी डीमाइनिंग एक्सरसाइज यानी नक्सलियों द्वारा छिपाए गए माइंस को हटाने का काम चल रहा है।
3: ये तमाम DRG के जवान हैं जो कि इस वक्त घने जंगलों में IED ढूंढी जा रही, क्योंकि जब से इन घने जंगलों में नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हुआ है, यहां पर जो नक्सलियों ने चाहे वो पहाड़ हो या फिर पथरीले इलाके, इन तमाम जगहों पर उनके द्वारा IED को छोड़ा गया, जिसका कि लगातार यहां पर DRG के जवान खोजबीन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जिस तरीके से DRG के जवान जब IED खोज रहे थे तो 4 जवान उनके शहीद हो गए थे, इसलिए काफी सावधानी इस वक्त बरती जा रही है।
0: CRPF की टीम अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। IED सर्च करने के लिए रोड के किनारे के क्षेत्रों में जहां सड़क बन चुकी है उसके आसपास के इलाकों में खोज चल रही है। इसमें डॉग स्क्वाड और आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अबूझ माड़ के जंगलों में जमीन में छुपे विस्फोटकों को ढूंढने का काम ऑपरेशन क्लीन के तहत चल रहा है, जिसमें जवान लैंड माइंस खोजने में जुटे हैं। गहराई में IED वायर को ढूंढने के लिए सावधानी पूर्वक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए CRPF के जवान ट्रैक्टर और ग्राउंड पेनेट्रेनिंग रडार का सहारा ले रहे हैं।
4: लगभग 2000 से अधिक IDs को सिक्योरिटी फोर्सेस ने आइडेंटिफाई करके उसका सेफली डिफ्यूज किया गया। आने वाले समय में भी हमारा प्राथमिकता यही रहेगा IDs को आइडेंटिफाई करना, उसका सेफली डिफ्यूज करना, ताकि इलाका में किसी प्रकार का कोई IED ब्लास्ट से किसी का कोई जनहानि या मालहानि ना हो, ये हमारा प्राथमिकता रहेगा।
0: देश से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में नक्सलियों का बिछाया बारूद जमीन के अंदर दफन है। लेकिन अब सुरक्षा बल उसे तेजी से हटाने के अभियान में जुटे हैं, जिससे एक बार फिर से इन राज्यों में विकास रफ्तार पकड़ सके। बस्तर से जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे।
5: बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार ने 2021 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसे एक गांव के एक स्कूल को 1 करोड़ डोनेट किया था। अक्षय कुमार के इन रुपयों से उस स्कूल की पूरी तस्वीर बदल गई है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। गुरेज में अक्षय कुमार के सपनों का स्कूल। आपको बता दें कि गुरेज घाटी के सुदूर इलाके में स्थित सरकारी मिडिल स्कूल नीरो तुलेल के बच्चे अक्षय कुमार को याद कर रहे हैं, क्योंकि अक्षय कुमार के 1 करोड़ रुपए से पूरे संस्थान के शैक्षिक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, जिससे स्थानीय बच्चों के लिए नई उम्मीदें और अवसर पैदा हुई हैं।
6: आम लोगों के साथ नाचते गाते मस्ती करते बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार की तस्वीरें भले ही पुरानी हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी हुई एक शानदार कहानी है। ये तस्वीरें 2021 की हैं, जब अक्षय कुमार बीएसएफ के जवानों के न्योते पर जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में स्थित तुलैल इलाके में आए थे। अक्षय कुमार का ये सफर इस इलाके के लोगों के लिए सिर्फ इस मायने में ही यादगार नहीं है कि बॉलीवुड के इतने बड़े सितारे से उन्हें मिलने जुलने का मौका मिला, बल्कि अक्षय ने अपनी कश्मीर यात्रा के जरिए इस इलाके में बदलाव की अनूठी इबारत भी लिख दी।
7: तुलैल कश्मीर में सबसे दूर दराज इलाका है जो बांडीपोरा जिले में आता है, नियंत्रण रेखा से सटा हुआ है, लेकिन तभी तुलैल में जाकर अक्षय कुमार ने वहां पर लोगों से मिलकर, खासतौर से बच्चों से मिलकर, उन्हें आश्वासन दिया था कि वो यहां पर एक ऐसा स्कूल बनवाएंगे जो किसी भी स्कूल की हर तरह की सुविधा से बेहतर होगी।
6: तुलैल के नीरू गांव में सरकारी मिडिल स्कूल की इमारत के सामने रखा ये बैनर अक्षय कुमार के उसी वादे की दास्तां बयां कर रहा है जो उन्होंने 2021 में यहां के बच्चों और आम लोगों से किया था। अक्षय कुमार ने स्कूल की नई इमारत बनवाने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए थे, जिससे अब यहां पर न केवल स्कूल की शानदार इमारत खड़ी है बल्कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं।
8: पहले तो हमारे पास स्कूल नहीं था, फिर अक्षय कुमार साहब आए जिन्होंने हमें स्कूल दिया।
9: बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो हमें अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। पहले तो हमें एक्टिविटीज करने के लिए लाइब्रेरी नहीं थी, बट अब हमारे पास लाइब्रेरी है।
6: अक्षय कुमार की ओर से की गई मदद की पहल ने स्कूल की तस्वीर बदल दी है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए साफ सुथरे, बेहतरीन माहौल और इंतजामों के साथ यहाँ पर मिड डे मील की भी सुविधा मिलती है, लिहाजा सभी के चेहरों पर हंसी खुशी और सुकून साफ साफ देखा जा सकता है। तुलैल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: इसराइल ईरान तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में अब भारत तेजी से ग्रीन मोबिलिटी की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। हमारी आज की अगली यानी कि छठी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है और वो है हैदराबाद में ईवी लेने वालों को प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन की खपत कम करने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन अपनाने की अपील के बाद हैदराबाद की एक कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक विशेष ग्रीन पॉलिसी की घोषणा की। इस नीति के तहत कंपनी इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर खरीदने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपए और टू व्हीलर खरीदने वालों को 5,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान कर रही है।

0: विश्व में गहराते आर्थिक संकट, लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें और वैश्विक तनाव के बीच अब ईंधन बचत को लेकर देश में नई पहल शुरू होने लगी है। जब से देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कम ईंधन खर्च करने, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और कार पूलिंग बढ़ाने की अपील की, तभी से प्रधानमंत्री की इस अपील का असर जमीन पर भी नजर आने लगा है। हैदराबाद की AJA कंसल्टिंग सर्विसेज LLP ने अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आर्थिक प्रोत्साहन देने का बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपए और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने वालों को 5,000 रुपए की सहायता देने का फैसला लिया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए आदेश यानी पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करने, कार पूलिंग करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करने का पालन करते हुए एक प्राइवेट कंपनी, हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी ने अपने ही एम्प्लॉयज को कहा है कि ईवी व्हीकल्स खरीदिए और कैश प्राइजेस या फिर चेक्स हमारी तरफ से ले जाइए। 250 एम्प्लॉयज से चलने वाली ये कंपनी के मालिक ने इस नियम का पालन करते हुए उनके एम्प्लॉयज जो ईवी व्हीकल्स रजिस्टर कर रहे हैं उनको चेक्स भी बरामद कर दिए।
0: दरअसल हैदराबाद की ये कंपनी कर्मचारियों के लिए ग्रीन पॉलिसी लेकर आई है, जिसके तहत कर्मचारियों को पर्यावरण के अनुकूल परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
2: क्रिटिकल सिनेरियोस देखो आप, या अभी जो भी चल रहा है पूरा दुनिया में, वो सब अंदाज करते हुए, अंदाज में रखते हुए और जो फॉरेन रिजर्व्स है कंट्री का उसको सेव करना है, ये सब मंशा मन में रखे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कॉल दिया है नेशन के लिए, उसके लिए हैदराबाद से मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, मैं इंकरेज करना चाहता हूँ लोगों को कि प्लीज डू दिस, क्योंकि ये एक एक एक एक बंदा जो भी करता है वो पूरा देश के लिए आगे जाके वो बहुत बड़ा बन जाता है।
0: वैसे इलेक्ट्रिक वाहन अब केवल एक विकल्प भर नहीं है बल्कि भविष्य की जरूरत भी बनते जा रहे हैं। ईवी से न सिर्फ पेट्रोल डीजल पर खर्च कम होता है बल्कि प्रदूषण भी काफी हद तक घटता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन में मेंटेनेंस की लागत भी कम होती है, वहीं चार्जिंग की लागत भी ईंधन के मुकाबले काफी कम रहती है।
3: मेरी कंपनी में जब प्रधानमंत्री ने ये योजना जो निकाली है, ये योजना निकालने के बाद हमारे CEO ने ये लॉन्च करा कि एक नोटिस जारी करा था जिसमें सब्सिडी के बारे में बताया था कि फोर व्हीलर में आपको 10,000 मिलेगा और टू व्हीलर पे 4,000 मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे पता लगी, मेरे किसी एम्प्लॉई ने बताया कि मैंने भी ये ईवी ली है सो इसमें ये सब्सिडी मिल रही है तो आप ये भी ले सकते हो, तो मुझे अच्छा लगा। और वैसे ही मैं रोज आ रहा था, रोज के 200-300 पेट्रोल में फूक जाते थे सो मुझे भी प्लान कर ही रहा था मैं कि लेते हैं कि भाई अपना पैसा बचेगा बढ़िया और बिजली बिल में जाके उतना हो ही जाना है।
4: ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है उन लोगों के लिए जो पर्यावरण के बारे में सोचते हैं और कुछ करना चाहते हैं उसके लिए, और जो गाड़ी भी खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा उपाय है कि फ्यूल वैसे भी अभी बहुत ज्यादा बचत करनी पड़ रही है, तो ईवी में अगर जाते हैं तो बहुत सारा पैसा हम फ्यूल के लिए बचा सकते हैं और वही पैसा हम फिर EMI के थ्रू भी यूज कर सकते हैं।
0: इसराइल ईरान तनाव के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में ईंधन बचत, कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ता कदम आने वाले समय की बड़ी जरूरत माना जा रहा है। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: पूरे उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। संगम नगरी प्रयागराज में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। ऐसी स्थिति में राहगीरों को राहत पहुंचाने की पहल प्रयागराज नगर निगम ने की है। नगर निगम की ओर से शहर के प्रमुख चौराहों पर प्याऊ लगाए गए हैं। ऐसे में आज की हमारी सातवीं गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है और वो है प्रयागराज में जल सेवा अभियान। चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकलने वाले लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रयागराज नगर निगम ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर प्याऊ लगवाए हैं। इसमें एक टेंट लगाकर 4 मिट्टी के घड़े रखे गए हैं। इन घड़ों में शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। भीषण गर्मी में ये प्याऊ आम लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं, खासतौर पर बाहर निकल रहे स्टूडेंट्स और कामकाज के लिए निकलने वाले लोग यहाँ पर पहुंचकर निशुल्क शीतल पेयजल पीकर अपने गले को तर कर रहे हैं। लोगों ने भी नगर निगम की इस पहल का स्वागत किया है। ऑटो, ई रिक्शा चालक, छात्र और सामान्य व्यक्ति भी इन प्याऊ पर पहुंचकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। नगर निगम की ओर से म्योहाल चौराहे और धोबीघाट चौराहे समेत कई स्थानों पर प्याऊ लगाए गए हैं। जिससे चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में राहगीरों को ठंडे पानी से राहत का एहसास हो रहा है। तो इसी के साथ 7 बजे सात गुड न्यूज में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
7: रोती बिलखती रही महिला, नहीं रुका बुलडोजर। बंगाल में बीजेपी समर्थक के घर पर चला बुलडोजर। सरे राह एक लड़की को क्यों चाकू से गोदा गया। सिर्फ हाथों के बल पर एवरेस्ट फतह। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए शगुफ्ता के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
8: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
9: It's my music and it's my station.
8: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
1: La Que Buena.
0: ESPN Radio.
2: We know LeBron has to be the best player on the planet to
0: The Daily.
3: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
8: गुजरात के गांधीनगर में स्वामी महावीर का हुआ सूर्य तिलक, श्री महावीर जैन आराधन केंद्र में दोपहर 2:07 पर बना शुभ संयोग, अलौकिक घटना के गवाह बने हजारों भक्त। उत्तराखंड के चमोली में बदला मौसम का मिजाज, पवित्र बद्रीनाथ धाम में झमाझम बारिश के बाद गिरा पारा, उत्साह उमंग के साथ मंदिर में दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु। चमोली के गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू, अरदास के बाद पंच प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे की रवानगी, कल से खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश कर दिया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोस दी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है। कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर रहती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इसे सच मानकर शेयर कर देते हैं। यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ कर देते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले फैक्ट चेक में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि महिला पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर खुशी मना रही थी, लेकिन अब राज्य की नई सरकार ने इसी का घर गिरवा दिया। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, बताएंगे आपको। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के साथ जुड़ी है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि एक हिंदू लड़की से इश्क करने पर एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई। क्या है वायरल दावे की यहां पर सच्चाई, वो भी आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
9: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर खुशी मना रही महिला का घर नई सरकार ने बुलडोजर से गिरा दिया। वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करती इस रिपोर्ट में देखिए।

0: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। हाल ही में हावड़ा रेलवे स्टेशन और सियालदा रेलवे स्टेशन के बाहर ये अभियान चलाया गया। वहीं कोलकाता के तिलजला इलाके में अतिक्रमण हटाने को लेकर वहां के स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच टकराव हुआ, इसमें 8 जवान घायल हो गए। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो शेयर करते हुए कुछ लोग लिख रहे हैं कि एक महिला जो बंगाल में बीजेपी की जीत की खुशी मना रही थी, राज्य की नई सरकार ने उसी का घर गिरवा दिया। वीडियो में एक के बाद एक दो क्लिप्स नजर आती हैं। पहली क्लिप में भगवा टी शर्ट पहने हुए और भगवा गुलाल लगाए हुए एक महिला मजेदार स्टाइल में डांस करती दिख रही है। वहीं दूसरी क्लिप में टूटी फूटी इमारतों के बीच खड़ी एक महिला रो रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कई लोगों का कहना है कि जो महिला बंगाल में बीजेपी की जीत की खुशी में नाच रही थी, उसी का घर बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद तोड़वा दिया। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बंगाल में चुनाव के समय यह अंध भक्तिन खूब नाच नाच कर डांस कर रही थी बीजेपी के लिए। बीजेपी बंगाल जीती, फिर बुलडोजर चला तो इस अंध भक्तिन का घर भी लपेटे में आ गया। अब कह रही है बीजेपी को नहीं जीतना चाहिए था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये महिला पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर खुशी मना रही थी, लेकिन अब राज्य की नई सरकार ने इसी का घर गिरवा दिया। अब ये महिला रो रो कर ये बोल रही है कि बीजेपी को वोट देकर उसने गलती कर दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया। तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले दोनों वीडियोस के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में नजर आ रही दोनों ही महिलाओं के चेहरे को जूम करके हमारी टीम ने जब ध्यान से देखा तो ये सामने आया कि दोनों महिलाएं अलग अलग हैं। मतलब दो वायरल क्लिप्स को जोड़कर इस वीडियो को तैयार किया गया है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके अलावा पहला सवाल क्या है इसी वीडियो से रिलेटेड, वो आपको दिखा देते हैं। अगर दावा वाकई सही है तो वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए सियासी अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। आखिर सच्चाई क्या है, आपको इस वीडियो में दिखाते हैं।
0: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल के लिए दोनों वीडियो की जांच की। पहली क्लिप में गुलाबी रंग का एक मंदिर नजर आ रहा है। सर्च के जरिए इसके बारे में हमें पता लगा कि ये पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नतुनपुल्ली न्यू टाउन इलाके का राधा कृष्ण मंदिर है। गूगल मैप्स पर भी इस मंदिर की तस्वीरें मौजूद हैं। साफ पता चलता है कि ये उसी मंदिर की तस्वीरें हैं जो वायरल वीडियो में नजर आ रहा है। सर्च के जरिए साफ हो गया कि ये वीडियो न्यू टाउन का ही है और इसमें दिख रही महिला मानसी हल्दर नाम की बीजेपी समर्थक है जो 4 मई को चुनाव नतीजों के दिन बीजेपी की जीत की खुशी मनाते हुए डांस रही थी। मानसी और उनके पति सुखरंजन हल्दर दोनों ही बीजेपी समर्थक हैं, जो न्यूटाउन के विवेकानंद पल्ली इलाके में रहते हैं और नई सरकार के गठन के बाद से अब तक इस इलाके में कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी क्लिप को रिवर्स सर्च करने से ये हमें एक न्यूज आउटलेट की 12 जून 2025 की रिपोर्ट में मिली। रोती हुई महिला वाला वीडियो इसी 10 मिनट 45 सेकंड की रिपोर्ट से लिया गया है। ये रिपोर्ट दिल्ली के कालकाजी में हुई डीडीए की बुलडोजर कार्रवाई से संबंधित है। वीडियो में महिला भगवान की मूर्ति पकड़कर खड़ी है और कह रही है कि बीजेपी के राज में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। वहां मौजूद दूसरे लोग भी रिपोर्टर से बातचीत के दौरान अपना घर तोड़े जाने पर दुख जाहिर कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अब वो कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इस वीडियो को उस वक्त कांग्रेस ने भी शेयर किया था और आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार के राज में दिल्ली में मंदिर भी तोड़ दिए गए। एक आधिकारिक न्यूज आउटलेट पर 11 जून 2025 को छपी एक खबर के मुताबिक कालकाजी के पास भूमिहीन कैंप इलाके में अवैध अतिक्रमण का यह मामला लगभग 10 साल कोर्ट में चला था, लेकिन झुग्गी वासियों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। कोर्ट के आदेश के बाद ही ये अवैध निर्माण गिराए गए थे। इस दौरान 344 घर गिराए गए थे जिनमें 1200 परिवार रहते थे। साफ है दोनों क्लिप्स में दिख रही महिलाएं अलग अलग हैं। पहली क्लिप बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की है, जहां मानसी हल्दर नाम की बीजेपी समर्थक 4 मई को पार्टी की जीत के बाद खुशी मना रही थी। वहीं दूसरी क्लिप जून 2025 में दिल्ली के कालकाजी में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान का है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक पर बीच बाजार में चाकू से हमला किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करके यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि एक हिंदू लड़की से इश्क करने पर एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई। वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करते इस वीडियो में देखिए।
2: सोशल मीडिया पर यह हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। एक शख्स के हाथ में चाकू है, निशाने पर एक व्यक्ति है जिसे पीछे से एक दूसरे व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है ताकि वो चाकू के वार से बच नहीं पाए। बीच सड़क पर ये खूनी खेल चल रहा है लेकिन कोई इसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। लोग वहां से गुजर रहे हैं लेकिन इनकी अनदेखी करके आगे बढ़ जा रहे हैं। यहां तक कि किसी ने पुलिस को भी इसके बारे में सूचना नहीं दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो को धार्मिक एंगल देकर धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है। लोग वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर इसे शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को सांप्रदायिक एंगल देकर वायरल करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़के को एक हिंदू लड़की से प्यार करना महंगा पड़ गया, बाजार में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले तो वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बड़े ही गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में एक बोर्ड नजर आया, उसमें तेलुगु में कुछ शब्द लिखे मिले, मतलब ये वीडियो तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश का हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लोकल मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन हाल फिलहाल में दावे की पुष्टि करती कोई ऐसी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे हमें वायरल दावे पर संदेह हो। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल, अगर दावा सही है तो वायरल वीडियो कब का है और कहां का है? दूसरा सवाल, कहीं रंजिश के वीडियो को जानबूझकर धार्मिक एंगल देकर वायरल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? आखिर सच्चाई क्या है? क्या है सच, क्या है झूठ? दिखाते हैं।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। उस दौरान हमें नवंबर 2025 की कई तेलुगु भाषा में छपी रिपोर्ट्स मिली जिसमें वायरल हो रहे वीडियो के क्लिप का इस्तेमाल किया गया था। 5 नवंबर 2025 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी बालेश्वर रेड्डी और पीड़ित रोशन कुमार सिंह दोनों ही आपराधिक रिकॉर्ड वाले अपराधी थे। बताया गया था कि ये मामला वित्तीय विवाद को लेकर हुआ था। सर्च के दौरान हमें 5 नवंबर 2025 को छपी एक आधिकारिक रिपोर्ट मिली। यहाँ दी गई जानकारी के मुताबिक दोनों व्यक्तियों के बीच लंबे समय से दुश्मनी थी और उसी दिन बालेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना के हैदराबाद में जगतगिरी गुट्टा बस स्टॉप पर रोशन कुमार सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी। रेड्डी ने अपने साथियों मोहम्मद और आदि के साथ मिलकर रोशन पर धारदार हथियार से हमला किया और फिर मौके से फरार हो गया। इलाज के दौरान अस्पताल में रोशन कुमार सिंह की मौत हो गई। जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि रेड्डी और रोशन दोनों हिंदू थे। इस घटना में कोई सांप्रदायिक पहलू नहीं था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो में नजर आ रहे हमलावर और पीड़ित दोनों हिंदू थे। 2025 की इस घटना में कोई सांप्रदायिक पहलू नहीं था। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ फैक्ट चेक में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार से वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड की हलचल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जीएनटी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
5: Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
6: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
7: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर को अंत की तरफ बढ़ाने का, आप सबको ऐसे वीडियोस दिखाने का जिसके बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
16: कहते हैं अगर हौसला बुलंद हो तो आसमान की ऊंचाई भी छोटी पड़ जाती है, और इस बात को सच कर दिखाया है रूस के रुस्तम नाबियेव ने। उन्होंने वो कर दिखाया है जिसे आम इंसान तो क्या अच्छे भले पर्वतारोही करने से पहले 100 बार सोचे। दोनों पांव से दिव्यांग रुस्तम ने बिना किसी कृत्रिम पैर के सिर्फ अपने हाथों के सहारे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर ली है। इस ऐतिहासिक चढ़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो गई हैं। दरअसल साल 2015 में एक सैन्य बैरक के अचानक ढह जाने से रुस्तम ने अपने दोनों पांव हमेशा हमेशा के लिए खो दिए थे। उस हादसे में कई सैनिकों की जान चली गई थी और रुस्तम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन व्हीलचेयर पर बैठकर जिंदगी काटने के बजाय उन्होंने पहाड़ों को चुनौती देने का फैसला किया। 20 मई को उन्होंने सुबह 8:16 पर एवरेस्ट के शिखर पर रूसी झंडा लहराया। इससे पहले पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुद्धा मगर ने कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट फतह किया था, लेकिन बिना प्रोस्थेटिक्स के सिर्फ हाथों के बल पर एवरेस्ट फतह करने वाले रुस्तम दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं।

सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आंसर शीट नजर आ रहा है और उसमें छात्र ने सभी सवालों के जवाब भी लिखे हुए हैं। लेकिन टीचर का दिमाग कुछ शब्द देखकर घूम गया, क्योंकि उसने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। छात्र ने अबाउट को ABT लिखा हुआ है, उसने आगे एक जगह पर काइंडा लिखा हुआ है, वहीं एक जगह पर उसने बाय द वे की जगह BTW लिखा हुआ है। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो लोग सोशल मीडिया पर बात करते हुए अक्सर यूज करते हैं, मगर आंसर शीट में देखकर टीचर ने भी माथा पकड़ लिया। वही वीडियो में लिखा है, अगर आपका स्टूडेंट जेंजी है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप सभी को पपेट शो के बारे में तो पता ही होगा। जी हाँ, वही कठपुतली कला जिसमें एक आदमी कुछ कठपुतलियों को अपनी उंगली से कंट्रोल करता है और एक कमाल का शो दिखाता है। ये एक पुरानी कला है जो लोगों का मनोरंजन करती है, मगर आज के समय में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। वही कला वायरल हो रहे वीडियो में देखने को मिली। वायरल वीडियो में नजर आता है कि एक पपेट कुछ आर्ट बनाने में लगा हुआ है। वो कलम निकालता, उसकी इंक चेक करता, कागज पर कुछ बनाता और फिर उसे गौर से देखते हुए नजर आता। उस पपेट को एक आदमी कंट्रोल करता हुआ नजर आता है। आप जब वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका इंटरनेट का पैसा वसूल हो गया है। सोशल मीडिया पर एक अनोखा और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुल्हन खुद अपने पति के घर बारात लेकर पहुंच जाती है। गाने की धुन, पटाखों की गूंज के साथ जबरदस्त डांस करते हुए वो पूरे धूम धड़ाके के साथ ससुराल में एंट्री करती है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल बारात नहीं, बल्कि मजाकिया अंदाज में दिया गया सरप्राइज था। घर के बाहर ही वो जमकर नाचती है और फिर अपने होने वाले पति को वरमाला पहनाकर सबको चहका देती है। आसपास मौजूद लोग भी इस पल को एंजॉय करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

किसान की मेहनत उसकी फसल में ही दिखती है। इस फसल के मन मुताबिक फलने फूलने की खुशी किसान ही महसूस कर सकते हैं। तेलंगाना के किसान ने ये खुशी न सिर्फ खुद महसूस की है बल्कि दूसरों को भी महसूस कराई है। वीडियो में एक तरफ फसल कटती नजर आ रही है और दूसरी तरफ है खुशी जताता किसान। खुशी में वो जो भी कर रहा है उसे वो इंसान भी महसूस कर सकता है जिसने कभी खेती होते हुए भी ना देखी हो। वायरल हो रहे वीडियो में किसान को गुलाटियां लगाते देखा जा रहा है। वो ऐसी गुलाटियां लगा रहा है जैसे छोटा बच्चा।

0: मीडिया पर ये वीडियो साझा किया है, जिसमें एक हाथी जंगल के रास्ते को साफ करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रास्ते पर भारी लकड़ियां और पेड़ों के बड़े टुकड़े पड़े हुए थे, जिनकी वजह से सड़क बंद हो गई थी। आमतौर पर ऐसे कामों के लिए जेसीबी जैसी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जंगल के अंदर हर जगह मशीनों का पहुंच पाना आसान नहीं होता। खासकर बारिश या खराब रास्तों के कारण भारी वाहन अंदर नहीं जा पाते हैं। ऐसे समय में हाथी जंगल विभाग के लिए सबसे भरोसेमंद साथी बना।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: आपके खान पान से आपके विचारों का कोई संबंध है क्या? आपके खाने पीने से आपकी पूजा उपासना पर असर पड़ जाता है क्या? खान पान में बदलाव करके अपने क्रोध और अपने तनाव को बेहतर किया जा सकता है क्या? है आपके आहार और विचार का संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Step into the heart of the American zeitgeist with me, Billy Bush. My new show, Hot Mics, is now streaming on TuneIn. It's the radio talk show that's going to redefine what it means to be in the know. From sports and politics to entertainment, tech, pop culture, and everything in between. You'll hear from A-list stars, athletes, politicians, and more. No filter, no fluff, just the real talk. Because when the mic is hot, the conversations are even hotter. Live Mondays and Wednesdays at 5 p.m. Eastern, 2 Pacific. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
5: Thank God I get to wake
4: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए, ऐसी ही अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तो आपको बता दें कि आस्था का कठिन मार्ग बर्फ पर चलकर जाना है, हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तैयारी। इसके साथ ही नक्सल मुक्त भारत का संकल्प हकीकत में बदला, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की इनसाइड स्टोरी देखिए। साथ ही साइकिल की सवारी है सबसे न्यारी, जीएनटी पर दिल्ली के साइकिल मैन से मिलिए। तमाम खबरें होंगी लेकिन पहले हेडलाइंस।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: गुजरात के गांधीनगर में स्वामी महावीर का हुआ सूर्य तिलक, श्री महावीर जैन आराधन केंद्र में दोपहर 2:07 पर बना शुभ संयोग, अलौकिक घटना के गवाह बने हजारों भक्त। उत्तराखंड के चमोली में बदला मौसम का मिजाज, पवित्र बद्रीनाथ धाम में झमाझम बारिश के बाद गिरा पारा, उत्साह उमंग के साथ मंदिर में दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु। चमोली के गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू, अरदास के बाद पंच प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे की रवानगी, कल से खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी से बदला नजारा, सफेद बर्फ की चादर से ढकी दिखी वादियां, सैलानी जमकर उठा रहे लुत्फ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा, नैनीताल मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों तक गर्मी का असर, दोपहर के वक्त सावधानी बरतने की सलाह। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एंटी ड्रग रैली के जरिए जागरूकता संदेश, बैनर और पैम्पलेट्स लेकर सड़क पर उतरे सिविल सोसाइटी के सदस्य, स्थानीय पुलिस के साथ सीआरपीएफ का मिला साथ। अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बार श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की, जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है, इसलिए आज गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब यात्रा के दूसरे पड़ाव घांगरिया के लिए पंच प्यारों की अगुवाई में सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। श्री हेमकुंड साहिब ये यात्रा काफी चुनौतीपूर्ण है, बावजूद इसके इस यात्रा पर रवाना हुए सिख श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। वहीं चारधाम यात्रा पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते सिर्फ एक महीने में ही बाबा केदारनाथ के धाम में 7 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का रिकॉर्ड बन चुका है।

15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, जिसके कपाट सुबह खुलने जा रहे हैं। ऐसे में आज पंच प्यारों की अगुवाई में पहला सिख जत्था गोविंद घाट गुरुद्वारा से रवाना हुआ तो श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह देखते ही बना। आतिशबाजी के बीच जो बोले सोनिहाल के जयकारों से गोविंद घाट गुरुद्वारा गूंज उठा। इस खास मौके पर गोविंद घाट गुरुद्वारे को फूलों से सजाया गया था, साथ ही बैंड की मधुर धुनों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। जत्था रवाना होने से पहले गोविंद घाट गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं ने माथा टेका और यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना की।

0: स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा इस समय शुरू हो चुकी है। पंच प्यारों की अगुवाई में अब पहला जत्था गोविंद घाट गुरुद्वारे से बैंडों की धुन के साथ अब हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो सिख संगत है वो पहुंची हुई है, ये वो पंच प्यारे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये पंच प्यारे हैं जिनके साथ अब पहला जत्था आज गोविंद घाट गुरुद्वारे से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो रहा है।
1: इस बार बुलाया है उन्होंने तो कुछ सोच के बुलाया, अब अपने आप हाथ पकड़ के ले जाएंगे, वो यात्रा करवाएंगे। बल्कि नी कैप्स वगैरह पहन के जा रही हूँ मैं तो पैदल। ठीक है, खुशी है, उत्साह है।
2: सिखों का ये पवित्र धार्मिक स्थल देवभूमि के चमोली जिले में है, जहाँ हेमकुंड एक बर्फ की बनी झील है जो सात बड़े पर्वतों से घिरी हुई है, जिन्हें हेमकुंड पर्वत भी कहते हैं। माना जाता है कि हेमकुंड साहिब में सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। जिस जगह पर गुरुजी ने ध्यान लगाया वहीं एक गुरुद्वारा बना है। गुरुद्वारे में माथा टेकने से पहले सिख श्रद्धालु इस पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। बताया जा रहा है सुबह 9:30 बजे गुरुद्वारे के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू होगी, 10 बजे शब्द कीर्तन होगा और 12:30 बजे साल की पहली अरदास हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में होगी।
3: आशा करते हैं कि वाहेगुरु सभी की यात्रा सुगम बनाई रखे और जो भी यात्री की मनोकामना है वो गुरु के घर में आकर मत्था टेक के दर्शन करके गुरु साहब सब पे अपनी बख्शिश करे। 9 बजे गुरु ग्रंथ साहब जी को सचखंड से पांच प्यारों की अगुवाई में दरबार हाल में सुशोभित किया जाएगा। उपरांत 10 बजे श्री सुखमनी साहब के पाठ आरंभ होंगे और 11:30 से लेकर 12:15 बजे तक कीर्तन होगा, जिसमें भाई सुखदीप सिंह जी हजूरी रागी जो हैं दरबार साहब के वो कीर्तन करेंगे। उपरांत 12:30 बजे इस साल की पहली अरदास होगी, 1 बजे हुक्मनामा लिया जाएगा। इसी के साथ श्री हेमकुंड साहब की यात्रा 2026 का आगाज हो जाएगा।
2: श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं है, बावजूद इसके हर साल इस यात्रा पर हजारों नहीं बल्कि लाखों सिख श्रद्धालु यूं खुशी खुशी आते हैं। इस यात्रा की चुनौतियों को देखते हुए ही श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने तीर्थ यात्रियों से यात्रा के दौरान अपना ख्याल रखने और निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
4: जो हर्षोल्लास आज देखा है तो बहुत दिल खुश हुआ है और सभी को बधाई है, जितने जन संगत जो आ रही है उनको बधाई है, हमारे उत्तराखंड वासियों को हर एक को बधाई है कि आज जो पांचवा धाम हम कहते हैं हेमकुंड साहब उसकी यात्रा भी प्रारंभता भी शुरू हो गई है। और जो इस बार हम संगत का रुझान देख रहे हैं उससे लगता है कि सारे रिकॉर्ड इस वर्ष टूटेंगे और इस वर्ष जो ओपनिंग पे भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 6,000 से 7,000 आदमी ओपनिंग पर भी आएंगे। बार बार दोहराते भी हैं कि जो संगत बुजुर्ग है या जिनको अस्थमा है या जिनको कार्डियो की कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर से परामर्श करके तभी यात्रा के लिए प्रस्थान करें और कोई भी ऐसा काम ना करें, हट ना करें, क्योंकि संगत को ये समझना चाहिए, यात्री को ये समझना होगा कि ये कठिन यात्रा है। जितनी मर्जी आप सड़कें भी ठीक कर लो, ट्रैक भी ठीक कर लो, आफ्टरऑल चढ़ना आप ही को है। जब आप चलोगे तो शरीर जो आपका अगर साथ देता है तो तभी इतनी खड़ी चढ़ाई पे आप जा सकते हैं।
2: श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के अलावा देवभूमि में इन दिनों चार धाम यात्रा भी जोर शोर से चल रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है और इस 1 महीने के दौरान 16.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम पहुँच कर दर्शन कर चुके हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के धाम पहुँचे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक केदारनाथ धाम में 7.5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है।
5: 1 महीने में 7.5 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इससे पूर्व कभी भी 1 महीने में इतनी भारी संख्या में यात्री बाबा के दरबार में नहीं पहुंचे हैं और बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। लगातार बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए शासन प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाओं को लगातार चाक चौबंद किया जा रहा है। खुद रुद्रप्रयाग के DM विशाल मिश्रा ग्राउंड पर उतरकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं।
2: केदारनाथ धाम ही नहीं बल्कि बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी कुछ कम नहीं है। रोजाना औसतन 15,000 से 22,000 तक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 5,00,000 से ज्यादा लोग बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं।
6: मैं अपने परिवार के साथ आई हूँ, पूरी फैमिली है जिसमें मामा दामाद भाई बेटी सभी लोग हैं, और हम लोग ने हरिद्वार से स्टार्ट किया है, गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ, और अब हम बद्री विशाल जा रहे हैं और यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही।
7: हम लोग मुंबई से आए हैं, मेरा नाम अनीता है, तो हम लोग अभी 2-3 धाम कर चुके हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव था, और अभी 4th धाम बाकी है, तो वो भी अच्छा ही रहेगा।
8: ये अद्भुत यात्रा है, 4 धाम यात्रा हम कर रहे हैं, और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये यात्रा आदिकाल से की जा रही है, आदि शंकराचार्य जी के द्वारा ये निर्मित है। ये
2: कमोबेश श्रद्धालुओं का ऐसा ही जोश और उत्साह गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए भी देखने को मिल रहा है। देवभूमि की पवित्र 4 धाम यात्रा के लिए आस्था के इस सैलाब में एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये यात्रा भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। चमोली से कमलनयन सिलोड़ी, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा गुड न्यूज चुने।
9: अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर सुरक्षा बल के जवानों ने अबूझमाड़ के जंगलों में ऑपरेशन क्लीन चला रखा है, जिसके तहत सरेंडर कर चुके नक्सलियों की निशानदेही पर जंगलों और सड़क किनारे लगाई गई आईईडी का पता लगाकर उसे नष्ट किया जा रहा है, ताकि इन जंगलों में रहने वाले आदिवासी परिवारों के लिए विकास कार्यों को बिना किसी भय के अंजाम दिया जा सके। सुरक्षा बल के जवान किस तरह से ग्राउंड पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट।

0: नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने के बाद छत्तीसगढ़ के जंगलों में चल रहा ये अभियान खौफ के हर निशान को जड़ से मिटाने का है। बस्तर रीजन के जंगलों में सीआरपीएफ की टीम इन दिनों ऑपरेशन क्लीन में जुटी है। अबूझमाड़ के घने जंगलों में जहां ये टीम काम कर रही है वहां कदम कदम पर खतरा है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत बस्तर रीजन को नक्सल मुक्त तो करा दिया गया, लेकिन यहां जमीन के नीचे नक्सली साजिश आज भी दबी हुई है। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के अभियान के तहत साल 2024 से 2026 तक नक्सलियों पर सबसे बड़ी चोट की गई। इस दौरान 706 नक्सली ढेर कर दिए गए। टॉप लीडर बसव राजू हिडवा भी मारे गए। 2218 नक्सली गिरफ्तार किए गए। 4839 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सुरक्षा बलों की कोशिशों से नक्सलवाद तो खत्म हुआ, लेकिन सरेंडर नक्सलियों से कुछ ऐसी जानकारियां मिली जिसे अबूझमाड़ के जंगलों में एक नया अभियान शुरू करना पड़ा। दरअसल सरेंडर नक्सलियों ने बताया कि इन जंगलों में कई जगहों पर जमीन के नीचे आईईडी माइंस छिपी हैं।
1: सर, हमको इनपुट मिल रहा है अभी, जो सरेंडर नक्सली हैं, जो भी नक्सली बाहर से आए हुए हैं उनके द्वारा इनपुट मिला दिया जा रहा है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। फिर हमको अवगत कराया जा रहा है कि उस जगह आईडी प्लांट किया गया है, तो उसके माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के द्वारा हम डिमाइनिंग करते हुए पूरे जंगल को सर्चिंग कर रहे हैं।
2: आईडी अगर निष्क्रिय करने लायक हो तो निष्क्रिय कर देते हैं और निकालने लायक हो तो निकाल के उसको भी डंप किया जाता है।
0: नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से ऐसी साजिशों को अंजाम देते थे। अब ये खुलासा होते ही सीआरपीएफ के जवान इन आईडी की तलाश में जुट गए।
3: नक्सलवाद खत्म होने के बाद एक बड़ा खतरा छत्तीसगढ़ के जंगलों में आईईडी का है। जी हाँ, जो नक्सली सरेंडर किए हैं उनकी पूछताछ में इस तरीके का खुलासा हुआ है कि कई जगहों पर जो उन्होंने आईडी बिछा रखी हैं उसको ढूंढने का प्रयास इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा यहां छत्तीसगढ़ के अलग अलग जंगलों में किया जा रहा है। नक्सलवाद खत्म होने के बाद एक बड़ा चैलेंज ये सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कई ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस को डंप मिले हैं जिसमें सुरक्षा बलों को आईडी के साथ साथ नक्सलियों के पास से जो उन्होंने पैसे छिपा रखे थे करोड़ों की संख्या में ये रुपए मिले हैं।
0: जंगलों में इन आईडी को खोजना आसान नहीं होता। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए ये जवान बहुत संभल संभल कर डी माइनिंग एक्सरसाइज को अंजाम दे रहे हैं। इस काम के लिए आधुनिक उपकरणों के साथ साथ डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है।
3: पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जिस तरीके से डीआरजी के जवान जब आईडी खोज रहे थे तो चार जवान उनके शहीद हो गए थे, इसलिए काफी सावधानी इस वक्त बरती जा रही है। इनके साथ डॉग स्क्वाड टीम भी है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि K9 टीम के तहत जो डीआरजी के जवानों की डॉग स्क्वाड टीम है वो पूरा बस्तर के जंगलों में, बस्तर रीजन में जहां जहां पर भी आईडी इस वक्त मौजूद है उसको ढूंढा जा रहा है।
0: सीआरपीएफ के जवान इस काम के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मशीन जमीन में छिपी आईडी को ऊपर से ही पहचान लेती है। इसके बाद जवान बड़ी सावधानी से उस खतरे को हटा देते हैं।
3: खास तरीके का रडार है जो कि सीआरपीएफ के पास मौजूद है, जिससे जमीन के अंदर अगर 2 से 3 फीट की दूरी पर कोई विस्फोटक छिपा हुआ है तो उसके जरिए भी इसको खोजा जा सकता है। और एक बड़ा अभियान जो है इस वक्त चलाया जा रहा है। ये आप लोग सर कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से आईडी फ्री किया जाए, तो किस तरीके से ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल करके ऐसे कदम बढ़ाए जा रहे हैं?
4: सर, जैसे कि आपने बताया कि ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, इसका हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ड्यूल सेंसर है सर। इसमें हम दो चीजें, अपना मेटल्स और जो क्या नाम है मिट्टी में, जैसे अगर यहाँ कुछ कंटेनर दबा है पुराना तो ये उसको भी डिटेक्ट करेगा कि यहाँ मिट्टी से कुछ छेड़छाड़ हुई है और इसके नीचे कुछ कंटेनर है, चाहे मेटल का हो चाहे वैसा हो, कि बाकी एटमोस्फेयर से यहाँ की मिट्टी थोड़ी अलग है, मतलब कुछ हो सकता है। तो मेनली हम उसके लिए यूज करते हैं। अगर यहाँ 2.5 से 3 फीट भी, 3 फुट तक मैक्सिमम अगर कुछ गड़ा है तो ये उसको डिटेक्ट करने में सक्षम है।
0: घने जंगलों के साथ साथ सड़कों के आसपास के इलाके को बारीकी से खंगाला जा रहा है। जहां भी मिट्टी से छेड़छाड़ के निशान मिलते हैं उस पूरे इलाके को माइंस डिटेक्टर मशीन से जांचा जा रहा है। जहां गहराई में आईडी छिपे होने का शक हो वहां ट्रैक्टर की मदद ली जा रही है।
3: हमारे साथ इस वक्त सीओ जितेंद्र कुमार जी मौजूद हैं। सर, ये एक बड़ा सर्च अभियान आप लोग अलग अलग इलाकों में चला रहे हैं, एक तरफ विस्फोटक पकड़े जा रहे हैं तो दूसरी तरफ इस तरीके से डिमाइनिंग का भी प्रोसेस लगातार किया जा रहा है।
5: सभी तरह के आईडी के सभी संभावित खतरों को दूर करने के लिए हम रेगुलर जो है डिमाइनिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। आपको पता है कि नक्सलियों ने जो है इसको अपना मुख्य हथियार बना रखा था, परंतु अभी जितने भी एनएच और नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवेज हैं और जितने भी सड़क मार्ग हैं जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज कर रही है, आम जनता कर रही है, उसको जो है आईडी से मुक्त करने के लिए, जिससे कि वो भय मुक्त होकर के इस पर चल सके, ट्रैक्टर के द्वारा इसकी खुदाई करते हैं। उसके बाद जो कॉम्पैक्ट वायर डिटेक्टर है, इसके द्वारा अगर कोई भी संभावित अगर वायर है और डीएसएमटी मेटल है, मेटल डीएसएमटी के द्वारा अगर कोई भी ऐसी संभावित कोई खतरा है तो उसको दूर किया जा रहा है।
0: इसके साथ ही ये जवान इस मिशन में ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ड्रोन में लगे कैमरों से पूरे इलाके का सर्विलांस किया जा रहा है ताकि जंगल का कोई भी इलाका डी माइनिंग से अछूता न रह जाए।
3: ड्रोन का भी इस वक्त छत्तीसगढ़ के जंगलों में किया जा रहा है इस्तेमाल सर्विलांस करने के लिए। जैसे ही यहां पर डिमाइनिंग का प्रोसेस शुरू किया गया उसके बाद से ड्रोन के जरिए हर एक रास्तों को देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप यहां पर देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम जो यहां पर बनाया गया है उसमें तमाम चीजें दिखाई पड़ती हैं। जो भी पार्टी यहां से निकलती है डिमाइनिंग करने के लिए उसके सामने किसी भी तरीके का बाधा पैदा न हो उसके लिए सर्विलांस यहां पर लगाया जाता है और सर्विलांस के जरिए ये देखा जाता है कि आगे किसी तरीके से जो है इनको दिक्कत न हो डिमाइनिंग करने वाली पार्टी को।
0: नक्सलवाद को खत्म करने के साथ साथ सरेंडर कर चुके नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सुकमा में कुदरत की गोद में बना ये कैफे पूर्व नक्सली मिलकर चलाते हैं। इस पूरे इलाके को एक पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया गया है। नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के बाद अब कोशिश है नक्सलियों की साजिशों के हर निशान को खत्म करने की, ताकि छत्तीसगढ़ के जिन इलाकों ने बरसों तक खौफ के जख्म झेले हैं वो तरक्की की राह पर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ सके। अबूझमाड़ से जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे।
6: और अब बात कर लेते हैं दिल्ली के साइकिल मैन की, जो कि बड़े सरकारी अधिकारी हैं लेकिन अंदाज बिल्कुल आम लोगों जैसा। वो पिछले 15 साल से साइकिल बचत वाली राइड करते आ रहे हैं। दिल्ली में घर से दफ्तर और दफ्तर से घर की कुल दूरी करीब 34 किलोमीटर की है। इसको वो अपनी साइकिल के जरिए ही तय करते हैं। उनका साफ मानना है कि साइकिल की सवारी है सबसे न्यारी। मध्य पूर्व में तनाव और वैश्विक ईंधन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील से काफी पहले से साइकिल ही उनकी सवारी, वो भी सरकारी सवारी रही है।

0: साइकिल पर आम आदमी जैसा दिखने वाला ये आदमी ओहदे के लिहाज से बेहद खास है। एक लंबे अरसे से साइकिल से घर और दफ्तर के बीच दूरी तय करने वाले रिजवानुद्दीन दिल्ली के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में रीजनल कमिश्नर के पद पर हैं। फिर भी रिजवान साइकिल से ही चलना पसंद करते हैं। पिछले 15 साल से वो साइकिल की सवारी रोज कर रहे हैं। घर से ऑफिस की एक तरफ की दूरी 17 किलोमीटर है। इस तरह वो रोज 34 किलोमीटर का सफर साइकिल से ही करते हैं। दिल्ली के किदवई नगर ईस्ट में मौजूद सरकारी घर से रिजवान रोज जनकपुरी तक अपने दफ्तर का सफर साइकिल के जरिए ही पूरी करते हैं।
1: इस बीच आपको बहुत सारे मंत्री दिखाई पड़ रहे होंगे, सरकारी अफसर दिखाई पड़ रहे होंगे जो साइकिल से अपने मंत्रालय जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेट्रोल बचाइए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सरकारी अफसर से मिलवाने जा रहे हैं जो पिछले लगभग 15 सालों से साइकिल से ही ऑफिस जाता है, ऑफिस से अपने घर साइकिल से ही आता है, और कई बार उनके घर और दफ्तर के बीच की दूरी कम नहीं होती। इस समय भी वो जब ट्रेवल करते हैं तो उनके घर और दफ्तर के बीच की दूरी लगभग 34 किलोमीटर के आसपास है।
2: मैं यहाँ पे रीजनल पीएफ कमिश्नर हूँ, ईपीएफओ की नेशनल एकेडमी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी ऑफ सोशल सिक्योरिटी पीडूनास में। यहाँ पर मैं चीफ लर्निंग ऑफिसर भी हूँ, तो मेरा जॉनर रहा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इससे पहले मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों जगह का काम देख चुका हूँ लगभग 4.25 साल।
0: सरकारी अधिकारी होने के बावजूद रिजवान दफ्तर जाने के लिए कभी सरकारी या निजी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि साइकिल की सवारी सबसे न्यारी का नारा बुलंद करते हैं। खास बात ये है कि वो ट्रैफिक नियमों का भी खूब ख्याल रखते हैं। सड़कों को पार करने के लिए पैदल यात्री की तरह सबवे का इस्तेमाल करते हैं।
1: रिजवान जी की ये रोज की यात्रा है, वो साइकिल से निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए, और जब जाते हैं तो रास्ते में ऐसा नहीं कि सिर्फ हमेशा अच्छा अच्छा रास्ता ही है, कभी कभी इस तरह से जो अंडरपास होते हैं रोड क्रॉस करने के लिए उनका भी इस्तेमाल करते हैं, और जब करते हैं तो इस तरह से साइकिल को उठा कर ले जाते हैं। रास्तों की बात तो लगे, कभी ख़राब रास्ता मिला, कभी अच्छा मिला, कभी पथरीला है, कभी टूटा है, लेकिन इस तरह से साइकिल को उठाकर कई जगह से अंडरपास से निकलना, ये भी इनकी रोज की दिनचर्या का इसी तरह से हिस्सा है।
0: सरकारी अधिकारी होने की वजह से व्यस्तता है, फिर भी रिजवानुद्दीन ने साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है। 55 साल के सरकारी अधिकारी रिजवान साल 2012 से साइकिल से ही आ जा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट की बदौलत वो साइकिलिंग के संकल्प को बनाए रख पा रहे हैं। इस दौरान वो अपनी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखते हैं। साइकिलिंग के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला हेलमेट पहनते हैं। ट्रैफिक नियमों के अलावा अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखना भी नहीं भूलते।
1: सर, इस तरह से रोज साइकिल को उठाकर भी लाना होता है?
2: हाँ, ये तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, ऐसा कई बार रेलवे ओवर ब्रिजेज होते हैं वहाँ से भी हम लोग लेकर जाते थे साइकिल को, तो ये तो बहुत कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत लाइट वेट है साइकिल का, आराम से आ जाती है।
1: रास्ते की हम बात कर रहे थे, रास्ते में ऐसा अच्छे मिलते हैं?
2: हाँ, रास्ता ठीक है, बट आपको थोड़ा हेलमेट वगैरह होना बहुत ज़रूरी है, और स्पीड मॉड्यूलेशन, क्योंकि कई बार व्हीकल्स बड़ी स्पीड से आ रहे होते हैं तो क्रॉसिंग्स पे या जहाँ पे दो राहें हैं वहाँ पे आपको काफ़ी प्रिकॉशन लेके चलना होता है। बाकी नॉर्मली ठीक है, क्योंकि हैबिट है चलने की मुझे, 2012 से साइकिलिंग कर रहा हूँ। तो
0: साइकिल चलाने के अपने शौक को रिजवान ने अपनी फिटनेस और अनुशासन से जोड़ दिया है, ताकि स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे सके। इसके लिए वो दूसरे लोगों में साइकिलिंग को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं।
1: शौक के लिए साइकिलिंग थी या आपने इसको दिनचर्या का हिस्सा ही बना लिया कि सबसे ज्यादा टाइम जाता है ऑफिस और घर के बीच में तो साइकिल से ही चलते हैं?
2: देखिए, हेल्थ और एनवायरनमेंट दो बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं लाइफ के, तो ये शौक तो रहा ही होगा, लेकिन मेन चीज है कि आपने हेल्थ और पर्यावरण, मैं ऐसी जगह में पैदा हुआ जहाँ एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, आज भी पहाड़ों में पैदा हुआ, मसूरी हिल्स के पास झड़ी पानी एक जगह है, तो जब ग्वालियर की गर्मी देखी तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है, 48 डिग्री तक भी हो जाता है, तो लगा कि भाई ये व्हीकलर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारक है, इससे बचना है तो आपको साइकिलिंग प्रमोट करना होगा, और इसीलिए हमने बहुत वहाँ पे इवेंट्स भी किए। ग्वालियर और उसके आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर, BSF, एयरफोर्स, इन सब के साथ मिलकर, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलकर रैलीज भी हम लोगों ने की, और उस एरिया में काफ़ी साइकिलिस्ट बढ़े। तो उसमें एक स्लोगन था कि ग्वालियर कम दूरियों का शहर, स्वास्थ्यवर्धक भी हो सकता है सफर।
0: साइकिल चलाने के उनके शौक पर गर्मी, सर्दी या बारिश का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस मौसम के मुताबिक वो थोड़े एहतियात बरत लेते हैं।
2: साइकिलिंग के लिए देखिए ये भ्रम है लोगों का, हम लोग जो बड़े इवेंट्स करते हैं काफी दूरी दूरी तक, आपको इलेक्ट्रोलाइट लेते रहना है, लिक्विड, पानी, नमक और चीनी, ये सब अगर आपने ये काम किया हुआ है तो। साइकिलिंग में बस थोड़ा सा धूप में आंखों के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, उसका आपको इंतजाम रखना है, अदरवाइज तो हीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइड करने में कोई खास फर्क नहीं आएगा, हल्का सा स्पीड हो सकता है कम हो जाए बहुत ज्यादा तेज गर्मी में, बट जो लोग करते हैं हमें तो आनंद आता है, क्योंकि मुझे तो, मेरे लिए तो सबसे बड़ा, जो सबसे दिन का सबसे अच्छा समय होता है वो सुबह में होता है जब मैं अपने घर से कार्यालय जा रहा होता हूँ साइकिलिंग करते हुए। मौसम इतना मायने नहीं रखता क्योंकि मेरे बैग में खुद बरसाती है, तो अगर पेपर्स आपको बचाने होते हैं बारिश में भीगे नहीं, बाकी भीगते हुए साइकिल भी चलाई जा सकती है और बड़ा मज़ा आता है, कभी चलाइएगा आप, आनंद आता है बारिश में भीगने का भी।
0: नियमित रूप से साइकिल चलाने से न केवल शरीर फिट रहता है बल्कि कई तरह की गंभीर बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। बस लंबी दूरी की साइकिलिंग के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है।
1: क्या टिप्स देंगे जो लोग आपसे प्रेरणा लेकर अगर शुरू करते हैं दिल्ली NCR में साइकिलिंग, कम से कम अपने ऑफिस जाने के लिए ही, क्या टिप्स आपके हिसाब से सेफ्टी के लिहाज से?
2: सेफ्टी के लिए हेलमेट होना बहुत जरूरी है, और आप पहले प्रैक्टिस करें, एकदम से साइकिल ऑफिस ना जाने लगे, आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी तो ज्यादा आसान रहेगा, और हेलमेट के बिना तो कभी भी साइकिल ना चलाएं, क्योंकि हेलमेट आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे एक हल्का सा गड्ढा है
1: पड़ा हुआ है,
2: ये आपको हेलमेट बहुत आपका लाइफ सेविंग डिवाइस।
1: गिर गए थे आप?
2: हाँ, ये मैं एक लंबी राइड पे जा रहा था तो मैं हल्का सा गिरा था, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे निकला था दिल्ली से, तो वहाँ पे मैं बुलंदशहर जा रहा था, तो मैं ग्रेटर नोएडा के आसपास एक बार मैं गिरा, तो उसमें हेलमेट ने ही सेव किया मुझे जी।
1: साइकिलिंग में भी आपने बहुत सारे मुकाम हासिल कर लिए हैं, बहुत सारे आपके पास खिताब भी हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं?
2: नहीं, एक इवेंट होता है अडॉक्स इंडिया का, जिसमें कि एक ही सीज़न में आपको 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और 600 किलोमीटर की राइड एक सीज़न में कंप्लीट करनी होती है।
0: आज जब भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग फिटनेस के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तब रिजवान उद्दीन जैसे लोग साबित कर रहे हैं कि इच्छा शक्ति हो तो हर चुनौती छोटी पड़ जाती है। एक सफर, एक साइकिलिस्ट और हजारों लोगों के लिए प्रेरणा, यही है रिजवानुद्दीन की पहचान। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूले न्यूज पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: क्या आपके खान पान से आपके विचारों का कोई संबंध है? क्या आपके खाने पीने से आपकी पूजा उपासना पर असर पड़ जाता है? क्या खान पान में बदलाव करके अपने क्रोध और अपने तनाव को बेहतर किया जा सकता है? क्या है आपके आहार और विचार का संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
7: Jack, you're killing me.
6: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
8: आपको अच्छी लगी तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे Good News Today पर.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.
14: ना एयर डिफेंस ना रडार, टूट जाएगी दुश्मन की दीवार. दुश्मनों का सर्वनाश करेगा सेना का अदृश्य अवतार. आ रहा वायुसेना का मिस्टर इंडिया. देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को

थे आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आपके आहार का आपके विचारों पर, आपकी सोच पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे आपके आहार और आपके विचार के कनेक्शन के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे जीवन में आहार की भूमिका क्या है। देखिए, किसी भी जीव की मुख्य रूप से चार आवश्यकताएं हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आहार। आहार से निर्माण और विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। हो सकता है आप खाने पीने से, खाद्य पदार्थ से आहार न लें, लेकिन कहीं न कहीं से आपको ऊर्जा लेनी होगी, चाहे प्रकृति से चाहे प्रकाश से। बिना ऊर्जा के जीवन की लंबे समय तक कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत सारे ऋषि मुनि, संत महात्मा ऐसे हुए हैं जो अन्न नहीं खाते रहे हैं, लेकिन प्रकृति से, वायु से, तेज से, अग्नि से, प्रकाश से वो अपने आहार की आवश्यकताएं पूरी करते रहे हैं। तो आहार आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप भोजन से आहार लें, चाहे प्रकृति की शक्तियों से आहार लें। आहार पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ आपको हो सकता है, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन की समस्याएं हल होंगी, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन हानि से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं, जो भी हम खाते हैं,
उसका हमारे ऊपर किस प्रकार से असर पड़ता है। देखिए, शरीर का जो निर्माण है या शरीर के मानसिक स्तर का जो निर्माण है वो विभिन्न कोशों से हुआ है। इसमें एक कोश है अन्नमय कोश। इस कोश की शुद्धि के बिना आप मन की शुद्धि तक नहीं जा सकते। आहार से ही हमारी कोशिकाओं का, हमारे सेल्स का निर्माण होता है और उन्हीं कोशिकाओं से हमारे शरीर में रस निकलता है, एंजाइम्स निकलते हैं, रस का क्षरण होता है। रस यानी हार्मोन्स से हमारी सोच में विकास और परिवर्तन आता है। जिस तरह का आहार हम ग्रहण करते हैं उसी तरह का व्यवहार और उसी तरह का विचार हमारे अंदर उत्पन्न होता है। जब आप साधना जगत में जाते हैं, जब आप आध्यात्मिक जीवन में जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें खाने को मना किया जाता है। उसका कारण पाप पुण्य नहीं है, उसका कारण यह है कि जिस तरह का आहार ग्रहण करेंगे मन वैसा ही होगा। और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, आप गहरी उपासना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप साधना के मार्ग पर, मन को शुद्ध करने के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने आहार को पवित्र करना होगा। आहार पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, घर में अतिथि का आगमन होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कौन सी खाने पीने की चीजों को हम सात्विक आहार नहीं कह सकते, सात्विक भोजन नहीं कह सकते।
प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना गया है, ये सात्विक आहार नहीं है। सरसों का साग और मशरूम, इसको भी सात्विक आहार नहीं मानते। मांस मछली और मादक पदार्थ को भी सात्विक नहीं माना जाता। जो खाद्य पदार्थ डब्बे में बंद करके लंबे समय के बाद प्रयोग किए जाते हैं, उनको भी सात्विक नहीं मानते। बासी खाना, एक समय से ज्यादा पुराना भोजन, खास तौर से मसूर की दाल, अगर एक वेला से ज्यादा हो गया तो वो तामसिक हो जाती है। किन चीजों को हम सात्विक आहार की श्रेणी में रख सकते हैं? सभी प्रकार की अनाज और दाल, ये सात्विक है। दूध और दूध से निर्मित पदार्थ भी सात्विक है। सभी प्रकार की सब्जियां सात्विक आहार हैं। फल और मेवे, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, ये भी सात्विक आहार के अंदर आते हैं। अब ये जानते हैं कि आप अपने स्वभाव के अनुसार किस तरह के स्वभाव के लिए किस तरह का आहार आपको ग्रहण करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, अगर आप बहुत ज्यादा भावुक हैं, तो गुड़ और मीठी चीजें आपको खानी चाहिए। रोटी खाइए, बासी खाना खाने से आपको बचना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, तो प्याज लहसुन और मांस मछली से परहेज करें। खास तौर से कच्चा प्याज और लहसुन बिल्कुल प्रयोग ना करें। अगर आपको छोटी छोटी बात पर तनाव पालने की आदत है, तो दूध और दूध से बनी चीजें ग्रहण करें। मशरूम और आलू यानी कंद, मशरूम, अरवी, बंडा, आलू, ये कम खाएं या ना खाएं। अगर आपका स्वास्थ्य आपको परेशान करता हो, शारीरिक समस्या हमेशा बनी रहती हो, तो ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाइएगा, अनाज आपको कम से कम खाना चाहिए। अगर आपके मन में ज्यादातर अश्लील विचार आते हों, ज्यादातर निगेटिव विचार आते हों, बुरे विचार आते हों, तो मांस मछली, प्याज लहसुन ना खाएं। मसूर की दाल से भी संभव हो तो परहेज करें। जितना पवित्र और जितना सात्विक भोजन आप करेंगे, आपके शरीर पर, आपके मन पर और आपके सोच पर इसका असर पड़ेगा। जो लोग बुरे स्वभाव के हैं, गलत तरीके से कमाई करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, दुष्टता दिखाते हैं, ऐसे लोगों का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक
राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, कार्य क्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की आपके आहार और आपके विचार के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर ऑफिस में स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं तो अपने मेज पर एक सफेद मार्बल का चौकोर टुकड़ा आपको रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी नौकरी में, आपके काम में, आपके ऑफिस में स्थिरता बनी रहेगी। अब जान लेते हैं सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir It Up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
2: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: ना एयर डिफेंस ना रडार, टूट जाएगी दुश्मन की दीवार। दुश्मनों का सर्वनाश करेगा सेना का अदृश्य अवतार। आ रहा वायुसेना का मिस्टर इंडिया। देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: ओडिशा के चांदीपुर फायर रेंज से भारत ने अग्निवन बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 700 से 900 किलोमीटर है मारक क्षमता, परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट। काशी की समृद्ध कला संस्कृति को मिलेगा नया मंच। आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन की 3D इमेज जारी। गुजरात के गांधीनगर में स्वामी महावीर का हुआ सूर्य तिलक। श्री महावीर जैन आराधान केंद्र में दोपहर 2:07 पर बना शुभ संयोग। अलौकिक घटना के गवाह बने हजारों भक्त। पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक करीब 20 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। झमाझम बारिश के बीच बद्रीनाथ में उमड़ा आस्था का समंदर। चमोली के गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू। अरदास के बाद पंच प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे की रवानगी। कल से खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी से बदला नजारा। सफेद बर्फ की चादर से ढकी दिखी वादियां, सैलानी जमकर उठा रहे लुत्फ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा। नैनीताल मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों तक गर्मी का असर। दोपहर के वक्त सावधानी बरतने की सलाह। आइए शुरू करते हैं न्यूज पत्र सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा भारतीय सेना को मिलने वाली नई स्वदेशी ताकत की भी। देखिए
6: ये तस्वीरें भारतीय सेना की 100 किलोमीटर दूरी की मारक क्षमता वाली जरूरत को पूरा करने के लिए स्वदेशी लॉयट्रिंग म्यूनिशन वायु अस्त्र 1 के तकनीकी परीक्षण की हैं। देश की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी नाइब लिमिटेड का ये परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। वायु अस्त्र 1 को आम भाषा में आत्मघाती या कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। 10 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की क्षमता वाले सिस्टम ने एक ही बार में 100 किलोमीटर दूर मौजूद अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। परीक्षण के दौरान वायु अस्त्र 1 ने मिशन को बीच में रोकने, दोबारा हमला करने और वापस घूमकर हमला करने की अपनी बेहतरीन क्षमताओं का भी शानदार प्रदर्शन किया। ड्रोन ने इंफ्रारेड कैमरे की मदद से रात के घने अंधेरे में 2 मीटर से कम की सटीक दूरी के भीतर अपने टारगेट को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। इसमें 70 किलोमीटर दूर स्थित एक फॉरवर्ड कंट्रोल सेगमेंट को ग्राउंड स्टेशन कंट्रोल है।

0: हैंडओवर की क्षमता का भी प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड के जोशीमठ के बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में वायु अस्त्र ने 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर 90 मिनट से ज्यादा समय तक लगातार उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया। इस सिस्टम ने मिशन पूरा होने के बाद अगली उड़ानों के लिए रिकवरी की क्षमता भी दिखाई। नक्सल आतंक खत्म होने के बाद अब सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान चल रहा है। सरेंडर कर चुके नक्सलियों के निशानदेही पर छत्तीसगढ़ के जंगलों में माइंस को हटाने का काम हो रहा है। बस्तर रीजन में जंगल के अलग अलग हिस्सों में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस और CRPF की टीम अबूझमाड़ के घने जंगलों में ऑपरेशन क्लीन चलाकर विस्फोटकों की तलाश कर रही है, जिसमें डॉग स्क्वाड और आधुनिक प्रणाली की मदद भी ली जा रही है। CRPF की टीम IED सर्च करने के लिए रोड के किनारे इलाकों पर खास फोकस कर रही है, ताकि जहां रोड बन चुकी है उनके आसपास विकास का काम हो सके। राजस्थान की मशहूर लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स 45 साल के इतिहास में पहली बार मई के महीने में भी चल रही है। मई में पहली बार ये ट्रेन पूरे चार्टर पर जयपुर पहुंची, जहां मेहमानों का पारंपरिक स्वागत किया गया। 1982 में शुरू हुई ये ट्रेन यात्रियों को राजस्थान के राजसी इतिहास और संस्कृति को दिखाती है। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन में महाराजाओं के लाइफस्टाइल और लग्जरी सफर का अनुभव मिलता है। आमतौर पर ये ट्रेन सितंबर से अप्रैल के बीच ही चलती है, लेकिन राजस्थान में ज्यादा तापमान होने की वजह से इस बार यात्रियों की अच्छी मांग को देखते हुए पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को मई में चलाने का फैसला किया गया। 21 मई को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना हुई पैलेस ऑफ व्हील्स की शाही यात्रा 25 मई तक 2,610 किलोमीटर का सफर तय करेगी। झारखंड के गढ़वा में एक पुलिस जवान की खूब चर्चा हो रही है। सिपाही सुमेर चौधरी अपनी कोर्ट की ड्यूटी खत्म होने के बाद घर जाने के बदले सेवा भाव से ट्रैफिक संभालने की जिम्मेदारी उठाते नजर आते हैं, ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रखा जा सके। NH-39 पर लगमा पेट्रोल पंप के पास लगातार हो रहे हादसों को देखकर सुमेर ने लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उठाया। गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों को लेकर इस जगह पर हो रहे हादसों को रोकने के लिए सुमेर हर रोज शाम 4 से 6 बजे तक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाते हैं। वो राहगीरों को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने और रॉन्ग साइड से वाहन नहीं चलाने की सलाह देते हैं। सुमेर का मानना है कि अगर उनकी इस कोशिश से एक भी व्यक्ति की जान बचती है तो वो इनका बड़ा सौभाग्य होगा। सेवा भाव की एक तस्वीर महाराष्ट्र से भी सामने आई है। MSRTC की पुसाद की ओर जा रही धुले यवतमाल बस जैसे खंडाला घाट पहुंची, वहां अचानक एक लंगूर सड़क पर आकर बस के ठीक सामने खड़ा हो गया और वहां से हटाने की कोशिश पर भी नहीं हटा। यात्रियों ने अंदाजा लगाया कि शायद भीषण गर्मी की वजह से परेशान होगा, इसीलिए उन्होंने उसे पानी की बोतल दी। उसके पानी पीना शुरू करते ही जंगल से लंगूरों का झुंड वहां आ पहुंचा। इसके बाद बस में सवार यात्रियों ने अपनी पानी की बोतलें लंगूरों के सामने बढ़ा दी, ताकि वो अपनी प्यास बुझा सकें। बस में सफर कर रही लता श्रीवास नाम की एक महिला यात्री का बनाया गया वीडियो चर्चा में छाया हुआ है।
1: और अब बात मौसम की। इन दिनों मौसम के तेवर कहीं नरम तो कहीं तल्ख है। देश का ज्यादातर मैदानी हिस्सा 45 से 46 डिग्री की भीषण गर्मी और लू से झुलस रहा है, तो वहीं हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में मौसम ठंडा है। रोहतांग में जमकर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं कुल्लू मनाली में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से पहले आगे बढ़ चुका है और केरल में इसके एंट्री 26 मई के आसपास होने का अनुमान है, यानी कि इस वीकेंड दक्षिण भारत के कुछ तटीय इलाकों में मानसून की एंट्री हो रही है। हालांकि मैदानी इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है।

0: मैदानी इलाकों में मई में आसमान से बरसती आग से जहां लोग परेशान हैं, तो वहीं पहाड़ों पर कुदरत ने सफेद श्रृंगार कर बड़ी राहत दे दी है। चिलचिलाती गर्मी में ठंडी हवा का सुकून कहीं मिल सकता है तो वो है पहाड़। शायद यही वजह है कि इन दिनों गर्मी से राहत और ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाने लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। जहां देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल किया हुआ है और पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, वहीं हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास समेत कई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। मई महीने में हुई इस बर्फबारी से रोहतांग की वादियां सफेद बर्फ की चादर से ढक गई हैं और पूरा जन्नत सा नजर आ रहा है ये इलाका। ताज़ा बर्फबारी के बाद रोहतांग पहुंचे सैलानी बर्फ में खूब मस्ती करते नजर आए। हालांकि मौसम को देखते हुए फिलहाल पर्यटकों को केवल मढ़ी तक ही जाने की इजाजत दी गई है, वहीं वाहनों को राहनी नाला तक जाने की अनुमति है। मई में हुई इस ताज़ा बर्फबारी ने रोहतांग की खूबसूरती में फिलहाल तो चार चांद लगा दिए हैं।
1: देश के कई राज्यों में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल करके रखा है, वहीं कई राज्यों में तापमान जो है 45 डिग्री के पार जा चुका है। तो वहीं कुल्लू मनाली की बात करें तो यहां तापमान मई महीने में बेहद खुशनुमा बना हुआ है। आज सुबह से रोहतांग दर्रे सहित जो आसपास के इलाके हैं वहां बर्फबारी हुई है, जबकि कुल्लू मनाली के अधिकांश इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा, जिसके बाद यहां आए पर्यटक वो अब काफी खुश हैं क्योंकि इस तरह का मौसम के लिए वो यहाँ पे पहुंचे थे। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय ये कुल्लू का इलाका है, तो लोग जो है पर्यटक जो है वो खासकर जो नदी किनारे जो इस पूरे मौसम का जो लुत्फ उठा रहे हैं। पहाड़ों की बात करूं तो पहाड़ों पे अभी भी हल्की धुंध और हल्के अभी भी बादल जो है पूरे इलाके में छाए हैं, जिसके बाद जो है वो मौसम काफी खुशनुमा, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह दिखाई दे रहा है। मौसम में इस बदलाव के चलते तापमान में गिरावट काफी दर्ज की गई है।
0: उधर कुल्लू में कुदरत की मेहरबानी से हुई बारिश ने गर्मी से परेशान लोगों को मरहम लगाने का काम किया। कुल्लू में गर्मी से लोग काफी परेशान थे, लेकिन राहत की इस बारिश ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी। यहां जैसे ही बारिश शुरू हुई, लोग छाता लेकर घरों से बाहर सड़कों पर सुकून की सांस लेने के लिए निकल पड़े। बताया जा रहा है कि बारिश से गर्मी तो कम हुई ही, इससे फसल को भी काफी फायदा होगा।
2: कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप हो रही थी, जिस कारण कि बहुत सी गर्मियां हो रही थी यहाँ पे, तो आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बारिश हो रही है सुबह से लेकर। और यहाँ पे इतना तापमान बढ़ गया था धूप का कि लोगों का बाहर रहना भी, दुकानें मार्केट वगैरह सब बंद ही रह रही थी मैक्सिमम धूप की वजह से, तो आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हमारे फल सब्जियों को भी अच्छा लग रहा है, मतलब कि खेती बाड़ी के लिए भी अच्छा है बहुत ज्यादा कि आज बारिश हो गई।
3: आज मौसम में काफी अच्छा बदलाव रहा है, पीछे बहुत गर्मी पड़ी थी, नौतपा आने से पहले ही बहुत गर्मी हो गई थी, अभी बारिश का मौसम रिमझिम बारिश हो रही है, इससे फसल में भी किसानों को फायदा मिलेगा। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा, घूमने फिरने का सैलानी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया रहेगा।
0: हीट वेव और लू के थपेड़ों के बीच उत्तर भारत की अग्नि परीक्षा जारी है। कई शहरों का पारा 47 डिग्री पार कर चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में भी तापमान 46 डिग्री को पार कर गया है। गर्मी ऐसी कि घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है, और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो हाथ मुंह ढककर निकल रहे हैं, लेकिन गर्मी के चलते लोगों के हलक सूख रहे हैं। वहीं गुड न्यूज ये कि नगर निगम की ओर से शहर के प्रमुख चौराहों पर प्याऊ लगा दिए गए हैं, जिसमें एक टेंट लगाकर मिट्टी के घड़े रखे गए हैं। इन घड़ों में पीने के पानी का इंतजाम है और ये प्याऊ आम लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रहे हैं।
4: संगम नगरी प्रयागराज में भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा 46 के पार पहुंच गया है, लेकिन वहीं नगर निगम की पहल ने लोगों को राहत देने की कोशिश की है और कई चौराहों पर इस तरह के घड़े रखे हैं और यहां पर लोग ठंडा पानी पी रहे हैं और यहां पर जो भीषण गर्मी पड़ रही है उनको इससे राहत मिल रही है। इस घड़ों में नल भी लगा है और इस मग्गे से पानी निकाल करके भीषण गर्मी से लोग बच रहे हैं और अपने आप को राहत पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर पानी पीने के लिए आए थे और आप एग्जाम देने आए थे यहाँ पर, और यहाँ किस तरह की व्यवस्था दिखी, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है यहाँ?
5: देखिए धूप बहुत ज़्यादा है, 46 के पार है तो सबको पता है निकलना नहीं चाहिए घर से। हम लोग निकले, बहुत दूर है हमारा घर यहाँ से, हमारे लिए नगर निगम ने जैसी व्यवस्था पानी की कर रखी है, ऐसा लगा धूप में संजीवनी का काम किया।
6: पानी बहुत ठंडा है, पानी का स्वाद भी बहुत अच्छा है,
5: नगर निगम की बहुत अच्छी पहल है। गर्मी के मौसम में पानी ही सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पानी मिलता रहे मनुष्य का जीवन चलता रहे।
4: चाचा ये बताइए कब रखा है नगर निगम ने?
6: सर अभी जो है दो दिन हुआ रखे हुए जो है, लेकिन सर जो भी काम किया है सरकार ने अति सराहनीय काम है, और नगर निगम का भी और सरकार को भी धन्यवाद देंगे हम लोग जो है यही।
4: गर्मी में ठंडा पानी मिल रहा है
6: कि गर्मी में सर ठंडा पानी मिल रहा है, कम से कम हर चौराहे पे पानी है।
0: मोहाली के महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। तपती गर्मी से निपटने के लिए चिड़ियाघर में भालुओं को 100 किलो बर्फ के टुकड़े दिए जा रहे हैं। भालुओं के साथ साथ बंदरों और हाथियों को भी हाइड्रेटेड और ठंडक बनाए रखने के लिए उन्हें तरबूज खिलाया जा रहा है। गर्म मौसम में बाघों को पानी में ग्लूकोन डी पाउडर मिलाया जा रहा है ताकि उनकी एनर्जी का लेवल बना रहे और डिहाइड्रेशन से उनको बचाया जा सके।
7: जीएनटी के लिए आज अच्छी खबर ये है कि तापमान का पारा बड़ा जरूर है, हीट वेव चल रही है, लेकिन उसी बीच में जू में जो एनिमल्स रखे गए हैं, खासतौर पे अब हम टाइगर के इंक्लोजर में हैं छतबीर जू में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ठंडी हवाएं चल रही हैं और यहाँ पे कई सैकड़ों कूलर और पंखे लगाए गए हैं इंक्लोजर्स में, इन टाइगर्स को रखा गया, और इसका बड़ा कारण ये ठंडा पानी, ये देखिए आप, ठंडा पानी तक दिया गया है ताकि बॉडी टेम्परेचर है वो कम रहे, और अगर हम बात करें इस वक्त जो टाइगर्स हैं उन्हें ठंडा रखा जा रहा है। अहम बात यह है कि जू में अक्सर देखने आते हैं लोग, और उसी बीच में आप ये देखिए कि ठंडा पानी दिया गया है, और इसी बीच में आप ये देखिए लगातार बाकी जो एनिमल्स हैं, चाहे हम बात करें 100 केजी आइस क्यूब्स हैं वो कहीं ना कहीं दिए जाते हैं, उसके अलावा ग्लूकोन डी मिक्स किया जाता है ताकि हाइड्रेशन रहे, और उसी बीच में आपको ये भी बता दें वाटरमेलन है या बाकी ऐसे ठंडे फ्रूट्स हैं, केले की जगह पपाया दिया जा रहा है ताकि ठंडे रह सकें ये जानवर।
0: मौसम विभाग की माने तो मानसून 23 से 24 मई को अंडमान तट पर दस्तक दे सकता है, और केरल में 26 मई को मानसून के पहुंचने की संभावना है, जबकि उत्तर भारत में 22 जून के आसपास मानसून एंट्री ले सकता है। वहीं अंतरिक्ष से ली गई तस्वीर में नजर आ रहा है कि लू के बीच भारत की ओर बादल बढ़ रहे हैं। सैटेलाइट से सामने आई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम से लेकर पूर्व तक हर तरफ बादलों का असर नजर आ रहा है। इसके साथ ही कई जगहों पर हो रही बारिश ने गर्मी के बढ़ते असर को कम कर दिया है। ये नज़ारा किसी बड़े चक्रवात जैसा लग रहा है, लेकिन हकीकत में इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और नमी के मिलने का नतीजा बताया जा रहा है। हाल की तस्वीरों में भारत का बड़ा हिस्सा मोटे बादलों से ढका नजर आया। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक विशाल क्लाउड सिस्टम अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। मौसम विभाग और अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट्स ने उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट दिया है।
8: देखिए केरला के लिए हमारा 26 का हमने प्रेस रिलीज इशू किया था 26 में, और विद मॉडल एरर जैसे प्लस माइनस 4 डेज होता है। बाकी जो अगर आप जो ब्लू लाइन देख रहे हैं तो ये वो लाइंस है जो यहाँ पे अभी मानसून एडवांस हो चुका है, तो ये 16 मई को हमारा फर्स्ट एडवांस हुआ था जिसमें हमने कुछ हिस्से अरबियन सी के बियो बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड के कुछ हिस्से जहाँ तक हमने कवर किए थे। उसके बाद सेकंड हमारा था वो 18 मई को था, 18 मई को हमने इंटायर अंडमान निकोबार कवर किया, बियो बंगाल के कुछ हिस्से कवर हुए, साउथ अरबियन सी के कवर हुए, और उसके बाद हमारा यही अनुमान है आने वाले कुछ दिनों में ये बियो बंगाल के कुछ और हिस्से कवर कर सकता है। और स्टार्टिंग अगर आप इधर की करते हैं तो जब 26 मई जहाँ जब आगे केरला में ऑनसेट मानसून होता है तो उसके बाद हम फर्दर बताते हैं कि आने वाले दिनों में वो आगे कैसे प्रोग्रेस करेंगे।
0: तपती गर्मी से जूझते आधे हिंदुस्तान को अब जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। यही वजह है कि इस समय लोगों की निगाहें मानसून की रफ्तार पर टिकी हुई हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, दिल्ली से मनीषा लड्डा और मोहाली से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: पेट्रोल डीजल बचाने के लिए लखनऊ में जजों ने की पहल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
10: वैश्विक संकट को देखते हुए पीएम मोदी की अपील का असर लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी जज और न्यायिक अधिकारियों ने साइकिल से कोर्ट जाने का फैसला किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के प्रशासनिक जज जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने जिला जज मलखान सिंह के घर से अधिकारियों को साइकिल से रवाना किया। तय किया गया कि सप्ताह में एक दिन न्यायिक अधिकारी साइकिल से जाएंगे तो न सिर्फ स्वास्थ्य ठीक होगा बल्कि देश पर आए तेल संकट से निपटने के लिए न्यायिक अधिकारी भी अपना योगदान दे सकेंगे। जो न्यायिक अधिकारी साइकिल चलाने में सक्षम नहीं थे उनके लिए ई कार्ड की व्यवस्था की गई थी। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की प्रतिभा एक बार फिर देश स्तर पर चमकी है। अमृतसर में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जबोवाल के दो विद्यार्थियों और एक अध्यापक द्वारा तैयार किया गया वैज्ञानिक प्रोजेक्ट विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 में जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट चुना गया है। इस प्रोजेक्ट को स्कूल के वोकेशनल लेक्चरर संजीव कुमार के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों साजन प्रीत सिंह और सुखबीर सिंह ने तैयार किया है। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य खेतीबाड़ी और बागवानी वेस्ट को रिसाइकल करके बायोफ्यूल तैयार करना और उसकी मदद से स्टीम के जरिए पौष्टिक भोजन बनाना है। तेलंगाना के मंत्री के वेंकट रेड्डी ने सरकारी स्कूल के 14 टॉपर बच्चों को सरप्राइज गिफ्ट दिया है। मंत्री ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए ये सरप्राइज गिफ्ट दिया। ये टॉपर स्टूडेंट्स हैदराबाद से जहाज से विशाखापट्टनम घूमने जाएंगे। 3-स्टार होटल में इनके रहने खाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मंत्री ने टीचर्स और पर्सनल स्टाफ मेंबर को भी साथ भेजने की व्यवस्था की है ताकि बच्चे पूरी ट्रिप के दौरान सुरक्षित महसूस करें।
9: और अब बात चार धाम की। देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं का जत्था लगातार पहुंच रहा है। भक्ति और आस्था की इस अद्भुत यात्रा में कोई सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर बाबा केदार के धाम पहुंच रहा है तो कोई कठिन और पहाड़ी रास्तों की परवाह किए बिना लगातार आगे बढ़ रहा है। हालांकि बद्रीनाथ में बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है जिससे श्रद्धालुओं को गर्मी से बड़ी राहत मिल गई है।
11: कंधों पर सामान, होठों पर भगवान और दिल में दर्शन की अभिलाषा लिए श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कहीं भजन कीर्तन की गूंज तो कहीं हर हर महादेव के जयकारों से पूरी देवभूमि भक्तिमय हो उठी है। देवाधिदेव महादेव की कृपा से पहाड़ तक झुक जाते हैं। शिव की महिमा ऐसी कि आस्था की कोई सीमा नहीं रह जाती। केदारनाथ धाम में एक बार फिर शिव की अनंत शक्ति का चमत्कार देखने को मिल रहा है। देवभूमि की हर दिशा में आस्था, भक्ति और विश्वास का अटूट संगम देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा में कोई सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय कर बाबा के दरबार पहुंच रहा है तो कोई कठिन पहाड़ी रास्तों पर कदम बढ़ाते हुए बाबा के धाम में मत्था टेकने आ रहा है। एक पैर के सहारे ये भक्त बाबा केदार के धाम पहुंचा है। एक पैर नहीं लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं। एक पैर के साथ किसी तरह महादेव का ये भक्त उनके धाम पहुंचा। आस्था की ऐसी ही तस्वीर बद्रीनाथ धाम से भी आई है जहां 15 लोगों का जत्था मध्य प्रदेश से पैदल यात्रा करते हुए बाबा केदार के धाम पहुंचने वाला है। 3 मई को चले ये यात्री आज रुद्रप्रयाग पहुंचे। एक हफ्ते के अंदर ये बद्रीनाथ पहुंचेंगे। वहां बद्री विशाल के दर्शन के बाद केदारनाथ समेत गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर वो पैदल ही निकलेंगे।
12: हम 3 मई को निकले हैं बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं और हमें आज स्नान रुद्रप्रयाग में किए हैं और बद्रीनाथ की यात्रा करने के साथ दर्शन करते हुए फिर हम जाएंगे केदारनाथ जाएंगे। केदारनाथ की यात्रा करके गंगोत्री जाएंगे, यमुनोत्री जाएंगे, फिर उसके बाद घर वापस लौटेंगे।
13: हम यात्रा करने के लिए निकले भैया थी कोई अकुपड़ होंगे।
14: अभी दिक्कतें हो रही है रास्ते में क्या करें?
13: कोई दिक्कत नहीं, आराम से असली जा रहे हैं असली।
11: चारधाम यात्रा किसी के लिए तपस्या है तो किसी के लिए जीवन का सबसे बड़ा सपना और ये आस्था ही है कि महज एक महीने में करीब 19 लाख लोगों ने चारधाम यात्रा कर ली है। सबसे ज्यादा उत्साह केदारनाथ धाम में देखने के लिए मिल रहा है। ये पहली बार है जब बाबा केदार के द्वार पर एक महीने में 7.5 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे हैं। आलम ये है कि रोजाना 25 से 30 हजार भक्त बाबा केदार के धाम पहुंच रहे हैं।
15: एक महीने में 7.5 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इससे पूर्व कभी भी एक महीने में इतनी भारी संख्या में यात्री बाबा के दरबार में नहीं पहुंचे हैं। इन दिनों बाबा केदार का पैदल यात्रा मार्ग हो या मंदिर परिसर भक्तों से गुलजार है। सुबह से साय तक बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कुल मिलाकर कहें तो इन दिनों केदारनाथ धाम में आस्था का मेला लगा हुआ है और बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है।
11: इन दिनों केदारनाथ चारधाम यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण बना हुआ है। इसकी वजह है बेहतर सड़कें, हेलीकॉप्टर सेवा और अच्छी व्यवस्थाएं। इसी का असर है कि केदारनाथ यात्रा में पिछले साल के मुकाबले इस साल शुरुआती चरण में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और देश विदेश से भक्तों का लगातार आना जारी है। केदारनाथ की यात्रा सबसे लंबी है, करीब 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। ऐसे में यात्रा सुगम तरीके से संचालित हो, इसके लिए प्रशासन भी एक्शन मोड में है। लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण हो रहा है, यात्रियों से फीडबैक लिया जा रहा है और यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
16: यात्रा सुगम और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित है, इसी के क्रम में आज मेरे द्वारा सड़क मार्ग का निरीक्षण किया गया। सिरसी टोल प्रयाग पैदल और गाड़ी के माध्यम से देखा गया। इसके बाद मैंने पैदल भी देख रहा है गौरीकुंड तक, और जो यात्री यहाँ पर आए हैं उनसे फीडबैक भी प्राप्त किया है। कुछ जगह पर कल शाम को हल्का लैंडस्लाइड हुआ था जो कि गौरीकुंड से थोड़ा पहले था। वहाँ पर JCB इत्यादि की मशीनें लगा करके काफ़ी हद तक कल शाम को ही कर दिया गया था, और अभी भी JCB के माध्यम से कुछ मटेरियल को अच्छा मलबा पहुँचाया जा रहा ताकि ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए।
11: केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम ही नहीं, भक्तों का तांता उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी लगा हुआ है। कपाट खुलने के बाद से अब तक इन दोनों धामों में 6,45,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं।
17: इस वक्त मैं मौजूद हूं यमुनोत्री नेशनल हाईवे के बड़कोट स्थान पर, और ये वही स्थान है जहाँ पर यात्री पंजीकरण जाँच की जाती है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से तीर्थयात्रियों के वाहनों का काफिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर प्रत्येक दिन तीर्थ यात्रियों की संख्या की बात की जाए तो जो पुराना रिकॉर्ड है वो लगातार टूटता चला जा रहा है। कल तक की अगर बात की जाए तो 15,000 लगभग तीर्थ यात्री यमुनोत्री धाम की ओर आए थे, और आज जो यात्रियों की संख्या है वो यात्रियों की संख्या 16,000 के आसपास बताई जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर के दिन प्रतिदिन यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। यात्रियों की जो यात्रा के प्रति जो आस्था है, श्रद्धा, उमंग और उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। लगातार तीर्थ यात्री यमुनोत्री धाम की ओर अपना रुख किए हुए हैं।
11: वहीं बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। मौसम के करवट बदलने से बद्रीनाथ धाम में झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं का जोश भी हाई हो गया है, क्योंकि यहां पहुंचे श्रद्धालुओं को गर्मी से जो राहत मिल रही है, और अचानक मौसम के इस बदलाव के चलते यहां ठंड भी महसूस की जा रही है।
18: यहाँ का मौसम एक नंबर बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे बद्री विशाल का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ और वातावरण भी बहुत अच्छा है। बद्री विशाल की जय, बद्री विशाल की जय।
19: बद्रीनाथ आए तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत शांति से मजा आया और दर्शन करके अच्छा लगा हमें। जय बद्री विशाल केदारनाथ की जय, जय बद्री विशाल केदारनाथ की जय।
11: तीर्थयात्रियों की संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये ईश्वर की असीम कृपा है। पैदल चलकर ये दर्शन करने का तप है और जीवन भर की सुनहरी यादें भी हैं। जाहिर है चारधाम यात्रा ने इस बार आस्था और श्रद्धा के नए रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। यात्रा शुरू हुए अभी सिर्फ एक महीना ही हुआ है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या 19 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है, और जिस रफ्तार से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उसे देख आने वाले दिनों में यात्रा के और बड़े रिकॉर्ड बनने की उम्मीद जताई जा रही है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
9: न्यूज पथ पर आ गया है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। शुक्रवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 232 अंकों की बढ़त के साथ 75,415 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 64 अंक चढ़कर 23,719 पर बंद हुआ। शुक्रवार को गोल्ड की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 600 रुपए गिरकर 1,64,900 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,71,000 रुपए बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को देखते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में लगातार दूसरे दिन सुधार देखने को मिला। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 63 पैसे मजबूत होकर 95.73 पर बंद हुआ। न्यूज पथ में खबरों के सफर को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
9: ओडिशा के चांदीपुर फायर रेंज से भारत ने अग्निवन बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 700 से 900 किलोमीटर है मारक क्षमता, परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट। काशी की समृद्ध कला संस्कृति को मिलेगा नया मंच। आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन की 3D इमेज जारी। गुजरात के गांधीनगर में स्वामी महावीर का हुआ सूर्य तिलक। श्री महावीर जैन आराधान केंद्र में दोपहर 2:07 पर बना शुभ संयोग। अलौकिक घटना के गवाह बने हजारों भक्त। पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक करीब 20 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। झमाझम बारिश के बीच बद्रीनाथ में उमड़ा आस्था का समंदर। न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और कुछ हंसाएंगे भी।
21: सभी को पपेट शो के बारे में तो पता ही होगा, जिसमें एक आदमी कुछ कठपुतलियों को अपनी उंगली से कंट्रोल करता है और एक कमाल का शो दिखाता है। इसी से जुड़े वायरल वीडियो में नजर आता है कि एक पपेट कुछ आर्ट बनाने में लगी हुई है। वो कलम निकालती, उसकी इंक चेक करती, कागज पर कुछ बनाती और फिर उसे गौर से देखते हुए नजर आती। उस पपेट को एक आदमी कंट्रोल करता हुआ नजर आता है। गर्मी से बचने के लिए एक कपल ने बाइक पर ऐसा जुगाड़ भिड़ाया जिसने सबको चौंका दिया है। आलम यह है कि इस वीडियो को लोग बार बार देख रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं। वीडियो में देखा जा रहा है कि गर्मी से बचने के लिए किस तरह एक कपल ने बाइक को ढका है। देखकर ऐसा लगता है जैसे बाइक नहीं बल्कि चलता फिरता घर हो। आलम यह था कि सड़क पर पलट पलट कर लोग इसे देख रहे थे। किसान की मेहनत उसकी फसल में ही दिखती है। इस फसल के मन मुताबिक फलने फूलने की खुशी किसान ही महसूस कर सकता है। तेलंगाना के एक किसान ने ये खुशी न सिर्फ खुद महसूस की है बल्कि दूसरों को भी महसूस कराई है। खुशी में वो जो भी कर रहा है उसे वो इंसान भी महसूस कर सकता है जिसने कभी खेती होते हुए भी नहीं देखी हो। वीडियो में किसान को गुलाटियां लगाते देखा जा रहा है। वो ऐसी गुलाटियां लगा रहा है जैसे छोटा बच्चा हो, जबकि वो देखने में अधेड़ उम्र का लग रहा है। उसकी खुशी इतनी थी कि उसने उम्र देखने वालों और फसल काटने वालों की भी चिंता नहीं की। जंगल सफारी के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ का माहौल हमेशा नेचुरल रहता है, ताकि जानवरों को ये जगह अपनी ही लगे। वन्य विभाग के अधिकारी जंगल का रखरखाव करते हैं। अब तो ऐसी कई फैसिलिटीज हैं जिसका इस्तेमाल इस रखरखाव में किया जाता है, मगर जानवर खुद भी अपने जंगलों का ख्याल रखना जानते हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक आंसर शीट नजर आ रही है। उसमें छात्र ने सभी सवालों के जवाब भी लिखे हैं, लेकिन टीचर का दिमाग कुछ शब्द देखकर घूम गया, क्योंकि उसने उसकी कल्पना नहीं की थी। छात्र ने अबाउट को एबीटी लिखा हुआ है, उसने आगे एक जगह पर किंडा लिखा हुआ है, वहीं एक जगह पर उसने बाय द वे की जगह बीटीडब्ल्यू लिखा हुआ है। ये शॉर्ट फॉर्म है जो लोग सोशल मीडिया पर बात करते हुए यूज करते हैं, मगर आंसर शीट में देखकर टीचर ने भी माथा पकड़ लिया। जब आपका स्टूडेंट जेन जी हो और आप कुछ नहीं कर सकते।
9: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले के बाद भोजशाला परिसर में आज अखंड पूजा और महाआरती का आयोजन किया गया। बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग भोजशाला में जुटे। परिसर में 1 बजे महाआरती हुई। कोर्ट के फैसले से पहले भोजशाला परिसर में शुक्रवार को 1 बजे जुमे की नमाज अदा की जाती थी। बताया जा रहा है कि ये 721 साल बाद पहला ऐसा शुक्रवार है जब कोर्ट के फैसले के बाद परिसर में नमाज नहीं हुई और मंदिर में पूजा के लिए हिंदुओं की एंट्री हुई। गौशाला में लगे उस बोर्ड को भी छिपा दिया गया है जिस पर पहले लिखा था शुक्रवार को हिंदुओं का प्रवेश वर्जित। हिंदू पक्ष ने आज मंदिर के गर्भगृह में मां सरस्वती की प्रतीकात्मक प्रतिमा के साथ पूजा अर्चना की। पूरे गर्भगृह को फूलों से सजाया गया और धार्मिक अनुष्ठान किए गए। प्रशासन ने परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा बल तैनात किए ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। मंदिर में पूजा शुरू होने के बाद हमने श्रद्धालुओं से बात की और उनकी राय जानी।
1: धार शहर के लोगों के लिए आज बड़ी गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज यही है कि उन्हें इतने सालों के बाद आज धार में भोजशाला में शुक्रवार के दिन प्रवेश की अनुमति मिली है। जो लोग बाहर भी निकल रहे हैं उनसे भी हम बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है हिंदुओं के लिए?
2: बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। माँ सरस्वती की आराधना की शुरुआत होगी और इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। हाईकोर्ट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया है और सच्चाई से ही दिया है, उसमें कहीं भी लाग लपेट नहीं है। ये पुराने समय 1300-1500 साल से का इतिहास उसमें वर्णन हुआ, हाईकोर्ट के जजमेंट में हुआ है। और ये कहना कि यहाँ 700 साल से नमाज हो जाती है बहुत ही गलत है, ये बहुत ही गलत तथ्य है। हाईकोर्ट ने उसको भी इंगित किया है। 1935 धार महाराज ने कुछ परमिशन दी थी कुछ नमाज पढ़ने के लिए और उसमें भोजशाला ही लिखा गया था।
1: कब अब आपको लगता है कि अंदर प्रतिमा जानी, क्योंकि आज जो आपने दर्शन किया वो तो प्रतीकात्मक
22: है सर। और हम तो ये भी चाहते हैं नवन जी के समय जो प्रतिमा जब तो हुई गावल लेन में शिवराज के समय, वो प्रतिमा आना चाहिए जंडी से जंडी। प्रतिमा एक यहाँ भी है गावल लेन के अंदर जो नवन जी लेके आ रहे थे, और हमारा प्रयास था कि धार में लाए, पर वो शिवराज जी ने वहीं जमा कर ली। वो प्रतिमा जंडी से जंडी है ना, आज हम ये चाहते हैं।
1: तो आप देख सकते हैं और भी लोग हैं, आप बताइए आपने भी दर्शन किए आज यहाँ पे?
23: जी देवी के बहुत अच्छा लगा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है।
1: कितने सालों का इंतजार था कि शुक्रवार को आप आए अंदर और भोजन
24: में? बाद हिंदू समाज को पूजा का अधिकार मिला है और बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है। अच्छी संख्या में भीड़ भी आ रही है, बहुत बढ़िया माहौल भी बहुत बढ़िया है।
25: दर्शन करके आए थे, बहुत सारे समय मिला है, इसीलिए हमने बहुत कठिन का मामला था, इसीलिए मैंने कहा चलो आप दर्शन करने के लिए छुटकारा दे भोसला मंदिर का ले।
1: भजन में झूम भी रही?
26: हाँ जी झूम रहे थे ना, क्यों नहीं, अपना मंदिर हो गया तो अपन झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे,
27: तो फिर वो तो झूमेंगे नाचेंगे भजन करेंगे।
26: आनंद आ रहा हमको तो, बहुत ज्यादा आनंद आ रहा हम लोगों को, वही तो।
9: फिल्मपेदी के नए गाने का धमाकेदार प्रोमो आया सामने। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
10: रामचरण की फिल्म पेदी के नए गाने हेल्ला लालो का प्रोमो रिलीज हो गया है। इस गाने में रामचरण और जानवी कपूर जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं। फिल्म पेदी का सबसे बड़ा म्यूजिकल इवेंट 23 मई को भोपाल में होने जा रहा है, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर बुची बाबू सना, संगीतकार AR रहमान समेत फिल्म की पूरी स्टार कास्ट शामिल होगी। मेकर्स ने फिल्म के नए गाने का प्रोमो जारी कर दिया है, जबकि पूरा गाना भोपाल में 23 मई को होने जा रहे इवेंट में रिलीज होगा। फिल्म पेद्दी का प्रीमियर 3 जून को रखा गया है और 4 जून को ये दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म रामायण के मेकर्स को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। इसके सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए 450 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई है। राइट्स को लेकर ये डील पूरी होने पर ये शाहरुख खान की फिल्म किंग के मौजूदा रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा रकम होगी। किंग के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की डील करीब 250 करोड़ में हुई थी। रामायण को लेकर अगर डील इससे ज्यादा में होती है तो एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने डिजिटल राइट्स के लिए 1000 करोड़ पर नजरें टिकाई हुई हैं। यानी रणबीर कपूर और यश स्टार ये फिल्म पर्दे पर आने से पहले ही एक नया इतिहास रचने की तैयारी में जुटी है। धुरंधर की शानदार कामयाबी के बाद फैंस को अब आर माधवन की मोस्ट अवेटेड बायोपिक ड्रामा GDN का इंतजार है। महान आविष्कारक और उद्योगपति GD नायडू के जीवन पर आधारित ये फिल्म 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कृष्ण कुमार राजकुमार निर्देशित ये फिल्म तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में रिलीज की जाएगी। हाल ही में इस फिल्म का नया पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें माधवन को युवा GD नायडू के रूप में दिखाया गया है, जो भीड़ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं।
9: उत्तराखंड में पहले 4 धाम के कपाट खुले, फिर पंच केदार के अलग अलग धामों के कपाट खुले और अब बारी है श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की। सिखों के इस पवित्र स्थल के कपाट खोले जाने को लेकर श्रद्धालुओं का पहला जत्था गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो चुका है। इस अवसर पर गोविंद घाट गुरुद्वारा की भक्तिमय चमक देखने वाली रही, जहां से धूमधाम के साथ श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के लिए निकले।

0: श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने को लेकर श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। हेमकुंड साहिब यात्रा के मुख्य पड़ाव गोविंद घाट गुरुद्वारा पहुंचे श्रद्धालु यहां अरदास, शब्द कीर्तन सब करते नजर आए। विशेष अवसर को लेकर गुरुद्वारा भी विशेष रूप से सजा संवारा गया। यहां से पंच प्यारों की अगुवाई में जत्थे की रवानगी को लेकर श्रद्धालु भक्ति के रंग से सराबोर नजर आए। गोविंद घाट गुरुद्वारे से धूमधाम के साथ श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। बैंड बाजे और आतिशबाजी के साथ ये जत्था पैदल गुरु के दरबार के लिए पूरे जोश के साथ निकला, जिसकी छटा देखने लायक रही।
1: यात्रा करते हैं संगत और बहुत ही कठिन है, बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन उत्साह के साथ देख सकते हैं, मानो कोई जैसे यात्रा शुरू हो रही है, वैसे ही लोग सब अब यहां से हेमकुंड साहिब के लिए निकल चुके हैं।
0: हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होने वाले श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव के साथ जोश से भरे दिखे।
2: इतना उत्साह है संगत के, संगत जोश, पूरे जोश के साथ यहाँ पे दर्शन करने के लिए आई है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
3: गुरु महाराज का आशीर्वाद लेना है और अपना यही है कि अब यात्रा सफल रहे हमारी।
4: पैदल ही जाएंगे?
3: हाँ जी, पैदल ही जाएंगे जी।
4: कितने लोग हैं?
3: हम लोग एक पूरा जत्था है, 200 के करीब लोग हैं। तो अपने घर से तो मैं और मेरी वाइफ ही हैं।
5: 23 तारीख को ओपनिंग है, वहाँ पे हम पहले जत्थे जाएंगे। हर साल आते हैं, 7-8 साल से रेगुलर आ रहे हैं। एक बार जो जाएगा दर्शन कर लेगा जन्नत के, वो बार बार जाने की कोशिश करेगा।
0: गोविंद घाट से रवाना हुआ जत्था अपने दूसरे पड़ाव घांगरिया पहुंचेगा। वहां रात्रि विश्राम करने के बाद श्रद्धालु 15,210 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुरुद्वारे तक पहुंचेंगे।
1: यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। वहीं जो घांगरिया में गोविंद धाम का गुरुद्वारा है, वहां पे भी बड़ी संख्या में सिख संगतें पहुंची हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं। और कल सुबह जब हेमकुंड साहिब के कपाट खोलेंगे तो हेमकुंड साहिब में भी बहुत जबरदस्त इस बार भीड़ रहने की उम्मीद है।
0: 19 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर श्रद्धालु अपनी पीठ पर सामान का बैग लेकर निकले हैं। वहां तक पहुंचना कठिन भले है, लेकिन श्रद्धालुओं का जोश उससे कहीं ज्यादा नजर आया।
6: ये जत्था जो 20 तारीख को ऋषिकेश से चला था पंच प्यारों की अगुवाई में, आज गोविंद घाट से उसकी रवानगी हुई है। और जो हर्षोल्लास आज देखा है तो बहुत दिल खुश हुआ है। और सभी को बधाई है, जितने जन संगत जो आ रही है उनको बधाई है, हमारे उत्तराखंड वासियों को हर एक को बधाई है कि आज जो पांचवा धाम हम कहते हैं हेमकुंड साहब, उसकी यात्रा भी प्रारंभता भी शुरू हो गई है। और जो इस बार हम संगत का रुझान देख रहे हैं, उससे लगता है कि सारे रिकॉर्ड इस वर्ष टूटेंगे। और इस वर्ष जो ओपनिंग पे भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 6,000-7,000 आदमी ओपनिंग पे भी आएंगे।
0: 23 मई वो तिथि है जब श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन के अवसर मिलेंगे।
7: 9 बजे गुरु ग्रंथ साहब जी को सचखंड से पांच प्यारों की अगुवाई में दरबार हाल में सुशोभित किया जाएगा। उपरांत 10 बजे श्री सुखमनी साहब के पाठ आरंभ होंगे और 11:30 से लेकर 12:15 बजे तक कीर्तन होगा, जिसमें भाई सुखदीप सिंह जी हजूरी रागी जो हैं दरबार साहब के, वो कीर्तन करेंगे। उपरांत 12:30 बजे इस साल की पहली अरदास होगी। 1 बजे हुक्मनामा लिया जाएगा। इसी के साथ श्री हेमकुंड साहब की यात्रा 2026 का आगाज हो जाएगा।
0: चमोली जनपद के हेमकुंड साहिब में आस्था का एक प्रमुख केंद्र लोकपाल लक्ष्मण मंदिर भी है। इस मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए। हेमकुंड साहिब में गुरुद्वारे के साथ लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुलने से अब वहां श्रद्धालुओं को गुरु साहिब के साथ लक्ष्मण जी के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
10: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
11: It's your boy,
10: just
11: Jay-Z.
10: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
11: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
12: अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
8: विनेश फोगाट के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने WFI के खिलाफ जताई तीखी नाराजगी। खेल जगत से जुड़ी कुछ ऐसी ही और जानकारी के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
0: भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं से बाहर करने के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तीखी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व किसी खिलाड़ी के करियर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जुलाई 2025 में मां बनने के बाद वापसी की तैयारी कर रही विनेश फोगाट को WFI ने 26 जून 2026 तक घरेलू टूर्नामेंट खेलने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार को तुरंत विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का निर्देश दिया है जो कि विनेश की फिटनेस और प्रतिस्पर्धा में वापसी का आकलन करेगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि विनेश को हर हाल में एशियन गेम्स चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। आईपीएल 2026 का 67वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एसआरएच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये दोनों ही टीमें पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी हैं। इस मैच से पहले आरसीबी अभी 18 पॉइंट्स के साथ टेबल में टॉप पर है जबकि एसआरएच 16 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल के इस सीजन में पहला प्लेऑफ यानी क्वालिफायर वन खेलना पक्का कर लिया है। गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में जीत दर्ज करने के साथ ही उनके 18 पॉइंट्स हो गए और वो टेबल में दूसरे नंबर पर जा पहुंची। जबकि गुजरात टाइटंस से हारने के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन गई।
8: जैसा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से विदेश यात्रा के बजाय अपने देश को एक्सप्लोर करने की अपील की है, तो जीएनटी भी आप सभी से अपील कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें भेजें ताकि हम आपके उन वीडियोस को दिखाएं। हमारे दर्शक भी बड़े ही उत्साह के साथ अपनी जगहों के खूबसूरत वीडियो भेज रहे हैं। तो चलिए आज आपको टिहरी के उन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में व्लॉगर बने एक दर्शक की जुबानी सुनाते हैं कि क्यों आपको उत्तराखंड के इस बेहद मनमोहक और खूबसूरत शहर को एक्सप्लोर करना चाहिए।

0: गुड न्यूज टुडे के लिए आपका टीरी गढ़वाल से स्वागत करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे टीरी गढ़वाल के सुदूर क्षेत्र गंसाली क्षेत्र में चूल्हागढ़ बासर में मौजूद हूँ। अभी मैं यहाँ चूल्हागढ़ धाम में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर, यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे लगातार जो है कार्यक्रम होते रहते हैं, सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं और इस क्षेत्र से हमारे पूरे क्षेत्र का नज़ारा दिखता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि घूमने के लिए जो है अपने अपने ही देश में जो अलग अलग रमणीक स्थानों पर जाए, तो हमारे उत्तराखंड में टिहरी में भी बहुत ही सुंदर स्थान है। इधर हमारा इधर टिहरी गढ़वाल में ही पवाली कांठा और कई प्रकार के ट्रैकिंग है, मासर ताल है, इधर नचिकेता ताल है और टिहरी झील है और कई अन्य प्रकार के यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं और धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे बुढ़ा केदार हो गया और सुरकंडा देवी हो गया, इधर ये चूल्हागढ़ हो गया।
1: बहुत नाम सुना है ये जो राजराजेश्वरी देवी है और ये जो भूमि है, अनेक ऋषि मुनियों ने यहाँ पे तप किया और ये सुंदर भूमि, हमने जो है कई हमारे जानकार रहते हैं उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो है भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, इसलिए मंदिर को देखने के लिए आए। जो भगवान का आस्था रखते हैं उनके लिए ये दिव्य स्थान है, उनको जरूर जो है यहाँ पे आना चाहिए। जो आनंद की अनुभूति आज हमें यहाँ इस स्थान पर हुई है, वो आनंद की अनुभूति आपको कहीं भी नहीं हुई है। ये सिद्ध क्षेत्र है और जरूर आप आए और माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करें।
0: यहाँ पे पूरे देश के पर्यटक यहाँ पे मैं उनका स्वागत करता हूँ कि वो यहाँ पे आए और इन रमणीक स्थानों का जो है भ्रमण करें अपने परिवार के साथ।
2: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें, तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है, तो उठाइए अपना कैमरा और बनाइए व्लॉग और हमें 7303-409922 पर व्हाट्सएप करें, हम उसे GNT पर दिखाएंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
4: क्या बच्चे के ग्रह की वजह से उसकी माता की सेहत बिगड़ सकती है? क्या बच्चे के ग्रह की वजह से उसके घर में विवाद हो सकते हैं? क्या बच्चे के ग्रहों की वजह से आर्थिक स्थिति चमक सकती है? बच्चे के ग्रहों का माता पिता के भाग्य पर क्या होता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: Employers don't hire diplomas, they hire skills. At WGU School of Technology, you'll earn both with a degree backed by industry certifications that prove you're job ready. Learn more at wgu.edu.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Your Saturday nights will never be the same.
8: The biggest hits back to back in the mix.
9: Get ready for the biggest mix show on the planet.
10: The Tailgate Block Party.
11: The Tailgate Block Party.
9: 6 hours nonstop. Nonstop.
10: The best DJs from around the world.
11: The Tailgate Block Party.
9: Saturday night.
11: 8 p.m. Eastern.
10: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
9: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
2: पक रही होती है खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
12: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
15: गुड न्यूज टुडे
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: Asambhav khud batata hai ki sambhav mujh mein hi hai.
5: Aur durbhagya kehta hai
4: ki bhagya kahin dur nahi.
6: Avishwas mein विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
7: गुड न्यूज टुडे.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
7: गुड न्यूज टुडे.

0: न एयर डिफेंस न रडार, टूट जाएगी दुश्मन की दीवार। दुश्मनों का सर्वनाश करेगा सेना का अदृश्य अवतार। आ रहा वायुसेना का मिस्टर इंडिया। देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: पवित्र अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंदिर कर्मचारियों ने गुफा में किया प्रवेश। 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिन चलेगी यात्रा।

चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक करीब 20 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। झमाझम बारिश के बीच बद्रीनाथ में उमड़ा आस्था का समंदर। चमोली के गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू। अरदास के बाद पंच प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे की रवानगी। कल से खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। गुजरात के गांधीनगर में स्वामी महावीर का हुआ सूर्य तिलक। श्री महावीर जैन आराधान केंद्र में दोपहर 2:07 पर बना शुभ संयोग। अलौकिक घटना के गवाह बने हजारों भक्त। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट। काशी की समृद्ध कला संस्कृति को मिलेगा नया मंच। आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन की 3D इमेज जारी। उड़ीसा के चांदीपुर फायर रेंज से भारत ने अग्निवन बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 700 से 900 किलोमीटर है मारक क्षमता। परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा। नैनीताल मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों तक गर्मी का असर। दोपहर के वक्त सावधानी बरतने की सलाह।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं चारधाम यात्रा की। उत्तराखंड की देवभूमि इस वक्त आस्था के सबसे बड़े उत्सव की गवाह बनी हुई है। एक तरफ जो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल के जयकारे लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का पहला जत्था श्री हेमकुंड साहिब की कठिन लेकिन पवित्र चढ़ाई की तरफ रवाना हो गया है। दूसरी ओर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भक्तों का सैलाब नए रिकॉर्ड बना रहा है। बर्फीले रास्तों, लंबी चढ़ाइयों और मुश्किल मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है और आंकड़ा करीब 20 लाख तक जा पहुंचा है। आज आपको पांचवें धाम कहे जाने वाले हेमकुंड साहिब यात्रा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ में आस्था का जनसैलाब दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं हेमकुंड साहिब यात्रा से, जिसके लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था निकल चुका है। पंच प्यारों की अगुवाई में ऋषिकेश से पहुंचा जत्था गोविंद घाट रुका और फिर घांगरिया के लिए रवाना हो गया। इस जत्थे में बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं, जो कि शनिवार को हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जाएंगे और वहां अरदास होगी। इसके साथ ही यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। सिख श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर जोश है। मौसम अच्छा है, फिर भी रास्ते की चुनौतियों को देखते हुए यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।

0: जत्था रवाना होने से पहले गोविंद घाट गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं ने माथा टेका और यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना की। इसके बाद हुक्मनामे के साथ पंज प्यारों की अगुवाई में जत्था अगले पड़ाव यानी घांगरिया के लिए रवाना हो गया।
1: तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा इस समय शुरू हो चुकी है। पंच प्यारों की अगुवाई में अब पहला जत्था गोविंद घाट गुरुद्वारे से बैंडों की धुन के साथ अब हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो सिख संगत है वो पहुंची हुई है। ये वो पंच प्यारे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये पंच प्यारे हैं जिनके साथ अब पहला जत्था आज गोविंद घाट गुरुद्वारे से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो रहा है। इसके पीछे सैकड़ों हजारों की संख्या में जो सिख श्रद्धालु है, पहली संगत है, वो अब यहाँ से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो चुकी है। बड़ा उत्साह इस समय, बड़ी कठिन और दुर्गम यात्रा होती है हेमकुंड साहिब की क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे है, लेकिन जो सिख श्रद्धालुओं का उत्साह है वो बहुत ही जबरदस्त है। हाई अल्टीट्यूड में जाने का, खासकर विशेष तौर पे विशेष इंतजाम करने के बाद यहाँ से ये लोग जाते हैं। हमने जिन भी यात्रियों से पूछा इतनी टफ कठिन यात्रा है क्या क्या व्यवस्थाएं वो करते हैं, तो उनका कहना था बहुत सारी चीजें वो रखते हैं, मिश्री हुई, टॉफियां हुई, छाता हुआ, बरसाती हुई, तमाम चीजों को साथ यात्रा करते हैं संगत। और बहुत ही कठिन है, बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन उत्साह के साथ देख सकते हैं मानो कोई जैसे यात्रा शुरू हो रही है वैसे ही लोग सब अब यहां से हेमकुंड साहिब के लिए निकल चुके हैं।
0: इस साल मौसम मेहरबान नजर आ रहा है और इसलिए उम्मीद है कि भारी तादाद में सिख श्रद्धालु हेमकुंड साहिब यात्रा में शामिल होंगे। पहले जत्थे में ही जैसी भीड़ है उसे देखते हुए यह अंदाजा गलत नहीं लगता कि इस साल नए रिकॉर्ड बनेंगे। हाँ, यात्रा की चुनौतियों को देखते हुए श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने तीर्थयात्रियों से अपना ख्याल रखने और निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
2: ये जत्था जो 20 तारीख को ऋषिकेश से चला था पंच प्यारों की अगुवाई में, आज गोविंद घाट से उसकी रवानगी हुई है और जो हर्षोल्लास आज देखा है तो बहुत दिल खुश हुआ है। और सभी को बधाई है, जितने जन संगत जो आ रही है उनको बधाई है, हमारे उत्तराखंड वासियों को हर एक को बधाई है कि आज जो पांचवा धाम हम कहते हैं हेमकुंड साहब उसकी यात्रा भी प्रारंभता भी शुरू हो गई है। और जो इस बार हम संगत का रुझान देख रहे हैं उससे लगता है कि सारे रिकॉर्ड इस वर्ष टूटेंगे और इस वर्ष जो ओपनिंग पे भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 6-7 हज़ार आदमी ओपनिंग पे भी आएंगे। कि जो संगत बुजुर्ग है या जिनको अस्थमा है या जिनको कार्डियो की कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर से परामर्श करके तभी यात्रा के लिए प्रस्थान करें और कोई भी ऐसा काम ना करें, हट ना करें, क्योंकि संगत को ये समझना चाहिए, यात्री को ये समझना होगा कि ये कठिन यात्रा है। जितनी मर्जी आप सड़कें भी ठीक कर लो, ट्रैक भी ठीक कर लो, आफ्टरऑल चढ़ना आप ही को है। जब आप चलोगे तो शरीर जो आपका अगर साथ देता है तो तभी इतनी खड़ी चढ़ाई पे आप जा सकते हैं। तो हमारा फिर निवेदन है कि एक तो इस तरफ ध्यान रखें और दूसरा सफाई, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। पर्यावरण का हमने खास ध्यान रखना है, उत्तराखंड की नगरी में आप आयो, देवभूमि है ये, तो इस करके हमारा सबसे हाथ जोड़ के बेनती।
0: 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के कपाट 23 मई की सुबह खोले जाएंगे। शनिवार की सुबह 9:30 बजे कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू होगी, 10 बजे शबद कीर्तन होगा और 12:30 बजे साल की पहली अरदास हेमकुंड साहिब में पढ़ी जाएगी। इसी के साथ उत्तराखंड के पांचवें धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी।
3: साल ओपनिंग में गोविंद घाट में कल इकट्ठ हुआ है, वो 2011 के बाद समझिए कि जैसे उस समय यात्रा चली थी वैसा इकट्ठ देखने को मिला। लगभग 6-7 हज़ार यात्री कल गोविंद घाट में थे और जो घाघरिया पांच प्यारों की अगुवाई में घाघरिया को निकले हैं। उससे अलावा भी घाघरिया में भी 2-3 दिन पहले ही संगत बैठ चुकी थी आकर, और आशा करते हैं कि वाहेगुरु सभी की यात्रा सुगम बनाई रखे और जो भी यात्री की मनोकामना है वो गुरु के घर में आकर मत्था टेक के दर्शन करके गुरु साहब सब पे अपनी बख्शिश करे। सही 9 बजे गुरु ग्रंथ साहब जी को सचखंड से पांच प्यारों की अगुवाई में दरबार हाल में सुशोभित किया जाएगा। उपरांत 10 बजे श्री सुखमनी साहब के पाठ आरंभ होंगे और 11:30 से लेकर 12:15 बजे तक कीर्तन होगा। जिसमें भाई सुखदीप सिंह जी हजूरी रागी जो हैं दरबार साहब के वो कीर्तन करेंगे। उपरांत 12:30 बजे इस साल की पहली अरदास होगी, 1 बजे हुक्मनामा लिया जाएगा। इसी के साथ श्री हेमकुंड साहब की यात्रा 2026 का आगाज हो जाएगा।
0: हेमकुंड साहिब की यात्रा कठिन होती है, लिहाजा कपड़ों से लेकर खाने पीने की चीजों की पूरी तैयारी करनी होती है। सेहत को लेकर भी सावधानी जरूरी है, फिर भी इस यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का जोश है। गोविंदपुर से आगे पैदल रास्ते पर लोग जयकारा लगाते बढ़ते गए।
4: साल में उत्साह रहता है, ऐसा है कि एक बार कोई जाएगा तो स्वर्ग के दर्शन धरती भी हो सकते हैं, ये कहना चाहूंगा मैं। बहुत लाजवाब है, सारा प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। 23 तारीख को ओपनिंग है, वहाँ पे हम पहले जत्थे के साथ जाएंगे। हर साल आते हैं, 7-8 साल से रेगुलर आ रहे हैं। एक बार जो जाएगा दर्शन कर लेगा जन्नत के, वो बार बार जाने की कोशिश करेगा, ऐसा ना जा रहे हैं वहाँ के।
5: वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पहले तो सारी सिख संगत नूं साडे लो बहुत बहुत मुबारकां, जिहड़ी साडी यात्रा है वह हो गई है शुरू। हुण तुसीं घरां च नहीं बहना हैगा, जिवें आ देखो तुहाडी सामने है, सारी संगत पहुँच चुकी है। नगर कीर्तन के नाल तुसीं जथा देखिया, हर शहरां तों दो दो तीन तीन जथे पहुँचे ने, ते तुसीं वी तुहाडे अगे गुजारिश करदे आ, जिवें इत्थे आ के संगत जिहड़ी है पहुँच के गुरु घर दीआं खुशियां लैंदी है, ते तुसीं वी आना आके गुरु घर दीआं खुशियां लैके जाणियां। साडी सारी टीम जिहड़ी है जलंधर सिख यूथ काफला जलंधर तो पहुंची है, साडे नाल 60 तों 65 जणे पहुंचे ने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
6: इतने थे इस बार बुलाया है उन्होंने, तो कुछ सोच के बुलाया, अब अपने आप हाथ पकड़ के ले जाएंगे, वो यात्रा करवाएंगे। बल्कि नी कैप्स वगैरह पहन के जा रही हूँ मैं तो पैदल, ठीक है। खुशी है, उत्साह है कि चलो अब हमारा बुलावा तो आया दर्शनों के लिए, बस इसी चीज की खुशी है।
0: हेमकुंड साहिब सिखों का पवित्र धार्मिक स्थलों में शामिल है। माना जाता है कि हेमकुंड साहिब में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। जिस जगह पर गुरु जी ने ध्यान लगाया वहीं ये गुरुद्वारा बना है। गुरुद्वारे में माथा टेकने से पहले सिख श्रद्धालु इस पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। इस साल बर्फबारी की वजह से हेमकुंड साहिब के रास्ते में बर्फ की मोटी चादर बिछी थी, लेकिन सेना के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद बर्फ हटाकर रास्ता तैयार कर दिया। रास्ते की चुनौतियां तो खैर अभी भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा श्रद्धालुओं में उत्साह है।
7: 22 साल में जो मैं श्रद्धा देख रहा हूं सिख संगतों के अंदर, इतना उत्साह है गुरु महाराज के दर्शन करने का। आज यात्रा आरम्भ हो रही है गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब के लिए। परमात्मा सबकी अरदासें पूरी करे, चढ़ती कला रखे सबको, पूरे भारत देश वर्ष को गुरु गोविंद सिंह महाराज कृपा करें। बहुत उत्साह, आपने देखा होगा बाहर इतना उत्साह है, संगत जोश, पूरे जोश के साथ यहाँ पे दर्शन करने के लिए आई है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
8: बहुत उत्साह है जी, अपना पहली बार ही जा रहे हैं हम तो, अभी तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो सुना है कि यात्रा थोड़ी कठिन है, पर ठीक है जाना है, जब गुरु महाराज के दर्शन करने ही हैं तो जैसे भी हो यात्रा दर्शन तो करने ही है।
0: हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यात्रा ऋषिकेश से शुरू होती है। यात्री राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से होते हुए पहले देवप्रयाग पहुंचते हैं, वहां से श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और जोशीमठ तक की यात्रा होती है। जोशीमठ से यात्री आधार शिव गोविंद घाट जाते हैं। घांघरिया से हेमकुंड साहिब की दूरी 6 किलोमीटर है और ये यात्रा का अंतिम और सबसे खड़ी चढ़ाई वाला हिस्सा है, जिससे पैदल या खच्चर के जरिए तय किया जाता है। तीर्थ यात्रियों का उत्साह बहुत जबरदस्त है। चमोली में हर तरफ हेमकुंड साहिब यात्रा की रौनक दिखाई दे रही है और इंतजार देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं का है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: चार धाम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है, आंकड़ा करीब 20 लाख तक पहुंच गया है। वहीं बद्रीनाथ में जल्द ही आंकड़ा 5 लाख तक चला जाएगा। बद्रीनाथ में रोजाना करीब 15,000 से 20,000 लोग रोज दर्शन कर रहे हैं। धाम पर दर्शन के लिए लंबी कतारों में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिनकी मदद के लिए प्रशासन ने हर संभव इंतजाम किए हैं। बद्रीनाथ में श्रद्धा का जनसैलाब कैसा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।

0: हर कदम पर आस्था, हर सांस में भगवान। यही है बद्रीनाथ धाम की पहचान। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, सभी के दिलों में एक ही भाव, एक ही विश्वास। बद्रीनाथ के दर्शन के लिए भक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जिनको चलने में परेशानी है, उनकी मदद के लिए जवान और कर्मचारी तैनात हैं। हाथ थाम कर, कंधे पकड़ कर, सहारा देकर लोगों को दर्शन कराया जा रहा है। बुजुर्गों को पीठ पर बैठा कर मंदिर तक पहुंचाया जा रहा है। कुछ बीमार यात्रियों को कंधों का सहारा देकर आगे बढ़ाया जा रहा है। महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रास्ता दिखाने का काम भी लगातार किया जा रहा है।
1: बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आने के बाद चलो कोई तो स्वर्ग में आ गया है, ऐसा लगता है। बाकी यात्रा एकदम सही चल रही है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, सब जगह से मदद होती है।
0: चारों दिशाओं से लोग भगवान विष्णु के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि धाम के हर रास्ते पर श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा है। सुबह से रात तक मंदिर परिसर में घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण और जय बद्री विशाल के उद्घोष वातावरण को पूरी तरह भक्तिमय बना रहे हैं।
2: मैं अपने परिवार के साथ आई हूँ, पूरी फैमिली है जिसमें मामा, दामाद, भाई, बेटी सभी लोग हैं। और हम लोग ने हरिद्वार से स्टार्ट किया है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, और अब हम बद्री विशाल जा रहे हैं और यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही।
0: चार धाम यात्रा को शुरू हुए लगभग एक महीना पूरा हुआ है, लेकिन यात्रियों की संख्या ने पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। अब तक यहां आने वाले यात्रियों का आंकड़ा 4,69,515 तक पहुंच चुका है। बहुत जल्द 5,00,000 यात्रियों का आंकड़ा भी पार हो जाएगा। रोजाना करीब 15,000 से 22,000 तक भक्त भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। पूरा चार धाम यात्रा मार्ग इस समय भक्ति और उत्साह से भरा दिखाई दे रहा है। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ की यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु अब अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ की ओर बढ़ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आए परिवार, बुजुर्ग, युवा और महिलाएं बेहद उत्साह के साथ पवित्र यात्रा को पूरा कर रहे हैं।
3: तो हम लोग अभी 2-3 धाम कर चुके हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव था, और अभी 4th धाम बाकी है, तो वो भी अच्छा ही रहेगा।
0: भक्ति का सैलाब ऐसा है कि कई बार दर्शन के लिए लगी कतारें 2-3 किलोमीटर तक पहुंच जा रही हैं। कई बार सड़कों पर जाम लग रहा है, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से रास्ता जल्दी ही साफ हो रहा है। हाल ही में हुई बारिश के कारण कुछ मार्ग प्रभावित हुए थे, लेकिन उन्हें तेजी से ठीक कर लिया गया है।
4: व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सभी भक्तों से कहूंगा कि अपने मन में भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखें, और यात्रा संपूर्ण आपकी तब होगी जब आप चार धाम करेंगे, और जरूर उत्तराखंड आइए, यहां का टूरिज्म बहुत बेहतर है।
0: इधर चतुर्थ केदार रुद्रनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद वहां भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। 18 मई से शुरू हुई यात्रा में भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और उम्मीद है कि पंच केदार यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सालों के रिकॉर्ड को पार कर सकती है। उत्तराखंड से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: चार धाम की यात्रा में सबसे ज्यादा रौनक बाबा केदार के धाम में है। वहां यात्रा मार्ग से लेकर मंदिर प्रांगण तक यात्रियों का जमावड़ा है। भोले की भक्ति में लीन भक्त चुनौतियों का सामना करते हुए दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी आस्था और भक्ति की वजह से केदारनाथ यात्रा में नया रिकॉर्ड बना है। महीने भर की यात्रा में केदारनाथ धाम का आंकड़ा करीब 8,00,000 तक जा पहुंचा। देखिए ये रिपोर्ट।

0: महादेव की कृपा से पहाड़ तक झुक जाते हैं। शिव की महिमा ऐसी कि आस्था की कोई सीमा नहीं रह जाती। केदारनाथ धाम में एक बार फिर शिव की अनंत शक्ति का चमत्कार देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में ही केदारनाथ धाम ने एक नया इतिहास रच दिया है। बाबा के धाम में एक बार फिर चमत्कार हुआ है।
1: प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी बाबा केदारनाथ की यात्रा इस बार पुराने सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रही है। एक महीने में 7.5 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है।
0: कपाट खुलने के 30 दिनों में ही 7,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। आलम ये है कि रोजाना 25,000 से 30,000 भक्त दर्शन को उमड़ रहे हैं। इन दिनों केदारनाथ चारधाम यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण बना हुआ है। इसकी वजह है बेहतर सड़कें, हेलीकॉप्टर सेवाएं और अच्छी व्यवस्थाएं। इसी का असर है कि केदारनाथ यात्रा में पिछले साल के मुकाबले इस साल शुरुआती चरण में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। देश विदेश से भक्तों का लगातार आना जारी है। भक्तों का तांता उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी लगा हुआ है। कपाट खुलने के बाद से अब तक इन दोनों धामों में 6,45,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं।
2: यमुनोत्री धाम में 3,17,000 से भी अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुनोत्री नेशनल हाईवे के बड़कोट स्थान पर, और ये वही स्थान है जहाँ पर यात्री पंजीकरण जांच की जाती है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से तीर्थयात्रियों के वाहनों का काफिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
0: यात्रा सीजन में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ने से धाम में लगातार रौनक बनी हुई है। तीर्थयात्रियों की संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये ईश्वर की असीम कृपा है। पैदल चलकर दर्शन करने का तप है और जीवन भर की सुनहरी यादें हैं। और इसलिए तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए केदारपुरी पहुँच रहे हैं। अटूट आस्था और अटल इरादों के साथ ये साधु एक पैर के सहारे केदारनाथ धाम पहुंच गए। वक्त लगा, मुश्किल आई, पर 7 दिन में किसी तरह रुकते चलते ये धाम तक आ ही गए।
3: प्रशासन को क्या थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनको चलने में बहुत दिक्कत आया, ऐसे कभी नहीं आ रहा, घोड़ा खच्चर परेशान कर रहे, लोग गाली दे रहा है, कभी सुना लोगों का, अभी तक मैंने हार नहीं माना।
4: इसको निकालो,
3: 8 दिन से लगातार चल रहा, 8 दिन से आज केदार बाबा के मंदिर के दरबार में, मंदिर के सामने, ये देखो उनके सामने में बैठा हुआ हूँ आज।
0: दूसरी ओर मध्य प्रदेश से 15 यात्रियों का दल पैदल ही बद्री विशाल की यात्रा पर निकला हुआ है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के बाद ये लोग केदारनाथ समेत गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर पैदल निकलेंगे। कड़ी धूप और गर्मी में ये भक्त एक दिन में 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर रहे हैं। महादेव और बद्री विशाल से ऐसी गहरी आस्था जुड़ी है कि मुश्किल रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। जयकारों के साथ जत्था बढ़ता जाता है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: बच्चे के ग्रह की वजह से उसकी माता की सेहत बिगड़ सकती है? क्या बच्चे के ग्रह की वजह से उसके घर में विवाद हो सकते हैं? क्या बच्चे के ग्रहों की वजह से आर्थिक स्थिति चमक सकती है? बच्चे के ग्रहों का माता पिता के भाग्य पर क्या होता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: न एयर डिफेंस न रडार, टूट जाएगी दुश्मन की दीवार। दुश्मनों का सर्वनाश करेगा सेना का अदृश्य अवतार। आ रहा वायुसेना का मिस्टर इंडिया, देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
1: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: पवित्र अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंदिर कर्मचारियों ने गुफा में किया प्रवेश। 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिन चलेगी यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक करीब 20 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। झमाझम बारिश के बीच बद्रीनाथ में उमड़ा आस्था का समंदर। चमोली के गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू। अरदास के बाद पंच प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे की रवानगी। कल से खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट। गुजरात के गांधीनगर में स्वामी महावीर का हुआ सूर्य तिलक। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में दोपहर 2:07 पर बना शुभ संयोग। अलौकिक घटना के गवाह बने हजार। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट। काशी की समृद्ध कला संस्कृति को मिलेगा नया मंच। आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन की 3D इमेज जारी। ओडिशा के चांदीपुर फायर रेंज से भारत ने अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 700 से 900 किलोमीटर है मारक क्षमता। परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। पवित्र अमरनाथ गुफा से पहली तस्वीर आई सामने। गुड न्यूज टुडे पर करिए बाबा बर्फानी के सबसे पहले दर्शन। प्राकृतिक हिम शिवलिंग ने पूरी तरह लिया आकार। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां। पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंची सुरक्षा बलों और मंदिर प्रशासन की टीम। इस साल 3 जुलाई से शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। 57 दिनों तक श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक लाखों श्रद्धालु करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। बाबा बर्फानी के भक्तों में जबरदस्त उत्साह। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। अब तक करीब 20 लाख श्रद्धालु कर चुके दर्शन। चारधाम में आज करीब 90,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 30,000 श्रद्धालु। सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम। करीब 8 लाख भक्तों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ धाम में 5.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन, आज करीब 28,000 श्रद्धालु पहुंचे भगवान बद्री विशाल के धाम। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में भी उमड़ा आस्था का मेला, दोनों धामों में करीब 3.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। गुजरात के गांधीनगर में दिखा आस्था का अनोखा नजारा, भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा का हुआ सूर्य तिलक। ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बने हजारों श्रद्धालु, जयकारों और भक्तिभाव से गूंजा मंदिर परिसर। 41 सालों से चली आ रही परंपरा, 22 मई को हर साल किया जाता है भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा का सूर्य तिलक। गांधीनगर में दिखा विज्ञान और वास्तुकला का अद्भुत संगम, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। दोपहर 2:07 पर हुआ सूर्य तिलक, मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ धाम में हुई झमाझम बारिश। बारिश के बाद बद्रीनाथ धाम में बढ़ी ठंड, श्रद्धालुओं को गर्मी से मिली राहत। बारिश के बाद बद्रीनाथ धाम का मौसम सुहाना, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। यात्रा मार्ग पर गर्म कपड़े पहने नजर आए भगवान बद्री विशाल के भक्त, ठंड पर भारी दिखी आस्था। बारिश ने बढ़ाई बद्रीनाथ धाम की खूबसूरती, ठंडी हवाओं और बारिश के बीच श्रद्धालु भक्ति और प्रकृति के अद्भुत संगम का ले रहे आनंद। पहाड़ों पर मौसम मेहरबान, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश। शिमला में बारिश के बाद मौसम सुहाना, बीते कई दिनों में गर्मी ने बढ़ाई थी लोगों की परेशानी। शिमला में बारिश के बाद खिले सैलानियों के चेहरे, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हुई बारिश, तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर में भी मौसम की मेहरबानी, डोडा समेत कई इलाकों में तेज बारिश। डोडा में बारिश के साथ चली तेज हवाएं, तापमान में गिरावट से लोगों ने ली राहत की सांस। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में हुई जोरदार बर्फबारी, तापमान में आई भारी गिरावट। बर्फबारी के चलते सैलानियों से गुजार हुआ रोहतांग, बर्फबारी के बीच सैलानियों ने की मस्ती। भारी बर्फबारी से सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर, कई वाहन फंसे। उत्तर भारत में गर्मी से राहत पाने के लिए जम्मू कश्मीर की ओर रुक कर रहे सैलानी, बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंचे पर्यटक। श्रीनगर में शिकारा का आनंद ले रहे सैलानी, भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। देहरादून में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गर्मी के बीच प्रशासन की सराहनीय पहल, ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए गए शेड, लोगों को धूप से बचाने की कोशिश। राजस्थान में भी प्रचंड गर्मी का रूप, मौसम विभाग का अलर्ट, हीट वेव से सावधानी बरतने की सलाह। जयपुर में भीषण गर्मी के बीच बढ़ी मिट्टी के घड़ों की डिमांड, बाजार में अलग अलग रंग और डिजाइन के घड़े मौजूद। यूपी के बांदा में तपती गर्मी से लोगों को बचाने की पहल, दोपहर के वक्त प्रशासन ने ट्रैफिक सिग्नल बंद किया। दिल्ली में भी गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान। दिल्ली समेत एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आने वाले एक हफ्ते तक जारी रहेगा गर्मी का असर। मध्य प्रदेश के कई शहरों में हीट वेव की चेतावनी, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। भोपाल में गर्मी से बचने के लिए लोग जूस, नींबू पानी का ले रहे सहारा, लू से बचने के लिए चेहरा ढककर घरों से निकल रहे लोग। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में भी गर्मी ने बढ़ाई बेजुबानों की परेशानी, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास 45 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। रक्षा क्षेत्र में डीआरडीओ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया परीक्षण, 1000 किलो के परमाणु हथियार को अपने साथ ले जाने में सक्षम अग्निवन मिसाइल। वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट, काशी की कला संस्कृति को मिलेगा नया पहचान और मंच, 3D में जारी। तेलंगाना के मंत्री के वेंकट रेड्डी का 14 टॉपर बच्चों को सरप्राइज गिफ्ट, हवाई जहाज से हैदराबाद से विशाखापट्टनम घूमने जाएंगे बच्चे। रिजर्व बैंक देगा सरकार को अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड, रिकॉर्ड 2.87 ट्रिलियन रुपए के ट्रांसफर को बोर्ड की मंजूरी। चमोली में स्थित लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के खुले कपाट, श्रद्धालुओं ने मंदिर में की पूजा। परबारी ने किया भगवान लक्ष्मण का श्रृंगार, हेमकुंड साहिब के साथ श्रद्धालु लक्ष्मण मंदिर में करेंगे दर्शन। गोरखपुर में सीएम योगी ने गाय को खिलाया चारा, बछड़ों को दुलारा। देवरिया को सीएम योगी ने दी 655 करोड़ की सौगात, 19 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। राजस्थान के डूंगरपुर में सीएम भजनलाल ने गांव के लोगों से की मुलाकात, स्थानीय लोगों की सुनी फरियाद। हिमाचल प्रदेश में नया टूरिस्ट स्पॉट बना, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र, बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे रॉक गार्डन। डलहौजी के पास नया टूरिस्ट स्पॉट रॉक गार्डन, पहाड़ों के बीच बहते ठंडे पानी के प्राकृतिक स्रोत का सैलानी उठा रहे आनंद। दिल्ली के ईपीएफओ में तैनात रीजनल कमिश्नर रिजवान दे रहे फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश, साइकिल से जाते हैं ऑफिस। 55 साल के रिजवान साल 2012 से लगातार घर से ऑफिस तक का सफर साइकिल से ही करते हैं, रोजाना तय करते हैं करीब 17 किलोमीटर का सफर। दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम, उबर कार पूलिंग सर्विस को हरी झंडी। बीएसएफ की महिला पर्वतारोहियों ने रचा इतिहास, मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा। महिलाओं ने साहस और हौसले की नई मिसाल पेश की, पहली बार बीएसएफ की महिला पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट की चोटी से वंदे मातरम गाया। बीएसएफ ने बहादुर महिला पर्वतारोहियों को किया सलाम, टीम में लद्दाख की कौसर फातिमा, पश्चिम बंगाल की मुनमुन घोष, उत्तराखंड की रिबेका सिंह और करगिल की तेरिंग चोरोल शामिल। अमित शाह ने बीएसएफ की महिला जवानों को दी शुभकामनाएं, लिखा बीएसएफ की महिला जवानों ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करके स्वर्णिम इतिहास रचा। आईटीबीपी की महिला अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण ने रचा नया इतिहास, माउंट एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। राजौरी में खेल को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफ की पहल, जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया आयोजन। टूर्नामेंट में कई जिलों की टीमें ले रही हिस्सा, महिलाओं ने भी टूर्नामेंट में लिया हिस्सा। अहमदाबाद में पुलिस ने पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए समर कैंप का किया आयोजन, बड़ी संख्या में बच्चे हुए शामिल। समर कैंप में खेल प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों ने किया जमकर डांस। ईंधन संरक्षण की दिशा में लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के जजों की शानदार पहल, 50 से अधिक जज और न्यायिक अधिकारी साइकिल से पहुंचे कोर्ट, लोगों को किया जागरूक। हाईकोर्ट के जजों ने लोगों को किया जागरूक, कहा इससे ईंधन की बचत के साथ साथ स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अमृतसर के जबोवाल स्कूल के छात्रों का कमाल, विकसित भारत बिल्डथॉन में जीता बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के अलंकरण समारोह में जवानों को किया सम्मानित, कहा भारत के आतंकवाद और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंचे साइप्रस के राष्ट्रपति, दोनों देशों के संबंधों की मजबूती पर लेकर चर्चा। सऊदी अरब में हज यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर, सऊदी सिक्योरिटी फोर्स ने मक्का में किया परेड। सैन्य परेड में सेना ने तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ के लिए अपनी कुशलता और तैयारियों का किया प्रदर्शन। परेड में फोर्स ने एडवांस व्हीकल्स और सिक्योरिटी एविएशन का भी किया प्रदर्शन, साथ ही परेड में कई ड्रिल प्रस्तुत किए। परेड में अलग अलग सिक्योरिटी सेक्टर के महिला सैनिकों ने भी लिया हिस्सा, ड्रोन और सीसीटीवी से भी होगी निगरानी। 24 मई के शाम से 29 मई तक चलेगा हज यात्रा, 2 से 3 मिलियन मुसलमानों के शामिल होने की उम्मीद। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शुरू हुआ मशहूर विविट फेस्टिवल, शानदार रोशनी से नहाया ओपेरा हाउस। शानदार आतिशबाजी के साथ विविट फेस्टिवल का शुभारंभ, सिडनी में उमड़ा जनसैलाब। ओपेरा हाउस पर दिखाई गई मछलियां, जेलीफिश और पक्षियों की आकृति, 23 दिनों तक चलेगा विविट फेस्टिवल। 13 जून को होगा विविट फेस्टिवल का समापन, दुनिया भर से जुटेंगे पर्यटक। सैलानियों को देखने को मिलेगा। रोशनी, संगीत और कलाकारों का संगम, कई प्रसिद्ध कलाकारों की आर्ट की भी नुमाइश होगी। चीन के चुंगिंग में शुरू हुआ बड़ा रोबोटिक मेला, भविष्य बदलने वाले दिखे स्मार्ट रोबोट, अब हर उद्योग की नई ताकत बने रोबोट। उपभोक्ता सेवाओं से बचाव अभियान तक पहुंचे स्मार्ट रोबोट, चुंगिंग मेले में दर्जनों हाईटेक रोबोट बने आकर्षण का केंद्र। चीन में चिकित्सा क्षेत्र में रोबोट तकनीक ने दिखाई नई छलांग, स्मार्ट कृषि में तेजी से बढ़ा रोबोट का इस्तेमाल। सुरक्षा और रेस्क्यू मिशन में उतरे एडवांस रोबोट, मेले में एआई और रोबोटिक्स का दमदार संगम, भविष्य की टेक्नोलॉजी का लाइव प्रदर्शन। स्मार्ट बदलाव की रफ्तार बढ़ा रहे हाईटेक रोबोट, मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं में रोबोट बने मददगार। चीन में छोड़े गए हिम तेंदुए ने पहली बार जंगल में परिवार बसाया, हेलन पहाड़ों में दिखा हिम तेंदुओं का दुर्लभ पल। इंफ्रारेड कैमरे में कैद मादा हिम तेंदुआ और उसके शावक की तस्वीर, वैश्विक हिम तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम को बड़ी सफलता। दक्षिणी और मध्य चीन में भीषण बाढ़, मूसलाधार बारिश से स्कूल कारोबार और बिजली व्यवस्था ठप। चीन के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, राहत कार्यों के लिए 150 मिलियन युआन जारी। चीन के ल्यूझोउ में 80 से ज्यादा स्ट्रे कैट्स की देखभाल में जुटे वॉलंटियर्स, कैट शेल्टर में बिल्लियों ने ली शरण। कान फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का ग्लैमरस लुक, ईवा लॉन्ग्रॉय के साथ शेयर की तस्वीरें। कान फिल्म फेस्टिवल में पंजाबी सिंगर और कलाकार मीत कौर का बोल्ड लुक, रेड कार्पेट पर बढ़ाया भारत का मान। साउथ मेगा स्टार चिरंजीवी की आगामी फिल्म मेगा 158 की शूटिंग शुरू, मुहूर्त शॉट के लिए क्लैप देने पहुंचे सुपरस्टार पवन कल्याण। रॉकिंग मंचू मनोज के बर्थडे पर डेविड रेड्डी का टीजर आउट, ब्रिटिश काल की दिखी झलक, फिल्म दशहरा पर होगी रिलीज। मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ ऑरा वर्ल्ड टूर में अपने गीतों से बिखरे रहे जलवा, टेनेसी के प्रसिद्ध ब्रिस्टोन एरेना में म्यूजिक कॉन्सर्ट। आर माधवन की नई फिल्म जीडीएन का ऐलान, धांसू पोस्टर रिलीज, जीडी नायडू की कहानी से उठेगा पर्दा। नेटफ्लिक्स पर आसे दुरंदर के रॉ और अनदेखे वर्जन की धूम, रोमांचक दुनिया में ले जाएगी फिल्म, देखिए ताबड़तोड़ एक्शन। फिल्म चांद मेरा दिल सिनेमाघरों में हुई रिलीज, फिल्म में लक्ष्य और अनन्या पांडे का अहम रोल। Amazon Prime Video पर फिल्म सिस्टम रिलीज, फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा का लोक अभियोजक का रोल, जबकि ज्योतिका का स्टेनोग्राफर की भूमिका। जी प्राइम पर रिलीज हुई वेब सीरीज सतरंगी बदलेगा खेल, फिल्म में अंशुमान पुष्कर, कुमुद मिश्रा और महवश की मुख्य भूमिका।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake up. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
7: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
8: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
7: Big 12 Radio.
9: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
7: and
9: down.
7: Talk sports.
10: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
7: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
5: किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: क्या बच्चे के ग्रह की वजह से उसकी माता की सेहत बिगड़ सकती है? क्या बच्चे के ग्रह की वजह से उसके घर में विवाद हो सकते हैं? क्या बच्चे के ग्रहों की वजह से आर्थिक स्थिति चमक सकती है? बच्चे के ग्रहों का माता पिता के भाग्य पर क्या होता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
5: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प का भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपको शहर में आने की कोई खास वजह आपको लगती है, तो उठाइए अपना कैमरा और बनाइए ब्लॉग और हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप करें, हम उसे GNT पर दिखाएंगे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
16: ना एयर डिफेंस ना रडार, टूट जाएगी दुश्मन की दीवार, दुश्मनों का सर्वनाश करेगा सेना का अदृश्य अवतार, आ रहा वायुसेना का मिस्टर इंडिया। देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
17: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: पवित्र अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंदिर कर्मचारियों ने गुफा में किया प्रवेश 3 जुलाई से। शुरू होकर 57 दिन चलेगी यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में सामने। सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंदिर कर्मचारियों ने गुफा में किया प्रवेश 3 जुलाई से। शुरू होकर 57 दिन चलेगी यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक करीब 20 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। टमाटम बारिश के बीच बद्रीनाथ में उमड़ा आस्था का समंदर। चमोली के गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू। अरदास के बाद पंच प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे की रवानगी। कल से खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चों के ग्रह के बारे में। जब आपके घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसके ग्रहों का असर उसके माता पिता के भाग्य पर पड़ता है, और अगर पड़ता है क्या कोई बुरा असर पड़ता है, तो इसको सही करने के उपाय क्या है, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आप किसी मुकदमे को जल्दी हल करना चाहते हैं, कोई मुकदमा चल रहा है, प्रयास करने के बावजूद सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को मीठे चावल अर्पित करें। चीनी या गुड़ मिलाकर मीठा चावल बनाएं, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालें और वो मीठे चावल मंगलवार को हनुमान जी को भोग के रूप में अर्पित करें, प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और बांटें। अगर आप ऐसा लगातार करते जाएं तो मुकदमे में कितनी भी गड़बड़ियां क्यों ना हो, मुकदमा आपके पक्ष में हल होगा।
0: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से, क्या किसी बच्चे के भाग्य का माता

0: क्या वास्तव में किसी बच्चे के भाग्य का माता पिता के भाग्य पर असर पड़ता है? देखिए, किसी भी बच्चे का जन्म माता पिता के प्रारब्ध से, माता पिता के भाग्य से ही होता है। हर बच्चे के ग्रह अपने माता पिता के साथ जुड़े हुए होते हैं। माता पिता के अच्छे और बुरे ग्रह बच्चे पर तुरंत असर डालते हैं। इसी प्रकार से बच्चे के अच्छे और बुरे ग्रह माता पिता पर भी असर डालते हैं। कभी कभी बच्चे का भाग्य इतना ज्यादा प्रबल होता है कि उसके जन्म लेने के साथ ही माता पिता का भाग्य बदल जाता है। बच्चे के जो अलग अलग ग्रह हैं, बच्चे का सूर्य, बच्चे का चंद्रमा, शनि, राहु, ये अलग अलग ग्रह माता पिता और उनके जीवन को अलग अलग प्रभावित करते हैं। वैसे मोटे तौर पे ये जानिए कि बच्चे के जन्म के बाद पहला 4 साल माता के भाग्य से चलता है, अगला 4 साल पिता के भाग्य से चलता है और 8 से 12 साल का हिस्सा पूर्व जन्म के भाग्य से चलता है। तो टेक्निकली बच्चे का जो भाग्य होता है वो माता पिता के भाग्य से बड़ी गहराई के साथ जुड़ा होता है। माता पिता अपने बच्चे के भाग्य को और बच्चा अपने माता पिता के भाग्य को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है।
1: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
0: मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ होता दिख रहा है, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन की समस्याएं हल होंगी, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन हानि से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: तो आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि बच्चे के चंद्रमा का असर उसके माता पिता के भाग्य पर किस तरह से पड़ता है।
0: अब ये जानते हैं कि बच्चे की कुंडली का चंद्रमा बच्चे के माता

0: ऐसा असर डालता है। देखिए, बच्चे का चंद्रमा सीधी तौर से माता के साथ जुड़ा हुआ होता है। बच्चे का चंद्रमा उसकी माता है। अगर बच्चे की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो बच्चे का स्वास्थ्य तो खराब होता ही है शुरुआत में, माता का स्वास्थ्य भी बच्चे के जन्म लेने के बाद बिगड़ जाता है और आगे चल करके बच्चे का संबंध अपनी माता के साथ अच्छा नहीं रहता। तो बच्चे का चंद्रमा अगर गड़बड़ है तो बचपन में बच्चा बीमार होगा, उसकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा और आगे चल करके बच्चे का संबंध अपनी माता के साथ बेहतर नहीं रहेगा। तो अगर आपने देखा कि बच्चे की कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ है तो क्या उपाय किया जाए? अगर बच्चे का चंद्रमा खराब है तो बच्चे की माता को पूर्णिमा का व्रत जरूर रखना चाहिए और बच्चे की माता रोज रात को चंद्रमा के मंत्र का जप करेंगी कम से कम 108 बार। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः कहके मंत्र का जप करेंगी और बच्चे को भी और उसकी माता को भी दोनों को चांदी का चंद्रमा बचपन से ही बच्चे को और बच्चे के जन्म लेने के बाद माता को दोनों को गले में चांदी का चंद्रमा पहनना चाहिए। अगर बचपन से बच्चे की माँ बच्चे के चंद्रमा को सुधारे तो ये बच्चे के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा और माँ के अपने जीवन के लिए भी बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने का।
0: कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्तों की समस्या हल होगी, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, घर में अतिथि का आगमन होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90 90 प्रतिशत सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया है सवालों का और उनके जवाब देने का, जब पंडित जी द्वारा आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो चलिए, अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का। तो जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न हमें अमिता ने लिखा है और अमिता हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 नवंबर 1980। जन्म का समय दोपहर के 1:50। जन्म का स्थान है लखनऊ। अमिता कह रही हैं कि मैं पिछले 4 साल से एक ही कंपनी में काम कर रही हूं, लेकिन वहां पर मेरी कोई उन्नति नहीं हो रही है, मेरी कोई तरक्की नहीं हो रही है। तो क्या मुझे नौकरी बदलनी चाहिए या यहीं पर बेहतर समय का इंतजार करना चाहिए? अमिता, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी बदलने का प्रयास शुरू कर दीजिए, और अगर अभी से शुरू करती हैं तो अगस्त के बाद आपकी नौकरी बदल सकती है, ये संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है। ऐसा भी दिख रहा है कि नौकरी बदलने के साथ आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, और नौकरी बदलना या स्थान परिवर्तन करना ये कुल मिला जुलाकर आपके लिए बेहतर रहेगा। आने वाले समय में करियर में कोई विशेष दिक्कत नहीं है, जीवन आपका बेहतर दिखाई दे रहा है। एक मूंगा बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप पंडित जी से अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो जानते हैं पंडित जी से आप आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न अभय शंकर ने हमें लिखा है और अभय शंकर हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 अक्टूबर 1975। जन्म का समय दोपहर के 1:00। जन्म का स्थान है बेंगलोर। अभय जी कह रहे हैं कि मैंने नौकरी छोड़कर कुछ समय पहले अपना व्यापार शुरू किया है, लेकिन व्यापार में बहुत उन्नति नहीं हो रही है। तो आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा और व्यापार में उन्नति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अभय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपको धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि आपके व्यापार की दशा बेहतर होगी फरवरी 2027 के बाद। तब तक कुंडली के हिसाब से आपको इंतजार करना चाहिए। फरवरी 27 के बाद व्यापार आपका ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि इस साल के अंत में आप अपने रहने की और काम करने की जगह में परिवर्तन करेंगे और वो परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। एक ओपल बनवा करके पहनिए ताकि व्यापार बेहतर हो सके। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह सूर्य देव के मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए, अब जानते हैं कि बच्चे के सूर्य का प्रभाव माता पिता के जीवन पर, उनके ग्रहों पर किस तरह से पड़ता है।
0: देखिए बच्चे का जो सूर्य है वो भी माता पिता के जीवन पर असर डालता है। क्या करता है? बच्चे का सूर्य सीधे तौर से उसके पिता के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर बच्चे का सूर्य कमजोर होगा तो बच्चे को आंखों की और नाम यश की समस्या परेशान करेगी, किए गए कार्यों का यश जीवन में नहीं मिलेगा। और बच्चे का सूर्य अगर गड़बड़ होगा तो पिता का स्वास्थ्य और पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। बच्चे का सूर्य अच्छा नहीं होगा तो आगे चल करके बच्चे का संबंध अपने पिता के साथ अच्छा नहीं होगा, और ये नौबत भी भविष्य में आ सकती है कि बच्चा और उसके पिता दूर दूर रहें, एक दूसरे के साथ ना रह पाएं। तो बच्चा जन्म लेता है और अगर उसका सूर्य गड़बड़ स्थिति में है तो जन्म के साथ ही पिता के जीवन में संघर्ष और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बच्चे को तो मुश्किल होती ही है, उसके पिता के जीवन में भी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अगर बच्चे का सूर्य गड़बड़ है, सूर्य की स्थिति फेवरेबल नहीं है, तो बच्चे के पिता नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। बच्चे और पिता दोनों को रोज सुबह गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जब बच्चा छोटा है तो पिता अपने बच्चे को बगल में बैठा लें और गायत्री मंत्र बोल बोल कर सुनाएं। जब बच्चा बड़ा हो जाए तो बच्चा भी और उसके पिता भी रोज सुबह कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। घर में लाल फूल वाले पौधे, खास तौर से गुड़हल के फूल के पौधे घर में लगाइए, और जहां तक हो सके पिता को अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। बच्चे के सर पर हाथ रख कर बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए। पिता अपने बच्चे से जितना जुड़ाव रखेंगे, बच्चे के साथ साथ पिता का जीवन भी बेहतर होगा।
1: और आप जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि अगर बच्चे की कुंडली में ग्रहों के योग होते हैं तो क्या उसका प्रभाव भी माता पिता की कुंडली पर पड़ता है या उनके भाग्य पर पड़ता है।
0: देखिए, बच्चे की कुंडली में जो ग्रहों के योग होते हैं, अलग अलग ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, वो भी माता पिता के जीवन पर असर डालते हैं। क्या करते हैं? अगर बच्चे की कुंडली में कोई बुरा ग्रह योग है तो अलग अलग योगों के अनुसार माता पिता पर अलग अलग असर पड़ता है। जैसे अगर बच्चे की कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि उसके जन्म के बाद से कुछ समय के लिए घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अगर बच्चे की कुंडली में शनि राहु का योग है तो घर में अलगाव, विभाजन, सेपरेशन की नौबत आ जाती है। अगर बच्चे की कुंडली में सूर्य शनि का योग है तो ये पिता के जीवन के लिए, पिता के साथ तालमेल के लिए काफी बुरा होता है और आगे चल करके पिता और पुत्र काफी दूर दूर हो जाते हैं, उनके संबंध बहुत खराब हो जाते हैं। तो अगर बच्चे की कुंडली में कोई अशुभ योग है जिसका प्रभाव माता पिता पर पड़ रहा है तो क्या उपाय किया जाए जिससे उस दुर्योग का प्रभाव ना पड़े। अगर गुरु चांडाल योग है तो बच्चे के आचरण को ठीक रखना चाहिए। घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए ताकि गुरु चांडाल योग से बच्चे को या उसके माता पिता को कोई कष्ट ना हो। अगर शनि राहु का योग है बच्चे की कुंडली में तो घर में शमी का एक पौधा लगाएं और नियमित रूप से घर में सुंदर कांड का पाठ करें या शनिवार के शनिवार घर में सुंदर कांड का पाठ करें, अच्छा रहेगा। अगर बच्चे की कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है तो शनि की शांति करवाएं और घर में सूर्य के पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करें। बच्चे के जन्म लेने के साथ उसकी कुंडली के अशुभ योगों को दूर करने के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगवाएं। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे की कुंडली के दुर्योगों का प्रभाव बच्चे के माता पिता पर नहीं पड़ेगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से ही कि हमें ऐसे क्या उपाय करने चाहिए कि बच्चे की कुंडली में खराब ग्रह या खराब योग ना बने।
0: देखिए, ऐसा भी उपाय किया जा सकता है, ऐसी भी कोशिश की जा सकती है कि बच्चे की कुंडली में खराब ग्रह और खराब योग ना बने। क्या उपाय किया जाए? देखिए, ये उपाय तब किए जा सकते हैं जब महिला प्रेग्नेंट हो, बच्चा गर्भ में हो। गर्भवती माता को रोज सुबह और रोज शाम को रामचरितमानस के बाल कांड का जितना संभव हो पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ गर्भवती महिला को अपने आहार विहार को, अपने खान पान को सात्विक रखना चाहिए। जो गर्भवती महिला हैं, वो तेज सुगंध से, इत्र से और अत्यधिक सौंदर्य प्रसाधन से बचाव करें। और गर्भवती महिला के घर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रखनी चाहिए। जहां तक हो सके गर्भवती महिला को अंधकार से बचना चाहिए। और प्रेगनेंसी में तो खैर व्रत रखने को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन गर्भवती महिला ऐसा कर सकती हैं कि नियमित रूप से एकादशी को अन्न का या वस्त्र का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करते रहें। जितने दिन महिला गर्भवती हैं, उतने दिन नाम जप करें भगवान का, भगवान का चिंतन करें, भगवान से प्रार्थना करें, तो अच्छे संतान की प्राप्ति होगी, जिसकी कुंडली के ग्रह सामान्यतः बेहतर होंगे।
1: और गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। करियर में कुछ परिवर्तन होगा। वाहन सावधानी से चलाइए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से ही आज का तीसरा सवाल, उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न प्रसून जी ने हमें लिखा है और प्रसून जी हमें मेल लिखते हैं गुजरात से। इनकी जन्म की तारीख है 1 फरवरी 1979। जन्म का समय रात में 9:40। जन्म का स्थान है भुज, कच्छ, गुजरात। ये कह रहे हैं प्रसून जी कि मैं नौकरी करता हूं और अपनी पत्नी के नाम से एक व्यापार भी करता हूं, लेकिन मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है और नौकरी के हालात स्थिर बने हुए हैं, तो क्या मुझे आगे व्यापार कंटिन्यू करना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? प्रसून जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपना व्यापार वाइंड अप करना चाहिए, क्योंकि व्यापार आप किसी के नाम से भी करेंगे तो आप ही, और व्यापार में सफलता की अभी तो कम से कम संभावना नहीं बन रही है, तो व्यापार को हटाइए, वाइंड अप करिए, केवल नौकरी वाले हिस्से पे फोकस करिए, नौकरी में आगे बढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि नौकरी में आपके तरक्की की संभावनाएं अच्छी हैं। आपकी कुंडली में आने वाले समय में अक्टूबर 2026 से लेकर और अप्रैल 2027 के बीच में करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय करियर में कोई रिस्क, कोई जोखिम मत लीजिएगा। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: गुड लक में अब हम लेंगे आज का आखिरी सवाल, तो जानेंगे पंडित जी से आज का आखिरी और चौथा सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न आनंदिता ने हमें लिखा है और आनंदिता हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 जुलाई 1989। जन्म का समय रात में 11:55। जन्म स्थान है दिल्ली। आनंदिता कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? आनंदिता, आपकी कुंडली में अति विलंब से विवाह के योग बनते हैं, लेकिन अभी आपके विवाह का योग आ गया है। साल 2026 के अंत तक आपका विवाह फाइनल होना चाहिए और 2027 के आरंभ तक आपके विवाह की संभावना बन रही है। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा करके पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रविवार को दोपहर के समय में, दिन के समय में पार्वती मंगल का पाठ करें। अगर ये दो उपाय करें तो आपका विवाह शीघ्र होगा और परमात्मा की कृपा से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: आने वाले वर्ष में करियर की समस्याएं दूर होंगी, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, स्वास्थ्य की स्थिति धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी। ये साल सफलता से आपके लिए भरा रहेगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य भगवान की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का। तो जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या अगर आप नया घर खरीदते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो क्या नए घर में पहला त्योहार होली नहीं मनाना चाहिए? देखिए, होली में पुराने संवत का, पुराने साल का दहन होता है, जिसको बहुत शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए नए घर में उस समय प्रवेश करना चाहिए जब पहला त्योहार दीपावली या दशहरा पड़े। अगर पहला त्योहार होली का नए घर में मनाएंगे तो सामान्य मान्यता ये है कि फिर वो घर आपको सूट नहीं करेगा।
1: तो चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर कौन सा है।
0: शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी।
1: तो आइए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। आज की गुडलक राशि है मेष। इनका वैवाहिक जीवन सामान्यतः एवरेज होता है, मध्यम होता है। इनको रिश्तों के मामले में गंभीर रहना चाहिए, रिश्तों के मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज आपको एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी,

0: आपकी कुंडली में केतु की अशुभ दशा चल रही हो, केतु की अशुभ महादशा या अशुभ अंतर दशा चल रही हो, तो क्या करेंगे? घर में एक मदार का पौधा लगाइए और उसकी देखभाल करिए। रोज सुबह और शाम गणपति मंत्र का जप करिए, ओम गं गणपतये नमः, सुबह शाम 108 बार, और नियमित रूप से स्नान के बाद अपने कंठ पर और अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। केतु की दशा का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.

आज विधि विधान से खुलेंगे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। चमोली के गोविंद घाट से पवित्र धाम के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। अरदास के बाद पंच प्यारों ने की अगुवाई। गुजरात के गांधीनगर में स्वामी महावीर का हुआ सूर्य तिलक। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में दोपहर 2:07 पर बना शुभ संयोग। अलौकिक घटना के गवाह बने हजारों भक्त। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट। काशी की समृद्ध कला संस्कृति को मिलेगा नया मंच। आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन की 3D इमेज जारी। ओडिशा के चांदीपुर फायर रेंज से भारत ने अग्नि वन बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 700 से 900 किलोमीटर है मारक क्षमता। परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा। नैनीताल मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों तक गर्मी का असर। दोपहर के वक्त सावधानी बरतने की सलाह।

0: ये देखिए, तो अब ये 10 किलो के हथौड़े ने लगभग 4-5 बार इस कांच पर वार किया है, मारा है। आगे से तो ये चीजें टूट गई है, लेकिन ये दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भीतर कार के अंदर जो शख्सियत बैठा है, क्या उसे कुछ हुआ है। ये देखिए, कांच पूरी तरह से आगे से टूटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं। बड़े प्यार से हम हाथ लगा पा रहे हैं।
1: हैं कि ग्लासेस के साथ ये व्हीकल के डोर पे भी फायर किया गया है, और आप देख सकते हैं कि इस तरफ से बुलेट अंदर पेनिट्रेट होती है, वेदर इट इज ग्लास और स्टील, बट अंदर के साइड वो कम्प्लीटली वो प्रोटेक्ट करती है।
2: सब स्टेट्स में सप्लाई किया हुआ है टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। जब हम इस पे SLR के शॉट्स मारते हैं, AK-47 के शॉट लेते हैं, तो ये जो कांच है वो टूट जाता है, शटर हो जाता है, लेकिन अगर अंदर से आप जब भी हम आपको दिखाएंगे तो बहुत स्मूथ है।

AK-47 की गोली हो या हथौड़े का वार, इन फौलादी सुपर कारों पर हर वार है बेकार, क्योंकि कार नहीं ये कारों की धुरंधर है। वो धुरंधर जो सड़क पर देती है सुरक्षा की 100% गारंटी। और एक आम कार को धुरंधर में बदलती है वो बुलेट प्रूफ तकनीक, कारों का वो शानदार और जानदार मॉडिफिकेशन जिस पर दुनिया भर के नेता, अभिनेता, उद्योगपति और तमाम VVIP अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा करते हैं। आसान भाषा में समझे तो बुलेट प्रूफ कार का सीधा मतलब है एक ऐसा वाहन जो आपको किसी तरह के हथियारों के हमले से सुरक्षित रखे। इन गाड़ियों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। ज्यादा सुरक्षा वाली गाड़ियां तो हैंड ग्रेनेड या रॉकेट लॉन्चर के हमले से भी बचा सकती हैं। VVIP और नेताओं को गंभीर सुरक्षा खतरों के कारण ऐसी गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। भारत में ऐसी कई गाड़ियां विदेशों से इम्पोर्ट की जाती हैं, लेकिन अब भारत में भी कुछ कंपनियां इन धुरंधर कारों को तैयार कर रहे हैं। आज आपको ले चलेंगे मुंबई से करीब 260 किलोमीटर दूर अहिल्यानगर में मौजूद एक ऐसी ही कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जो पिछले कई सालों से भारत की जमीन पर जोरदार बुलेट प्रूफ कारें तैयार करती आ रही है। शील्ड आर्मरिंग, जहां देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, बड़े उद्योगपतियों, विदेशी मेहमानों, राजनेताओं और फिल्मी हस्तियों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां तैयार की जाती हैं। साथ ही शील्ड आर्मरिंग, पुलिसिंग, गंगा कंट्रोल और हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए सुरक्षा बलों के काम आने वाली आर्म गाड़ियां भी तैयार करती हैं। शील्ड आर्मरिंग ने हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस के लिए 6 PAMA आर्म्ड व्हीकल तैयार किए हैं। ये कार नहीं बल्कि सुरक्षा के मामले में ये चलते फिरते टैंक है।

0: देश की जनता की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा जिन हाथों में है, उनकी सुरक्षा किन हाथों में है, ये एक अहम सवाल है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। इसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीर में ये बुलेट प्रूफ कार दिखाना चाहता हूँ जो अभी अभी अत्याधुनिक तरीके से बनाकर तैयार की गई है। स्टेट पुलिस को ये दी जाने वाली है और शहर के उन कोनों में ये खड़ी रहेगी जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध स्थल है। सवाल ये भी है कि आखिर इस तरह की बुलेट प्रूफ कार कैसे बनती है, कहाँ बनाई जाती है, क्या चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती है। इंडिया टुडे ग्रुप में आप ये सारी चीजें इस समय एक्सक्लूसिव देख रहे हैं।
1: ये बख्तरबंद गाड़ियां रिस्की ऑपरेशंस में तैनात पुलिस जवानों को सुरक्षा का नया कवच प्रदान करेंगी। स्टेट पुलिस की सेवा में पहले से मौजूद बख्तरबंद गाड़ियों की तुलना में ये व्हीकल ज्यादा एडवांस्ड, अपग्रेडेड और बेहतर प्रोटेक्शन देने वाला है।
2: हाँ, ये हमारी ब्रांड की व्हीकल है जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो इसे यूज करना चाहते हैं, तो ये 100% हमारा डिजाइन है जो ये व्हीकल हमने डेवलप की है।
0: अच्छा, थोड़ा सा बताएं ना अंदर चल करके किस तरीके से क्या बना है, क्या खासियत है, क्योंकि पहली बार ये चीजें कैमरे पर आ रही हैं।
2: जी, तो ये सबसे पहली बात, ये पूरा जो व्हीकल है वो 360 डिग्री प्रोटेक्शन है। जब हम 360 डिग्री प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि इसे कोई भी एंगल से पेनिट्रेशन की चांसेस नहीं है। कहीं से भी अगर बुलेट आ रही है, कहीं से भी इसको गलत फायरिंग हो रही है तो ये प्रोटेक्ट करती है। इसके चारों साइड्स हैं, इसका रूफ है, इसका बॉटम है, ये सारा कम्प्लीटली आर्मर्ड होता है। इसके आप जितने भी ये ग्लासेस देख रहे हैं ये बहुत ही हैवी ग्लासेस होते हैं जो AK-47 SLR जैसे जो वेपन्स होते हैं उसको वो इजीली प्रोटेक्ट कर सकता है।
0: अच्छा, और ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, ये क्या है?
2: तो सर ये ऐसा है कि जब हमारे फोर्सेज होते हैं, जब हमारे पुलिस जवान कभी कोई मिशन में जाते हैं और वहाँ पर से अचानक से फायरिंग हो गई तो उनको अंदर से ही बैठ के रिटेलिएट करना है, उन्हें अंदर से बैठ के जब फायरिंग करनी है तो वो अपना बैरल इस स्पॉट से, इसे गन पोर्ट कहते हैं, वहाँ से निकाल के उसे ईजिली फायर कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो गए, VVIP प्रोटेक्शन हो गए, वो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। इस व्हीकल के अंदर अगर आप टॉप पे देखें तो ये 360 डिग्री टरेट है जहां पर जवान बाहर निकलता है, वो अपना गन माउंट करता है और उसको 360 डिग्री उसे फायर करने के चांसेस है। तो अगर कहीं से भी फायर हो रहा है तो उसे व्हीकल घुमाने की जरूरत नहीं है, उसको सिंपल वो टरेट है उसको घुमाएगा, वो सेल्फ प्रोटेक्टेड रहेगा और उसी वक्त वो फायर कर सकता है। इस व्हीकल की और एक खासियत है, अगर आप ये देखेंगे तो ये जितने भी स्लॉट्स हैं, ऐसे टोटल 4 स्लॉट्स हैं व्हीकल में, तो इसे इवन हेलीकॉप्टर से इस व्हीकल को लिफ्ट किया जा सकता है और कहीं पर भी डिप्यूट किया जा सकता है।

0: ये वाली तस्वीर भी दिखा है पीछे, यहाँ पर भी जो है बैठ सकते हैं हमारे ऑफिस।
1: यस, तो इसके अंदर टोटल ये जो मॉडल है इसके अंदर 6 सीटर है। तो जब 6 सीटर की बात करते हैं तो फ्रंट में 2 है, साइड्स में 2 है और जो रेयर है उसमें 2 है। इसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन भी आता है जो फर्दर इसको क्या बोलते हैं सीटिंग कैपेसिटी को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि एज पर स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट और फोर्सेस के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है। कोई 7 6 सीटर भी बना सकते हैं, 4 सीटर भी बना सकते हैं, 8 सीटर भी बना सकते हैं। तो डिफरेंट सीटिंग कैपेसिटी, ईच सीटिंग इस तरह से बनाई गई है कि जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का वो क्विक एंट्री एंड एग्जिट हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट इसमें होता है कि आप कितना फास्ट मूव इन करते हो और मूव आउट करते हो। तो ये सारी चीज़ का यहाँ पर ध्यान दिया गया है। ये पूरा 100% डिज़ाइन है अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ है और इसके अंदर जितने भी मटेरियल्स लगे हुए हैं सब हमारी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नतीजे से ये व्हीकल तैयार हुई।
2: बात जब बुलेट प्रूफ कार की हो तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि बुलेट प्रूफ कार असल में कोई अलग गाड़ी नहीं होती बल्कि एक नॉर्मल कार को खास तकनीक के जरिए मजबूत बनाया जाता है ताकि वो गोलियों और दूसरे हमलों से बचा सके। किसी भी कार को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए उसमें बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास, दरवाजों और बॉडी में स्टील या खास मटेरियल की प्लेटिंग, मजबूत छत और रन फ्लैट टायर लगाए जाते हैं। इस मॉडिफिकेशन के लिए जरूरी है कि कार में अतिरिक्त वजन सहन करने की क्षमता हो क्योंकि सुरक्षा के लिए जो स्टील की सीट्स और मोटे शीशे लगाए जाते हैं उनमें गाड़ी का वजन लगभग 1000 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। यही वजह है ज्यादातर लोग बुलेट प्रूफ बनवाने के लिए SUV को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उनका इंजन और चेसिस दूसरी गाड़ियों की तुलना में मजबूत होता है। भारत में आमतौर पर टाटा सफारी, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर, इनोवा या लग्जरी सेगमेंट में BMW और ऑडी जैसी कंपनियों की गाड़ियां बुलेट प्रूफ करवाई जाती हैं।
0: हमने आपको दिखाया कि फोर्स और पुलिस किस तरह की सुरक्षा भरी कार का इस्तेमाल करते हैं, कि बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब चल रहे हैं हम उस तरफ जहां पर VIP, VVIP, मिनिस्टर्स भी अपने कार का इस्तेमाल करते हैं पूरी तरह से सुरक्षित और बुलेट प्रूफ। ये देखिए लैंड क्रूजर नाम की कार यहाँ पर खड़ी हुई है और पूरी तरह से बनकर तैयार है। हम सीधे अब इसके भीतर जाएंगे और कैसा लगता है भीतर बैठ करके और किस तरीके से होती है सुरक्षा उस बारे में भी जानकारी लेंगे। और पूरी तरह से लैंड क्रूजर को बना करके तैयार करके रख दिया गया है। जिस किसी भी दिग्गज ने बनाने का इन्हें ऑर्डर दिया है अब बहुत जल्दी उन्हें ये कार डिलीवर भी हो जाएगी। लेकिन भीतर से इसका नजारा कैसा होगा ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लैंड क्रूजर कार है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ हो चुकी है। अंदर मैं बैठा हुआ हूं, उसी तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ है जैसे नॉर्मल कार के होते हैं। बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है कि ये बुलेट प्रूफ कार है। और मेरे साथ में सुरिंदर सिंह राठौर मौजूद ही हैं, साथ ही साथ इंद्रजीत सिंह राठौर भी मौजूद हैं। थोड़ा सा बताएं, पता ही नहीं चल पा रहा कि ये बुलेट प्रूफ कार बन चुकी है और आपने इसे सजा दिया, बना दिया, कैसे, क्या, कहाँ पर, क्या खासियत, कैसे पता चलेगा, क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा बताएं।
3: अभी आप जब यहाँ पर देखेंगे इसकी जो प्रोटेक्शन है वो हमने 360 डिग्री दी है। ये ऊपर के साइड पे भी पूरी प्रोटेक्टेड है, साइड पे भी है, दरवाजों में भी है। ये जैसे आप ग्लास देखेंगे तो ये 40mm का ग्लास है, काफ़ी थिक ग्लास है। तो इससे क्या AK-47 SLR ये सब चीज़ें अपना प्रोटेक्ट हो जाती है। और इसका आप इसकी ब्यूटी ये है कि ये आपको आइडेंटिफाई करनी नहीं चाहिए कि ये आर्मर्ड व्हीकल है कि नॉर्मल व्हीकल है। आप इसकी अगर कम्फर्ट देखेंगे तो कम्फर्ट एज इट इज़ जो ओरिजिनल की कम्फर्ट है वो मिल रही है। आपके जो प्लास्टिक्स है, आपके जो ट्रिम्स है, आपके जो डोर पैड्स हैं वो एज इट इज़ ओरिजिनल जैसे लग रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर ये गाड़ी की बात की जाए तो ये 2 करोड़ की गाड़ी है। तो जो बंदा ये 2 करोड़ जो पैसे खर्च रहा है वो किस चीज़ के लिए खर्च रहा है, वो ये खर्च रहा है कि इसका कम्फर्ट मिले। इसकी जो उसने कम्फर्ट के पैसे दिए हैं, इसके जो फीचर्स के पैसे दिए हैं, अगर हमने इसको बुलेट प्रूफ में ऐसा कर दिया कि फीचर्स ही ना काम आए तो फिर ये कम्फर्ट का जो उन्होंने पैसा खर्चा उसका यूज़ नहीं आएगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि एज इट इज़ जो ओरिजिनल है, जो भी मॉडिफिकेशन की गई है वो अंदर से की गई है, आउटर लुक को एज इट इज़ उसको मेंटेन किया गया है कि वो आइडेंटिफाई ना हो कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है।
0: अच्छा, मतलब ये कि भाई सुरक्षा कवच इस कार में जो कुछ लगा हुआ है वो सब आपने छिपाया है, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया।
3: यस यस, क्योंकि अगर दिखा दे तो क्या है कि कभी कॉन्वॉय में 3 गाड़ियाँ चल रही है, 4 गाड़ियाँ चल रही है, तो अगर कोई अटैक करता है तो उसे ये नहीं पता होना चाहिए कि कौन से गाड़ी में बुलेट प्रूफ हुआ हुआ है, कौन से में नॉर्मल। तो इसकी जो हाइट है वो भी हमको मेंटेन करनी पड़ती है कि ओरिजिनल गाड़ी जो नॉर्मल गाड़ी है और हमारी जो आर्मर्ड गाड़ी है वो सेम जैसी की दिखनी चाहिए।
2: अब आपको बताते हैं कि किसी कार को बुलेट प्रूफ कैसे बनाया जाता है। वास्तव में किसी भी सामान्य कार को बुलेट प्रूफ बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। इसमें कार के इंजन को छोड़कर लगभग पूरे हिस्से को बदल दिया जाता है। दरवाजों से लेकर विंडशील्ड, खिड़कियां, छत और यहां तक की पूरा पैनल भी बुलेट प्रूफ मटेरियल से बदला जाता है। बुलेट प्रूफिंग से जुड़ा सारा काम होता है अहिल्या नगर में मौजूद इस कारखाने में, जहां लगभग 100 लोगों की टीम एक आम गाड़ी को मॉडिफाई कर मजबूत और सुरक्षित किले में तब्दील कर देती है।
0: ये देखिए, इस तरह से जो दरवाजे अभी हमने आपको दिखाया है, इस तरह से दरवाजे खोल दिए गए हैं। सिर्फ इंजन छोड़ करके इस गाड़ी के सारे पार्ट को निकाल दिया गया है और अब बुलेट प्रूफ चीजें उस गाड़ी में, उस कार में लगाने का कार्य जो है वो शुरू है। और मुझे लगता है, जैसा कि अभी सुरेंद्र सिंह राठौर ने हमें बताया है, 15 से 20 दिन में ये भी लग्जरी कार जो है ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं?
4: हाँ जी, एकदम सही। तो अभी इस वक्त हमने क्या किया है, जब ये जो नई गाड़ी आई थी उसको हमने लिया है, उसे पूरा स्ट्रिप डाउन किया है। तो जब आप देखेंगे तो इसके अंदर सब इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके सीट, इसके अंदर अपॉल्स्ट्री, ये सारी निकाल दिए हैं। इसके अंदर हमने रीइंफोर्स किया है इसे आर्मर्ड स्टील के साथ। जहां जहां हमें लगता है कि 360 डिग्री प्रोटेक्शन देनी है, वहां पर इसे हमने स्टेंटेन किया है और इस व्हीकल को वापस ग्राउंड से बिल्ट अप किया है। तो हम जब ग्राउंड से बिल्ट अप करते हैं तो इसका पहले फ्लोर बनाते हैं, फिर इसके साइड्स बनाते हैं, फिर रूफ बनाते हैं। तो इसे कंप्लीट एक केज जैसा बनाते हैं जिसे हम 360 डिग्री प्रोटेक्शन कहता है। इसका ये फायदा है कि ये बुलेट से तो प्रोटेक्ट करेगा, बट कभी अगर रोड पे एक्सीडेंट हो गया, व्हीकल टंबल होगी, इन दैट सिनेरियो आल्सो ये व्हीकल बहुत ही सेफ होती है।
0: अच्छा, ये थोड़ा सा भी हाइट में उठेगी नहीं?
4: नहीं, ये बहुत हैवी होती है व्हीकल। तो इसका नॉर्मल जो एड ऑन वेट होता है तकरीबन 1000 केजीज इसमें बढ़ जाता है। तो इसके वजह से व्हीकल बहुत सेफ होती है, ये रोड को पकड़ के चलती है। आपने देखा होगा बहुत सारे वीवीआईपी पॉलिटिशियंस ये व्हीकल को एवरीडे यूज के लिए यूज करते हैं।
2: एक बुलेट प्रूफ कार की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके टायर। हमले की स्थिति में भी गाड़ी चलती रहे, इसके लिए खास रन फ्लैट ट्यूबलेस टायरों का इस्तेमाल किया जाता है।
4: इतना टाइम हमने ये देखा है कि जब एक्चुअल में फायरिंग होती है तो उन लोग है ना व्हीकल के टायर्स को टारगेट करते हैं। जब उसे टारगेट करते हैं तो जाहिर है कि व्हीकल रुक जाएगी, उन्हें ज़्यादा समय मिल जाएगा और उसे फिर फायर करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि ये जो व्हीकल का जो टायर है इसके अंदर रन फ्लैट सिस्टम लगा हुआ है। ये रन फ्लैट सिस्टम क्या करता है, जब इसके अंदर डिफ्लेट होगा, बुलेट लगेगी तो ये पूरा जो एयर है डिफ्लेट हो जाएगा। उसके बाद में जो टोटल वेट है ये रन फ्लैट सिस्टम पे आ जाएगा और उसके अलावा ये 350 किलोमीटर्स तो भी ये जा सकता है। पूरा डिफ्लेट होने के बाद में 50 किलोमीटर आपकी व्हीकल को ये अलग जगह पर लेके जा सकता है, जहाँ पर आप सुरक्षित हो वहाँ तक ये आपको पहुँचा देगा।
0: अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये जो टायर है ये कौन सी कंपनी का आप लोग इस्तेमाल करते हैं या खुद ही बनाते हैं?
4: नहीं, जो टायर है वो OEM के जो हो सकता है, वो कोई भी मेक का हो सकता है, उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो इसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है वो उसे प्रोटेक्ट करेगा।
2: इसी तरह बुलेट प्रूफिंग के लिए खास तरह की स्टील शीट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मोटाई लगभग 6.5 mm तक होती है। तो वही पूरी गाड़ी का सबसे कमजोर हिस्सा शीशा होता है, इसलिए इसमें 45 से 55 मिलीमीटर तक का मोटा कई परतों वाला ग्लास लगाया जाता है।
4: तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स हैं जिसमें अलग अलग थिकनेस ऑफ मटेरियल हमने टेस्ट किया है। सो वेदर उसमें AK-47 हो गया या तो SLR हो गया, जो ये कॉमन थ्रेट परसेप्शन जो होते हैं, जो टेररिस्ट लोग यूज़ करते हैं, जो नक्सलवादी लोग ये वेपन्स यूज़ करते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो स्टील और ग्लास पे कुछ इस तरह का होता है। ये जब बुलेट लगती है तो सिर्फ इतना सा एक इम्पैक्ट होता है।
0: अच्छा, और यहाँ पर एक दरवाजा भी रखा हुआ है और ये शायद गोलियों के निशान है। एक नंबर, दो नंबर, तीन, चार, पाँच, छह, ये क्या है जी?
4: सर, इसमें क्या है कि पूरी व्हीकल को जब बन गई है तो उसके ऊपर हमने ये फायर करवाया हुआ है, तो ये उसी का एक सैंपल डोर है। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लासेस के साथ ये व्हीकल के डोर पे भी फायर किया गया है और आप देख सकते हैं कि इस तरफ से बुलेट अंदर पेनिट्रेट होती है, वेदर इट इज ग्लास और स्टील, बट अंदर के साइड वो कम्प्लीटली वो प्रोटेक्ट करती है।
0: अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी है ये कांच की? इसकी और क्या कहते हैं कांच का और कैसे इसे बनाया जाता है?
4: तो ये इसके अंदर 5 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है। ये एक सैंडविच ग्लास होता है जिसमें ग्लास होता है, उसमें 5 अलग अलग तरह के मटेरियल्स लग के उसे वो 100% प्रोटेक्ट करने के लिए 40 mm थिक होता है जो स्टैंडर्ड मटेरियल है, थिकनेस है उसके हिसाब से। और इसके अंदर नीचे यहाँ पर कम्प्लीटली जैसे हमने ये आर्मर्ड स्टील देखी, वो आर्मर्ड स्टील लगा हुआ है।
0: और वहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि ये कांच लगा हुआ है। थोड़ा सा इंद्रजीत जी आप बताएं, ये कांच आगे का कांच है ना या पीछे का है? पीछे
3: का स्क्रीन है, ये विंडस्क्रीन है। हाँ। तो इसपे जैसे हमने हैमर शॉट्स दिए हुए हैं, तो हैमर शॉट्स के बाद में भी जैसे हमने आपको दिखाया कि गन शॉट्स के, तो आपने सैंपल्स देखे। अगर कोई किसके दिमाग में रहता है कि नहीं इतना बड़ा हैमर लेके फिर भी प्रोटेक्ट करेगा, तो इसके लिए हमने आपको ये हैमर शॉट्स के भी डिस्प्ले बना के रखा है।
2: जहाँ एक टैक्टिकल व्हीकल को बनाने में 15 दिन से 1 महीने का समय लगता है, वहीं VIP सुरक्षा के लिए एक आम कार को बुलेट प्रूफ कार में बदलने के लिए 15 से 20 दिन का समय लगता है। बुलेट प्रूफिंग के तमाम स्टेप्स से गुजरने के बाद जब एक आम कार किले में तब्दील होकर खास हो जाती है, तब बारी आती है टेस्टिंग की। इसके लिए तैयार बुलेट प्रूफ कार के पार्ट्स को मजबूती की टेस्टिंग के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स में भेजा जाता है।
3: इसमें जैसे गुजरात में लैब है, चंडीगढ़ में लैब है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो इसको टेस्ट करती हैं। जैसे एक हमारे पास में अगर मटेरियल का लॉट आ गया, स्टील का लॉट आ गया, ग्लास का लॉट आ गया, हमने वो स्टील के लॉट को अपना सैंपल टेस्ट कर दिया। जैसे आपको दिखाया, दैट इज़ ये 300x300 का हमने अपना एक शीट काटा है, ये कटिंग करके हमने इसके ऊपर 6 शॉट्स लिए हैं, SLR के हो गए, AK-47 के हो गए। जो ग्लास है जो आपके पीछे, ये 500x500 का है, इस पर भी हमने शॉट लिया। हमारी कंपनी एक एडिशनल चीज़ करती है, जब आर्मरिंग पूरी ख़त्म हो जाती है तब उसको हम पूरी बुलेट प्रूफ करके एजेंसी में भेजते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं। तो जैसे ये गाड़ी का आपको जैसे हमने डोर दिखाया है, कि ये गाड़ी का डोर का ये खासियत है कि ये सिर्फ डोर टेस्ट नहीं हुआ है, ये पूरी गाड़ी उनके पास में गई है, वो गाड़ी के ऊपर उन्होंने टेस्ट किया है, फिर हमने वो डोर को रिप्लेस करके ये डोर को अपना एज अ डेमो पीस रखा है।
2: बुलेट प्रूफिंग और टेस्टिंग की तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इस कारखाने से निकली कार एक चलते फिरते किले में तब्दील हो जाती है। आज देश के कई राज्यों में यहां से निकली बुलेट प्रूफ कारें पहुंचती हैं। तमाम राज्यों में भेजी गई मॉडिफाइड कारों के सैंपल्स को इस कारखाने में बेहद शान से डिस्प्ले किया गया है।
0: और ये तस्वीरें देखें, अलग अलग राज्यों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, बहुत सारे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे कांच भी लगा हुआ है जो टूटे फूटे कांच है। थोड़ा सा बताएं ये क्या है, क्या चीज़ है, कहाँ पर आपने क्या किया है ये? मतलब
3: ये हमारा एक हमने डिस्प्ले बनाया हुआ है, ये हमने सब स्टेट्स में सप्लाई किया हुआ है टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। जब हम इस पे SLR के शॉट्स मारते हैं, AK-47 के शॉट लेते हैं, तो ये जो कांच है वो टूट जाता है, शटर हो जाता है। लेकिन अगर अंदर से आप जब हम आपको दिखाएंगे तो बहुत स्मूथ है, तो अंदर कोई भी पेनिट्रेशन नहीं है। इसके लिए हमने एक वॉल एक बनाया है, एक डिस्प्ले वॉल है, कि ये सब स्टेट्स में हमने दिया, और इससे ज़्यादा स्टेट्स भी हमारे ऐड हुए हैं, लेकिन अभी तक हमने उसको अपना डिस्प्ले पे नहीं डाला गया है।
0: अच्छा, मतलब अलग अलग राज्यों में आपने जांच प्रक्रिया पूरी करी है,
3: जहाँ जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स यूज कर रही है ये उनकी टेस्ट।
2: ये तो थी बात बुलेट प्रूफिंग की, अब बात करते हैं इसमें आने वाले खर्च की। क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये कार्य खास है, इसलिए दाम भी आम नहीं। बुलेट प्रूफिंग का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी सुरक्षा चाहते हैं। अगर गाड़ी को सिर्फ गोलियों के हमले से बचाना है तो ये खर्च 20 लाख से 50 लाख रुपए के बीच आ सकता है। ये बेसिक लेवल की सुरक्षा होती है जो पिस्टल या छोटे हथियारों से बचाने के लिए होती है। लेकिन अगर आप AK-47 जैसी राइफल, हैंड ग्रेनेड जैसे ज्यादा शक्तिशाली हथियारों से सुरक्षा चाहते हैं तो ये खर्च बढ़कर करोड़ों में पहुंच सकता है। ये खर्च इतना ज्यादा क्यों होता है ये भी समझना जरूरी है। दरअसल कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे आप कौन सी कार को मॉडिफाइड कर रहे हैं, उनमें कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास, भारी स्टील प्लेटिंग, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, फायर सिस्टम और खास टायर जैसी चीजें कीमत को काफी बढ़ा देती है।
3: इसमें जैसे ये गाड़ियां हैं वो अलग अलग टाइप की प्रोटेक्शन के ऊपर जाती है। अगर किसको हैंड पिस्टल से लेनी है तो वो स्टार्ट हो जाती है, एक 50 लाख से चालू हो जाती है, तो वो एक 2.5-2 करोड़ तक अपना जाती है अपना। उसमें AK-47 की भी प्रोटेक्शन है, SLR की भी प्रोटेक्शन है, बॉम्ब प्रोटेक्शन भी है, तो हर तरीके से प्रोटेक्शन जाता है। अगर उसको और लाइट बनाना है हमको, तो हम उसके लिए कॉम्पोजिट यूज़ करते हैं, जो स्टील नहीं होता है वो बहुत लाइट होता है, उसमें कि ये गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होती है।
2: मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद इस कंपनी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनाने का काम शुरू किया था। अब ये गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कस्टमाइज्ड बैलिस्टिक प्रोटेक्शन और एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशन दे रही है। इतने सालों से शील्ड आर्मरिंग भारत के आर्म मोबिलिटी डिफेंस सिक्योरिटी और मोबिलिटी इंजीनियरिंग के मेल पर काम करते हुए बदलते खतरों के हिसाब से एंड टू एंड प्रोटेक्शन सॉल्यूशन देती आ रही है।
1: तो ये शुरुआत ऐसे हुई कि जब 26/11 हुआ तो हमें एक नीड ये लगी कि सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स उस वक्त इंडिया में इतने क्वालिटी के जो इंटरनेशनल क्वालिटी के नहीं थे, तो जो ऑपरेशन जब यहाँ पर हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे लैप्सेस देखे गए, वेदर वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात की जाए या तो व्हीकल्स की बात की जाए, तो उस लेवल का प्रोडक्ट नहीं था यहाँ पर। तो तब ये दिमाग में आया कि हमें कुछ इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इंडिया में लेके जाने चाहिए ताकि हमारे जवान हैं, हमारे VVIPs हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, वो सारे इसको क्या बोलते हैं अपने आप को सुरक्षित कर सके। तो बस वो एक सोच था और तब से हमने स्टार्ट किया। 2011 हमने ये कंपनी स्टार्ट की और एक स्टेट से स्टार्ट किया, तकरीबन 18 राज्य के स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी व्हीकल्स यूज़ कर।
2: ये वो सुपर कारें हैं जिनके आगे बुलेट बेअसर है, भारी हथियारों का वार भी बेकार है, सड़क पर चलता फिरता आम टैंक है ये कारें। यही वजह है कि देश भर में सरकारों से लेकर असरदारों तक इन धुरंधर कारों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। अहिल्या नगर से साहिल चौहान और धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
7: बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी फिल्म के सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है नितेश तिवारी की रामायण। फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई लेकिन कमाई के मामले में पहले ही बड़े बड़े रिकॉर्ड के लिए खतरा बनने लगी है। खबर है कि मेकर्स ने सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए पूरे 450 करोड़ रुपए की डिमांड रख दी है, यानी कि रिलीज से पहले ही फिल्म का भाव आसमान छू रहा है।
8: रिलीज से पहले ही इतिहास रचने जा रही है रामायण। बड़े पर्दे पर किंग का रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी तैयारी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज से पहले ही सिनेमा की दुनिया में हलचल मचाने का दम रखती हैं। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण भी कुछ ऐसा ही धमाल मचाने की तैयारी में है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही मेगा बजट फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमक दिखाने लगी है। सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि फिल्म के मेकर्स को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। शायद यही वजह है कि मेकर्स ने फिल्म के सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए 450 करोड़ की भारी भरकम मांग रखी है। अगर राइट्स के लिए 450 करोड़ की डील हो जाती है तो ये शाहरुख खान की किंग के मौजूदा रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा होगी। किंग के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की डील करीब 250 करोड़ में हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो रामायण के थिएट्रिकल राइट्स की डील पर जल्द मुहर भी लग सकती है। अगर ये डील 300 से 400 करोड़ की बीच फाइनल होती है तो भी ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड होगा। कामयाबी की उम्मीदों के आंकड़े सिर्फ थिएट्रिकल राइट्स की डील में ही नहीं दिख रही। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा डिजिटल राइट्स के लिए 1,000 करोड़ की महाडील पर भी नजरें टिकाए हुए हैं। नमित इस डील के लिए इंडस्ट्री के कई दिग्गजों से बातचीत करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स की तरफ से फिल्म के दोनों पार्ट्स की कंबाइंड स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए मेकर्स को 700 करोड़ का ऑफर मिला था, लेकिन नमित मल्होत्रा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और वो डिजिटल राइट्स के लिए 1,000 करोड़ की डील ही चाहते हैं। जाहिर है अगर ये दोनों डील पक्की हो जाती हैं, तो ये फिल्म पर्दे पर आने से पहले ही टेबल प्रॉफिट का नया इतिहास रच देगी। रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायण एक भव्य पौराणिक फिल्म है। इस फिल्म में रणबीर भगवान राम की भूमिका में हैं और साउथ के सुपरस्टार यश रावण का किरदार निभा रहे हैं। माता सीता का किरदार साई पल्लवी ने निभाया है। पर्दे पर भगवान हनुमान के रूप में सनी देओल नजर आएंगे। धुरंधर की तरह ही फिल्म भी दो पार्ट्स में आने वाली है। रिलीज से काफी पहले से ही इस फिल्म का सोशल मीडिया पर बज बना हुआ है। फिल्म का पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा। ये फिल्म करीब 4000 करोड़ के भारी भरकम बजट में तैयार हो रही है। फिल्म के मेकर्स को पूरी उम्मीद है कि रिलीज के बाद ये फिल्म हिंदी सिनेमा में कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: पवित्र अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंदिर कर्मचारियों ने गुफा में किया प्रवेश। 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिन चलेगी यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक करीब 20 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। झमाझम बारिश के बीच बद्रीनाथ में उमड़ा आस्था का समंदर। आज विधि विधान से खुलेंगे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। चमोली के गोविंद घाट से पवित्र धाम के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। अरदास के बाद पंच प्यारों ने की अगुवाई। गुजरात के गांधीनगर में स्वामी महावीर का हुआ सूर्य तिलक। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में दोपहर 2:07 पर बना शुभ संयोग। अलौकिक घटना के गवाह बने हजारों भक्त। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट। काशी की समृद्ध कला संस्कृति को मिलेगा नया मंच। आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन की 3D इमेज जारी। ओडिशा के चांदीपुर फायर रेंज से भारत ने अग्नि वन बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 700 से 900 किलोमीटर है मारक क्षमता। परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा। नैनीताल मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों तक गर्मी का असर। दोपहर के वक्त सावधानी बरतने की सलाह।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
10: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश कर दिया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोस दी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है। कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर रहती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इसे सच मानकर शेयर कर देते हैं। यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ कर देते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले फैक्ट चेक में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि महिला पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर खुशी मना रही थी, लेकिन अब राज्य की नई सरकार ने इसी का घर गिरवा दिया। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, बताएंगे आपको। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के साथ जुड़ी है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि एक हिंदू लड़की से इश्क करने पर एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई। क्या है वायरल दावे की यहां पर सच्चाई, वो भी आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
10: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर खुशी मना रही महिला का घर नई सरकार ने बुलडोजर से गिरा दिया। वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करती इस रिपोर्ट में देखिए।

0: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। हाल ही में हावड़ा रेलवे स्टेशन और सियालदा रेलवे स्टेशन के बाहर ये अभियान चलाया गया। वहीं कोलकाता के तिलजला इलाके में अतिक्रमण हटाने को लेकर वहां के स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच टकराव हुआ, इसमें 8 जवान घायल हो गए। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो शेयर करते हुए कुछ लोग लिख रहे हैं कि एक महिला जो बंगाल में बीजेपी की जीत की खुशी मना रही थी, राज्य की नई सरकार ने उसी का घर गिरवा दिया। वीडियो में एक के बाद एक दो क्लिप्स नजर आती हैं। पहली क्लिप में भगवा टी शर्ट पहने हुए और भगवा गुलाल लगाए हुए एक महिला मजेदार स्टाइल में डांस करती दिख रही है। वहीं दूसरी क्लिप में टूटी फूटी इमारतों के बीच खड़ी एक महिला रो रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कई लोगों का कहना है कि जो महिला बंगाल में बीजेपी की जीत की खुशी में नाच रही थी, उसी का घर बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद तोड़वा दिया। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बंगाल में चुनाव के समय यह अंध भक्तिन खूब नाच नाच कर डांस कर रही थी बीजेपी के लिए। बीजेपी बंगाल जीती, फिर बुलडोजर चला तो इस अंध भक्तिन का घर भी लपेटे में आ गया। अब कह रही है बीजेपी को नहीं जीतना चाहिए था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये महिला पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर खुशी मना रही थी, लेकिन अब राज्य की नई सरकार ने इसी का घर गिरवा दिया। अब ये महिला रो रोकर ये बोल रही है कि बीजेपी को वोट देकर उसने गलती कर दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया। तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले दोनों वीडियोस के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में नजर आ रही दोनों ही महिलाओं के चेहरे को जूम करके हमारी टीम ने जब ध्यान से देखा तो ये सामने आया कि दोनों महिलाएं अलग अलग हैं। मतलब दो वायरल क्लिप्स को जोड़कर इस वीडियो को तैयार किया गया है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके अलावा पहला सवाल क्या है इसी वीडियो से रिलेटेड, वो आपको दिखा देते हैं। अगर दावा वाकई सही है तो वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए सियासी अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। आखिर सच्चाई क्या है, आपको इस वीडियो में दिखाते हैं।
0: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल के लिए दोनों वीडियो की जांच की। पहली क्लिप में गुलाबी रंग का एक मंदिर नजर आ रहा है। सर्च के जरिए इसके बारे में हमें पता लगा कि ये पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नतुनपुल्ली न्यू टाउन इलाके का राधा कृष्ण मंदिर है। गूगल मैप्स पर भी इस मंदिर की तस्वीरें मौजूद हैं। साफ पता चलता है कि ये उसी मंदिर की तस्वीरें हैं जो वायरल वीडियो में नजर आ रहा है। सर्च के जरिए साफ हो गया कि ये वीडियो न्यू टाउन का ही है और इसमें दिख रही महिला मानसी हल्दर नाम की बीजेपी समर्थक है जो 4 मई को चुनाव नतीजों के दिन बीजेपी की जीत की खुशी मनाते हुए डांस कर रही थी। मानसी और उनके पति सुखरंजन हल्दर दोनों ही बीजेपी समर्थक हैं, जो न्यू टाउन के विवेकानंद पल्ली इलाके में रहते हैं और नई सरकार के गठन के बाद से अब तक इस इलाके में कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी क्लिप को रिवर्स सर्च करने से ये हमें एक न्यूज आउटलेट की 12 जून 2025 की रिपोर्ट में मिली। रोती हुई महिला वाला वीडियो इसी 10 मिनट 45 सेकंड की रिपोर्ट से लिया गया है। ये रिपोर्ट दिल्ली के कालकाजी में हुई डीडीए की बुलडोजर कार्रवाई से संबंधित है। वीडियो में महिला भगवान की मूर्ति पकड़कर खड़ी है और कह रही है कि बीजेपी के राज में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। वहां मौजूद दूसरे लोग भी रिपोर्टर से बातचीत के दौरान अपना घर तोड़े जाने पर दुख जाहिर कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अब वो कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इस वीडियो को उस वक्त कांग्रेस ने भी शेयर किया था और आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार के राज में दिल्ली में मंदिर भी तोड़ दिए गए। एक आधिकारिक न्यूज आउटलेट पर 11 जून 2025 को छपी एक खबर के मुताबिक कालकाजी के पास भूमिहीन कैंप इलाके में अवैध अतिक्रमण का ये मामला लगभग 10 साल कोर्ट में चला था, लेकिन झुग्गी वासियों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। कोर्ट के आदेश के बाद ही ये अवैध निर्माण गिराए गए थे। इस दौरान 344 घर गिराए गए थे जिनमें 1200 परिवार रहते थे। साफ है दोनों क्लिप्स में दिख रही महिलाएं अलग अलग हैं। पहली क्लिप बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की है, जहां मानसी हल्दर नाम की बीजेपी समर्थक 4 मई को पार्टी की जीत के बाद खुशी मना रही थी। वहीं दूसरी क्लिप जून 2025 में दिल्ली के कालकाजी में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान का है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक पर बीच बाजार में चाकू से हमला किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करके यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि एक हिंदू लड़की से इश्क करने पर एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई। वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करते इस वीडियो में देखिए।
2: सोशल मीडिया पर यह हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। एक शख्स के हाथ में चाकू है, निशाने पर एक व्यक्ति है जिसे पीछे से एक दूसरे व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है ताकि वो चाकू के वार से बच नहीं पाए। बीच सड़क पर ये खूनी खेल चल रहा है लेकिन कोई इसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। लोग वहां से गुजर रहे हैं लेकिन इनकी अनदेखी करके आगे बढ़ जा रहे हैं। यहां तक कि किसी ने पुलिस को भी इसके बारे में सूचना नहीं दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो को धार्मिक एंगल देकर धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है। लोग वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर इसे शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को सांप्रदायिक एंगल देकर वायरल करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़के को एक हिंदू लड़की से प्यार करना महंगा पड़ गया, बाजार में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले तो वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बड़े ही गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में एक बोर्ड नजर आया, उसमें तेलुगु में कुछ शब्द लिखे मिले, मतलब ये वीडियो तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश का हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लोकल मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन हाल फिलहाल में दावे की पुष्टि करती कोई ऐसी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे हमें वायरल दावे पर संदेह हो। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल, अगर दावा सही है तो वायरल वीडियो कब का है और कहां का है? दूसरा सवाल, कहीं रंजिश के वीडियो को जानबूझकर धार्मिक एंगल देकर वायरल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? आखिर सच्चाई क्या है? क्या है सच, क्या है झूठ? दिखाते हैं।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। उस दौरान हमें नवंबर 2025 की कई तेलुगु भाषा में छपी रिपोर्ट्स मिली जिसमें वायरल हो रहे वीडियो के क्लिप का इस्तेमाल किया गया था। 5 नवंबर 2025 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी बालेश्वर रेड्डी और पीड़ित रोशन कुमार सिंह दोनों ही आपराधिक रिकॉर्ड वाले अपराधी थे। बताया गया था कि ये मामला वित्तीय विवाद को लेकर हुआ था। सर्च के दौरान हमें 5 नवंबर 2025 को छपी एक आधिकारिक रिपोर्ट मिली। यहाँ दी गई जानकारी के मुताबिक दोनों व्यक्तियों के बीच लंबे समय से दुश्मनी थी और उसी दिन बालेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना के हैदराबाद में जगतगिरी गुट्टा बस स्टॉप पर रोशन कुमार सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी। रेड्डी ने अपने साथियों मोहम्मद और आदि के साथ मिलकर रोशन पर धारदार हथियार से हमला किया और फिर मौके से फरार हो गया। इलाज के दौरान अस्पताल में रोशन कुमार सिंह की मौत हो गई। जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि रेड्डी और रोशन दोनों हिंदू थे। इस घटना में कोई सांप्रदायिक पहलू नहीं था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो में नजर आ रहे हमलावर और पीड़ित दोनों हिंदू थे। 2025 की इस घटना में कोई सांप्रदायिक पहलू नहीं था। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ फैक्ट चेक में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार से वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड की हलचल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जीएनटी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर को अंत की तरफ बढ़ाने का, आप सबको ऐसे वीडियोस दिखाने का जिसके बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
5: कहते हैं अगर हौसला बुलंद हो तो आसमान की ऊंचाई भी छोटी पड़ जाती है, और इस बात को सच कर दिखाया है रूस के रुस्तम नाबियेव ने। उन्होंने वो कर दिखाया है जिसे आम इंसान तो क्या, अच्छे भले पर्वतारोही करने से पहले 100 बार सोचे। दोनों पांव से दिव्यांग रुस्तम ने बिना किसी कृत्रिम पैर के सिर्फ अपने हाथों के सहारे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर ली है। इस ऐतिहासिक चढ़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो गई हैं। दरअसल साल 2015 में एक सैन्य बैरक के अचानक ढह जाने से रुस्तम ने अपने दोनों पांव हमेशा हमेशा के लिए खो दिए थे। उस हादसे में कई सैनिकों की जान चली गई थी और रुस्तम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन व्हीलचेयर पर बैठकर जिंदगी काटने के बजाय उन्होंने पहाड़ों को चुनौती देने का फैसला किया। 20 मई को उन्होंने सुबह 8:16 पर एवरेस्ट के शिखर पर रूसी झंडा लहराया। इससे पहले पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुद्धा मगर ने कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट फतह किया था, लेकिन बिना प्रोस्थेटिक्स के सिर्फ हाथों के बल पर एवरेस्ट फतह करने वाले रुस्तम दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं।

सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आंसर शीट नजर आ रहा है और उसमें छात्र ने सभी सवालों के जवाब भी लिखे हुए हैं। लेकिन टीचर का दिमाग कुछ शब्द देखकर घूम गया, क्योंकि उसने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। छात्र ने अबाउट को एबीटी लिखा हुआ है, उसने आगे एक जगह पर काइंडा लिखा हुआ है, वही एक जगह पर उसने बाय द वे की जगह बीटीडब्ल्यू लिखा हुआ है। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो लोग सोशल मीडिया पर बात करते हुए अक्सर यूज करते हैं, मगर आंसर शीट में देखकर टीचर ने भी माथा पकड़ लिया। वही वीडियो में लिखा है, अगर आपका स्टूडेंट जेन ज़ी है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप सभी को पपेट शो के बारे में तो पता ही होगा। जी हाँ, वही कठपुतली कला जिसमें एक आदमी कुछ कठपुतलियों को अपनी उंगली से कंट्रोल करता है और एक कमाल का शो दिखाता है। ये एक पुरानी कला है जो लोगों का मनोरंजन करती है, मगर आज के समय में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। वही कला वायरल हो रहे वीडियो में देखने को मिली। वायरल वीडियो में नजर आता है कि एक पपेट कुछ आर्ट बनाने में लगा हुआ है। वो कलम निकालता, उसकी इंक चेक करता, कागज पर कुछ बनाता और फिर उसे गौर से देखते हुए नजर आता। उस पपेट को एक आदमी कंट्रोल करता हुआ नजर आता है। आप जब वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका इंटरनेट का पैसा वसूल हो गया है। सोशल मीडिया पर एक अनोखा और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुल्हन खुद अपने पति के घर बारात लेकर पहुंच जाती है। गाने की धुन, पटाखों की गूंज के साथ जबरदस्त डांस करते हुए वो पूरे धूम धड़ाके के साथ ससुराल में एंट्री करती है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल बारात नहीं, बल्कि मजाकिया अंदाज में दिया गया सरप्राइज था। घर के बाहर ही वो जमकर नाचती है और फिर अपने होने वाले पति को वरमाला पहनाकर सबको चहका देती है। आसपास मौजूद लोग भी इस पल को एंजॉय करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

0: किसान की मेहनत उसकी फसल में ही दिखती है। इस फसल के मन मुताबिक फलने फूलने की खुशी किसान ही महसूस कर सकते हैं। तेलंगाना के किसान ने खुशी न सिर्फ खुद महसूस की है बल्कि दूसरों को भी महसूस कराई है। वीडियो में एक तरफ फसल कटती नजर आ रही है और दूसरी तरफ है खुशी जताता किसान। खुशी में वो जो भी कर रहा है उसे वो इंसान भी महसूस कर सकता है जिसने कभी खेती होते हुए भी ना देखी हो। वायरल हो रहे वीडियो में किसान को गुलाटियां लगाते देखा जा रहा है। वो ऐसी गुलाटियां लगा रहा है जैसे छोटा बच्चा हो, जबकि वो देखने में अधेड़ उम्र का लग रहा है। उसकी खुशी इतनी थी कि उसने उम्र देखने वालों और फसल काटने वालों की भी चिंता नहीं की। इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि महीनों की मेहनत आखिर क्या होती है। गर्मी से बचने के लिए एक कपल ने बाइक पर ऐसा जुगाड़ भिड़ाया जिसने सभी को चौंका ही दिया है। आलम यह है कि इस वीडियो को लोग बार बार देख रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि गर्मी से बचने के लिए किस तरह एक कपल ने बाइक को ढका है। देखकर ऐसा लगता है जैसे बाइक नहीं बल्कि चलता फिरता घर हो। आलम यह है कि सड़क पर पलट पलट कर लोग इसे देख रहे थे। जंगल में बंद पड़े रास्ते को एक हाथी ने अपनी ताकत और समझदारी से साफ कर दिया। आईएसएफ अधिकारी प्रवीण कासवान ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो साझा किया है जिसमें एक हाथी जंगल के रास्ते को साफ करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रास्ते पर भारी लकड़ियां और पेड़ों के बड़े टुकड़े पड़े हुए थे जिनकी वजह से सड़क बंद हो गई थी। आमतौर पर ऐसे कामों के लिए जेसीबी जैसी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जंगल के अंदर हर जगह मशीनों का पहुंच पाना आसान नहीं होता। खासकर बारिश या खराब रास्तों के कारण भारी वाहन अंदर नहीं जा पाते हैं। ऐसे समय में हाथी जंगल विभाग के लिए सबसे भरोसेमंद साथी बन जाते हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक हाथी और एक छोटे से डॉगी की जबरदस्त बॉन्डिंग और मस्ती साफ नजर आती है। वीडियो में दिखता है कि एक बड़ा हाथी तालाब के किनारे खड़ा हुआ है और अपनी लंबी सूंड से पानी उछालकर उस नन्हे डॉगी पर गिरा रहा है। हाथी का अंदाज ऐसा लगता है जैसे वो डॉगी को बारिश या झरने जैसा मजा दिला रहा हो। हाथी की इस हरकत से डॉगी भी काफी खुश दिखता है। पानी की बौछारों के बीच वो उछल कूद करता रहता है जैसे उसे कोई नेचुरल शावर मिल गया हो। वीडियो में उसकी पूंछ लगातार हिलती रहती है जिससे साफ पता चलता है कि वो इस मस्ती को दिल से एंजॉय कर रहा है। साथ ही वो कई बार हाथी को फिर से पानी डालने का इशारा भी करता नजर आता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को पहली नजर में देखने से लगता है कि एक शख्स अपने हाथ पर कुछ लकड़ी की सूखी टहनियों को रखे हुए है, लेकिन अगले ही पल उन सूखी लकड़ियों में जब हलचल होती है तो पता चलता है कि ये कोई सूखी लकड़ी की टहनी नहीं बल्कि कीड़े हैं। वायरल वीडियो को लेकर जानकारी जुटाने पर पता चला कि इन कीड़ों का नाम बफ टिप मॉथ है। ये कीड़े देखने में टूटी हुई लकड़ी की टहनी के टुकड़े लगते हैं, मगर असल में ये कीड़े होते हैं। इन कीड़ों की यही सबसे बड़ी खासियत है। बफ टिप मॉथ नाम का ये कीड़ा जब आराम करता है तो वो अपने पंखों को कुछ इस तरह से मोड़ लेता है कि वो देखने में बिल्कुल लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह नजर आता है। ये कीड़ा अपने आप को शिकारी पक्षी और जानवरों से बचाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी फिल्म के सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है नितेश तिवारी की रामायण। फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई लेकिन कमाई के मामले में पहले ही बड़े बड़े रिकॉर्ड के लिए खतरा बनने लगी है। खबर है कि मेकर्स ने सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए पूरे 450 करोड़ रुपए की डिमांड रख दी है, यानी कि रिलीज से पहले ही फिल्म का भाव आसमान छू रहा है।
3: रिलीज से पहले ही इतिहास रचने जा रही है रामायण। बड़े पर्दे पर किंग का रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी तैयारी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज से पहले ही सिनेमा की दुनिया में हलचल मचाने का दम रखती हैं। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण भी कुछ ऐसा ही धमाल मचाने की तैयारी में है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही मेगा बजट फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमक दिखाने लगी है। सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि फिल्म के मेकर्स को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। शायद यही वजह है कि मेकर्स ने फिल्म के सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए 450 करोड़ की भारी भरकम मांग रखी है। अगर राइट्स के लिए 450 करोड़ की डील हो जाती है तो ये शाहरुख खान की किंग के मौजूदा रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा होगी। किंग के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की डील करीब 250 करोड़ में हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो रामायण के थिएट्रिकल राइट्स की डील पर जल्द मुहर भी लग सकती है। अगर ये डील 300 से 400 करोड़ की बीच फाइनल होती है तो भी ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड होगा। कामयाबी की उम्मीदों के आंकड़े सिर्फ थिएट्रिकल राइट्स की डील में ही नहीं दिख रही। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा डिजिटल राइट्स के लिए 1000 करोड़ की महा डील पर भी नजरें टिकाए हुए हैं। नमित इस डील के लिए इंडस्ट्री के कई दिग्गजों से बातचीत करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स की तरफ से फिल्म के दोनों पार्ट्स की कंबाइंड स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए मेकर्स को 700 करोड़ का ऑफर मिला था, लेकिन नमित मल्होत्रा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और वो डिजिटल राइट्स के लिए 1000 करोड़ की डील ही चाहते हैं। जाहिर है अगर ये दोनों डील पक्की हो जाती हैं, तो ये फिल्म पर्दे पर आने से पहले ही टेबल प्रॉफिट का नया इतिहास रच देगी। रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायण एक भव्य पौराणिक फिल्म है। इस फिल्म में रणबीर भगवान राम की भूमिका में हैं और साउथ के सुपरस्टार यश रावण का किरदार निभा रहे हैं। माता सीता का किरदार साई पल्लवी ने निभाया है। पर्दे पर भगवान हनुमान के रूप में सनी देओल नजर आएंगे। धुरंधर की तरह ही फिल्म भी दो पार्ट्स में आने वाली है। रिलीज से काफी पहले से ही इस फिल्म का सोशल मीडिया पर बज बना हुआ है। फिल्म का पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा। ये फिल्म करीब 4000 करोड़ के भारी भरकम बजट में तैयार हो रही है। फिल्म के मेकर्स को पूरी उम्मीद है कि रिलीज के बाद ये फिल्म हिंदी सिनेमा में कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और खबरों में अब रुक करते हैं अनोखे रिकॉर्ड की ओर, जो कि बना है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट फतह करने की तमन्ना तो तमाम लोगों को होती है, लेकिन वहां पर सभी का पहुंच पाना मुश्किल होता है। हालांकि दो दिन पहले ही एक साथ 250 के करीब लोगों ने चोटी पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना दिया। देखिए,
4: बर्फ से ढके इस पहाड़ पर जहां एक एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल होता है, पर्वतारोहियों की ये लंबी कतार हैरान करने वाली है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ओर बढ़ रहा पर्वतारोहियों का ये दल न केवल इस शिखर को फतह करने निकला था, बल्कि इन्होंने वहां पहुंचकर अनोखा रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। बताया जा रहा है कि 20 मई को नेपाल से 274 पर्वतारोही इस चोटी पर पहुंचे और एक ही साथ इतने लोगों के एवरेस्ट फतह करने का नया रिकॉर्ड बन गया। नेपाल के एक्सपीडिशन ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी इसकी तस्दीक की है।
5: On the 20th of May 2026, above 274 people summit successfully, including the climbers and the Nepali climbing Sherpa guide. This year, 2026, more than 500 people obtained the climbing permit for Mount Everest from the Department of Tourism.
4: इससे पहले 22 मई 2019 को 223 लोग एक साथ एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एवरेस्ट पर आवागमन को लेकर इस तरह से चिंता भी जताई गई कि इससे वहां की आबो हवा पर असर पड़ सकता है और पर्यावरण को खतरा भी हो सकता है। लेकिन नेपाल के एक्सपीडिशन ऑपरेटर्स एसोसिएशन का कहना है कि लोगों के एक साथ जाने का ये कतई मतलब नहीं है कि सैकड़ों पर्वतारोही एक ही समय में वहां मौजूद हों, बल्कि वो अलग अलग झुंड में होते हैं।
5: disagreed that there was a more climber because Everest is 8,000 meter and people are climbing from 5,400 meter to 8,800 meter. So they are not in gathering, they are distributing in different camps and part. So there aren't that much climber in Everest according to the size, according to the distance of the mountain.
4: हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अब हर दिन अधिकतम 250 लोगों की सीमा तय कर दी जाए ताकि निश्चित संख्या में ही लोग एवरेस्ट के शिखर तक जा सकें और वहां भीड़ न लगे, क्योंकि पर्वतारोहियों की तादाद बढ़ने से वहां पर ऑक्सीजन की कमी और एक्सीडेंट के खतरों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा पर्वतारोहियों की जान और एवरेस्ट के प्राकृतिक माहौल को बचाने के लिए सावधानी हर हाल में जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: पवित्र अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंदिर कर्मचारियों ने गुफा में किया प्रवेश। 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिन चलेगी यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक करीब 20 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। झमाझम बारिश के बीच बद्रीनाथ में उमड़ा आस्था का समंदर। आज विधि विधान से खुलेंगे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। चमोली के गोविंद घाट से पवित्र धाम के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। अरदास के बाद पंच प्यारों ने की अगुवाई। गुजरात के गांधीनगर में स्वामी महावीर का हुआ सूर्य तिलक। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में दोपहर 2:07 पर बना शुभ संयोग। अलौकिक घटना के गवाह बने हजारों भक्त। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट। काशी की समृद्ध कला संस्कृति को मिलेगा नया मंच। आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन की 3D इमेज जारी। ओडिशा के चांदीपुर फायर रेंज से भारत ने अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 700 से 900 किलोमीटर है मारक क्षमता। परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम।

हथियार ले जाने में है सक्षम। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा। नैनीताल, मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों तक गर्मी का असर। दोपहर के वक्त सावधानी बरतने की सलाह।

0: ये देखिए, तो अब ये 10 किलो के हथौड़े ने लगभग 4-5 बार इस कांच पर वार किया है, मारा है, आगे से तो ये चीजें टूट गई है, लेकिन ये दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भीतर कार के अंदर जो शख्सियत बैठा है क्या उसे कुछ हुआ है। ये देखिए कांच पूरी तरह से आगे से टूटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं, बड़े प्यार से हम हाथ लगा पा रहे।
1: कि ग्लासेस के साथ ये व्हीकल के डोर पे भी फायर किया गया है और आप देख सकते हैं कि इस तरफ से बुलेट अंदर पेनिट्रेट होती है, वेदर इट इज ग्लास और स्टील, बट अंदर के साइड वो कम्प्लीटली वो प्रोटेक्ट करती है।
2: सब स्टेट्स में सप्लाई किया हुआ है टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। जब हम इस पे SLR के शॉट्स मारते हैं, AK-47 के शॉट लेते हैं, तो ये जो कांच है वो टूट जाता है, शटर हो जाता है, लेकिन अगर अंदर से आप जब हम आपको दिखाएंगे तो बहुत स्मूथ है।

0: AK-47 की गोली हो या हथौड़े का वार, इन फौलादी सुपर कारों पर हर वार है बेकार, क्योंकि कार नहीं ये कारों की धुरंधर है। वो धुरंधर जो सड़क पर देती है सुरक्षा की 100% गारंटी। और एक आम कार को धुरंधर में बदलती है वो बुलेट प्रूफ तकनीक, कारों का वो शानदार और जानदार मॉडिफिकेशन जिस पर दुनिया भर के नेता, अभिनेता, उद्योगपति और तमाम VVIP अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा करते हैं। आसान भाषा में समझे तो बुलेट प्रूफ कार का सीधा मतलब है एक ऐसा वाहन जो आपको किसी तरह के हथियारों के हमले से सुरक्षित रखे। इन गाड़ियों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। ज्यादा सुरक्षा वाली गाड़ियां तो हैंड ग्रेनेड या रॉकेट लॉन्चर के हमले से भी बचा सकती हैं। VVIP और नेताओं को गंभीर सुरक्षा खतरों के कारण ऐसी गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। भारत में ऐसी कई गाड़ियां विदेशों से इंपोर्ट की जाती हैं, लेकिन अब भारत में भी कुछ कंपनियां इन धुरंधर कारों को तैयार कर रहे हैं। आज आपको ले चलेंगे मुंबई से करीब 260 किलोमीटर दूर अहिल्या नगर में मौजूद एक ऐसी ही कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जो पिछले कई सालों से भारत की जमीन पर जोरदार बुलेट प्रूफ कारें तैयार करती आ रही है। शील्ड आर्मरी, जहां देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, बड़े उद्योगपतियों, विदेशी मेहमानों, राजनेताओं और फिल्मी हस्तियों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां तैयार की जाती हैं। साथ ही शील्ड आर्मरिंग, पुलिसिंग, गंगा कंट्रोल और हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए सुरक्षा बलों के काम आने वाली आम गाड़ियां भी तैयार करती हैं। शील्ड आर्मरिंग ने हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस के लिए 6 PAMA आर्म्ड व्हीकल तैयार किए हैं। ये कार नहीं बल्कि सुरक्षा के मामले में ये चलते फिरते टैंक है।
1: देश की जनता की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा जिन हाथों में है, उनकी सुरक्षा किन हाथों में है, ये एक अहम सवाल है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। इसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीर में ये बुलेट प्रूफ कार दिखाना चाहता हूँ, जो अभी अभी अत्याधुनिक तरीके से बनाकर तैयार की गई है। स्टेट पुलिस को ये दी जाने वाली है और शहर के उन कोनों में ये खड़ी रहेगी जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध स्थल है। सवाल ये भी है कि आखिर इस तरह की बुलेट प्रूफ कार कैसे बनती है, कहाँ बनाई जाती है, क्या चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती है। इंडिया टुडे ग्रुप में आप ये सारी चीजें इस समय एक्सक्लूसिव देख रहे हैं।
0: ये बख्तरबंद गाड़ियां रिस्की ऑपरेशंस में तैनात पुलिस जवानों को सुरक्षा का नया कवच प्रदान करेंगी। स्टेट पुलिस की सेवा में पहले से मौजूद बख्तरबंद गाड़ियों की तुलना में ये

0: व्हीकल ज्यादा एडवांस अपग्रेडेड और बेहतर प्रोटेक्शन देने वाला है।
1: हाँ, ये हमारी ब्रांड की व्हीकल है जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो ये 100% हमारा डिज़ाइन है जो ये व्हीकल हमने डेवलप की है।
2: अच्छा, थोड़ा सा बताएं ना अंदर चल करके किस तरीके से क्या बना है, क्या खासियत है, क्योंकि पहली बार ये चीज़ें कैमरे पर आ रही हैं।
1: जी, तो ये सबसे पहली बात, ये पूरा जो व्हीकल है वो 360 डिग्री प्रोटेक्शन है। जब हम 360 डिग्री प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि इसे कोई भी एंगल से पेनिट्रेशन की चांसेस नहीं है। कहीं से भी अगर बुलेट आ रही है, कहीं से भी इसको गलते फायरिंग हो रही है तो ये प्रोटेक्ट करती है। इसके चारों साइड्स हैं, इसका रूफ है, इसका बॉटम है, ये सारा कम्प्लीटली आर्मर्ड होता है। इसके आप जितने भी ये ग्लासेस देख रहे हैं ये बहुत ही हैवी ग्लासेस होते हैं जो AK-47 SLR जैसे जो वेपन्स होते हैं उसको वो इजीली प्रोटेक्ट कर सकता है।
2: अच्छा, और ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, ये क्या है?
1: तो सर ये ऐसा है कि जब हमारे फोर्सेज होते हैं, जब हमारे पुलिस जवान कभी कोई मिशन में जाते हैं और वहाँ पर से अचानक से फायरिंग हो गई तो उनको अंदर से ही बैठ के रिटेलिएट करना है, उन्हें अंदर से बैठ के जब फायरिंग करनी है तो वो अपना बैरल इस स्पॉट से, इसे गन पोर्ट कहते हैं, वहाँ से निकाल के उसे ईजिली फायर कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो गए, VVIP प्रोटेक्शन हो गए, वो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। इस व्हीकल के अंदर अगर आप टॉप पे देखें तो ये 360 डिग्री टरेट है जहाँ पर जवान बाहर निकलता है, वो अपना गन माउंट करता है और उसको 360 डिग्री उसे फायर करने के चांसेस है। तो अगर कहीं से भी फायर हो रहा है तो उसे व्हीकल घुमाने की जरूरत नहीं है, उसको सिंपल वो टरेट है उसको घुमाएगा, वो सेल्फ प्रोटेक्टेड रहेगा और उसी वक्त वो फायर कर सकता है। इस व्हीकल की और एक खासियत है, अगर आप ये देखेंगे तो ये जितने भी स्लॉट्स हैं, ऐसे टोटल 4 स्लॉट्स हैं व्हीकल में, तो इसे इवन हेलीकॉप्टर से इस व्हीकल को लिफ्ट किया जा सकता है और कहीं पर भी डिप्यूट किया जा सकता है।

0: ये वाली तस्वीर भी दिखा है पीछे, यहाँ पर भी जो है बैठ सकते हैं हमारे ऑफिस।
1: यस, तो इसके अंदर टोटल ये जो मॉडल है इसके अंदर 6 सीटर है। तो जब 6 सीटर की बात करते हैं तो फ्रंट में 2 है, साइड्स में 2 है, और जो रेयर है उसमें 2 है। इसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन भी आता है जो फर्दर इसको क्या बोलते हैं सीटिंग कैपेसिटी को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि एज पर स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट और फोर्सेस के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है। कोई से हमें 6 सीटर भी बना सकते हैं, 4 सीटर भी बना सकते हैं, 8 सीटर भी बना सकते हैं। तो डिफरेंट सीटिंग कैपेसिटी, ईच सीटिंग इस तरह से बनाई गई है कि जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का वो क्विक एंट्री एंड एग्जिट हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट इसमें होता है कि आप कितना फास्ट मूव इन करते हो और मूव आउट करते हो। तो ये सारी चीज़ का यहाँ पर ध्यान दिया गया है। ये पूरा 100% डिज़ाइन है अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ है, और इसके अंदर जितने भी मटेरियल्स लगे हुए हैं सब हमारी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नतीजे से ये व्हीकल तैयार हुई।
2: बात जब बुलेट प्रूफ कार की हो तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि बुलेट प्रूफ कार असल में कोई अलग गाड़ी नहीं होती, बल्कि एक नॉर्मल कार को खास तकनीक के जरिए मजबूत बनाया जाता है ताकि वो गोलियों और दूसरे हमलों से बचा सके। किसी भी कार को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए उसमें बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास, दरवाजों और बॉडी में स्टील या खास मटेरियल की प्लेटिंग, मजबूत छत और रन फ्लैट टायर लगाए जाते हैं। इस मॉडिफिकेशन के लिए जरूरी है कि कार में अतिरिक्त वजन सहन करने की क्षमता हो, क्योंकि सुरक्षा के लिए जो स्टील की सीट्स और मोटे शीशे लगाए जाते हैं उनमें गाड़ी का वजन लगभग 1000 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। यही वजह है ज्यादातर लोग बुलेट प्रूफ बनवाने के लिए SUV को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनका इंजन और चेसिस दूसरी गाड़ियों की तुलना में मजबूत होता है। भारत में आमतौर पर टाटा सफारी, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर, इनोवा या लग्जरी सेगमेंट में BMW और ऑडी जैसी कंपनियों की गाड़ियां बुलेट प्रूफ करवाई जाती हैं।
0: हमने आपको दिखाया कि फोर्स और पुलिस किस तरह की सुरक्षा भरी कार का इस्तेमाल करते हैं, कि बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब चल रहे हैं हम उस तरफ जहां पर VIP, VVIP, मिनिस्टर्स भी अपने कार का इस्तेमाल करते हैं पूरी तरह से सुरक्षित और बुलेट प्रूफ। ये देखिए लैंड क्रूजर नाम की कार यहाँ पर खड़ी हुई है और पूरी तरह से बनकर तैयार है। हम सीधे अब इसके भीतर जाएंगे और कैसा लगता है भीतर बैठ करके और किस तरीके से होती है सुरक्षा, उस बारे में भी जानकारी लेंगे। और पूरी तरह से लैंड क्रूजर को बना करके तैयार करके रख दिया गया है। जिस किसी भी दिग्गज ने बनाने का इन्हें ऑर्डर दिया है, अब बहुत जल्दी उन्हें ये कार डिलीवर भी हो जाएगी। लेकिन भीतर से इसका नजारा कैसा होगा ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लैंड क्रूजर कार है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ हो चुकी है। अंदर मैं बैठा हुआ हूं, उसी तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ है जैसे नॉर्मल कार के होते हैं। बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है कि ये बुलेट प्रूफ कार है। और मेरे साथ में सुरिंदर सिंह राठौर मौजूद ही हैं, साथ ही साथ इंद्रजीत सिंह राठौर भी मौजूद हैं। थोड़ा सा बताएं, पता ही नहीं चल पा रहा कि ये बुलेट प्रूफ कार बन चुकी है और आपने इसे सजा दिया, बना दिया, कैसे, क्या, कहाँ पर, क्या खासियत, कैसे पता चलेगा, क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा बताएं।
3: अभी आप जब यहाँ पर देखेंगे इसकी जो प्रोटेक्शन है वो हमने 360 डिग्री दी है। ये ऊपर के साइड पे भी पूरी प्रोटेक्टेड है, साइड पे भी है, दरवाजों में भी है। ये जैसे आप ग्लास देखेंगे तो ये 40mm का ग्लास है, काफ़ी थिक ग्लास है। तो इससे क्या AK-47, SLR, ये सब चीज़ें अपना प्रोटेक्ट हो जाती है। और इसका आप, इसकी ब्यूटी ये है कि ये आपको आइडेंटिफाई करनी नहीं चाहिए कि ये आर्मर्ड व्हीकल है कि नॉर्मल व्हीकल है। आप इसकी अगर कम्फर्ट देखेंगे तो कम्फर्ट एज इट इज़ जो ओरिजिनल की कम्फर्ट है वो मिल रही है। आपके जो प्लास्टिक्स है, आपके जो ट्रिम्स है, आपके जो डोर पैड्स हैं वो एज इट इज़ ओरिजिनल जैसे लग रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर ये गाड़ी की बात की जाए तो ये 2 करोड़ की गाड़ी है। तो जो बंदा ये 2 करोड़ जो पैसे खर्च रहा है वो किस चीज़ के लिए खर्च रहा है, वो ये खर्च रहा है कि इसका कंफर्ट मिले। इसकी जो उसने कंफर्ट के पैसे दिए हैं, इसके जो फीचर्स के पैसे दिए हैं, अगर हमने इसको बुलेट प्रूफ में ऐसा कर दिया कि फीचर्स ही ना काम आए तो फिर ये कम्फर्ट का जो उन्होंने पैसा खर्चा उसका यूज़ नहीं आएगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि एज इट इज़ जो ओरिजिनल है, जो भी मॉडिफिकेशन की गई है वो अंदर से की गई है, आउटर लुक को एज इट इज उसको मेंटेन किया गया है कि वो आइडेंटिफाई ना हो कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है।
0: अच्छा, मतलब ये कि भाई सुरक्षा कवच इस कार में जो कुछ लगा हुआ है वो सब आपने छिपा है, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया।
3: यस, क्योंकि अगर दिखा दे तो क्या है कि कभी कॉन्वॉय में 3 गाड़ियां चल रही है, 4 गाड़ियां चल रही है, तो अगर कोई अटैक करता है तो उसे ये नहीं पता होना चाहिए कि कौन से गाड़ी में बुलेट प्रूफ हुआ हुआ है, कौन से में नॉर्मल। तो इसकी जो हाइट है वो भी हमको मेंटेन करनी पड़ती है कि ओरिजिनल गाड़ी जो नॉर्मल गाड़ी है और हमारी जो आर्मर्ड गाड़ी है वो सेम जैसी की दिखनी चाहिए।
2: अब आपको बताते हैं कि किसी कार को बुलेट प्रूफ कैसे बनाया जाता है। वास्तव में किसी भी सामान्य कार को बुलेट प्रूफ बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। इसमें कार के इंजन को छोड़कर लगभग पूरे हिस्से को बदल दिया जाता है। दरवाजों से लेकर विंडशील्ड, खिड़कियां, छत और यहां तक कि पूरा पैनल भी बुलेट प्रूफ मटेरियल से बदला जाता है। बुलेट प्रूफिंग से जुड़ा सारा काम होता है अहिल्या नगर में मौजूद इस कारखाने में, जहां लगभग 100 लोगों की टीम एक आम गाड़ी को मॉडिफाई कर मजबूत और सुरक्षित किले में तब्दील कर देती है।
0: ये देखिए, इस तरह से जो दरवाजे अभी हमने आपको दिखाया है, इस तरह से दरवाजे खोल दिए गए हैं। सिर्फ इंजन छोड़ करके इस गाड़ी के सारे पार्ट को निकाल दिया गया है और अब बुलेट प्रूफ चीजें उस गाड़ी में, उस कार में लगाने का कार्य जो है वो शुरू है। और मुझे लगता है, जैसा कि अभी सुरेंद्र सिंह राठौर ने हमें बताया है, 15 से 20 दिन में ये भी लग्जरी कार जो है ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं?
1: हाँ जी, एकदम सही। तो अभी इस वक्त हमने क्या किया है, जब ये जो नई गाड़ी आई थी उसको हमने लिया है, उसे पूरा स्ट्रिप डाउन किया है। तो जब आप देखेंगे तो इसके अंदर सब इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके सीट, इसके अंदर अपॉल्स्ट्री, ये सारी निकाल दिए हैं। इसके अंदर हमने रीइंफोर्स किया इसे आर्मर्ड स्टील के साथ, जहां जहां हमें लगता है कि 360 डिग्री प्रोटेक्शन देनी है वहां पर इसे हमने स्टेंटेन किया है और इस व्हीकल को वापस ग्राउंड से बिल्ट अप किया है। तो हम जब ग्राउंड से बिल्ट अप करते हैं तो इसका पहले फ्लोर बनाते हैं, फिर इसके साइड्स बनाते हैं, फिर रूफ बनाते हैं। तो इसे कंप्लीट एक केज जैसा बनाते हैं जिसे हम 360 डिग्री प्रोटेक्शन कहता है। इसका ये फायदा है कि ये बुलेट से तो प्रोटेक्ट करेगा, बट कभी अगर रोड पे एक्सीडेंट हो गया, व्हीकल टंबल होगी, इन दैट सिनेरियो आल्सो ये व्हीकल बहुत ही सेफ होती है।
0: अच्छा, ये थोड़ा सा भी हाइट में उठेगी नहीं?
1: नहीं, ये बहुत हैवी होती है व्हीकल। तो इसका नॉर्मल जो एड ऑन वेट होता है तकरीबन 1000 केजीज इसमें बढ़ जाता है। तो इसके वजह से व्हीकल बहुत सेफ होती है, ये रोड को पकड़ के चलती है। आपने देखा होगा बहुत सारे वीवीआईपी पॉलिटिशियंस ये व्हीकल को एवरीडे यूज के लिए यूज करते हैं।
2: एक बुलेट प्रूफ कार की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके टायर। हमले की स्थिति में भी गाड़ी चलती रहे इसके लिए खास रन फ्लैट ट्यूबलेस टायरों का इस्तेमाल किया जाता है।
1: टाइम हमने ये देखा है कि जब एक्चुअल में फायरिंग होती है तो उन लोग है ना व्हीकल के टायर्स को टारगेट करते हैं। जब उसे टारगेट करते हैं तो जाहिर है कि व्हीकल रुक जाएगी, उन्हें ज़्यादा समय मिल जाएगा और उसे फिर फायर करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि ये जो व्हीकल का जो टायर है इसके अंदर रन फ्लैट सिस्टम लगा हुआ है। ये रन फ्लैट सिस्टम क्या करता है, जब इसके अंदर डिफ्लेट होगा, बुलेट लगेगी तो ये पूरा जो एयर है डिफ्लेट हो जाएगा, उसके बाद में जो टोटल वेट है ये रन फ्लैट सिस्टम पे आ जाएगा और उसके अलावा ये 350 किलोमीटर्स तो भी ये जा सकता है। पूरा डिफ्लेट होने के बाद में 50 किलोमीटर आपकी व्हीकल को ये अलग जगह पर लेके जा सकता है, जहाँ पर आप सुरक्षित हो वहाँ तक ये आपको पहुँचा देगा।
0: अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये जो टायर है ये कौन सी कंपनी का आप लोग इस्तेमाल करते हैं या खुद ही बनाते हैं?
1: नहीं, जो टायर है वो OEM के जो हो सकता है, वो कोई भी मेक का हो सकता है, उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो इसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है वो उसे प्रोटेक्ट करेगा।
2: इसी तरह बुलेट प्रूफिंग के लिए खास तरह की स्टील शीट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मोटाई लगभग 6.5 mm तक होती है। तो वही पूरी गाड़ी का सबसे कमजोर हिस्सा शीशा होता है, इसलिए इसमें 45 से 55 मिलीमीटर तक का मोटा कई परतों वाला ग्लास लगाया जाता है।
1: तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स हैं जिसमें अलग अलग थिकनेस ऑफ मटेरियल हमने टेस्ट किया है। सो वेदर उसमें AK-47 हो गया या तो SLR हो गया, जो ये कॉमन थ्रेट परसेप्शन जो होते हैं, जो टेररिस्ट लोग यूज़ करते हैं, जो नक्सलवादी लोग ये वेपन्स यूज़ करते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो स्टील और ग्लास पे कुछ इस तरह का होता है। ये जब बुलेट लगती है तो सिर्फ इतना सा एक इम्पैक्ट होता है।
0: अच्छा, और यहाँ पर एक दरवाज़ा भी रखा हुआ है और ये शायद गोलियों के निशान है। एक नंबर, दो नंबर, तीन, चार, पाँच, छः, ये क्या है जी?
1: सर, इसमें क्या है कि पूरी व्हीकल को जब बन गई है तो उसके ऊपर हमने ये फायर करवाया हुआ है, तो ये उसी का एक सैंपल डोर है। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लासेस के साथ ये व्हीकल के डोर पे भी फायर किया गया है और आप देख सकते हैं कि इस तरफ से बुलेट अंदर पेनिट्रेट होती है, वेदर इट इज़ ग्लास और स्टील, बट अंदर के साइड वो कम्प्लीटली वो प्रोटेक्ट करती है।
0: अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी है ये कांच की? इसकी और क्या कहते हैं कांच का और कैसे इसे बनाया जाता है?
1: तो ये इसके अंदर 5 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है। एक सैंडविच ग्लास होता है जिसमें ग्लास होता है, उसमें 5 अलग अलग तरह के मटेरियल्स लग के उसे वो 100% प्रोटेक्ट करने के लिए 40 mm थिक होता है जो स्टैंडर्ड मटेरियल है, थिकनेस है उसके हिसाब से। और इसके अंदर नीचे यहाँ पर कम्प्लीटली जैसे हमने ये आर्मर्ड स्टील देखी, वो आर्मर्ड स्टील लगा हुआ है।
0: और वहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि ये कांच लगा हुआ है। थोड़ा सा इंद्रजीत जी आप बताएं, ये कांच आगे का कांच है ना या पीछे का है? पीछे
3: ये का स्क्रीन है, ये विंडस्क्रीन है। तो इस पे जैसे हमने हैमर शॉट्स दिए हुए हैं, तो हैमर शॉट्स के बाद में भी जैसे हमने आपको दिखाया कि गन शॉट्स के, तो आपने सैंपल्स देखे। अगर कोई किसके दिमाग में रहता है कि नहीं इतना बड़ा हैमर लेके फिर भी प्रोटेक्ट करेगा, तो इसके लिए हमने आपको ये हैमर शॉट्स के भी डिस्प्ले बना के रखा है।
2: जहाँ एक टेक्टिकल व्हीकल को बनाने में 15 दिन से 1 महीने का समय लगता है, वहीं VIP सुरक्षा के लिए एक आम कार को बुलेट प्रूफ कार में बदलने के लिए 15 से 20 दिन का समय लगता है। बुलेट प्रूफिंग के तमाम स्टेप्स से गुजरने के बाद जब एक आम कार किले में तब्दील होकर खास हो जाती है, तब बारी आती है टेस्टिंग की। इसके लिए तैयार बुलेट प्रूफ कार के पार्ट्स को मजबूती की टेस्टिंग के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स में भेजा जाता है।
3: इसमें जैसे गुजरात में लैब है, चंडीगढ़ में लैब है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो इसको टेस्ट करती हैं। जैसे एक हमारे पास में अगर मटेरियल का लॉट आ गया, स्टील का लॉट आ गया, ग्लास का लॉट आ गया, हमने वो स्टील के लॉट को अपना सैंपल टेस्ट कर दिया। जैसे आपको दिखाया, दैट इज़ ये 300x300 का हमने अपना एक शीट काटा है। ये कटिंग करके हमने इसके ऊपर 6 शॉट्स लिए हैं, SLR के हो गए, AK-47 के हो गए। जो ग्लास है जो आपके पीछे, ये 500x500 का है, इस पर भी हमने शॉट लिया। हमारी कंपनी एक एडिशनल चीज़ करती है, जब आर्मरिंग पूरी ख़त्म हो जाती है तब उसको हम पूरी बुलेट प्रूफ करके एजेंसी में भेजते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं। तो जैसे ये गाड़ी का आपको जैसे हमने डोर दिखाया है, कि ये गाड़ी का डोर का ये खासियत है कि ये सिर्फ डोर टेस्ट नहीं हुआ है, ये पूरी गाड़ी उनके पास में गई है, वो गाड़ी के ऊपर उन्होंने टेस्ट किया है, फिर हमने वो डोर को रिप्लेस करके ये डोर को अपना एज अ डेमो पीस रखा है।
2: बुलेट प्रूफिंग और टेस्टिंग की तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इस कारखाने से निकली कार एक चलते फिरते किले में तब्दील हो जाती है। आज देश के कई राज्यों में यहां से निकली बुलेट प्रूफ कारें पहुंचती हैं। तमाम राज्यों में भेजी गई मॉडिफाइड कारों के सैंपल्स को इस कारखाने में बेहद शान से डिस्प्ले किया गया है।
0: और ये तस्वीरें देखें, अलग अलग राज्यों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, बहुत सारे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे कांच भी लगा हुआ है जो टूटे फूटे कांच है। थोड़ा सा बताएं ये क्या है, क्या चीज़ है, कहाँ पर आपने क्या किया है, ये मतलब
3: ये हमारा एक हमने डिस्प्ले बनाया हुआ है, ये हमने सब स्टेट्स में सप्लाई किया हुआ है टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। जब हम इस पे SLR के शॉट्स मारते हैं, AK-47 के शॉट लेते हैं, तो ये जो कांच है वो टूट जाता है, शटर हो जाता है। लेकिन अगर अंदर से आप जब हम आपको दिखाएंगे तो बहुत स्मूथ है, तो अंदर कोई भी पेनिट्रेशन नहीं है। इसके लिए हमने एक वॉल एक बनाया है, एक डिस्प्ले वॉल है, कि ये सब स्टेट्स में हमने दिया, और इससे ज़्यादा स्टेट्स भी हमारे ऐड हुए हैं, लेकिन अभी तक हमने उसको अपना डिस्प्ले पे नहीं डाला गया है।
0: अच्छा, मतलब अलग अलग राज्यों में आपने जाँच प्रक्रिया पूरी करी
3: जी, जहाँ जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स यूज कर रही है ये उनकी टेस्ट।
2: ये तो थी बात बुलेट प्रूफिंग की, अब बात करते हैं इसमें आने वाले खर्च की। क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये कार्य खास है, इसलिए दाम भी आम नहीं। बुलेट प्रूफिंग का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी सुरक्षा चाहते हैं। अगर गाड़ी को सिर्फ गोलियों के हमले से बचाना है तो ये खर्च 20 लाख से 50 लाख रुपए के बीच आ सकता है। ये बेसिक लेवल की सुरक्षा होती है जो पिस्टल या छोटे हथियारों से बचाने के लिए होती है। लेकिन अगर आप AK-47 जैसी राइफल, हैंड ग्रेनेड जैसे ज्यादा शक्तिशाली हथियारों से सुरक्षा चाहते हैं तो ये खर्च बढ़कर करोड़ों में पहुंच सकता है। ये खर्च इतना ज्यादा क्यों होता है ये भी समझना जरूरी है। दरअसल कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे आप कौन सी कार को मॉडिफाइड कर रहे हैं, उनमें कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास, भारी स्टील प्लेटिंग, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, फायर सिस्टम और खास टायर जैसी चीजें कीमत को काफी बढ़ा देती हैं।
3: इसमें जैसे ये गाड़ियां हैं वो अलग अलग टाइप की प्रोटेक्शन के ऊपर जाती है। अगर किसको हैंड पिस्टल से लेनी है तो वो स्टार्ट हो जाती है, एक 50 लाख से चालू हो जाती है, तो वो एक 2.5-2 करोड़ तक अपना जाती है अपना। उसमें AK-47 की भी प्रोटेक्शन है, SLR की भी प्रोटेक्शन है, बॉम्ब प्रोटेक्शन भी है, तो हर तरीके से प्रोटेक्शन जाता है। अगर उसको और लाइट बनाना है हमको, तो हम उसके लिए कॉम्पोजिट यूज़ करते हैं, जो स्टील नहीं होता है वो बहुत लाइट होता है, उसमें कि ये गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होती है।
2: मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद इस कंपनी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनाने का काम शुरू किया था। अब ये गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कस्टमाइज्ड बैलिस्टिक प्रोटेक्शन और एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशन दे रही है। इतने सालों से शील्ड आर्मरिंग भारत के आर्म मोबिलिटी डिफेंस सिक्योरिटी और मोबिलिटी इंजीनियरिंग के मेल पर काम करते हुए बदलते खतरों के हिसाब से एंड टू एंड प्रोटेक्शन सॉल्यूशन देती आ रही है।
1: तो ये शुरुआत ऐसे हुई कि जब 26/11 हुआ तो हमें एक नीड ये लगी कि सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स उस वक्त इंडिया में इतने क्वालिटी के जो इंटरनेशनल क्वालिटी के नहीं थे, तो जो ऑपरेशन जब यहाँ पर हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे लैप्सेस देखे गए, वेदर वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात की जाए या तो व्हीकल्स की बात की जाए, तो उस लेवल का प्रोडक्ट नहीं था यहाँ पर। तो तब ये दिमाग में आया कि हमें कुछ इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इंडिया में लेके जाने चाहिए ताकि हमारे जवान हैं, हमारे VVIPs हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, वो सारे इसको क्या बोलते हैं अपने आप को सुरक्षित कर सके। तो बस वो एक सोच था और तब से हमने स्टार्ट किया। 2011 हमने ये कंपनी स्टार्ट की और एक स्टेट से स्टार्ट किया। तकरीबन 18 राज्य के स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी व्हीकल्स यूज़ कर।
2: ये वो सुपर कारें हैं जिनके आगे बुलेट बेअसर है, भारी हथियारों का वार भी बेकार है, सड़क पर चलता फिरता आम टैंक है ये कारें। यही वजह है कि देश भर में सरकारों से लेकर असरदारों तक इन धुरंधर कारों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। अहिल्यानगर से साहिल चौहान और धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
5: Right now, get a new 2026 Subaru Forester with 1.9% APR financing for up to 60 months.
4: Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru.
6: Buy the airport!
5: See dealer for details. Offer ends 6/126.
7: Good news today is really अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी फिल्म के सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है नितेश तिवारी की रामायण। फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई लेकिन कमाई के मामले में पहले ही बड़े बड़े रिकॉर्ड के लिए खतरा बनने लगी है। खबर है कि मेकर्स ने सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए पूरे 450 करोड़ रुपए की डिमांड रख दी है, यानी कि रिलीज से पहले ही फिल्म का भाव आसमान छू रहा है।
9: रिलीज से पहले ही इतिहास रचने जा रही है रामायण। बड़े पर्दे पर किंग का रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी तैयारी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज से पहले ही सिनेमा की दुनिया में हलचल मचाने का दम रखती हैं। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण भी कुछ ऐसा ही धमाल मचाने की तैयारी में है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही मेगा बजट फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमक दिखाने लगी है। सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि फिल्म के मेकर्स को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। शायद यही वजह है कि मेकर्स ने फिल्म के सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए 450 करोड़ की भारी भरकम मांग रखी है। अगर राइट्स के लिए 450 करोड़ की डील हो जाती है तो ये शाहरुख खान की किंग के मौजूदा रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा होगी। किंग के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की डील करीब 250 करोड़ में हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो रामायण के थिएट्रिकल राइट्स की डील पर जल्द मुहर भी लग सकती है। अगर ये डील 300 से 400 करोड़ के बीच फाइनल होती है तो भी ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड होगा। कामयाबी की उम्मीदों के आंकड़े सिर्फ थिएट्रिकल राइट्स की डील में ही नहीं दिख रही। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा डिजिटल राइट्स के लिए 1,000 करोड़ की महाडील पर भी नजरें टिकाए हुए हैं। नमित इस डील के लिए इंडस्ट्री के कई दिग्गजों से बातचीत करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स की तरफ से फिल्म के दोनों पार्ट्स की कंबाइंड स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए मेकर्स को 700 करोड़ का ऑफर मिला था, लेकिन नमित मल्होत्रा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और वो डिजिटल राइट्स के लिए 1,000 करोड़ की डील ही चाहते हैं। जाहिर है अगर ये दोनों डील पक्की हो जाती हैं, तो ये फिल्म पर्दे पर आने से पहले ही टेबल प्रॉफिट का नया इतिहास रच देगी। रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायण एक भव्य पौराणिक फिल्म है। इस फिल्म में रणबीर भगवान राम की भूमिका में हैं और साउथ के सुपरस्टार यश रावण का किरदार निभा रहे हैं। माता सीता का किरदार साई पल्लवी ने निभाया है। पर्दे पर भगवान हनुमान के रूप में सनी देओल नजर आएंगे। धुरंधर की तरह ही फिल्म भी दो पार्ट्स में आने वाली है। रिलीज से काफी पहले से ही इस फिल्म का सोशल मीडिया पर बज बना हुआ है। फिल्म का पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा। ये फिल्म करीब 4000 करोड़ के भारी भरकम बजट में तैयार हो रही है। फिल्म के मेकर्स को पूरी उम्मीद है कि रिलीज के बाद ये फिल्म हिंदी सिनेमा में कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
11: Good news today.
7: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: पवित्र अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंदिर कर्मचारियों ने गुफा में किया प्रवेश। 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिन चलेगी यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक करीब 20 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। झमाझम बारिश के बीच बद्रीनाथ में उमड़ा आस्था का समंदर। आज विधि विधान से खुलेंगे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। चमोली के गोविंद घाट से पवित्र धाम के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। अरदास के बाद पंच प्यारों ने की अगुवाई। गुजरात के गांधीनगर में स्वामी महावीर का हुआ सूर्य तिलक। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में दोपहर 2:07 पर बना शुभ संयोग। अलौकिक घटना के गवाह बने हजारों भक्त। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट। काशी की समृद्ध कला संस्कृति को मिलेगा नया मंच। आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन की 3D इमेज जारी। ओडिशा के चांदीपुर फायरिंग से भारत ने अग्नि वन बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 700 से 900 किलोमीटर है मारक क्षमता। परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा। नैनीताल मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों तक गर्मी का असर। दोपहर के वक्त सावधानी बरतने की सलाह।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
12: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश कर दिया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोस दी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है। कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर रहती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इसे सच मानकर शेयर कर देते हैं। यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ कर देते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले फैक्ट चेक में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि महिला पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर खुशी मना रही थी, लेकिन अब राज्य की नई सरकार ने इसी का घर गिरवा दिया। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, बताएंगे आपको। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के साथ जुड़ी है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि एक हिंदू लड़की से इश्क करने पर एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई। क्या है वायरल दावे की यहां पर सच्चाई, वो भी आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
12: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर खुशी मना रही महिला का घर नई सरकार ने बुलडोजर से गिरा दिया। वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करती इस रिपोर्ट में देखिए।

0: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। हाल ही में हावड़ा रेलवे स्टेशन और सियालदह रेलवे स्टेशन के बाहर ये अभियान चलाया गया। वहीं कोलकाता के तिलजला इलाके में अतिक्रमण हटाने को लेकर वहां के स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच टकराव हुआ, जिसमें 8 जवान घायल हो गए। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो शेयर करते हुए कुछ लोग लिख रहे हैं कि एक महिला जो बंगाल में बीजेपी की जीत की खुशी मना रही थी, राज्य की नई सरकार ने उसी का घर गिरवा दिया। वीडियो में एक के बाद एक दो क्लिप्स नजर आती हैं। पहली क्लिप में भगवा टी शर्ट पहने हुए और भगवा गुलाल लगाए हुए एक महिला मजेदार स्टाइल में डांस करती दिख रही है। वहीं दूसरी क्लिप में टूटी फूटी इमारतों के बीच खड़ी एक महिला रो रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कई लोगों का कहना है कि जो महिला बंगाल में बीजेपी की जीत की खुशी में नाच रही थी, उसी का घर बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद तोड़वा दिया। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बंगाल में चुनाव के समय यह अंधभक्तिन खूब नाच नाच कर डांस कर रही थी बीजेपी के लिए। बीजेपी बंगाल जीती, फिर बुलडोजर चला तो इस अंधभक्तिन का घर भी लपेटे में आ गया। अब कह रही है बीजेपी को नहीं जीतना चाहिए था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये महिला पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर खुशी मना रही थी, लेकिन अब राज्य की नई सरकार ने इसी का घर गिरवा दिया। अब ये महिला रो रोकर ये बोल रही है कि बीजेपी को वोट देकर उसने गलती कर दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले दोनों वीडियोस के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में नजर आ रही दोनों ही महिलाओं के चेहरे को जूम करके हमारी टीम ने जब ध्यान से देखा तो ये सामने आया कि दोनों महिलाएं अलग अलग हैं। मतलब दो वायरल क्लिप्स को जोड़कर इस वीडियो को तैयार किया गया है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके अलावा पहला सवाल क्या है इसी वीडियो से रिलेटेड, वो आपको दिखा देते हैं। अगर दावा वाकई सही है तो वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है? दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए सियासी अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? आखिर सच्चाई क्या है, आपको इस वीडियो में दिखाते हैं।
0: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल के लिए दोनों वीडियो की जांच की। पहली क्लिप में गुलाबी रंग का एक मंदिर नजर आ रहा है। सर्च के जरिए इसके बारे में हमें पता लगा कि ये पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नतुनपुल्ली न्यू टाउन इलाके का राधा कृष्ण मंदिर है। गूगल मैप्स पर भी इस मंदिर की तस्वीरें मौजूद हैं। साफ पता चलता है कि ये उसी मंदिर की तस्वीरें हैं जो वायरल वीडियो में नजर आ रहा है। सर्च के जरिए साफ हो गया कि ये वीडियो न्यू टाउन का ही है और इसमें दिख रही महिला मानसी हल्दर नाम की बीजेपी समर्थक है, जो 4 मई को चुनाव नतीजों के दिन बीजेपी की जीत की खुशी मनाते हुए डांस कर रही थी। मानसी और उनके पति सुखरंजन हल्दर दोनों ही बीजेपी समर्थक हैं, जो न्यूटाउन के विवेकानंद पल्ली इलाके में रहते हैं और नई सरकार के गठन के बाद से अब तक इस इलाके में कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी क्लिप को रिवर्स सर्च करने से ये हमें एक न्यूज आउटलेट की 12 जून 2025 की रिपोर्ट में मिली। रोती हुई महिला वाला वीडियो इसी 10 मिनट 45 सेकंड की रिपोर्ट से लिया गया है। ये रिपोर्ट दिल्ली के कालकाजी में हुई डीडीए की बुलडोजर कार्रवाई से संबंधित है। वीडियो में महिला भगवान की मूर्ति पकड़कर खड़ी है और कह रही है कि बीजेपी के राज में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। वहां मौजूद दूसरे लोग भी रिपोर्टर से बातचीत के दौरान अपना घर तोड़े जाने पर दुख जाहिर कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अब वो कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इस वीडियो को उस वक्त कांग्रेस ने भी शेयर किया था और आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार के राज में दिल्ली में मंदिर भी तोड़ दिए गए। एक आधिकारिक न्यूज आउटलेट पर 11 जून 2025 को छपी एक खबर के मुताबिक कालकाजी के पास भूमिहीन कैंप इलाके में अवैध अतिक्रमण का ये मामला लगभग 10 साल कोर्ट में चला था, लेकिन झुग्गीवासियों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। कोर्ट के आदेश के बाद ही ये अवैध निर्माण गिराए गए थे। इस दौरान 344 घर गिराए गए थे जिनमें 1200 परिवार रहते थे। साफ है दोनों क्लिप्स में दिख रही महिलाएं अलग अलग हैं। पहली क्लिप बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की है, जहां मानसी हल्दर नाम की बीजेपी समर्थक 4 मई को पार्टी की जीत के बाद खुशी मना रही थी। वहीं दूसरी क्लिप जून 2025 में दिल्ली के कालकाजी में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान का है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक पर बीच बाजार में चाकू से हमला किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करके यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि एक हिंदू लड़की से इश्क करने पर एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई। वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करते इस वीडियो में देखिए।
2: सोशल मीडिया पर यह हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। एक शख्स के हाथ में चाकू है, निशाने पर एक व्यक्ति है जिसे पीछे से एक दूसरे व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है ताकि वो चाकू के वार से बच नहीं पाए। बीच सड़क पर ये खूनी खेल चल रहा है लेकिन कोई इसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। लोग वहां से गुजर रहे हैं लेकिन इनकी अनदेखी करके आगे बढ़ जा रहे हैं। यहां तक कि किसी ने पुलिस को भी इसके बारे में सूचना नहीं दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो को धार्मिक एंगल देकर धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है। लोग वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर इसे शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को सांप्रदायिक एंगल देकर वायरल करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़के को एक हिंदू लड़की से प्यार करना महंगा पड़ गया, बाजार में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले तो वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बड़े ही गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में एक बोर्ड नजर आया, उसमें तेलुगु में कुछ शब्द लिखे मिले, मतलब ये वीडियो तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश का हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लोकल मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन हाल फिलहाल में दावे की पुष्टि करती कोई ऐसी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे हमें वायरल दावे पर संदेह हो। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल, अगर दावा सही है तो वायरल वीडियो कब का है और कहां का है? दूसरा सवाल, कहीं रंजिश के वीडियो को जानबूझकर धार्मिक एंगल देकर वायरल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? आखिर सच्चाई क्या है? क्या है सच, क्या है झूठ? दिखाते हैं।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। उस दौरान हमें नवंबर 2025 की कई तेलुगु भाषा में छपी रिपोर्ट्स मिली जिसमें वायरल हो रहे वीडियो के क्लिप का इस्तेमाल किया गया था। 5 नवंबर 2025 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी बालेश्वर रेड्डी और पीड़ित रोशन कुमार सिंह दोनों ही आपराधिक रिकॉर्ड वाले अपराधी थे। बताया गया था कि ये मामला वित्तीय विवाद को लेकर हुआ था। सर्च के दौरान हमें 5 नवंबर 2025 को छपी एक आधिकारिक रिपोर्ट मिली। यहाँ दी गई जानकारी के मुताबिक दोनों व्यक्तियों के बीच लंबे समय से दुश्मनी थी और उसी दिन बालेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना के हैदराबाद में जगतगिरी गुट्टा बस स्टॉप पर रोशन कुमार सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी। रेड्डी ने अपने साथियों मोहम्मद और आदि के साथ मिलकर रोशन पर धारदार हथियार से हमला किया और फिर मौके से फरार हो गया। इलाज के दौरान अस्पताल में रोशन कुमार सिंह की मौत हो गई। जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि रेड्डी और रोशन दोनों हिंदू थे। इस घटना में कोई सांप्रदायिक पहलू नहीं था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो में नजर आ रहे हमलावर और पीड़ित दोनों हिंदू थे। 2025 की इस घटना में कोई सांप्रदायिक पहलू नहीं था। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ फैक्ट चेक में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार से वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड की हलचल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए GNT।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर को अंत की तरफ बढ़ाने का, आप सबको ऐसे वीडियोस दिखाने का जिसके बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
5: कहते हैं अगर हौसला बुलंद हो तो आसमान की ऊंचाई भी छोटी पड़ जाती है, और इस बात को सच कर दिखाया है रूस के रुस्तम नाबियेव ने। उन्होंने वो कर दिखाया है जिसे आम इंसान तो क्या, अच्छे भले पर्वतारोही करने से पहले 100 बार सोचे। दोनों पांव से दिव्यांग रुस्तम ने बिना किसी कृत्रिम पैर के सिर्फ अपने हाथों के सहारे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर ली है। इस ऐतिहासिक चढ़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो गई हैं। दरअसल साल 2015 में एक सैन्य बैरक के अचानक ढह जाने से रुस्तम ने अपने दोनों पांव हमेशा हमेशा के लिए खो दिए थे। उस हादसे में कई सैनिकों की जान चली गई थी और रुस्तम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन व्हीलचेयर पर बैठकर जिंदगी काटने के बजाय उन्होंने पहाड़ों को चुनौती देने का फैसला किया। 20 मई को उन्होंने सुबह 8:16 पर एवरेस्ट के शिखर पर रूसी झंडा लहराया। इससे पहले पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुद्धा मगर ने कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट फतह किया था, लेकिन बिना प्रोस्थेटिक्स के सिर्फ हाथों के बल पर एवरेस्ट फतह करने वाले रुस्तम दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं।

सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आंसर शीट नजर आ रहा है और उसमें छात्र ने सभी सवालों के जवाब भी लिखे हुए हैं। लेकिन टीचर का दिमाग कुछ शब्द देखकर घूम गया, क्योंकि उसने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। छात्र ने अबाउट को एबीटी लिखा हुआ है, उसने आगे एक जगह पर काइंडा लिखा हुआ है, वही एक जगह पर उसने बाय द वे की जगह बीटीडब्ल्यू लिखा हुआ है। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो लोग सोशल मीडिया पर बात करते हुए अक्सर यूज करते हैं, मगर आंसर शीट में देखकर टीचर ने भी माथा पकड़ लिया। वही वीडियो में लिखा है, अगर आपका स्टूडेंट जेन ज़ी है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप सभी को पपेट शो के बारे में तो पता ही होगा। जी हाँ, वही कठपुतली कला जिसमें एक आदमी कुछ कठपुतलियों को अपनी उंगली से कंट्रोल करता है और एक कमाल का शो दिखाता है। ये एक पुरानी कला है जो लोगों का मनोरंजन करती है, मगर आज के समय में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। वही कला वायरल हो रहे वीडियो में देखने को मिली। वायरल वीडियो में नजर आता है कि एक पपेट कुछ आर्ट बनाने में लगा हुआ है। वो कलम निकालता, उसकी इंक चेक करता, कागज पर कुछ बनाता और फिर उसे गौर से देखते हुए नजर आता। उस पपेट को एक आदमी कंट्रोल करता हुआ नजर आता है। आप जब वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका इंटरनेट का पैसा वसूल हो गया है। सोशल मीडिया पर एक अनोखा और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुल्हन खुद अपने पति के घर बारात लेकर पहुंच जाती है। गाने की धुन, पटाखों की गूंज के साथ जबरदस्त डांस करते हुए वो पूरे धूम धड़ाके के साथ ससुराल में एंट्री करती है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल बारात नहीं, बल्कि मजाकिया अंदाज में दिया गया सरप्राइज था। घर के बाहर ही वो जमकर नाचती है और फिर अपने होने वाले पति को वरमाला पहनाकर सबको चहका देती है। आसपास मौजूद लोग भी इस पल को एंजॉय करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

0: किसान की मेहनत उसकी फसल में ही दिखती है। इस फसल के मन मुताबिक फलने फूलने की खुशी किसान ही महसूस कर सकते हैं। तेलंगाना के किसान ने खुशी न सिर्फ खुद महसूस की है बल्कि दूसरों को भी महसूस कराई है। वीडियो में एक तरफ फसल कटती नजर आ रही है और दूसरी तरफ है खुशी जताता किसान। खुशी में वो जो भी कर रहा है उसे वो इंसान भी महसूस कर सकता है जिसने कभी खेती होते हुए भी ना देखी हो। वायरल हो रहे वीडियो में किसान को गुलाटियां लगाते देखा जा रहा है। वो ऐसी गुलाटियां लगा रहा है जैसे छोटा बच्चा हो, जबकि वो देखने में अधेड़ उम्र का लग रहा है। उसकी खुशी इतनी थी कि उसने उम्र देखने वालों और फसल काटने वालों की भी चिंता नहीं की। इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि महीनों की मेहनत आखिर क्या होती है। गर्मी से बचने के लिए एक कपल ने बाइक पर ऐसा जुगाड़ भिड़ाया जिसने सभी को चौंका ही दिया है। आलम यह है कि इस वीडियो को लोग बार बार देख रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि गर्मी से बचने के लिए किस तरह एक कपल ने बाइक को ढका है। देखकर ऐसा लगता है जैसे बाइक नहीं बल्कि चलता फिरता घर हो। आलम यह है कि सड़क पर पलट पलट कर लोग इसे देख रहे थे। जंगल में बंद पड़े रास्ते को एक हाथी ने अपनी ताकत और समझदारी से साफ कर दिया। आईएसएफ अधिकारी प्रवीर कासवान ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो साझा किया है जिसमें एक हाथी जंगल के रास्ते को साफ करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रास्ते पर भारी लकड़ियां और पेड़ों के बड़े टुकड़े पड़े हुए थे जिनकी वजह से सड़क बंद हो गई थी। आमतौर पर ऐसे कामों के लिए जेसीबी जैसी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जंगल के अंदर हर जगह मशीनों का पहुंच पाना आसान नहीं होता। खासकर बारिश या खराब रास्तों के कारण भारी वाहन अंदर नहीं जा पाते हैं। ऐसे समय में हाथी जंगल विभाग के लिए सबसे भरोसेमंद साथी बन जाते हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक हाथी और एक छोटे से डॉगी की जबरदस्त बॉन्डिंग और मस्ती साफ नजर आती है। वीडियो में दिखता है कि एक बड़ा हाथी तालाब के किनारे खड़ा हुआ है और अपनी लंबी सूंड से पानी उछालकर उस नन्हे डॉगी पर गिरा रहा है। हाथी का अंदाज ऐसा लगता है जैसे वो डॉगी को बारिश या झरने जैसा मजा दिला रहा हो। हाथी की इस हरकत से डॉगी भी काफी खुश दिखता है। पानी की बौछारों के बीच वो उछल कूद करता रहता है जैसे उसे कोई नेचुरल शावर मिल गया हो। वीडियो में उसकी पूंछ लगातार हिलती रहती है जिससे साफ पता चलता है कि वो इस मस्ती को दिल से एंजॉय कर रहा है। साथ ही वो कई बार हाथी को फिर से पानी डालने का इशारा भी करता नजर आता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को पहली नजर में देखने से लगता है कि एक शख्स अपने हाथ पर कुछ लकड़ी की सूखी टहनियों को रखे हुए है, लेकिन अगले ही पल उन सूखी लकड़ियों में जब हलचल होती है तो पता चलता है कि ये कोई सूखी लकड़ी की टहनी नहीं बल्कि कीड़े हैं। वायरल वीडियो को लेकर जानकारी जुटाने पर पता चला कि इन कीड़ों का नाम बफ टिप मॉथ है। ये कीड़े देखने में टूटी हुई लकड़ी की टहनी के टुकड़े लगते हैं, मगर असल में ये कीड़े होते हैं। इन कीड़ों की यही सबसे बड़ी खासियत है। बफ टिप मॉथ नाम का ये कीड़ा जब आराम करता है तो वो अपने पंखों को कुछ इस तरह से मोड़ लेता है कि वो देखने में बिल्कुल लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह नजर आता है। ये कीड़ा अपने आप को शिकारी पक्षी और जानवरों से बचाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
4: Jack, come home. It's supper time.
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
5: Hey Jack, could you play that one song with the words?
3: Jack FM, playing what we want.
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी फिल्म के सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है नितेश तिवारी की रामायण। फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई लेकिन कमाई के मामले में पहले ही बड़े बड़े रिकॉर्ड के लिए खतरा बनने लगी है। खबर है कि मेकर्स ने सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए पूरे 450 करोड़ रुपए की डिमांड रख दी है, यानी कि रिलीज से पहले ही फिल्म का भाव आसमान छू रहा है।
7: रिलीज से पहले ही इतिहास रचने जा रही है रामायण। बड़े पर्दे पर किंग का रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी तैयारी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज से पहले ही सिनेमा की दुनिया में हलचल मचाने का दम रखती हैं। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण भी कुछ ऐसा ही धमाल मचाने की तैयारी में है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही मेगा बजट फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमक दिखाने लगी है। सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि फिल्म के मेकर्स को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। शायद यही वजह है कि मेकर्स ने फिल्म के सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए 450 करोड़ की भारी भरकम मांग रखी है। अगर राइट्स के लिए 450 करोड़ की डील हो जाती है तो ये शाहरुख खान की किंग के मौजूदा रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा होगी। किंग के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की डील करीब 250 करोड़ में हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो रामायण के थिएट्रिकल राइट्स की डील पर जल्द मुहर भी लग सकती है। अगर ये डील 300 से 400 करोड़ के बीच फाइनल होती है तो भी ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड होगा। कामयाबी की उम्मीदों के आंकड़े सिर्फ थिएट्रिकल राइट्स की डील में ही नहीं दिख रही। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा डिजिटल राइट्स के लिए 1,000 करोड़ की महाडील पर भी नजरें टिकाए हुए हैं। नमित इस डील के लिए इंडस्ट्री के कई दिग्गजों से बातचीत करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स की तरफ से फिल्म के दोनों पार्ट्स की कंबाइंड स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए मेकर्स को 700 करोड़ का ऑफर मिला था, लेकिन नमित मल्होत्रा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और वो डिजिटल राइट्स के लिए 1,000 करोड़ की डील ही चाहते हैं। जाहिर है अगर ये दोनों डील पक्की हो जाती हैं, तो ये फिल्म पर्दे पर आने से पहले ही टेबल प्रॉफिट का नया इतिहास रच देगी। रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायण एक

0: इन फौलादी सुपरकारों पर हर वार है बेकार, क्योंकि कार नहीं ये कारों की धुरंधर है। वो धुरंधर जो सड़क पर देती है सुरक्षा की 100% गारंटी। और एक आम कार को धुरंधर में बदलती है वो बुलेट प्रूफ तकनीक, कारों का वो शानदार और जानदार मॉडिफिकेशन जिस पर दुनिया भर के नेता, अभिनेता, उद्योगपति और तमाम वीवीआईपी अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा करते हैं। आसान भाषा में समझे तो बुलेट प्रूफ कार का सीधा मतलब है एक ऐसा वाहन जो आपको किसी तरह के हथियारों के हमले से सुरक्षित रखे। इन गाड़ियों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। ज्यादा सुरक्षा वाली गाड़ियां तो हैंड ग्रेनेड या रॉकेट लॉन्चर के हमले से भी बचा सकती हैं। वीवीआईपी और नेताओं को गंभीर सुरक्षा खतरों के कारण ऐसी गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। भारत में ऐसी कई गाड़ियां विदेशों से इम्पोर्ट की जाती हैं, लेकिन अब भारत में भी कुछ कंपनियां इन धुरंधर कारों को तैयार कर रहे हैं। आज आपको ले चलेंगे मुंबई से करीब 260 किलोमीटर दूर अहिल्या नगर में मौजूद एक ऐसी ही कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जो पिछले कई सालों से भारत की जमीन पर जोरदार बुलेट प्रूफ कारें तैयार करती आ रही है। शील्ड आर्मरिंग, जहां देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, बड़े उद्योगपतियों, विदेशी मेहमानों, राजनेताओं और फिल्मी हस्तियों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां तैयार की जाती हैं। साथ ही शील्ड आर्मरिंग, पुलिसिंग, गंगा कंट्रोल और हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए सुरक्षा बलों के काम आने वाली आर्म गाड़ियां भी तैयार करती हैं। शील्ड आर्मरिंग ने हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस के लिए 6 PAMA आर्म्ड व्हीकल तैयार किए हैं। ये कार नहीं बल्कि सुरक्षा के मामले में ये चलते फिरते टैंक है।
1: देश की जनता की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा जिन हाथों में है, उनकी सुरक्षा किन हाथों में है, ये एक अहम सवाल है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। इसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीर में ये बुलेट प्रूफ कार दिखाना चाहता हूँ, जो अभी अभी अत्याधुनिक तरीके से बनाकर तैयार की गई है। स्टेट पुलिस को ये दी जाने वाली है और शहर के उन कोनों में ये खड़ी रहेगी जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध स्थल है। सवाल ये भी है कि आखिर इस तरह की बुलेट प्रूफ कार कैसे बनती है, कहाँ बनाई जाती है, क्या चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती है। इंडिया टुडे ग्रुप में आप ये सारी चीजें इस समय एक्सक्लूसिव देख रहे हैं।
0: ये बख्तरबंद गाड़ियां रिस्की ऑपरेशंस में तैनात पुलिस जवानों को सुरक्षा का नया कवच प्रदान करेंगी। स्टेट पुलिस की सेवा में पहले से मौजूद बख्तरबंद गाड़ियों की तुलना में ये व्हीकल ज्यादा एडवांस्ड, अपग्रेडेड और बेहतर प्रोटेक्शन देने वाला है।
2: हाँ, ये हमारी ब्रांड की व्हीकल है जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो इसे यूज करना चाहते हैं, तो ये 100% हमारा डिजाइन है जो ये व्हीकल हमने डेवलप की है।
1: अच्छा, थोड़ा सा बताएं ना अंदर चल करके किस तरीके से क्या बना है, क्या खासियत है, क्योंकि पहली बार ये चीजें कैमरे पर आ रही हैं।
2: जी, तो ये सबसे पहली बात, ये पूरा जो व्हीकल है वो 360 डिग्री प्रोटेक्शन है। जब हम 360 डिग्री प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि इसे कोई भी एंगल से पेनिट्रेशन की चांसेस नहीं है। कहीं से भी अगर बुलेट आ रही है, कहीं से भी इसको गलत फायरिंग हो रही है, तो ये प्रोटेक्ट करती है। इसके चारों साइड्स हैं, इसका रूफ है, इसका बॉटम है, ये सारा कम्प्लीटली आर्मर्ड होता है। इसके आप जितने भी ये ग्लासेस देख रहे हैं, ये बहुत ही हैवी ग्लासेस होते हैं जो AK-47, SLR जैसे जो वेपन्स होते हैं उसको वो इजीली प्रोटेक्ट कर सकता है।
1: अच्छा, और ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, ये क्या है?
2: तो सर ये ऐसा है कि जब हमारे फोर्सेस होते हैं, जब हमारे पुलिस जवान कभी कोई मिशन में जाते हैं और वहाँ पर से अचानक से फायरिंग हो गई, तो उनको अंदर से ही बैठ के रिटेलिएट करना है, उन्हें अंदर से बैठ के जब फायरिंग करनी है तो वो अपना बैरल इस स्पॉट से, इसे गन पोर्ट कहते हैं, वहाँ से निकाल के उसे ईजिली फायर कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो गए, वीवीआईपी प्रोटेक्शन हो गए, वो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। इस व्हीकल के अंदर अगर आप टॉप पे देखें तो ये 360 डिग्री टरेट है जहां पर जवान बाहर निकलता है, वो अपना गन माउंट करता है और उसको 360 डिग्री उसे फायर करने के चांसेस है। तो अगर कहीं से भी फायर हो रहा है तो उसे व्हीकल घुमाने की

नहीं है, उसको सिंपल वो टरेट है उसको घुमाएगा, वो सेल्फ प्रोटेक्टेड रहेगा और उसी वक्त वो फायर कर सकता है। इस व्हीकल की और एक खासियत है, अगर आप ये देखेंगे तो ये जितने भी स्लॉट्स हैं, ऐसे टोटल 4 स्लॉट्स हैं व्हीकल में, तो इसे इवन हेलीकॉप्टर से इस व्हीकल को लिफ्ट किया जा सकता है और कहीं पर भी डिप्यूट किया जा सकता है।

0: ये वाली तस्वीर भी दिखा है पीछे, यहाँ पर भी जो है बैठ सकते हैं हमारे ऑफिस।
1: यस, तो इसके अंदर टोटल ये जो मॉडल है इसके अंदर 6 सीटर है। तो जब 6 सीटर की बात करते हैं तो फ्रंट में 2 है, साइड्स में 2 है और जो रेयर है उसमें 2 है। इसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन भी आता है जो फर्दर इसको क्या बोलते हैं सीटिंग कैपेसिटी को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि एज पर स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट और फोर्सेस के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है। कोई 7 6 सीटर भी बना सकते हैं, 4 सीटर भी बना सकते हैं, 8 सीटर भी बना सकते हैं। तो डिफरेंट सीटिंग कैपेसिटी, ईच सीटिंग इस तरह से बनाई गई है कि जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का वो क्विक एंट्री एंड एग्जिट हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट इसमें होता है कि आप कितना फास्ट मूव इन करते हो और मूव आउट करते हो। तो ये सारी चीज़ का यहाँ पर ध्यान दिया गया है। ये पूरा 100% डिज़ाइन है अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ है और इसके अंदर जितने भी मटेरियल्स लगे हुए हैं सब हमारी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नतीजे से ये व्हीकल तैयार हुई।
2: बात जब बुलेट प्रूफ कार की हो तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि बुलेट प्रूफ कार असल में कोई अलग गाड़ी नहीं होती बल्कि एक नॉर्मल कार को खास तकनीक के जरिए मजबूत बनाया जाता है ताकि वो गोलियों और दूसरे हमलों से बचा सके। किसी भी कार को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए उसमें बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास, दरवाजों और बॉडी में स्टील या खास मटेरियल की प्लेटिंग, मजबूत छत और रन फ्लैट टायर लगाए जाते हैं। इस मॉडिफिकेशन के लिए जरूरी है कि कार में अतिरिक्त वजन सहन करने की क्षमता हो, क्योंकि सुरक्षा के लिए जो स्टील की सीट्स और मोटे शीशे लगाए जाते हैं उनमें गाड़ी का वजन लगभग 1000 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। यही वजह है ज्यादातर लोग बुलेट प्रूफ बनवाने के लिए SUV को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनका इंजन और चेसिस दूसरी गाड़ियों की तुलना में मजबूत होता है। भारत में आमतौर पर टाटा सफारी, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर, इनोवा या लग्जरी सेगमेंट में BMW और ऑडी जैसी कंपनियों की गाड़ियां बुलेट प्रूफ करवाई जाती हैं।
0: हमने आपको दिखाया कि फोर्स और पुलिस किस तरह की सुरक्षा भरी कार का इस्तेमाल करते हैं, कि बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब चल रहे हैं हम उस तरफ जहां पर VIP, VVIP मिनिस्टर्स भी अपने कार का इस्तेमाल करते हैं पूरी तरह से सुरक्षित और बुलेट प्रूफ। ये देखिए लैंड क्रूजर नाम की कार यहाँ पर खड़ी हुई है और पूरी तरह से बनकर तैयार है। हम सीधे अब इसके भीतर जाएंगे और कैसा लगता है भीतर बैठ करके और किस तरीके से होती है सुरक्षा उस बारे में भी जानकारी लेंगे। और पूरी तरह से लैंड क्रूजर को बना करके तैयार करके रख दिया गया है। जिस किसी भी दिग्गज ने बनाने का इन्हें ऑर्डर दिया है अब बहुत जल्दी उन्हें ये कार डिलीवर भी हो जाएगी। लेकिन भीतर से इसका नजारा कैसा होगा ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लैंड क्रूजर कार है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ हो चुकी है। अंदर मैं बैठा हुआ हूं, उसी तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ है जैसे नॉर्मल कार के होते हैं। बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है कि ये बुलेट प्रूफ कार है। और मेरे साथ में सुरिंदर सिंह राठौर मौजूद ही हैं, साथ ही साथ इंद्रजीत सिंह राठौर भी मौजूद हैं। थोड़ा सा बताएं, पता ही नहीं चल पा रहा कि ये बुलेट प्रूफ कार बन चुकी है और आपने इसे सजा दिया, बना दिया, कैसे, क्या, कहाँ पर, क्या खासियत, कैसे पता चलेगा, क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा बताएं।
3: अभी आप जब यहाँ पर देखेंगे इसकी जो प्रोटेक्शन है वो हमने 360 डिग्री दी है। ये ऊपर के साइड पे भी पूरी प्रोटेक्टेड है, साइड पे भी है, दरवाजों में भी है। ये जैसे आप ग्लास देखेंगे तो ये 40mm का ग्लास है, काफ़ी थिक ग्लास है। तो इससे क्या AK-47 SLR ये सब चीज़ें अपना प्रोटेक्ट हो जाती है। और इसका आप, इसकी ब्यूटी ये है कि ये आपको आइडेंटिफाई करनी नहीं चाहिए कि ये आर्मर्ड व्हीकल है कि नॉर्मल व्हीकल है। आप इसकी अगर कंफर्ट देखेंगे तो कंफर्ट एज इट इज़ जो ओरिजिनल की कंफर्ट है वो मिल रही है। आपके जो प्लास्टिक्स है, आपके जो ट्रिम्स है, आपके जो डोर पैड्स है वो एज इट इज़ ओरिजिनल जैसे लग रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर ये गाड़ी की बात की जाए तो ये 2 करोड़ की गाड़ी है। तो जो बंदा ये 2 करोड़ जो पैसे खर्च रहा है वो किस चीज़ के लिए खर्च रहा है? वो ये खर्च रहा है कि इसका कंफर्ट मिले। इसकी जो उसने कंफर्ट के पैसे दिए हैं, इसके जो फीचर्स के पैसे दिए हैं, अगर हमने उसको बुलेट प्रूफ में ऐसा कर दिया कि फीचर्स ही ना काम आए तो फिर ये कंफर्ट का जो उन्होंने पैसा खर्चा उसका यूज़ नहीं आएगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि एज इट इज़ जो ओरिजिनल है, जो भी मॉडिफिकेशन की गई है वो अंदर से की गई है, आउटर लुक को एज इट इज उसको मेंटेन किया गया है कि वो आइडेंटिफाई ना हो कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है।
0: अच्छा, मतलब ये कि भाई सुरक्षा कवच इस कार में जो कुछ लगा हुआ है वो सब आपने छिपाया है, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया।
3: यस यस, क्योंकि अगर दिखा दे तो क्या है कि कभी कॉन्वॉय में 3 गाड़ियां चल रही है, 4 गाड़ियां चल रही है, तो अगर कोई अटैक करता है तो उसे ये नहीं पता होना चाहिए कि कौन से गाड़ी में बुलेट प्रूफ हुआ हुआ है, कौन से में नॉर्मल। तो इसकी जो हाइट है वो भी हमको मेंटेन करनी पड़ती है कि ओरिजिनल गाड़ी जो नॉर्मल गाड़ी है और हमारी जो आर्मर्ड गाड़ी है वो सेम जैसी की दिखनी चाहिए।
2: अब आपको बताते हैं कि किसी कार को बुलेट प्रूफ कैसे बनाया जाता है। वास्तव में किसी भी सामान्य कार को बुलेट प्रूफ बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। इसमें कार के इंजन को छोड़कर लगभग पूरे हिस्से को बदल दिया जाता है। दरवाजों से लेकर विंडशील्ड, खिड़कियां, छत और यहां तक कि पूरा पैनल भी बुलेट प्रूफ मटेरियल से बदला जाता है। बुलेट प्रूफिंग से जुड़ा सारा काम होता है अहिल्या नगर में मौजूद इस कारखाने में, जहां लगभग 100 लोगों की टीम एक आम गाड़ी को मॉडिफाई कर मजबूत और सुरक्षित किले में तब्दील कर देती है।
0: ये देखिए, इस तरह से जो दरवाजे अभी हमने आपको दिखाया है, इस तरह से दरवाजे खोल दिए गए हैं। सिर्फ इंजन छोड़ करके इस गाड़ी के सारे पार्ट को निकाल दिया गया है और अब बुलेट प्रूफ चीजें उस गाड़ी में, उस कार में लगाने का कार्य जो है वो शुरू है। और मुझे लगता है, जैसा कि अभी सुरेंद्र सिंह राठौर ने हमें बताया है, 15 से 20 दिन में ये भी लग्जरी कार जो है ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं?
4: हाँ जी, एकदम सही। तो अभी इस वक्त हमने क्या किया है, जब ये जो नई गाड़ी आई थी उसको हमने लिया है, उसका पूरा स्ट्रिप डाउन किया है। तो जब आप देखेंगे तो इसके अंदर सब इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके सीट्स, इसके अंदर अपॉल्स्ट्री, ये सारी निकाल दिए हैं। इसके अंदर हमने रीइंफोर्स किया इसे आर्मर्ड स्टील के साथ। जहां जहां हमें लगता है कि 360 डिग्री प्रोटेक्शन देनी है, वहां पर इसे हमने स्टेंटेन किया है और इस व्हीकल को वापस ग्राउंड से बिल्ट अप किया है। तो हम जब ग्राउंड से बिल्ट अप करते हैं तो इसका पहले फ्लोर बनाते हैं, फिर इसके साइड्स बनाते हैं, फिर रूफ बनाते हैं। तो इसे कंप्लीट एक केज जैसा बनाते हैं जिसे हम 360 डिग्री प्रोटेक्शन कहता है। इसका ये फायदा है कि ये बुलेट से तो प्रोटेक्ट करेगा, बट अभी अगर रोड पे एक्सीडेंट हो गया, व्हीकल टंबल होगी, इन दैट सिनेरियो आल्सो ये व्हीकल बहुत ही सेफ होती है।
0: अच्छा, ये थोड़ा सा भी हाइट में उठेगी नहीं?
4: नहीं, ये बहुत हैवी होती है व्हीकल। तो इसका नॉर्मल जो एड ऑन वेट होता है तकरीबन 1000 केजीज इसमें बढ़ जाता है। तो इसके वजह से व्हीकल बहुत सेफ होती है, ये रोड को पकड़ के चलती है। आपने देखा होगा बहुत सारे VVIPs, पॉलिटिशियंस ये व्हीकल को एवरीडे यूज के लिए यूज करते हैं।
2: एक बुलेट प्रूफ कार की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके टायर। हमले की स्थिति में भी गाड़ी चलती रहे, इसके लिए खास रन फ्लैट ट्यूबलेस टायरों का इस्तेमाल किया जाता है।
4: इतना टाइम हमने ये देखा है कि जब एक्चुअल में फायरिंग होती है तो उन लोग है ना व्हीकल के टायर्स को टारगेट करते हैं। जब उसे टारगेट करते हैं तो जाहिर है कि व्हीकल रुक जाएगी, उन्हें ज़्यादा समय मिल जाएगा और उसे फिर फायर करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि ये जो व्हीकल का जो टायर है इसके अंदर रन फ्लैट सिस्टम लगा हुआ है। ये रन फ्लैट सिस्टम क्या करता है, जब इसके अंदर डिफ्लेट होगा, बुलेट लगेगी तो ये पूरा जो एयर है डिफ्लेट हो जाएगा। उसके बाद में जो टोटल वेट है ये रन फ्लैट सिस्टम पे आ जाएगा और उसके अलावा ये 350 किलोमीटर्स तो भी ये जा सकता है। पूरा डिफ्लेट होने के बाद में 50 किलोमीटर आपकी व्हीकल को ये अलग जगह पर लेके जा सकता है, जहाँ पर आप सुरक्षित हो वहाँ तक ये आपको पहुँचा देगा।
0: अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये जो टायर है ये कौन सी कंपनी का आप लोग इस्तेमाल करते हैं या खुद ही बनाते हैं?
4: नहीं, जो टायर है वो OEM के जो हो सकता है, वो कोई भी मेक का हो सकता है, उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो इसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है वो उसे प्रोटेक्ट करेगा।
2: इसी तरह बुलेट प्रूफिंग के लिए खास तरह की स्टील शीट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मोटाई लगभग 6.5 mm तक होती है। तो वही पूरी गाड़ी का सबसे कमजोर हिस्सा शीशा होता है, इसलिए इसमें 45 से 55 मिलीमीटर तक का मोटा कई परतों वाला ग्लास लगाया जाता है।
4: तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स हैं जिसमें अलग अलग थिकनेस ऑफ मटेरियल हमने टेस्ट किया है। सो वेदर उसमें AK-47 हो गया या तो SLR हो गया, जो ये कॉमन थ्रेट परसेप्शन जो होते हैं, जो टेररिस्ट लोग यूज़ करते हैं, जो नक्सलवादी लोग ये वेपन्स यूज़ करते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो स्टील और ग्लास पे कुछ इस तरह का होता है। ये जब बुलेट लगती है तो सिर्फ इतना सा एक इम्पैक्ट होता है।
0: अच्छा, और यहाँ पर एक दरवाज़ा भी रखा हुआ है और ये शायद गोलियों के निशान है। 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 ये क्या है जी?
4: सर, इसमें क्या है कि पूरी व्हीकल को जब बन गई है तो उसके ऊपर हमने ये फायर करवाया हुआ है, तो ये उसी का एक सैंपल डोर है। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लासेस के साथ ये व्हीकल के डोर पे भी फायर किया गया है और आप देख सकते हैं कि इस तरफ से बुलेट अंदर पेनिट्रेट होती है, वेदर इट इज़ ग्लास और स्टील, बट अंदर के साइड वो कम्प्लीटली वो प्रोटेक्ट करती है।
0: अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी है ये कांच की? इसकी और क्या कहते हैं कांच का और कैसे इसे बनाया जाता है?
4: तो ये इसके अंदर 5 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है। ये एक सैंडविच ग्लास होता है जिसमें एक ग्लास होता है, उसमें 5 अलग अलग तरह के मटेरियल्स लग के उसे वो 100% प्रोटेक्ट करने के लिए 40 mm थिक होता है, जो स्टैंडर्ड मटेरियल है, थिकनेस है उसके हिसाब से। और इसके अंदर नीचे यहाँ पर कम्प्लीटली जैसे हमने ये आर्मर्ड स्टील देखी, वो आर्मर्ड स्टील लगा हुआ है।
0: और वहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि ये कांच लगा हुआ है। थोड़ा सा इंद्रजीत जी आप बताएं, ये कांच आगे का कांच है ना या पीछे का है? पीछे
3: ये का स्क्रीन है, ये विंड स्क्रीन है। तो इस पे जैसे हमने हैमर शॉट्स दिए हुए हैं, तो हैमर शॉट्स के बाद में भी जैसे हमने आपको दिखाया कि गन शॉट्स के, तो आपने सैंपल्स देखे। अगर कोई किसके दिमाग में रहता है कि नहीं इतना बड़ा हैमर लेके फिर भी प्रोटेक्ट करेगा, तो इसके लिए हमने आपको ये हैमर शॉट्स के भी डिस्प्ले बना के रखा है।
2: जहाँ एक टेक्टिकल व्हीकल को बनाने में 15 दिन से 1 महीने का समय लगता है, वहीं VIP सुरक्षा के लिए एक आम कार को बुलेट प्रूफ कार में बदलने के लिए 15 से 20 दिन का समय लगता है। बुलेट प्रूफिंग के तमाम स्टेप्स से गुजरने के बाद जब एक आम कार किले में तब्दील होकर खास हो जाती है, तब बारी आती है टेस्टिंग की। इसके लिए तैयार बुलेट प्रूफ कार के पार्ट्स को मजबूती की टेस्टिंग के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स में भेजा जाता है।
3: इसमें जैसे गुजरात में लैब है, चंडीगढ़ में लैब है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो इसको टेस्ट करती हैं। जैसे एक हमारे पास में अगर मटेरियल का लॉट आ गया, स्टील का लॉट आ गया, ग्लास का लॉट आ गया, हमने वो स्टील के लॉट को अपना सैंपल टेस्ट कर दिया। जैसे आपको दिखाया, दैट इज़ ये 300x300 का हमने अपना एक शीट काटा है। ये कटिंग करके हमने इसके ऊपर 6 शॉट्स लिए हैं, SLR के हो गए, AK-47 के हो गए। जो ग्लास है जो आपके पीछे, ये 500x500 का है, इस पर भी हमने शॉट लिया। हमारी कंपनी एक एडिशनल चीज़ करती है, जब आर्मरिंग पूरी ख़त्म हो जाती है तब उसको हम पूरी बुलेट प्रूफ करके एजेंसी में भेजते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं। तो जैसे ये गाड़ी का आपको जैसे हमने डोर दिखाया है, कि ये गाड़ी का डोर का ये खासियत है कि ये सिर्फ डोर टेस्ट नहीं हुआ है, ये पूरी गाड़ी उनके पास में गई है, वो गाड़ी के ऊपर उन्होंने टेस्ट किया है, फिर हमने वो डोर को रिप्लेस करके ये डोर को अपना एज अ डेमो पीस रखा है।
2: बुलेट प्रूफिंग और टेस्टिंग की तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इस कारखाने से निकली कार एक चलते फिरते किले में तब्दील हो जाती है। आज देश के कई राज्यों में यहां से निकली बुलेट प्रूफ कारें पहुंचती हैं। तमाम राज्यों में भेजी गई मॉडिफाइड कारों के सैंपल्स को इस कारखाने में बेहद शान से डिस्प्ले किया गया है।
0: और ये तस्वीरें देखें, अलग अलग राज्यों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, बहुत सारे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे कांच भी लगा हुआ है जो टूटे फूटे कांच है। थोड़ा सा बताएं ये क्या है, क्या चीज है, कहाँ पर आपने क्या किया है ये? मतलब
3: ये हमारा एक हमने डिस्प्ले बनाया हुआ है, ये हमने सब स्टेट्स में सप्लाई किया हुआ है टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। जब हम इस पे SLR के शॉट्स मारते हैं, AK-47 के शॉट लेते हैं, तो ये जो कांच है वो टूट जाता है, शटर हो जाता है। लेकिन अगर अंदर से आप, जब हम आपको दिखाएंगे तो बहुत स्मूथ है, तो अंदर कोई भी पेनिट्रेशन नहीं है। इसके लिए हमने एक वॉल एक बनाया है, एक डिस्प्ले वॉल है, कि ये सब स्टेट्स में हमने दिया, और इससे ज़्यादा स्टेट्स भी हमारे ऐड हुए हैं, लेकिन अभी तक हमने उसको अपना डिस्प्ले पे नहीं डाला गया
0: है। मतलब अलग अलग राज्यों में आपने जाँच प्रक्रिया पूरी करी है,
3: जहाँ जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स यूज कर रही है ये उनकी टेस्ट।
2: ये तो थी बात बुलेट प्रूफिंग की, अब बात करते हैं इसमें आने वाले खर्च की। क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये कार्य खास है, इसलिए दाम भी आम नहीं। बुलेट प्रूफिंग का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी सुरक्षा चाहते हैं। अगर गाड़ी को सिर्फ गोलियों के हमले से बचाना है तो ये खर्च 20 लाख से 50 लाख रुपए के बीच आ सकता है। ये बेसिक लेवल की सुरक्षा होती है जो पिस्टल या छोटे हथियारों से बचाने के लिए होती है। लेकिन अगर आप AK-47 जैसी राइफल, हैंड ग्रेनेड जैसे ज्यादा शक्तिशाली हथियारों से सुरक्षा चाहते हैं तो ये खर्च बढ़कर करोड़ों में पहुंच सकता है। ये खर्च इतना ज्यादा क्यों होता है ये भी समझना जरूरी है। दरअसल कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे आप कौन सी कार को मॉडिफाइड कर रहे हैं, उनमें कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास, भारी स्टील प्लेटिंग, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, फायर सिस्टम और खास टायर जैसी चीजें कीमत को काफी बढ़ा देती है।
3: इसमें जैसे ये गाड़ियां हैं वो अलग अलग टाइप की प्रोटेक्शन के ऊपर जाती है। अगर किसको हैंड पिस्टल से लेनी है तो वो स्टार्ट हो जाती है, एक 50 लाख से चालू हो जाती है, तो वो एक 2.5-2 करोड़ तक अपना जाती है अपना। उसमें AK-47 की भी प्रोटेक्शन है, SLR की भी प्रोटेक्शन है, बॉम्ब प्रोटेक्शन भी है, तो हर तरीके से प्रोटेक्शन देता है। अगर उसको और लाइट बनाना है हमको, तो हम उसके लिए कॉम्पोजिट यूज़ करते हैं, जो स्टील नहीं होता है वो बहुत लाइट होता है, उसमें कि ये गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होती है।
2: मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद इस कंपनी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनाने का काम शुरू किया था। अब ये गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कस्टमाइज्ड बैलिस्टिक प्रोटेक्शन और एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशन दे रही है। इतने सालों से शील्ड आर्मरिंग भारत के आर्म मोबिलिटी डिफेंस सिक्योरिटी और मोबिलिटी इंजीनियरिंग के मेल पर काम करते हुए बदलते खतरों के हिसाब से एंड टू एंड प्रोटेक्शन सॉल्यूशन देती आ रही है।
1: तो ये शुरुआत ऐसे हुई कि जब 26/11 हुआ तो हमें एक नीड ये लगी कि सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स उस वक्त इंडिया में इतने क्वालिटी के जो इंटरनेशनल क्वालिटी के नहीं थे, तो जो ऑपरेशन जब यहाँ पर हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे लैप्सेस देखे गए, वेदर वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात की जाए या तो व्हीकल्स की बात की जाए, तो उस लेवल का प्रोडक्ट नहीं था यहाँ पर। तो तब ये दिमाग में आया कि हमें कुछ इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इंडिया में लेके जाने चाहिए ताकि हमारे जवान हैं, हमारे VVIPs हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, वो सारे इसको क्या बोलते हैं अपने आप को सुरक्षित कर सके। तो बस वो एक सोच था और तब से हमने स्टार्ट किया। 2011 हमने ये कंपनी स्टार्ट की और एक स्टेट से स्टार्ट किया। तकरीबन 18 राज्य के स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी व्हीकल्स यूज़ कर।
2: ये वो सुपर कारें हैं जिनके आगे बुलेट बेअसर है, भारी हथियारों का वार भी बेकार है, सड़क पर चलता फिरता आम टैंक है ये कारें। यही वजह है कि देश भर में सरकारों से लेकर असरदारों तक इन धुरंधर कारों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। अहिल्यानगर से साहिल चौहान और धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी फिल्म के सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है नितेश तिवारी की रामायण। फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई लेकिन कमाई के मामले में पहले ही बड़े बड़े रिकॉर्ड के लिए खतरा बनने लगी है। खबर है कि मेकर्स ने सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए पूरे 450 करोड़ रुपए की डिमांड रख दी है, यानी कि रिलीज से पहले ही फिल्म का भाव आसमान छू रहा है।
8: रिलीज से पहले ही इतिहास रचने जा रही है रामायण। बड़े पर्दे पर किंग का रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी तैयारी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज से पहले ही सिनेमा की दुनिया में हलचल मचाने का दम रखती हैं। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण भी कुछ ऐसा ही धमाल मचाने की तैयारी में है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही मेगा बजट फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमक दिखाने लगी है। सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि फिल्म के मेकर्स को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। शायद यही वजह है कि मेकर्स ने फिल्म के सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए 450 करोड़ की भारी भरकम मांग रखी है। अगर राइट्स के लिए 450 करोड़ की डील हो जाती है तो ये शाहरुख खान की किंग के मौजूदा रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा होगी। किंग के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की डील करीब 250 करोड़ में हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो रामायण के थिएट्रिकल राइट्स की डील पर जल मुहर भी लग सकती है। अगर ये डील 300 से 400 करोड़ के बीच फाइनल होती है तो भी ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड होगा। कामयाबी की उम्मीदों के आंकड़े सिर्फ थिएट्रिकल राइट्स की डील में ही नहीं दिख रही। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा डिजिटल राइट्स के लिए 1,000 करोड़ की महाडील पर भी नजरें टिकाए हुए हैं। नमित इस डील के लिए इंडस्ट्री के कई दिग्गजों से बातचीत करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स की तरफ से फिल्म के दोनों पार्ट्स की कंबाइंड स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए मेकर्स को 700 करोड़ का ऑफर मिला था, लेकिन नमित मल्होत्रा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और वो डिजिटल राइट्स के लिए 1,000 करोड़ की डील ही चाहते हैं। जाहिर है अगर ये दोनों डील पक्की हो जाती हैं, तो ये फिल्म पर्दे पर आने से पहले ही टेबल प्रॉफिट का नया इतिहास रच देगी। रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायण एक भव्य पौराणिक फिल्म है। इस फिल्म में रणबीर भगवान राम की भूमिका में हैं और साउथ के सुपरस्टार यश रावण का किरदार निभा रहे हैं। माता सीता का किरदार साई पल्लवी ने निभाया है। पर्दे पर भगवान हनुमान के रूप में सनी देओल नजर आएंगे। धुरंधर की तरह ही फिल्म भी दो पार्ट्स में आने वाली है। रिलीज से काफी पहले से ही इस फिल्म का सोशल मीडिया पर बज बना हुआ है। फिल्म का पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा। ये फिल्म करीब 4000 करोड़ के भारी भरकम बजट में तैयार हो रही है। फिल्म के मेकर्स को पूरी उम्मीद है कि रिलीज के बाद ये फिल्म हिंदी सिनेमा में कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: पवित्र अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंदिर कर्मचारियों ने गुफा में किया प्रवेश। 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिन चलेगी यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक करीब 20 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। झमाझम बारिश के बीच बद्रीनाथ में उमड़ा आस्था का समंदर। आज विधि विधान से खुलेंगे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। चमोली के गोविंद घाट से पवित्र धाम के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। अरदास के बाद पंच प्यारों ने की अगुवाई। गुजरात के गांधीनगर में स्वामी महावीर का हुआ सूर्य तिलक। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में दोपहर 2:07 पर बना शुभ संयोग। अलौकिक घटना के गवाह बने हजारों भक्त। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट। काशी की समृद्ध कला संस्कृति को मिलेगा नया मंच। आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन की 3D इमेज जारी। ओडिशा के चांदीपुर फायर रेंज से भारत ने अग्निवन बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 700 से 900 किलोमीटर है मारक क्षमता। परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा। नैनीताल मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों तक गर्मी का असर। दोपहर के वक्त सावधानी बरतने की सलाह।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
10: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश कर दिया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोस दी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है। कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर रहती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इसे सच मानकर शेयर कर देते हैं। यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ कर देते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले फैक्ट चेक में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि महिला पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर खुशी मना रही थी, लेकिन अब राज्य की नई सरकार ने इसी का घर गिरवा दिया। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, बताएंगे आपको। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के साथ जुड़ी है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि एक हिंदू लड़की से इश्क करने पर एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई। क्या है वायरल दावे की यहां पर सच्चाई, वो भी आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और
10: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर खुशी मना रही महिला का घर नई सरकार ने बुलडोजर से गिरा दिया। वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करती इस रिपोर्ट में देखिए।

0: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। हाल ही में हावड़ा रेलवे स्टेशन और सियालदह रेलवे स्टेशन के बाहर ये अभियान चलाया गया। वहीं कोलकाता के तिलजला इलाके में अतिक्रमण हटाने को लेकर वहां के स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच टकराव हुआ, जिसमें 8 जवान घायल हो गए। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो शेयर करते हुए कुछ लोग लिख रहे हैं कि एक महिला जो बंगाल में बीजेपी की जीत की खुशी मना रही थी, राज्य की नई सरकार ने उसी का घर गिरवा दिया। वीडियो में एक के बाद एक दो क्लिप्स नजर आती हैं। पहली क्लिप में भगवा टी शर्ट पहने हुए और भगवा गुलाल लगाए हुए एक महिला मजेदार स्टाइल में डांस करती दिख रही है। वहीं दूसरी क्लिप में टूटी फूटी इमारतों के बीच खड़ी एक महिला रो रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कई लोगों का कहना है कि जो महिला बंगाल में बीजेपी की जीत की खुशी में नाच रही थी, उसी का घर बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद तोड़वा दिया। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बंगाल में चुनाव के समय यह अंधभक्तिन खूब नाच नाच कर डांस कर रही थी बीजेपी के लिए। बीजेपी बंगाल जीती, फिर बुलडोजर चला तो इस अंधभक्तिन का घर भी लपेटे में आ गया। अब कह रही है बीजेपी को नहीं जीतना चाहिए था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये महिला पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर खुशी मना रही थी, लेकिन अब राज्य की नई सरकार ने इसी का घर गिरवा दिया। अब ये महिला रो रो कर ये बोल रही है कि बीजेपी को वोट देकर उसने गलती कर दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले दोनों वीडियोस के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में नजर आ रही दोनों ही महिलाओं के चेहरे को जूम करके हमारी टीम ने जब ध्यान से देखा तो ये सामने आया कि दोनों महिलाएं अलग अलग हैं। मतलब दो वायरल क्लिप्स को जोड़कर इस वीडियो को तैयार किया गया है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके अलावा पहला सवाल क्या है इसी वीडियो से रिलेटेड, वो आपको दिखा देते हैं। अगर दावा वाकई सही है तो वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए सियासी अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, आखिर सच्चाई क्या है, आपको इस वीडियो में दिखाते हैं।
0: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल के लिए दोनों वीडियो की जांच की। पहली क्लिप में गुलाबी रंग का एक मंदिर नजर आ रहा है। सर्च के जरिए इसके बारे में हमें पता लगा कि ये पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नतुनपुल्ली न्यू टाउन इलाके का राधा कृष्ण मंदिर है। गूगल मैप्स पर भी इस मंदिर की तस्वीरें मौजूद हैं। साफ पता चलता है कि ये उसी मंदिर की तस्वीरें हैं जो वायरल वीडियो में नजर आ रहा है। सर्च के जरिए साफ हो गया कि ये वीडियो न्यू टाउन का ही है और इसमें दिख रही महिला मानसी हल्दर नाम की बीजेपी समर्थक है, जो 4 मई को चुनाव नतीजों के दिन बीजेपी की जीत की खुशी मनाते हुए डांस रही थी। मानसी और उनके पति सुखरंजन हल्दर दोनों ही बीजेपी समर्थक हैं, जो न्यूटाउन के विवेकानंद पल्ली इलाके में रहते हैं और नई सरकार के गठन के बाद से अब तक इस इलाके में कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी क्लिप को रिवर्स सर्च करने से ये हमें एक न्यूज आउटलेट की 12 जून 2025 की रिपोर्ट में मिली। रोती हुई महिला वाला वीडियो इसी 10 मिनट 45 सेकंड की रिपोर्ट से लिया गया है। ये रिपोर्ट दिल्ली के कालकाजी में हुई डीडीए की बुलडोजर कार्रवाई से संबंधित है। वीडियो में महिला भगवान की मूर्ति पकड़कर खड़ी है और कह रही है कि बीजेपी के राज में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। वहां मौजूद दूसरे लोग भी रिपोर्टर से बातचीत के दौरान अपना घर तोड़े जाने पर दुख जाहिर कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अब वो कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इस वीडियो को उस वक्त कांग्रेस ने भी शेयर किया था और आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार के राज में दिल्ली में मंदिर भी तोड़ दिए गए। एक आधिकारिक न्यूज आउटलेट पर 11 जून 2025 को छपी एक खबर के मुताबिक कालकाजी के पास भूमिहीन कैंप इलाके में अवैध अतिक्रमण का ये मामला लगभग 10 साल कोर्ट में चला था, लेकिन झुग्गी वासियों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। कोर्ट के आदेश के बाद ही ये अवैध निर्माण गिराए गए थे। इस दौरान 344 घर गिराए गए थे जिनमें 1200 परिवार रहते थे। साफ है दोनों क्लिप्स में दिख रही महिलाएं अलग अलग हैं। पहली क्लिप बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की है, जहां मानसी हल्दर नाम की बीजेपी समर्थक 4 मई को पार्टी की जीत के बाद खुशी मना रही थी। वहीं दूसरी क्लिप जून 2025 में दिल्ली के कालकाजी में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान का है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक पर बीच बाजार में चाकू से हमला किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करके यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि एक हिंदू लड़की से इश्क करने पर एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई। वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करते इस वीडियो में देखिए।
2: सोशल मीडिया पर यह हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। एक शख्स के हाथ में चाकू है, निशाने पर एक व्यक्ति है जिसे पीछे से एक दूसरे व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है ताकि वो चाकू के वार से बच नहीं पाए। बीच सड़क पर ये खूनी खेल चल रहा है लेकिन कोई इसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। लोग वहां से गुजर रहे हैं लेकिन इनकी अनदेखी करके आगे बढ़ जा रहे हैं। यहां तक कि किसी ने पुलिस को भी इसके बारे में सूचना नहीं दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो को धार्मिक एंगल देकर धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है। लोग वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर इसे शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को सांप्रदायिक एंगल देकर वायरल करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़के को एक हिंदू लड़की से प्यार करना महंगा पड़ गया, बाजार में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले तो वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बड़े ही गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में एक बोर्ड नजर आया, उसमें तेलुगु में कुछ शब्द लिखे मिले, मतलब ये वीडियो तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश का हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लोकल मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन हाल फिलहाल में दावे की पुष्टि करती कोई ऐसी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे हमें वायरल दावे पर संदेह हो। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल, अगर दावा सही है तो वायरल वीडियो कब का है और कहां का है? दूसरा सवाल, कहीं रंजिश के वीडियो को जानबूझकर धार्मिक एंगल देकर वायरल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? आखिर सच्चाई क्या है? क्या है सच, क्या है झूठ? दिखाते हैं।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। उस दौरान हमें नवंबर 2025 की कई तेलुगु भाषा में छपी रिपोर्ट्स मिली जिसमें वायरल हो रहे वीडियो के क्लिप का इस्तेमाल किया गया था। 5 नवंबर 2025 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी बालेश्वर रेड्डी और पीड़ित रोशन कुमार सिंह दोनों ही आपराधिक रिकॉर्ड वाले अपराधी थे। बताया गया था कि ये मामला वित्तीय विवाद को लेकर हुआ था। सर्च के दौरान हमें 5 नवंबर 2025 को छपी एक आधिकारिक रिपोर्ट मिली। यहाँ दी गई जानकारी के मुताबिक दोनों व्यक्तियों के बीच लंबे समय से दुश्मनी थी और उसी दिन बालेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना के हैदराबाद में जगतगिरी गुट्टा बस स्टॉप पर रोशन कुमार सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी। रेड्डी ने अपने साथियों मोहम्मद और आदि के साथ मिलकर रोशन पर धारदार हथियार से हमला किया और फिर मौके से फरार हो गया। इलाज के दौरान अस्पताल में रोशन कुमार सिंह की मौत हो गई। जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि रेड्डी और रोशन दोनों हिंदू थे। इस घटना में कोई सांप्रदायिक पहलू नहीं था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो में नजर आ रहे हमलावर और पीड़ित दोनों हिंदू थे। 2025 की इस घटना में कोई सांप्रदायिक पहलू नहीं था। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ फैक्ट चेक में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार से वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड की हलचल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जीएनटी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
3: न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर को अंत की तरफ बढ़ाने का, आप सबको ऐसे वीडियो दिखाने का जिसके बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
5: कहते हैं अगर हौसला बुलंद हो तो आसमान की ऊंचाई भी छोटी पड़ जाती है, और इस बात को सच कर दिखाया है रूस के रुस्तम नाबियेव ने। उन्होंने वो कर दिखाया है जिसे आम इंसान तो क्या, अच्छे भले पर्वतारोही करने से पहले 100 बार सोचे। दोनों पांव से दिव्यांग रुस्तम ने बिना किसी कृत्रिम पैर के सिर्फ अपने हाथों के सहारे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर ली है। इस ऐतिहासिक चढ़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो गई हैं। दरअसल साल 2015 में एक सैन्य बैरक के अचानक ढह जाने से रुस्तम ने अपने दोनों पांव हमेशा हमेशा के लिए खो दिए थे। उस हादसे में कई सैनिकों की जान चली गई थी और रुस्तम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन व्हीलचेयर पर बैठकर जिंदगी काटने के बजाय उन्होंने पहाड़ों को चुनौती देने का फैसला किया। 20 मई को उन्होंने सुबह 8:16 पर एवरेस्ट के शिखर पर रूसी झंडा लहराया। इससे पहले पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुद्धा मगर ने कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट फतह किया था, लेकिन बिना प्रोस्थेटिक्स के सिर्फ हाथों के बल पर एवरेस्ट फतह करने वाले रुस्तम दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं।

सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आंसर शीट नजर आ रहा है और उसमें छात्र ने सभी सवालों के जवाब भी लिखे हुए हैं। लेकिन टीचर का दिमाग कुछ शब्द देखकर घूम गया, क्योंकि उसने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। छात्र ने अबाउट को ABT लिखा हुआ है, उसने आगे एक जगह पर काइंडा लिखा हुआ है, वही एक जगह पर उसने बाय द वे की जगह BTW लिखा हुआ है। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो लोग सोशल मीडिया पर बात करते हुए अक्सर यूज करते हैं, मगर आंसर शीट में देखकर टीचर ने भी माथा पकड़ लिया। वही वीडियो में लिखा है, अगर आपका स्टूडेंट जेंजी है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप सभी को पपेट शो के बारे में तो पता ही होगा। जी हाँ, वही कठपुतली कला जिसमें एक आदमी कुछ कठपुतलियों को अपनी उंगली से कंट्रोल करता है और एक कमाल का शो दिखाता है। ये एक पुरानी कला है जो लोगों का मनोरंजन करती है, मगर आज के समय में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। वही कला वायरल हो रहे वीडियो में देखने को मिली। वायरल वीडियो में नजर आता है कि एक पपेट कुछ आर्ट बनाने में लगा हुआ है। वो कलम निकालता, उसकी इंक चेक करता, कागज पर कुछ बनाता और फिर उसे गौर से देखते हुए नजर आता। उस पपेट को एक आदमी कंट्रोल करता हुआ नजर आता है। आप जब वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका इंटरनेट का पैसा वसूल हो गया है। सोशल मीडिया पर एक अनोखा और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुल्हन खुद अपने पति के घर बारात लेकर पहुंच जाती है। गाने की धुन, पटाखों की गूंज के साथ जबरदस्त डांस करते हुए वो पूरे धूम धड़ाके के साथ ससुराल में एंट्री करती है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल बारात नहीं, बल्कि मजाकिया अंदाज में दिया गया सरप्राइज था। घर के बाहर ही वो जमकर नाचती है और फिर अपने होने वाले पति को वरमाला पहनाकर सबको चहका देती है। आसपास मौजूद लोग भी इस पल को एंजॉय करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

0: किसान की मेहनत उसकी फसल में ही दिखती है। इस फसल के मन मुताबिक फलने फूलने की खुशी किसान ही महसूस कर सकते हैं। तेलंगाना के किसान ने खुशी न सिर्फ खुद महसूस की है बल्कि दूसरों को भी महसूस कराई है। वीडियो में एक तरफ फसल कटती नजर आ रही है और दूसरी तरफ है खुशी जताता किसान। खुशी में वो जो भी कर रहा है उसे वो इंसान भी महसूस कर सकता है जिसने कभी खेती होते हुए भी ना देखी हो। वायरल हो रहे वीडियो में किसान को गुलाटियां लगाते देखा जा रहा है। वो ऐसी गुलाटियां लगा रहा है जैसे छोटा बच्चा हो, जबकि वो देखने में अधेड़ उम्र का लग रहा है। उसकी खुशी इतनी थी कि उसने उम्र देखने वालों और फसल काटने वालों की भी चिंता नहीं की। इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि महीनों की मेहनत आखिर क्या होती है। गर्मी से बचने के लिए एक कपल ने बाइक पर ऐसा जुगाड़ भिड़ाया जिसने सभी को चौंका ही दिया है। आलम यह है कि इस वीडियो को लोग बार बार देख रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि गर्मी से बचने के लिए किस तरह एक कपल ने बाइक को ढका है। देखकर ऐसा लगता है जैसे बाइक नहीं बल्कि चलता फिरता घर हो। आलम यह है कि सड़क पर पलट पलट कर लोग इसे देख रहे थे। जंगल में बंद पड़े रास्ते को एक हाथी ने अपनी ताकत और समझदारी से साफ कर दिया। आईएसएफ अधिकारी प्रवीण कासवान ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो साझा किया है जिसमें एक हाथी जंगल के रास्ते को साफ करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रास्ते पर भारी लकड़ियां और पेड़ों के बड़े टुकड़े पड़े हुए थे जिनकी वजह से सड़क बंद हो गई थी। आमतौर पर ऐसे कामों के लिए जेसीबी जैसी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जंगल के अंदर हर जगह मशीनों का पहुंच पाना आसान नहीं होता। खासकर बारिश या खराब रास्तों के कारण भारी वाहन अंदर नहीं जा पाते हैं। ऐसे समय में हाथी जंगल विभाग के लिए सबसे भरोसेमंद साथी बन जाते हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक हाथी और एक छोटे से डॉगी की जबरदस्त बॉन्डिंग और मस्ती साफ नजर आती है। वीडियो में दिखता है कि एक बड़ा हाथी तालाब के किनारे खड़ा हुआ है और अपनी लंबी सूंड से पानी उछालकर उस नन्हे डॉगी पर गिरा रहा है। हाथी का अंदाज ऐसा लगता है जैसे वो डॉगी को बारिश या झरने जैसा मजा दिला रहा हो। हाथी की इस हरकत से डॉगी भी काफी खुश दिखता है। पानी की बौछारों के बीच वो उछल कूद करता रहता है जैसे उसे कोई नेचुरल शावर मिल गया हो। वीडियो में उसकी पूंछ लगातार हिलती रहती है जिससे साफ पता चलता है कि वो इस मस्ती को दिल से एंजॉय कर रहा है। साथ ही वो कई बार हाथी को फिर से पानी डालने का इशारा भी करता नजर आता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को पहली नजर में देखने से लगता है कि एक शख्स अपने हाथ पर कुछ लकड़ी की सूखी टहनियों को रखे हुए है, लेकिन अगले ही पल उन सूखी लकड़ियों में जब हलचल होती है तो पता चलता है कि ये कोई सूखी लकड़ी की टहनी नहीं बल्कि कीड़े हैं। वायरल वीडियो को लेकर जानकारी जुटाने पर पता चला कि इन कीड़ों का नाम बफ टिप मॉथ है। ये कीड़े देखने में टूटी हुई लकड़ी की टहनी के टुकड़े लगते हैं, मगर असल में ये कीड़े होते हैं। इन कीड़ों की यही सबसे बड़ी खासियत है। बफ टिप मॉथ नाम का ये कीड़ा जब आराम करता है तो वो अपने पंखों को कुछ इस तरह से मोड़ लेता है कि वो देखने में बिल्कुल लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह नजर आता है। ये कीड़ा अपने आप को शिकारी पक्षी और जानवरों से बचाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: From thousands of vehicles, Ford, Chevy, Buick, GMC, Kia, Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Genesis, and Central Ohio's largest selection of certified pre-owned. Plus, only Ryker gives you our 72-hour exchange policy and the original $1,000 best value guarantee. Drive Ryker, drive, we're dealing. Visit Ryker.com for complete details on exchange and price guarantee.
1: Good news today, इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी फिल्म के सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है नितेश तिवारी की रामायण। फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई लेकिन कमाई के मामले में पहले ही बड़े बड़े रिकॉर्ड के लिए खतरा बनने लगी है। खबर है कि मेकर्स ने सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए पूरे 450 करोड़ रुपए की डिमांड रख दी है, यानी कि रिलीज से पहले ही फिल्म का भाव आसमान छू रहा है।
4: रिलीज से पहले ही इतिहास रचने जा रही है रामायण। बड़े पर्दे पर किंग का रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी तैयारी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज से पहले ही सिनेमा की दुनिया में हलचल मचाने का दम रखती हैं। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण भी कुछ ऐसा ही धमाल मचाने की तैयारी में है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही मेगा बजट फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमक दिखाने लगी है। सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि फिल्म के मेकर्स को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। शायद यही वजह है कि मेकर्स ने फिल्म के सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए 450 करोड़ की भारी भरकम मांग रखी है। अगर राइट्स के लिए 450 करोड़ की डील हो जाती है तो ये शाहरुख खान की किंग के मौजूदा रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा होगी। किंग के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की डील करीब 250 करोड़ में हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो रामायण के थिएट्रिकल राइट्स की डील पर जल्द मुहर भी लग सकती है। अगर ये डील 300 से 400 करोड़ की बीच फाइनल होती है तो भी ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड होगा। कामयाबी की उम्मीदों के आंकड़े सिर्फ थिएट्रिकल राइट्स की डील में ही नहीं दिख रही। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा डिजिटल राइट्स के लिए 1000 करोड़ की महा डील पर भी नजरें टिकाए हुए हैं। नमित इस डील के लिए इंडस्ट्री के कई दिग्गजों से बातचीत करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स की तरफ से फिल्म के दोनों पार्ट्स की कंबाइंड स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए मेकर्स को 700 करोड़ का ऑफर मिला था, लेकिन नमित मल्होत्रा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और वो डिजिटल राइट्स के लिए 1000 करोड़ की डील ही चाहते हैं। जाहिर है अगर ये दोनों डील पक्की हो जाती हैं, तो ये फिल्म पर्दे पर आने से पहले ही टेबल प्रॉफिट का नया इतिहास रच देगी। रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायण एक भव्य पौराणिक फिल्म है। इस फिल्म में रणबीर भगवान राम की भूमिका में हैं और साउथ के सुपरस्टार यश रावण का किरदार निभा रहे हैं। माता सीता का किरदार साई पल्लवी ने निभाया है। पर्दे पर भगवान हनुमान के रूप में सनी देओल नजर आएंगे। धुरंधर की तरह ही फिल्म भी दो पार्ट्स में आने वाली है। रिलीज से काफी पहले से ही इस फिल्म का सोशल मीडिया पर बज बना हुआ है। फिल्म का पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा। ये फिल्म करीब 4000 करोड़ के भारी भरकम बजट में तैयार हो रही है। फिल्म के मेकर्स को पूरी उम्मीद है कि रिलीज के बाद ये फिल्म हिंदी सिनेमा में कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और खबरों में अब रुक करते हैं अनोखे रिकॉर्ड की ओर, जो कि बना है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट फतह करने की तमन्ना तो तमाम लोगों को होती है लेकिन वहां पर सभी का पहुंच पाना मुश्किल होता है। हालांकि दो दिन पहले ही एक साथ 250 के करीब लोगों ने चोटी पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना दिया। देखिए,
5: बर्फ से ढके इस पहाड़ पर जहां एक एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल होता है, पर्वतारोहियों की ये लंबी कतार हैरान करने वाली है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ओर बढ़ रहा पर्वतारोहियों का ये दल न केवल इस शिखर को फतह करने निकला था बल्कि इन्होंने वहां पहुंचकर अनोखा रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। बताया जा रहा है कि 20 मई को नेपाल से 274 पर्वतारोही इस चोटी पर पहुंचे और एक ही साथ इतने लोगों के एवरेस्ट फतह करने का नया रिकॉर्ड बन गया। नेपाल के एक्सपीडिशन ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी इसकी तस्दीक की है।
6: On the 20th of May 2026, above 274 people summit successfully, including the climbers and the Nepali climbing Sherpa guide. This year, 2026, more than 500 people obtained the climbing permit for Mount Everest from the Department of Tourism.
5: इससे पहले 22 मई 2019 को 223 लोग एक साथ एवरेस्ट के शिखर पर, वहाँ की आबो हवा पर असर पड़ सकता है और पर्यावरण को खतरा भी हो सकता है। लेकिन नेपाल के एक्सपीडिशन ऑपरेटर्स एसोसिएशन का कहना है कि लोगों के एक साथ जाने का ये कतई मतलब नहीं है कि सैकड़ों पर्वतारोही एक ही समय में वहां मौजूद हों, बल्कि वो अलग अलग झुंड में होते हैं।
6: Disagreed that there was a more climber because Everest is 8,000 meter and people are climbing from 5,400 meter to 8,800 meter. So they are not in gathering, they are distributing in different camps and part. So there aren't that much climber in Everest according to the size, according to the distance of the mountain.
5: हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अब हर दिन अधिकतम 250 लोगों की सीमा तय कर दी जाए ताकि निश्चित संख्या में ही लोग एवरेस्ट के शिखर तक जा सकें और वहां भीड़ न लगे, क्योंकि पर्वतारोहियों की तादाद बढ़ने से वहां पर ऑक्सीजन की कमी और एक्सीडेंट के खतरों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा पर्वतारोहियों की जान और एवरेस्ट के प्राकृतिक माहौल को बचाने के लिए सावधानी हर हाल में जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
3: पवित्र अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंदिर कर्मचारियों ने गुफा में किया प्रवेश। 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिन चलेगी यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक करीब 20 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। झमाझम बारिश के बीच बद्रीनाथ में उमड़ा आस्था का समंदर। आज विधि विधान से खुलेंगे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। चमोली के गोविंद घाट से पवित्र धाम के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। अरदास के बाद पंच प्यारों ने की अगुवाई। गुजरात के गांधीनगर में स्वामी महावीर का हुआ सूर्य तिलक। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में दोपहर 2:07 पर बना शुभ संयोग। अलौकिक घटना के गवाह बने हजारों भक्त। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट। काशी की समृद्ध कला संस्कृति को मिलेगा नया मंच। आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन की 3D इमेज जारी। ओडिशा के चांदीपुर फायर रेंज से भारत ने अग्निवन बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 700 से 900 किलोमीटर है मारक क्षमता। परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा। नैनीताल मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों तक गर्मी का असर। दोपहर के वक्त सावधानी बरतने की सलाह।

0: ये देखिए, तो अब ये 10 किलो के हथौड़े ने लगभग 4-5 बार इस कांच पर वार किया है, मारा है, आगे से तो ये चीजें टूट गई है, लेकिन ये दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भीतर कार के अंदर जो शख्सियत बैठा है क्या उसे कुछ हुआ है। ये देखिए कांच पूरी तरह से आगे से टूटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं, बड़े प्यार से हम हाथ लगा पा रहे हैं।
1: हैं कि ग्लासेस के साथ ये व्हीकल के डोर पे भी फायर किया गया है और आप देख सकते हैं कि इस तरफ से बुलेट अंदर पेनिट्रेट होती है, वेदर इट इज ग्लास और स्टील, बट अंदर के साइड वो कम्प्लीटली वो प्रोटेक्ट करती है।
2: सब स्टेट्स में सप्लाई किया हुआ है टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। जब हम इस पे SLR के शॉट्स मारते हैं, AK-47 के शॉट लेते हैं, तो ये जो कांच है वो टूट जाता है, शटर हो जाता है, लेकिन अगर अंदर से आप जब भी हम आपको दिखाएंगे तो बहुत स्मूथ है।

AK-47 की गोली हो या हथौड़े का वार, इन फौलादी सुपर कारों पर हर वार है बेकार, क्योंकि कार नहीं ये कारों की धुरंधर है। वो धुरंधर जो सड़क पर देती है सुरक्षा की 100% गारंटी।

0: और एक आम कार को धुरंधर में बदलती है वो बुलेट प्रूफ तकनीक। कारों का वो शानदार और जानदार मॉडिफिकेशन जिस पर दुनिया भर के नेता, अभिनेता, उद्योगपति और तमाम वीवीआईपी अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा करते हैं। आसान भाषा में समझे तो बुलेट प्रूफ कार का सीधा मतलब है एक ऐसा वाहन जो आपको किसी तरह के हथियारों के हमले से सुरक्षित रखे। इन गाड़ियों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। ज्यादा सुरक्षा वाली गाड़ियां तो हैंड ग्रेनेड या रॉकेट लॉन्चर के हमले से भी बचा सकती हैं। वीवीआईपी और नेताओं को गंभीर सुरक्षा खतरों के कारण ऐसी गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। भारत में ऐसी कई गाड़ियां विदेशों से इंपोर्ट की जाती हैं, लेकिन अब भारत में भी कुछ कंपनियां इन धुरंधर कारों को तैयार कर रहे हैं। आज आपको ले चलेंगे मुंबई से करीब 260 किलोमीटर दूर अहिल्यानगर में मौजूद एक ऐसी ही कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जो पिछले कई सालों से भारत की जमीन पर जोरदार बुलेट प्रूफ कारें तैयार करती आ रही है। शील्ड आर्मरी, जहां देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, बड़े उद्योगपतियों, विदेशी मेहमानों, राजनेताओं और फिल्मी हस्तियों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां तैयार की जाती हैं। साथ ही शील्ड आर्मरिंग, पुलिसिंग, गंगा कंट्रोल और हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए सुरक्षा बलों के काम आने वाली आर्म गाड़ियां भी तैयार करती हैं। शील्ड आर्मरिंग ने हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस के लिए 6 PAMA आर्म्ड व्हीकल तैयार किए हैं। ये कार नहीं बल्कि सुरक्षा के मामले में ये चलते फिरते टैंक है।
1: देश की जनता की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा जिन हाथों में है, उनकी सुरक्षा किन हाथों में है, ये एक अहम सवाल है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। इसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीर में ये बुलेट प्रूफ कार दिखाना चाहता हूँ, जो अभी अभी अत्याधुनिक तरीके से बनाकर तैयार की गई है। स्टेट पुलिस को ये दी जाने वाली है और शहर के उन कोनों में ये खड़ी रहेगी जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध स्थल है। सवाल ये भी है कि आखिर इस तरह की बुलेट प्रूफ कार कैसे बनती है, कहाँ बनाई जाती है, क्या चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती है। इंडिया टुडे ग्रुप में आप ये सारी चीजें इस समय एक्सक्लूसिव देख रहे हैं।
0: ये बख्तरबंद गाड़ियां रिस्की ऑपरेशंस में तैनात पुलिस जवानों को सुरक्षा का नया कवच प्रदान करेंगी। स्टेट पुलिस की सेवा में पहले से मौजूद बख्तरबंद गाड़ियों की तुलना में ये व्हीकल ज्यादा एडवांस्ड, अपग्रेडेड और बेहतर प्रोटेक्शन देने वाला है।
2: हाँ, ये हमारी ब्रांड की व्हीकल है जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो इसे यूज करना चाहते हैं, तो ये 100% हमारा डिजाइन है जो ये व्हीकल हमने डेवलप की है।
1: अच्छा, थोड़ा सा बताएं ना अंदर चल करके किस तरीके से क्या बनाए, क्या खासियत है, क्योंकि पहली बार ये चीजें कैमरे पर आ रही हैं।
2: जी, तो ये सबसे पहली बात, ये पूरा जो व्हीकल है वो 360 डिग्री प्रोटेक्शन है। जब हम 360 डिग्री प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि इसे कोई भी एंगल से पेनिट्रेशन की चांसेस नहीं है। कहीं से भी अगर बुलेट आ रही है, कहीं से भी इसको गलत फायरिंग हो रही है, तो ये प्रोटेक्ट करती है। इसके चारों साइड्स हैं, इसका रूफ है, इसका बॉटम है, ये सारा कम्प्लीटली आर्मर्ड होता है। इसके आप जितने भी ये ग्लासेस देख रहे हैं, ये बहुत ही हैवी ग्लासेस होते हैं जो AK-47 SLR जैसे जो वेपन्स होते हैं उसको वो इजीली प्रोटेक्ट कर सकता है।
1: अच्छा, और ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, ये क्या है?
2: तो सर ये ऐसा है कि जब हमारे फोर्सेज होते हैं, जब हमारे पुलिस जवान कभी कोई मिशन में जाते हैं और वहाँ पर से अचानक से फायरिंग हो गई, तो उनको अंदर से ही बैठ के रिटेलिएट करना है, उन्हें अंदर से बैठ के जब फायरिंग करनी है तो वो अपना बैरल इस स्पॉट से, इसे गन पोर्ट कहते हैं, वहाँ से निकाल के उसे ईजिली फायर कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो गए, वीवीआईपी प्रोटेक्शन हो गए, वो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। इस व्हीकल के अंदर अगर आप टॉप पे देखें तो ये 360 डिग्री टरेट है जहां पर जवान बाहर निकलता है, वो अपना गन माउंट करता है और उसको 360 डिग्री उसे फायर करने के चांसेस है। तो अगर कहीं से भी फायर हो रहा है तो उसे व्हीकल घुमाने की जरूरत नहीं है, उसको सिंपल वो टरेट है उसको घुमाएगा, वो सेल्फ प्रोटेक्टेड रहेगा और उसी वक्त वो फायर कर सकता है। इस व्हीकल की और एक खासियत है, अगर आप ये देखेंगे तो ये जितने भी स्लॉट्स हैं, ऐसे टोटल 4 स्लॉट्स हैं व्हीकल में,

0: ये वाली तस्वीर भी दिखाया है, पीछे यहाँ पर भी जो है बैठ सकते हैं हमारे ऑफिस।
1: यस, तो इसके अंदर टोटल ये जो मॉडल है इसके अंदर 6 सीटर है। तो जब 6 सीटर की बात करते हैं तो फ्रंट में 2 है, साइड्स में 2 है और जो रेयर है उसमें 2 है। इसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन भी आता है जो फर्दर इसको क्या बोलते हैं सीटिंग कैपेसिटी को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि एज पर स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट और फोर्सेस के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है। कोई से हमें 6 सीटर भी बना सकते हैं, 4 सीटर भी बना सकते हैं, 8 सीटर भी बना सकते हैं। तो डिफरेंट सीटिंग कैपेसिटी, ईच सीटिंग इस तरह से बनाई गई है कि जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का वो क्विक एंट्री एंड एग्जिट हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट इसमें होता है कि आप कितना फास्ट मूव इन करते हो और मूव आउट करते हो। तो ये सारी चीज़ का यहाँ पर ध्यान दिया गया है। ये पूरा 100% डिज़ाइन है अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ है और इसके अंदर जितने भी मटेरियल्स लगे हुए हैं सब हमारी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नतीजे से ये व्हीकल तैयार हुई।
2: बात जब बुलेट प्रूफ कार की हो तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि बुलेट प्रूफ कार असल में कोई अलग गाड़ी नहीं होती, बल्कि एक नॉर्मल कार को खास तकनीक के जरिए मजबूत बनाया जाता है ताकि वो गोलियों और दूसरे हमलों से बचा सके। किसी भी कार को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए उसमें बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास, दरवाजों और बॉडी में स्टील या खास मटेरियल की प्लेटिंग, मजबूत छत और रन फ्लैट टायर लगाए जाते हैं। इस मॉडिफिकेशन के लिए जरूरी है कि कार में अतिरिक्त वजन सहन करने की क्षमता हो, क्योंकि सुरक्षा के लिए जो स्टील की सीट्स और मोटे शीशे लगाए जाते हैं उनमें गाड़ी का वजन लगभग 1000 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। यही वजह है ज्यादातर लोग बुलेट प्रूफ बनवाने के लिए SUV को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनका इंजन और चेसिस दूसरी गाड़ियों की तुलना में मजबूत होता है। भारत में आमतौर पर टाटा सफारी, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर, इनोवा या लग्जरी सेगमेंट में BMW और ऑडी जैसी कंपनियों की गाड़ियां बुलेट प्रूफ करवाई जाती हैं।
0: हमने आपको दिखाया कि फोर्स और पुलिस किस तरह की सुरक्षा भरी कार का इस्तेमाल करते हैं, कि बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब चल रहे हैं हम उस तरफ जहां पर VIP, VVIP मिनिस्टर्स भी अपने कार का इस्तेमाल करते हैं पूरी तरह से सुरक्षित और बुलेट प्रूफ। ये देखिए लैंड क्रूजर नाम की कार यहाँ पर खड़ी हुई है और पूरी तरह से बनकर तैयार है। हम सीधे अब इसके भीतर जाएंगे और कैसा लगता है भीतर बैठ करके और किस तरीके से होती है सुरक्षा उस बारे में भी जानकारी लेंगे। और पूरी तरह से लैंड क्रूजर को बना करके तैयार करके रख दिया गया है। जिस किसी भी दिग्गज ने बनाने का इन्हें ऑर्डर दिया है अब बहुत जल्दी उन्हें ये कार डिलीवर भी हो जाएगी। लेकिन भीतर से इसका नजारा कैसा होगा ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लैंड क्रूजर कार है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ हो चुकी है। अंदर मैं बैठा हुआ हूं, उसी तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ है जैसे नॉर्मल कार के होते हैं। बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है कि ये बुलेट प्रूफ कार है। और मेरे साथ में सुरेंद्र सिंह राठौर मौजूद ही हैं, साथ ही साथ इंद्रजीत सिंह राठौर भी मौजूद हैं। थोड़ा सा बताएं, पता ही नहीं चल पा रहा कि ये बुलेट प्रूफ कार बन चुकी है और आपने इसे सजा दिया, बना दिया, कैसे, क्या, कहाँ पर, क्या खासियत, कैसे पता चलेगा, क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा बताएं।
3: अभी आप जब यहाँ पर देखेंगे इसकी जो प्रोटेक्शन है वो हमने 360 डिग्री दी है। ये ऊपर के साइड पे भी पूरी प्रोटेक्टेड है, साइड पे भी है, दरवाजों में भी है। ये जैसे आप ग्लास देखेंगे तो ये 40mm का ग्लास है, काफ़ी थिक ग्लास है। तो इससे क्या AK-47 SLR ये सब चीज़ें अपना प्रोटेक्ट हो जाती है। और इसका आप इसकी ब्यूटी ये है कि ये आपको आइडेंटिफाई करनी नहीं चाहिए कि ये आर्मर्ड व्हीकल है कि नॉर्मल व्हीकल है। आप इसकी अगर कम्फर्ट देखेंगे तो कम्फर्ट एज इट इज़ जो ओरिजिनल की कम्फर्ट है वो मिल रही है। आपके जो प्लास्टिक्स है, आपके जो ट्रिम्स है, आपके जो डोर पैड्स है वो एज इट इज़ ओरिजिनल जैसे लग रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर ये गाड़ी की बात की जाए तो ये 2 करोड़ की गाड़ी है। तो जो बंदा ये 2 करोड़ जो पैसे खर्च रहा है वो किस चीज़ के लिए खर्च रहा है? वो ये खर्च रहा है कि इसका कम्फर्ट मिले। इसकी जो उसने कम्फर्ट के पैसे दिए हैं, इसके जो फीचर्स के पैसे दिए हैं, अगर हमने उसको बुलेट प्रूफ में ऐसा कर दिया कि फीचर्स ही ना काम आए तो फिर ये कम्फर्ट का जो उन्होंने पैसा खर्चा उसका यूज़ नहीं आएगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि एज इट इज़ जो ओरिजिनल है जो भी मॉडिफिकेशन की गई है वो अंदर से की गई है, आउटर लुक को एज इट इज उसको मेंटेन किया गया है कि वो आइडेंटिफाई ना हो कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है।
4: अच्छा, मतलब ये कि भाई सुरक्षा कवच इस कार में जो कुछ लगा हुआ है वो सब आपने छिपाया, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया।
3: यस, क्योंकि अगर दिखा दे तो क्या है कि कभी कॉन्वॉय में तीन गाड़ियां चल रही है, चार गाड़ियां चल रही है, तो अगर कोई अटैक करता है तो उसे ये नहीं पता होना चाहिए कि कौन से गाड़ी में बुलेट प्रूफ हुआ है, कौन से में नॉर्मल। तो इसकी जो हाइट है वो भी हमको मेंटेन करनी पड़ती है कि ओरिजिनल गाड़ी जो नॉर्मल गाड़ी है और हमारी जो आर्मर्ड गाड़ी है वो सेम जैसी की दिखनी चाहिए।
2: अब आपको बताते हैं कि किसी कार को बुलेट प्रूफ कैसे बनाया जाता है। वास्तव में किसी भी सामान्य कार को बुलेट प्रूफ बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। इसमें कार के इंजन को छोड़कर लगभग पूरे हिस्से को बदल दिया जाता है। दरवाजों से लेकर विंडशील्ड, खिड़कियां, छत और यहां तक कि पूरा पैनल भी बुलेट प्रूफ मटेरियल से बदला जाता है। बुलेट प्रूफिंग से जुड़ा सारा काम होता है अहिल्या नगर में मौजूद इस कारखाने में, जहां लगभग 100 लोगों की टीम एक आम गाड़ी को मॉडिफाई कर मजबूत और सुरक्षित किले में तब्दील कर देती है।
0: ये देखिए, इस तरह से जो दरवाजे अभी हमने आपको दिखाया है, इस तरह से दरवाजे खोल दिए गए हैं, सिर्फ इंजन छोड़ करके इस गाड़ी के सारे पार्ट को निकाल दिया गया है और अब बुलेट प्रूफ चीजें उस गाड़ी में, उस कार में लगाने का कार्य जो है वो शुरू है। और मुझे लगता है, जैसा कि अभी सुरेंद्र सिंह राठौर ने हमें बताया है, 15-20 दिन में ये भी लग्जरी कार जो है ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं?
1: हाँ जी, एकदम सही। तो अभी इस वक्त हमने क्या किया है, जब ये जो नई गाड़ी आई थी उसको हमने लिया है, उसका पूरा स्ट्रिप डाउन किया है। तो जब आप देखेंगे तो इसके अंदर सब इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके सीट्स, इसके अंदर अपॉल्स्ट्री, ये सारी निकाल दिए हैं। इसके अंदर हमने रीइंफोर्स किया इसे आर्मर्ड स्टील के साथ, जहां जहां हमें लगता है कि 360 डिग्री प्रोटेक्शन देनी है वहां पर इसे हमने स्टेंटेन किया है और इस व्हीकल को वापस ग्राउंड से बिल्ट अप किया है। तो हम जब ग्राउंड से बिल्ट अप करते हैं तो इसका पहले फ्लोर बनाते हैं, फिर इसके साइड्स बनाते हैं, फिर रूफ बनाते हैं। तो इसे कंप्लीट एक केज जैसा बनाते हैं जिसे हम 360 डिग्री प्रोटेक्शन कहता है। इसका ये फायदा है कि ये बुलेट से तो प्रोटेक्ट करेगा, बट अभी अगर रोड पे एक्सीडेंट हो गया, व्हीकल टंबल होगी, इन दैट सिनेरियो आल्सो ये व्हीकल बहुत ही सेफ होती है।
0: अच्छा, ये थोड़ा सा भी हाइट में उठेगी नहीं?
1: नहीं, ये बहुत हैवी होती है व्हीकल, तो इसका नॉर्मल जो एड ऑन वेट होता है तकरीबन 1000 केजीज इसमें बढ़ जाता है। तो इसके वजह से व्हीकल बहुत सेफ होती है, ये रोड को पकड़ के चलती है। आपने देखा होगा बहुत सारे VVIPs, पॉलिटिशियंस ये व्हीकल को एवरीडे यूज के लिए यूज करते हैं।
2: एक बुलेट प्रूफ कार की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके टायर। हमले की स्थिति में भी गाड़ी चलती रहे इसके लिए खास रन फ्लैट ट्यूबलेस टायरों का इस्तेमाल किया जाता है।
1: इतना टाइम हमने ये देखा है कि जब एक्चुअल में फायरिंग होती है तो उन लोग है ना व्हीकल के टायर्स को टारगेट करते हैं। जब उसे टारगेट करते हैं तो जाहिर है कि व्हीकल रुक जाएगी, उन्हें ज़्यादा समय मिल जाएगा और उसे फिर फायर करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि ये जो व्हीकल का जो टायर है इसके अंदर रन फ्लैट सिस्टम लगा हुआ है। ये रन फ्लैट सिस्टम क्या करता है, जब इसके अंदर डिफ्लेट होगा, बुलेट लगेगी तो ये पूरा जो एयर है डिफ्लेट हो जाएगा, उसके बाद में जो टोटल वेट है ये रन फ्लैट सिस्टम पे आ जाएगा और उसके अलावा ये 350 किलोमीटर्स तो भी ये जा सकता है। पूरा डिफ्लेट होने के बाद में 50 किलोमीटर आपकी व्हीकल को ये अलग जगह पर लेके जा सकता है, जहाँ पर आप सुरक्षित हो वहाँ तक ये आपको पहुँचा देगा।
0: अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये जो टायर है ये कौन सी कंपनी का आप लोग इस्तेमाल करते हैं या खुद ही बनाते हैं?
1: नहीं, जो टायर है वो OEM के जो हो सकता है वो कोई भी मेक का हो सकता है, उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो इसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है वो उसे प्रोटेक्ट करेगा।
2: इसी तरह बुलेट प्रूफिंग के लिए खास तरह की स्टील शीट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मोटाई लगभग 6.5 mm तक होती है। तो वही पूरी गाड़ी का सबसे कमजोर हिस्सा शीशा होता है, इसलिए इसमें 45-55 mm तक का मोटा कई परतों वाला ग्लास लगाया जाता है।
1: तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स हैं जिसमें अलग अलग थिकनेस ऑफ मटेरियल हमने टेस्ट किया है। सो वेदर उसमें AK-47 हो गया या तो SLR हो गया, जो ये कॉमन थ्रेट परसेप्शन जो होते हैं, जो टेररिस्ट लोग यूज़ करते हैं, जो नक्सलवादी लोग ये वेपन्स यूज़ करते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो स्टील और ग्लास पे कुछ इस तरह का होता है। ये जब बुलेट लगती है तो सिर्फ इतना सा एक इम्पैक्ट होता है।
5: अच्छा,
3: और यहाँ पर एक दरवाजा भी रखा हुआ है और ये शायद गोलियों के निशान है, एक नंबर, दो नंबर, तीन, चार, पाँच, छह, ये क्या है जी?
6: सर इसमें क्या है कि पूरी व्हीकल को जब बन गई है तो उसके ऊपर हमने ये फायर करवाया हुआ है, तो ये उसी का एक सैंपल डोर है। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लासेस के साथ ये व्हीकल के डोर पे भी फायर किया गया है, और आप देख सकते हैं कि इस तरफ से बुलेट अंदर पेनिट्रेट होती है, वेदर इट इज ग्लास और स्टील, पर अंदर के साइड वो कम्प्लीटली वो प्रोटेक्ट करती है।
3: अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी है ये कांच की, और क्या कहते हैं कांच का, और कैसे इसे बनाया जाता है?
6: तो ये इसके अंदर 5 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है। ये एक सैंडविच ग्लास होता है जिसमें ग्लास होता है, उसमें 5 अलग अलग तरह के मटेरियल्स लग के उसे वो 100% प्रोटेक्ट करने के लिए 40 mm थिक होता है, जो स्टैंडर्ड मटेरियल है, थिकनेस है उसके हिसाब से। और इसके अंदर नीचे यहाँ पर कम्प्लीटली जैसे हमने ये आर्मर्ड स्टील देखी, वो आर्मर्ड स्टील लगा हुआ है।
3: और वहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि ये कांच लगा हुआ है। थोड़ा सा इंद्रजीत जी आप बताएं, ये कांच आगे का कांच है ना या पीछे का है? पीछे
7: ये का स्क्रीन है, ये विंडस्क्रीन है। तो इस पे जैसे हमने हैमर शॉट्स दिए हुए हैं, तो हैमर शॉट्स के बाद में भी जैसे हमने आपको दिखाया कि गन शॉट्स के, तो आपने सैंपल्स देखे। अगर कोई किसके दिमाग में रहता है कि नहीं इतना बड़ा हैमर लेके फिर भी प्रोटेक्ट करेगा, तो इसके लिए हमने आपको ये हैमर शॉट्स के भी डिस्प्ले बना के रखा है।
2: जहाँ एक टेक्टिकल व्हीकल को बनाने में 15 दिन से 1 महीने का समय लगता है, वहीं VIP सुरक्षा के लिए एक आम कार को बुलेट प्रूफ कार में बदलने के लिए 15 से 20 दिन का समय लगता है। बुलेट प्रूफिंग के तमाम स्टेप से गुजरने के बाद जब एक आम कार किले में तब्दील होकर खास हो जाती है, तब बारी आती है टेस्टिंग की। इसके लिए तैयार बुलेट प्रूफ कार के पार्ट्स को मजबूती की टेस्टिंग के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स में भेजा जाता है।
7: इसमें जैसे गुजरात में लैब है, चंडीगढ़ में लैब है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो इसको टेस्ट करती हैं। जैसे एक हमारे पास में अगर मटेरियल का लॉट आ गया, स्टील का लॉट आ गया, ग्लास का लॉट आ गया, हमने वो स्टील के लॉट को अपना सैंपल टेस्ट कर दिया, जैसे आपको दिखाया, दैट इज ये 300x300 का हमने अपना एक शीट काटा है। ये कटिंग करके हमने इसके ऊपर 6 शॉट्स लिए हैं, SLR के हो गए, AK-47 के हो गए, जो ग्लास है ये आपके पीछे ये 500x500 का है, इस पर भी हमने शॉट लिया। हमारी कंपनी एक एडिशनल चीज़ करती है, जब आर्मरिंग पूरी ख़त्म हो जाती है तब उसको हम पूरी बुलेट प्रूफ करके एजेंसी में भेजते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं। तो जैसे ये गाड़ी का आपको जैसे हमने डोर दिखाया है, कि ये गाड़ी का डोर का ये खासियत है कि ये सिर्फ डोर टेस्ट नहीं हुआ है, ये पूरी गाड़ी उनके पास में गई है, वो गाड़ी के ऊपर उन्होंने टेस्ट किया है, फिर हमने वो डोर को रिप्लेस करके ये डोर को अपना एज अ डेमो पीस रखा है।
2: बुलेट प्रूफिंग और टेस्टिंग की तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इस कारखाने से निकली कार एक चलते फिरते किले में तब्दील हो जाती है। आज देश के कई राज्यों में यहां से निकली बुलेट प्रूफ कारें पहुंचती हैं। तमाम राज्यों में भेजी गई मॉडिफाइड कारों के सैंपल्स को इस कारखाने में बेहद शान से डिस्प्ले किया गया है।
0: और ये तस्वीरें देखें, अलग अलग राज्यों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, बहुत सारे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे कांच भी लगा हुआ है जो टूटे फूटे कांच है, थोड़ा सा बताएं ये क्या है, क्या चीज है, कहाँ पर आपने क्या किया है ये, मतलब
7: ये हमारा एक हमने डिस्प्ले बनाया हुआ है, ये हमने सब स्टेट्स में सप्लाई किया हुआ है टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। जब हम इस पे SLR के शॉट्स मारते हैं, AK-47 के शॉट लेते हैं, तो ये जो कांच है वो टूट जाता है, शाटर हो जाता है, लेकिन अगर अंदर से आप जब हम आपको दिखाएंगे तो बहुत स्मूथ है, तो अंदर कोई भी पेनिट्रेशन नहीं है। इसके लिए हमने एक वॉल एक बनाया है, एक डिस्प्ले वॉल है, कि ये सब स्टेट्स में हमने दिया, और इससे ज़्यादा स्टेट्स भी हमारे ऐड हुए हैं, लेकिन अभी तक हमने उसको अपना डिस्प्ले पे नहीं डाला गया
0: है। मतलब अलग अलग राज्यों में आपने जाँच प्रक्रिया पूरी करी है,
7: जहाँ जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स यूज़ कर रही है ये उनकी टेस्ट।
2: ये तो थी बात बुलेट प्रूफिंग की, अब बात करते हैं इसमें आने वाले खर्च की। क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये कार्य खास है, इसलिए दाम भी आम नहीं। बुलेट प्रूफिंग का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी सुरक्षा चाहते हैं। अगर गाड़ी को सिर्फ गोलियों के हमले से बचाना है तो ये खर्च 20 लाख से 50 लाख रुपए के बीच आ सकता है। ये बेसिक लेवल की सुरक्षा होती है जो पिस्टल या छोटे हथियारों से बचाने के लिए होती है, लेकिन अगर आप AK-47 जैसी राइफल, हैंड ग्रेनेड जैसे ज्यादा शक्तिशाली हथियारों से सुरक्षा चाहते हैं तो ये खर्च बढ़कर करोड़ों में पहुंच सकता है। ये खर्च इतना ज्यादा क्यों होता है ये भी समझना जरूरी है। दरअसल कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे आप कौन सी कार को मॉडिफाइड कर रहे हैं, उनमें कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास, भारी स्टील प्लेटिंग, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, फायर सिस्टम और खास टायर जैसी चीजें कीमत को काफी बढ़ा देती हैं।
5: इसमें जैसे ये गाड़ियां हैं वो अलग अलग टाइप की प्रोटेक्शन के ऊपर जाती है। अगर किसको हैंड पिस्टल से लेनी है तो वो स्टार्ट हो जाती है, एक 50 लाख से चालू हो जाती है, तो वो एक 2.5-2 करोड़ तक अपना जाती है अपना। उसमें AK-47 की भी प्रोटेक्शन है, SLR की भी प्रोटेक्शन है, बॉम्ब प्रोटेक्शन भी है, तो हर तरीके से प्रोटेक्शन देता है। अगर उसको और लाइट बनाना है हमको तो हम उसके लिए कॉम्पोजिट यूज़ करते हैं, जो स्टील नहीं होता है वो बहुत लाइट होता है, उसमें कि ये गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होती है।
2: मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद इस कंपनी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनाने का काम शुरू किया था। अब ये गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कस्टमाइज्ड बैलिस्टिक प्रोटेक्शन और एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशन दे रही है। इतने सालों से शील्ड आर्मरिंग भारत के आर्म मोबिलिटी डिफेंस सिक्योरिटी और मोबिलिटी इंजीनियरिंग के मेल पर काम करते हुए बदलते खतरों के हिसाब से एंड टू एंड प्रोटेक्शन सॉल्यूशन देती आ रही है।
1: तो ये शुरुआत ऐसे हुई कि जब 26/11 हुआ तो हमें एक नीड ये लगी कि सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स उस वक्त इंडिया में इतने क्वालिटी के जो इंटरनेशनल क्वालिटी के नहीं थे, तो जो ऑपरेशन जब यहाँ पर हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे लैप्सेस देखे गए, वेदर वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात की जाए या तो व्हीकल्स की बात की जाए, तो उस लेवल का प्रोडक्ट नहीं था यहाँ पर। तो तब ये दिमाग में आया कि हमें कुछ इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इंडिया में लेके जाने चाहिए ताकि हमारे जवान हैं, हमारे VVIPs हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, वो सारे इसको क्या बोलते हैं अपने आप को सुरक्षित कर सके। तो बस वो एक सोच था और तब से हमने स्टार्ट किया। 2011 हमने ये कंपनी स्टार्ट की और एक स्टेट से स्टार्ट किया, तकरीबन 18 राज्य के स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी व्हीकल्स यूज़ कर।
2: ये वो सुपर कारें हैं जिनके आगे बुलेट बेअसर है, भारी हथियारों का वार भी बेकार है, सड़क पर चलता फिरता आर्म्ड टैंक है ये कारें। यही वजह है कि देश भर में सरकारों से लेकर असरदारों तक इन धुरंधर कारों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। अहिल्यानगर से साहिल चौहान और धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
11: बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी फिल्म के सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है नितेश तिवारी की रामायण। फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई लेकिन कमाई के मामले में पहले ही बड़े बड़े रिकॉर्ड के लिए खतरा बनने लगी है। खबर है कि मेकर्स ने सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए पूरे 450 करोड़ रुपए की डिमांड रख दी है, यानी कि रिलीज से पहले ही फिल्म का भाव आसमान छू रहा है।
12: रिलीज से पहले ही इतिहास रचने जा रही है रामायण। बड़े पर्दे पर किंग का रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी तैयारी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज से पहले ही सिनेमा की दुनिया में हलचल मचाने का दम रखती हैं। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण भी कुछ ऐसा ही धमाल मचाने की तैयारी में है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही मेगा बजट फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमक दिखाने लगी है। सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि फिल्म के मेकर्स को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। शायद यही वजह है कि मेकर्स ने फिल्म के सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए 450 करोड़ की भारी भरकम मांग रखी है। अगर राइट्स के लिए 450 करोड़ की डील हो जाती है तो ये शाहरुख खान की किंग के मौजूदा रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा होगी। किंग के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की डील करीब 250 करोड़ में हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो रामायण के थिएट्रिकल राइट्स की डील पर जल्द मुहर भी लग सकती है। अगर ये डील 300 से 400 करोड़ के बीच फाइनल होती है तो भी ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड होगा। कामयाबी की उम्मीदों के आंकड़े सिर्फ थिएट्रिकल राइट्स की डील में ही नहीं दिख रही। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा डिजिटल राइट्स के लिए 1000 करोड़ की महाडील पर भी नजरें टिकाए हुए हैं। नमित इस डील के लिए इंडस्ट्री के कई दिग्गजों से बातचीत करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स की तरफ से फिल्म के दोनों पार्ट्स की कंबाइंड स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए मेकर्स को 700 करोड़ का ऑफर मिला था, लेकिन नमित मल्होत्रा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और वो डिजिटल राइट्स के लिए 1000 करोड़ की डील ही चाहते हैं। जाहिर है अगर ये दोनों डील पक्की हो जाती हैं, तो ये फिल्म पर्दे पर आने से पहले ही टेबल प्रॉफिट का नया इतिहास रच देगी। रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायण एक भव्य पौराणिक फिल्म है। इस फिल्म में रणबीर भगवान राम की भूमिका में हैं और साउथ के सुपरस्टार यश रावण का किरदार निभा रहे हैं। माता सीता का किरदार साई पल्लवी ने निभाया है। पर्दे पर भगवान हनुमान के रूप में सनी देओल नजर आएंगे। धुरंधर की तरह ही फिल्म भी दो पार्ट्स में आने वाली है। रिलीज से काफी पहले से ही इस फिल्म का सोशल मीडिया पर बज बना हुआ है। फिल्म का पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा। ये फिल्म करीब 4000 करोड़ के भारी भरकम बजट में तैयार हो रही है। फिल्म के मेकर्स को पूरी उम्मीद है कि रिलीज के बाद ये फिल्म हिंदी सिनेमा में कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
11: पवित्र अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंदिर कर्मचारियों ने गुफा में किया प्रवेश। 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिन चलेगी यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक करीब 20 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। झमाझम बारिश के बीच बद्रीनाथ में उमड़ा आस्था का समंदर। आज विधि विधान से खुलेंगे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। चमोली के गोविंद घाट से पवित्र धाम के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। अरदास के बाद पंच प्यारों ने की अगुवाई। गुजरात के गांधीनगर में स्वामी महावीर का हुआ सूर्य तिलक। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में दोपहर 2:07 पर बना शुभ संयोग। अलौकिक घटना के गवाह बने हजारों भक्त। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट। काशी की समृद्ध कला संस्कृति को मिलेगा नया मंच। आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन की 3D इमेज जारी। ओडिशा के चांदीपुर फायर रेंज से भारत ने अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 700 से 900 किलोमीटर है मारक क्षमता। परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा। नैनीताल मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों तक गर्मी का असर। दोपहर के वक्त सावधानी बरतने की सलाह।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
13: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश कर दिया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोस दी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है। कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर रहती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इसे सच मानकर शेयर कर देते हैं। यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ कर देते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले फैक्ट चेक में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि महिला पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर खुशी मना रही थी, लेकिन अब राज्य की नई सरकार ने इसी का घर गिरवा दिया। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, बताएंगे आपको। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के साथ जुड़ी है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि एक हिंदू लड़की से इश्क करने पर एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई। क्या है वायरल दावे की यहाँ पर सच्चाई, वो भी आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़। और
13: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर खुशी मना रही महिला का घर नई सरकार ने बुलडोजर से गिरा दिया। वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करती इस रिपोर्ट में देखिए।

0: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। हाल ही में हावड़ा रेलवे स्टेशन और सियालदा रेलवे स्टेशन के बाहर ये अभियान चलाया गया। वहीं कोलकाता के तिलजला इलाके में अतिक्रमण हटाने को लेकर वहां के स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच टकराव हुआ, जिसमें 8 जवान घायल हो गए। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो शेयर करते हुए कुछ लोग लिख रहे हैं कि एक महिला जो बंगाल में बीजेपी की जीत की खुशी मना रही थी, राज्य की नई सरकार ने उसी का घर गिरवा दिया। वीडियो में एक के बाद एक दो क्लिप्स नजर आती हैं। पहली क्लिप में भगवा टी शर्ट पहने हुए और भगवा गुलाल लगाए हुए एक महिला मजेदार स्टाइल में डांस करती दिख रही है। वहीं दूसरी क्लिप में टूटी फूटी इमारतों के बीच खड़ी एक महिला रो रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कई लोगों का कहना है कि जो महिला बंगाल में बीजेपी की जीत की खुशी में नाच रही थी, उसी का घर बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद तोड़वा दिया। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बंगाल में चुनाव के समय यह अंध भक्तिन खूब नाच नाच कर डांस कर रही थी बीजेपी के लिए। बीजेपी बंगाल जीती, फिर बुलडोजर चला तो इस अंध भक्तिन का घर भी लपेटे में आ गया। अब कह रही है बीजेपी को नहीं जीतना चाहिए था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये महिला पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर खुशी मना रही थी, लेकिन अब राज्य की नई सरकार ने इसी का घर गिरवा दिया। अब ये महिला रो रोकर ये बोल रही है कि बीजेपी को वोट देकर उसने गलती कर दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले दोनों वीडियोस के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में नजर आ रही दोनों ही महिलाओं के चेहरे को जूम करके हमारी टीम ने जब ध्यान से देखा तो ये सामने आया कि दोनों महिलाएं अलग अलग हैं। मतलब दो वायरल क्लिप्स को जोड़कर इस वीडियो को तैयार किया गया है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके अलावा पहला सवाल क्या है इसी वीडियो से रिलेटेड, वो आपको दिखा देते हैं। अगर दावा वाकई सही है तो वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है? दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए सियासी अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? आखिर सच्चाई क्या है, आपको इस वीडियो में दिखाते हैं।
0: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल के लिए दोनों वीडियो की जांच की। पहली क्लिप में गुलाबी रंग का एक मंदिर नजर आ रहा है। सर्च के जरिए इसके बारे में हमें पता लगा कि ये पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नतुनपुल्ली न्यू टाउन इलाके का राधा कृष्ण मंदिर है। गूगल मैप्स पर भी इस मंदिर की तस्वीरें मौजूद हैं। साफ पता चलता है कि ये उसी मंदिर की तस्वीरें हैं जो वायरल वीडियो में नजर आ रहा है। सर्च के जरिए साफ हो गया कि ये वीडियो न्यू टाउन का ही है और इसमें दिख रही महिला मानसी हल्दर नाम की बीजेपी समर्थक है, जो 4 मई को चुनाव नतीजों के दिन बीजेपी की जीत की खुशी मनाते हुए डांस रही थी। मानसी और उनके पति सुखरंजन हल्दर दोनों ही बीजेपी समर्थक हैं, जो न्यूटाउन के विवेकानंद पल्ली इलाके में रहते हैं और नई सरकार के गठन के बाद से अब तक इस इलाके में कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी क्लिप को रिवर्स सर्च करने से ये हमें एक न्यूज आउटलेट की 12 जून 2025 की रिपोर्ट में मिली। रोती हुई महिला वाला वीडियो इसी 10 मिनट 45 सेकंड की रिपोर्ट से लिया गया है। ये रिपोर्ट दिल्ली के कालकाजी में हुई डीडीए की बुलडोजर कार्रवाई से संबंधित है। वीडियो में महिला भगवान की मूर्ति पकड़कर खड़ी है और कह रही है कि बीजेपी के राज में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। वहां मौजूद दूसरे लोग भी रिपोर्टर से बातचीत के दौरान अपना घर तोड़े जाने पर दुख जाहिर कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अब वो कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इस वीडियो को उस वक्त कांग्रेस ने भी शेयर किया था और आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार के राज में दिल्ली में मंदिर भी तोड़ दिए गए। एक आधिकारिक न्यूज आउटलेट पर 11 जून 2025 को छपी एक खबर के मुताबिक कालकाजी के पास भूमिहीन कैंप इलाके में अवैध अतिक्रमण का ये मामला लगभग 10 साल कोर्ट में चला था, लेकिन झुग्गी वासियों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। कोर्ट के आदेश के बाद ही ये अवैध निर्माण गिराए गए थे। इस दौरान 344 घर गिराए गए थे जिनमें 1200 परिवार रहते थे। साफ है दोनों क्लिप्स में दिख रही महिलाएं अलग अलग हैं। पहली क्लिप बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की है, जहां मानसी हल्दर नाम की बीजेपी समर्थक 4 मई को पार्टी की जीत के बाद खुशी मना रही थी। वहीं दूसरी क्लिप जून 2025 में दिल्ली के कालकाजी में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान का है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक पर बीच बाजार में चाकू से हमला किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करके यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि एक हिंदू लड़की से इश्क करने पर एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई। वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करते इस वीडियो में देखिए।
2: सोशल मीडिया पर यह हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। एक शख्स के हाथ में चाकू है, निशाने पर एक व्यक्ति है जिसे पीछे से एक दूसरे व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है ताकि वो चाकू के वार से बच नहीं पाए। बीच सड़क पर यह खूनी खेल चल रहा है लेकिन कोई इसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। लोग वहां से गुजर रहे हैं लेकिन इनकी अनदेखी करके आगे बढ़ जा रहे हैं। यहां तक कि किसी ने पुलिस को भी इसके बारे में सूचना नहीं दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो को धार्मिक एंगल देकर धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है। लोग वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर इसे शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को सांप्रदायिक एंगल देकर वायरल करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़के को एक हिंदू लड़की से प्यार करना महंगा पड़ गया, बाजार में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले तो वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बड़े ही गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में एक बोर्ड नजर आया, उसमें तेलुगु में कुछ शब्द लिखे मिले, मतलब ये वीडियो तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश का हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लोकल मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन हाल फिलहाल में दावे की पुष्टि करती कोई ऐसी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे हमें वायरल दावे पर संदेह हो। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल, अगर दावा सही है तो वायरल वीडियो कब का है और कहां का है? दूसरा सवाल, कहीं रंजिश के वीडियो को जानबूझकर धार्मिक एंगल देकर वायरल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? आखिर सच्चाई क्या है? क्या है सच, क्या है झूठ? दिखाते हैं।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। उस दौरान हमें नवंबर 2025 की कई तेलुगु भाषा में छपी रिपोर्ट्स मिली जिसमें वायरल हो रहे वीडियो के क्लिप का इस्तेमाल किया गया था। 5 नवंबर 2025 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी बालेश्वर रेड्डी और पीड़ित रोशन कुमार सिंह दोनों ही आपराधिक रिकॉर्ड वाले अपराधी थे। बताया गया था कि ये मामला वित्तीय विवाद को लेकर हुआ था। सर्च के दौरान हमें 5 नवंबर 2025 को छपी एक आधिकारिक रिपोर्ट मिली। यहाँ दी गई जानकारी के मुताबिक दोनों व्यक्तियों के बीच लंबे समय से दुश्मनी थी और उसी दिन बालेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना के हैदराबाद में जगतगिरी गुट्टा बस स्टॉप पर रोशन कुमार सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी। रेड्डी ने अपने साथियों मोहम्मद और आदि के साथ मिलकर रोशन पर धारदार हथियार से हमला किया और फिर मौके से फरार हो गया। इलाज के दौरान अस्पताल में रोशन कुमार सिंह की मौत हो गई। जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि रेड्डी और रोशन दोनों हिंदू थे। इस घटना में कोई सांप्रदायिक पहलू नहीं था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो में नजर आ रहे हमलावर और पीड़ित दोनों हिंदू थे। 2025 की इस घटना में कोई सांप्रदायिक पहलू नहीं था। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ फैक्ट चेक में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार से वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे भारत वर्ल्ड की हलचल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जीएनटी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake. And everything else. Hear it all here, commercial free on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर को अंत की तरफ बढ़ाने का, आप सबको ऐसे वीडियोस दिखाने का जिसके बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
5: कहते हैं अगर हौसला बुलंद हो तो आसमान की ऊंचाई भी छोटी पड़ जाती है, और इस बात को सच कर दिखाया है रूस के रुस्तम नाबियेव ने। उन्होंने वो कर दिखाया है जिसे आम इंसान तो क्या, अच्छे भले पर्वतारोही करने से पहले 100 बार सोचे। दोनों पांव से दिव्यांग रुस्तम ने बिना किसी कृत्रिम पैर के सिर्फ अपने हाथों के सहारे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर ली है। इस ऐतिहासिक चढ़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो गई हैं। दरअसल साल 2015 में एक सैन्य बैरक के अचानक ढह जाने से रुस्तम ने अपने दोनों पांव हमेशा हमेशा के लिए खो दिए थे। उस हादसे में कई सैनिकों की जान चली गई थी और रुस्तम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन व्हीलचेयर पर बैठकर जिंदगी काटने के बजाय उन्होंने पहाड़ों को चुनौती देने का फैसला किया। 20 मई को उन्होंने सुबह 8:16 पर एवरेस्ट के शिखर पर रूसी झंडा लहराया। इससे पहले पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुद्धा मगर ने कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट फतह किया था, लेकिन बिना प्रोस्थेटिक्स के सिर्फ हाथों के बल पर एवरेस्ट फतह करने वाले रुस्तम दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं।

सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आंसर शीट नजर आ रहा है और उसमें छात्र ने सभी सवालों के जवाब भी लिखे हुए हैं। लेकिन टीचर का दिमाग कुछ शब्द देखकर घूम गया, क्योंकि उसने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। छात्र ने अबाउट को एबीटी लिखा हुआ है, उसने आगे एक जगह पर काइंडा लिखा हुआ है, वही एक जगह पर उसने बाय द वे की जगह बीटीडब्ल्यू लिखा हुआ है। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो लोग सोशल मीडिया पर बात करते हुए अक्सर यूज करते हैं, मगर आंसर शीट में देखकर टीचर ने भी माथा पकड़ लिया। वही वीडियो में लिखा है, अगर आपका स्टूडेंट जेन ज़ी है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप सभी को पपेट शो के बारे में तो पता ही होगा। जी हाँ, वही कठपुतली कला जिसमें एक आदमी कुछ कठपुतलियों को अपनी उंगली से कंट्रोल करता है और एक कमाल का शो दिखाता है। ये एक पुरानी कला है जो लोगों का मनोरंजन करती है, मगर आज के समय में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। वही कला वायरल हो रहे वीडियो में देखने को मिली। वायरल वीडियो में नजर आता है कि एक पपेट कुछ आर्ट बनाने में लगा हुआ है। वो कलम निकालता, उसकी इंक चेक करता, कागज पर कुछ बनाता और फिर उसे गौर से देखते हुए नजर आता। उस पपेट को एक आदमी कंट्रोल करता हुआ नजर आता है। आप जब वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका इंटरनेट का पैसा वसूल हो गया है। सोशल मीडिया पर एक अनोखा और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुल्हन खुद अपने पति के घर बारात लेकर पहुंच जाती है। गाने की धुन पटाखों की गूंज के साथ जबरदस्त डांस करते हुए वो पूरे धूम धड़ाके के साथ ससुराल में एंट्री करती है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल बारात नहीं, बल्कि मजाकिया अंदाज में दिया गया सरप्राइज था। घर के बाहर ही वो जमकर नाचती है और फिर अपने होने वाले पति को वरमाला पहनाकर सबको चहका देती है। आसपास मौजूद लोग भी इस पल को एंजॉय करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

0: किसान की मेहनत उसकी फसल में ही दिखती है। इस फसल के मन मुताबिक फलने फूलने की खुशी किसान ही महसूस कर सकते हैं। तेलंगाना के किसान ने खुशी न सिर्फ खुद महसूस की है बल्कि दूसरों को भी महसूस कराई है। वीडियो में एक तरफ फसल कटती नजर आ रही है और दूसरी तरफ है खुशी जताता किसान। खुशी में वो जो भी कर रहा है उसे वो इंसान भी महसूस कर सकता है जिसने कभी खेती होते हुए भी ना देखी हो। वायरल हो रहे वीडियो में किसान को गुलाटियां लगाते देखा जा रहा है। वो ऐसे गुलाटियां लगा रहा है जैसे छोटा बच्चा हो, जबकि वो देखने में अधेड़ उम्र का लग रहा है। उसकी खुशी इतनी थी कि उसने उम्र देखने वालों और फसल काटने वालों की भी चिंता नहीं की। इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि महीनों की मेहनत आखिर क्या होती है। गर्मी से बचने के लिए एक कपल ने बाइक पर ऐसा जुगाड़ भिड़ाया जिसने सभी को चौंका ही दिया है। आलम यह है कि इस वीडियो को लोग बार बार देख रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि गर्मी से बचने के लिए किस तरह एक कपल ने बाइक को ढका है। देखकर ऐसा लगता है जैसे बाइक नहीं बल्कि चलता फिरता घर हो। आलम यह है कि सड़क पर पलट पलट कर लोग इसे देख रहे थे। जंगल में बंद पड़े रास्ते को एक हाथी ने अपनी ताकत और समझदारी से साफ कर दिया। आईएसएफ अधिकारी प्रवीण कासवान ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो साझा किया है जिसमें एक हाथी जंगल के रास्ते को साफ करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रास्ते पर भारी लकड़ियां और पेड़ों के बड़े टुकड़े पड़े हुए थे जिनकी वजह से सड़क बंद हो गई थी। आमतौर पर ऐसे कामों के लिए जेसीबी जैसी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जंगल के अंदर हर जगह मशीनों का पहुंच पाना आसान नहीं होता। खासकर बारिश या खराब रास्तों के कारण भारी वाहन अंदर नहीं जा पाते हैं। ऐसे समय में हाथी जंगल विभाग के लिए सबसे भरोसेमंद साथी बन जाते हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक हाथी और एक छोटे से डॉगी की जबरदस्त बॉन्डिंग और मस्ती साफ नजर आती है। वीडियो में दिखता है कि एक बड़ा हाथी तालाब के किनारे खड़ा हुआ है और अपनी लंबी सूंड से पानी उछालकर उस नन्हे डॉगी पर गिरा रहा है। हाथी का अंदाज ऐसा लगता है जैसे वो डॉगी को बारिश या झरने जैसा मजा दिला रहा हो। हाथी की इस हरकत से डॉगी भी काफी खुश दिखता है। पानी की बौछारों के बीच वो उछल कूद करता रहता है जैसे उसे कोई नेचुरल शावर मिल गया हो। वीडियो में उसकी पूंछ लगातार हिलती रहती है जिससे साफ पता चलता है कि वो इस मस्ती को दिल से एंजॉय कर रहा है। साथ ही वो कई बार हाथी को फिर से पानी डालने का इशारा भी करता नजर आता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को पहली नजर में देखने से लगता है कि एक शख्स अपने हाथ पर कुछ लकड़ी की सूखी टहनियों को रखे हुए है, लेकिन अगले ही पल उन सूखी लकड़ियों में जब हलचल होती है तो पता चलता है कि ये कोई सूखी लकड़ी की टहनी नहीं बल्कि कीड़े हैं। वायरल वीडियो को लेकर जानकारी जुटाने पर पता चला कि इन कीड़ों का नाम बफ टिप मॉथ है। ये कीड़े देखने में टूटी हुई लकड़ी की टहनी के टुकड़े लगते हैं, मगर असल में ये कीड़े होते हैं। इन कीड़ों की यही सबसे बड़ी खासियत है। बफ टिप मॉथ नाम का ये कीड़ा जब आराम करता है तो वो अपने पंखों को कुछ इस तरह से मोड़ लेता है कि वो देखने में बिल्कुल लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह नजर आता है। ये कीड़ा अपने आप को शिकारी पक्षी और जानवरों से बचाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Tune In has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
4: बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी फिल्म के सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है नितेश तिवारी की रामायण। फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई लेकिन कमाई के मामले में पहले ही बड़े बड़े रिकॉर्ड के लिए खतरा बनने लगी है। खबर है कि मेकर्स ने सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए पूरे 450 करोड़ रुपए की डिमांड रख दी है, यानी कि रिलीज से पहले ही फिल्म का भाव आसमान छू रहा है।
5: रिलीज से पहले ही इतिहास रचने जा रही है रामायण। बड़े पर्दे पर किंग का रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी तैयारी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज से पहले ही सिनेमा की दुनिया में हलचल मचाने का दम रखती हैं। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण भी कुछ ऐसा ही धमाल मचाने की तैयारी में है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही मेगा बजट फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमक दिखाने लगी है। सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि फिल्म के मेकर्स को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। शायद यही वजह है कि मेकर्स ने फिल्म के सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए 450 करोड़ की भारी भरकम मांग रखी है। अगर राइट्स के लिए 450 करोड़ की डील हो जाती है तो ये शाहरुख खान की किंग के मौजूदा रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा होगी। किंग के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की डील करीब 250 करोड़ में हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो रामायण के थिएट्रिकल राइट्स की डील पर जल मुहर भी लग सकती है। अगर ये डील 300 से 400 करोड़ की बीच फाइनल होती है तो भी ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड होगा। कामयाबी की उम्मीदों के आंकड़े सिर्फ थिएट्रिकल राइट्स की डील में ही नहीं दिख रही। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा डिजिटल राइट्स के लिए 1000 करोड़ की महाडील पर भी नजरें टिकाए हुए हैं। नमित इस डील के लिए इंडस्ट्री के कई दिग्गजों से बातचीत करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स की तरफ से फिल्म के दोनों पार्ट्स की कंबाइंड स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए मेकर्स को 700 करोड़ का ऑफर मिला था, लेकिन नमित मल्होत्रा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और वो डिजिटल राइट्स के लिए 1000 करोड़ की डील ही चाहते हैं। जाहिर है अगर ये दोनों डील पक्की हो जाती हैं, तो ये फिल्म पर्दे पर आने से पहले ही टेबल प्रॉफिट का नया इतिहास रच देगी। रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायण एक भव्य पौराणिक फिल्म है। इस फिल्म में रणबीर भगवान राम की भूमिका में हैं और साउथ के सुपरस्टार यश रावण का किरदार निभा रहे हैं। माता सीता का किरदार साई पल्लवी ने निभाया है। पर्दे पर भगवान हनुमान के रूप में सनी देओल नजर आएंगे। धुरंधर की तरह ही फिल्म भी दो पार्ट्स में आने वाली है। रिलीज से काफी पहले से ही इस फिल्म का सोशल मीडिया पर बज बना हुआ है। फिल्म का पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में दस्तक देगा। ये फिल्म करीब 4000 करोड़ के भारी भरकम बजट में तैयार हो रही है। फिल्म के मेकर्स को पूरी उम्मीद है कि रिलीज के बाद ये फिल्म हिंदी सिनेमा में कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और खबरों में अब रुक करते हैं अनोखे रिकॉर्ड की ओर, जो कि बना है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट फतह करने की तमन्ना तो तमाम लोगों को होती है, लेकिन वहां पर सभी का पहुंच पाना मुश्किल होता है। हालांकि दो दिन पहले ही एक साथ 250 के करीब लोगों ने चोटी पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना दिया। देखिए,
6: बर्फ से ढके इस पहाड़ पर जहां एक एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल होता है, पर्वतारोहियों की ये लंबी कतार हैरान करने वाली है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ओर बढ़ रहा पर्वतारोहियों का ये दल न केवल इस शिखर को फतह करने निकला था, बल्कि इन्होंने वहां पहुंचकर अनोखा रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। बताया जा रहा है कि 20 मई को नेपाल से 274 पर्वतारोही इस चोटी पर पहुंचे और एक ही साथ इतने लोगों के एवरेस्ट फतह करने का नया रिकॉर्ड बन गया। नेपाल के एक्सपीडिशन ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी इसकी तस्दीक की है।
7: On the 20th of May 2026, above 274 people summit successfully, including the climbers and the Nepali climbing Sherpa guide. This year, 2026, more than 500 people obtained the climbing permit for Mount Everest from the Department of Tourism.
6: इससे पहले 22 मई 2019 को 223 लोग एक साथ एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एवरेस्ट पर आवागमन को लेकर इस तरह से चिंता भी जताई गई कि इससे वहां की आबोहवा पर असर पड़ सकता है और पर्यावरण को खतरा भी हो सकता है। लेकिन नेपाल के एक्सपीडिशन ऑपरेटर्स एसोसिएशन का कहना है कि लोगों के एक साथ जाने का ये कतई मतलब नहीं है कि सैकड़ों पर्वतारोही एक ही समय में वहाँ मौजूद हों, बल्कि वो अलग अलग झुंड में होते हैं।
7: Disagreed that there was a more climber because Everest is 8,000 meter and people are climbing from 5,400 meter to 8,800 meter. So they are not in gathering, they are distributing in different camps and part. So there aren't that much climber in Everest according to the size, according to the distance of the mountain.
6: हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अब हर दिन अधिकतम 250 लोगों की सीमा तय कर दी जाए ताकि निश्चित संख्या में ही लोग एवरेस्ट के शिखर तक जा सकें और वहां भीड़ न लगे, क्योंकि पर्वतारोहियों की तादाद बढ़ने से वहां पर ऑक्सीजन की कमी और एक्सीडेंट के खतरों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा पर्वतारोहियों की जान और एवरेस्ट के प्राकृतिक माहौल को बचाने के लिए सावधानी हर हाल में जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: पवित्र अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंदिर कर्मचारियों ने गुफा में किया प्रवेश। 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिन चलेगी यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक करीब 20 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। झमाझम बारिश के बीच बद्रीनाथ में उमड़ा आस्था का समंदर। आज विधि विधान से खुलेंगे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। चमोली के गोविंद घाट से पवित्र धाम के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। अरदास के बाद पंच प्यारों ने की अगुवाई। गुजरात के गांधीनगर में स्वामी महावीर का हुआ सूर्य तिलक। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में दोपहर 2:07 पर बना शुभ संयोग। अलौकिक घटना के गवाह बने हजारों भक्त। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट। काशी की समृद्ध कला संस्कृति को मिलेगा नया मंच। आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन की 3D इमेज जारी। ओडिशा के चांदीपुर फायरिंग से भारत ने अग्निवन बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 700 से 900 किलोमीटर है मारक क्षमता। परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा। नैनीताल मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों तक गर्मी का असर। दोपहर के वक्त सावधानी बरतने की सलाह।

0: ये देखिए, तो अब ये 10 किलो के हथौड़े ने लगभग 4-5 बार इस कांच पर वार किया है, मारा है। आगे से तो ये चीजें टूट गई है, लेकिन ये दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भीतर कार के अंदर जो शख्सियत बैठा है, क्या उसे कुछ हुआ है। ये देखिए, कांच पूरी तरह से आगे से टूटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं। बड़े प्यार से हम हाथ लगा पा रहे हैं।
1: हैं कि ग्लासेस के साथ ये व्हीकल के डोर पे भी फायर किया गया है, और आप देख सकते हैं कि इस तरफ से बुलेट अंदर पेनिट्रेट होती है, वेदर इट इज ग्लास और स्टील, बट अंदर के साइड वो कम्प्लीटली वो प्रोटेक्ट करती है।
2: सब स्टेट्स में सप्लाई किया हुआ है टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। जब हम इस पे SLR के शॉट्स मारते हैं, AK-47 के शॉट लेते हैं, तो ये जो कांच है वो टूट जाता है, शटर हो जाता है, लेकिन अगर अंदर से आप जब भी हम आपको दिखाएंगे तो बहुत स्मूथ है।

AK-47 की गोली हो या हथौड़े का वार, इन फौलादी सुपर कारों पर हर वार है बेकार, क्योंकि कार नहीं ये कारों की धुरंधर है। वो धुरंधर जो सड़क पर देती है सुरक्षा की 100% गारंटी। और एक आम कार को धुरंधर में बदलती है वो बुलेट प्रूफ तकनीक, कारों का वो शानदार और जानदार मॉडिफिकेशन जिस पर दुनिया भर के नेता, अभिनेता, उद्योगपति और तमाम वीवीआईपी अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा करते हैं। आसान भाषा में समझे तो बुलेट प्रूफ कार का सीधा मतलब है एक ऐसा वाहन जो आपको किसी तरह के हथियारों

0: वीवीआईपी और नेताओं को गंभीर सुरक्षा खतरों के कारण ऐसी गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। भारत में ऐसी कई गाड़ियां विदेशों से इंपोर्ट की जाती हैं, लेकिन अब भारत में भी कुछ कंपनियां इन धुरंधर कारों को तैयार कर रहे हैं। आज आपको ले चलेंगे मुंबई से करीब 260 किलोमीटर दूर अहिल्यानगर में मौजूद एक ऐसी ही कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जो पिछले कई सालों से भारत की जमीन पर जोरदार बुलेट प्रूफ कारें तैयार करती आ रही है। शील्ड आर्मरी, जहां देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, बड़े उद्योगपतियों, विदेशी मेहमानों, राजनेताओं और फिल्मी हस्तियों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां तैयार की जाती हैं। साथ ही शील्ड आर्मरिंग, पुलिसिंग, गंगा कंट्रोल और हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए सुरक्षा बलों के काम आने वाली आर्म गाड़ियां भी तैयार करती हैं। शील्ड आर्मरिंग ने हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस के लिए 6 PAMA आर्म्ड व्हीकल तैयार किए हैं। ये कार नहीं बल्कि सुरक्षा के मामले में ये चलते फिरते टैंक है।
1: देश की जनता की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा जिन हाथों में है, उनकी सुरक्षा किन हाथों में है, ये एक अहम सवाल है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। इसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीर में ये बुलेट प्रूफ कार दिखाना चाहता हूँ, जो अभी अभी अत्याधुनिक तरीके से बनाकर तैयार की गई है। स्टेट पुलिस को ये दी जाने वाली है और शहर के उन कोनों में ये खड़ी रहेगी, जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध स्थल है। सवाल ये भी है कि आखिर इस तरह की बुलेट प्रूफ कार कैसे बनती है, कहाँ बनाई जाती है, क्या चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती है। इंडिया टुडे ग्रुप में आप ये सारी चीजें इस समय एक्सक्लूसिव देख रहे हैं।
0: ये बख्तरबंद गाड़ियां रिस्की ऑपरेशंस में तैनात पुलिस जवानों को सुरक्षा का नया कवच प्रदान करेंगी। स्टेट पुलिस की सेवा में पहले से मौजूद बख्तरबंद गाड़ियों की तुलना में ये व्हीकल ज्यादा एडवांस्ड, अपग्रेडेड और बेहतर प्रोटेक्शन देने वाला है।
2: हाँ जी, ये हमारी ब्रांड की व्हीकल है, जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जो इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो ये 100% हमारा डिज़ाइन है जो ये व्हीकल हमने डेवलप की है।
1: अच्छा, थोड़ा सा बताएं ना अंदर चल करके किस तरीके से क्या बना है, क्या खासियत है, क्योंकि पहली बार ये चीज़ें कैमरे पर आ रही हैं।
2: जी, तो ये सबसे पहली बात, ये पूरा जो व्हीकल है वो 360 डिग्री प्रोटेक्शन है। जब हम 360 डिग्री प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि इसे कोई भी एंगल से पेनिट्रेशन की चांसेस नहीं है। कहीं से भी अगर बुलेट आ रही है, कहीं से भी इसको गलते फायरिंग हो रही है, तो ये प्रोटेक्ट करती है। इसके चारों साइड्स हैं, इसका रूफ है, इसका बॉटम है, ये सारा कम्प्लीटली आर्मर्ड होता है। इसके आप जितने भी ये ग्लासेस देख रहे हैं, ये बहुत ही हैवी ग्लासेस होते हैं, जो AK-47 SLR जैसे जो वेपन्स होते हैं उसको वो इजीली प्रोटेक्ट कर सकता है।
1: अच्छा, और ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, ये क्या है?
2: तो सर, ये ऐसा है कि जब हमारे फोर्सेज होते हैं, जब हमारे पुलिस जवान कभी कोई मिशन में जाते हैं और वहाँ पर से अचानक से फायरिंग हो गई, तो उनको अंदर से ही बैठ के रिटेलिएट करना है, उन्हें अंदर से बैठ के जब फायरिंग करनी है तो वो अपना बैरल इस स्पॉट से, इसे गन पोर्ट कहते हैं, वहाँ से निकाल के उसे ईजिली फायर कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो गए, VVIP प्रोटेक्शन हो गए, वो डिफरेंट व्हीकल्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। इस व्हीकल के अंदर अगर आप टॉप पे देखें तो ये 360 डिग्री टरेट है, जहां पर जवान बाहर निकलता है, वो अपना गन माउंट करता है और उसको 360 डिग्री उसे फायर करने के चांसेस है। तो अगर कहीं से भी फायर हो रहा है तो उसे व्हीकल घुमाने की जरूरत नहीं है, उसको सिंपल वो टरेट है उसको घुमाएगा, वो सेल्फ प्रोटेक्टेड रहेगा और उसी वक्त वो फायर कर सकता है। इस व्हीकल की और एक खासियत है, अगर आप ये देखेंगे तो ये जितने भी स्लॉट्स हैं, ऐसे टोटल 4 स्लॉट्स हैं व्हीकल में, तो इसे इवन हेलीकॉप्टर से इस व्हीकल को लिफ्ट किया जा सकता है और कहीं पर भी डिप्यूट किया जा सकता है।

0: पर स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट और फोर्सेस के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है। कोई इसे हमें 6 सीटर भी बना सकते हैं, 4 सीटर भी बना सकते हैं, 8 सीटर भी बना सकते हैं, पर डिफरेंट सीटिंग कैपेसिटी। ईच सीटिंग इस तरह से बनाई गई है कि जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का वो क्विक एंट्री एंड एग्जिट हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट इसमें होता है कि आप कितना फास्ट मूव इन करते हो और मूव आउट करते हो। तो ये सारी चीज़ का यहाँ पर ध्यान दिया गया है। ये पूरा 100% डिज़ाइन है अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ है, और इसके अंदर जितने भी मटेरियल्स लगे हुए हैं सब हमारी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नतीजे से ये व्हीकल तैयार हुई।
1: बात जब बुलेट प्रूफ कार की हो तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि बुलेट प्रूफ कार असल में कोई अलग गाड़ी नहीं होती, बल्कि एक नॉर्मल कार को खास तकनीक के जरिए मजबूत बनाया जाता है ताकि वो गोलियों और दूसरे हमलों से बचा सके। किसी भी कार को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए उसमें बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास, दरवाजों और बॉडी में स्टील या खास मटेरियल की प्लेटिंग, मजबूत छत और रन फ्लैट टायर लगाए जाते हैं। इस मॉडिफिकेशन के लिए जरूरी है कि कार में अतिरिक्त वजन सहन करने की क्षमता हो, क्योंकि सुरक्षा के लिए जो स्टील की सीट्स और मोटे शीशे लगाए जाते हैं उनमें गाड़ी का वजन लगभग 1000 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। यही वजह है ज्यादातर लोग बुलेट प्रूफ बनवाने के लिए SUV को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनका इंजन और चेसिस दूसरी गाड़ियों की तुलना में मजबूत होता है। भारत में आमतौर पर टाटा सफारी, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर, इनोवा या लग्जरी सेगमेंट में BMW और ऑडी जैसी कंपनियों की गाड़ियां बुलेट प्रूफ करवाई जाती हैं।
2: हमने आपको दिखाया कि फोर्स और पुलिस किस तरह की सुरक्षा भरी कार का इस्तेमाल करते हैं, कि बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब चल रहे हैं हम उस तरफ जहां पर VIP, VVIP मिनिस्टर्स भी अपने कार का इस्तेमाल करते हैं पूरी तरह से सुरक्षित और बुलेट प्रूफ। ये देखिए लैंड क्रूजर नाम की कार यहाँ पर खड़ी हुई है और पूरी तरह से बनकर तैयार है। हम सीधे अब इसके भीतर जाएंगे और कैसा लगता है भीतर बैठ करके और किस तरीके से होती है सुरक्षा, उस बारे में भी जानकारी लेंगे। और पूरी तरह से लैंड क्रूजर को बना करके तैयार करके रख दिया गया है। जिस किसी भी दिग्गज ने बनाने का इन्हें ऑर्डर दिया है, अब बहुत जल्दी उन्हें ये कार डिलीवर भी हो जाएगी। लेकिन भीतर से इसका नजारा कैसा होगा ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लैंड क्रूजर कार है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ हो चुकी है। अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, उसी तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ है जैसे नॉर्मल कार के होते हैं। बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है कि ये बुलेट प्रूफ कार है। और मेरे साथ में सुरिंदर सिंह राठौर मौजूद ही हैं, साथ ही साथ इंद्रजीत सिंह राठौर भी मौजूद हैं। थोड़ा सा बताएं, पता ही नहीं चल पा रहा कि ये बुलेट प्रूफ कार बन चुकी है और आपने इसे सजा दिया, बना दिया, कैसे, क्या, कहाँ पर, क्या खासियत, कैसे पता चलेगा, क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा बताएं।
3: अभी आप जब यहाँ पर देखेंगे इसकी जो प्रोटेक्शन है वो हमने 360 डिग्री दी है। ये ऊपर के साइड पे भी पूरी प्रोटेक्टेड है, साइड पे भी है, दरवाजों में भी है। ये जैसे आप ग्लास देखेंगे तो ये 40mm का ग्लास है, काफ़ी थिक ग्लास है। तो इससे क्या AK-47 SLR ये सब चीज़ें अपना प्रोटेक्ट हो जाती है। और इसका आप इसकी ब्यूटी ये है कि ये आपको आइडेंटिफाई करनी नहीं चाहिए कि ये आर्मर्ड व्हीकल है कि नॉर्मल व्हीकल है। आप इसकी अगर कंफर्ट देखेंगे तो कंफर्ट एज इट इज़ जो ओरिजिनल की कंफर्ट है वो मिल रही है। आपके जो प्लास्टिक्स है, आपके जो ट्रिम्स है, आपके जो डोर पैड्स है वो एज इट इज़ ओरिजिनल जैसे लग रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर ये गाड़ी की बात की जाए तो ये 2 करोड़ की गाड़ी है, तो जो बंदा ये 2 करोड़ जो पैसे खर्च रहा है वो किस चीज़ के लिए खर्च रहा है, वो ये खर्च रहा है कि इसका कम्फर्ट मिले। इसकी जो उसने कम्फर्ट के पैसे दिए हैं, इसके जो फीचर्स के पैसे दिए हैं, अगर हमने इसको बुलेट प्रूफ में ऐसा कर दिया कि फीचर्स ही ना काम आए तो फिर ये कंफर्ट का जो उन्होंने पैसा खर्चा उसका यूज़ नहीं आएगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि एज इट इज़ जो ओरिजिनल है, जो भी मॉडिफिकेशन की गई है वो अंदर से की गई है, आउटर लुक को एज इट इज़ उसको मेंटेन किया गया है कि वो आइडेंटिफाई ना हो कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है।
2: अच्छा, मतलब ये कि भाई सुरक्षा कवच इस कार में जो कुछ लगा हुआ है वो सब आपने छिपाया, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया।
3: यस, क्योंकि अगर दिखा दे तो क्या है कि कभी कॉन्वॉय में 3 गाड़ियां चल रही है, 4 गाड़ियां चल रही है, तो अगर कोई अटैक करता है तो उसे ये नहीं पता होना चाहिए कि कौन से गाड़ी में बुलेट प्रूफ हुआ हुआ है, कौन से में नॉर्मल। तो इसकी जो हाइट है वो भी हमको मेंटेन करनी पड़ती है कि ओरिजिनल गाड़ी जो नॉर्मल गाड़ी है और हमारी जो आर्मर्ड गाड़ी है वो सेम जैसी की दिखनी चाहिए।
1: अब आपको बताते हैं कि किसी कार को बुलेट प्रूफ कैसे बनाया जाता है। वास्तव में किसी भी सामान्य कार को बुलेट प्रूफ बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। इसमें कार के इंजन को छोड़कर लगभग पूरे हिस्से को बदल दिया जाता है। दरवाजों से लेकर विंडशील्ड, खिड़कियां, छत और यहां तक की पूरा पैनल भी बुलेट प्रूफ मटेरियल से बदला जाता है। बुलेट प्रूफिंग से जुड़ा सारा काम होता है अहिल्या नगर में मौजूद इस कारखाने में, जहां लगभग 100 लोगों की टीम एक आम गाड़ी को मॉडिफाई कर मजबूत और सुरक्षित किले में तब्दील कर देती है।
2: ये देखिए, इस तरह से जो दरवाजे अभी हमने आपको दिखाया है, इस तरह से दरवाजे खोल दिए गए हैं। सिर्फ इंजन छोड़ करके इस गाड़ी के सारे पार्ट को निकाल दिया गया है और अब बुलेट प्रूफ चीजें उस गाड़ी में, उस कार में लगाने का कार्य जो है वो शुरू है। और मुझे लगता है, जैसा कि अभी सुरेंद्र सिंह राठौर ने हमें बताया है, 15 से 20 दिन में ये भी लग्जरी कार जो है ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं?
4: हाँ जी, एकदम सही। तो अभी इस वक्त हमने क्या किया है, जब ये जो नई गाड़ी आई थी उसको हमने लिया है, उसका पूरा स्ट्रिप डाउन किया है। तो जब आप देखेंगे तो इसके अंदर सब इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके सीट, इसके अंदर अपॉल्स्ट्री, ये सारी निकाल दिए हैं। इसके अंदर हमने रीइंफोर्स किया इसे आर्मर्ड स्टील के साथ, जहां जहां हमें लगता है कि 360 डिग्री प्रोटेक्शन देनी है वहां पर इसे हमने स्टेंटेन किया है और इस व्हीकल को वापस ग्राउंड से बिल्टअप किया है। तो हम जब ग्राउंड से बिल्टअप करते हैं तो इसका पहले फ्लोर बनाते हैं, फिर इसके साइड्स बनाते हैं, फिर रूफ बनाते हैं। तो इसे कंप्लीट एक केज जैसा बनाते हैं जिसे हम 360 डिग्री प्रोटेक्शन कहता है। इसका ये फायदा है कि ये बुलेट से तो प्रोटेक्ट करेगा, बट कभी अगर रोड पे एक्सीडेंट हो गया, व्हीकल टंबल होगी, इन दैट सिनेरियो आल्सो ये व्हीकल बहुत ही सेफ होती है।
2: अच्छा, ये थोड़ा सा भी हाइट में उठेगी नहीं?
4: नहीं, ये बहुत हैवी होती है व्हीकल। तो इसका नॉर्मल जो एड ऑन वेट होता है तकरीबन 1000 केजीज इसमें बढ़ जाता है। तो इसके वजह से व्हीकल बहुत सेफ होती है, ये रोड को पकड़ के चलती है। आपने देखा होगा बहुत सारे VVIP पॉलिटिशियंस ये व्हीकल को एवरीडे यूज के लिए यूज करते हैं।
1: एक बुलेट प्रूफ कार की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके टायर। हमले की स्थिति में भी गाड़ी चलती रहे इसके लिए खास रन फ्लैट ट्यूबलेस टायरों का इस्तेमाल किया जाता है।
4: इतना टाइम हमने ये देखा है कि जब एक्चुअल में फायरिंग होती है तो उन लोग है ना व्हीकल के टायर्स को टारगेट करते हैं। जब उसे टारगेट करते हैं तो जाहिर है कि व्हीकल रुक जाएगी, उन्हें ज़्यादा समय मिल जाएगा और उसे फिर फायर करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि ये जो व्हीकल का जो टायर है इसके अंदर रन फ्लैट सिस्टम लगा हुआ है। ये रन फ्लैट सिस्टम क्या करता है, जब इसके अंदर डिफ्लेट होगा, बुलेट लगेगी तो ये पूरा जो एयर है डिफ्लेट हो जाएगा, उसके बाद में जो टोटल वेट है ये रन फ्लैट सिस्टम पे आ जाएगा और उसके अलावा ये 350 किलोमीटर्स तो भी ये जा सकता है। पूरा डिफ्लेट होने के बाद में 50 किलोमीटर आपकी व्हीकल को ये अलग जगह पर लेके जा सकता है, जहाँ पर आप सुरक्षित हो वहाँ तक ये आपको पहुँचा देगा।
2: अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये जो टायर है ये कौन सी कंपनी का आप लोग इस्तेमाल करते हैं या खुद ही बनाते हैं?
4: नहीं, जो टायर है वो OEM के जो हो सकता है वो कोई भी मेक का हो सकता है, उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो इसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है वो उसे प्रोटेक्ट करेगा।
1: इसी तरह बुलेट प्रूफिंग के लिए खास तरह की स्टील शीट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मोटाई लगभग 6.5 mm तक होती है। तो वही पूरी गाड़ी का सबसे कमजोर हिस्सा शीशा होता है, इसलिए इसमें 45 से 55 मिलीमीटर तक का मोटा कई परतों वाला ग्लास लगाया जाता है।
4: सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स हैं जिसमें अलग अलग थिकनेस ऑफ मटेरियल हमने टेस्ट किया है। सो वेदर उसमें AK-47 हो गया या तो SLR हो गया, जो ये कॉमन थ्रेट परसेप्शन जो होते हैं, जो टेररिस्ट लोग यूज़ करते हैं, जो नक्सलवादी लोग ये वेपन्स यूज़ करते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो स्टील और ग्लास पे कुछ इस तरह का होता है। ये जब बुलेट लगती है तो सिर्फ इतना सा एक इम्पैक्ट होता है।
2: अच्छा, और यहाँ पर एक दरवाज़ा भी रखा हुआ है और ये शायद गोलियों के निशान है। 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6, ये क्या है जी?
4: सर, इसमें क्या है कि पूरी व्हीकल को जब बन गई है तो उसके ऊपर हमने ये फायर करवाया हुआ है, तो ये उसी का एक सैंपल डोर है। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लासेस के साथ ये व्हीकल के डोर पे भी फायर किया गया है और आप देख सकते हैं कि इस तरफ से बुलेट अंदर पेनिट्रेट होती है, वेदर इट इज़ ग्लास और स्टील, बट अंदर के साइड वो कम्प्लीटली वो प्रोटेक्ट करती है।
2: अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी है ये कांच की और क्या कहते हैं कांच का और कैसे इसे बनाया जाता है?
4: तो ये इसके अंदर 5 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है, ये एक सैंडविच ग्लास ग्लास होता है, जिसमें ग्लास होता है उसमें 5 अलग अलग तरह के मटेरियल्स लग के उसे वो 100% प्रोटेक्ट करने के लिए 40 mm थिक होता है, जो स्टैंडर्ड मटेरियल है, थिकनेस है उसके हिसाब से। और इसके अंदर नीचे यहाँ पर कम्प्लीटली जैसे हमने ये आर्मर्ड स्टील देखी, वो आर्मर्ड स्टील लगा हुआ है।
2: और वहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि ये कांच लगा हुआ है। थोड़ा सा इंद्रजीत जी आप बताएं, ये कांच आगे का कांच है ना या पीछे का है?
3: पीछे का विंडस्क्रीन है, ये विंडस्क्रीन है। तो इसपे जैसे हमने हैमर शॉट्स दिए हुए हैं, तो हैमर शॉट्स के बाद में भी जैसे हमने आपको दिखाया कि गन शॉट्स के, तो आपने सैंपल्स देखे। अगर कोई किसके दिमाग में रहता है कि नहीं इतना बड़ा हैमर लेके फिर भी प्रोटेक्ट करेगा, तो इसके लिए हमने आपको ये हैमर शॉट्स के भी डिस्प्ले बना के रखा है।
1: जहाँ एक टेक्टिकल व्हीकल को बनाने में 15 दिन से 1 महीने का समय लगता है, वहीं VIP सुरक्षा के लिए एक आम कार को बुलेट प्रूफ कार में बदलने के लिए 15 से 20 दिन का समय लगता है। बुलेट प्रूफिंग के तमाम स्टेप से गुजरने के बाद जब एक आम कार किले में तब्दील होकर खास हो जाती है, तब बारी आती है टेस्टिंग की। इसके लिए तैयार बुलेट प्रूफ कार के पार्ट्स को मजबूती की टेस्टिंग के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स में भेजा जाता है।
3: इसमें जैसे गुजरात में लैब है, चंडीगढ़ में लैब है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो इसको टेस्ट करती हैं। जैसे एक हमारे पास में अगर मटेरियल का लॉट आ गया, स्टील का लॉट आ गया, ग्लास का लॉट आ गया, हमने वो स्टील के लॉट को अपना सैंपल टेस्ट कर दिया। जैसे आपको दिखाया, दैट इज ये 300x300 का हमने अपना एक शीट काटा है, ये कटिंग करके हमने इसके ऊपर 6 शॉट्स लिए हैं, SLR के हो गए, AK-47 के हो गए। जो ग्लास है जो आपके पीछे, ये 500x500 का है, इस पर भी हमने शॉट लिया। हमारी कंपनी एक एडिशनल चीज़ करती है, जब आर्मरिंग पूरी ख़त्म हो जाती है तब उसको हम पूरी बुलेट प्रूफ करके एजेंसी में भेजते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं। तो जैसे ये गाड़ी का आपको जैसे हमने डोर दिखाया है, कि ये गाड़ी का डोर का ये खासियत है कि ये सिर्फ डोर टेस्ट नहीं हुआ है, ये पूरी गाड़ी उनके पास में गई है, वो गाड़ी के ऊपर उन्होंने टेस्ट किया है, फिर हमने वो डोर को रिप्लेस करके ये डोर को अपना एज अ डेमो पीस रखा है।
1: बुलेट प्रूफिंग और टेस्टिंग की तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इस कारखाने से निकली कार एक चलते फिरते किले में तब्दील हो जाती है। आज देश के कई राज्यों में यहां से निकली बुलेट प्रूफ कारें पहुंचती हैं। तमाम राज्यों में भेजी गई मॉडिफाइड कारों के सैंपल्स को इस कारखाने में बेहद शान से डिस्प्ले किया गया है।
2: और ये तस्वीरें देखें, अलग अलग राज्यों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, बहुत सारे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे कांच भी लगा हुआ है जो टूटे फूटे कांच है। थोड़ा सा बताएं ये क्या है, क्या चीज़ है, कहाँ पर आपने क्या किया है ये? मतलब
3: ये हमारा एक हमने डिस्प्ले बनाया हुआ है, ये हमने सब स्टेट्स में सप्लाई किया हुआ है टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। जब हम इस पे SLR के शॉट्स मारते हैं, AK-47 के शॉट लेते हैं, तो ये जो कांच है वो टूट जाता है, शाटर हो जाता है। लेकिन अगर अंदर से आप, जब हम आपको दिखाएंगे तो बहुत स्मूथ है, तो अंदर कोई भी पेनिट्रेशन नहीं है। इसके लिए हमने एक वॉल एक बनाया है, एक डिस्प्ले वॉल है, कि ये सब स्टेट्स में हमने दिया, और इससे ज़्यादा स्टेट्स भी हमारे ऐड हुए हैं, लेकिन अभी तक हमने उसको अपना डिस्प्ले पे नहीं डाला गया।
2: मतलब अलग अलग राज्यों में आपने जाँच प्रक्रिया पूरी करी है,
3: जहाँ जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स यूज कर रही है ये उनकी टेस्ट।
1: ये तो थी बात बुलेट प्रूफिंग की, अब बात करते हैं इसमें आने वाले, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये कार्य खास है, इसलिए दाम भी आम नहीं। बुलेट प्रूफिंग का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी सुरक्षा चाहते हैं। अगर गाड़ी को सिर्फ गोलियों के हमले से बचाना है तो ये खर्च 20 लाख से 50 लाख रुपए के बीच आ सकता है। ये बेसिक लेवल की सुरक्षा होती है जो पिस्टल या छोटे हथियारों से बचाने के लिए होती है। लेकिन अगर आप AK-47 जैसी राइफल, हैंड ग्रेनेड जैसे ज्यादा शक्तिशाली हथियारों से सुरक्षा चाहते हैं तो ये खर्च बढ़कर करोड़ों में पहुंच सकता है। ये खर्च इतना ज्यादा क्यों होता है ये भी समझना जरूरी है। दरअसल कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे आप कौन सी कार को मॉडिफाइड कर रहे हैं, उनमें कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास, भारी स्टील प्लेटिंग, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, फायर सिस्टम और खास टायर जैसी चीजें कीमत को काफी बढ़ा देती हैं।
3: इसमें जैसे ये गाड़ियां हैं वो अलग अलग टाइप की प्रोटेक्शन के ऊपर जाती है। अगर किसको हैंड पिस्टल से लेनी है तो वो स्टार्ट हो जाती है, एक 50 लाख से चालू हो जाती है, तो वो एक 2.5-2 करोड़ तक अपना जाती है अपना। उसमें AK-47 की भी प्रोटेक्शन है, SLR की भी प्रोटेक्शन है, बॉम्ब प्रोटेक्शन भी है, तो हर तरीके से प्रोटेक्शन देता है। अगर उसको और लाइट बनाना है हमको, तो हम उसके लिए कॉम्पोजिट यूज़ करते हैं, जो स्टील नहीं होता है वो बहुत लाइट होता है, उसमें कि ये गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होती है।
1: मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद इस कंपनी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनाने का काम शुरू किया था। अब ये गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कस्टमाइज्ड बैलिस्टिक प्रोटेक्शन और एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशन दे रही है। इतने सालों से शील्ड आर्मरिंग भारत के आर्म मोबिलिटी डिफेंस सिक्योरिटी और मोबिलिटी इंजीनियरिंग के मेल पर काम करते हुए बदलते खतरों के हिसाब से एंड टू एंड प्रोटेक्शन सॉल्यूशन देती आ रही है।
0: तो ये शुरुआत ऐसे हुई कि जब 26/11 हुआ तो हमें एक नीड ये लगी कि सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स उस वक्त इंडिया में इतने क्वालिटी के जो इंटरनेशनल क्वालिटी के नहीं थे। तो जो ऑपरेशन जब यहाँ पर हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे लैप्सेस देखे गए, वेदर वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात की जाए या तो व्हीकल्स की बात की जाए, तो उस लेवल का प्रोडक्ट नहीं था यहाँ पर। तो तब ये दिमाग में आया कि हमें कुछ इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इंडिया में लेके जाने चाहिए ताकि हमारे जवान हैं, हमारे VVIPs हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, वो सारे इसको क्या बोलते हैं अपने आप को सुरक्षित कर सके। तो बस वो एक सोच था और तब से हमने स्टार्ट किया। 2011 हमने ये कंपनी स्टार्ट की और एक स्टेट से स्टार्ट किया। तकरीबन 18 राज्य के स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी व्हीकल्स यूज कर।
1: ये वो सुपर कारें हैं जिनके आगे बुलेट बेअसर है, भारी हथियारों का वार भी बेकार है, सड़क पर चलता फिरता आर्म टैंक है ये कारें। यही वजह है कि देश भर में सरकारों से लेकर असरदारों तक इन धुरंधर कारों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। अहिल्यानगर से साहिल चौहान और धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
9: Thank God I get to wake up.
8: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीज
11: पवित्र अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने, सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंदिर कर्मचारियों ने गुफा में किया प्रवेश। 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिन चलेगी यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह, अब तक करीब 20 लाख भक्तों ने किए दर्शन पूजन। झमाझम बारिश के बीच बद्रीनाथ में उमड़ा आस्था का समंदर। आज विधि विधान से खुलेंगे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। चमोली के गोविंद घाट से पवित्र धाम के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना, अरदास के बाद पंच प्यारों ने की अगुवाई। गुजरात के गांधीनगर में स्वामी महावीर का हुआ सूर्य तिलक, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में दोपहर 2:07 पर बना शुभ संयोग, अलौकिक घटना के गवाह बने हजारों भक्त। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट, काशी की समृद्ध कला संस्कृति को मिलेगा नया मंच, आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन की 3D इमेज जारी। ओडिशा के चांदीपुर फायर रेंज से भारत ने अग्नि वन बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, 700 से 900 किलोमीटर है मारक क्षमता, परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा। नैनीताल मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों तक गर्मी का असर। दोपहर के वक्त सावधानी बरतने की सलाह।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
12: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश कर दिया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोस दी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है। कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर रहती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इसे सच मानकर शेयर कर देते हैं। यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ कर देते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले फैक्ट चेक में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि महिला पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर खुशी मना रही थी, लेकिन अब राज्य की नई सरकार ने इसी का घर गिरवा दिया। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, बताएंगे आपको। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के साथ जुड़ी है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि एक हिंदू लड़की से इश्क करने पर एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई। क्या है वायरल दावे की यहां पर सच्चाई, वो भी आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
12: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर खुशी मना रही महिला का घर नई सरकार ने बुलडोजर से गिरा दिया। वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करती इस रिपोर्ट में देखिए।

0: ये वाली तस्वीर भी दिखा है पीछे, यहाँ पर भी जो है बैठ सकते हैं हमारे ऑफिस।
1: यस, तो इसके अंदर टोटल ये जो मॉडल है इसके अंदर 6 सीटर है। तो जब 6 सीटर की बात करते हैं तो फ्रंट में 2 है, साइड्स में 2 है, और जो रेयर है उसमें 2 है। इसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन भी आता है जो फर्दर इसको क्या बोलते हैं सीटिंग कैपेसिटी को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि एज

0: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। हाल ही में हावड़ा रेलवे स्टेशन और सियालदह रेलवे स्टेशन के बाहर ही अभियान चलाया गया। वहीं कोलकाता के तिलजला इलाके में अतिक्रमण हटाने को लेकर वहां के स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच टकराव हुआ, जिसमें 8 जवान घायल हो गए। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो शेयर करते हुए कुछ लोग लिख रहे हैं कि एक महिला जो बंगाल में बीजेपी की जीत की खुशी मना रही थी, राज्य की नई सरकार ने उसी का घर गिरवा दिया। वीडियो में एक के बाद एक दो क्लिप्स नजर आती हैं। पहली क्लिप में भगवा टी शर्ट पहने हुए और भगवा गुलाल लगाए हुए एक महिला मजेदार स्टाइल में डांस करती दिख रही है। वहीं दूसरी क्लिप में टूटी फूटी इमारतों के बीच खड़ी एक महिला रो रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कई लोगों का कहना है कि जो महिला बंगाल में बीजेपी की जीत की खुशी में नाच रही थी, उसी का घर बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद तोड़वा दिया। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बंगाल में चुनाव के समय यह अंध भक्तिन खूब नाच नाच कर डांस कर रही थी बीजेपी के लिए। बीजेपी बंगाल जीती, फिर बुलडोजर चला तो इस अंध भक्तिन का घर भी लपेटे में आ गया। अब कह रही है बीजेपी को नहीं जीतना चाहिए था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये महिला पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर खुशी मना रही थी, लेकिन अब राज्य की नई सरकार ने इसी का घर गिरवा दिया। अब ये महिला रो रोकर ये बोल रही है कि बीजेपी को वोट देकर उसने गलती कर दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले दोनों वीडियोस के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में नजर आ रही दोनों ही महिलाओं के चेहरे को जूम करके हमारी टीम ने जब ध्यान से देखा तो ये सामने आया कि दोनों महिलाएं अलग अलग हैं। मतलब दो वायरल क्लिप्स को जोड़कर इस वीडियो को तैयार किया गया है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके अलावा पहला सवाल क्या है इसी वीडियो से रिलेटेड, वो आपको दिखा देते हैं। अगर दावा वाकई सही है तो वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए सियासी अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, आखिर सच्चाई क्या है, आपको इस वीडियो में दिखाते हैं।
0: फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल के लिए दोनों वीडियो की जांच की। पहली क्लिप में गुलाबी रंग का एक मंदिर नजर आ रहा है। सर्च के जरिए इसके बारे में हमें पता लगा कि ये पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नतुनपुल्ली न्यू टाउन इलाके का राधा कृष्ण